0: नहीं होती है। इसके लिए बकायदा पुलिस की गाइडलाइंस भी हैं। जंतर मंतर वेधशाला का एंट्री गेट दूसरी ओर है। जंतर मंतर प्रदर्शन स्थल और वेधशाला के बीच में टॉलस्टॉय मार्ग है, जहां पर किसी भी प्रकार के प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। इसके बाद फैक्ट चेक टीम को वीडियो में ऐसी कोई भी गलती नजर नहीं आए जिससे हमें इसके असली होने पर शक हो। मसलन कि यदि फोटो को जूम करके देखने पर वीडियो में कई आकृतियां ऐसी नजर आ रही हैं, साथ ही साथ इसमें अलग से आवाज को भी जोड़ा गया, लिहाजा हमने वायरल हो रहे वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल यह कि अगर वीडियो सच्चा है तो उसके बारे में आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई। हमारा दूसरा सवाल यह कि कहीं जानबूझकर एडिटेड वीडियो को वायरल करके भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा है। देखिए सच और झूठ क्या है इस रिपोर्ट में।
1: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम वायरल वीडियो की पड़ताल में जुटी। वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखने पर हमें इसके असली होने पर संदेह हुआ। मसलन फोटो को जूम करके देखने पर वीडियो में कई आकृतियां एक ही जैसी दिख रही हैं। इमेज में अलग से आवाज जोड़कर इस वीडियो को बनाया गया है। इसके बाद हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें एक वेरिफाइड इंस्टाग्राम हैंडल पर ये मिला। इसे 6 जून 2026 को अपलोड किया गया था। वीडियो के कमेंट में बड़ी संख्या में लोगों ने इसे एआई से बना हुआ बताया था। हालांकि इस हैंडल पर इसे एआई लेबल के साथ पोस्ट किया गया है, जिसका मतलब हुआ कि कंटेंट को पूरा या उसके कुछ हिस्से को बनाने या उससे बेहतर करने में एआई का इस्तेमाल हुआ है। वायरल वीडियो की सच्चाई जानने के लिए एआई डिटेक्शन टूल्स की मदद ली। हमने वायरल वीडियो के कई स्क्रीनशॉट्स निकाले। दो स्क्रीनशॉट को हाइव मॉडरेशन टूल पर इसे स्कैन किया गया। इसके एनालिसिस में वायरल वीडियो के 70.2% एआई से बनाए जाने की अधिकतम संभावना की पुष्टि हुई। जांच के दौरान एक दूसरे एआई डिटेक्शन टूल साइट इंजन का भी इस्तेमाल किया गया। इस टूल के नतीजों ने भी वायरल वीडियो के 99% तक एआई से बने होने की संभावना जताई। इसके लिए भी हमने स्क्रीनशॉट का इस्तेमाल किया। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। वायरल वीडियो एआई एडिटेड है। हालांकि ये सही है कि 6 जून के सीजेपी के प्रदर्शन में जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन वायरल वीडियो फेक है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: फ्रांस के फुटबॉल क्लब पेरिस सेंट जर्मेन यानी पीएसजी के चैंपियन लीग जीतने के बाद पेरिस में हिंसा भड़क गई थी और इसी घटना से जोड़कर एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार शेयर किया जा रहा है, जिसमें जलती गाड़ियां बस स्टैंड पर तोड़फोड़ के दृश्य देखने को मिल रहे हैं। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी ये रिपोर्ट।
2: तीस मई की रात को पेरिस पीएसजी के चैंपियंस लीग जीतने की खबर सामने आने के बाद पेरिस समेत फ्रांस के कई हिस्सों में हिंसा भड़क गई। जश्न मनाने के दौरान उपद्रवियों ने कुछ जगहों पर दुकानों में भी तोड़फोड़ की और उसमें आग लगा दी। इसके अलावा कई गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया। फ्रेंच पुलिस ने इस मामले में करीब 780 लोगों को हिरासत में लिया था। इसी घटना से जोड़कर सोशल मीडिया पर 37 सेकंड का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें शुरुआती 18 सेकंड में एक सड़क पर कई गाड़ियां पलटी और उनमें से कुछ में आग लगी हुई भी दिखाई दे रही है। आगे के हिस्से में भीड़ एक बस और ट्राम स्टेशन को तोड़ती हुई दिखाई दे रही है। इस वीडियो को एक्सपर्ट शेयर करते हुए इसे पेरिस में हुई हालिया हिंसा का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
0: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में जलती गाड़ियों और बस स्टैंड पर तोड़फोड़ देखने को मिल रही है। लोग गुस्से में गाड़ियों को निशाना बना रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। पीएसजी के चैंपियंस लीग जीतने के बाद पेरिस में हिंसा भड़क गई, इस दावे का साथ इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है। तो ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। फैक्ट चेक टीम ने सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने का वायदा किया है, इसीलिए हमने इसकी पड़ताल के लिए एक एक फ्रेम को गौर से देखा। हाँ, ये बात सच है कि 30 मई की रात को पेरिस के सेंट जर्मेन चैंपियन लीग जीतने की खबर सामने आने के बाद पेरिस समेत फ्रांस के कई हिस्सों में हिंसा भड़क गई थी। जश्न मनाने के दौरान उपद्रवियों ने कुछ जगहों पर दुकानों में भी तोड़फोड़ की थी, उसमें आग लगाई थी। इसके अलावा कई गाड़ियों को भी निशाना बनाया था, लेकिन ये वीडियो उसी हिंसा से जुड़ा हुआ था, ये जानना जरूरी हो गया था। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रही वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमारा ध्यान वीडियो में तोड़फोड़ मचा रहे लोगों के कपड़ों पर गया। लोग जैकेट पहने हुए हैं, कोट पहने हुए, टोपी लगाए हैं, मफलर लगाए हुए हैं। अगर वीडियो 30 मई का होता तो इस दौरान फ्रांस में कड़ाके की ठंड नहीं पड़ती। फ्रांस में मई का महीना साल के सबसे बेहतरीन समय में से एक होता है। इस दौरान मौसम सुहावना होता है, बसंत का मौसम होता है, दिन में खुशमा धूप, शाम में हल्की ठंडी होती है, बारिश कभी कभार हो जाती है। मतलब ये कि वायरल वीडियो हाल फिलहाल का तो नहीं हो सकता, लिहाजा हमने वायरल हो रहे वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल यही कि अगर वीडियो हाल फिलहाल का है तो फिर इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई। हमारा दूसरा सवाल यह कि कहीं किसी पुराने वीडियो को जानबूझकर नया एंगल देकर अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही। सच और झूठ क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए।
2: फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सर्च के दौरान हमें ये वीडियो एक पत्रकार के एक्स अकाउंट से 24 दिसंबर 2022 को पोस्ट किया हुआ मिला। इसके अलावा हमें एक फेसबुक अकाउंट से 25 दिसंबर 2022 को अपलोड किया गया दूसरा वीडियो भी मिला, जिसमें वायरल वीडियो से जुड़े दृश्य मौजूद थे और इसे रेनी बोइसरी नाम के एक पत्रकार ने रिपोर्ट किया था। वीडियो के साथ मौजूद कैप्शन में इसे पेरिस के कुर्दिश कल्चरल सेंटर के सामने हुए हमले के बाद हिंसा भड़कने का बताया गया था। इसके बाद हमने आग के दृश्यों की पड़ताल की, जिसमें भीड़ एक बस और ट्राम स्टेशन तोड़ती दिखाई दे रही है। रिवर्स सर्च में हमें ये वीडियो एक फेसबुक अकाउंट से 25 दिसंबर 2022 को अपलोड किया गया मिला। वीडियो के साथ मौजूद कैप्शन में इसे पेरिस का बताया गया था। जांच में हमें एक यूरोपियन मीडिया आउटलेट की वेबसाइट पर भी 24 दिसंबर 2022 को प्रकाशित रिपोर्ट में वायरल वीडियो से जुड़े दृश्यों वाली तस्वीर मिली। ये रिपोर्ट 23 दिसंबर 2022 को पेरिस में कुर्दिश कल्चरल सेंटर पर हुए हमले के बाद पेरिस में भड़की हिंसा की थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 23 दिसंबर 2022 को पेरिस में मौजूद कुर्दिश कल्चरल सेंटर के पास गोलीबारी हुई थी और इसमें करीब 3 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद फ्रांस की राजधानी पेरिस की सड़कों पर हिंसा भड़क गई थी। यह हमला 69 वर्षीय विलियम एम नाम के एक शख्स ने किया था। हमारी जांच में मिले साक्ष्यों से ये स्पष्ट है कि पेरिस में हिंसा भड़कने के दावे से शेयर हो रहे इस वीडियो में मौजूद दोनों ही दृश्य हालिया नहीं बल्कि करीब 3 साल पुराने हैं। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: फैक्ट चेक में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियो जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
3: Good news today isliye acha lagta hai iske andar na wo us khabron ki.
4: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
5: One more, let's go.
4: Free forever. Get business internet advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
3: Good news today isliye acha lagta hai iske andar na wo us khabron ki maar dhaad aur chilla
0: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, जहां हम आपको दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है।
2: इन दिनों सोशल मीडिया पर दिल्ली के एक रिक्शे वाले भैया खूब छाए हुए हैं। इनका नाम मोहम्मद असलम है, जिन्हें लोग इंटरनेट पर असलम रिक्शा वाला के नाम से जानते हैं। दरअसल इस रिक्शे वाले का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो विदेशी पर्यटकों से कोई टूटी फूटी नहीं बल्कि एकदम फर्राटेदार स्पेनिश और अंग्रेजी में बतियाते दिख रहे हैं। असलम के इस हुनर को देखकर न सिर्फ विदेशी बल्कि देश की जनता भी हैरान है। असलम पिछले 17 सालों से पुरानी दिल्ली की सड़कों पर रिक्शा चला रहे हैं। वो सिर्फ सवारी को एक जगह से दूसरी जगह छोड़ने का काम नहीं करते बल्कि उनके लिए एक टूर गाइड भी बन जाते हैं। वो विदेशी मेहमानों को दिल्ली के इतिहास की कहानियाँ सुनाते हैं, उन्हें घूमने और फोटो खींचने के लिए बढ़िया जगहों की सलाह देते हैं। साड़ी में सजी एक लड़की ने ऐसा शानदार डांस किया कि पूरा समारोह तालियों और सीटियों से गूंज उठा। उसके दमदार मूव्स, बेहतरीन एक्सप्रेशंस और ग्रेसफुल अंदाज ने सभी का दिल जीत लिया। लड़की का डांस केवल स्टेप्स तक सीमित नहीं था बल्कि उसके एक्सप्रेशंस भी बेहद आकर्षक थे। गाने के हर बोल और हर बीट के साथ उसने जिस तरह तालमेल बिठाया, उसने प्रेजेंटेशन को और भी खास बना दिया। आजकल सोशल मीडिया पर एक बेहद हैरान करने वाला वीडियो खूब सुर्खियां बटोर रहा है। इस वीडियो में एक ऐसा कछुआ दिखाई दे रहा है जिसके एक नहीं बल्कि दो दो मुंह हैं। जिसने भी ये वीडियो देखा वो दंग रह गया। वायरल वीडियो की शुरुआत में एक शख्स अपने हाथ में एक छोटा सा कछुआ पकड़े नजर आता है। पहली नजर में तो ये बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन जैसे ही कछुए का अगला हिस्सा सामने आता है, लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इस अनोखे कछुए के दो मुंह और चार आंखें हैं। दिलचस्प बात यह है कि कछुए के दोनों मुंह पूरी तरह एक्टिव हैं। जब वो शख्स अपनी उंगली कछुए के मुंह के पास ले जाता है तो दोनों मुंह उसे पकड़ने के लिए एक साथ खुल जाते हैं। भीषण गर्मी के इस दौर में देश के कई हिस्सों में पानी की कमी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। ऐसे समय में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस प्रेरणादायक वीडियो को उत्तराखंड पुलिस ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया। वीडियो की शुरुआत एक ऐसे सीन से होती है जो इन दिनों देश के कई हिस्सों की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है। तेज धूप और तपती गर्मी के बीच एक बंदर बेहद प्यासा नजर आता है। पानी की तलाश में वो इधर उधर भटकता है और आखिरकार उसे एक सार्वजनिक पानी का नल दिखाई देता है। जिसके बाद जो सीन कैमरे में कैद होता है वो हर किसी को हैरान कर देता है। बंदर नल के पास पहुंचकर बड़ी सहजता से उसे खोलता है। ऐसा लगता है मानो उसे पूरी तरह पता हो कि पानी कैसे निकाला जाता है। नल खुलते ही वो आराम से पानी पीता है और अपनी प्यास बुझाता है। यहाँ तक तो सीन नॉर्मल लगता है, लेकिन इसके बाद जो होता है वो इस वीडियो को खास बनाता है। पानी पीने के बाद बंदर तुरंत वहाँ से नहीं जाता, वो कुछ पल रुकता है, फिर अपने हाथों से नल की टोटी बंद कर देता है। उसकी छोटी सी हरकत लोगों के लिए बड़ी सीख बन गई। जहाँ अक्सर इंसान सार्वजनिक जगहों पर पानी पीने के बाद नल खुला छोड़ देते हैं, वहीं इस जानवर ने पानी की एक एक बूंद की अहमियत समझते हुए उसे बंद कर दिया। सोशल मीडिया पर एक उदास और गहरी सोच में डूबे गोरिल्ले का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद लोगों को अपने घर का क्लेश याद आ रहा है। वीडियो को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहले हिस्से में एक नर गोरिल्ला तेजी से भागता दिखाई देता है, जबकि उसके पीछे एक मादा गोरिल्ला गुस्से में उसका पीछा कर रही होती है। पूरा सीन ऐसा लगता है मानो दोनों के बीच कोई बड़ा विवाद हो गया हो और मेल गोरिल्ला वहां से जान बचाकर निकलने की कोशिश कर रहा हो। इसके बाद वीडियो का दूसरा हिस्सा शुरू होता है जो इंटरनेट यूजर्स के बीच सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन गया। इसमें गोरिल्ला अकेले घास पर बैठा दिखाई देता है। उसका चेहरा बेहद गंभीर है, एक हाथ ठुड्डी के नीचे टिका हुआ है और उसकी नजरें कहीं दूर जीरो में खोई हुई हैं। ऐसा लगता है मानो वो अपनी पूरी जिंदगी का हिसाब किताब बैठा कर किसी गहरे कंक्लूजन पर पहुंचने की कोशिश कर रहा हो। हालांकि कुछ सतर्क सोशल मीडिया यूजर्स ने जल्द ही ये जानकारी शेयर कर दी कि वीडियो के दोनों हिस्से अलग अलग जगहों के हैं और अलग अलग समय के हैं और उन्हें जोड़कर एक नई कहानी बनाई गई। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सोशल मीडिया ने इस गोरिल्ला के लिए अपनी अलग ही कहानी गढ़ ली थी और लोग उसे खियोमासा की वैवाहिक परेशानी का नाम देने लगे। प्यार में दिल टूटने की कहानियां तो आपने इंसानों की बहुत सुनी होंगी, लेकिन क्या कभी किसी बिल्ली का हार्ट ब्रेक देखा है? सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही मजेदार और भावुक कर देने वाला वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसने लाखों लोगों का दिल जीत लिया। वीडियो की शुरुआत एक प्यारी सी बिल्ली से होती है। बिल्ली अपने मुंह में एक छोटे से चूहे को दबाए हुए नजर आती है जिसे लोग गिफ्ट या तोहफा बता रहे हैं। वीडियो देखकर ऐसा लगता है मानो वो किसी खास को ये तोहफा देने के लिए उत्साहित होकर वहाँ पहुँची हो। बिल्ली धीरे धीरे आगे बढ़ती है और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी मंजिल की ओर जाती दिखाई देती है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आगे उसका इंतजार एक बड़े सरप्राइज से होने वाला है। जैसे ही बिल्ली आगे पहुंचती है उसकी नज़र दूसरी बिल्लियों पर पड़ती है। दोनों बिल्लियां एक दूसरे के साथ बेहद प्यार भरे अंदाज में समय बिताती दिखाई देती हैं। ये दृश्य देखकर पहली बिल्ली कुछ पल के लिए रुक जाती है। वीडियो में उसका रिएक्शन ऐसा लगता है जैसे उसे अचानक एहसास हो गया हो कि जिस खास के लिए वो गिफ्ट लेकर आई थी वो अब किसी और के साथ खुश है। हालांकि जानवरों की भावनाओं को इंसानों की तरह नहीं समझा जा सकता, लेकिन वीडियो का ये पल लोगों को काफी दिलचस्प लग रहा है। वीडियो का सबसे भावुक और मजेदार हिस्सा तब आता है जब बिल्ली बिना कोई शोर किए अपना गिफ्ट जमीन पर रख देती है। इसके बाद वो धीरे धीरे वहाँ से वापस लौट जाती है। इन दिनों पूरी दुनिया में फीफा वर्ल्ड कप का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच यूके के एक जू ने एक बेहद प्यारा वीडियो शेयर किया जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखकर लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ जा रही है। वायरल वीडियो में एक नन्हा एशियाई हाथी फुटबॉल के साथ खेलता हुआ नजर आ रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस हाथी के बच्चे का जन्म महज 2 दिन पहले ही हुआ। इतनी छोटी उम्र में फुटबॉल के प्रति उसकी जिज्ञासा और मासूम हरकतें लोगों का दिल जीत रही है। यही वजह है कि ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और फुटबॉल फैंस के साथ साथ पशु प्रेमियों का भी खूब ध्यान आकर्षित कर रहा है। सोशल मीडिया पर आए दिन जानवरों से जुड़ी वीडियो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती रहती है। कभी किसी जानवर की मासूम हरकतें लोगों का दिल जीत लेती है तो कभी जंगल के जीवों की ताकत और आक्रामक अंदाज से जुड़े वीडियो इंटरनेट पर छा जाते हैं। इन दिनों भी एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक हाथी अपनी जबरदस्त ताकत का प्रदर्शन करता नजर आ रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में कई हाथी एक घिरे हुए प्लॉट के अंदर दिखाई देते हैं। शुरुआत में सब कुछ सामान्य नजर आता है, लेकिन कुछ ही पलों में एक हाथी ऐसा कदम उठाता है जिसे देखकर वहां मौजूद लोग भी चौंक जाते हैं। हाथी सामने बनी दीवार की ओर बढ़ता है और पूरी ताकत के साथ उसे जोरदार धक्का मार देता है। ये धक्का इतना जोरदार था कि मजबूत दिखाई देने वाली दीवार कुछ ही सेकंड में ढह जाती है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दीवार गिरने के बाद हाथियों के लिए बाहर निकलने का रास्ता बन जाता है। इसके बाद वो आराम से उस स्थान से बाहर निकल जाते हैं। हाथी की ताकत और उसके आत्मविश्वास को देखकर लोग दंग रह गए। आमतौर पर ऐसी दीवारों को तोड़ने के लिए मशीनों या भारी उपकरणों की जरूरत पड़ती है, लेकिन इस हाथी ने केवल एक जोरदार धक्के से पूरी दीवार को गिरा दिया।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
4: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
5: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
4: Learn more at emory.edu.
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: और अब बात आमिर खान की फिल्म लगान की करते हैं। आमिर के लिए तो ये जैसे डबल धमाका है, क्योंकि एक तरफ उनके लगान ने बड़े पर्दे पर 25 साल पूरे कर लिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आमिर खान प्रोडक्शन भी अपनी सिल्वर जुबली मना रहा है। आमिर खान ने इस खास मौके को सेलिब्रेट करने के लिए एक पार्टी रखी। इस पार्टी में आमिर के साथ जश्न मनाने के लिए बॉलीवुड की कई जानी मानी हस्तियां जुटी। देखिए कौन कौन पहुंचा इस पार्टी में।

0: जब फिल्मों में कामयाबी के 25 साल का जश्न मनाया तो उन्हें बधाई देने के लिए सितारों की महफिल सज गई। ये जश्न सिर्फ आमिर खान प्रोडक्शन का ही नहीं बल्कि ब्लॉकबस्टर फिल्म लगान के 25 साल पूरे होने का भी था। बड़े पर्दे पर 25 साल की कामयाबी को आमिर ने अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट किया। आमिर खान प्रोडक्शन हाउस की सिल्वर जुबली पर आमिर ने एक खास इवेंट रखा। इस इवेंट में बड़े पर्दे की तमाम जानी मानी हस्तियां पहुंची। आमिर यहां अपनी होने वाली पत्नी गौरी स्प्रैट के साथ दिखे। इस पार्टी में आमिर खान का पूरा परिवार भी पहुंचा। उनकी बेटी आयरा और बेटा जुनैद इस पार्टी में शामिल थे। आमिर की एक्स वाइफ किरण राव अपने बेटे के साथ इस इवेंट में पहुंची थी। इस जश्न के खास मेहमान थे सलमान खान, जो अपने बिल्कुल नए लुक के साथ यहां दिखे। सलमान का ये लुक सामने आते ही चर्चा होने लगी कि ये उनकी नई फिल्म का ही लुक है। आमिर ने सलमान को गले लगाकर उनका स्वागत किया और दोनों ने एक साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। कुछ ही देर में करीना ने भी इन दोनों को ज्वाइन कर लिया। इसके साथ ही काजोल, सानिया मल्होत्रा, रेखा, अली फजल, ऋचा चड्ढा भी इस जश्न का हिस्सा बने। जूही चावला यहां अपने पति के साथ पहुंची। जावेद अख्तर और शबाना आजमी भी इस पार्टी में दिखे। लगान के डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर, राजकुमार ईरानी समेत तमाम जाने माने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इस जश्न में शामिल थे। आमिर ने सिर्फ एक एक्टर के तौर पर ही नहीं बल्कि बतौर प्रोड्यूसर भी कई यादगार फिल्में बनाई हैं। आमिर की फिल्में हमेशा दर्शकों के दिलों को छू लेती हैं और ऐसी ही फिल्में वो प्रोड्यूस भी करते हैं। 25 साल के सफर में आमिर खान प्रोडक्शन ने कई यादगार फिल्में बॉलीवुड को दी हैं। आमिर खान प्रोडक्शन की सिल्वर जुबली के मौके पर उन तमाम फिल्मों को याद भी किया गया जो बड़े पर्दे पर आज भी मील का पत्थर मानी जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: सनी देओल की गदर ने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ कमाई के रिकॉर्ड ही नहीं तोड़े बल्कि थिएटर्स में किसी फेस्टिवल जैसा माहौल बना दिया था। गदर एक प्रेम कथा ने आज ही के दिन 25 साल पहले जैसे ही पर्दे पर दस्तक दी एक कोहराम समचा दिया था। एक ऐसी प्रेम कहानी जिसे सरहदों की दीवारें नहीं रोक सकी और एक ऐसा एक्शन जिसने दर्शकों को कुर्सियों से उठकर तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया था। आज 25 साल पूरे होने पर गदर सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक इमोशन बन चुकी है।
2: मुझे वो सबसे पहली मेमोरी आती है कि जैसे ही गदर का पोस्टर देखता हूँ तो या कोई भी चीज़, गदर तो इतना है कि गदर वन अपने आप में, उसकी मेकिंग ही अपने आप में एक फिल्म है। वो तो बहुत सारी चीज़ें, मगर एक चीज़, हम अहमदाबाद से आए थे, रात को वहाँ पे कुछ शो हुआ था, प्रेस शो था। सुबह सुबह मैं उठा, थर्सडे मॉर्निंग थी, 9:30 बजे, सुबह सुबह 6 बजे मैं आया था, सोफे पर ही सो गया था, अंदर बेडरूम में भी नहीं गया। 9:30 बजे एक फ़ोन की घंटी बजती, उन दिनों बड़े बड़े फ़ोन होते थे, ट्लिंग टैंग टिंग, फ़ोन उठाया, बोले वो एक उड़ीसा से एक थिएटर से फ़ोन है, मैनेजर से फ़ोन है। मैनेजर थर्सडे को पिक्चर रिलीज हो जाती थी उड़ीसा वगैरह में, बहुत सारी जगह। तो उसने बोला आपने क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, क्या फिल्म बना दी है, क्या हो गया। मैंने कहा क्या हुआ, अरे बोले बवाल हो गया है, 3,000 आदमी अंदर है, 3,000 आदमी बाहर है। मैंने कहा 3,000 कैसे को घुस गए थिएटर के अंदर, मैं क्या करूं, इतने ही बाहर है, पब्लिक पागल हो गए। पब्लिक को कैसे पता लगा, पूरे इंटरवल पे सब मोबाइल पे फोन कर दिया सब लोगों ने, और पब्लिक अगले शो के लिए आ गई है, पागल हो गए हैं लोग, पैसे फेंक रहे हैं, मेरा थिएटर टूट जाएगा, फूट जाएगा। मैंने कहा पिक्चर की तारीफ कर रहे हो, बुराई कर रहे हो। बोले मैं कह रहा हूँ ऐसी पिक्चर आज तक कभी बनी नहीं है, इसलिए मैं एक्साइटमेंट में आपका नंबर कहाँ से ढूंढा और आपको फोन किया है। थिएटर ही मेरा टूटे टूटे परवाह नहीं, लेकिन पिक्चर कमाल है। ये इंटरवल पे मेरे को इस गदर का रिएक्शन था। अभी तो सिर्फ इंटरवल ही हुआ था, हैंडपंप तक पहुंचे ही नहीं थे। सालों से चल रहा था गदर टू बनानी है, जीते की कहानी बनानी है, जीते को आगे, जीते बड़ा हो रहा है, पर कहानी नहीं आ रही थी। गदर वन गदर टू में ऐसे नहीं बना सकता था कि गदर वन के नाम को मुझे इनकैश करना। जब तक मेरे पास कहानी नहीं आएगी मैं गदर टू नहीं बनाऊंगा। बस गुजरते गए, अब लोग बोलने लगे अभी तो उत्कर्ष भी बड़ा हो गया, अब तो बना लो, अब तो जीते को आप उत्कर्ष ही ले सकते हो। अरे मैंने कहा भाई उत्कर्ष ले सकता हूँ, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, कहानी आ जाए ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, समझे ना। अगर 10 साल पहले भी कहानी आ जाती थी किसी और को जीते लेके मैं बना देता, उत्कर्ष बच्चा था, तो वो इम्पोर्टेंट है ही नहीं। वो तो मेरे लिए फिल्म ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मैं फिल्मकार पहले हूँ, बाप बाद में हूँ। हमेशा मैं सबको समझाता हूँ, लोग उल्टा सोचते हैं, शायद लोगों का मानसिकता ऐसी है, वो खुद ऐसे हैं तो ऐसे लिए सोचते हैं, मैं किसी को बदल तो नहीं सकता। तो बस जब कहानी आ गई मुझे लगा एटम बम आ गया, तो मैंने फोड़ दिया।
3: और क्या फोड़ा, बट गदर 3 का कोई प्लानिंग है यानी?
2: बिल्कुल प्लानिंग है, गदर 3 की कहानी बदस्तूर चल रही है, वही स्ट्रगल जारी है कि जब लगेगा कि गदर 1 और गदर 2 से बेहतर है मैं लेके आऊंगा। मेरे पास तो सनी भी है, अनुषा भी है, जीते भी है, जी भी है, सब है, मेरे लिए तो बड़ा आसान है शुरू कर देना। लेकिन वो लेवल की स्टोरी तो होनी चाहिए, क्योंकि गदर एक मेरी फिल्म नहीं है, गदर ऑडियंस की फिल्म है। गदर में जब भी बनाऊंगा, जब मुझे एज ए ऑडियंस लगेगा कि इससे बेटर नहीं हो सकती गदर 3, तभी बनाऊंगा। और मेरा काम चालू है, ऑडियंस को यही कहना चाहता हूँ, बहुत जल्दी हो सकता है 2027 में या 26 में सम टाइम हम इसको अनाउंस करें।
4: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
5: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
6: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
5: Learn more at emory.edu.
4: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए,
2: इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे।

0: Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
1: जी खबर।
2: क्या आपको बार बार जीवन में धोखा मिलता है? प्रेम, विवाह, रिश्ते, दोस्ती हर जगह धोखे से परेशान हैं। क्या है धोखे के कारण और क्या है इसका निवारण, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
5: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
6: ज्येष्ठ महीने का सातवां बड़ा मंगल बजरंग बली के आशीर्वाद के लिए मंदिरों में उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। आज से कृतिका नक्षत्र में गोचर करेंगे मंगल ग्रह। चारधाम यात्रा में आस्था और भक्ति का मेला, 35.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम यात्रा में हो चुके हैं शामिल। भगवान बद्री विशाल और बाबा केदार के आशीर्वाद के लिए ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे। डीआरडीओ का एक और बड़ा करिश्मा, लंबी दूरी की स्वदेशी लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया स्लोवाकिया का सर्वोच्च सम्मान, ऑर्डर ऑफ द वाइट डबल क्रॉस, पीएम मोदी का ये 33वां सम्मान। मॉनसून ने पकड़ी रफ्तार, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बाकी हिस्सों के साथ तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड और बिहार के नए हिस्सों तक बनाई पहुंच। देश के कई इलाकों में प्री मॉनसून की गतिविधियां तेज। वन्य प्रेमियों के लिए गुड न्यूज, इस साल एक हफ्ते की देरी से बंद होगा जूनागढ़ का गीर जंगल सफारी, अब 23 जून तक पर्यटक उठा सकेंगे आनंद। नमस्कार, स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में और मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत। और चलिए देख लेते हैं अच्छी बात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ।
7: मेरे प्रिय जनों, तो 5 तत्व में जल तत्व पार करके हनुमान जी ने कब्जे में लिया, आकाश तत्व सूर्य को खा करके कब्जे में प्रभाव जमाया, पाताल तत्व हनुमान जी, वो वायु तत्व पवन पुत्र होने के नाते हनुमान जी महाराज ने जो है वायु तत्व को अपने कब्जे में लिया, लेकिन अब 5वां तत्व है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व को हनुमान जी ने जब लंका में पूंछ में आग लगाई गई तो लंका तो जल गई, हनुमान जी की पूंछ नहीं जली, अग्नि तत्व पर भी हनुमान जी ने अपना कब्जा कर लिया। ऐसे 5 तत्वों पर हनुमान जी का प्रभाव है। कितने तत्वों पर? और तत्व होते कितने? 5। और 5ों तत्व पर किसका प्रभाव है? हनुमान जी का। मेरे प्रिय जनों, इस कथा का आशय है यदि हम हनुमान जी के भगत बन जाएंगे तो 5ों तत्व हम लोगों के अनुकूल हो जाएंगे, प्रतिकूल नहीं होंगे, अनुकूल हो जाएंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो हनुमान जी की भक्ति करने से प्रतिकूल ग्रह अनुकूल हो जाते हैं और प्रतिकूल तत्व अनुकूल हो जाते हैं। अब ग्रह प्रतिकूल हो, ग्रह तो जानते हो कितने ग्रह होते हैं? नौ। उनको कहते हैं नवग्रह। क्या कहते हैं? लेकिन नवग्रह के ऊपर भी एक ग्रह होता है, उनको भगवान का अनुग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो बोलो बोलो। और हनुमान जी का अनुग्रह हो जाए तो नवग्रह बाल बांका करने वाले, बोलो सीताराम, जोर से बोलो। और इतने के बाद भी यदि हनुमान जी की भक्ति ना कर पाओ तो तुम्हें हनुमान जी ही बचाएं भैया, वरना जिंदगी तो एक रेलगाड़ी है। क्या है? जीवन तो एक रेलगाड़ी है, यहाँ किस स्टेशन पर स्टॉप लग जाए कोई ठिकाना। एक संत ने बड़े प्यारे भजन लिखे, कहो तो सुनाए सुनाए। जीवन तो भैया एक रेल है, बोले कौन सी, कभी

पूछा जाता तो टिकट कटवाई जाती, हाँ या ना? कटवाई जाती ना। इस रेलगाड़ी में, जीवन रूपी रेलगाड़ी में भी टिकट लगती है। पूछो कौन सी? अरे पूछो, इसमें पैसा नहीं।

कोट कैसा होता है, कौन से रंग का होता है? काला। और ट्रेन में बिना टिकट आओ तो टीसी आता, बोलो हाँ या ना। और वो कौन सा कोट पहन के आता? काला। और टिकट ना हो तो दो काम है, या तो जुर्माना भरो नहीं तो जेल जाओ। और अपनी जिंदगी की टिकट चेक करने वाला भी टीसी होता, बोले कौन? बोले काले काले जम के राज। वो भी काले होते हैं, वो भी काले होते, टीसी का कोट भी काला होता। इसलिए साधक कहता सुनो,

0: जीवन में धोखा मिलता है, प्रेम विवाह रिश्ते दोस्ती हर जगह धोखे से परेशान हैं। क्या है धोखे के कारण और क्या है इसका निवारण, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: Get into the huddle with TuneIn. TuneIn brings you non-stop sports talk, live games, and expert analysis all in one place. From kickoff to final whistle, follow your favorite teams all season long with ESPN Radio, Talk Sport, Big 12 Radio, and more. Plus, listen to your favorite sports broadcasts on over 200 devices, so you never miss a moment of sports action with TuneIn. Stay in the game with TuneIn and start listening now.
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: Today's jazz brings the movement forward. Modern voices, contemporary sound, and players shaping what jazz sounds like now. From Herbie Hancock to Pat Metheny, Esperanza Spalding, and more. Feel the jazzy energy with Deep Roots. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's Jazz to start listening now.
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की

0: गतिविधियां तेज। वन्य प्रेमियों के लिए गुड न्यूज, इस साल एक हफ्ते की देरी से बंद होगा जूनागढ़ का गीर जंगल सफारी, अब 23 जून तक पर्यटक उठा सकेंगे आनंद।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम का 62वां भव्य स्थापना दिवस, देश विदेश से लाखों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। नैनीताल स्थित कैंची धाम में उमड़ा आशा भक्ति का सैलाब, बाबा नीम करौली महाराज के दर्शन कर आशीर्वाद ले रहे श्रद्धालु। मंदिर परिसर बना भक्ति सेवा और श्रद्धा के साथ अद्भुत संगम का साक्षी, हर ओर सुनाई दी बाबा नीम करौली के जयकारों की गूंज। श्रद्धालुओं ने की जीवन में सुख शांति और समृद्धि की कामना, विशाल भंडारे में हजारों लोग ने ग्रहण किया बाबा का महाप्रसाद। कैंची धाम में बाबा के दर्शन के लिए दिखी भक्तों की लंबी कतार, पूरा मंदिर परिसर भक्ति में माहौल में डूबा, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम। बद्रीनाथ धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब, तप्त कुंड में स्नान और ब्रह्म कपाल में पिंड तर्पण के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़। बद्रीनाथ 10,70,000 श्रद्धालुओं ने अब तक के वहां दर्शन, बारिश और ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। बद्रीनाथ धाम पहुंचे उद्योगपति मुकेश अंबानी, दर्शन और विशेष पूजा अर्चना की, मंदिर समिति को 5 करोड़ रुपए का दान किया। केदारनाथ दर्शन के लिए अब तक पहुंचने वाले सबसे अधिक श्रद्धालु, लगभग 12 लाख से ज्यादा भक्त बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री यमुनोत्री में 11,49,000 से अधिक श्रद्धालु ने दर्शन किए, चारधाम यात्रा के लिए 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु करा चुके हैं रजिस्ट्रेशन। पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा 2026 को लेकर तैयारियां तेज, रथों को अंतिम रूप देने का काम शुरू, जल्द होंगे पूरी तरह से तैयार। अक्षय तृतीया के दिन पारंपरिक पूजा अर्चना के बाद शुरू किया गया था रथ निर्माण का काम, सैकड़ों कारीगर पारंपरिक तकनीक से रथ निर्माण में जुटे। भगवान जगन्नाथ के नंदीघोष, बलभद्र और तालध्वज और देवी सुभद्रा के दर्प दलन रथ का हो रहा है निर्माण, हर साल नए सिरे से रथ बनाए जाने की परंपरा। 16 जुलाई को शुरू होगी रथ यात्रा, लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए प्रशासन ने बनाई योजना। पुरी शहर में इस साल एलईडी स्क्रीन लगाने की तैयारी, लाखों भक्त रथ यात्रा का देख सकेंगे सीधा प्रसारण। सहारनपुर का चकवाली गांव बना अनोखा टूरिज्म मॉडल, भारत ने नक्शे जैसा भारत सरोवर बना आकर्षण का केंद्र, हरियाली और स्वच्छता ने बदली पहचान। सुभाष चंद्र बोस भारत सरोवर ने खींचा सबका ध्यान, कभी डंपिंग ग्राउंड अब बना सुंदर पर्यटन स्थल, ड्रोन विजुअल में दिखी चकवाली गांव की भव्यता। संसद की तर्ज पर बना ग्राम पंचायत भवन, रात में तिरंगे लाइट से जगमगाता दिखा गांव का गेट, पर्यटकों के लिए बना फोटो स्पॉट हॉटस्पॉट। गांव में ओपन जिम की भी सुविधा उपलब्ध, युवा और बुजुर्ग कर रहे हैं नियमित व्यायाम, ग्रामीण पर्यटन का नया मॉडल बना गांव। ग्रामीणों की मेहनत से बदली गांव की तस्वीर, तालाबों के चारों ओर विकसित की गई हरियाली, फुटपाथ और लैंडस्केपिंग ने बढ़ाई सुंदरता। गुरुग्राम में सजा आमों का महाकुंभ, मैंगो फेस्ट का भव्य शुभारंभ, एक जगह प्रदर्शित हुई 70 से ज्यादा आम की किस्में। चौसा लंगड़ा और केसर आम ने बटोरा सबका आकर्षण अपनी ओर, रतोल आम की मिठास और खुशबू बनी चर्चा का विषय। हाथी झोला आम के विशाल आकार ने खींचा ध्यान, गुलाब आम में महसूस होती है गुलाब जैसी महक। रसगुल्ला और मोतीचूर नाम के आम बने आकर्षण, अनारकली आम ने जीता लोगों का दिल। मैंगो पिज्जा, मैंगो खुशी ने लोगों को चौंकाया, मैंगो आइसक्रीम बनी बच्चों की पहली पसंद, मैंगो माचा ने जोड़ा नया फ्लेवर ट्विस्ट। सहारनपुर के किसान ने रचा खेती में नया इतिहास, थरौली गांव में उग रहा दुनिया का महंगा मियां जाकी आम, 3 लाख रुपए किलो है कीमत। लाल बैंगनी रंगत वाला आम बना आकर्षण का केंद्र, किसान को इस सीजन में बेहतर उत्पादन की उम्मीद, आम को दुबई में एक्सपोर्ट की तैयारी। दरभंगा एयरपोर्ट पर दिखी मिथिला संस्कृति की शानदार झलक, धूमधाम से मनाया गया यात्री सुविधा दिवस। यात्रियों का गुलाब का फूल देकर किया गया स्वागत, माथे पर तिलक लगाकर निभाई गई मिथिला की परंपरा। लोकगीत संगीत से गूंजा दरभंगा एयरपोर्ट परिसर, कलाकारों ने पेश की मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुति।

0: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली उड़ान, एयरपोर्ट पर पहुंचे इंडिगो के विमान का पानी की बौछार से स्वागत किया गया। नोएडा एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों ने पहली फ्लाइट से की यात्रा, लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में किसानों का किया स्वागत, अंग वस्त्र पहनाकर किया सम्मानित। इंडिगो के विमान में अभिनेत्री गुलपनाग ने भी सफर किया, इस फ्लाइट में सवार होकर अभिनेत्री गुलपनाग भी नोएडा पहुंची। साल 2026 के आखिर तक इंटरनेशनल ऑपरेशन शुरू होने की उम्मीद, एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाकर 7 करोड़ यात्री करने की योजना। देहरादून में सहस्त्रधारा के बाद गुचू पानी बन रहा पर्यटकों की पहली पसंद, वीकेंड पर उमड़ रही है भारी भीड़। उत्तराखंड का चमोली पर्यटकों से गुलजार, हिमालय ट्रैक रूट लग रही है पर्वतारोहण की भीड़। चमोली की पहाड़ियों पर माइनस में पहुंचा तापमान, बर्फ को गलाकर पीने का पानी बनाते दिखे ट्रैकर। शिमला में 5 दिवसीय समर फेस्टिवल का रंगारंग समापन, जबरदस्त लाइटिंग के बीच लोगों ने मस्ती की। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ महाप्रसादम योजना से महिला समूहों को मिल रहा है रोजगार, मोटे अनाज के उत्पाद बनाकर महिलाएं बढ़ा रही हैं अपनी आय।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: क्या आपको बार बार जीवन में धोखा मिलता है? प्रेम, विवाह, रिश्ते, दोस्ती हर जगह धोखे से परेशान हैं। क्या है धोखे के कारण और क्या है इसका निवारण, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits to timeless favorites and new discoveries, it's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: Whatever you're in the mood for, there's always something to listen to on TuneIn. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Enjoy over 100,000 stations, from local favorites to global voices, so you never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. Hear it all and more right here on TuneIn.
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं, अविश्वास में विश्वास बसता है, जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे धोखे की। प्रेम में, विवाह में, दोस्ती में कब धोखा मिलता है और इससे बचने के उपाय क्या हैं? देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि जीवन की अलग अलग स्थितियों में, अलग अलग मामलों में धोखा कब मिलता है और धोखे से बचने के उपाय क्या हैं। हर आदमी को जीवन में धोखा नहीं मिलता और कुछ को लगातार मिलता है। आखिर कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं इसके लिए? देखिए, आम जीवन में हम लोगों से काम के लिए या भावनाओं के लिए जुड़ते हैं। उस समय जब लोगों से जुड़ते हैं, लोगों का साथ पकड़ते हैं, तो उस समय व्यक्ति पर भरोसा करते हैं। जब वो व्यक्ति हमारे भरोसे के अनुरूप काम नहीं करता या भरोसे के विपरीत काम करता है, तो इसको धोखा कहा जाता है। ज्योतिष में भरोसा तोड़ने के मामले में और धोखा देने के लिए चार ग्रहों की विशेष भूमिका होती है। चंद्रमा, बुध, शनि और राहु। हालांकि अन्य ग्रह भी इन ग्रहों के हिसाब से मिलकर अलग अलग समय पर भूमिका निभाते हैं। जो जल तत्व की राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन, इनको सबसे ज्यादा धोखा जीवन में मिलता है। कर्क, वृश्चिक और मीन वालों को धोखा सर्वाधिक मिलता है। और पृथ्वी तत्व की जो राशियां हैं, वृषभ, कन्या और मकर, सामान्यतः ये राशियां सबसे ज्यादा धोखा देती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पृथ्वी तत्व की सारी राशियों वाले धोखेबाज होते हैं, लेकिन पृथ्वी तत्व की राशियों के अंदर चालाकी पाई जाती है और उस चालाकी का इस्तेमाल करके ये लोग धोखा देने का प्रयास करते हैं। काफी हद तक, लगभग 50-60% तक पृथ्वी तत्व के लोग चालबाजियां दिखा देते हैं। धोखा व्यापार में, पार्टनरशिप में, कारोबार में काफी होता है। पार्टनरशिप किसी के साथ की, उसने बेवकूफ बनाया और सारा बिजनेस अपने नाम कर लिया, आपको बाहर कर दिया। व्यापार के मामले में, कारोबार के मामले में धोखा कब मिलता है? कुंडली का सप्तम भाव जो आपके पार्टनर का है, जो आपके व्यापार का है, अगर ये भाव कमजोर हो तो व्यापार में, कारोबार में धोखा होता है। अगर कुंडली के आठवें भाव में पाप ग्रह बैठे हों, शनि, राहु, केतु, सूर्य, मंगल, तो भी धोखा कारोबार में मिल सकता है। राहु के ऊपर या राहु का सूर्य या चंद्र पर प्रभाव हो तो भी ये व्यापार में, कारोबार में धोखा दिलाता है। अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर है और आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में धोखे की संभावना बहुत होती है। जिनका बुध कमजोर हो, ऐसे लोग सोच समझ कर व्यापार करें, वरना व्यापार में झटका जरूर लगेगा। अगर आपकी कुंडली में व्यापार में धोखे के योग हैं तो क्या करें? साझेदारी में, पार्टनरशिप में व्यापार कभी मत करिएगा। व्यापार का लेन देन मंगलवार को बिल्कुल मत करिएगा और संभव हो तो बुधवार को भी ना करें। और अगर आपकी कुंडली में व्यापार में धोखे का योग है तो रोज सुबह भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिएगा। ऐसा करने से व्यापार में धोखे से बच जाएंगे। देखिए, सबसे ज्यादा धोखा जो मिलता है और लोग कहते भी हैं, वो प्रेम और विवाह के मामले का धोखा है। आपको बताया गया कि लड़का इंजीनियर है, पता चला लड़का कुछ करता ही नहीं है। आपको बताया गया कि लड़की बिल्कुल ठीक है, पता चला लड़की को कोई बड़ी बीमारी है। तो प्रेम और विवाह के मामले में भी धोखा मिलता है। कब मिलता है? अगर आपकी कुंडली में शुक्र के साथ सूर्य का या मंगल का संबंध हो तो इस तरह का धोखा जरूर होता है। शुक्र के साथ सूर्य वाले बड़े लापरवाह होते हैं रिश्तों के मामले में और अक्सर धोखे के शिकार हो जाते हैं। सातवें स्थान में अगर चंद्रमा बैठ गया या बृहस्पति बैठ गया तो ऐसी स्थिति में या तो विवाह होता नहीं, या अगर विवाह हुआ तो विवाह में धोखे की संभावना ज्यादा होती है। अगर बृहस्पति खराब है, खास तौर से किसी महिला का बृहस्पति अगर खराब है तो विवाह के मामले में उसे धोखा जरूर मिलता है। पति पत्नी के जो ग्रह हैं आपसी, अगर उनमें मित्रता नहीं है तो विवाह में धोखा मिलता है। आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सब गड़बड़ हो जाता है और विवाह में धोखे की संभावना बनती है। पुरुष का शुक्र खराब हो, पुरुष को धोखा मिलेगा। महिला का बृहस्पति खराब हो, महिला को धोखा जरूर मिलेगा। अब अगर आपकी कुंडली में विवाह या प्रेम के मामले में धोखे के योग हैं तो क्या करें? शादी या प्रेम में बहुत ज्यादा अपेक्षा मत पालिए। जो लोग बहुत ज्यादा ठोंकने बजाने लगते हैं, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने लगते हैं शादी या प्रेम में, उनको धोखा जरूर मिलता है। अगर आपकी कुंडली में प्रेम या विवाह के मामले में धोखे के योग हैं तो काले और भूरे रंग के कपड़ों का प्रयोग जीवन में कम करिएगा। खास तौर से ब्राउन कलर का ज्यादा प्रयोग करने से राहु एक्टिव हो जाता है, धोखा अवश्य मिलता है। राधा कृष्ण को रोज प्रातः गुलाबी फूल चढ़ाइए। अगर कुंडली में धोखे का योग है प्रेम या विवाह के मामले में, देखिए, अगर आप पुरुष हैं या स्त्री हैं और आपकी कुंडली में ऐसे संकेत हैं कि विवाह के मामले में या प्रेम के मामले में धोखा मिलेगा, अगर धोखे के योग प्रबल हैं तो हीरा कभी मत पहनिएगा। हीरा पहनना आपको धोखे तक खींच करके ले जाएगा। इसलिए अगर कुंडली में धोखे के योग हो तो हीरा धारण ना करें। देखिए, प्रेम और विवाह के अलावा जिस मामले में सबसे ज्यादा धोखा मिलता है आज के समय में, वो दोस्ती है। आपने दोस्त पर भरोसा करके उसकी सहायता की, आपको सहायता की जरूरत है, आपके दोस्त ने फोन बंद कर दिया, मुंह फेर लिया, तो दोस्ती में धोखा बहुत कॉमन है और बहुत सारे लोगों को मिलता है। कारण क्या है? चंद्रमा या शुक्र अगर कुंडली में खराब हैं आपके, तो हमेशा दोस्ती में सावधानी रखें, क्योंकि ऐसी दशा में धोखे की संभावना ज्यादा होती है। चंद्रमा खराब होगा तो आपकी दोस्ती ही गलत लोगों से होगी। जो अपना काम निकाल कर चलते बनेंगे। शुक्र खराब होगा तो अपोजिट जेंडर के साथ आपकी मित्रता होगी, पुरुष हैं तो स्त्री से, स्त्री हैं तो पुरुष से, और वो मौका पड़ने पे धोखा देंगे। तो चंद्र या शुक्र खराब हो तो धोखे की संभावना बड़ी प्रबल होती है दोस्ती में। अगर किसी का बुध खराब है तो आपको जो दोस्त मिलेंगे जीवन में वो अपने स्वार्थ के लिए मिलेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों के मित्र स्वार्थ के लिए उनके साथ जुड़ते हैं और स्वार्थ पूरा होने के बाद अपने रास्ते पर चले जाते हैं। जिनकी कुंडलियों में बृहस्पति मजबूत होता है ना, ऐसे लोग जानबूझकर धोखा खाते हैं। उन्हें पता होता है कि अगला आदमी मेरा फायदा उठा रहा है, फिर भी वो चुप रहकर इंतजार करते हैं कि सही समय आने पर बात करेंगे। बृहस्पति शुभता वाला प्लेनेट है, इसलिए कुंडली में अगर अच्छा होगा तो व्यक्ति शांत रहकर अपने साथ होते हुए धोखे को देखता है और सही समय पर इसका जवाब देता है। जिनका बुध खराब है वो दोस्ती में धोखा खाते भी हैं, और बुध अगर चौपट है तो वो धोखा देते भी हैं, तो जैसा करते हैं वैसा जीवन में उनको मिलता है। अब अगर आपको लगता है कि भाई आपके साथ दोस्ती में बार बार धोखा हो जाता है, बार बार दोस्तों की तरफ से धोखे की स्थिति बन जाती है, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करिएगा। नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। भगवान कृष्ण को रोज सवेरे पीले फूल अर्पित करके प्रार्थना करिए, क्योंकि भगवान कृष्ण से ज्यादा मूल्यवान मित्र कोई भी नहीं है। और अगर दोस्ती में बार बार धोखा मिल रहा है तो एक लोहे का छल्ला मिडिल फिंगर में, राइट हैंड में, दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में धारण करें। सूर्य का एक रत्न आता है, उसे कहते हैं गार्नेट। एक गार्नेट का लॉकेट बनवा लें और इसको तांबे या सोने के लॉकेट में बनवा कर अपने गले में पेंडेंट की तरह धारण करें। इससे भी आप धोखा खाने से बचेंगे, धोखा मिलने के पहले आप सतर्क हो जाएंगे। अगर आपकी आर्थिक स्थिति में बराबर उतार चढ़ाव रहता हो, कभी पैसा ज्यादा, कभी पैसा कम, कभी बिल्कुल नहीं, तो एक स्टील का छल्ला बनवा लीजिए। स्टील का छल्ला दाहिने हाथ की, राइट हैंड की मिडिल फिंगर में, मध्यमा अंगुली में अगर आप धारण कर लें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति अशुभ है और अशुभ बृहस्पति की दशा चल रही है, तो क्या करें? बृहस्पति की अशुभ दशा में अधिक से अधिक शिव जी की उपासना करें। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें और हर बृहस्पतिवार को केले का दान करें। और बृहस्पति की अगर अशुभ दशा चल रही है तो पीला रंग और पीले रंग की वस्तुओं से परहेज करें। बृहस्पति की कितनी भी अशुभता है, अगर आप निरंतर शिव जी की पूजा करेंगे तो बृहस्पति की अशुभता दूर हो जाएगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: Sage University, transforming your passion into profession. TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
5: ज्येष्ठ महीने का सातवां बड़ा मंगल बजरंगबली के आशीर्वाद के लिए मंदिरों में उमड़ रहे श्रद्धालु, आज से कृतिका नक्षत्र में गोचर करेंगे मंगल ग्रह। चारधाम यात्रा में आस्था और भक्ति का मेला, 35.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम यात्रा में हो चुके शामिल, भगवान बद्री विशाल और बाबा केदार के आशीर्वाद के लिए ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। डीआरडीओ का एक और बड़ा करिश्मा, लंबी दूरी की स्वदेशी लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया स्लोवाकिया का सर्वोच्च सम्मान, ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस, पीएम मोदी का ये 33वां सम्मान। मॉनसून ने पकड़ी रफ्तार, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बाकी हिस्सों के साथ तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड और बिहार के नए हिस्सों तक बनाई पहुंच, देश के कई इलाकों में प्री मॉनसून की गतिविधियां तेज। वन्य प्रेमियों के लिए गुड न्यूज, इस साल एक हफ्ते की देरी से बंद होगा जूनागढ़ का गीर जंगल सफारी, अब 23 जून तक पर्यटक उठा सकेंगे आनंद।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी।
5: नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत, और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
6: नमस्कार।
5: तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कुंडली में बन रहे धोखे के योग के बारे में। कई बार ऐसा होता है कि हमें धोखा मिलता है, चाहे वो शादी हो, चाहे वो विवाह हो, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे पैसे रुपए का लेन देन हो, तो धोखे के योग और धोखे से बचने के उपाय क्या हैं, इस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र।
0: अगर आपकी आर्थिक स्थिति में बराबर उतार चढ़ाव रहता हो, कभी पैसा ज्यादा, कभी पैसा कम, कभी बिल्कुल नहीं, तो एक स्टील का छल्ला बनवा लीजिए। स्टील का छल्ला दाहिने हाथ की राइट हैंड की मिडिल फिंगर में मध्यमा अंगुली में अगर आप धारण कर लें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
5: तो चलिए जानते हैं पंडित जी से ही कि कब हमें मिलता है धोखा और क्या कहता है ज्योतिष।
0: जी देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि जीवन की अलग अलग स्थितियों में, अलग अलग मामलों में धोखा कब मिलता है और धोखे से बचने के उपाय क्या हैं। हर आदमी को जीवन में धोखा नहीं मिलता और कुछ को लगातार मिलता है, आखिर कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं इसके लिए। देखिए, आम जीवन में हम लोगों से काम के लिए या भावनाओं के लिए जुड़ते हैं, उस समय जब लोगों से जुड़ते हैं, लोगों का साथ पकड़ते हैं, तो उस समय व्यक्ति पर भरोसा करते हैं। जब वो व्यक्ति हमारे भरोसे के अनुरूप काम नहीं करता या भरोसे के विपरीत काम करता है तो इसको धोखा कहा जाता है। ज्योतिष में भरोसा तोड़ने के मामले में और धोखा देने के लिए चार ग्रहों की विशेष भूमिका होती है। चंद्रमा, बुध, शनि और राहु। हालांकि अन्य ग्रह भी इन ग्रहों के हिसाब से मिलकर अलग अलग समय पर भूमिका निभाते हैं। जो जल तत्व की राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन, इनको सबसे ज्यादा धोखा जीवन में मिलता है। कर्क, वृश्चिक और मीन वालों को धोखा सर्वाधिक मिलता है। और पृथ्वी तत्व की जो राशियां हैं, वृषभ, कन्या और मकर, सामान्यतः ये राशियां सबसे ज्यादा धोखा देती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पृथ्वी तत्व की सारी राशियों वाले धोखेबाज होते हैं, लेकिन पृथ्वी तत्व की राशियों के अंदर चालाकी पाई जाती है और उस चालाकी का इस्तेमाल करके ये लोग धोखा देने का प्रयास करते हैं। काफी हद तक, लगभग 50-60% तक पृथ्वी तत्व के लोग चालबाजियां दिखा देते हैं।
5: और अब बात कर लेंगे राशिफलों के बारे में, तो चलिए जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल।
0: मेष राशि, व्यर्थ के विवादों से आपको बचना चाहिए। खान पान का ध्यान रखें, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, व्यस्तता बढ़ी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
5: और आइए अब जानते हैं कब मिलता है कारोबार के मामले में धोखा और कैसे इससे बचा जाए।
0: धोखा व्यापार में, पार्टनरशिप में, कारोबार में काफी होता है। पार्टनरशिप किसी के साथ की, उसने बेवकूफ बनाया और सारा बिजनेस अपने नाम कर लिया, आपको बाहर कर दिया। व्यापार के मामले में, कारोबार के मामले में धोखा कब मिलता है? कुंडली का सप्तम भाव जो आपके पार्टनर का है, जो आपके व्यापार का है, अगर ये भाव कमजोर हो तो व्यापार में, कारोबार में धोखा होता है। अगर कुंडली के आठवें भाव में पाप ग्रह बैठे हों, शनि, राहु, केतु, सूर्य, मंगल, तो भी धोखा कारोबार में मिल सकता है। राहु के ऊपर या राहु का सूर्य या चंद्र पर प्रभाव हो तो भी ये व्यापार में कारोबार में धोखा दिलाता है। अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर है और आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में धोखे की संभावना बहुत होती है। जिनका बुध कमजोर हो ऐसे लोग सोच समझ कर व्यापार करें, वरना व्यापार में झटका जरूर लगेगा। अगर आपकी कुंडली में व्यापार में धोखे के योग हैं तो क्या करें? साझेदारी में, पार्टनरशिप में व्यापार कभी मत करिएगा। व्यापार का लेन देन मंगलवार को बिल्कुल मत करिएगा और संभव हो तो बुधवार को भी ना करें। और अगर आपकी कुंडली में व्यापार में धोखे का योग है तो रोज सुबह भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिएगा। ऐसा करने से व्यापार में धोखे से बच जाएंगे।
5: और अब बारी है कर्क सिंह और कन्या राशि के राशिफल को जानने की।
0: कर्क राशि, करियर में सफलता मिलती दिखाई दे रही है। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, मानसिक चिंताएं हो सकती हैं। वाहन सावधानी से चलाएं। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, छोटी यात्रा हो सकती है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति का लाभ हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
5: और गुडलक में वक्त हो गया आज के सवालों का और उनके जवाब देने का। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का पहला सवाल वो किसका ले रहे हैं।
0: जी, वक्त हो गया है आपके पहले सवाल का। लेकिन सवाल लेने के पहले आपको बता दूं कि जब भी आप हमें मेल करते हैं, अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान, ये तीनों साफ तौर पर लिखें और फिर अपना प्रश्न लिखें। बहुत बार ऐसा होता है कि आप डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखते, टाइम नहीं लिखते, या कई बार सीधा सवाल लिख देते हैं, जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान नहीं लिखते हैं, तो हम आपके प्रश्न नहीं ले पाते हैं। इसलिए जब भी मेल करें सावधानी से करें ताकि आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दिया जा सके। आज का पहला प्रश्न टीशा ने हमें लिखा है, मुंबई से लिखती हैं। 1 नवंबर 1983 का जन्म है, 4:51 शाम को बोरीवली मुंबई। ये कह रही हैं कि मेरा वैवाहिक जीवन बहुत खराब है और मेरे पति ने हमेशा मुझे धोखा दिया है, हमेशा मेरे साथ छल किया है। क्या ये विवाह चल पाएगा? क्या मैं इससे बाहर निकल पाऊंगी? टीशा, आपकी कुंडली बनती है मीन लग्न की और सिंह राशि की, महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा शनि की चल रही है। कुंडली में ज्यादातर जो ग्रह हैं वो निचले पृथ्वी तत्व के इलाके में हैं। 6ठे और 8ठवें भाव में ज्यादातर ग्रह हैं जो कि वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा नहीं है और आपके भविष्य के लिए भी अच्छा नहीं है। देखिए, विवाह आप आगे दूसरा करें या ना करें, लेकिन इस विवाह से निकलिए, वरना आप फंस जाएंगी किसी बड़े धोखे में। कोई लीगल कानूनी कार्रवाई के चक्कर में आप आ सकती हैं, इसलिए बुद्धिमानी कहती है कि इस विवाह से बाहर निकलिए, आगे दूसरा विवाह करिए या ना करिए। एक मोती बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती की मोती चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक इसका पाठ करिएगा और जितना संभव हो हनुमान जी की पूजा करें, उनका दर्शन करें, आपको लाभ होगा।
5: हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए अब देखते हैं आज का दूसरा सवाल, पंडित जी किसका लेते हैं।
0: जी, अगला प्रश्न इंदु गोयल जी ने हमें लिखा है, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से लिखती हैं। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 18 दिसंबर 1995, दोपहर में 12:02 बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। ये पूछ रही हैं कि मेरे बेटे का विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। इंदु जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और तुला राशि की, महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा राहु की चल रही है। आपके पुत्र के विवाह तय होने का समय इस साल के जून के महीने से शुरू हो रहा है और साल 2026 के अंत तक जाते जाते इनका विवाह अवश्य हो जाना चाहिए, इसकी संभावना दिखाई दे रही है। जब भी इनका विवाह करें कुंडली एक बार मिलाइएगा ताकि तालमेल थोड़ा बेहतर रह सके। एक इनको ओपल बनवा के पहनाइए, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल इनको पहनाएं और इनको कहिए कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर प्रार्थना करें तो इनको लाभ होगा।
5: तो आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं धोखे के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं प्रेम और विवाह के मामलों में कब धोखा हमें मिलता है।
0: देखिए, सबसे ज्यादा धोखा जो मिलता है और लोग कहते भी हैं वो प्रेम और विवाह के मामले का धोखा है। आपको बताया गया कि लड़का इंजीनियर है, पता चला लड़का कुछ करता ही नहीं है। आपको बताया गया कि लड़की बिल्कुल ठीक है, पता चला लड़की को कोई बड़ी बीमारी है। तो प्रेम और विवाह के मामले में भी धोखा मिलता है। कब मिलता है? अगर आपकी कुंडली में शुक्र के साथ सूर्य का या मंगल का संबंध हो तो इस तरह का धोखा जरूर होता है। शुक्र के साथ सूर्य वाले बड़े लापरवाह होते हैं रिश्तों के मामले में और अक्सर धोखे के शिकार हो जाते हैं। 7वें स्थान में अगर चंद्रमा बैठ गया या बृहस्पति बैठ गया तो ऐसी स्थिति में या तो विवाह होता नहीं या अगर विवाह हुआ तो विवाह में धोखे की संभावना ज्यादा होती है। अगर बृहस्पति खराब है, खास तौर से किसी महिला का बृहस्पति अगर खराब है तो विवाह के मामले में उसे धोखा जरूर मिलता है। पति पत्नी के जो ग्रह हैं आपसी, अगर उनमें मित्रता नहीं है तो विवाह में धोखा मिलता है। आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सब गड़बड़ हो जाता है और विवाह में धोखे की संभावना बनती है। पुरुष का शुक्र खराब हो, पुरुष को धोखा मिलेगा। महिला का बृहस्पति खराब हो, महिला को धोखा जरूर मिलेगा। अब अगर आपकी कुंडली में विवाह या प्रेम के मामले में धोखे के योग हैं तो क्या करें? शादी या प्रेम में बहुत ज्यादा अपेक्षा मत पालिए। जो लोग बहुत ज्यादा ठोंकने बजाने लगते हैं, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने लगते हैं शादी या प्रेम में, उनको धोखा जरूर मिलता है। अगर आपकी कुंडली में प्रेम या विवाह के मामले में धोखे के योग हैं तो काले और भूरे रंग के कपड़ों का प्रयोग जीवन में कम करिएगा। खास तौर से ब्राउन कलर का ज्यादा प्रयोग करने से राहु एक्टिव हो जाता है, धोखा अवश्य मिलता है। राधा कृष्ण को रोज प्रातः गुलाबी फूल चढ़ाइए। अगर कुंडली में धोखे का योग है प्रेम या विवाह के मामले में, देखिए अगर आप पुरुष हैं या स्त्री हैं और आपकी कुंडली में ऐसे संकेत हैं कि विवाह के मामले में या प्रेम के मामले में धोखा मिलेगा, अगर धोखे के योग प्रबल हैं तो हीरा कभी मत पहनिएगा। हीरा पहनना आपको धोखे तक खींच करके ले जाएगा, इसलिए अगर कुंडली में धोखे के योग हो तो हीरा धारण ना करें।
5: और आइए जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल।
0: तुला राशि, पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होती फिलहाल दिखाई दे रही हैं। काम की बाधाएं समाप्त होंगी, व्यर्थ की चिंता ना करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रोजगार के प्रयास सफल होंगे, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, पारिवारिक समस्या परेशान कर सकती है, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा।
5: तो लगातार हम इस एपिसोड में बात कर रहे हैं हमें मिलने वाले धोखे के बारे में, कभी शादी में धोखा तो कभी दोस्ती में धोखा, और अब बात कर रहे हैं हम दोस्ती की कि हमें दोस्ती में कब धोखा मिलता है।
0: देखिए, प्रेम और विवाह के अलावा जिस मामले में सबसे ज्यादा धोखा मिलता है आज के समय में, वो दोस्ती है। आपने दोस्त पर भरोसा करके उसकी सहायता की, आपको सहायता की जरूरत है, आपके दोस्त ने फोन बंद कर दिया, मुंह फेर लिया। तो दोस्ती में धोखा बहुत कॉमन है और बहुत सारे लोगों को मिलता है। कारण क्या है? चंद्रमा या शुक्र अगर कुंडली में खराब हैं आपके, तो हमेशा दोस्ती में सावधानी रखें, क्योंकि ऐसी दशा में धोखे की संभावना ज्यादा होती है। चंद्रमा खराब होगा तो आपकी दोस्ती ही गलत लोगों से होगी, जो अपना काम निकाल कर चलते बनेंगे। शुक्र खराब होगा तो अपोजिट जेंडर के साथ आपकी मित्रता होगी, पुरुष हैं तो स्त्री से, स्त्री हैं तो पुरुष से, और वो मौका पड़ने पे धोखा देंगे। तो चंद्र या शुक्र खराब हो तो धोखे की संभावना बड़ी प्रबल होती है दोस्ती में। अगर किसी का बुध खराब है तो आपको जो दोस्त मिलेंगे जीवन में वो अपने स्वार्थ के लिए मिलेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों के मित्र स्वार्थ के लिए उनके साथ जुड़ते हैं और स्वार्थ पूरा होने के बाद अपने रास्ते पर चले जाते हैं। जिनकी कुंडलियों में बृहस्पति मजबूत होता है ना, ऐसे लोग जानबूझकर धोखा खाते हैं। उन्हें पता होता है कि अगला आदमी मेरा फायदा उठा रहा है, फिर भी वो चुप रहकर इंतजार करते हैं कि सही समय आने पर बात करेंगे। बृहस्पति शुभता वाला प्लेनेट है, इसलिए कुंडली में अगर अच्छा होगा तो व्यक्ति शांत रहकर अपने साथ होते हुए धोखे को देखता है और सही समय पर इसका जवाब देता है। जिनका बुध खराब है वो दोस्ती में धोखा खाते भी हैं, और बुध अगर चौपट है तो वो धोखा देते भी हैं। तो जैसा करते हैं वैसा जीवन में उनको मिलता है। अब अगर आपको लगता है कि भाई आपके साथ दोस्ती में बार बार धोखा हो जाता है, बार बार दोस्तों की तरफ से धोखे की स्थिति बन जाती है, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करिएगा। नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। भगवान कृष्ण को रोज सवेरे पीले फूल अर्पित करके प्रार्थना करिए, क्योंकि भगवान कृष्ण से ज्यादा मूल्यवान मित्र कोई भी नहीं है। और अगर दोस्ती में बार बार धोखा मिल रहा है तो एक लोहे का छल्ला मिडिल फिंगर में, राइट हैंड में, दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में धारण करें।

0: होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, करियर की बाधा समाप्त होगी, जल्दबाजी में काम ना करें, भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: पंडित जी, एक सवाल था, अगर समानता कुंडली में हमें धोखा मिल रहा है, मतलब दिख रहा है कि हमें लगातार धोखा मिलेगा, तो उससे बचने के उपाय क्या हैं?
0: जी देखिए, बहुत सारे लोगों की कुंडली में मल्टीपल जगहों से, लगभग हर जगह से धोखा मिलने के योग होते हैं, विवाह में भी, प्रेम में भी, परिवार से भी, व्यापार में भी, और कारण होता है कुंडली का खराब राहु या बहुत बुरी तरह से खराब चंद्रमा। तो अगर आपकी कुंडली में जीवन के हर जगह पर हर स्थिति में आपको धोखा मिलता है अपने लोगों से, अपने परिवार से, तो आपको मुख्यतः हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। अगर आपकी कुंडली में जगह जगह से धोखे के योग हैं और धोखा मिलता भी है, तो आप निरंतर सुबह के समय सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, और सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर या बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करिए, और हर मंगलवार और हर शनिवार को शाम के समय हनुमान जी के मंदिर जाकर उनकी मूर्ति के ठीक सामने खड़े हो जाइए और प्रार्थना करिए कि प्रभु मुझे जीवन में किसी भी तरह के धोखे और अपयश से बचाओ। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपकी धोखे से सुरक्षा होगी।
1: और चलिए अब जान लेते हैं आज का तीसरा सवाल, पंडित जी को कहां से और किसने भेजा है।
0: जी, अगला प्रश्न भावना जी ने हमें लिखा है, दिल्ली से लिखती हैं। 13 मई 1982 का जन्म है, 1:05 AM मध्यरात्रि, जन्म स्थान है दिल्ली। ये कह रही हैं कि मेरा वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहता है, मेरा वैवाहिक जीवन कब तक बेहतर होगा, और मैं अपना काम करना चाहती हूँ, कौन सा व्यापार करना मेरे लिए फायदेमंद रहेगा। भावना, आपकी कुंडली बनती है मकर लग्न की और धनु राशि की, महादशा राहु की और अंतर दशा शुक्र की चल रही है। देखिए, वैवाहिक जीवन की जहां तक बात है, आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन एवरेज ही रहेगा, उसके बहुत बेहतर होने की संभावना नहीं लगती है। हाँ, जितना निगेटिव अभी है उतना निगेटिव आगे नहीं होगा, आगे कुछ हद तक सुधार होना चाहिए, लेकिन कुल मिला के वैवाहिक जीवन देखिए एवरेज दिखाई दे रहा है। जहां तक व्यापार की बात है, आप कोशिश कर सकती हैं इस साल के आखिरी से व्यापार शुरू करने के लिए कला, सौंदर्य, शिक्षा या कपड़ों से संबंधित।

0: आर्ट, क्रिएटिविटी, कॉस्मेटिक्स, कपड़ा या पढ़ाना लिखाना, टीचिंग ट्रेनिंग देना, ऐसा काम करना आपके लिए सूटेबल होगा और अक्टूबर 2026 के बाद आप ऐसा जरूर कर सकती हैं। फिलहाल एक ओपल बनवा के पहने, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने, सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का अगर जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: गुड लक में अब वक्त हो गया आज के अंतिम सवाल का, तो जानते हैं पंडित जी से आज का अंतिम और चौथा सवाल वो किसका ले रहे हैं।
0: जी, आज का अंतिम प्रश्न पल्लवी ने हमें लिखा है और पल्लवी हमें पश्चिम बंगाल से मेल लिखती हैं। 5 जून 1986 का जन्म है, 5:35 शाम को दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। ये कह रही हैं कि मैं अभी एडहॉक पे एक विद्यालय में, एक कॉलेज में पढ़ा रही हूँ जहाँ पैसे बहुत कम मिलते हैं। मैं नेट एग्जामिनेशन की तैयारी भी कर रही हूँ ताकि नेट क्वालिफाई करके मुझे बढ़िया नौकरी मिल सके, तो आगे मेरे करियर के लिए मैं क्या करूँ, क्या स्थितियाँ बन रही हैं। दूसरा ये पूछ रही हैं कि मेरी इतनी उम्र हो गई, लगभग 39 साल, मेरा विवाह अब तक नहीं हुआ है, तो मेरी कुंडली में विवाह के योग कैसे हैं। पल्लवी, आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और मेष राशि की, महादशा राहु की और अंतरदशा मंगल की चल रही है। आप नेट का एग्जाम इस बार दीजिएगा, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब या परमानेंट कॉलेज में नौकरी साल 2027 के आरंभ में दिखाई दे रही है। देखो, विवाह होने के योग इस कुंडली में बड़े कमजोर हैं और अगर विवाह होता है तो हो सकता है किसी डिवोर्सी से या किसी विडोवर से आपकी शादी हो या ऐसे व्यक्ति से शादी हो जो थोड़ा उम्र में बड़ा हो, तो इसके लिए आप अगले साल प्रयास करके फरवरी के बाद देखिए, थोड़ी बहुत संभावना साल 2027 में आपकी विवाह की बन सकती है। फिलहाल आप एक पीला पुखराज बनवा के पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पीला पुखराज, सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को प्रातः एक पीला पुखराज धारण करें और रोज सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें। हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, आपको लाभ होगा।
1: जिनका जन्मदिन है उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा।
0: आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, करियर में बड़ी सफलताएं मिलेंगी, इस साल आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, लेकिन इस साल में स्वास्थ्य के मामलों में किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर हनुमान जी की अगर उपासना करें, कम से कम हनुमान चालीसा ही पूरे साल पढ़ें, तो ये वर्ष आपके लिए बेहतर होगा।
1: और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की जिज्ञासा क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि रविवार के दिन कौन सा काम करना सबसे ज्यादा शुभ होता है। देखिए, रविवार का दिन सूर्य ग्रह का दिन है और रविवार के दिन सरकारी काम करना, राजनीति के काम करना, गवर्नमेंट से संबंधित काम करना सबसे ज्यादा शुभ होता है। इसमें भी अगर रविवार को आप किसी मंदिर चले जाएं, धर्म स्थान पर जाकर दर्शन करें तो और भी ज्यादा अच्छा होगा।
1: और चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर कौन सा है।
0: शुभ पहर का समय है रात के 10:30 से लगभग 12 बजे तक। इस समय में जितना संभव हो नमः शिवाय का जप करिएगा। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की समस्या में सुधार होगा।
1: और अब वक्त हो गया आज की गुडलक राशि के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को बृहस्पति कैसा परिणाम देता है। आज की गुडलक राशि है कर्क, कैंसर। बृहस्पति इनको आम तौर पर भाग्यशाली तो बनाता है, हालांकि कभी कभी यही बृहस्पति इनको बीमार भी कर देता है।
1: गुडलक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का महा उपाय क्या है।
0: जी, अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति अशुभ है और अशुभ बृहस्पति की दशा चल रही है तो क्या करें। बृहस्पति की अशुभ दशा में अधिक से अधिक शिव जी की उपासना करें। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें और हर बृहस्पतिवार को केले का दान करें। और बृहस्पति की अगर अशुभ दशा चल रही है तो पीला रंग और पीले रंग की वस्तुओं से परहेज करें। बृहस्पति की कितनी भी अशुभता है, अगर आप निरंतर शिव जी की पूजा करेंगे तो बृहस्पति की अशुभता दूर हो जाएगी।
1: पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया, बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: पंडित शैलेंद्र पांडे दें जीवन को समझने की प्रेरणा और प्लैनेट आयुर्वेदा अर्जुन टी दे दिल को जीवन जीने का जज्बा, क्योंकि ये है हर्बल गुणों से भरपूर चाय भी औषधि भी। आज ही ऑर्डर करें।
1: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
2: Feeling a bit nostalgic for the 90s? Ooh, yeah. TuneIn has got you covered. With 90s hits, jam out to your favorite artists from the 90s, ooh, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Me, baby, one more time. Or rock artists like Sublime. I still remember that. And Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
3: भव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
1: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected.
2: This is 80s hits exclusively on TuneIn.
1: You're listening to Fox News Radio. Classic rock hits. You're listening to MSNBC. No scrolling, no typing. Just the shows, music, and news you love. Anytime you want. Try it now and thank us later.
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
8: और चलिए अब आपको दिखाएंगे वो तस्वीरें जो गर्व से भर देने वाली हैं। तस्वीरें हैदराबाद और देहरादून से आई हैं, जहां एयरफोर्स एकेडमी और मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड के बाद कैडेट्स के परिजन खुशी से लबरेज दिखे। मौका था भारतीय सेना और वायुसेना में शामिल होने वाले जेंटलमैन कैडेट्स की पासिंग आउट परेड का, जिसका आयोजन 13 जून को हुआ था। एक तरफ जहां देहरादून के IMA में इतिहास रचते हुए पहली बार 9 महिला कैडेट सेना का हिस्सा बनी, तो वहीं हैदराबाद के डुंडीगल में एयरफोर्स एकेडमी के कंबाइंड ग्रेजुएशन कोर्स के जरिए वायुसेना की बढ़ती ताकत का लोहा देखने को मिला।

0: माँ से गले मिलने के बाद पिता की ओर बेटी बढ़ी, गले मिली और पिता की आंखों में छलक उठे खुशी के आंसू। बेटी ने अपनी कैप पिता को पहनाई और सैल्यूट देने के लिए उठ गया पिता का हाथ। दोनों ने एक दूसरे को सलामी दी और फिर एक साथ गले मिल पड़ा पूरा परिवार। ये तस्वीरें हैदराबाद की एयरफोर्स एकेडमी में हुई पासिंग आउट परेड के ठीक बाद की है। हरियाणा के सुधीर कुमार अग्रवाल की बेटी फ्लाइंग ऑफिसर बनी तो जैसे पिता की बरसों की साध पूरी हो गई। उनका दिल गर्व से भर उठा क्योंकि फौज में शामिल होना उनका सपना था जो वो खुद भले ही नहीं पूरा कर सके, लेकिन पहले उनकी बड़ी बेटी और अब छोटी बेटी ने इसे साकार कर दिखाया।
1: That's a very proud moment. Once my friend told me कि भाई आप बिल्कुल फौजी जैसे लगते हो, तो मैंने उसको मजाक में कह दिया कि भाई मैं फौजी का दामाद हूँ और अब मैं गर्व से कह सकता हूँ मैं एक फौजी का पिता भी हूँ।
0: सिर्फ अग्रवाल परिवार के लिए ही नहीं बल्कि ऐसे और भी तमाम लोगों के लिए ये बड़े गर्व का मौका था जब वो अपने नौनिहालों को एयरफोर्स में कमीशन हासिल करने के मौके पर उनकी खुशी में शामिल होने हैदराबाद पहुंचे।
2: आज हमको बहुत अच्छा लग रहा, जीवन का जितना दिन निकल गया आज मेन दिन है हमारे अपने जीवन के लिए, बहुत खुशी है।
3: मेरे बेटा फ्लाइंग लेफ्टिनेंट और बेटी मेरी आप फ्लाइंग ऑफिसर बनी हुई
4: है। बच्चों की मेहनत है सर, हम तो मार्गदर्शन कर सकते हैं बस, बाकी दोनों बच्चों की मेहनत का ही है फल, ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी होती है देख के, सब बहुत प्राउड फील होता है।
5: सपोर्ट तो हमने क्या किया, हमने तो कुछ नहीं, उसकी मेहनत है, हमारी कौन सी मेहनत है, उसने जो किया सब कुछ उसने किया है, बस हम तो पैसे दिए और पढ़ाए और कुछ नहीं किया हमने तो। और
6: ऐसा लग रहा है आपको?
5: अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: हैदराबाद में हाल ही में 13 जून को वायुसेना एकेडमी में शानदार कंबाइन ग्रेजुएशन परेड संपन्न हुई। इसी दिन इंडियन मिलिट्री एकेडमी में भी पासिंग आउट परेड हुई। देहरादून और हैदराबाद दोनों एकेडमी से इस बार कुल मिलाकर 746 कैडेट्स भारतीय सेना का हिस्सा बने। हैदराबाद की एयरफोर्स एकेडमी से 231 फ्लाइट्स कैडेट्स ने अपनी प्री कमीशनिंग ट्रेनिंग पूरी की। वहीं देहरादून के IMA से इस बार 515 कैडेट्स पास हुए। कैडेट्स और उनके परिजनों के लिए ये बेहद गर्व का पल है, उनकी खुशी इस मौके पर देखने लायक थी।
7: बहुत अच्छी एक उपलब्धि है मेरे से कहीं ज्यादा मेरे इंस्ट्रक्टर्स और मेरे पेरेंट्स के लिए, जिन्होंने काफी समय दिया इस चीज को, काफी अपने प्रायोरिटी से पहले इस चीज को आगे रखा और तभी मैंने आज ये उपलब्धि प्राप्त की।
0: खास बात यह है कि इस बार 5 महिला कैडेट्स हैदराबाद से पास आउट होकर भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बनी है, जबकि 9 महिला कैडेट्स देहरादून के IMA से पास आउट होकर आर्मी में अफसर बनी है, जो पूरे देश के लिए गर्व की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, कुटिया टुडे।
8: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियो जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। इनमें से कुछ वीडियोज ऐसे हैं जो आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे और कुछ आपको भावुक कर जाएंगे।
9: पूरी दुनिया में फुटबॉल फीवर छाया हुआ है, ऐसे में ब्राजील की इन तस्वीरों को देखिए जरा। फुटबॉल फीवर के इस दौर में ये शख्स फुटबॉल खिलाड़ियों की जर्सी पहनकर सड़क पर फुटबॉल के साथ दिखाई दे रहा है और वो चलते चलते फुटबॉल से खेलता नजर आ रहा है, लेकिन इस फुटबॉल को खेलने में वो कुशल तो बिल्कुल नहीं दिख रहा। सोशल मीडिया पर तस्वीरें इतनी वायरल हो चुकी हैं कि यूजर्स पूछ रहे हैं शायद ब्राजील में फुटबॉल खेलने में खराब होना गैर कानूनी होगा, वरना ऐसे खेल से फुटबॉल प्रेमियों का दिल दुखाने की सजा तो जरूर मिलती। अब इस वीडियो में दीदी के मंकेश भाई यानी इस बंदर जी को देखिए जरा। बंदर शीशे के उस तरफ है और दीदी उसको घूर रही है। बंदर जी को घूरना बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो मुंह दूसरी तरफ कर देते हैं। दीदी वहाँ भी उनको ताकने लगती है। कहाँ मंकेश भाई घर में एंट्री लेने की जुगत में थे, घर वालों को डराने वाले थे, लेकिन दीदी ने आज उसके साथ खेला कर दिया। परेशान बंदर भैया भाग खड़े हुए। अब परेशान हुए बंदर को भागता देख यूजर्स मुस्कुरा रहे हैं।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
11: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy non-stop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
14: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
13: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
15: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
14: अविश्वास में विश्वास बसता है,
13: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
14: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
13: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
15: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
14: अविश्वास में विश्वास बसता है,
13: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड
16: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
17: सेज यूनिवर्सिटी ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल जेन ज़ीज गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
18: मैंने कहा आज सातवां बड़ा मंगल बजरंगबली के आशीर्वाद के लिए मंदिरों में उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। आज से कृतिका नक्षत्र में गोचर करेंगे मंगल ग्रह।
8: चारधाम यात्रा में आस्था और भक्ति का मेला। 35.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम यात्रा में हो चुके शामिल। भगवान बद्री विशाल और बाबा केदार के आशीर्वाद के लिए ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे।
18: डीआरडीओ का एक और बड़ा करिश्मा। लंबी दूरी के स्वदेशी लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई।
8: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया स्लोवाकिया का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस। पीएम मोदी का ये 33वां सम्मान।
18: मानसून ने पकड़ी रफ्तार। आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बागी हिस्सों के साथ तेलंगाना ओडिशा झारखंड और बिहार के नए हिस्सों तक बनाई पहुंच। देश के कई इलाकों में प्री मानसून की गतिविधियां तेज।
8: वन्य प्रेमियों के लिए गुड न्यूज। इस साल एक हफ्ते की देरी से बंद होगा जूनागढ़ का गीर जंगल सफारी। अब 23 जून तक पर्यटक उठा सकेंगे आनंद।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की
18: उम्मीदों भरे पैर की खुशियों भरी शुरुआत। नमस्कार सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। नई सुबह नई आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर।
8: गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। तो बिना रुके बिना थमे अगले एक घंटे में गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी, लेकिन सबसे पहले नजर आज की पांच उन खबरों पर जिनमें है इंडिया के लिए शुभ समाचार।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
18: शुभ समाचार की शुभ शुरुआत मंगल बेला के साथ होगी। देखिए 30 दिन के इंतजार के बाद फिर शहनाई गूंजेगी। तो सबसे पहले बात करेंगे मंगल कार्यों के शुभ मुहूर्त की। देखिए 11 जुलाई तक 12 कौन कौन से शुभ मुहूर्त पड़ने वाले हैं। शादी विवाह गृह प्रवेश और मुंडन जैसे मांगलिक कार्यों के लिए सबसे अच्छा दिन कौन सा होगा, ये सब आपको आगे बताएंगे।
8: तो साथ ही आज देश भर में ज्येष्ठ महीने का सातवां बड़ा मंगल मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान हनुमान की उपासना और उन्हें प्रसन्न करने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन संपूर्ण विधि विधान से हनुमान जी की पूजा करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसे में आज सुबह से ही अयोध्या समेत देश भर के मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ी हुई है। कैसे है वहां के रंग वो भी आगे आपको बताएंगे।
18: बिल्कुल कृतिका, देखिए वहीं पर पुरी की पवित्र धरती पर भी इन दिनों जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। तीनों रथों का ढांचा खड़ा कर दिया गया है और अब रथ की मजबूती के लिए लकड़ी के मुख्य हिस्सों को एक साथ कसकर जोड़ने का काम किया जा रहा है। इस साल रथ यात्रा का आयोजन 16 जुलाई से लेकर 24 जुलाई के बीच में किया जाएगा। तो रथ यात्रा की तैयारियां तमाम कैसी हैं दिखाएंगे आप।
8: तो इसके अलावा केदारनाथ धाम के महाप्रसाद का खास महत्व भी आपको बताएंगे, जिसे मिलेट्स और स्थानीय अनाजों से तैयार किया जा रहा है। उत्तराखंड मिलेट मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाएं स्थानीय स्तर पर उगाई जाने वाली रामदाना यानी चौलाई और अन्य मोटे अनाजों का उपयोग करके पौष्टिक महाप्रसाद के लड्डू बना रही हैं। वहां भी आपको लिए चलेंगे।
18: बिल्कुल, देखिए साथ ही आपको तेलंगाना में नलगोंडा जिले के एक सरकारी स्कूल की तस्वीरें भी दिखाएंगे। बोट्टू गुड्डा में बने इस सरकारी स्कूल में एसी स्मार्ट क्लासरूम, एआई आधारित टीचिंग और डिजिटल लैब जैसी तमाम सुविधाएं हैं। और यहां पर देखिए छात्रों के लिए केवल 450 सीटें हैं, लेकिन शानदार सुविधाओं के कारण करीब 4000 आवेदन आए हैं। तो उसके बारे में विस्तार से आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले फटाफट अंदाज में 9 बजे की 9 बड़ी गुड न्यूज।
8: अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर में ज्येष्ठ मास के सातवें बड़े मंगल पर भक्ति का सैलाब उमड़ गया। दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। बड़ा मंगल को लेकर सुबह से ही मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी कतारें लग रही हैं। भक्तों ने हनुमान जी के दर्शन कर चमेली का तेल, सिंदूर और बेसन के लड्डू अर्पित किए।
18: नैनीताल के विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम में बाबा नीत करौली महाराज का स्थापना दिवस बहुत धूमधाम के साथ भक्तिभाव के साथ मनाया गया। इस खास मौके पर सुबह से ही बाबा के दर पर आस्था का सैलाब देखने को मिला। स्थापना दिवस पर लाखों से ज्यादा भक्त दर्शन करने के लिए पहुंचे। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने इस बार सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। इसमें पहली बार ड्रोन कैमरों से पूरी तरह इलाकों की निगरानी की गई।
8: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह। जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारधाम पहुंच रहे हैं, अब तक चारधाम के दर्शन के लिए पहुंचने वालों की संख्या 35.5 लाख से अधिक पहुंच चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा केदारनाथ में 13 लाख से अधिक भक्तों ने हाजिरी लगाई।
18: डीआरडीओ ने एक बार फिर से बड़ा काम किया है। उड़ीसा के तट के पास लंबी दूरी के स्वदेशी लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। बता दें कि LRL-ACM स्वदेशी रूप से विकसित मिसाइल है, जिसके सभी उप प्रणालियां डीआरडीओ की अलग अलग प्रयोगशालाओं और भारतीय उद्योग भागीदारों ने विकसित की।
8: गर्मी के इस मौसम में फलों का राजा आम हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। जगह जगह मैंगो फेस्टिवल का आयोजन देखने को मिल रहा है। गुरुग्राम के सेक्टर 82 से फेलिक्स प्लाजा में आयोजित मैंगो फेस्टिवल में 70 से ज्यादा आम के वैरायटीज प्रदर्शित की गई, जिनमें चौसा, लगड़ा, आम्रपाली, नीलम, केसर, सिंदूरी, फजरी, बॉम्बे ग्रीन जैसे आम शामिल है।
18: बिहार के दरभंगा में सरकार की उड़ान योजना के तहत कम समय में देश का नंबर वन हवाई अड्डा बन जाने से चर्चा में आए दरभंगा हवाई अड्डा पर आज यात्री सुविधा दिवस मनाया गया। एयरपोर्ट पर आने वाले सभी हवाई यात्रियों को तिलक लगाकर गुलाब का फूल भेंट किया गया, स्वागत किया गया। हवाई अड्डे पर मिथिला की संस्कृति की झलक भी देखने को मिली, जहां पर बच्चों ने मिथिला की लोककला और गीत संगीत के माध्यम से पारंपरिक नृत्य पेश किया।
8: महाराष्ट्र के कोल्हापुर में फुटबॉल के फैंस अपने पसंदीदा टीम और खिलाड़ियों को लेकर अपना समर्थन जताते नजर आ रहे हैं। शहर में जगह जगह फुटबॉल के इस महाकुंभ का माहौल नजर आ रहा है। ढोल ताशे और आतिशबाजी करने के साथ ही फैंस शहर में लियोन मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और नेमार जूनियर जैसे फुटबॉल स्टार के 45 से लेकर 60 फीट तक के कटआउट्स लगाए गए हैं।
18: चीन में ड्रैगन बोट फेस्टिवल के उत्साह के बीच चोंगकिंग शहर की सुरम्या फुरोंग नदी में रोमांचक ड्रैगन बोट रेस का आयोजन किया गया, और इस प्रतियोगिता में सिचुआन और चोंगकिंग प्रांत से आई कुल 18 टीमों के लगभग 500 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और पानी पर अपनी ताकत और तालमेल का शानदार प्रदर्शन दिखाया।
8: पैन इंडिया फिल्म नागबंधम की टीम ने हैदराबाद में अनंत पद्मनाभ स्वामी रथ यात्रा का भव्य शुभारंभ किया। फिल्म की रिलीज से पहले शुरू की गई अनूठी पहल में भगवान अनंत पद्मनाभ स्वामी की भव्य प्रतिमा का भी अनावरण किया गया। वहीं फिल्म 3 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

0: तो आ गई है शुभ कार्यों की मंगल बेला। 30 दिन के इंतजार के बाद फिर गूंजेंगी शहनाई, लिहाजा शुभ समाचार में सबसे पहले बात करेंगे मंगल कार्यों के शुभ मुहूर्त की। 11 जुलाई तक 12 शुभ मुहूर्त पड़ने वाले हैं और देखिए शादी ब्याह, गृह प्रवेश और मुंडन जैसे मांगलिक कार्यों के लिए सबसे अच्छा दिन कौन सा होने जा रहा है, अगले एक महीने में कौन कौन से शुभ मुहूर्त पड़ रहे हैं, कैसे शुभ कार्यों का श्री गणेश आपको करना है, इन तमाम सवालों के जवाब हम ज्योतिष के जानकारों से जानेंगे। बहरहाल गुड न्यूज ये नकल करा रही है कि अधिक मास की विदाई के साथ ही शुभ कार्यों का श्री गणेश हो रहा है और मांगलिक कार्यों के आयोजन से जुड़ी तैयारियां अब तेज हो चुकी है। उसी की तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से मंगल बेला की शुभ शुरुआत हो गई है। गीतिका
1: जी बिल्कुल वैभव, तो देखिए अब अधिक मास जो है वो खत्म हो गया है और आज से ही शादी ब्याह जैसे कार्यक्रम जो है वो शुरू हो जाएंगे। अगर किसी के घर में मुंडन है तो वो भी होने लगेगा और अगर शादी है जो एक महीना देरी से जो है हो रही है लेकिन आज से शादी ब्याह भी होने लगेंगे। सभी मांगलिक कार्यों का आयोजन जो है अब हो जाएगा और एक महीने के अधिक मास के बाद आज वो गुड न्यूज आ गई है जब मंगल कार्यों की शुरुआत हो जाएगी। तो आ गई मंगल बेला वैभव और आज से सभी शुभ कार्यों की शुरुआत होगी। इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ पंडित संजय शर्मा जी जुड़ रहे हैं। संजय जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आज से शादी ब्याह होने लगेंगे, अगर किसी घर में गृह प्रवेश उन्हें करना है तो वो होने लगेगा, मुंडन जैसे मांगलिक कार्य भी होने लगेंगे, तो अधिक मास जो है वो बीत चुका है और अब मंगल बेला की जो है वो शुरुआत हो चुकी है।
2: देखो आज से मंगल ही मंगल होने वाला है क्योंकि आज से दूसरे ज्येष्ठ का जो है शुभ आरंभ हो रहा है, क्योंकि शुक्ल पक्ष का प्रारंभ हो गया है। तो शुक्ल पक्ष का मतलब है उदय होना, चीजों को बढ़ना, क्योंकि आज से बढ़ते हुए दिन का भी प्रारंभ हो रहा है। और मुहूर्त का अर्थ होता है कि जिसमें आप सारे अच्छे कार्य कर सकें। तो कहते हैं कि जब ये अधिक मास चल रहा था उसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, तो उस वक्त जो आपको भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग, तप, भगवान का ध्यान करना, ये सब करना था। और ये वाला जो महीना है इसमें जो है जो अच्छे कार्य हैं, वैवाहिक कार्य हैं, शुभ कार्य हैं, मुंडन का कार्य है या गृह प्रवेश का कार्य है, जो कि ग्रह जब अधिक मास लग जाता है तो उसमें ये कार्य सारे के सारे रुक जाते हैं, हम लोग करते नहीं क्योंकि इसमें मान्यता नहीं है। तो अब ये जो समय आ गया है और सबसे पहले हम शादी के मुहूर्तों की बात करें तो ये मंगल ही मंगल करने वाला है, क्योंकि अब जो है 19 तारीख से जो है पहला जो है शुभ मुहूर्त का शुभारंभ हो रहा है। विवाह के लिए 19 तारीख का है, 21 तारीख है, 22 तारीख है, 23 है, 27 है, 25, 26 और 28, 29, ये सारी जो तारीख है इनमें आप वैवाहिक सुख के लिए अच्छा जो है समय है। ये जून के महीने की है, जुलाई में भी आप 1 से लेकर के और 12 जुलाई तक का जो समय रहेगा इसमें भी आपके मंगल कार्य, वैवाहिक कार्य, वैवाहिक सुख, जिनका विवाह नहीं हो पा रहा वो सब इस वक्त में इन शुभ मुहूर्तों में, क्योंकि ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। और आखिरी जो मुहूर्त रहता है वो भडला नवमी का रहता है, वो 22 जुलाई का है, उसमें बिल्कुल बिना सोचे भी विवाह किया जाता है। और उसके बाद जो है भडला नवमी के बाद में जो है 25 जुलाई को जो है देव शयनी एकादशी आ जाएगी, उसके बाद जो है देव 6 महीने के बाद 20 नवंबर को जो है 4 महीने तक भगवान सोएंगे, तो 20 नवंबर को जो है जब देवउठनी एकादशी आएगी।
0: बिल्कुल संजय जी, स्पष्ट रूप से आपने समझा दिया और अब दर्शकों को भी एक बार हम बता दें, देखिए जिन घरों में शादियां होने जा रही हैं, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे मांगलिक कार्य होने जा रहे हैं, उनका इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। आपको बता दें कि देखिए 19 जून से गृह प्रवेश, सगाई, मुंडन जैसे शुभ कार्यों के मुहूर्त शुरू हो रहे हैं।
1: जी हाँ, विवाह समारोह की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। शादी सीजन में बाजारों की रौनक जो है वो लौटना तय है। एक महीने तक 12 शुभ मुहूर्त है।
0: बिल्कुल गीतिका, देखिए जून में 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 29 जून शादी के शुभ मुहूर्त है।
1: तो जुलाई में 1, 6, 7 और 11 शुभ मुहूर्त है, तो 30 दिन बाद फिर गूंजेगी शहनाई।
0: हालांकि देखिए फिर से आपको बता दें कि 11 जुलाई के बाद 4 महीने शादियां नहीं होंगी, क्योंकि फिर जो है 25 जुलाई से चतुर्मास शुरू हो जाएगा और चतुर्मास में शुभ कार्य नहीं होते। चतुर्मास से पहले जून और जुलाई में शादियों की काफी मुहूर्त है। तो चलिए एक बार फिर से संजय जी के पास चलते हैं। संजय जी, पहले तो आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा कि आखिर अधिक मास में क्यों नहीं किए जाते शुभ कार्य, अधिक मास कहें या मलमास भी इसको कहा जाता है, क्यों रुक जाते हैं सारे शुभ कार्य?
2: मास क्या है कि हमारा जो पंचांग की अगर हम बात करें तो हमारे जो साल होते हैं हिंदी के हिसाब से 354 दिन का साल होता है सौर के हिसाब से। और जब 300 साल का होता है, 354 साल का, तो उसको हम चंद्रमास कहते हैं, जब 354 दिन का होता है। और सौर वर्ष जो होता है वो 365 दिन का होता है। तो 11 11 दिन जो है उनमें क्या है, वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। 33 दिन का समय ऐसा आ जाता है जिसमें कि आपका एक महीना हर 3 साल के बाद जो है बढ़ जाता है, और उसको हम अधिक मास या पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। क्योंकि तो भगवान विष्णु ने इसका जो नाम है पुरुषोत्तम मास कर दिया, जिससे कि इसमें आप भक्ति की तरफ तत्पर रहें, भागवत की तरफ तत्पर रहें, भगवान विष्णु की आराधना करें अच्छे, जो आप कहते हैं ये समय ऐसा है तप का है, साधना का है, मौन रहने का है, और जो भी पूजा पाठ जप तप व्रत शांति से किया जा सकते हैं वो कार्य करने का है। जो उत्साह संबंधी कार्य हैं, जैसे शादी है, ब्याह है, मुंडन है, ये जो सात्विक कार्य हैं, ये इस महीने में इसलिए नहीं किया जाते कि इस महीने को मल महीना या अधिक का महीना भी कहा जाता है, कि बड़ा हुआ महीना है। तो इससे जो है इस महीने में ये कार्य ना करके इसमें भक्ति का कार्य करें, और उसके पश्चात जो जो समय अब आ गया है, दूसरा मास जो आया है, इसमें आप शुभ और मंगल कार्य करते हैं। और कहते हैं कि जब आपकी कुंडली भी जब देखते हैं हम लोग, तो उस कुंडली में भी ग्रहों का अस्त, जब ग्रह का भी अस्त हो जाता है तो उस वक्त जो है मंगल कार्य नहीं होते। तो इस वक्त जो है अधिक मास में कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जाता जो शुभत्व की प्राप्ति कराए। जैसे मुंडन है तो वो क्या है कि एक कार्य है, गृह प्रवेश एक कार्य है, जनेऊ जो है एक कार्य है, जो 16 संस्कार होते हैं उन कार्यों को करना जो है शास्त्रों में निषेध माना गया है। सिर्फ भक्ति के मार्ग पर आप प्रशस्त हो सकते हैं, और वही कार्य आपको जो है करने चाहिए जब अधिक मास होता है तब।
1: जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत संजय जी। और चलिए अब बात कर लेते हैं बड़े मंगल की।

तो आज देशभर में ज्येष्ठ महीने का सातवां बड़ा मंगल मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान हनुमान की उपासना और उन्हें प्रसन्न करने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन संपूर्ण विधि विधान से हनुमान जी की पूजा करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके प्रभाव से जीवन की बाधाएं दूर होती है और मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद मिलता है।

0: हिंदू धर्म में ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले मंगलवार को बड़ा मंगल या पुढ़वा मंगल के नाम से जाना जाता है। पवन पुत्र हनुमान और भूमि पुत्र मंगल का आशीर्वाद बरसाने वाले इस पावन दिन पूरी श्रद्धा से पूजा अर्चना करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। सनातन परंपरा में संकट मोचन कहलाने वाले हनुमान जी की पूजा के लिए मंगलवार का दिन अत्यंत ही शुभ और फलदायी माना गया है। मान्यता के अनुसार सभी कार्यों में मंगल ही मंगल करने वाले इस दिन की महत्ता तब और बढ़ जाती है जब ये जेठ महीने में पड़ता है और बड़ा मंगल के नाम से जाना जाता है। लेकिन ज्येष्ठ के सातवें मंगलवार की महत्ता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि मंगलवार से मंगल कार्यों की शुरुआत हो रही है। ऐसे में हनुमान जी की पूरी श्रद्धा और भक्ति से की गई आराधना विशेष फलदायी मानी जा रही है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे करें हनुमान जी को प्रसन्न। प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान ध्यान करें, लाल रंग का वस्त्र धारण करें और पूजा और व्रत का संकल्प लें। हनुमान जी को लाल रंग के फूल, फल, धूप, दीप, नारियल आदि के साथ सिंदूर का चोला विशेष रूप से अर्पित करना चाहिए। लाल रंग के वस्त्र, जनेऊ, केसरिया ध्वज, बूंदी या बूंदी से बने लड्डू, गेहूं के आटे और लाल गुड़ से बना चूरमा, मीठा पान अर्पित करें। विधि विधान से पूजन के बाद मंगलवार व्रत की कथा और चालीसा का पाठ करें। पूजा के अंत में खैर की लकड़ी से हवन करना चाहिए। हवन के बाद हनुमान जी की आरती करना न भूलें। पूजा हवन के बाद जरूरतमंद लोगों को अन्न, वस्त्र और धन आदि का दान करना चाहिए। किसी भंडारी या प्रसाद में अपना सहयोग देकर भी इसका पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। हिंदू धर्म में बड़ा मंगल की पूजा शीघ्र ही फल प्रदान करने वाली मानी गई है। मान्यता है कि इस पावन दिन यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा भाव और विधि विधान से हनुमान जी की पूजन और व्रत करता है तो उसे हनुमान जी उसके सभी संकटों को हरते हुए सभी सुख प्रदान करते हैं। आज से मंगल ग्रह अपने नक्षत्र में बदलाव करने जा रहे हैं। इस दिन ऊर्जा, साहस और पराक्रम के प्रतीक मंगल कृतिका नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। मंगल का ये परिवर्तन कुछ राशियों के लिए सौभाग्य के नए द्वार खोल सकता है। खासतौर पर चार राशियों के जातकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। इन्हें जमीन जायदाद, वाहन सुख, करियर में तरक्की और आर्थिक उन्नति के शानदार अवसर प्राप्त हो सकते हैं। सबसे पहले मेष राशि, करियर में उन्नति के मजबूत योग बन रहे हैं। प्रमोशन मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होगी। कार्य क्षेत्र में काम की सराहना मिलेगी। आत्मविश्वास बढ़ेगा। नई नौकरी के अवसर मिलेंगे। अटका हुआ पैसा वापस मिलने की उम्मीद है। आय के स्रोतों में हो सकती है बढ़ोतरी। सिंह राशि, आय में वृद्धि हो सकती है। मान सम्मान भी बढ़ेगा। कार्यों में सफलता मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। निवेश से अच्छे लाभ की उम्मीद है। संपत्ति के पुराने विवाद सुलझ सकते हैं। वृश्चिक राशि, अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। समस्याओं का समाधान मिलेगा। बिगड़े हुए काम बन सकते हैं। छात्रों को सफलता मिलने के संकेत हैं। विदेश यात्रा के अवसर भी बन रहे हैं। धनु राशि, सुखद परिणाम की उम्मीद बन रही है। आर्थिक स्थिति में सुधार के योग बन रहे हैं। आय के नए रास्ते खुलेंगे। फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है। पुराने कर्ज से छुटकारा मिलने के योग बन रहे हैं। करियर में उन्नति के अवसर मिलेंगे। भाई बहनों का सहयोग मददगार साबित हो सकता है। मंगल के कृतिका नक्षत्र गोचर होने के दौरान मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करना शुभ माना जाता है। कहते हैं इस दिन अगर विधि विधान से बजरंग बली की आराधना की जाए तो शुभ फल की प्राप्ति जल्द होती है। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो चलिए अब सीधे चलते हैं मयंक के पास। मयंक हमें सीधी तस्वीरें दिखाएंगे अयोध्या से। मयंक, क्या रौनक देखने को मिल रही है आज अयोध्या में? सातवां बड़ा मंगल है आज। कितनी बड़ी संख्या में तमाम श्रद्धालु पहुंचे हुए?
2: देखिए, भीषण गर्मी है लेकिन जो भीड़ है ना वो काफी ज्यादा लग रही है और सुबह से ही यहाँ पे जो श्रद्धालु है दर्शन करते नजर आ रहे हैं और आस्था में कोई कमी नहीं नजर आ रही है क्योंकि जो गर्मी भी है उसको भी झेलते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लाइनों में घंटों खड़े हैं लेकिन सोच ये है कि आज जाएंगे तो दर्शन करके जाएंगे क्योंकि बजरंग बली का दिन है, बड़ा मंगल है तो उसको लेकर काफी उत्साह भी चेहरे पे है, खुशी भी है लोगों पे और काफी दूर दराज से भी लोग आए हैं और जो लाइन का अगर आप हम दिखाएं तो काफी लंबी लाइन भी है। 2.5 किलोमीटर पूरा सिंगार हाट बैरियर से पूरी भीड़ जमा है और हनुमानगढ़ी ही नहीं राम मंदिर भी ऐसे ही कुछ आज भीड़ में दिख रही है तो लगातार पूरी अयोध्या जो है पूरी श्रद्धालुओं से भरी हुई है और जो व्यवस्थाएं हैं उसकी अगर हम बात करें तो पूरी सिक्योरिटी टाइट है यहाँ पे, पूरी प्रशासन ने व्यवस्था कर रखी है, कैमरों से निगरानी की जा रही है। तो जो आस्था और भक्ति है वो कहीं ना कहीं गर्मी पे भी धारी दिखाई है, तो काफी ज्यादा उत्साह और उमंग के साथ आज बजरंग बली के चरण पे सब झुके नजर आ रहे हैं और भीड़ भी ज्यादा है, लोगों के हाथ में प्रसाद भी है। जो आज बजरंग बली का दिन है तो बेसन का लड्डू खास है और इस विशेष पर्व पे बजरंग बली को विशेष भोग भी लगते हैं, तो एक खास श्रृंगार भी किया गया है और खास व्यवस्थाएं भी की जा रही, खास पूजा भी की जा रही। तो जो व्यवस्थाएं हैं, जो श्रद्धालुओं की खुशी है, जो चेहरे पे उत्साह है, तो आप अगर हम आपको दिखाएं तो लाइन देखो धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है और रुकने का भी नहीं मिले, क्योंकि जैसे जैसे भीड़ आ रही है वैसे वैसे स्थिति को सुचारू रूप से सही करने के लिए प्रशासन की अपनी तरफ से पूरी पैड बनाए हैं और लोगों श्रद्धालु कोई दिक्कत ना हो, सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से। कल भीड़ है, कितना कंजेस्टेड आपको दिख रहा होगा, काफी भीड़ है, लेकिन हर एक श्रद्धालु के चेहरे पर सिर्फ आपको प्रभु श्री राम के सेवक हैं और राम द्वारे तुम नखारे, क्योंकि इस द्वार पे भी बैठे हैं बजरंग बली, तो राम जी की सेवा में बजरंग बली तत्पर है और उनको उनसे बड़ी शक्ति किसी के पास नहीं, क्योंकि कलयुग के देवता भी कहे जाते हैं। तो उसको लेकर काफी उत्साह उमंग है और मठ मंदिरों में, अयोध्या के काफी मठ मंदिरों में आज भीड़ और उत्साह देखने को मिल रहा है, पूरा मंदिर आज झटका कर भरा हुआ है, पूरे श्रद्धालुओं से काफी भीड़ बढ़ी हुई है। तो जो व्यवस्थाएं है वो आप देख सकते हैं, लोगों के हाथों में छतरी भी आपको दिख रही होगी कि छतरियों से धूप से कैसे बचते हुए जो है दर्शन करते नजर आ रहे हैं। तो जो लाइन है वो कहीं ना कहीं रुकने का नाम भी नहीं ले रहा है, जो भीड़ जो व्यवस्था है वो आप देख ही सकते हैं कि प्रकार से यहाँ हनुमानगढ़ी में भीड़ और उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है।
3: जी बिल्कुल मयंक, भीषण गर्मी है लेकिन जो भक्ति है, जो आस्था है लोगों की, जो जोश है वो तो देखते ही बन रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। और बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के रंग आपको दिखाते हैं।
4: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
5: क्या आपको बार बार व्यापार में धोखा मिलता है? क्या आपके रिश्तों में भी धोखे की स्थिति बन जाती है? क्या आपके नजदीकी दोस्त ही आपको धोखा दे देते हैं? क्या है धोखे का कारण और क्या है निवारण, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
6: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
7: What about me, Jack? What about me?
6: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
8: Well played, Jack. Well played.
6: Jack FM, playing what we want.
4: एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं

0: When it comes to your favorite podcasts, missing an episode isn't an option. Luckily, TuneIn's got you covered. Start by creating a free TuneIn account and keep everything synced across your devices. Then favorite the shows you love. We'll bring new episodes right to your homepage, so they're always easy to find. And with notifications turned on, you'll get a heads up when new episodes drop. Stay in the loop effortlessly.
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
2: देश महीने का आज सातवां बड़ा मंगल बजरंग बली के आशीर्वाद के लिए मंदिरों में उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। आज से कृतिका नक्षत्र में गोचर करेंगे मंगल ग्रह।
3: चारधाम यात्रा में आस्था और भक्ति का मेला, 35.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम यात्रा में हो चुके हैं शामिल। भगवान बद्री विशाल और बाबा केदार के आशीर्वाद के लिए ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे।
2: मथुरा में श्रीनाथ जी की भव्य नौका विहार मनोरथ का आयोजन, आमों से सजा श्रीनाथ जी का दरबार, भक्तों ने लगाए जमकर जयकारी, कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति की।
3: अमरनाथ यात्रियों के लिए जम्मू में नया आकर्षण बनेगा वेस्ट टू वंडर पार्क, लगभग 90% कार्य हुआ पूरा, स्थानीय कारोबार को भी मिलेगा बढ़ावा।
2: दिल्ली NCR में मौसम हुआ सुहाना, कई इलाकों में बारिश, ठंडी हवाओं से तापमान में आई गिरावट, हिमाचल और जम्मू में बारिश।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।

0: और चलिए वह आपको लेकर चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां अमरनाथ यात्रा की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। ऐसे में जम्मू कश्मीर में यात्रियों के लिए वेज टू वंडर पार्क तैयार किया जा रहा है, जो श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए एक नया आकर्षण होगा। आपको बता दें कि जम्मू के भगवती नगर में यात्री निवास के पास विकसित इसे किया जा रहा है, जो अब अंतिम चरण में पहुंच गया है और अगले एक महीने आम लोगों के लिए खोलने की इसे तैयारी की जा रही है। तवी नदी के किनारे विकसित किए जा रहे इस पार्क में देश और दुनिया के प्रसिद्ध स्मारकों की प्रतिकृतियां स्थापित की जा रही हैं, जिन्हें बेकार हो चुके सामान और स्क्रैप सामग्री से तैयार किया गया है। अधिकारियों का मानना है कि ये पार्क जम्मू आने वाले पर्यटकों और अमरनाथ यात्रियों के लिए एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में उभरेगा। यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु भगवती नगर यात्री निवास से होकर गुजरते हैं। ऐसे में पार्क के शुरू होने से न केवल श्रद्धालुओं को एक नया दर्शनीय स्थल मिलेगा, बल्कि आसपास के दुकानदारों, रेहड़ी फेरी वालों, परिवहन सेवाओं और छोटे कारोबारियों को भी इससे आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है।
1: ये जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड की तरफ से एक प्रोजेक्ट जो है वो बनाया जा रहा है। वो प्रोजेक्ट का नाम है वेस्ट टू वंडर पार्क, यानी जो वेस्ट हुआ मटेरियल होता है उससे एक पार्क बनाया जा रहा है, और उस पार्क के बीच में कई स्मारक जो है वो स्थापित किए गए हैं। ये खास तौर पर आकर्षण का केंद्र इसलिए बन रहा है क्योंकि आगामी अमरनाथ यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है, और देश भर के क्या विश्व भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु सबसे पहले जम्मू पहुंचेंगे, और उनके लिए यहाँ पर जम्मू में खास तौर पर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आने वाला ये प्रोजेक्ट जो है स्थापित किया जा रहा है। इसमें कई स्मारक जो है वो बनाए गए हैं, तो इससे साफ तौर पर दर्शाता है कि देश भर से आने वाले जो पर्यटक हैं इसका खूब आनंद ले सकेंगे। और खास तौर पर यह भी एक एग्जाम्पल सेट की जा रही है कि जो वेस्ट मटेरियल होता है, यानी वो किस तरीके से एक कारगर साबित होकर इन चीजों में काम आ सकता है, उसकी भी एक एग्जाम्पल जो है वो यहां पर दी गई है। खास तौर पर जो यहां पर इसका इस प्रोजेक्ट को तैयार कर रहे हैं, यहां पर कहा जा रहा है कि आगामी एक महीने के भीतर ही जो है ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार, केंद्र सरकार और खास तौर पर जो प्रशासन है वो हर एक संभव प्रयास कर रहा है।
2: भगवती नगर एक बहुत पहले से डंप साइट हुआ करती थी, जिसमें जम्मू शहर का कूड़ा जाता था। अब उस डंप साइट को बदल के एक वेस्ट टू वंडर पार्क के तौर पर बनाया जा रहा है। जम्मू स्मार्ट सिटी के इस प्रोजेक्ट में कोशिश की जा रही है कि लोकल टूरिज्म को बढ़ावा मिले और लोकल कुजीन खासतौर से उसको हम लोग प्रोजेक्ट कर पाए नेशनल लेवल पर। और ये प्रोजेक्ट मुझे लगता है इस महीने के अंत तक ख़त्म हो जाएगा, जिससे कि ना सिर्फ जम्मू के शहरी, जहाँ दुनिया भर से जो लोग आते हैं उनको हम यहाँ पे ले आ पाएंगे। हमारी कोशिश है कि यात्रा के पहले पहले ये साइट बन के तैयार हो जाए, जनता के लिए खुल जाए, जिससे कि हमारा जो टूरिज़्म है यहाँ पे, जो यात्री जाते हैं वो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा।
3: चलिए कुछ और खबरों की बात करेंगे। बात करेंगे फीफा 2026 वर्ल्ड कप के दौरान, देखिए पूरी दुनिया में फुटबॉल की दीवानगी जबरदस्त देखने को मिल रही है। इसकी सबसे ताजा तस्वीर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से निकल कर आ रही है। कल शाम फ्रांस, अर्जेंटीना और अल्जीरिया के फैंस टाइम्स स्क्वायर पर जमा हुए। ये सभी फैन जो हैं अपनी अपनी टीमों को चीयर करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। जाहिर सी बात है इस दौरान टाइम्स स्क्वायर फुटबॉल के रंग में पूरी तरीके से सराबोर नजर आया। मिडटाउन मैनहट्टन का ये मशहूर टाइम्स स्क्वायर में अक्सर जोश भरी रैलियां यहाँ पर होती रहती हैं, अक्सर रंग बिरंगे समारोह यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फीफा वर्ल्ड कप के दौरान यहाँ फैंस का जोश जबरदस्त देखने को मिला। आज कैंसस सिटी में अर्जेंटीना और अल्जीरिया की भिड़ंत होने जा रही है, तो आज ही फ्रांस का सामना जो है सेनेगल से होने जा रहा है। जाहिर सी बात है इस दौरान फैंस का जोश हाई है और जुनून सातवें आसमान पर देखने को मिल रहा है। इसमें तस्वीरें देखिए। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से विदेशी ट्रिप की जगह स्वदेश घूमने की अपील की है, तो गुड न्यूज टुडे भी आप लोगों से अपने आसपास की खूबसूरत ऐतिहासिक और दूसरी सैर सपाटा करने वाली जगहों की तस्वीरों को शेयर करने की अपील लगातार कर रहा, ताकि हम आपके भेजे गए उन वीडियोज को गुड न्यूज टुडे पर दिखाएं और उन पर्यटक स्थलों को भी लोग जाने, वहां सैर सपाटा करें। तो इसीलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज आपको हिमाचल के चंबा लेकर चलते हैं, जहां साच पास आपका स्वागत करने के लिए तैयार है।

0: आसमान को छूती बर्फ से लदी सफेद चोटियां, बादलों को चीर कर आगे बढ़ती गाड़ियां और वादियों के बीच सर्द हवा, ये नजारा आंखों में बसा लीजिए, दिल में उतार लीजिए और हमेशा के लिए इस याद को अपने जहन में सजो लीजिए। आपकी आंखों को भले ही यकीन ना हो, लेकिन ये तस्वीरें किसी जन्नत से कम नहीं। ये यूरोप का स्विट्जरलैंड नहीं, बल्कि हिमाचल के चंबा में बसे चास पास का है। समुद्र तल से करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद ये दिलकश घाटी इन दिनों देश के सबसे बड़े एडवेंचर हब के रूप में उभर रही है। जून से अक्टूबर के महीने में जब यहाँ का रास्ता खुलता है तो मानो जैसे जन्नत के दरवाजे खुल गए हों।
1: नमस्कार दोस्तों, आज हम सचे पास साच पास जोत में, जो कि चुरा वैली हिमाचल प्रदेश में है, तो आज हम दिखा रहे हैं आपको चुरा वैली का खूबसूरत दृश्य, जो आप देख सकते हैं मनमोहक दृश्य है। चारों तरफ बर्फबारी है और साथ में है भूत ग्राउंड और साथ ही में है मंदिर। और आज हम मिलेंगे अपने पर्यटकों से जो विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हैं। हमारे साथ हैं दीपांशा जी, है ना मैम, आपका शुभ नाम?
2: जी, दीपांशा।
1: दीपांशा मैम, आप कहाँ से हो?
2: मैं दीपांशा हरियाणा से हूँ।
1: क्या बात है मैम, बहुत बढ़िया। मैम आपका चुरा वैली में स्वागत है। और आप पहली बार मैम आए हो अपने दोस्तों के साथ?
2: बिल्कुल, यहाँ मैं पहली बार आई हूँ। ये मेरा भाई है छोटा और ये मेरा कलीग है
1: जी।
2: तो मैं अपने कलीग भाई सबको लेके आई हूँ।
1: तो मैम आपने यहाँ का ये प्लान कैसे किया, कि आपने किससे सुना कि आपने साच पास जाना है या चुरा वैली घूमने जाना है?
2: तो हम लोग,
1: ये आइडिया कैसे आया आपको?
2: हम लोग यूजुअली क्या करते थे, आसपास का कोई एरिया हो गया जैसे कसौल मनाली, तो इट इज वेरी ओवर क्राउडेड एज ऑफ नाउ। सो हमने सोचा कि कुछ ऑफ बीट करते हैं
1: जी।
2: तो अभी तो और भी ज्यादा, मतलब बिल्कुल रास्ते भी जाम है, तो इतना इतना टाइम हमको ट्रैफिक में ही लग जाता। तो हमने चैट जीपीटी किया, द फर्स्ट सजेशन इट हैज गिवन फॉर चुरा वैली।
1: क्या बात है।
2: तो इसलिए हमने और भी सर्च किया कि चुरा वैली में एक्चुअल में क्या क्या चीजें हैं। तो हमने सर्च पास के बारे में जाना।
0: रास्ते के दोनों तरफ खड़े पहाड़ ऐसे लगते हैं मानो इस जन्नत की हिफाजत कर रहे हों। जब पहाड़ों की ओट से सूरज की पहली किरण इन बर्फीली चोटियों पर पड़ती है तो ऐसा गुमान होता है मानो किसी ने सफेद मखमली फर्श पर सोना बिखेर दिया हो। इन दिनों चास पास का जर्रा जर्रा सैलानियों का इस्तकबाल कर रहा है। जो लोग यहाँ आते हैं वो बस यहीं के होकर रह जाते हैं। कोई इन नजारों को अपने कैमरे में कैद कर रहा है तो कोई बस खामोशी से बैठकर इस कुदरती हुस्न को अपनी रूह में उतार रहा है।
2: So it is totally unexpected. मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जून के मंथ में मैं इतना ज्यादा शांत, मतलब हिमाचल में नजारा देखने वाली हूँ। So this is and snowfall as well. यहाँ पे अभी हल्की-हल्की snow भी हो रही है। So we are expecting a little more.
0: चास पास की इन तस्वीरों को देखकर वाकई दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता है, जिसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। और बादलों का ऐसा हसीन मेल सीधे दिल में उतर जाता है। तो अगर आप भी इस हसीन नजारे को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं तो हिमाचल के चंबा का रुख कर लीजिए।
2: यहाँ पे आप आओ और बस ये कोशिश करना कि यहाँ पे अपना कूड़ा कचरा ये सब बिल्कुल मत फैलाना, प्लीज टेक इट।
1: बहुत बढ़िया,
2: बिल्कुल इस चीज को बहुत ध्यान। ये बिल्कुल अनटच्ड वैली है, इसको इतना ही हमको मेंटेन करके रखना है, जितने यहाँ पे साफ सुथरी चीजें हैं इनको मेंटेन करके रखना है। बट टूरिज्म थोड़ा हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ज्यादा, इन केस इफ एनीबॉडी वांट्स टू एक्सप्लोर ऑफ बीट प्लेस, दिस इज सच अनरियल प्लेस।
3: तो आप भी अपने देश में ही सैर सपाटा कीजिए, अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट कीजिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के संकल्प में भागीदार बनिए। बस आपको करना सिर्फ इतना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है तो उठाइए कैमरा और बना डालिए एक ब्लॉग, फिर हमें 7303409922 पर व्हाट्सएप कर दीजिए, हम उसे गुड न्यूज टुडे पर दिखाएंगे।
4: बात करेंगे उस पहल की जो हम सबके लिए एक सीख है। दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर लंबे जाम, कारों की कतारें आम है, लेकिन गाजियाबाद के विवेक अरोड़ा ने इसी समस्या में एक ऐसा समाधान ढूंढ निकाला है जो अब सैकड़ों लोगों के सफर को आसान और मजेदार बना रहा है। देखिए विवेक अरोड़ा ने कारपूल मॉडल में लोग का जो है अपनी खाली सीटें साझा करते हैं, साथ ही साथ सफर करते हैं, खर्च बांटते हैं और रास्ते भर नई दोस्तियां भी बना लेते हैं। नतीजा ये हुआ है कि ऑफिस जाने का रोज का जो बोरिंग सफर है अब फन राइड में तब्दील हो रहा है। कैसे, चलिए आपको दिखाते हैं।

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि तेल कम खर्च करें, पेट्रोल बचाएं, डीजल बचाएं। अब इसका उपाय क्या हो सकता है? तो आप कह सकते हैं कि कार पूलिंग कर लें, एक ही जगह से अगर एक ही लोकेशन की तरफ कई लोग जा रहे हैं तो वो एक ही कार में चले जाएं, बजाय इसके कि अलग अलग कार लेकर जाएं। ये फॉर्मूला है तो बहुत पहले से, लेकिन अक्सर ये फॉर्मूला काफ़ी हद तक किसी एक सोसाइटी में या किसी एक मोहल्ले में सिमट कर रह जाता है। लेकिन एक व्यक्ति ने इस कार पूलिंग के फॉर्मूले को इतना सक्सेसफुल बना दिया कि वो आज एक मॉडल के रूप में सबके सामने हैं और सैकड़ों लोग उनके इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके रोज एक दूसरे का साथ देते हुए ऑफिस जाते हैं, ऑफिस आते हैं।
1: ये है हिमांशु, गाजियाबाद में रहते हैं और गुरुग्राम में नौकरी करते हैं। पिछले 10 साल से हिमांशु रोज अपनी कार से इस लंबे सफर पर निकलते रहते हैं, लेकिन अब सफर शुरू होते ही सबसे पहले कार का इंजन नहीं बल्कि एक फोन कॉल एक्टिव होता है।
2: तो ठीक है बसंत, 2-3 मिनट में यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेरे को हार्डली 10 मिनट्स लेंगे आपके पास तक पहुँचने में, तो आप आ जाइएगा ना।
1: कुछ ही देर में रास्ते में नैना और अनुज भी साथ जुड़ जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि कभी ये सभी एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, लेकिन एक व्हाट्सएप ग्रुप ने इन्हें जोड़ा और आज ये रोज साथ ऑफिस जाते हैं। ट्रैफिक वही है, रास्ता वही है, लेकिन सफर अब बिल्कुल बदल चुका है।
2: हेलो सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप?
3: बताइए।
1: ऑफिस आने जाने के तमाम संघर्ष के बीच गाजियाबाद के विवेक अरोड़ा ने 2016 में एक ऐसी पहल शुरू की जिसने सैकड़ों लोगों की जिंदगी आसान बना दी।
4: देखिए, शुरुआत ऐसे हुई कि खुद को भी लगा कि कुछ होना चाहिए, तो एक इंटरनेट पे सर्च करके, एक फ्रेंच कंपनी है जो वर्ल्ड ओवर कारपूलिंग करती है, तो उनकी ऐप के थ्रू जाना शुरू किया। कोई साथ वाले मिले, इंदिरापुरम वाले थे, उन्होंने ऐसी बातचीत में कहा कि विवेक ऐसा क्यों नहीं करते कि आप ऐसा कुछ शुरू करो, तो वहां से शुरुआत की। उनके साथ मिलके 2-3 बार ट्रैवल किया, तो व्हाट्सएप बनाया और फिर प्राइमरीली जो हमारा ये ग्रुप बना है और जिस तरह से इसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है, आप ले लीजिए कि फ्रॉम 0 to nearly 1000 वर्ड ऑफ माउथ हुई है।
1: कार पूलिंग का ये मॉडल बेहद आसान है। जो शख्स कार लेकर आता है उसे हर राइडर एक ट्रिप के लिए ₹150 देता है, यानी आने जाने का कुल ₹300। एक कार में ड्राइवर के अलावा 3 लोग सफर करते हैं। 5 सीट कार में पीछे सिर्फ 2 लोगों को बिठाया जाता है। ग्रुप के मुताबिक महिला राइडर को प्राथमिकता के साथ आगे की सीट ऑफर की जाती है, यानी सिर्फ खर्च नहीं बढ़ता, जिम्मेदारी और भरोसा भी साझा होता है।
5: एज अ वुमन सेफ्टी मिले सबसे टॉप प्रायोरिटी है, और अभी तक टचवुड कुछ भी ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ है कि मुझे लगे कि ये बेकार ग्रुप है या मुझे इसमें नहीं कंटिन्यू करना चाहिए। एंड इट्स बीन 1 ईयर मैं इसमें जा रही हूँ और सब कुछ ओवरऑल बहुत ही अच्छा है।
1: इस पहल का फायदा सिर्फ जेब तक सीमित नहीं है। कारपूलिंग से जुड़े लोग बताते हैं कि हर महीने हजारों रुपए की बचत हो रही है, और सबसे खास बात, जो लोग कभी अजनबी थे आज अच्छे दोस्त बन चुके हैं।
0: कैसा फील हो रहा है आपको? अब इतनी पॉपुलैरिटी आपकी हो गई है, और सिर्फ एक साथ आने जाने की बात नहीं है, एक फन राइड भी मेरे ख्याल से।
4: नहीं बिल्कुल, हम लोग जो साथ में सफर करते हैं, ऑफ कोर्स सबकी जरूरत है। हम सब लोग एक ऐसी जगह जाते हैं गुड़गांव इंदिरापुरम से जो यहाँ से 50 किलोमीटर है, और ट्रैफिक जो है वो नेक्स्ट लेवल है इस पूरे रूट पर, तो सब लोग चाहते हैं कि हमारा सफर आरामदायक हो और हम समय से पहुंचे।
6: तो सुबह हम जल्दी पहुंच जाते हैं, इट डिपेंड ऑन ट्रैफिक कि आप कितनी जल्दी गुड़गांव पहुंच पा रहे हैं ट्रैफिक पे।
1: दिल्ली NCR की भागती दौड़ती जिंदगी में की कार पूलिंग मॉडल एक नई सोच की मिसाल बनकर उभरा है।
0: ये फॉर्मूला जो मैंने बताया आपको, आप भी इसे अपना सकते हैं अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में, और आप समझिए कि इससे ना सिर्फ आपकी जो इकोनॉमिक जो आपको थोड़ा जो पैसा है, ना सिर्फ आपका पैसा बचेगा बल्कि आप कई नए लोगों से कनेक्ट भी हो पाएंगे। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, गाजियाबाद।
7: और इंस्टा स्टोरी में अब आपको उन कलाकारों के इंस्टा रील्स दिखाते हैं जो अभिनय की दुनिया में तो कमाल कर ही रहे हैं, साथ ही साथ सोशल मीडिया पर अपने फैंस को हंसाने गुदगुदाने का मौका नहीं छोड़ते। देखिए अनुराधा सिंह की फनी इंस्टा स्टोरी।
8: बुझी हुई मोमबत्ती को दोबारा ना जलाएं, इससे उल्टा प्रभाव पड़ेगा। अगर आपने मोमबत्ती को जलाकर फिर से बुझा दिया है तो इसका और भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। जल्दी से अपनी पत्नी से मोमबत्ती को जलवाएं। याद रहे, मोमबत्ती इस बार लाइटर से जलानी है। मोमबत्ती को बुझाकर दोबारा लाइटर से ना जलाएं, अन्यथा आप और भी गरीब हो जाएंगे। यदि आपकी बीवी ने इस बार फिर
3: तो शुभ समाचार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।
7: बिल्कुल, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
10: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में, कहीं है रोमांस तो कहीं ड्रामा। दोपहर 1:28 से 3 तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
11: Music lovers, ready to take your listening to the next level? Upgrade to TuneIn Premium for curated music channels that fit every mood. Listen with less ads so you can keep the music going, so you get more of today's hits. More country roads. Classic rock. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium. And start listening now.
9: एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 गुड न्यूज टुडे पर।
14: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9
13: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
14: अविश्वास में विश्वास बसता है,
13: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
15: गुड न्यूज टुडे।
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 गुड न्यूज टुडे पर।
14: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9।
13: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
7: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
14: अविश्वास में विश्वास बसता है।
13: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
14: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
13: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
14: अविश्वास में विश्वास बसता है।
13: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल Gen Z's gateway to unbeatable placements।
7: जेष्ठ महीने का आज सातवां बड़ा मंगल बजरंगबली के आशीर्वाद के लिए मंदिरों में उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। आज से कृतिका नक्षत्र में गोचर करेंगे मंगल ग्रह। मथुरा में श्रीनाथ जी की भव्य नौका विहार मनोरथ का आयोजन, आमों से सजा श्रीनाथ जी का दरबार, भक्तों ने जमकर लगाए जयकारी, कलाकारों की शानदार प्रस्तुति। झांसी के दो युवा वैज्ञानिक भाइयों का विदेश में डंका। वन्य जीवों की रक्षा के लिए बनाया वाइल्ड वॉच डिवाइस, ब्रिटेन ने दिया 1 करोड़ का इनाम। अमरनाथ यात्रियों के लिए जम्मू में नया आकर्षण बनेगा वेस्ट टू वंडर पार्क, लगभग 90% कार्य हुआ पूरा, स्थानीय कारोबार को भी मिलेगा बढ़ावा। दिल्ली एनसीआर में मौसम हुआ सुहाना, कई इलाकों में बारिश, ठंडी हवाओं से तापमान में गिरावट, हिमाचल और जम्मू में भी बारिश।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे धोखे की। प्रेम में, विवाह में, दोस्ती में कब धोखा मिलता है और इससे बचने के उपाय क्या हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि जीवन की अलग अलग स्थितियों में, अलग अलग मामलों में धोखा कब मिलता है और धोखे से बचने के उपाय क्या हैं। हर आदमी को जीवन में धोखा नहीं मिलता और कुछ को लगातार मिलता है। आखिर कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं इसके लिए? देखिए, आम जीवन में हम लोगों से काम के लिए या भावनाओं के लिए जुड़ते हैं। उस समय जब लोगों से जुड़ते हैं, लोगों का साथ पकड़ते हैं, तो उस समय व्यक्ति पर भरोसा करते हैं। जब वो व्यक्ति हमारे भरोसे के अनुरूप काम नहीं करता या भरोसे के विपरीत काम करता है तो इसको धोखा कहा जाता है। ज्योतिष में भरोसा तोड़ने के मामले में और धोखा देने के लिए 4 ग्रहों की विशेष भूमिका होती है। चंद्रमा, बुध, शनि और राहु। हालांकि अन्य ग्रह भी इन ग्रहों के हिसाब से मिलकर अलग अलग समय पर भूमिका निभाते हैं। जो जल तत्व की राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन, इनको सबसे ज्यादा धोखा जीवन में मिलता है। कर्क, वृश्चिक और मीन वालों को धोखा सर्वाधिक मिलता है। और पृथ्वी तत्व की जो राशियां हैं, वृषभ, कन्या और मकर, सामान्यतः ये राशियां सबसे ज्यादा धोखा देती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पृथ्वी तत्व की सारी राशियों वाले धोखेबाज होते हैं, लेकिन पृथ्वी तत्व की राशियों के अंदर चालाकी पाई जाती है और उस चालाकी का इस्तेमाल करके ये लोग धोखा देने का प्रयास करते हैं। काफी हद तक, लगभग 50-60% तक पृथ्वी तत्व के लोग चालबाजियां दिखा देते हैं। मेष राशि, व्यर्थ के विवादों से आपको बचना चाहिए। खान पान का ध्यान रखें। जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। रुके हुए काम पूरे होंगे। परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर में सफलता मिलती दिखाई दे रही है। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। धोखा व्यापार में, पार्टनरशिप में, कारोबार में काफी होता है। पार्टनरशिप किसी के साथ की, उसने बेवकूफ बनाया और सारा बिजनेस अपने नाम कर लिया, आपको बाहर कर दिया। व्यापार के मामले में, कारोबार के मामले में धोखा कब मिलता है? कुंडली का सप्तम भाव जो आपके पार्टनर का है, जो आपके व्यापार का है, अगर ये भाव कमजोर हो तो व्यापार में, कारोबार में धोखा होता है। अगर कुंडली के आठवें भाव में पाप ग्रह बैठे हों, शनि, राहु, केतु, सूर्य, मंगल, तो भी धोखा कारोबार में मिल सकता है। राहु के ऊपर या राहु का सूर्य या चंद्र पर प्रभाव हो तो भी ये व्यापार में, कारोबार में धोखा दिलाता है। अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर है और आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में धोखे की संभावना बहुत होती है। जिनका बुध कमजोर हो ऐसे लोग सोच समझ कर व्यापार करें, वरना व्यापार में झटका जरूर लगेगा। अगर आपकी कुंडली में व्यापार में धोखे के योग हैं तो क्या करें? साझेदारी में, पार्टनरशिप में व्यापार कभी मत करिएगा। व्यापार का लेन देन मंगलवार को बिल्कुल मत करिएगा और संभव हो तो बुधवार को भी ना करें। और अगर आपकी कुंडली में व्यापार में धोखे का योग है तो रोज सुबह भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिएगा। ऐसा करने से व्यापार में धोखे से बच जाएंगे। सिंह राशि, मानसिक चिंताएं हो सकती हैं, वाहन सावधानी से चलाएं, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, छोटी यात्रा हो सकती है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति का लाभ हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होती फिलहाल दिखाई दे रही हैं। काम की बाधाएं समाप्त होंगी, व्यर्थ की चिंता ना करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रोजगार के प्रयास सफल होंगे, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, सबसे ज्यादा धोखा जो मिलता है और लोग कहते भी हैं वो प्रेम और विवाह के मामले का धोखा है। आपको बताया गया कि लड़का इंजीनियर है, पता चला लड़का कुछ करता ही नहीं है। आपको बताया गया कि लड़की बिल्कुल ठीक है, पता चला लड़की को कोई बड़ी बीमारी है। तो प्रेम और विवाह के मामले में भी धोखा मिलता है। कब मिलता है? अगर आपकी कुंडली में शुक्र के साथ सूर्य का या मंगल का संबंध हो तो इस तरह का धोखा जरूर होता है। शुक्र के साथ सूर्य वाले बड़े लापरवाह होते हैं रिश्तों के मामले में और अक्सर धोखे के शिकार हो जाते हैं। सातवें स्थान में अगर चंद्रमा बैठ गया या बृहस्पति बैठ गया तो ऐसी स्थिति में या तो विवाह होता नहीं, या अगर विवाह हुआ तो विवाह में धोखे की संभावना ज्यादा होती है। अगर बृहस्पति खराब है, खास तौर से किसी महिला का बृहस्पति अगर खराब है तो विवाह के मामले में उसे धोखा जरूर मिलता है। पति पत्नी के जो ग्रह हैं आपसी, अगर उनमें मित्रता नहीं है तो विवाह में धोखा मिलता है। आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सब गड़बड़ हो जाता है और विवाह में धोखे की संभावना बनती है। पुरुष का शुक्र खराब हो, पुरुष को धोखा मिलेगा। महिला का बृहस्पति खराब हो, महिला को धोखा जरूर मिलेगा। अब अगर आपकी कुंडली में विवाह या प्रेम के मामले में धोखे के योग हैं तो क्या करें? शादी या प्रेम में बहुत ज्यादा अपेक्षा मत पालिए। जो लोग बहुत ज्यादा ठोंकने बजाने लगते हैं, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने लगते हैं शादी या प्रेम में, उनको धोखा जरूर मिलता है। अगर आपकी कुंडली में प्रेम या विवाह के मामले में धोखे के योग हैं तो काले और भूरे रंग के कपड़ों का प्रयोग जीवन में कम करिएगा। खास तौर से ब्राउन कलर का ज्यादा प्रयोग करने से राहु एक्टिव हो जाता है, धोखा अवश्य मिलता है। राधा कृष्ण को रोज प्रातः गुलाबी फूल चढ़ाइए। अगर कुंडली में धोखे का योग है प्रेम या विवाह के मामले में, देखिए अगर आप पुरुष हैं या स्त्री हैं और आपकी कुंडली में ऐसे संकेत हैं कि विवाह के मामले में या प्रेम के मामले में धोखा मिलेगा, अगर धोखे के योग प्रबल हैं तो हीरा कभी मत पहनिएगा। हीरा पहनना आपको धोखे तक खींच करके ले जाएगा, इसलिए अगर कुंडली में धोखे के योग हो तो हीरा धारण ना करें। देखिए प्रेम और विवाह के अलावा जिस मामले में सबसे ज्यादा धोखा मिलता है आज के समय में, वो दोस्ती है। आपने दोस्त पर भरोसा करके उसकी सहायता की, आपको सहायता की जरूरत है, आपके दोस्त ने फोन बंद कर दिया, मुंह फेर लिया, तो दोस्ती में धोखा बहुत कॉमन है और बहुत सारे लोगों को मिलता है। कारण क्या है? चंद्रमा या शुक्र अगर कुंडली में खराब हैं आपके, तो हमेशा दोस्ती में सावधानी रखें, क्योंकि ऐसी दशा में धोखे की संभावना ज्यादा होती है। चंद्रमा खराब होगा तो आपकी दोस्ती ही गलत लोगों से होगी, जो अपना काम निकाल कर चलते बनेंगे। शुक्र खराब होगा तो अपोजिट जेंडर के साथ आपकी मित्रता होगी, पुरुष हैं तो स्त्री से, स्त्री हैं तो पुरुष से, और वो मौका पड़ने पे धोखा देंगे। तो चंद्र या शुक्र खराब हो तो धोखे की संभावना बड़ी प्रबल होती है दोस्ती में। अगर किसी का बुध खराब है तो आपको जो दोस्त मिलेंगे जीवन में वो अपने स्वार्थ के लिए मिलेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों के मित्र स्वार्थ के लिए उनके साथ जुड़ते हैं और स्वार्थ पूरा होने के बाद अपने रास्ते पर चले जाते हैं। जिनकी कुंडलियों में बृहस्पति मजबूत होता है ना, ऐसे लोग जानबूझकर धोखा खाते हैं। उन्हें पता होता है कि अगला आदमी मेरा फायदा उठा रहा है, फिर भी वो चुप रहकर इंतजार करते हैं कि सही समय आने पर बात करेंगे। बृहस्पति शुभता वाला प्लेनेट है, इसलिए कुंडली में अगर अच्छा होगा तो व्यक्ति शांत रहकर अपने साथ होते हुए धोखे को देखता है और सही समय पर इसका जवाब देता है। जिनका बुद्ध खराब है वो दोस्ती में धोखा खाते भी हैं, और बुद्ध अगर चौपट है तो वो धोखा देते भी हैं, तो जैसा करते हैं वैसा जीवन में उनको मिलता है। अब अगर आपको लगता है कि भाई आपके साथ दोस्ती में बार बार धोखा हो जाता है, बार बार दोस्तों की तरफ से धोखे की स्थिति बन जाती है, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करिएगा, नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, भगवान कृष्ण को रोज सवेरे पीले फूल अर्पित करके प्रार्थना करिए, क्योंकि भगवान कृष्ण से ज्यादा मूल्यवान मित्र कोई भी नहीं है। और अगर दोस्ती में बार बार धोखा मिल रहा है तो एक लोहे का छल्ला मिडिल फिंगर में, राइट हैंड में, दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में धारण करें। सूर्य का एक रत्न आता है, उसे कहते हैं गार्नेट। एक गार्नेट का लॉकेट बनवा लें और इसको तांबे या सोने के लॉकेट में बनवा कर अपने गले में पेंडेंट की तरह धारण करें। इससे भी आप धोखा खाने से बचेंगे, धोखा मिलने के पहले आप सतर्क हो जाएंगे। धनु राशि, पारिवारिक समस्या परेशान कर सकती है, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, शत्रु और विरोधी शांत होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, करियर की बाधा समाप्त होगी, जल्दबाजी में काम ना करें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। अगर आपकी आर्थिक स्थिति में बराबर उतार चढ़ाव रहता हो, कभी पैसा ज्यादा, कभी पैसा कम, कभी बिल्कुल नहीं, तो एक स्टील का छल्ला बनवा लीजिए। स्टील का छल्ला दाहिने हाथ की, राइट हैंड की मिडिल फिंगर में, मध्यमा अंगुली में अगर आप धारण कर लें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति अशुभ है और अशुभ बृहस्पति की दशा चल रही है तो क्या करें? बृहस्पति की अशुभ दशा में अधिक से अधिक शिव जी की उपासना करें। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें और हर बृहस्पतिवार को केले का दान करें। और बृहस्पति की अगर अशुभ दशा चल रही है तो पीला रंग और पीले रंग की वस्तुओं से परहेज करें। बृहस्पति की कितनी भी अशुभता है, अगर आप निरंतर शिव जी की पूजा करेंगे तो बृहस्पति की अशुभता दूर हो जाएगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations, like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream nonstop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
2: जानने के लिए देखिए न्यूज पत्र राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे
9: गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
10: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में, कहीं है रोमांस तो कहीं ड्रामा।

और तत्व होते कितने? पांच। और पांचों तत्व पर किसका प्रभाव है? हनुमान जी का। मेरे प्रिय जनों, इस कथा का आशय है, यदि हम हनुमान जी के भगत बन जाएंगे तो पांचों तत्व हम लोगों के अनुकूल हो जाएंगे, प्रतिकूल नहीं होंगे, अनुकूल हो जाएंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो हनुमान जी की भक्ति करने से प्रतिकूल ग्रह अनुकूल हो जाते हैं और प्रतिकूल तत्व अनुकूल हो जाते हैं। अब ग्रह प्रतिकूल हो, ग्रह तो जानते हो कितने ग्रह होते हैं? नौ। उनको कहते हैं नवग्रह। क्या कहते हैं? लेकिन नवग्रह के ऊपर भी एक ग्रह होता है, उनको भगवान का अनुग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो बोलो बोलो। और हनुमान जी का अनुग्रह हो जाए तो नवग्रह बाल बांका करने वाले, बोलो सीताराम, जोर से बोलो। और इतने के बाद भी यदि हनुमान जी की भक्ति ना कर पाओ तो तुम्हें हनुमान जी ही बचाए भैया, वरना जिंदगी तो एक रेलगाड़ी है। क्या है? जीवन तो एक रेलगाड़ी है, यहाँ किस स्टेशन पर स्टॉप लग जाए कोई ठिकाना। एक संत ने बड़े प्यारे

बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में कहीं है रोमांस तो कहीं ड्रामा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: can never have too many tools. Shop DeWalt deals at Lowe's. Get a free select DeWalt 20-volt max power tool when you buy a select 20-volt max 5-amp-hour battery kit. Plus, get a free additional DeWalt 20-volt max 8-amp-hour battery when you buy a DeWalt 10-inch 20-volt max dual bevel compounded miter saw. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 6/24 while supplies last. Selection varies by location.
1: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
3: में पक रही होती है खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
1: मैं पिछले एक साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
2: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
3: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
0: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
4: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
5: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है। डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
0: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
6: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
0: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
7: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है, जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
0: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
8: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
9: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
8: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना का मैं डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूँ हॉस्पिटल में।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
6: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अगना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब
10: खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
0: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
4: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है। मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है। इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
0: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है। यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
11: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया, मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
4: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
12: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी, क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
13: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
0: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
14: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years back when we shifted to India, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, we started using it। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
0: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
15: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है, और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
0: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
7: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है, मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेम्परेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेम्परेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
16: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में। डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
2: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ, और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था। पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
0: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
17: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है। इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
18: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी, पर जब से ये फौजी 360 लिया है कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ, अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
19: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
1: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है, और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो, आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
0: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है, और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
2: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
3: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
6: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते।
20: The weather in Central Ohio just got better, so why shouldn't your loan rate? CME Federal Credit Union wants to try to beat your current loan rate by 2% on autos and toys. Plus, enjoy no payments for 90 days on car loans and no payments for 60 days on motorcycles, boats, and more. With car rates as low as 4.99% APR and toy rates starting at 6.5% APR, it's the perfect time to save. Apply today at cmefcu.org.
21: Terms apply. Minimum floor rates 4.99% APR cars, 6.50% APR other vehicles. Federally insured by NCUA.
22: Hey, music lovers. Ready to take your listening to the next level? Upgrade to TuneIn Premium for curated music channels that fit every mood. Listen with less ads so you can keep the music going. So you get more of today's hits. More country roads. Classic rock. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium. And start listening now.
23: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे।
24: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
25: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
23: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
26: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
23: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
27: और दुर्भाग्य कहता है
23: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
26: अविश्वास में विश्वास बसता है,
23: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
23: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
24: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
25: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
23: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त
4: रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
27: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
24: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
25: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
12: ज्येष्ठ महीने का आज 7वां बड़ा मंगल, बजरंगबली के आशीर्वाद के लिए मंदिरों में उमड़ रहे श्रद्धालु। आज से कृतिका नक्षत्र में गोचर करेंगे मंगल ग्रह। मथुरा में श्रीनाथ जी की भव्य नौका विहार मनोरथ का आयोजन, नामों से सजा श्रीनाथ जी का दरबार, भक्तों ने जमकर लगाए जयकारे, कलाकारों ने दी शानदार प्रस्तुति। झांसी के दो युवा वैज्ञानिक भाइयों का विदेश में बजा डंका, वन्य जीवों की रक्षा के लिए बनाया वाइल्ड वॉच डिवाइस, ब्रिटेन ने दिया 1 करोड़ रुपए का इनाम। अमरनाथ यात्रियों के लिए जम्मू में नया आकर्षण बना वेस्ट टू द वंडर पार्क, लगभग 90% कार्य हुआ इसका पूरा, स्थानीय कारोबार को भी मिलेगा इससे बढ़ावा। दिल्ली एनसीआर में मौसम हुआ सुहाना, कई इलाकों में बारिश, ठंडी हवाओं से तापमान में भी आई गिरावट, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भी बारिश।
24: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
12: देश भर में आस्था और भक्ति के साथ मनाया जा रहा बड़ा मंगल का त्योहार, आज के दिन बजरंग बली के दर्शन पूजन के लिए मंदिरों में उमड़ रहे श्रद्धालु। हनुमान जी की पूजा के लिए बेहद शुभ माना जाता है बड़ा मंगल का दिन, विधि विधान से पूजा करने से मिलती है बजरंग बली की विशेष कृपा। ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले मंगलवार का होता है विशेष महत्व, मान्यता है कि ज्येष्ठ मंगलवार को ही हुई थी भगवान श्री राम और भगवान बजरंग बली की मुलाकात। भगवान बजरंग बली की कृपा से दूर होती हैं जीवन के सभी बाधाएं, मनोकामनाओं की पूर्ति का मिलता है आशीर्वाद। ज्येष्ठ मंगल को ही भगवान हनुमान को अमर होने का वरदान मिलने की है मान्यता, ज्येष्ठ में किए गए शुभ कार्यों के कई गुना फलदायी होने की मान्यता। अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर में ज्येष्ठ माह के 7वें बड़े मंगल पर उमड़ा भक्ति का जन सैलाब, दर्शनों के लिए उमड़ी हजारों श्रद्धालु की भारी भीड़। सुबह से ही मंदिर के बाहर लगी भक्तों की लंबी कतारें, भक्तों ने हनुमान जी के दर्शन कर चमेली का तेल, सिंदूर और बेसन के लड्डू किए अर्पित। 7वें बड़े मंगल पर बजरंग बली की मूर्ति का हुआ भव्य श्रृंगार, भगवान को अर्पित फूलों की मालाएं और आभूषण अर्पित किए जाते हैं। 7वें बड़े मंगल पर श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, राम मंदिर में तैनात दिखे जवान। ज्येष्ठ महीने के मंगलवार को बड़ा मंगल और बुढ़वा मंगल भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में इस दिन हनुमान जी से शक्ति, साहस और बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए उनकी की जाती है पूजा अर्चना। अयोध्या में 7वां बड़े मंगल पर राम मंदिर में लगा भक्तों का मेला, बड़ी संख्या में भक्त ने किए रामलला के दर्शन। रामलला के दर्शन के लिए सुबह से मंदिर परिसर में लगी भक्तों की लंबी कतारें, भक्तों ने लगाए जय श्री राम के जयकारे। प्रयागराज के बंदवा हनुमान मंदिर में ज्येष्ठ माह के सातवें बड़े मंगल पर उमड़ा भक्ति का जन सैलाब, दर्शन के लिए लगी भक्तों की लंबी कतारें। सुबह से ही मंदिर के बाहर लगी भक्तों की लंबी कतारें, भक्तों ने हनुमान जी के दर्शन कर लगाए जयकारे। बड़ा मंगल को लेकर हनुमान मंदिर को भव्य फूलों से सजाया गया, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम। मथुरा में श्रीनाथ जी की भव्य नौका विहार मनोरथ का हुआ आयोजन, आमों से सजा श्रीनाथ जी का दरबार। श्री जी को नौका पर बिठाकर कराया गया नौका विहार मनोरथ, भक्तों ने जमकर लगाए जयकारे। नौका विहार मनोरथ पर भगवान को लगाया गया विशेष भोग, भगवान की उतारी गई विशेष आरती। नौका विहार मनोरथ पर विशेष कार्यक्रम का भी हुआ आयोजन, कलाकारों ने दी शानदार प्रस्तुति। मनोरम झांकी के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु, भगवान के दिव्य स्वरूप का आनंद लिया। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में तैयारियां तेज, 3 जुलाई से शुरू हो रही है पवित्र यात्रा। श्री अमरनाथ जी यात्रा से पहले अनंतनाग पुलिस ने पहलगाम के टैक्सी स्टैंड पर की मॉक ड्रिल, एनडीआरएफ एसडीआरएफ जम्मू कश्मीर पुलिस समेत कई टीमों ने लिया इसमें हिस्सा। इस अभ्यास में सुरक्षा खतरों, लोगों को सुरक्षित निकालने की प्रक्रियाओं, संकट प्रबंधन और अलग अलग एजेंसियों के बीच तालमेल जैसी कई आपातकालीन स्थितियों का किया गया अभ्यास। टीमों ने सालाना यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और उनके सुचारू आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए तेजी से कार्रवाई करने के तरीकों का भी अभ्यास किया। 28 अगस्त तक चलेगी पवित्र अमरनाथ यात्रा, श्रद्धालु में जबरदस्त उत्साह, बड़ी संख्या यात्रा के लिए पंजीकरण करा रहे श्रद्धालु। उज्जैन में बड़ा मंगल पर बाबा महाकाल की उतारी गई भस्म आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु इसमें शामिल। बाबा महाकाल का हरिओम जल से किया गया अभिषेक, दूध दही घी शक्कर और फलों के रस से बने पंचामृत से किए गए उनकी पूजा। बाबा महाकाल का भांग चंदन सिंदूर और आभूषणों से किया गया राजा स्वरूप श्रृंगार, सुबह से ही भक्तों के लगे गम के कतारें।

0: केरल के पथनमथिट्टा में केंद्र मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने सबरीमाला मंदिर में की पूजा अर्चना, भगवान का लिया आशीर्वाद। इस्कॉन में हुबली में श्री श्री राधा गोविंद देव जी मंदिर के पहले चरण का हुआ उद्घाटन, 22 जून को होगी प्राण प्रतिष्ठा, श्रद्धालुओं के लिए 10 अगस्त से खुलेंगे इसके कपाट। उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम का 62वां भव्य स्थापना दिवस, देश विदेश से लाखों संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। नैनीताल स्थित कैंची धाम में उमड़ा आस्था भक्ति का जनसैलाब, बाबा नीम करौली महाराज के दर्शन कर आशीर्वाद ले रहे श्रद्धालु। मंदिर परिसर बना भक्ति सेवा और श्रद्धा के अद्भुत संगम का साक्षी, हर ओर सुनाई दी बाबा नीम करौली के जयकारों की मूर्ति। श्रद्धालुओं ने की जीवन में सुख शांति और समृद्धि की कामना, विशाल भंडारे में हजारों लोगों ने ग्रहण किया महाप्रसाद। कैंची धाम में बाबा के दर्शन के लिए देखी भक्तों की लंबी कतारें, पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल में डूबा।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में, कहीं है रोमांस तो कहीं ड्रामा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रविगिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रविगिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है। और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है, और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयाँ खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज़्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीज़ें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूली, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्यकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणु रोधी एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हर्ड। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लेटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, यह आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लेटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरनकंद, यह है सूरनकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है, वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, यह है इंद्रायन की जड़, इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: The world's biggest soccer tournament has arrived, and you can trade the entire tournament on Kalshi. Spain is currently trading at over 17% to win it all, meaning a $100 trade pays out over $530 if they win soccer's biggest prize. On Kalshi, you're trading against other people in a live market. No house, no odds makers. For a limited time, download the Kalshi app and use code JUMP to get $10 when you trade $10. K-A-L-S-H-I. Kalshi. Trade the beautiful game. 18 plus only. Restrictions and eligibility requirements apply. Event contract trading involves risk and may not be suitable for all investors. Prices, values, and available markets may differ from those mentioned. For more information, see Kalshi.com/regulatory.
2: TuneIn has all of your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere, from breaking news...
3: After multiple assassination attempts, they can't even get...
4: They're reliable.
5: Always when I need them.
2: ...to live sports action.
6: One-hand jam by LeBron on the break!
7: That's another play, Steph Curry!
2: And your favorite music.
8: Well, the dawn begins to crack.
2: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
9: अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके

0: The world's biggest soccer tournament has arrived, and you can trade the entire tournament on Kalshi. Spain is currently trading at over 17% to win it all, meaning a $100 trade pays out over $530 if they win soccer's biggest prize. On Kalshi, you're trading against other people in a live market. No house, no odds makers. For a limited time, download the Kalshi app and use code JUMP to get $10 when you trade $10. K-A-L-S-H-I. Kalshi. Trade the beautiful game. 18 plus only. Restrictions and eligibility requirements apply. Event contract trading involves risk and may not be suitable for all investors. Prices, values, and available markets may differ from those mentioned. For more information, see Kalshi.com/regulatory.
1: Tune in's how-to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
3: खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
2: भारतीय महिला हॉकी टीम ने FIH नेशंस कप में जापान को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पक्की की अपनी जगह, अंक तालिका में टॉप पर पहुंची टीम। ज्येष्ठ महीने का आज सातवां बड़ा मंगल, बजरंगबली के आशीर्वाद के लिए मंदिरों में उमड़ रहे श्रद्धालु आज से कृतिका नक्षत्र में गोचर करेंगे मंगल ग्रह। मथुरा में श्रीनाथ जी की भव्य नौका विहार मनोरथ का आयोजन, आमों से सजा श्रीनाथ जी का दरबार, भक्तों ने जमकर लगाए जयकारे, कलाकारों ने दी शानदार प्रस्तुति। झांसी के दो युवा

वैज्ञानिक भाइयों का विदेश में बजा डंका, वन्य जीवों की रक्षा के लिए बनाया वाइल्ड वॉच डिवाइस, ब्रिटेन ने दिया 1 करोड़ का इनाम। अमरनाथ यात्रियों के लिए जम्मू में नया आकर्षण बना वेस्ट वंडर पार्क, लगभग 90% कार्य हुआ इसका पूरा, स्थानीय कारोबार को भी मिलेगा इससे बढ़ावा। दिल्ली एनसीआर में मौसम हुआ सुहाना, कई इलाकों में बारिश, ठंडी हवाओं से तापमान में भी आई गिरावट, हिमाचल और जम्मू में भी बारिश।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज हम बात कर रहे हैं शुभ कार्यों की मंगल बेला एक बार फिर से लौट आई है। लगभग 30 दिनों के इंतजार के बाद एक बार फिर शहनाइयों की मधुर गूंज सुनाई देगी। सूर्य के मिथुन राशि में प्रवेश के साथ मांगलिक कार्यों पर लगा विराम अब समाप्त हो गया है और विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नामकरण जैसे शुभ संस्कारों का सिलसिला एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है। देखिए, 11 जुलाई तक 12 शुभ मुहूर्त पड़ने वाले हैं। शादी ब्याह, गृह प्रवेश और मुंडन जैसे मांगलिक कार्यों के लिए सबसे अच्छा दिन कौन सा होगा, अगले एक महीने में कौन कौन से शुभ मुहूर्त पड़ रहे हैं, कैसे शुभ कार्यों का श्री गणेश करें, इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस बुलेटिन में मिल जाएंगे। बहरहाल गुड न्यूज ये है कि अधिक मास की विदाई के साथ ही शुभ कार्यों का श्री गणेश हो रहा है और मांगलिक कार्यों के आयोजन से जुड़ी तैयारियां तेज हो गई हैं।

0: जिस शुभ घड़ी का बेसब्री से इंतजार था वो आ गई। अब जून से लेकर जुलाई तक शहनाई गूंजेगी। न सिर्फ शादी बल्कि तमाम मंगल कार्य जो रुके हुए थे उनका श्री गणेश होगा। कोई घर बसाएगा तो कोई नए घर में जाएगा। किसी की जिंदगी में नए काम की शुरुआत होगी। जो भी होगा शुभ होगा, मंगल होगा, क्योंकि 15 जून को अधिक मास समाप्त हो चुका है।
1: परंतु जैसे ही अधिक मास की अवधि समाप्त होती है वैसे ही शुभ मुहूर्त मिलने आरंभ हो जाते हैं। तो अधिक ज्येष्ठ मास सोमवार को 15 जून 2026 दिन सोमवार को सुबह लगभग 9 बजे के बाद से समाप्त हो जा रहा है और शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा आरंभ हो जा रही है। लेकिन उदयकालिक मान्यताओं के अनुसार 16 जून को यह माना जाएगा कि शुद्ध ज्येष्ठ मास आरंभ होगा और यहीं से शुभ मुहूर्त मिलने आरंभ हो जाते हैं और चारों तरफ शहनाई की गूंज सुनाई देगी। विवाह होंगे, गृह प्रवेश के मुहूर्त मिलेंगे, तो यह समय बड़ा ही शुभ कारक हो जाएगा मांगलिक कार्यों के लिए।
0: हालांकि धार्मिक तौर पर अधिक मास या मल मास का महीना शुभ माना जाता है, लेकिन मांगलिक कार्यों के लिए इसे अनुकूल नहीं समझा जाता, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अधिक मास में सूर्य की कोई संक्रांति नहीं होती, यानी सूर्य इस अवधि में एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश नहीं करता। सौर चक्र में इस संक्रमण विहीन अवधि के कारण इस मास को मलमास कहा जाता है। मान्यता है कि इस दौरान सूर्य की ऊर्जा कमजोर पड़ जाती है, इसलिए इस समय शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, नए व्यवसाय और दूसरे मांगलिक काम रोक दिए जाते हैं। लेकिन अधिक मास का एक दूसरा पक्ष भी है। मान्यता है कि इस माह को स्वयं भगवान विष्णु ने अपना सर्वोत्तम नाम यानी पुरुषोत्तम प्रदान किया। तब से अधिक मास पुरुषोत्तम मास हो गया और इस दौरान पूजा, जप तप, व्रत और दान का महत्व कहीं ज्यादा हो गया। लेकिन जहां तक बात है शादी विवाह और नए काम की, तो उसके लिए अधिक मास अनुपयुक्त ही रहा। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के साथ मांगलिक कार्यों पर अब कोई रोक नहीं होगी। वैसे तो अधिक मास के समाप्त होते ही शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है, पर विवाह के लिए सही मुहूर्त 19 जून से है। इसके बाद ये शादी ब्याह से जुड़े आयोजन देश भर में शुरू हो जाएंगे। पंचांग के अनुसार जून और जुलाई में मिलाकर 12 शुभ लग्न हैं, जिनमें जून में 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 29 जून शादी के मुहूर्त हैं, जबकि जुलाई में 1, 6, 7 और 11 चार प्रमुख शुभ मुहूर्त हैं। यानी आने वाले 2 महीनों में कुल मिलाकर 12 ऐसे मुहूर्त हैं जो शुभ कार्यों खासकर शादी के लिए उत्तम है।
2: अभी जो समय है वह आपके शुभ और मांगलिक कार्यों का है और यह शुभ मांगलिक कार्य आपके जो है हरि शयनी एकादशी से रुक जाएंगे। जिस दिन आपकी जो है लगभग 25 जुलाई को हरि शयनी एकादशी है उस दिन रुक जाएंगे। इस बीच काफ़ी कुछ अच्छे जो है आपके आ रहे हैं। इसी बीच आपकी जो है निर्जला एकादशी आएंगी। इसी बीच 18 तारीख को गुरु का जो है पुष्य नक्षत्र में भ्रमण होना, आगे चल के आपकी जो है जुलाई में आपका जो आषाढ़ मास होगा तो उसमें गुप्त नवरात्रों का आना। तो कहने का तात्पर्य कि इस टाइम के अंतराल में काफी कुछ शुभ मांगलिक कार्य करने वाले मुहूर्त जो है प्राप्त हो रहे हैं।
3: सुंदर मुहूर्त है जिस दिन कृष्ण पक्ष का पंचमी तिथि पड़ेगी और आषाढ़ का समय होगा और इस समय एक बहुत बेहतरीन समय है जिस पर किया जा सकता है। 22 जून ध्यान रखिएगा, 20 जून 22 जून 23 जून 24 जून 26 जून और 27 जून 29 जून 1 जुलाई 3 जुलाई 4 जुलाई 6 जुलाई और 7 जुलाई। अगर मैं इन 21 दिनों की स्पेशली बात करता हूं तो 7 जुलाई तक ये मैरिज को लेकर के बहुत शानदार दिवस है जिनके अंदर किया जा सकता है।
0: अधिक मास बीता तो विवाह के दिन आए, पर इसके लिए भी मुहूर्त सीमित है, क्योंकि 25 जुलाई से देव शयनी के साथ चतुर्मास शुरू हो जाएगा। इस दौरान भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं, इसलिए अगले 4 महीनों तक मांगलिक कार्य फिर से बंद हो जाएंगे। इसके बाद देवउठनी एकादशी से ही शुभ कार्यों की शुरुआत होगी, जिसे देव प्रबोधिनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि देवउठनी एकादशी के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु चार माह की योग निद्रा से जागते हैं और फिर से सृष्टि संचालन की जिम्मेदारी संभालते हैं और चतुर्मास का समापन होता है। लेकिन उससे पहले जून और जुलाई में मांगलिक कार्यों के 12 महत्वपूर्ण शुभ मुहूर्त हैं। जिन्होंने पहले से प्लानिंग कर रखी है उनके लिए तैयारी के भी अच्छे खासे दिन हैं और जिन्हें अगले 4 महीने इंतजार नहीं करना उनके लिए भी अच्छा और सुविधाजनक मुहूर्त तय करने की देर है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: शुभ दिनों की शुरुआत सूर्य के राशि परिवर्तन के साथ ही हो रही है। सूर्य का राशि परिवर्तन वैदिक ज्योतिष में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। सूर्य आत्मबल, प्रतिष्ठा, सरकारी कार्य, नेतृत्व, पिता, स्वास्थ्य और करियर का कारक ग्रह माना जाता है। ऐसे में मिथुन राशि पर बुध का स्वामित्व होने से इस काल में संचार, व्यापार, शिक्षा और तकनीकी क्षेत्रों से जुड़े लोगों को विशेष प्रभाव देखने को मिल सकता है। आइए जानते हैं ज्योतिष आचार्य प्रतीक भट्ट से कि कौन कौन सी राशियों को सूर्य के इस राशि परिवर्तन से लाभ होने वाला है।
5: अगर मेष लग्न मेष राशि वालों की बात करें, तृतीय भाव में होगा। तृतीय भाव किसका? पराक्रम का, आपके भाई का, पठन पाठन लेखन का। तो इनमें कार्य करने वाले लोगों को जबरदस्त सफलता मिलेगी। जो लोग कम्युनिकेशंस का काम करते हैं, कम्युनिकेशन की वजह से चीजें ब्रेक हो रही थी, उन्हें लाभ मिलेगा। अब यहां से तृतीय भाव से बैठ के सप्तम दृष्टि नवम भाव में पिता से लाभ, पैतृक संपत्ति का लाभ, विदेश यात्रा का लाभ, पीआर वीजा का लाभ, उसी के साथ साथ कोई बड़ा कार्य अगर रुका हुआ था मेष लग्न मेष राशि वालों का, कोई प्रोजेक्ट अटका हुआ था, पूर्ण हो जाएगा। क्या करें, गुड़ का सेवन कर घर से निकले, अगले एक महीने तक लाभ मिलेगा। बात कर लेते हैं वृषभ लग्न वृषभ राशि वालों के। द्वितीय भाव में है तो पैसे की पैसा इनकम रुपया पैसा बढ़ेगा। अब चौथे का स्वामी जब द्वितीय में होता है तो असेट बढ़ते हैं, घर गाड़ी बंगले में लाभ होगा, अचानक तनख्वाह बढ़ जाएगी, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाएगा। लेकिन द्वितीय भाव वाणी का भी है तो ओजस्वी वाणी तो अच्छी है लेकिन कर्कस नहीं होनी चाहिए, उस पर ध्यान देना होगा। अब द्वितीय से अष्टम को देख रहे होंगे, ससुराल पक्ष से छोटा मोटा विवाद हो सकता है, पति पत्नी के बीच अनबन बढ़ सकती है। क्या करें, रुद्राभिषेक कर लीजिएगा किसी भी सोमवार के दिन, या फिर बेलपत्री 3 या 7 की मात्रा में शिव जी को चढ़ा दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं मिथुन लग्न मिथुन राशि वालों की। आपके लग्न में है तो निश्चित तौर पर आपका प्रभाव बढ़ेगा, ऑरा मजबूत होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पॉजिटिविटी बढ़ेगी। उसी के साथ साथ जब लग्न में होते हैं तो मनचाही इच्छा भी पूर्ण होती है, क्योंकि पराक्रम के स्वामी तृतीय भाव के स्वामी लग्न में कोई बड़ा कार्य पूर्ण होगा, बड़ी राजनीतिक इच्छा पूर्ण हो सकती है। यहाँ से सप्तम को देखेंगे तो पार्टनरशिप में, विवाह में छोटी मोटी दिक्कतें आ सकती हैं, उसको ध्यान देना होगा, नहीं तो आपका ईगो की वजह से ये सब चीज़ें बिखर सकती हैं। यहाँ पे बहुत फोकस करना होगा। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करेंगे। कर्क लग्न कर्क राशि वालों की बात करें, 12वें भाव पे हो रहा है तो विदेश से कोई शुभ समाचार मिल सकता है, किसी बड़ी एमएनसी से कोई शुभ समाचार मिल सकता है, वीजा पीआर रुका हुआ था वो मिल सकता है। लेकिन 12वें भाव में अगर सूर्य जाता है तो जरूर, खासतौर से क्योंकि मिथुन का स्ट्रांग है, द्वितीय भाव का स्वामी 12वें पे जा रहा है यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा अपने धन पर। धन चोरी होने का भय रहेगा, धन लॉस का होगा डर, उसी के साथ कर्ज लेन देन में बचना होगा इस दौरान। पैसे का कहीं ना कहीं संचय करना अगले एक महीने आपके लिए बहुत जरूरी है। हालांकि लग्न में बृहस्पति शुक्र बैठे हैं इसलिए कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि बृहस्पति ऋषि पराशर कहते हैं बृहस्पति लग्न में 1 लाख दोष दूर करते हैं और निश्चित तौर पर आपका जीवन यहां से बेहतर रहेगा। सिंह राशि की बात करें 11वें भाव में तो निश्चित तौर पर लग्नेश जब 11वें भाव में चले जाएं तो कोई बड़ी महत्वाकांक्षा पूर्ण होगी, कोई बड़ा लाभ मिलेगा, कोई बड़ी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूर्ण होगी, जबरदस्त पैसे का लाभ दिखता है, अचानक धन कहीं ना कहीं समृद्धि आती हुई दिखती है, सामाजिक पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। उसी के साथ साथ यहां से आपके मित्र भी देखे जाते हैं, मित्रों से सहयोग, कोई उच्च पदस्थ व्यक्ति से बड़ा जबरदस्त सहयोग आपके व्यापार को, आपकी नौकरी को, आपकी आमदनी को आगे ले जाएगा। अब कन्या राशि की बात करें, कन्या लग्न कन्या राशि वालों दशम में होंगे, दशम में सूर्य को सबसे ज्यादा बलि माना गया है तो करियर में कोई बड़ा मूवमेंट, जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे थे मिल जाएगी, जो लोग प्रमोशन की बात कर रहे थे हो जाएगा, जिन लोगों की चीजें अटकी हुई थी करियर में किसी भी रूप में वो पूर्ण होंगी। निश्चित तौर पर दशम का सूर्य जब चौथे को भी देखता है तो राजसत्ता का लाभ होता है, सरकारी पद प्रतिष्ठा मिल सकती है, सरकारी घर गाड़ी बंगला मिल सकता है, ओवरऑल लाभ के संकेत हैं। तुला लग्न तुला राशि की बात करें, नवम भाव में होगा। एकादश का स्वामी अपने से एकादश, लाभ ही लाभ लेके आया, कोई जबरदस्त लाभ का संकेत इस समय मिलेगा। उसी के साथ साथ विदेश यात्रा हो सकती है, विदेश जाने की तरफ कहीं ना कहीं डेट फ्रीज हो सकती है। भाग्य भाव में होने की वजह से भाग्य का साथ जबरदस्त मिलेगा, पिता का साथ जबरदस्त मिलेगा, धार्मिकता की तरफ बढ़ेंगे, किसी बड़े मंदिर भी जा सकते हैं इस दौरान। नवम भाव में होने की वजह से पैतृक संपत्ति से लाभ और अधिकारी वर्ग से ऊपर बैठे हुए व्यक्तियों से जबरदस्त लाभ के संकेत हैं। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि वालों की। तो आपके लिए थोड़ी सी यहाँ उथल पुथल का टाइम है, क्योंकि दशमेश अष्टम में चले गए हैं, सरकारी बाधा आ सकती है, कोर्ट कचहरी के मामलों में फंस सकते हैं, अधिकारी नाराज हो सकते हैं। उसी के साथ साथ गाड़ी ध्यान से चलाना, चालान कट सकता है। अष्टम भाव में होने की वजह से ससुराल से दिक्कतें, विवाह में दिक्कतें आ सकती हैं, नौकरी व्यापार में बाधा उलझने बढ़ेंगी। इन सब चीज़ों को टालना ही बेहतर रहेगा। कोई बड़े डिसीजन बिजनेस में, डिसीजन मेकिंग जॉब में नहीं करिएगा। अब बात कर लेते हैं धनु लग्न धनु राशि वालों की। आपके सप्तम भाव में होगा कौन, नवमेश। तो निश्चित तौर पर विवाह की में कहीं ना कहीं जो दिक्कतें थी खत्म होंगी, जिन लोगों के डाइवोर्स या सेपरेशन चल रहे थे खत्म होंगे। उसी के साथ साथ कोई नया रास्ता खुलेगा, पार्टनरशिप के लिए बड़ा अच्छा समय, व्यापार के लिए बड़ा अच्छा समय, व्यापार बढ़ता हुआ इस दौरान नजर आता है। क्या उपाय करें? निश्चित तौर पर केसर का तिलक बृहस्पतिवार और रविवार लगाकर घर से निकले तो लाभ मिलेगा। मकर लग्न मकर राशि की बात करें तो छठे भाव में गोचर हो रहा है, तो निश्चित तौर पर अच्छा नहीं कहा जा सकता। कुछ चीज़ों के लिहाज से आपको प्रेम में दिक्कतें आ सकती हैं, घर में सुख शांति की कमी रह सकती है, लेकिन नौकरी में शत्रुओं पर विजय होगी, नौकरी में लाभ होगा, किसी रोग पर विजय हो सकती है, उसका भी लाभ आपको मिलेगा। सिर्फ आपको क्या करना है, गौ माता को गुड़ बृहस्पतिवार और रविवार के दिन खिला देना है। अब बात कर लेते हैं कुंभ लग्न कुंभ राशि वालों के। पंचम भाव में ये गोचर, तो इंटेलिजेंस बढ़ेगा, चिल्ड्रन को कहीं ना कहीं संतान को लाभ होगा। जो माताएं बहनें कंसीव नहीं कर पा रही थी कर पाएंगी, जिन लोगों के विवाह में समस्या आ रही थी उनके घर में बात घर वाले मानेंगे। समस्या यहाँ पे सिर्फ इतनी है कि आपका प्रेम में ईगो नहीं आना चाहिए, अगर प्रेम में ईगो आया तो स्थितियाँ खराब होंगी, तो ईगो को कंट्रोल करना है। बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए अच्छा समय है, उनको विदेश भेजने के लिए एक अच्छा समय है, विदेश में उच्च शिक्षा भी वो ले सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। पंचम का सूर्य जबरदस्त गवर्नमेंट सफलता भी देता है, तो जो लोग प्रतियोगी परीक्षा की सफलता का इंतजार कर रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं उसमें आराम मिलेगा। अब क्या करें, ओम घणी सूर्याय नमः इस मंत्र का पाठ करते रहिएगा। अब मीन राशि मीन लग्न वालों की बात करें, चौथे भाव में होगा, तो निश्चित तौर पर चौथे भाव में राजसत्ता, क्योंकि यहाँ से दशम को देखेंगे, राज की गाड़ी, राज में बड़ा पद मिल सकता है। चौथे भाव में होने की वजह से थोड़ा सा माता को कष्ट या फिर थोड़ा सा हेल्थ खराब हो सकती है उनकी। सुख समृद्धि तो बढ़ाता है चौथे का सूर्य निश्चित तौर पर, लेकिन घर में छोटे मोटे लड़ाई झगड़े भी कराता रहता है, उस पर ध्यान देना होगा। उसी के साथ साथ चौथे का सूर्य निश्चित तौर पर शिक्षा के लिहाज से अच्छा है, पद प्रतिष्ठा के लिहाज से अच्छा है, कोई बड़ा पद मिल सकता है, कोई सडन गेन हो सकता है आपको, और ये सब ऐसे ही बना रहे तो उसके लिए उपाय कर लीजिएगा गायत्री मंत्र का पाठ।

0: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में कहीं है रोमांस तो कहीं ड्रामा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
1: Less interruption, more listening. With TuneIn Premium, get less ads on all music, news, and sports so you can get back to what really matters. Listen to all your favorite stations on over 200 devices so you never miss a second of airtime. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium and start listening now.
2: और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे, कुछ आपको हैरान कर देंगे, तो कुछ आपको सोचने पर भी मजबूर कर देंगे।
2: दुनिया में फुटबॉल फीवर छाया हुआ है, ऐसे में ब्राजील की इन तस्वीरों को देखिए जरा। फुटबॉल फीवर के इस दौर में ये शख्स फुटबॉल खिलाड़ियों की जर्सी पहनकर सड़क पर फुटबॉल के साथ दिखाई दे रहा है और वो चलते चलते फुटबॉल से खेलता नजर आ रहा है, लेकिन इस फुटबॉल को खेलने में वो कुशल तो बिल्कुल नहीं दिख रहा। सोशल मीडिया पर तस्वीरें इतनी वायरल हो चुकी हैं कि यूजर्स पूछ रहे हैं, शायद ब्राजील में फुटबॉल खेलने में खराब होना गैर कानूनी होगा, वरना ऐसे खेल से फुटबॉल प्रेमियों का दिल दुखाने की सजा तो जरूर मिलती। अब इस वीडियो में दीदी के मंकेश भाई यानी इस बंदर जी को देखिए जरा। बंदर शीशे के उस तरफ है और दीदी उसको घूर रही है। बंदर जी को घूरना बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो मुंह दूसरी तरफ कर देते हैं। दीदी वहाँ भी उनको ताकने लगती है। कहाँ मंकेश भाई घर में एंट्री लेने की जुगत में थे, घर वालों को डराने वाले थे, लेकिन दीदी ने आज उसके साथ खेला कर दिया। परेशान बंदर भैया भाग खड़े हुए। अब परेशान हुए बंदर को भागता देख यूजर्स मुस्कुरा रहे हैं।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: You're listening Uninterrupted. With TuneIn Premium, enjoy commercial-free news and music, plus ad-free ESPN Radio, and fewer ads across other stations. Whether you're listening for the latest news or the next big game, never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go, so you can hear more. Ready to upgrade your listening? Upgrade to TuneIn Premium now.
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
9: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
10: TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
11: भारतीय महिला हॉकी टीम ने FIH नेशंस कप में जापान को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पक्की की अपनी जगह, अंक तालिका में टॉप पर पहुंची टीम। ज्येष्ठ महीने का आज 7वां बड़ा मंगल, बजरंगबली के आशीर्वाद के लिए मंदिरों में उमड़ रहे श्रद्धालु, आज से कृतिका नक्षत्र में गोचर करेंगे मंगल ग्रह। मथुरा में श्रीनाथ जी की भव्य नौका विहार मनोरथ का आयोजन, आमों से सजा श्रीनाथ जी का दरबार, भक्तों ने जमकर लगाए जयकारे, कलाकारों ने दी शानदार प्रस्तुति। झांसी के 2 युवा वैज्ञानिक भाइयों का विदेश में डंका, वन्य जीवों की रक्षा के लिए बनाया वाइल्ड वॉच डिवाइस, ब्रिटेन ने दिया 1 करोड़ का इनाम। अमरनाथ यात्रियों के लिए जम्मू में नया आकर्षण बनेगा वेस्ट टू वंडर पार्क, लगभग 90% कार्य हुआ पूरा, स्थानीय कारोबार को भी मिलेगा बढ़ावा। दिल्ली NCR में मौसम हुआ सुहाना, कई इलाकों में बारिश, ठंडी हवाओं से तापमान में आई गिरावट, हिमाचल और जम्मू में बारिश।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
11: सज गई है खबरों की प्लेट, तैयार है गुड न्यूज का मेन्यू। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शगुफ्ता साहिल। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पूजा पाराशर। खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषा नहीं, हम आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर हर अहम खबर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं 5:25 अच्छी खबरों के साथ।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबर।
11: देश भर में आस्था और भक्ति के साथ मनाया जा रहा बड़े मंगल का त्यौहार, आज के दिन बजरंगबली के दर्शन पूजन के लिए मंदिरों में उमड़ रहे लाखों श्रद्धालु। हनुमान जी की पूजा के लिए बेहद शुभ माना जाता है, बड़े मंगल का ये दिन विधि विधान के साथ पूजा करने से मिलती है बजरंगबली की विशेष कृपा। अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी में ज्येष्ठ माह के 7वां बड़ा मंगल पर उमड़ा भक्तों का सैलाब, दर्शनों के लिए उमड़ी हजारों श्रद्धालुओं की भारी भीड़। अयोध्या में 7वां बड़े मंगल पर राम मंदिर में लगा भक्तों का मेला, बड़ी संख्या में भक्तों ने किए रामलला के दर्शन। प्रयागराज के बंधवा हनुमान मंदिर में ज्येष्ठ माह के 7वां बड़ा मंगल पर उमड़ा भक्तों का सैलाब, दर्शन के लिए लगी भक्तों की लंबी लंबी कतारें। मथुरा में श्रीनाथ जी की भव्य नौका विहार मनोरथ का आयोजन, आम से सजा श्रीनाथ जी का दरबार, श्री जी को नौका पर बैठाकर कराया गया नौका विहार मनोरथ, भक्तों ने जमकर लगाया जयकार। उज्जैन में बड़ा मंगल पर बाबा महाकाल की उतारी गई भस्म आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। केरल के पथनमथिट्टा में केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी ने सबरीमाला मंदिर में की पूजा अर्चना, भगवान का लिया आशीर्वाद। इस्कॉन ने हुगली में श्री श्री राधा गोविंद देव जी मंदिर के पहले चरण का उद्घाटन किया, 22 जून को होगी प्राण प्रतिष्ठा, श्रद्धालुओं के लिए 10 अगस्त से खुलेंगे कपाट। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में तैयारियां तेज, 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है पवित्र यात्रा। श्री अमरनाथ जी यात्रा से पहले अनंतनाग पुलिस ने पहलगाम के टैक्सी स्टैंड पर की मॉक ड्रिल, एनडीआरएफ एसडीआरएफ जम्मू कश्मीर पुलिस समेत कई टीमों ने हिस्सा लिया। अमरनाथ यात्रियों के लिए जम्मू में नया आकर्षण बनेगा वेस्ट वंडर पार्क, लगभग 90% कार्य हुआ पूरा, स्थानीय कारोबार को मिलेगा इससे बढ़ावा। झांसी के 2 युवा वैज्ञानिक भाइयों का विदेश में डंका, वन्य जीवों की रक्षा के लिए बनाया वाइल्ड वॉच डिवाइस, ब्रिटेन ने दिया 1 करोड़ का इनाम। वन्य प्रेमियों के लिए गुड न्यूज आई है, इस साल 1 हफ्ते की देरी से बंद होगा जूनागढ़ का गिर सफारी जंगल। रायसेन में जन कल्याण शिविर का आयोजन, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के राजनंदगांव में पुलिस ने की शानदार पहल, ग्रामीण इलाकों के युवाओं के लिए बनाया रीडिंग रूम, विधानसभा के स्पीकर रमन सिंह ने किया शुभारंभ। शिलांग में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 3,214 करोड़ की परियोजना का किया शिलान्यास, सीएम कॉनराड के सांगमा भी रहे मौजूद। पुलिस भर्ती का परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए गुड न्यूज, परीक्षार्थियों के लिए पूर्वी रेलवे चला रही है स्पेशल ट्रेन। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन, आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली जोड़े शामिल हुए। शहनाज गिल और जय रंधावा की अपकमिंग फिल्म इश्कनामा का टीजर रिलीज हो गया है, 24 जुलाई को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी ये फिल्म। फिल्म निर्देशक राजकुमार हिरानी की पहली वेब सीरीज प्रीतम एंड पेड्रो का ट्रेलर जारी, फिल्म अरशद वारसी का अहम किरदार आपको इसमें नजर आएगा। अल्फा के बाद कार्तिक आर्यन के साथ फिल्म करेंगे शर्वरी वाघ, रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्देशक लव रंजन की अगली रोमांटिक कॉमेडी फिल्म, दोनों एक साथ इसमें नजर आएंगे। विजय देवकोंडा जल्द ही फिल्म रणबाली में लीड रोल निभाते नजर आएंगे, उनके साथ पत्नी रश्मिका मंदाना का भी अहम रोल। मिथुन चक्रवर्ती की बेटी दिशानी ने कर ली सगाई, दिशानी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तस्वीरें शेयर की, 6 दिसंबर 2026 को होगी शादी।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम
11: 25 अच्छी खबरों के बाद खबरें विस्तार से आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की तमाम ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में बारिश ने दी गर्मी से राहत, कुछ और दिन मौसम सुहाना रहने के आसार। बड़ा मंगलवार पर हनुमान मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ लगी, सुबह से दर्शन को लंबी कतारें लगी। अंतिम चरण में अमरनाथ यात्रा की तैयारियां पुख्ता किए जा रहे हैं, सुरक्षा के इंतजाम, 3 जुलाई से शुरू हो रही है यात्रा। चारधाम यात्रा में आस्था और भक्ति का मेला, 35.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम यात्रा में हो चुके शामिल। फिल्म गदर के 25 साल पूरे हुए, तारा सिंह से मिली सकीना, मनाया जश्न। और चलिए लंच टाइम की शुरुआत करते हैं मशहूर डायरेक्टर के ओटीटी डेब्यू के साथ, वेब सीरीज प्रीतम एंड पेड्रो के साथ राजू हिरानी ओटीटी की दुनिया में कदम रख चुके हैं। इसके लिए प्रीतम एंड पेड्रो सिर्फ एक वेब सीरीज नहीं है बल्कि दोहरी खुशी लेकर आई है, एक तरफ उनका ओटीटी का डेब्यू है तो दूसरी तरफ बेटे वीर हिरानी का पहला बड़ा डिजिटल प्रोजेक्ट है। प्रीतम एंड पेड्रो का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और ये ट्रेलर दर्शकों को खूब पसंद भी आ रहा है। ट्रेलर में कॉमेडी, साइबर क्राइम और सस्पेंस का तड़का आपको देखने को मिलेगा और इस ट्रेलर ने प्रीतम एंड पेड्रो से दर्शकों की उम्मीदों को काफी बढ़ा दिया है।
12: इंस्पेक्टर पेड्रो गोंसालेस, मेरे को ना मारपीट, भागदौड़, खून खराबा, ये सब क्राइम जब खुशबू आती है तब मजा आता है।
13: बॉलीवुड के सबसे कामयाब और भरोसेमंद फिल्म मेकर्स में गिने जाने वाले राजकुमार हिरानी अब ओटीटी की दुनिया में कदम रख चुके हैं।
12: ये कीबोर्ड क्यों से क्यों चालू होता है?
13: उनकी पहली वेब सीरीज प्रीतम एंड पेड्रो का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, लेकिन इस सीरीज की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ इसकी कहानी नहीं बल्कि हिरानी परिवार का डबल डेब्यू भी है।
12: सॉरी, नहीं नहीं तो बोल, ऑपोजिशन के क्रिटिसिज्म से डेमोक्रेसी चलती है।
14: मिनिस्टर ने आप साइबर में फेंका था ना, इसका बच्चा ढूंढ निकालोगे तो क्या होगा?
12: जहाँ चाहूँ वहाँ पे ट्रांसफर करेगा।
13: एक तरफ राजकुमार हिरानी पहली बार वेब सीरीज लेकर आ रहे हैं तो दूसरी तरफ उनके बेटे वीर हिरानी इसी शो से अपना डिजिटल और लीड एक्टिंग डेब्यू कर रहे हैं। साइबर क्राइम, कॉमेडी, सस्पेंस और स्टार कास्ट से भरपूर इस सीरीज का ट्रेलर सोशल मीडिया पर चर्चा में है।
14: आई फील कोई साइबर क्रिमिनल इन्वॉल्वड है इनके किडनैपिंग में।
13: बड़े पर्दे पर कई यादगार फिल्में देने के बाद अब वो ओटीटी की दुनिया में कदम रख रहे हैं। ट्रेलर लॉन्च के दौरान हिरानी ने बदलते दौर और दर्शकों की देखने की आदतों पर भी दिलचस्प बातें कही।
15: ये जो 2003 की बात कर रहे हैं, मैं इनको बता दूं, वो मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई थी दिसंबर 2003 में, मुन्ना भाई MBBS। तो उस वक्त फिल्में बड़े पर्दे पे दिखाई जाती थी और हमको बड़ी चिंता होती थी कि स्क्रीन पे जब जाएंगे लोग अपने उनके फोन तो नहीं बज रहे होंगे। आजकल ये फर्क हुआ है कि फिल्में छोटे पर्दे पे होती है 6 इंच के, वो फोन पे देख रहे होते हैं और हमें ये फिर होता है आपको नोटिफिकेशन तो नहीं आएगा ना, डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो जाएंगे ना।
16: आपके विनय में जरा भी मैनर्स नहीं है, तो आई सॉल्व द प्रॉब्लम, अब किसी को नहीं दिखा पाएगा।
13: राजकुमार हिरानी के लिए ये सिर्फ OTT डेब्यू नहीं है बल्कि एक पिता के तौर पर भी खास पल है, क्योंकि इसी सीरीज से उनके बेटे वीर हिरानी डिजिटल दुनिया में अपनी नई पारी शुरू कर रहे हैं। ट्रेलर में वीर का आत्मविश्वास और अरशद वारसी के साथ उनकी केमिस्ट्री चर्चा का विषय बनी हुई है।
17: 10 मिनट का काम था, सॉरी।
12: नहीं तो बोल।
13: दिलचस्प बात ये है कि वीर हिरानी और अरशद वारसी का साथ आज का नहीं, लगे रहो मुन्ना भाई में वीर बचपन में भी कैमरे के सामने नजर आ चुके थे।
18: मेरे पास है, कब तक अरेंज होगा कैश?
19: 23.7 लाख जमा हो गया है, 12 सूटकेसेस भर चुके हैं।
13: अब करीब 2 दशक बाद दोनों एक बार फिर स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। ट्रेलर लॉन्च में इस बात पर खूब हंसी मजाक भी हुआ। बातों बातों में ही अरशद और वीर हिरानी ने इस सीरीज में संजय दत्त के होने का भी शिगुफा छोड़कर दर्शकों को कंफ्यूज कर दिया है। हालांकि ट्रेलर में कहीं भी संजय दत्त नजर नहीं आए, तो अगर आपको संजू बाबा की सरप्राइज एंट्री दिख जाए तो इससे परफेक्ट सिनेरियो भला और क्या होगा।
20: मतलब हिरानी वर्स में तब से लेकर आज तक आई एम श्योर आपने हिरानी वर्स के अगले काम में, अगली कहानी में काम किया, संजय सर को तो मिस किया होगा।
21: कहाँ है वो इसमें भी यार, क्यों मिस करेंगे।
13: वहीं अगर ट्रेलर की बात की जाए तो ये कहानी दो बिल्कुल अलग किरदारों के इर्द गिर्द घूमती दिखाई देती है। एक तरफ है पेट्रो यानी अरशद वारसी, जो पुराने अंदाज वाले पुलिस अफसर है, और दूसरी तरफ है प्रीता यानी वीर हिरानी, जो टेक्नोलॉजी और डिजिटल दुनिया के एक्सपर्ट है।
12: मोबाइल टावर है क्या 15 मिनट में?
17: सर 10 मिनट का काम था।
22: कोई कुत्ते बिल्ली का नाम नहीं, कोई बर्थडेट नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन आज तक कोई क्रैक नहीं कर पाया।
17: क्या है सर आपको पासवर्ड?
22: 1 2 3 4 5।
13: एक हाई प्रोफाइल किडनैपिंग केस दोनों को साथ काम करने पर मजबूर कर देता है और यहीं से शुरू होती है साइबर अपराध, रहस्य और हादसे से भरी जंग। दिलचस्प बात ये भी है कि वीर और अरशद का रिश्ता सिर्फ एक सीरीज तक सीमित नहीं है। ट्रेलर लॉन्च के दौरान अरशद वारसी ने मजाकिया अंदाज में याद किया कि उन्होंने वीर को बचपन में भी कैमरे के सामने देखा था। ऐसे में अब सालों बाद दोनों एक बड़े प्रोजेक्ट के साथ नजर आ रहे हैं।
21: एक चीज मैंने नोटिस की थी इस वक्त भी, आई थिंक राजू विल बैक मी अप ऑन दैट, कि वी कुड सी दैट कि यू नो वीर इज गोइंग टू बी एन एक्टर, वो पता चलता था, क्योंकि जब तक उसको पैसे नहीं मिले उसने शॉट नहीं दिया। जब तक आइसक्रीम नहीं खाया, थोड़े पैसे नहीं किया उसने काम।
16: आपके विनय में जरा भी मैनर्स नहीं है, तो आई सॉल्व द प्रॉब्लम, अब किसी को नहीं दिखा पाएगा।
13: अब तक ज्यादातर गंभीर और संवेदनशील किरदारों में नजर आने वाले विक्रांत इस बार खलनायक की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। उनका रहस्यमय और खतरनाक अंदाज ट्रेलर में सस्पेंस बढ़ाता है और कहानी को नया मोड़ देता है।
16: जल्द मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
13: सीरीज में मोना सिंह, बोमन ईरानी और राजेश शर्मा जैसे दमदार कलाकार भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे, जबकि निर्देशन की कमान संभाली है अविनाश अरुण ने, जिन्हें उनके संवेदनशील और अलग अंदाज की कहानी कहने के लिए जाना जाता है। वहीं राजकुमार हिरानी इस शो के क्रिएटर और प्रोड्यूसर है। ट्रेलर की सबसे खास बात है इसका टोन। ये सिर्फ एक साइबर क्राइम थ्रिलर नहीं बल्कि इसमें हिरानी स्टाइल का ह्यूमर, दोस्ती, इमोशन और आम आदमी से जुड़ा अंदाज भी देखने को मिलता है। यानी डिजिटल दुनिया के खतरों को मनोरंजन के पैकेज में पेश करने की कोशिश की गई है।
23: तेरा नाम क्या है? तेरा
17: प्रीतम सर, प्रीतम पार्कर।
12: मोबाइल टावर है क्या 15 मिनट में?
17: सर 10 मिनट का काम था,
13: राजकुमार हिरानी का OTT डेब्यू, वीर हिरानी की पहली बड़ी एंट्री, अरशद वारसी का कॉमिक अंदाज और विक्रांत बैसी का खतरनाक अवतार। अब देखना होगा कि बड़े पर्दे पर जादू चलाने वाले राजकुमार हिरानी OTT की दुनिया में भी वही कमाल दोहरा पाते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
0: क्रिमिनल इन्वॉल्वड है इनकी किडनैपिंग में, मे बी स्टिल वॉचिंग अस।
16: आपके विनय में जरा भी मैनर्स नहीं है।
11: शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की फिल्म की बात कर लेते हैं, कॉकटेल 2, जो कि इन दिनों खूब चर्चा में है। फिल्म की रिलीज में कुछ ही दिन बाकी हैं और फिल्म के मेकर्स प्रमोशन पर पूरी ताकत झोंक रहे हैं। कुछ दिनों पहले फिल्म का म्यूजिक लॉन्च भी बड़े ही शानदार अंदाज में किया गया था। पुणे में हुए प्रमोशन इवेंट में भी फिल्म के स्टार्स को देखने के लिए फैंस का हुजूम उमड़ पड़ा। ये फिल्म 19 जून को रिलीज होने वाली है। जैसे जैसे ये तारीख करीब आ रही है, दर्शकों की बेसब्री बढ़ती जा रही है।
3: सोशल मीडिया से लेकर फिल्मी गलियारों में ये तिकड़ी इन दिनों खूब चर्चा में है। शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की कॉकटेल की रिलीज में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में ये सभी स्टार्स फिल्म के प्रमोशन में जी जान से जुटे हुए हैं। इसी सिलसिले में तीनों कलाकार पुणे के एक मॉल में पहुंचे थे। वहां अपने पसंदीदा सितारों को देखने के लिए फैंस की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इन स्टार्स को देखने के लिए भीड़ इस कदर बेताब हुई कि कुछ देर के लिए पूरे मॉल में हलचल बढ़ गई। हालात इस कदर बेकाबू हुए कि इवेंट को बीच में ही रोकना पड़ा। सोशल मीडिया पर इस इवेंट का एक वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में तीनों स्टार्स भीड़ के बीच से निकलते दिख रहे हैं। भीड़ में मौजूद हर शख्स इन स्टार्स के साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था। तीनों स्टार्स को भीड़ के बीच से निकलने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। कुछ दिनों पहले ही कॉकटेल 2 का म्यूजिक भी बड़े ही शानदार अंदाज में रिलीज किया गया था। साल 2012 में आई कॉकटेल की तरह ही इस फिल्म का म्यूजिक भी दर्शकों को खूब लुभा रहा है। मुंबई में कॉकटेल 2 के म्यूजिक लॉन्च इवेंट में बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचे थे। इस इवेंट में फिल्म के चार्ट बस्टर गानों पर सिंगर्स ने लाइव परफॉर्म भी किया। मेकर्स की तरफ से एडवांस बुकिंग को भी ओपन कर दिया गया है।
4: दुल्हन के लिए मेकअप।
3: शाहिद कपूर स्टारर इस मूवी के ट्रेलर और चार्टबस्टर गाने पहले ही इंटरनेट पर हंगामा मचा चुके हैं। प्रोमो कैंपेन पर जबरदस्त एंगेजमेंट और ऑडियंस का सॉलिड पॉजिटिव रिस्पांस कॉकटेल 2 के बस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहा है। फिल्म के मेकर्स अपनी इस मूवी के प्रमोशन में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। करीब 14 साल पहले आई कॉकटेल की प्रेम कहानी ने दर्शकों के दिलों को छू लिया था। अब उम्मीद की जा रही है कि कॉकटेल 2 लव स्टोरी को कुछ नए ट्विस्ट के साथ पेश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
11: देखिए, बॉलीवुड की कुछ फिल्में बड़े पर्दे पर अपने दौर की पहचान बन जाती हैं। कुछ ऐसे ही कहानी गदर एक प्रेम कथा की भी है। सनी देओल और अमीषा की इस फिल्म ने कल अपनी सिल्वर जुबली मनाई है। बॉलीवुड में 25 साल पूरे होने के इस जश्न के लिए फिल्म के एक्टर्स और डायरेक्टर के साथ पूरी स्टार कास्ट इसमें शामिल हुई। देखिए गदर की कामयाबी के 25 साल का जश्न कैसे मना।
3: गदर एक प्रेम कथा जो दर्शकों के दिलों को छू गई, जिस फिल्म का हर एक सीन दर्शकों के जहन में बस गया। उस गदर ने बड़े पर्दे पर 25 साल पूरे कर लिए हैं। गदर एक प्रेम कथा 15 जून 2001 को रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने कामयाबी के 25 साल पूरे किए तो इसका जश्न भी बेहद खास अंदाज में मनाया गया। गदर के डायरेक्टर अनिल शर्मा, एक्टर सनी देओल और अमीषा पटेल ने मिलकर फिल्म की सिल्वर जुबली मनाई। इस मौके पर फिल्म के निर्देशक अनिल शर्मा के साथ साथ फिल्म की पूरी स्टार कास्ट मौजूद थी। सनी देओल ने केक काट कर जश्न की शुरुआत की। सभी ने एक दूसरे को केक खिलाकर फिल्म की शूटिंग के दिनों को याद किया। एक खास मौका फिल्म की स्टार कास्ट के रीयूनियन का सेलिब्रेशन भी बन गया। सेलिब्रेशन में सनी और अमीषा जब स्टेज पहुंचे तो वहां मौजूद हर शख्स को गदर की इस जोड़ी की दीवानगी याद आ गई। 1947 के भारत पाकिस्तान विभाजन के बैकग्राउंड पर बनी गदर में सनी देओल ने तारा सिंह और अमीषा ने सकीना का किरदार निभाया था। फिल्म में एक सिख ड्राइवर की अपनी पाकिस्तानी पत्नी को वापस भारत लाने के संघर्ष की कहानी दिखाई गई थी। 25 साल पहले थिएटर्स में इस फिल्म ने तहलका मचा दिया था। इस फिल्म ने बम्पर कलेक्शन भी किया था। फिल्म में सनी देओल और अमीषा के साथ साथ अमरीश पुरी की एक्टिंग भी जमकर तारीफ हुई थी। अमरीश पुरी फिल्म में अमीषा पटेल के पिता के रोल में दिखे। गदर ने बंटवारे के दर्द को एक प्रेम कहानी के साथ ऐसे बुना कि ये फिल्म दर्शकों के दिलों पर छा गई। इस फिल्म के हर सीन ने दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी और यही वजह है कि अपने दौर की इस ब्लॉकबस्टर को आज बॉलीवुड के लिए मील का पत्थर माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
11: और चलिए अब बात कर लेते हैं सातवें बड़ा मंगल पर। मंदिरों में उमड़ी आस्था की।

0: देखिए, आज देश भर में ज्येष्ठ महीने का सातवां बड़ा मंगल मनाया जा रहा है और ये दिन भगवान हनुमान की उपासना और उन्हें प्रसन्न करने के लिए बेहद ही शुभ माना जाता है।
1: और देखिए, इस दिन संपूर्ण विधि विधान के साथ हनुमान जी की पूजा करने से उनके विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। इसके प्रभाव से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और तमाम मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद मिलता है।

0: हिंदू धर्म में ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले मंगलवार को बड़ा मंगल या पुढ़वा मंगल के नाम से जाना जाता है। पवन पुत्र हनुमान और भूमि पुत्र मंगल का आशीर्वाद बरसाने वाले इस पावन दिन पूरी श्रद्धा से पूजा अर्चना करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। सनातन परंपरा में संकट मोचन कहलाने वाले हनुमान जी की पूजा के लिए मंगलवार का दिन अत्यंत ही शुभ और फलदायी माना गया है। मान्यता के अनुसार सभी कार्यों में मंगल ही मंगल करने वाले इस दिन की महत्ता तब और बढ़ जाती है जब ये जेठ महीने में पड़ता है और बड़ा मंगल के नाम से जाना जाता है। लेकिन ज्येष्ठ के सातवें मंगलवार की महत्ता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि मंगलवार से मंगल कार्यों की शुरुआत हो रही है। ऐसे में हनुमान जी की पूरी श्रद्धा और भक्ति से की गई आराधना विशेष फलदायी मानी जा रही है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे करें हनुमान जी को प्रसन्न। प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान ध्यान करें, लाल रंग का वस्त्र धारण करें और पूजा और व्रत का संकल्प लें। हनुमान जी को लाल रंग के फूल, फल, धूप, दीप, नारियल आदि के साथ सिंदूर का चोला विशेष रूप से अर्पित करना चाहिए। लाल रंग के वस्त्र, जनेऊ, केसरिया ध्वज, बूंदी या बूंदी से बने लड्डू, गेहूं के आटे और लाल गुड़ से बना चूरमा, मीठा पान अर्पित करें। विधि विधान से पूजन के बाद मंगलवार व्रत की कथा और चालीसा का पाठ करें। पूजा के अंत में खैर की लकड़ी से हवन करना चाहिए। हवन के बाद हनुमान जी की आरती करना न भूलें। पूजा हवन के बाद जरूरतमंद लोगों को अन्न, वस्त्र और धन आदि का दान करना चाहिए। किसी भंडारी या प्रसाद में अपना सहयोग देकर भी इसका पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। हिंदू धर्म में बड़ा मंगल की पूजा शीघ्र ही फल प्रदान करने वाली मानी गई है। मान्यता है कि इस पावन दिन यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा भाव और विधि विधान से हनुमान जी की पूजन और व्रत करता है तो उसे हनुमान जी उसके सभी संकटों को हरते हुए सभी सुख प्रदान करते हैं। आज से मंगल ग्रह अपने नक्षत्र में बदलाव करने जा रहे हैं। इस दिन ऊर्जा, साहस और पराक्रम के प्रतीक मंगल कृतिका नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। मंगल का ये परिवर्तन कुछ राशियों के लिए सौभाग्य के नए द्वार खोल सकता है। खासतौर पर चार राशियों के जातकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। इन्हें जमीन जायदाद, वाहन सुख, करियर में तरक्की और आर्थिक उन्नति के शानदार अवसर प्राप्त हो सकते हैं। सबसे पहले मेष राशि, करियर में उन्नति के मजबूत योग बन रहे हैं। प्रमोशन मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होगी। कार्य क्षेत्र में काम की सराहना मिलेगी। आत्मविश्वास बढ़ेगा। नई नौकरी के अवसर मिलेंगे। अटका हुआ पैसा वापस मिलने की उम्मीद है। आय के स्रोतों में हो सकती है बढ़ोतरी। सिंह राशि, आय में वृद्धि हो सकती है। मान सम्मान भी बढ़ेगा। कार्यों में सफलता मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। निवेश से अच्छे लाभ की उम्मीद है। संपत्ति के पुराने विवाद सुलझ सकते हैं। वृश्चिक राशि, अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। समस्याओं का समाधान मिलेगा। बिगड़े हुए काम बन सकते हैं। छात्रों को सफलता मिलने के संकेत हैं। विदेश यात्रा के अवसर भी बन रहे हैं। धनु राशि, सुखद परिणाम की उम्मीद बन रही है। आर्थिक स्थिति में सुधार के योग बन रहे हैं। आय के नए रास्ते खुलेंगे। फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है। पुराने कर्ज से छुटकारा मिलने के योग बन रहे हैं। करियर में उन्नति के अवसर मिलेंगे। भाई बहनों का सहयोग मददगार साबित हो सकता है। मंगल के कृतिका नक्षत्र गोचर होने के दौरान मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करना शुभ माना जाता है। कहते हैं इस दिन अगर विधि विधान से बजरंग बली की आराधना की जाए तो शुभ फल की प्राप्ति जल्द होती है। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में आस्था, श्रद्धा और विश्वास का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। हर दिन श्रद्धालुओं के लिए नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। जून के पहले ही दो हफ्ते में ये आंकड़ा 35 लाख को भी पार कर चुका है।
2: उत्तराखंड की चारधाम यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, यात्रा मार्ग पर रौनक बढ़ती जा रही है। भगवान शिव का धाम केदारनाथ हो या भगवान विष्णु का बद्रीनाथ धाम, यमुनोत्री हो कि गंगोत्री, चारों धाम में आस्था और भक्ति का मेला लगा है। यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक 35.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं। बारह लाख 23 हजार से अधिक श्रद्धालु केदारनाथ धाम में हाजिरी लगा चुके हैं, जबकि करीब 11 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए हैं। गंगोत्री धाम में करीब 6 लाख तो वहीं यमुनोत्री धाम में 5.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। सबसे ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचे हैं, वहीं इस बार बद्रीनाथ धाम में भी श्रद्धालुओं का नया रिकॉर्ड बना है। धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, चारों ओर जय बद्री विशाल के जयकारे गूंज रहे हैं। घंटों लंबी कतारें, लगातार बदलता मौसम और यात्रा मार्ग पर जाम जैसी चुनौतियों के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं है। देश के प्रमुख उद्योगपति मुकेश अंबानी ने भी भगवान बद्री विशाल के दर पर हाजिरी लगाई और दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना की, साथ ही मंदिर समिति को 5 करोड़ रुपए का दान भी दिया। अंबानी परिवार की बद्रीनाथ धाम के प्रति गहरी आस्था रही है। साल 2015 से लगातार अंबानी परिवार बद्रीनाथ धाम पहुंच रहा है। धाम चाहे केदारनाथ हो या बद्रीनाथ का, हर तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ और आस्था का अद्भुत सैलाब देखने को मिल रहा है। कठिन मौसम, लंबी यात्रा और तमाम परेशानियों के बावजूद जब श्रद्धालु भगवान के चरणों में पहुंचते हैं, तो उनके चेहरे की खुशी और संतोष बता देता है कि ये यात्रा उनके लिए कितनी दिव्य, आध्यात्मिक और अविस्मरणीय रही है। चमोली से कमल नैन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद देखिए अमरनाथ यात्रा की भव्य तैयारी।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मौत

0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: The world's biggest soccer tournament has arrived, and you can trade the entire tournament on Kalshi. Spain is currently trading at over 17% to win it all, meaning a $100 trade pays out over $530 if they win soccer's biggest prize. On Kalshi, you're trading against other people in a live market. No house, no odds makers. For a limited time, download the Kalshi app and use code JUMP to get $10 when you trade $10. K-A-L-S-H-I. Kalshi. Trade the beautiful game. 18 plus only. Restrictions and eligibility requirements apply. Event contract trading involves risk and may not be suitable for all investors. Prices, values, and available markets may differ from those mentioned. For more information, see Kalshi.com/regulatory.
2: Turn your TV into a portal to serenity with Zen Life by Stingray. Enjoy wellness videos for yoga, sleep, meditation, and more, tailored to every moment of your day. Zen Life by Stingray, now available for free on Pluto TV. Stream now. Hey, never.
3: Desh dekh raha hai achhi khabrein. Good news today. Achhi khabar, sachi khabar.
4: Khabron ko parakh kar parosna हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।

मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
3: भारतीय महिला हॉकी टीम ने FIH नेशंस कप में जापान को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पक्की की अपनी जगह, अंक तालिका में टॉप पर पहुंची टीम। ज्येष्ठ महीने का आज सातवां बड़ा मंगल, बजरंगबली के आशीर्वाद के लिए मंदिरों में उमड़ रहे श्रद्धालु, आज से कृतिका नक्षत्र में गोचर करेंगे मंगल ग्रह। मथुरा में श्रीनाथ जी की भव्य नौका विहार मनोरथ का आयोजन, आमों से सजा श्रीनाथ जी का दरबार, भक्तों ने जमकर लगाए जयकारे, कलाकारों ने दी शानदार प्रस्तुति। झांसी के दो युवा वैज्ञानिक भाइयों का विदेश में डंका, वन्य जीवों की रक्षा के लिए बनाया वाइल्ड वॉच डिवाइस, ब्रिटेन ने दिया 1 करोड़ का इनाम। दिल्ली NCR में मौसम हुआ सुहाना, कई इलाकों में बारिश, ठंडी हवाओं से तापमान में आई गिरावट, हिमाचल और जम्मू में भी बारिश दर्ज की गई।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
3: और चलिए अब बात कर लेते हैं अमरनाथ यात्रा की। 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा तैयारियों को लगातार पुख्ता किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF समेत दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर अहम जगहों पर मॉक ड्रिल भी की जा रही है और साथ ही सुरक्षा तैयारियों को पुख्ता किया जा रहा है। हाल ही में नुनवान बेस कैंप में मॉक ड्रिल के बाद अब कुलगाम में भी मॉक ड्रिल की गई। इसके साथ ही अमरनाथ यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मल्टी लेयर सुरक्षा चक्र भी तैयार किया है।
4: बाबा बर्फानी के दर्शन में किसी किस्म की खलल ना पड़े, इसके लिए अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा मुस्तैद की जा रही है। किसी भी हालात से निपटने के लिए तमाम सुरक्षा एजेंसियां अपनी तैयारियों को धार देने में जुटी हैं। इसी कड़ी में कुलगाम पुलिस ने CRPF के साथ मिलकर सोमवार को मॉक ड्रिल किया। इस मॉक ड्रिल के तहत किसी भी तरह की आतंकी गतिविधि से कैसे निपटना है, इसका अभ्यास किया गया। साथ ही इमरजेंसी में मेडिकल मदद मुहैया कराने जैसी तैयारियों को भी परखा गया। डॉग स्क्वाड की मदद से बम या विस्फोटक सामग्री का पता लगाने के लिए चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। मेटल डिटेक्टर के जरिए जगह जगह सघन तलाशी की गई। अमरनाथ यात्रा से पहले से मॉक ड्रिल तमाम यात्रा रूट पर किए जा रहे हैं। कुलगाम एक अहम ट्रांजिट रूट है जहां से तीर्थयात्रियों के काफिले मुख्य बेस कैंपों की ओर बढ़ते हैं। जम्मू स्थित भगवती नगर बेस कैंप से अपनी गाड़ियों या बसों में आने वाले तीर्थयात्री जब कश्मीर घाटी में प्रवेश करते हैं तो वे कुलगाम जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग से होकर ही पहलगाम या बालटाल के मुख्य बेस कैंपों की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस वजह से कुलगाम में सुरक्षा और चेकिंग के बेहद कड़े इंतजाम किए जाते हैं। इससे पहले पहलगाम के नुनवान बेस कैंप में एक मेगा मॉक ड्रिल की गई जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ CRPF, SOG, ट्रैफिक पुलिस, टूरिस्ट पुलिस, फायर और इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट के जवानों ने हिस्सा लिया। मॉक ड्रिल में भगदड़ या किसी आतंकी साजिश को नाकाम करने का अभ्यास किया गया। सुरक्षा तैयारियों को पुख्ता करने के लिए हर एजेंसी ने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। भगदड़ जैसे हालात को पुलिस के जवानों ने संभाला। अमन में खलल डालने की साजिशों से निपटने में CRPF और SOG के जवानों ने अपनी क्षमता दिखाई तो NDRF और SDRF के जवानों ने भी रेस्क्यू में अपनी भूमिका को अंजाम दिया। अमरनाथ यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मल्टी लेयर सुरक्षा चक्र तैयार किया है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की करीब 670 कंपनियां यानी 65,000 से ज्यादा जवान, सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर पूरे यात्रा मार्ग पर तैनात रहेंगे। किसी भी आपात स्थिति या आतंक के खतरे से निपटने के लिए संवेदनशील मोर्चों पर विशेष कमांडो और QRTs की तैनाती की गई है। बालटाल और पहलगाम से लेकर पवित्र गुफा तक 2400 घंटे निगरानी अत्याधुनिक हाई डेफिनेशन ड्रोन और नाइट विजन CCTV कैमरों से की जाएगी। इस साल अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त के दिन सम्पन्न होगी। इस दौरान देश भर से लाखों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंचेंगे, जिनकी सफल और सुरक्षित तीर्थ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था हर स्तर पर मुकम्मल की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: चलिए अब आपको लेकर चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां अमरनाथ यात्रा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। ऐसे में जम्मू शहर में यात्रियों के लिए वेस्ट टू वंडर पार्क तैयार किया जा रहा है, जो कि श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए एक नया आकर्षण बन चुका है। आपको बता दें कि जम्मू के भगवती नगर में यात्री निवास के पास विकसित किया जा रहा है ये वेस्ट टू वंडर, जो कि अब अंतिम चरण में पहुंच गया है और अगले महीने आम लोगों के लिए खोलने की तैयारी भी की जा रही है। तवी नदी के किनारे विकसित किए जा रहे इस पार्क में देश और दुनिया के प्रसिद्ध स्मारकों की प्रकृतियां स्थापित की जा रही हैं।
5: पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड की तरफ से एक प्रोजेक्ट जो है वो बनाया जा रहा है। वो प्रोजेक्ट का नाम है वेस्ट टू वंडर पार्क, यानी जो वेस्ट हुआ मटेरियल होता है उससे एक पार्क बनाया जा रहा है और उस पार्क के बीच में कई स्मारक जो है वो स्थापित किए गए हैं। ये खास तौर पर आकर्षण का केंद्र इसलिए बन रहा है क्योंकि आगामी अमरनाथ यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है और देश भर के क्या विश्व भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु सबसे पहले जम्मू पहुंचेंगे और उनके लिए यहां पर जम्मू में खास तौर पर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आने वाला ये प्रोजेक्ट जो है स्थापित किया जा रहा है। इसमें कई स्मारक जो है वो बनाए गए हैं, तो इससे साफ तौर पर दर्शाता है कि देश भर से आने वाले जो पर्यटक हैं इसका खूब आनंद ले सकेंगे। और खास तौर पर ये भी एक एग्जाम्पल सेट की जा रही है कि जो वेस्ट मटेरियल होता है यानी वो किस तरीके से एक कारगर साबित होकर इन चीजों में काम आ सकता है, उसकी भी एक एग्जाम्पल जो है वो यहां पर दी गई है। खासतौर पर जो यहां पर इसका इस प्रोजेक्ट को तैयार कर रहे हैं, यहां पर कहा जा रहा है कि आगामी एक महीने के भीतर ही जो है ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार, केंद्र सरकार और खास तौर पर जो प्रशासन है वो हर एक संभव प्रयास कर रहा है।
3: क्या वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
6: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में, कहीं है रोमांस तो कहीं ड्रामा। दोपहर 1:28 से 3 तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
7: The weather in Central Ohio just got better, so why shouldn't your loan rate? CME Federal Credit Union wants to try to beat your current loan rate by 2% on autos and toys. Plus, enjoy no payments for 90 days on car loans and no payments for 60 days on motorcycles, boats, and more. With car rates as low as 4.99% APR and toy rates starting at 6.5% APR, it's the perfect time to save. Apply today at CMEFCU.org.
8: Terms apply. Minimum floor rates 4.99% APR cars, 6.50% APR other vehicles. Federally insured by NCUA.
9: Thumbtack presents. Uncertainty strikes. I was surrounded. The aisle and the options were closing in. There were paint rollers, satin and matte finish, angle brushes, and natural bristles. There were too many choices. What if I never got my living room painted? What if I couldn't figure out what type of paint to use? What if I just used Thumbtack? I can hire a top-rated pro that knows everything about interior paint, easily compare prices, and read reviews. Thumbtack knows homes. Download the app today.
10: All sports, all the time, right here on TuneIn. Catch live sports talk, expert analysis, and nonstop discussion from your favorite stations, like ESPN Radio.
11: Not missed out on one player that the Yankees wanted.
10: Big 12 Radio.
12: Today is Big 12 Insiders game day. We're breaking
10: and
12: down.
10: Talk sports.
13: I just can't see a turnaround in the way that we're going to perform and result.
10: And much more. Get your head in the game and never miss a minute of the action. Just search sports or ask your device to play your favorite sports talk station on TuneIn.
14: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
15: और दुर्भाग्य कहता है
16: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
17: अविश्वास में विश्वास बसता है,
18: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
19: गुड न्यूज टुडे।
20: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
20: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
21: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
20: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
15: और दुर्भाग्य कहता है
16: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
17: अविश्वास में विश्वास बसता है,
18: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
20: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
20: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
21: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
3: चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मॉनसून की। देश भर में लोग मॉनसून का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस बार इसकी रफ्तार थोड़ी धीमी बनी हुई है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और अगले 4 से 5 दिनों में कई और राज्यों तक मॉनसून पहुंच सकता है।

0: पहले सोमवार की सुबह बारिश, फिर दोपहर में तेज हवाओं के साथ बारिश ने दिल्ली एनसीआर का मौसम सुहाना बना दिया। बारिश की वजह से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। आज भी मौसम में कुछ राहत के संकेत मौसम विभाग ने जारी किए हैं। हालांकि सोमवार की तरह नहीं, अधिकतम तापमान 40 डिग्री के आसपास रह सकता है। दिल्ली एनसीआर में आज भी तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। दिल्ली एनसीआर में 2 से 3 दिन तक ऐसा ही मौसम रह सकता है। हालांकि 17 जून से मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा और तापमान में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर पश्चिम भारत में 18 जून से एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसका असर दिल्ली एनसीआर पर भी पड़ेगा और 20-21 जून को दिल्ली एनसीआर में बारिश हो सकती है।
1: ऐसे हवाएं आने का कारण अरबियन सी से भी मॉइस्चर फीडिंग हवाएं आने का कारण और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जहां नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पिछले 2 दिनों से एक्टिविटी हो रही है।
0: मौसम विभाग का कहना है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 21 जून तक बारिश होने की संभावना है, जबकि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में भी 21 जून तक गरज और चमक के साथ बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड और ओडिशा में 21 जून तक बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और विदर्भ में इस पूरे हफ्ते बारिश होने की संभावना है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, गोवा, महाराष्ट्र, कोंकण में छिटपुट बारिश की उम्मीद है। आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भारी वर्षा का अनुमान है।
2: देखिए, हिमाचल प्रदेश में नेक्स्ट 5 डेज की अगर हम बात करें तो कुछ एक स्थानों पे, खास करके जो हमारा मिड हिल्स है, हायर हिल्स, वहाँ पे बादल हमें लगातार छाए हुए देखेंगे और बहुत ही हल्के स्तर तक की बारिश भी है। कुछ एक जिलों में लगातार हमें रुक रुक के देखने को मिल सकती है। कोई भी सिग्निफिकेंट हालांकि वेदर नहीं होगा, जिनमें से मुख्य रूप से 17, 18 और 19 जून को मिड हिल्स में थंडर स्टॉर्म एक्टिविटीज की भी पॉसिबिलिटीज हैं। साथ में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं भी हमें देखने को मिल सकती हैं कुछ एक जिलों में, जैसा कि हमारा कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जैसे जिलों में। बाकी अन्य दिनों में या बाकी बचे हुए स्थानों पे कोई सिग्निफिकेंट वेदर नहीं होगा। कुछ एक स्थानों पे बादल जरूर छाए रह सकते हैं और थंडर शावर्स की एक्टिविटीज हमें देखने को मिल सकती है।
0: मौसम विभाग के मुताबिक मॉनसून के आगे बढ़ने की गति तेज हो गई है। यह आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बाकी हिस्सों के साथ साथ तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड और बिहार के नए हिस्सों में पहुंच गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 4 से 5 दिनों में मॉनसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां बेहद अनुकूल बनी हुई हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 से 4 दिनों में मॉनसून मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक के बाकी हिस्सों, छत्तीसगढ़ और बिहार को कवर कर लेगा। बाकी इलाकों में प्री मॉनसून की गतिविधियां तेज हो सकती हैं। शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
3: देखिए, डॉग्स अब सिर्फ पालतू जानवर नहीं रहे बल्कि परिवार का हिस्सा भी बन चुके हैं। चीन के शंघाई में एक ऐसा ही डॉग फ्री स्कूल खुला है जहां डॉग्स के लिए पढ़ाई, खेल, संगीत और फिटनेस तक की खास व्यवस्था की गई है। देखिए इंटरेस्टिंग रिपोर्ट।

0: मधुर धुनों के बीच खेलते ये डॉग्स किसी पार्क में नहीं बल्कि चीन के शंघाई में एक डॉग प्री स्कूल में है। यहाँ हर सुबह इन नन्हे मेहमानों की क्लास शुरू होती है। दिन भर के स्केड्यूल में खेलकूद, सोशलाइजेशन, हेल्दी स्नैक्स, फिटनेस ट्रेनिंग और लाइव पियानो म्यूजिक तक शामिल है। पॉथ्री नाम का ये डॉग प्री स्कूल पालतू डॉग्स को घर से लाकर पूरे दिन उनकी देखभाल करता है। स्कूल की टीम खुद डॉग्स को लेने और छोड़ने का काम भी करती है। स्कूल में डॉग्स के लिए खास किचन भी है जहां उनके लिए ताज़ा और हेल्दी ट्रीट तैयार किए जाते हैं। शाम की चाय की तरह यहां डॉग्स के लिए आफ्टरनून टी भी परोसी जाती है। सिर्फ यही नहीं, यहां डॉग्स को ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज कराई जाती है, आउटडोर ट्रेनिंग दी जाती है और उनकी मानसिक सेहत का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। इस अनोखे प्री स्कूल की शुरुआत जेनजांग ने की थी। अपने पालतू डॉग की चिंता और अकेलेपन की समस्या को देखते हुए उन्हें ये आइडिया आया। सिर्फ एक साल में यहाँ आने वाले डॉग्स की संख्या 10 से बढ़कर 200 तक पहुँच गई है। बढ़ती मांग को देखते हुए अब दूसरा सेंटर खोलने की तैयारी भी चल रही है।
1: 也不过没想过我们的老师，但可能慢慢的到了第三个月的时候，就有一波志同道合的叫小伙伴就加入我们了。然后那个时候我们的狗狗已经从十几只到了三四十只，到了第七、第十个月的时候，我是发现越来越多的家长会来，因为我们那个时候的覆盖范围已经3到5公里，已经包不住了。我们的狗狗越来越多，跨区的狗狗会来小区。对，然后到现在为止，我们现在有200只狗狗。
0: चीन में घटती जन्म दर और बदलती जीवन शैली के बीच पालतू जानवरों पर खर्च तेजी से बढ़ रहा है। उद्योग से जुड़े आंकड़ों के मुताबिक चीन का शहरी पेट मार्केट 2025 में 312 अरब युआन से ज्यादा का हो चुका है और अगले कुछ वर्षों में इसके 405 अरब युआन के पार पहुंचने का अनुमान है। यानी अब डॉग्स के लिए भी स्कूल, फिटनेस और लग्जरी लाइफस्टाइल एक बड़ा कारोबार बन चुका है। ऐसे में पियानो के धुनों से लेकर फिटनेस ट्रेनिंग और स्पेशल ट्रीट्स तक, शंघाई का ये डॉग प्री स्कूल दिखाता है कि बदलती दुनिया में पालतू जानवरों की जगह अब परिवार के सबसे खास सदस्यों में हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: चलिए इसी के साथ इन तमाम खबरों के बाद लंच टाइम में आज के लिए बस इतना ही, और चलिए हम दोनों को इजाजत दीजिए। अच्छे और पॉजिटिव खबरों के लिए लगातार देखते रहिए जीएनके।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: स्टार्टिंग अ बिजनेस, पुट इट इन द राइट हैंड्स विद LegalZoom, बिकॉज द लास्ट थिंग यू'd वांट टू डू इज लेट इट फॉल इनटू द रॉन्ग हैंड्स। With easy-to-use tech and 25 years of experience, LegalZoom offers personalized support to help ensure your business is formed accurately and complies with state regulations. So if you need a legal hand, visit LegalZoom. LegalZoom provides access to independent attorneys and self-service tools. LegalZoom is not a law firm and does not provide legal advice.
5: Get into the huddle with TuneIn. TuneIn brings you nonstop sports talk, live games, and expert analysis all in one place. From kickoff to final whistle, follow your favorite teams all season long with ESPN Radio, Talk Sport, Big 12 Radio, and more. Plus, listen to your favorite sports broadcasts on over 200 devices, so you never miss a moment of sports action with TuneIn. Stay in the game with TuneIn and start listening now.
6: अच्छी खबरें, Good News Today. अच्छी खबर, सच्ची खबर.
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
3: कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों का पहला जत्था गैंगटॉक पहुंचा। पहले जत्थे में कुल 44 लोग, इनमें 32 पुरुष और 12 महिलाएं। अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में, सुरक्षा इंतजाम को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस समेत कई एजेंसीज ने की मॉक ड्रिल। ज्येष्ठ महीने का सातवां बड़ा मंगल, बजरंग बली के आशीर्वाद के लिए मंदिरों में उमड़ रहे श्रद्धालु। आज से कृतिका नक्षत्र में गोचर करेंगे मंगल ग्रह। भारतीय महिला हॉकी टीम ने FIH नेशंस कप में जापान को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पक्की की अपनी जगह, अंक तालिका में टॉप पर पहुंची टीम। दिल्ली NCR में मौसम हुआ सुहाना, कई इलाकों में बारिश, ठंडी हवाओं से तापमान में भी आई गिरावट, हिमाचल और जम्मू में बारिश।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
3: पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में तैयारियां तेज, 3 जुलाई से शुरू हो रही है पवित्र यात्रा। अमरनाथ जी यात्रा से पहले अनंतनाग पुलिस ने पहलगाम के टैक्सी स्टैंड पर की मॉक ड्रिल, NDRF, SDRF, जम्मू कश्मीर पुलिस समेत कई टीमों ने हिस्सा लिया। इस अभ्यास में सुरक्षा खतरों, लोगों को सुरक्षित निकालने की प्रक्रिया, संकट प्रबंधन और अलग अलग एजेंसीज के बीच तालमेल जैसी कई आपातकालीन स्थितियों का किया गया अभ्यास। टीम ने सालाना यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और उनके सुचारू आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए तेजी से कार्रवाई करने के तरीकों का अभ्यास किया। 28 अगस्त तक चलेगी पवित्र अमरनाथ यात्रा, श्रद्धालु में जबरदस्त उत्साह, बड़ी संख्या में यात्रा के लिए पंजीकरण करा रहे हैं श्रद्धालु। जम्मू में अमरनाथ यात्रियों को मिलेगा नया तोहफा, कबाड़ से बना वेस्ट टू वंडर पार्क। पार्क में दुनिया और देश की 14 मशहूर स्मारकों की प्रतिक्रियाएं बनाई जा रही हैं, 40 फीट ऊंची बनाई जा रही है स्टैचू ऑफ यूनिटी की प्रतिमा। पार्क में कबाड़ और रिसाइकल से हवा महल से लेकर स्टैचू ऑफ यूनिटी का किया गया निर्माण। अमरनाथ यात्रियों के लिए आकर्षण बनेगा वेस्ट टू वंडर पार्क, स्थानीय कारोबार को भी मिलेगा इससे बढ़ावा। जम्मू स्मार्ट सिटी मिशन के तहत लगभग 11 करोड़ रुपए की लागत से बना ये पार्क, 80% पार्क का काम पूरा। चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब, अब तक 35 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। सबसे ज्यादा बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचे यहां भक्त, आंकड़ा पहुंचा 12.5 लाख के पार। बद्रीनाथ धाम को लेकर भी भक्तों में जोरदार उत्साह, अब तक 11 लाख से अधिक लोगों ने दर्शन किए। यमुनोत्री और गंगोत्री में उमड़ा आस्था का सैलाब, दोनों जगहों पर करीब 12 लाख भक्तों ने दर्शन पूजन किए। चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह, अब तक 50 लाख से अधिक भक्तों ने करा रजिस्ट्रेशन। मथुरा में श्रीनाथ जी की भव्य नौका विहार मनोरथ का आयोजन, आमों में सजा श्रीनाथ जी का दरबार। श्री जी को नौका पर बिठाकर कराया गया नौका विहार मनोरथ, भक्तों ने जमकर लगाए जयकारे। नौका विहार मनोरथ पर भगवान को लगाया गया विशेष भोग, भगवान की उतारी गई विशेष आरती। नौका विहार मनोरथ पर विशेष कार्यक्रम का भी आयोजन, कलाकारों ने दी शानदार प्रस्तुति। मनोरम झांकी के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु, भगवान के दिव्य स्वरूप का आनंद लिया। उज्जैन में बड़ा मंगल पर बाबा महाकाल की उतारी गई भस्म आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। बाबा महाकाल का हरिओम जल से किया गया अभिषेक, दूध दही घी शहद और फलों के रस से बने पंचामृत से की गई पूजा। बाबा महाकाल का भांग चंदन सिंदूर और आभूषणों से किया गया राजस्व रूप श्रृंगार, सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी। केरल के पथनमथिट्टा में केंद्रीय मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने सबरीमाला मंदिर में की पूजा पाठ, भगवान का लिया आशीर्वाद। इस्कॉन ने हुबली में श्री श्री राधा गोविंद देव जी मंदिर के पहले चरण का उद्घाटन, 22 जून को होगी प्राण प्रतिष्ठा, श्रद्धालुओं के लिए 10 अगस्त से खुलेंगे कपाट। देशभर में आस्था और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है बड़े मंगल का त्यौहार, आज के दिन बजरंग बली के दर्शन पूजन के लिए मंदिरों में उमड़ रहे श्रद्धालु। हनुमान जी की पूजा के लिए बेहद शुभ माना जाता है बड़े मंगल का दिन, विधि विधान से पूजा करने से मिलती है बजरंग बली की विशेष कृपा। ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले मंगलवार का होता विशेष महत्व, मान्यता है कि ज्येष्ठ मंगलवार को ही हुई थी भगवान श्री राम और भगवान बजरंग बली की मुलाकात। भगवान बजरंग बली की कृपा से दूर होती है जीवन की बाधाएं, मनोकामनाओं की पूर्ति का मिलता है आशीर्वाद। ज्येष्ठ मंगल को ही भगवान हनुमान को अमर होने का वरदान मिलने की मान्यता, ज्येष्ठ में किए गए शुभ कार्य के कई गुना फलदायी होने की मान्यता। अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर में ज्येष्ठ माह के साथ बड़े मंगल पर उमड़ा भक्ति का सैलाब, दर्शन के लिए उमड़ी हजारों श्रद्धालुओं की भारी भीड़। सुबह से ही मंदिर के बाहर लगी भक्तों की लंबी कतार, भक्तों ने हनुमान जी के दर्शन कर चमेली का तेल सिंदूर और बेसन के लड्डू अर्पित किए। साथ ही बड़े मंगल पर बजरंग बली की मूर्ति का भव्य श्रृंगार, भगवान को अर्पित फूलों की मालाएं की गई और आभूषण भी अर्पित किए जाते हैं। साथ ही बड़े मंगल पर श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, राम मंदिर में तैनात दिखे जवान। ज्येष्ठ महीने के मंगलवार को बड़ा मंगल और बुढ़वा मंगल भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में इस दिन हनुमान जी से शक्ति साहस और बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए की जाती है पूजा। अयोध्या में सातवें बड़े मंगल पर राम मंदिर में लगा भक्तों का मेला, बड़ी संख्या में भक्तों ने किए रामलला के दर्शन। रामलला के दर्शन के लिए सुबह से मंदिर परिसर में लगी भक्तों की कतार, भक्तों ने लगाया जय श्री राम के जयकारे। प्रयागराज के बंधुआ हनुमान मंदिर में ज्येष्ठ माह के साथ बड़े मंगल पर उमड़ा भक्ति का सैलाब, दर्शन के लिए लगी भक्तों की लंबी कतार। सुबह से ही मंदिर के बाहर लगी भक्तों की लंबी कतारें, भक्तों ने हनुमान जी के दर्शन कर लगाए जयकारे। बड़े मंगल को लेकर हनुमान मंदिर को भव्य फूलों से सजाया गया, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम का 62वां भव्य स्थापना दिवस, देश विदेश से लाखों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। नैनीताल स्थित कैंची धाम में उमड़ा आस्था भक्ति का सैलाब, बाबा नीम जरौली महाराज के दर्शन कर आशीर्वाद ले रहे श्रद्धालु। मंदिर परिसर बना भक्ति सेवा और श्रद्धा के अद्भुत संगम का साक्षी, हर ओर सुनाई दी बाबा नीम करौली के जयकारों की गूंज। श्रद्धालुओं ने की जीवन में सुख शांति और समृद्धि की कामना, विशाल भंडारे में हजारों लोगों ने ग्रहण किया बाबा का महाप्रसाद। कैची धाम में बाबा के दर्शन के लिए देखी भक्तों की लंबी कतार, पूरा मंदिर परिसर भक्ति में माहौल में डूबा नजर आया, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। वन्य प्रेमियों के लिए गुड न्यूज, इस साल एक हफ्ते की देरी से बंद होगा जूनागढ़ का गीर जंगल सफारी, 15 जून के बदले अब 23 जून को बंद होगा गिर जंगल सफारी, 23 जून तक पर्यटक उठा सकेंगे आनंद। बारिश में देरी होने के चलते वन विभाग ने बंदी की तारीख को आगे बढ़ाने का फैसला लिया, 22 जून की शाम तक गिर सफारी का आनंद ले सकते हैं अब सैलानी। अक्टूबर से अब तक 2,00,000 से अधिक पर्यटकों ने की गिर सफारी की यात्रा, 22 जून तक होगी बुकिंग। सिंह दर्शन के लिए भी रिकॉर्ड तोड़ पहुंचे पर्यटकों की संख्या, 8,00,000 से अधिक पर्यटकों की दर्ज कराई गई उपस्थिति। अयोध्या में रामलला को चढ़ा दुनिया का सबसे महंगा जापानी मियाज़ाकी आम, लोगों के बीच बांटा गया प्रसाद। अयोध्या के किसान ओम प्रकाश सिंह ने जापानी मियाज़ाकी आम की खेती की, देखने के लिए लग रही है भीड़। भीषण गर्मी के बीच पहाड़ों की ओर रुक कर रहे हैं सैलानी, बड़ी संख्या में श्रीनगर पहुंचे पर्यटक। शिकारा राइड का आनंद ले रहे हैं सैलानी, गार्डन का भी लुत्फ उठा रहे हैं पर्यटक। झांसी के दो युवा वैज्ञानिक भाइयों का विदेश में डंका, वन्य जीवों की रक्षा के लिए बनाया वाइल्ड वॉच डिवाइस, ब्रिटेन ने दिया 1 करोड़ का इनाम। सहारनपुर के किसान ने रचा खेती में नया इतिहास, हरौली गांव में उगा रहा है दुनिया का महंगा मियाज़ाकी आम, 3 लाख रुपए किलो है कीमत। लाल बैंगनी रंगत वाला आम बना आकर्षण का केंद्र, किसान को इस सीजन में बेहतर उत्पादन की उम्मीद, आम को दुबई में एक्सपोर्ट की तैयारी। दरभंगा एयरपोर्ट पर दिखी मिथिला संस्कृति की शानदार झलक, धूमधाम से मनाया गया 7वीं सुविधा दिवस। यात्रियों का गुलाब देकर फूल देकर किया गया स्वागत, माथे पर तिलक लगाकर निभाई गई मिथिला की परंपरा। लोकगीत संगीत से गूंजा दरभंगा एयरपोर्ट परिसर, कलाकारों ने पेश की मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुति। चंडीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग कार्यक्रम का आयोजन, सीएम सैनी ने लोगों के साथ किया योग। गोरखपुर में भी योग दिवस से पहले योग कार्यक्रम का आयोजन, सांसद रवि किशन ने एम्स के डॉक्टर्स और छात्रों के साथ योग किया। विजयवाड़ा में स्वच्छ भारत चाय पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन, प्रहलाद जोशी ने किया पौधारोपण। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में न्याय प्रबोध अवेकनिंग टू जस्टिस कार्यक्रम में शामिल हुए गवर्नर किविंदर गुप्ता। प्रयागराज में पुलिस की शानदार पहल, पुलिस ने 210 खोए मोबाइल लौटाए, चेहरों पर लौटी मुस्कान। रायसेन में जनकल्याण शिविर का आयोजन, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान हुए शामिल। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में पुलिस ने की शानदार पहल, ग्रामीण इलाकों के युवाओं के लिए बनाया रीडिंग रूम। शिलांग में केंद्रीय नितिन गडकरी ने 3,214 करोड़ की परियोजनाओं का किया शिलान्यास, सीएम कॉनराड के संगमा भी रहे मौजूद। पुलिस भर्ती का परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए गुड न्यूज, परीक्षार्थियों के लिए पूर्वी रेल चला रही है स्पेशल ट्रेन। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन, आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली जोड़े शामिल हुए।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
4: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में, कहीं है रोमांस तो कहीं ड्रामा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
5: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
6: You're listening Uninterrupted. With TuneIn Premium, enjoy commercial-free news and music, plus ad-free ESPN Radio, and fewer ads across other stations. Whether you're listening for the latest news or the next big game, never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go, so you can hear more. Ready to upgrade your listening? Upgrade to TuneIn Premium now.
7: तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है खबरें, कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away.
1: You're listening to CNBC.
2: This is 80s hits exclusively on TuneIn. This is Pop Hits.
3: Keep it on smooth jazz.
4: This is Roots Reggae
5: exclusively on TuneIn.
6: This is classic hip hop
7: exclusively on TuneIn.
0: Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected. The shows, music, and news you love anytime you want.
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
16: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
17: नीट पेपर की सुरक्षा को लेकर सरकार का बड़ा कदम, टेलीग्राम ऐप पर लगाई SIRO, पेपर लीक में हो रहा था इसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल, किस जून को हो रहा है नीट का री एग्जाम। कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों का पहला जत्था गंगटोक पहुंचा, पहले जत्थे में कुल 44 लोग, इनमें 32 पुरुष और 12 महिलाएं। अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में, सुरक्षा इंतजाम को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस समेत कई एजेंसीज ने की मॉक ड्रिल। ज्येष्ठ महीने का सातवां तो बड़ा मंगल, बजरंग बली के आशीर्वाद के लिए मंदिरों में उमड़ रहे श्रद्धालु, आज से कृतिका नक्षत्र में गोचर करेंगे मंगल ग्रह। भारतीय महिला हॉकी टीम ने FIH नेशंस कैंप में जापान को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पक्की की अपनी जगह, अंक तालिका में टॉप पर पहुंची टीम। दिल्ली NCR में मौसम हुआ सुहाना, कई इलाकों में बारिश, ठंडी हवाओं से तापमान में भी आई गिरावट, हिमाचल और जम्मू में भी बारिश।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: आप सोच रहे होंगे आज हमारे शो सास बहू और बेटा में ये दोनों खास मेहमान कौन है। ये है सयानी बुल्ली और ये है भोला पिल्लू, और आज ये दोनों अपने अपने नजरिए से सुनाएंगे हमें एंटरटेनमेंट की दुनिया की हर कहानी। तो क्या आप सब हैं तैयार, क्योंकि ये दोनों तो हैं एकदम रेडी। तो चलिए फिर फटाफट शुरू करते हैं हमारा एंटरटेनमेंट से भरपूर ये एपिसोड हेडलाइंस के साथ।
1: बहू और बेटियां की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए शुरू हुई ईशा और सूरज की आशिकी, आया मौसम रोमांस का।

0: तुम देना साथ में राखे सेट पर।
1: तू अगर मेरी ये उजाले तेरे, तू अगर मेरी
2: अपराजिता का सरप्राइज,
1: तू अगर मेरी मैं हूँ तेरा।
2: रक्षित को मिला बर्थडे का तोहफा,
1: मोहब्बत का तू कलाब है मेरा जहां।
2: खास बर्थडे पर कटा सैंडविच वाला केक,

स्टार प्लस के सीरियल ओ हमनवा तुम देना साथ मेरा में आज है रक्षित का जन्मदिन और उसे अपने ही जन्मदिन पर मिल गया है तोहफा, और ये तोहफा किसी और ने नहीं बल्कि अपराजिता ने दिया है। जरा देखिए कैसे उसने अपने हाथों से सैंडविच का केक बनाया और लेकर आई रक्षित के लिए। ये देख रक्षित बहुत खुश है। भाई आज तो रक्षित ने अपना बर्थडे अपराजिता के साथ मनाया है, सैंडविच वाला केक काटा है, अपराजिता को अपने हाथों से केक खिलाया है। इतना ही नहीं, इस बर्थडे पार्टी में चाय की चुस्कियाँ भी ली जा रही हैं।

0: भई ये दिन तो खास होना ही है क्योंकि दोनों के बीच की दोस्ती रंग ला रही है और दोनों एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं। तभी तो देखिए कैसे आज रक्षित ईरा की तारीफ करने पहुँचे हैं, वो भी अपराजिता के लिए। असल में अपराजिता ईरा के कैबिन में है और उसके लैपटॉप पर अपने द्वारा भेजा हुआ मैसेज डिलीट कर रही है और उसे बचाने के लिए रक्षित ईरा की तारीफ पर तारीफ किए जा रहे हैं और तो और उसके साथ थमक भी रहे हैं।
1: ये तुम बार बार पीछे क्या देख रहे हो?
2: फ्यूचर
1: फ्यूचर रक्षित सर तो काफी रोमांटिक है। पहले चैट डिलीट करती हूँ, बाद में रोमांटिक फिल्म देखूंगी।
0: खैर अपराजिता का काम हो गया और रक्षित ने भी ईरा को टाटा बाय बाय कह दिया। और ऐसे में जब अपराजिता और रक्षित फिर से मिले तो अपराजिता ने उसे थैंक यू भी कहा और कहे भी क्यों ना, भाई दोस्त ही तो दोस्त के काम आता है। अब देखना होगा ये दोस्ती कब प्यार में बदलेगी। फिलहाल तो रक्षित के चेहरे की खुशी दुगनी होती है जब जब उसके सामने अपराजिता होती है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
3: पति ब्रह्मचारी की कहानी का अपडेट देखकर तो हमारे सयानी बिल्ली और भोला बिल्लू भी हो गए हैं थोड़े से परेशान। ओ माय गॉड, अब ऐसा क्या हुआ है इनकी कहानी में? क्योंकि इनकी कहानी में भी लगातार आते हैं उतार चढ़ाव, कभी खुशी कभी गम, कभी मिलना कभी बिछड़ना, कभी प्यार कभी तकरार। लेकिन ऐसा ही तो होता है हमारी जिंदगी में भी एक्चुअली, लेकिन इनकी कहानी में ना कुछ ज्यादा ही स्ट्रेच हो रहा है। लेकिन फिर भी हमारे लिए तो आता है भरपूर मनोरंजन। लेकर चलते हैं आप सबको पति ब्रह्मचारी के सेट पर।

ईशा को प्रपोज करने की। सीरियल में आया फिल्मी रोमांस। दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में आज आ गया है मौसम रोमांस का, और इस रोमांस के रंग में ईशा और सूरज रंग चुके हैं। असल में सूरज ने किया है प्लान ईशा को प्रपोज करने का, और इसके लिए देखिए उसने कितनी सारी तैयारियां की है। कमरे को बलून से सजाया है, ईशा को जो जो पसंद है सूरज वो सब लाया है, यानी कि टीवी पर आईफिल टावर है, नकली स्नो है और है फूल। और ईशा को प्रपोज करने की सूरज की पूरी पूरी तैयारी, यानी कि इनके प्यार की गाड़ी आगे बढ़ चुकी है।

ऐसे में देखिए कैसे सूरज ईशा को अपने हाथों से पाव भाजी भी खिला रहा है, और ऐसे में दोनों की आंखें हुई चार और दोनों एक दूसरे में खो गए।

भाई इतना ही नहीं, आज तो सूरज ने ईशा के लिए एक और सरप्राइज प्लान किया है। वो लेकर आया है ईशा के लिए ये दिल वाला केक, और इस केक में छुपी है अंगूठी, जिसे पहनाकर सूरज ईशा को प्रपोज करना चाहता है। हालांकि सूरज वहां से चला जाता है किसी काम के चलते, लेकिन ईशा को वो रिंग मिल जाती है।

0: सूरज यही सारी चीजें घर आके करता है कि वो लोग उन लोगों का कुछ प्लान हो जाता है तो सूरज यही प्रोजेक्टर लगा के आईफिल टावर और तीन चार अलग अलग चीज़ें जो मैंने कही थी वो सारी करवाता है। मैं स्नोफॉल भी होती है तो उसमें ईशा खुश हो जाती है, फिर फ्लावर्स भी देता है, मतलब एक एक एक एक, एक, एक चीज़ हो रही है। जैसे दिलवाले में थी, शाहरुख खान ने 5 मिनट मांगे थे और अलग अलग अलग चीज़ें कर रहा था, तो वैसे ही सूरज डिफरेंट वे से ईशा को प्रपोज कर रहा है। और उसमें वो कैसे वो खुद ही स्नोफॉल कर रहा है, खुद ही सब सारी चीज़ें, तो ईशा उसमें मेस्मराइज्ड हो जाती है कि वाह ये अच्छा है। तो सूरज उसमें वही कहता है कि हाँ ये सारी चीज़ें रियल नहीं है, मैं रियल जगह नहीं ले जा रहा हूँ, पर मेरे दिल में जो चीज़ है, मेरे दिल में जो फीलिंग है आपके लिए वो बिल्कुल रियल है, ये सारी चीज़ें तो चलो बनाई है जो आप कह रहे थे उससे। तो मतलब ब्रेकफास्ट में जैसे पाव भाजी, रियल नहीं है, मैं रियल जगह नहीं ले जा रहा हूँ, पर मेरे दिल में जो चीज़ है, मेरे दिल में जो फीलिंग है आपके लिए वो बिल्कुल रियल है, ये सारी चीज़ें तो चलो बनाई है जो आप कह रहे थे उससे। तो मतलब ब्रेकफास्ट में जैसे पाव भाजी खिला दी, क्योंकि पाव भाजी से ईशा और सूरज बहुत कनेक्टेड है, तो ऐसे सूरज ने प्रपोजल प्लान किया। और केक कटिंग होती है, एक प्यारी सी केक लाया होता है सूरज, तो उसी में फिर सूरज को जाना पड़ता है और मुझे बार बार टोक रहा होता है सूरज की ये साइड से कट करिए, ये साइड से कट करिए, तो ईशा भी एक शॉक हो जाती है कि ये साइड क्यों, ये साइड क्यों नहीं। तो क्योंकि फिर बाद में पता चलता है कि सूरज ने केक में रिंग छुपा के रखी थी, इसलिए सूरज को भी शायद वो नहीं हो रहा था कि ये साइड है या ये साइड है।
1: भाई इस केक में रिंग वाला आइडिया किसी और का नहीं बल्कि सूरज के भाई का ही था, जो सूरज को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन अब तो केक में रिंग जा चुकी है।
2: जब तेरी इच्छा आएगी ना तब तू उसे ये केक कट करवा, उसको एक मस्त सरप्राइज मिलेगा।
3: सरप्राइज? आपने केक में रिंग छुपाई
2: लगा लिया ना तूने अपना आईएस वाला दिमाग है।
3: हाँ रिंग छुपाएगा
2: एकदम फटके आइडिया,
3: एकदम बकवास घटिया खिसा पिटा आइडिया। ये आइडिया ये अरब ने दिया और मैंने मना कर दिया।
4: टेंशन चल ही रहा है कि मुझे मिलना है ईशा जी से कुछ भी करके, एंड जब लड़कियों से मिलने गए तो उन्होंने ये बोल दिया कि जब तक हमें प्रपोजल अच्छे से नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, तो ईशा जी का खास करके डिमांड है बहुत सारा कि मुझे ऐसे प्रपोज किया जाए, वैसे प्रपोज किया जाए, तो बस उसी सब की तैयारी है जो कि पूरन भाई और आरव मिलके सूरज की तैयारी करवा रहे हैं। और उसी में पूरन भाई भी बहुत सारा दिमाग लगा रहे हैं, केक के अंदर रिंग रख रहे हैं, छुपा रहे हैं कि ऐसे ईशा जब केक कट करेगी उसे रिंग दिखेगा, सरप्राइज मिलेगा। अब सूरज यही सब टेंशन में है कि रिंग तो डाल दिया है केक में, लेकिन केक किसके हाथ में जाने वाला है ये नहीं पता, क्योंकि ईशा जी वो केक दयालु बन के घर में सभी को बांट रही हैं।
1: में देखिए अब ईशा के हाथ रिंग तो लग गई है, देखना होगा कि इस रिंग के जरिए कैसे सूरज ईशा को प्रपोज करता है। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
5: जी हाँ गुरु और रूहानी, सही कहा आपने, है ना, हमारे आज के मेहमान सुपर क्यूट, ये हैं भूला बिल्लू और ये हैं हमारी सयानी बिल्ली, दोनों ही हैं आंख के भी बड़े फैन। तो चलिए लेकर चलते हैं आप सबको इस जुनूनी के सेट पर और देखते हैं कैसा है यहाँ पर इश्क का जुनून।
6: तेरे बिना बेसुमारी बेसुमारी रतिया ओ सजना, तेरे बिना बेसुमारी बेसुमारी रतिया।
1: गुरु और तेजस्वी की शादी की रस्में

दंगल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में तेजस्वी सजा रही है गुरु से शादी करने के सपने और देखिए कैसे दुल्हन बन सज धज कर तेजू पहुंच गई है मंडप में और साथ है दूल्हे राजा। ऐसे में शुरू हो चुकी है शादी की सभी रस्में, पर आज तो तेजस्वी की खुशी का ठिकाना ही नहीं है। उसे पूरा यकीन है कि गुरु उससे शादी कर रहा है रूहानी को छोड़कर, और देखिए कैसे जिस शादी की रस्में निभाते हुए वो काफी खुश

लेकिन तेजस्वी को जोर का झटका तो तब लगता है जब इस शादी में आ जाती है रूहानी, जो आकर उसे ये बताती है कि दूल्हे की हेरा फेरी हो चुकी है जिससे वो शादी रचा रही है। वो गुरु है ही नहीं बल्कि उसका दोस्त है। ऐसे में देखिए कैसे गुस्से में लाल हो चुकी है तेजस्वी। तेजस्वी गुस्से में रूहानी पर वार कर रही है, लेकिन रूहानी ने भी तेजस्वी को सबक सिखाया और गुस्से में तेजस्वी वहाँ से चली गयी।

यानी कि रूहानी ने गुरु और तेजस्वी की शादी होने ही नहीं दी और इस शादी को रोक लिया। लेकिन तेजू कहाँ चुप बैठने वाली है, गुस्से में वो पहुँच गयी घर में, जहाँ घर में पहले से ही गृह प्रवेश की तैयारियाँ हो चुकी थी। लेकिन गुस्से में तेजस्वी ने कलश को लात मारी और सबको ये बताया कि उसकी शादी गुरु से हुई ही नहीं है,

0: Senegal. E quello qua?
1: Non si è sciato per me volta, dove la nani cosa è? Me? Una stanza che non deve mettere in sciato per me.
2: तो भाई अब गुस्से में तेजस्वी क्या कदम उठाएगी, कैसे रूहानी इसका सामना करेगी, ये देखना होगा काफी दिलचस्प। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
3: हमारी सयानी बिल्ली और भोला बिल्लू दोनों हो गए हैं उतावले। अब इन्हें जाना है रीत और राघव के पास, क्योंकि इनकी कहानी में भी आते ही रहते हैं उतार चढ़ाव। तो चलो लेकर चलते हैं तुम्हें जाने अनजाने हम मिले के सेट पर, और आप सबको भी दिखाते हैं कुछ इंटरेस्टिंग बिहाइंड द सीन्स। लेट्स चेक इट आउट।

0: राघव पर फूटा रीत का गुस्सा। शुरू हुई राघव की परीक्षा। जी टीवी के सीरियल जाने अनजाने में आज रीत गुस्से से बौखलाई हुई है। तभी तो देखे कैसे वो पहुंच गई है राघव के कमरे में, राघव को परेशान करने और तो और उस पर अपना गुस्सा उतारने। ये देखकर राघव भी हैरान है।
1: आपने देखा कि मैं पीयू के साथ अपना दिल लगा रही हूँ, थोड़ा दौर कर होने की कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा हंस रही हूँ, तो आपसे देखा नहीं क्या, आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ है ना राघव? मैं ये कह रही हूँ कि आपने मना किया पीयू को मेरे साथ खेलने के लिए, मेरे पास भी आने के लिए, क्योंकि आप मुझे खुश देख ही नहीं सकते।
2: क्या बकवास कर रही हो? मैंने पीयू को मना किया तुमसे बात करने। इनफैक्ट मैं तो पीयू को
1: झूठ मत बोलिए राघव। पीयू ने खुद मुझसे कहा है कि उसे किसी ने मना किया, और इस घर में आपके अलावा और कोई नहीं चाहेगा कि मैं खुश ना रहूं।
0: भाई रीत को तो यही लगता है कि राघव उसकी खुशियां देखना नहीं चाहता, इसीलिए उसने बिना सोचे समझे ही राघव पर सारे इल्जाम मर दिए। लेकिन राघव ने बड़ी ही समझदारी से रीत को समझाया कि पीहू ने उसका नाम नहीं लिया है, बस पीहू ने बस इतना ही कहा है कि उसे रीत के साथ खेलने से मना किया गया है। खैर राघव इस बात का पता लगा कर ही रहेगा, लेकिन रीत वो इमोशनल होने लगती है और अपनी बीती यादों में खो जाती है कि कैसे वो राघव के साथ वो पल बिताया करती थी जब दोनों मिलकर अपने बच्चे का इंतजार

0: वैसे बीती यादों में रीत को अपना वो दिन भी याद आ गया जब उसने अपने बेटे का नाम रखा था और कैसे राघव ने उससे वादा किया था कि वो दोनों को बहुत प्यार देगा। उन दिनों की बात थी जब इनकी खुशियों को नजर नहीं लगी थी। खैर अब तो खुशियों को नजर लग चुकी है। ऐसे में राघव सिर्फ समाधान ढूंढ रहा है, इसलिए गुरु माँ के पास पहुंच गया है। ऐसे में गुरु माँ उसे काम देती है हल्दी पीसने का। बस फिर क्या, राघव वो हल्दी पीसने लगता है जो कि खास पूजा के लिए पीसी जा रही है। अब देखना होगा क्या गुरु माँ और ये हल्दी राघव को नया रास्ता दिखाएगी। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
1: हमारी सयानी बिल्ली है ना, इन्हें तो दूध पीना बहुत पसंद है और ये तो होता है इनकी सेहत के लिए भी बहुत ही रॉकिंग। लेकिन एक बार ये जल्दबाजी में पी गई गरम गरम दूध, चल गई इनकी जीप और हो गया शॉकिंग। एग्जैक्टली ऐसा ही है हमारा ये अगला सेगमेंट जहां हम दिखाते हैं आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया से अलग अलग रंग। ये तो है रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज।
2: बॉलीवुड ओटीटी और टीवी की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें देख लीजिए। गंगा माई की बेटियां के सेट से ये बिहाइंड द सीन नजारे, जहां पर डांस मस्ती भी चल रही है और शूट भी।

0: चीज बस्ट पिज्जा विद चीजी डिप, तंदूरी गार्लिक।
1: पति ब्रह्मचारी की ईशा यानी कि प्राप्ति शुक्ला पहुंच गई है जिम में और अपने जिम सेशन को कर रही है एंजॉय।
0: हाका नूडल विद मेयोनीज, जलेबी विद रबड़ी, कोल्ड कॉफी और गुलूली।
2: गुरुजी मैं तीन चार दिनों से यहाँ ही हूँ आपके आश्रम में।
1: श्रद्धार्या पहुँच गई है गंगा हरिद्वार, जहाँ वो गंगा में डुबकी लगाती नजर आई।
2: मुझे आपके पास

रजनी कमान हो गई है इमोशनल क्योंकि उन्होंने कर लिया है रैप अप नागिन 7 के शूट का। ऐसे में उन्होंने शेयर किया है ये वीडियो अपनी जर्नी का और साथ ही ये नोट भी

0: नसीमा मेरे दिल जाए।
1: शहनाज गिल जल्द नजर आने वाली है उनकी आने वाली नई फिल्म इश्कनामा में। सामने आया है इसका टीजर, आप भी डाल लीजिए इस पर एक नजर।

मेकअप के सेट से सामने आए हैं ये बीटीएस नजारे, जिन्हें शेयर किया है रोहित चंडेल ने। देखिए कैसे वो हो रहे हैं अपना पोस्टर देख के काफी खुश।

0: तो चलिए फिर करवा देते हैं आप सबकी आपके फेवरेट सितारे से खास मुलाकात। देखा, फटाफट लेकर चलते हैं आपको आपके फेवरेट सेगमेंट की ओर, जिसके लिए सुपर एक्साइटेड है हमारी सयानी बिल्ली और भोला बिल्लू। आप कौन है ये सितारा, मैं तो नहीं बताऊंगी आपको, सीधा लेकर चलते हैं आपको इनके पास, आपका फेवरेट सेगमेंट सितारे से मुलाकात।
1: चने के खेत में।

0: मिले सीरियल सैराब की नोयनिका से। भाई नोयनिका को मिल गई एक नई सहेली जो उनकी तरह बंगाली है और देखिए दोनों की बॉन्डिंग। यह है अभिनेत्री बदिराक्षी मुंडले और उनके साथ है इश्ता गांगुली। भाई दोनों ने एक साथ एक शो में भी काम किया है और लोग इन्हें टीवी की बहनों को मानते हैं। बदिराक्षी आजकल दिख रही है स्टार प्लस के सीरियल सैराब में और शूटिंग के दौरान उन्हें मिली उनकी एक ऐसी दोस्त जिनके साथ उनका पूरा कनेक्शन है। और जरा देखिए इन दोनों सहेलियों का ये कनेक्शन कैसे झूम रही है, गा रही है। आज इशिता आई है मदिराक्षी को उनके नए शो सैराब के लिए विश करने और देखिए सास बहू और बेटिया को मिली ये दोनों सहेलियां जिनका रिश्ता बना था एक सीरियल के सेट पर जो आज तक बरकरार है। भाई मदिराक्षी अब पर्दे पर बंगाली बाला नोयनिका का किरदार निभा रही हैं और इशिता है रियल लाइफ में बंगाली बाला, एक पर्दे की बंगाली बाला और एक रियल लाइफ बंगाली बाला। तो चलिए मिलते हैं सैराब की नोयनिका की इस बंगाली बाला सहेली से।
1: बहने बहने
2: और जो आप गेम की बात कर रहे हो, जो बॉन्डिंग की बात कर रहे हो, वो पता चलेगी अब क्या है एक्चुअली है या नहीं। हमें लगता है कि है बट वो अब आप प्रूफ करने वाले हो कि है। लेट्स डू दिस।
1: इशारो इशारो नाइस।
2: चलो
1: चलो लेट्स डू शुरू करते हैं। ओके
0: तो भाई सास बहू बेटिया आज इन दोनों के साथ एक गेम खेलेगा और जानेगा कि पर्दे की कोस्टार्स और रियल लाइफ में सहेलियां आखिर एक दूसरे को कितना जानती हैं और जिसका बेहतरीन एग्जांपल है कि दोनों का तालमेल क्या है और क्या एक दूसरे की ये बातें इशारों इशारों में समझती हैं। इसके लिए हम उनको देंगे एक चिट जहाँ पर उन्हें डम शराज की तरह इस गाने को डांस करके समझाना है। तो चलिए शुरू करते हैं ये गेम जिसका नाम है इशारों इशारों में। पहली चिट खोली मदिराक्षी ने और अब उन्हें इशिता को इस चिट में लिखे गाने को समझाना है डांस के थ्रू।
2: आपको दिखा
1: चने के खेत में ये जो ऐसे किया ना, अठारह बरस की कमाली कली थी, घूंघट पे मुखरा छुपा के बैठी थी।
2: अभी इसको भी इजी मिलना चाहिए।
1: हो

0: इशारा नंबर टू अब इशिता के हाथ में है। अब ये बंगाली बाला पर्दे की नोनिका को ये क्लू देखेंगे और देखेंगे कि इनके इशारे कैसे हैं।
1: अच्छा

0: का गुनगुना दिया, मैं क्या करूँ इसके आगे।
1: हाँ और कर, और कर।
2: हाँ पुराने वाले ना।
0: अच्छा
2: नहीं देखिए, देख
1: ओ हाँ
2: देखिए, देख

0: वीरा तो अमरी समझ गया
1: मैं पूछने ले आ वाला खत्म कर दे
0: क्या नहीं मुझे इसके स्टेप से याद है ये ये और क्योंकि मैंने बहुत किया है इंदौर के घर पे मैं
2: अगला इशारा कर रही है मदिराक्षी जहाँ पर अब इशिता को गेस करना है कि ये कौन सा गाना है तो देखते हैं इन सहेलियों की केमिस्ट्री
0: ये बहुत भयंकर है ये बहुत भयंकर दिया मुझे
3: ये तुम्हें तो कनेक्टिंग भी है भाई तुम्हारे
0: ये बिल्कुल कनेक्टिंग नहीं है
4: हाँ बोलो नाचिया बसंती नाच के दिखाओ
0: इसमें नाच है ही नहीं इसमें सिर्फ एक्टिंग है
4: एक्टिंग है चलो पगड़ी हाँ सनी देओल यमला पगला दीवाना हड़प्पा इतनी दीवाना

0: ब्यूटीफुल कर गई। अगला इशारा है इस खास चिट में जो इशिता के हाथ में है, जहां उन्हें छैया छैया समझाना है। तो देखिए जरा वो समझा पाती है मदिराक्षी को ये सिंपल सा 90s का एवरग्रीन गाना।
1: सुष्मिता सेन चिनेरी
2: चिनेरी
1: गाड़ी करती रह। एक बार मैं नहीं बताना करना प्लीज कंटिन्यू।
0: मदिराक्षी को ये गाना तो समझ नहीं आया, लेकिन इन सहेलियों की पर्दे के पीछे की मस्ती बड़ी मजेदार है।
1: ये वापस रिमिक्स है क्या? रेलगाड़ी। बहुत सारे सॉन्ग्स में ये हमारे बहुत कॉमन स्टेप है, ये सारे क्लासिकल में होते हैं। Yes. इसको सारे पता है कि क्या मुझे समझ में आएगा।
0: अगला इशारा कर रही हैं पर्दे की नौनिका, और इस बार देखते हैं कि उनकी बंगाली वाला दोस्त क्या इसे कैच कर पाएंगी।
1: तेरे को टाइम नहीं लगेगा बेबी, रुक जा। चलो रेडी।
2: खाई के पान बनारस वाला। नहीं देखा, इट्स वेरी इजी।
1: मैंने बस जूझ नहीं नहीं नहीं
2: मैंने देखा, मैंने नहीं देखा।
0: मदिराक्षी और इशिता दोनों को डांस का शौक है, और देखिए अगला इशारा जो इशिता के हाथ में है वो इन दोनों सहेलियों को गोविंदा की तरह डांस करने पर मजबूर कर देगा।
1: तूने नहीं की?
2: नहीं की मैंने।
1: की तूने?
2: नहीं की मैंने।
1: बहुत तेज चीटिंग की है। हाँ मेरे को समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था, मैं तो लड़की पटा रहा था,
2: घुमा रहा था, रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था,
1: लड़की घुमा रहा था, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। गुड वन, गुड वन। यस, विल क्लैप फॉर अस। यस।
0: तो ये थी दो सहेलियां जिनका रिश्ता बना था एक सीरियल के सेट पर, लेकिन आज दोनों एक दूसरे की हमदर्द हैं। जब भी मिलती हैं प्यार से मिलती हैं, झूमती और गाती हैं। ये कुछ रिश्ते हैं जो कलाकार अपने सेट पर बनाते हैं। वैसे मदिराक्षी को उनके शो सैराब के लिए काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब तक केवल पौराणिक किरदार निभाने वाली मदिराक्षी के लिए ये रोल एक चेंज है। पहली बार वो एक बंगाली लड़की बनी है और एक लव स्टोरी में काम भी कर रही है। तो जानते हैं कि आखिर सैराब को लेकर मदिराक्षी को कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है।
1: तो ये एक तरह से ब्लेसिंग्स भी है और मेरे परिवार वालों के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। तो सभी मुझे ऑलमोस्ट एवरी अदर डे फोन करके बोलते हैं कि हम लोग शो देख रहे हैं और बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो ये जानकर सुनकर और सभी के जो रिएक्शंस हैं वो देखकर बड़ा अच्छा लगता है। और अपने एमपी का नाम जब मुझसे जुड़ता है कि हाँ मतलब मदिराक्षी इज़ फ्रॉम एमपी बोलकर, तो मुझे और भी बहुत प्राउड फील होता है। आप पर ब्लेसिंग्स होती हैं तो ये किरदार कैसे भी ढूंढ कर ना आप तक पहुंच जाता है। तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली मानती हूँ कि जब भी कोई भक्ति के सीरियल्स बनते हैं तो सबसे पहले मुझे अप्रोच किया जाता है, और जब ब्लेसिंग्स बहुत अच्छी होती हैं तो होपफुली मैं वो प्ले भी करती हूँ। तो जिस तरह से सिया के राम में सीता जी का किरदार मैंने निभाया, और उसके बाद राधा कृष्णा का मैंने पायलट किया था, फिर उसके बाद द्रौपदी का किरदार मैंने निभाया। तो जब आते हैं शोज़ और जब मैं करती हूँ, प्ले करती हूँ, तो मुझे भी बहुत अंदर से एक फीलिंग मेरी बहुत अलग होती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि एक ही जॉनर में आपको काम मिलते जा रहा है और लोग आपको उसी जॉनर में पसंद कर रहे हैं। तो और इनफैक्ट काफ़ी बार मुझे ये सुनने को भी मिलता है कि आप टाइपकास्ट हो जाओगे, तो वो सुनकर भी मुझे ये नहीं लगता है कि टाइपकास्ट। सी एक्टर एक्टर होता है फर्स्ट, सेकंड जब इस तरह के किरदार आते हैं तो ये ब्लेसिंग्स होती हैं। ये नहीं होता कि यू नो आप यही काम करते जा रहे हो, ये ब्लेसिंग्स हैं कि सबसे पहले आपके पास ये किरदार आते हैं और फिर उसके बाद आपके हाथ में होता है कि आप करना चाहते हो नहीं, और उसके बाद माता रानी या फिर नो उस उन्हीं भगवान के आशीर्वाद के ऊपर होता है कि वो आपको ये देना चाहते हैं।
0: कभी सिया के राम की सीता, तो कभी लक्ष्मी, तो कभी द्रौपदी। मदिराक्षी ने ढेर सारे पौराणिक किरदार निभाए हैं, लेकिन अब नौयने का बनकर वो पूरे देश का प्यार पा रही हैं, और खासकर उनके होम टाउन इंदौर, क्योंकि पूरा मध्य प्रदेश लगा हुआ है मध्य प्रदेश की इस बेटी को चेयरअप करने के लिए।
1: जहाँ पर आप रहते हो, जहाँ पर आप जिस कॉलोनी में आप घूमते हो, तो वहाँ की कुछ यादें तो होती ही हैं। वैसे ही मेरी, हम लोग रोड पे गिल्ली डंडा खेलते थे और बहुत लड़ते थे, क्रिकेट खेलते थे, जो छोटे मोटे जो नो प्लास्टिक की बॉल्स आती हैं उससे खेलते थे, हमेशा रोड पर होते थे खेलने के लिए, घर में हम कभी खेलते ही नहीं थे। तो या आई मीन छोटी छोटी कुछ बातें हैं जो जुड़ी हुई हैं और मुझे लगता है हमेशा जुड़ी रहेंगी। प्योर देसी घी के लड्डू हैं और आप हाथ में लो और जब आप मुँह में, तो एकदम से डिजॉल्व हो जाते हैं, और उसका एक स्वाद ही मोती चूर के लड्डू, और बोलते बोलते ही मेरे मुँह में पानी आ रहा है। सभी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि हमारी मध्य प्रदेश की जनता हमारा शो इतना पसंद कर रही है। मुझे इतना उत्साह और मैं बहुत उत्साहित होती हूँ ये जानकर कि आपको हमारा शो बहुत पसंद आता है, और जो किरदार मैं करती हूँ आप लोगों के लिए भी प्राउड होता है, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि मैं मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई हूँ। इसी तरह हमारा शो आप पसंद करते रहिए और अपना प्यार मुझ पर बरकरार रखिए, और मैं आशा करूंगी कि आपका नाम और हमारे मध्य प्रदेश का नाम और रोशन करूंगी।
0: तो ये थी सैराब की नवेनिका, यानी पर्दे की बंगाली बाला, जिनकी सहेली रियल लाइफ बंगाली बाला इशिता गंगोपाध्याय ने आज उन्हें ढेर सारी टिप्स दी। लेकिन जब भी मिलती हैं दोनों झूमती गाती हैं और एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताती हैं, और सास बहू और बेटे के कैमरे ने कैद की इन दोनों सहेलियों की ये मस्ती। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
3: हमारी सयानी बिल्ली और भोला बिल्लू तो दोनों हो गए हैं सुपर एक्साइटेड, क्योंकि इन्हें भी होना है हमारी एयरलाइन पर सवार, जो लेकर हाजिर है आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार। जी हाँ, यहाँ तो खुले हैं एंटरटेनमेंट के सभी द्वार, तो आप भी कर लीजिए हमारी एयरलाइन का बोर्ड, बांध लीजिए एंटरटेनमेंट की पेटी। गेट सेट गो।
4: टीवी के सीरियल मन्नत में जहां एक तरफ मान्यता कर रही है विक्रांत यानी कि अभिमन्यु का इंतजार, तो वहीं दूसरी तरफ मन्नत कर रही है तैयारी विक्रांत से मिलने जाने की, जिसके लिए वो काफी एक्साइटेड है।

0: हत्याने की कहानी में नया ट्विस्ट आएगा जब विक्रांत और मन्नत का आमना सामना होगा, तो वही मान्यता का इसके बाद क्या हाल होगा ये देखना दिलचस्प होगा।
1: तो आज अभिमन्यु को प्लीज करने की कोशिश हो रही है, उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि अभिमन्यु को बहुत पास्ट के फ्लैशेस आ रहे हैं और उसको कहीं ना कहीं मन्नत याद में आ रही है और उसको कहीं ना कहीं लग रहा है कि मुझे मान्यता के साथ कनेक्ट फील नहीं हो रहा, मुझे प्यार है पर किससे है वो ये शायद नहीं है। तो उसके दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूजन है और मान्यता को समझ में आ जाता है कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है इसके दिमाग में और मान्यता तो ऑब्सेस्ड है, वो तो जाने नहीं दे सकती इसको। तो मान्यता प्लान करती है कि उसको बाहर ट्रिप पे लेके जाते हैं, थोड़ा हॉट हॉट बनते हैं, थोड़ा ऐसा अपना चार्म दिखाते हैं और वो पट जाएगा, पर उसका प्लान फेल हो जाता है क्योंकि वो तो उसको होटल में छोड़ के चला जाता है गुरुद्वारे और वहाँ मन्नत मांगने, जहाँ पर मन्नत मांगने वो जाता है और मन्नत होती है पर उनका हिट और मिस हो जाता है। मन्नत आती है, ये निकल जाते हैं, ये आते हैं, मन्नत निकल जाती है, वो ही चल रहा है इनका। यहाँ मान्यता घर पे मतलब ऐसा सुंदर से तैयार व्यार मेकअप वेकअप करके कि अभी वो आएगा तो कुछ ना कुछ हम रोमांटिक मोमेंट क्रिएट करेंगे, पर ऐसा कुछ होता नहीं है उनकी आउटिंग पे।

जी टीवी पर शुरू हुआ है नया सीरियल जिसका नाम है तू ही रे दिल में, जिसमें है तिकड़ी यानी कि अपरार काजी, प्रियांशी यादव और सिमरन रावल। ऐसे में बीती शाम हुई इसकी स्क्रीनिंग जिसमें लीड्स के साथ साथ पूरी कास्ट एंड क्रू शामिल हुई। सभी ने मिलकर पहला एपिसोड देखा और बांटी खुशियाँ। भाई सभी को यकीन है कि ये सीरियल और इसकी कहानी साथ ही किरदार भी लोगों के दिल में बस जाएंगे। और देखिए कैसे आज प्रियांशी इमोशनल भी हो रही है

0: really worth it. And hip hip hooray!
1: Hamara khoon pasina gaya hai is show mein bahut mahino tak aur hit ho gaye I know but we
2: एपिसोड देखे एंड आई फील कि ये शो बहुत हिट जाने वाला है रॉक करने वाला है सबने बहुत अच्छा काम किया है गाइस एवरीबॉडी डिजर्व्स एन अप्लॉज प्लीज
3: फिल्म गदर के पूरे हो चुके हैं 25 साल ऐसे में रखी गई एक खास पार्टी जिसमें नजर आई सनी देओल और अमीषा पटेल की जोड़ी भाई वही जादू है जो आज भी चल रहा है इस खास मौके पर सबने सेलिब्रेट किया केक काटा और इनकी सक्सेस और 25 साल की ये जर्नी को मनाने के लिए कई सारे सितारे पहुंचे जैसे कि उदित नारायण और बाकी के सभी कलाकार जिन्होंने आकर सेलिब्रेशन किया

0: आज तो हमारी सयानी बिल्ली और भूला बिल्लू ने किया है मुझसे एक सवाल। कह रहे हैं ये ट्विस्ट क्यों आते हैं कहानियों में। मैंने इन्हें बताया कि अगर ट्विस्ट नहीं आएंगे कहानियों में तो कैसे आएगा कहानियों में मोड़। फिर तो हो जाएंगी ना वो सीधी सादी डल अनबोरिंग। अब जिस तरह ट्विस्ट आते हैं हमारी जिंदगी में, यानी कोई ना कोई उतार चढ़ाव, परेशानी, चैलेंज, उसी तरह तो हमारी ये कहानियां भी बनती हैं ट्विस्ट से इंटरेस्टिंग। तो चलिए फिर दिखा देते हैं आपको ये तमाम ट्विस्ट, वो भी एक साथ।
1: स्टार प्लस के सीए अनुपमा में फैयाज पाकी ने पूरे घर को सर पर उठा रखा है अपनी बेटी और बंकू की शादी के टॉपिक को लेकर।
2: सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। तुझमें मेरी बेटी की जिंदगी है भगवान।
3: मोटी भाभी उल्टे पांव वापस लौट गई, हमारा लाया हुआ ब्रह्मास्त्र भी फेल हो गया। पाकी
2: ये बोल सी बच्ची बेचारी, क्या होगा इसका।
4: अरे ये क्या रिएक्शन है पाकी, प्लीज ये चीप ड्रामा बंद करो तुम।
2: चीप ना, आप तो मुझे चीप बोलोगी भाभी, क्योंकि आपकी बेटी वो तो कोठारीस की बहू बन गई है ना। मेरी बेटी के हिस्से में तो झूठे बर्तन ही आएंगे ना।
4: झूठे बर्तन आएंगे तो धो लूंगी मम्मा, इसे एक साल में मैं वो सब करके दिखाऊंगी जो आपने आज तक सोचा नहीं होगा।
5: और मैं भी आपके बेटी के काबिल बिल्कुल नहीं।
2: बात मत करना मेरे साथ, एक लफ्ज मत बोलना।
6: एक मिनट बंद करो ये रोना पीटना।
7: तुझे यही डर था ना कि ये बंकू और ईशु शादी कर लेंगे, लेकिन एक साल के लिए तो शादी नहीं हो रही।
2: माना कि इस घर में एक साल तक कोई शादी नहीं होगी, लेकिन मेरी ईशु, उसका क्या होगा, क्या करेगी वो।
1: तो वहीं दूसरी ओर प्रेम और राही ने भी कमर कसती हैं अनुपमा के खिलाफ कंपटीशन में उतरने के लिए।
8: अनुपमा को फेस करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लिसन प्रेम, कॉम्पिटिशन में सिर्फ 10 दिन बाकी है, एंड आई एम श्योर वो सब लोग बहुत तैयारी से आने वाले हैं और हम पीछे नहीं हट सकते हैं। अनुपमा का निशाना कैसा है पता नहीं, लेकिन जब बात कुकिंग की आती है ना तो उसके तरकश में बहुत तीर है। इस बार उसका कोई भी तीर निशाने पर नहीं लगना चाहिए। हमें हर हाल में ये कॉम्पिटिशन जीतना है,

0: मुझे मेरे प्रेम पे पूरा भरोसा है।
1: जीत हमारी होगी क्योंकि मेरे लिए ये कॉम्पिटिशन है, लाइफ की सबसे बड़ी जंग है।
2: महादेव एंड सन्स कलर्स टीवी के सीरियल महादेव एंड सन्स में फयाज फिर एक बार रजी और धीरज आमने सामने आए और हर बार की तरह इस बार भी इनके बीच देखने को मिली नोकझोंक। लेकिन ये नोकझोंक कब रोमांस में बदल गई भाई इन्हें भी पता नहीं चला।
3: ये इस कमीज पे इस्त्री तुमने करी है?
4: हाँ की है। तो ये क्या क्या?
3: हमें तुम्हारी किसी भी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। अगर हमारे कपड़ों को हाथ लगाओगी ना तो यही हाल करेंगे हम अपने कपड़ों का। तुम्हारे हाथ लगाए हुए कपड़ों को ना अपने बदन को छूने नहीं देंगे। आई बात समझ?
5: अच्छा, तो पागल औरत,
6: ये टॉवल उतारो, इसे हमने धोया, उतारो इसे।
5: पागल औरत, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या?
6: क्यों, तुम्हें तुम्हारे हाथ की छुई भी कोई चीज नहीं चाहिए ना? ये टॉवल हमने धोया, उतारो इसे।
5: तो इसे
6: उतारो, उतारो, उतारो।
5: पागल हो गई हो क्या? छोड़ो छोड़ो।

0: चाहे सुलह करने की कितनी भी कोशिश कर लो रची, हमारे बीच में अब कोई सुलह नहीं होगी और न ही कोई दोस्ती होगी। अब हम तुमसे सिर्फ और सिर्फ दूर रहना चाहते हैं रची। जब भी हम तुम्हें देखते हैं ना, हमें अपनी माँ के आंसू याद आते हैं, उनका रोता हुआ चेहरा देखता है। तुम जैसे भी इस परिवार में आई हो, जिस भी तरीके से, लेकिन इस परिवार की सबसे बड़ी मुसीबत बन गई हो। हमारे गले में एक घंटी की तरह लटक गई हो तुम।
1: लेकिन आखिरकार फिर एक बार धीरज ने रज्जी को सुनाई खूब खरी खोटी।
0: लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक झूठा रिश्ता है, हमारी सुलह कभी नहीं होगी। मैं तुमसे सिर्फ और सिर्फ नफरत करता हूँ रज्जी।
1: स्टार प्लस के सीरियल मिस्टर एंड मिसेस परशुराम में शालिनी अपने घर लौट आई है अपने बच्चों के साथ, लेकिन घर पर जो हुआ इसके बारे में शालिनी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा।
2: पत्नी ने अपने नाजायज रिश्ते के चलते अपने पति को मरवा दिया और अपने पति को मारने के बाद उसकी लाश को पानी में बहा दिया। क्यों शालिनी बता मुझे, यही उस घटना की पूरी कहानी है ना? मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं, यही हुआ था कि नहीं? और अगर ये हुआ था तो फिर इस मंगलसूत्र का क्या मतलब है?

0: भाई घर पर तो बेइज्जती हुई ही, लेकिन जब शालिनी चौल में पहुंची, देखिए कैसे आस पड़ोस वालों ने भी शालिनी को खूब खरी खोटी सुनाई। इतना ही नहीं, उसकी इज्जत को तार तार कर दिया।
1: अरे हाँ, किसी दूसरे मत के चक्कर में पड़ी हुई है, शर्म नहीं आती? दो छोटे बच्चे हैं, 10-12 साल हो गए शादी को, लेकिन इश्क विश्क का भूत चढ़ा, प्यार व्यार करने चली। हाँ
2: अरे अगर मेरे बस में होता ना तो झाड़ू मार के ये भूत उतार देती मैं।
3: आप सभी क्या बोल रहे हैं? आप लोग प्लीज मेरे मम्मा के बारे में बुरी बात मत कीजिए।
4: चुप हो जा, बुरी बात मत कर। बाप रे बाप, चेहरा देखकर तो पता नहीं चलता है। यहाँ तक कि तू सारे प्रोग्राम में हिस्सा लेती थी, डांस वांस सब में, खेल कूद में सब में हिस्सा लेती थी, और अब देखो ए जी ओ जी पति जी बड़ा ये सब करके पति पर प्यार आ रहा था। हा? अब देखो, अरे अपने ही पति को तू खा गई, अपने ही हाथों से तूने अपने पति को गोली मार दी। अरे पुलिस वाले ने तुझे छोड़ कैसे दिया? तुझे तो फांसी लटका देना चाहिए था, फांसी।
3: मैंने कुछ भी नहीं किया है, आप लोग मेरी बातों का विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है।
2: ए चुप हो जा, सब पता है हमें।
1: तेरे जैसे स्त्री के साथ ना हमें नहीं रहना इस चौल में, तुझे तो धक्का मार के निकाल देंगे इस चौल से।
5: हमारी सयानी बिल्ली को तो चलना है जगदात्री के पास, क्योंकि कह रही हैं वो देखना चाहती हैं और सीखना चाहती हैं उनके डेयर डेविल स्टंट्स। वैसे उन्हें फुल ऑन एक्शन मोड में देखकर तो मुझे भी बहुत मजा आता है। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको जगदात्री और शिवाय के पास और देखते हैं क्या कुछ हो रहा है उनकी कहानी में आज।
0: सामने आया जगदात्री और शिवाय की शादी का सच। जगदात्री पर हुआ अत्याचार। जगदात्री के लिए शिवाय की तड़प। जी टीवी के सीरियल जगदात्री में आज हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है, जहां पर शिवाय और जगदात्री के कमरे में बिना बताए आ गए हैं तपस्या, जगदात्री की आई और अत्या, और आते ही उन्होंने बवाल शुरू कर दिया, क्योंकि जगदात्री बेड पर सोई है और शिवाय सोफे पर, यानी कि मियां बीवी अलग अलग सो रहे हैं। ऐसे में अब इनका शक पक्का हो गया है कि जगदात्री और शिवाय की शादी एक ड्रामा है और असल में तो ये कपल है ही नहीं। तभी तो सबसे पहले शिवाय के मुंह पर पानी फेंककर उसे जगाया गया और फिर हुई सवालों की बौछार।

0: Yalla Fatih'i sen.
1: क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मतलब? झूठे पति पत्नी पर रेड पड़ रही है।
2: देखिए कैसे जगधात्री के दुश्मनों को मिल गया है मौका उसकी शादी और उस पर सवाल उठाने का। ऐसे में शिवाय सिचुएशन संभालने की कोशिश कर रहा है और जगधात्री भी घबराई हुई है।
3: कर क्या रहे आप लोग?
4: वही जो बहुत पहले करना चाहिए था।
3: तो तुम लोग सवाल मत करो, जवाब दो। ये हो रहा है, हो क्या रहा है ये सब?
2: भाई जगधात्री और शिवाय पूरी कोशिश कर रहे हैं इन तीनों को यकीन दिलाने की कि ये एक कपल है और इनकी शादी सच्ची है, लेकिन ये लोग मानने को तैयार ही नहीं। इन्हें पूरा यकीन है कि शिवाय और जगधात्री शादी और कपल होने का ड्रामा कर रहे हैं।
0: बोला अपनी बहन से पूछो, ये रूम में आते के साथ इसका फाइटिंग मोड एक्टिवेट हो गया। तो वैसे भी इसमें इतना कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं है। नॉर्मल कपल में लड़ाई होती है, तुम्हारी नहीं होती क्या?
4: नो यू आर राइट, नॉर्मल कपल्स में फाइट तो होती है। तो मतलब ये फाइट मोड ऐसे रूम में एंटर करने के साथ एक्टिवेट हुआ था या फिर इस शादी में एंटर करने के साथ?
3: और ऐसी इतनी बड़ी क्या ही लड़ाई हो गई कि तुम दोनों मतलब पति पत्नी कपल एक इधर सो रहा है और एक इधर सोफे पे?
0: सारे सवाल आप तो मुझसे ही पूछ रहे हो, इससे पूछो ना। हाँ इससे पूछो, प्यार से बात करनी तो सीखी गई नहीं है। जब देखो बस हाथ में छड़ी लेके मुझे डांटी गई खड़ी देखिए। वैसे सासू माँ आप मुझे बात करिए, इसमें ये कौन कौन ने स्पेशल प्यार आपसे लिए?
4: अरे मुझसे ली होती तो इतना गंदा पेट नहीं होती। झूठ तो मेरे मुंह से मक्खन की तरह से फिसलता है। और ये जो शादी का नाटक है ना, मुझसे ट्रेनिंग ली होती ना तो ये शादी असली से भी ज्यादा असली लगती है ना।
3: क्या बात क्या कर रहे हैं आप लोग?
5: एकदम चुप, एक शब्द मत बोलना। छुट्टी कही की तुझे क्या लगा था कि हम पागल खाने से दौड़ के आए हैं? अनपढ़ गवार है, तेरी चालबाजी समझ में नहीं आएगी हमको?
4: कौन सा कपल कौन सी मैरिज? तुम दोनों ना मैरिड कपल नहीं।
0: अरे कहने से कुछ नहीं होगा,

0: साफ रख और इसे हाथ लगाने के लिए तुझे अब मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी समझा
1: कॉपी राइटिंग में
2: मेरे पास मंगलसूत्र था कहीं रखा था मैंने बस अभी खो गया।

0: का ये तमाशा यहीं खत्म नहीं हुआ। देखिए कैसे तपस्या ठाल पीट कर सभी घर वालों को इकट्ठा कर रही है, और इन सभी घर वालों के इकट्ठा होते ही उसने शिवाय के राज खोलने शुरू किए। शिवाय और जगधात्री की शादी का सच सबके सामने बता रही है। शिवाय तपस्या को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तपस्या कहाँ रुकने वाली है।
1: अरे आ जाओ भाई, सब नीचे आ जाओ। हमारे घर के कमरे में रहता था एक चीप सड़च्चा पेइंग गेस्ट, जो कहता था मैं टीचर हूँ, लेकिन था एक झूठा बट बेस्ट।
2: क्या क्या बोल रही हो तुम, सच में?
1: हाँ हाँ सच में। सुनो सुनो, आप ही सुनिए।
2: सुनाइए।
1: आप ही सुनो सासू मां। किराए पे रहते रहते हमारे घर की लड़की पटा दी एक, दोनों ने शादी कर डाला। मेरी शादी के नेक्स्ट डे ही दोनों ने एक दूसरे के गले में डाला वरमाला। यू डू रिमेम्बर राइट? हमारी शादी को ऑलमोस्ट कैंसिल करने के बाद अगले ही दिन तुम दोनों ने शादी कर ली और यहाँ अटक गए।
0: और फिर एक बार आई जगधात्री की मम्मी, जो देखिए कैसे उस पर सवाल उठा रही है।
3: हाथ रख, खा कसम अपनी मरी हुई माँ की, और बोल बोल सबके सामने कि ये शादी असली है या नकली, तो शिवाय से शादी की है या नहीं, ये सर्टिफिकेट, ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर सब असली है या नकली, बोल बोल।
0: ये तमाशा चल ही रहा था कि तपस्या जगधात्री के चेहरे पर कालिक लगाने गई, लेकिन तभी वहाँ पहुँच गई आजी, जिसने न सिर्फ तपस्या को रोका बल्कि तपस्या को थप्पड़ भी जड़ दिया और सभी को डांट फटकार भी लगा दी, क्योंकि अज्जी को पता है कि उसकी जगधात्री बिल्कुल सही है।
4: इसका नागिन बन के फन मारना समझ में आता है, लेकिन दूर था, कहाँ से लाती इतना जहर? जगदात्री का बदला लेना शुरू करूंगी ना तो बिस्तर से उठने लायक नहीं रहेगी तू, मर जाएंगी लेकिन खुद की गलती कभी नहीं मानेंगी। इसीलिए आई थी ना यहाँ, हो गया, मेरी बच्ची की बेइज्जती कर ली, चलो अब निकलो।
0: भाई फिलहाल तो दादी ने सबको चुप करा लिया है, लेकिन इनके शादी का ये सच का और कौन सा बवाल होगा ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अब जगधात्री और शिवाय अपने रिश्ते का सच ज्यादा देर तक छुपा नहीं पाएंगे। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
5: वैसे कभी कभी ना मुझे भी ऐसा लगता है कि हमारी ये जो अभीरा है ना, ये है हमारे भोला बिल्लू की तरह भोलू, लेकिन ऐसे कैसे काम चलेगा अभीरा? अब देखिए जिंदगी में ना सब कुछ ब्लैक एंड वाइट नहीं होता, यहाँ पर होता है बहुत सारा ग्रे। तो प्लीज़ आप अपनी आँखें खुली रखें और अपने कान भी, ताकि आप ना आने वाली परेशानी को पहले ही जांच लें। लेकर चलते हैं आपको अरमान और अभीरा के पास, उनके शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के सेट पर।

0: सोना बिगड़ी अरमान की तबीयत
1: इन्ना सोना ओ इन्ना सोना ओ इन्ना सोना
0: अभीरा बनी सहारा प्लस की सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीरा अरमान का हर कदम पर साथ दे रही है और अरमान उसका धन्यवाद कर रहा है। इतना ही नहीं बीच रास्ते में अभीरा पर प्यार भी जता रहा है और अभीरा उससे वादा कर रही है कि चाहे कुछ भी हो वो हर पल अरमान के साथ रहेगी। बस फिर क्या, यही वादे करते हुए अचानक अरमान की तबीयत बिगड़ जाती है। अरमान बीच रास्ते में उल्टी करने लगता है और अभीरा उसे संभालने लगती है। इसी बीच एक अंकल आकर अरमान को ताने कसने लगते हैं, लेकिन अभीरा उनका करारा जवाब देती है।

0: उसे यही उल्टी करनी थी।
1: क्या करें अंकल, उल्टी करने में मजा ही इतना आता है कि आप भी कभी ट्राई करके
2: देखिए। ये बात सुनकर अंकल तो चले जाते हैं, लेकिन अभीरा अरमान को संभालने की कोशिश कर रही है, उसे बिठा रही है, इतना ही नहीं उसे पानी भी पिला रही है, क्योंकि इतनी गर्मी में अरमान को अपना ख्याल रखना होगा।

0: वहीं दूसरी ओर क्रिश की फिर मुलाकात हो जाती है अभीरा से और उसको फिर से मौका मिलता है अभीरा को सुनाने का। ऐसे में वो अभीरा से कहता है कि घर आकर सभी से माफी मांग ले, लेकिन अभीरा ने अपना फैसला कर लिया है। इसी बीच अभीरा को कॉल आता है तान्या का और वो फोन में बिजी हो जाती है कि तभी किस्मत क्रिश को जवाब देती है कीचड़ उछाल कर।
1: शुरुआत इसकी वहीं से हुई थी जहाँ पे मैंने उसको ह्यूमिलेट, मैंने अरमान भैया को ह्यूमिलेट किया था, तो वहीं से शुरुआत हुई थी। क्योंकि अभीरा ऑब्वियसली अरमान भैया का टेक केयर कर रही है क्योंकि वो मेडिकेशन पे हैं, क्रिश मौका मिलता है तो उनको ह्यूमिलेट करने पहुँच जाता है। फिर अभी दोबारा ये लोग टकराए हैं जहाँ पे आप देख रहे होंगे ऐसे मेरे ऊपर पूरा उन्होंने कीचड़ वीचड़ उछाला है, प्रॉपर मेरे को कैसे गंदा किया है। और फिर से अब नाउ तान्या हैज़ यू नो टेकन द हेल्प ऑफ अभीरा क्योंकि डिवोर्स विवोर्स के चक्कर में, तो एज अ लॉयर अभीरा शायद से ऐसा कुछ सीन है आगे जाके।
0: अब कृष्ण ने जो कर्म किए हैं उसका भुगतान तो करना ही होगा। तभी तो आज पोदार हाउस के बाहर कृष्ण को लगा है जोरदार झटका क्योंकि उसे मिला है लिफाफा, वो भी डिवोर्स पेपर्स का। ऐसे में कृष्ण तान्या पर बरसता है और तभी वहाँ पर आ जाती है अभीरा जो सभी घर वालों को बताती है कि कृष्ण का अफेयर चल रहा है।
2: ये कौन है?
3: हेलो
2: जी, आप कौन?
3: मैं आपका अगला क्लाइंट, मैं चाहता हूँ आप मेरा केस हैंडल करें।
2: आइए वकील साहब, कैसे आना हुआ? वकील के लिबास में आई हो तो जरूर किसी काम से आई होंगी।
4: क्रिश बंसल, ये कोर्ट के पेपर्स हैं। मेरी क्लाइंट तान्या रायजादा तुम्हें तलाक दे रही है।
5: नहीं, ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
1: ये तो यार मेरे को भी नहीं पता आगे क्या होना है अभी तो, क्योंकि मैंने भी अभी आया है कुछ तो, पर मैंने पढ़ा वड़ा नहीं है क्या है, क्योंकि बाकी आगे देखते हैं कैसा क्या है। बट वही है, इवेंचुअली मुझे लगता है कि क्रिश बीइंग क्रिश डिफेंड करेगा जब तक वो कर सकता है अपने आप को, एंड झूठ झूठ बोलते रहेगा क्योंकि अब देखते हैं कैसे क्या है, वो तो आगे मेकर्स को ही पता है।
0: अब क्रिश का खुलासा तो हो ही गया है, देखना होगा कि अब पोदार हाउस में बिना अरमान अभीरा के कौन सा बवाल मचेगा। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
6: हाँ भोला बिल्लू और मेरी सयानी बिल्ली, सही पहचाना। डॉक्टर आरम भी मेरे शो भाग्य लक्ष्मी की लक्ष्मी ही हैं। और देखिए ऐसा ही कुछ हो रहा है उनकी इस कहानी में भी, हमेशा रहती हैं वो हैरान परेशान, लेकिन हमें है डॉक्टर आरम भी पे पूरा विश्वास। अब देखिए हो गई है शो में उनके हीरो की एंट्री, तो क्या अब ये बनेंगे उनके फॉरएवर हीरो या फिर से आएगा कहानी में कोई नया ट्विस्ट? चलिए पता कर आते हैं, लेकर चलते हैं आपको डॉक्टर आरम भी के सेट पर।
7: डॉक्टर अरंभी और अवंतिका का मिलन, भाई ये क्या है? दोनों सौतनों के बीच क्या समझौता हो गया है? जी नहीं, ये तो खुशी का मौका है जो ये दोनों ऑन स्क्रीन सौतने मिलकर बांट रही हैं। सास बहू बेटिया पहुंचा कलर्स टीवी के सीरियल डॉक्टर अरंभी के सेट पर, जहां पर 100 एपिसोड का जश्न मनाया जा रहा था। सतरंगी साड़ी में आज ऐश्वर्या खरे डॉक्टर अरंभी के खास अंदाज में। तो वह वाई ड्रेस में है अवंतिका यानी अंजुम फाकी। वैसे यहाँ पर सीरियल की नायरा मल्होत्रा यानी सपनाली भी नजर आई। जो देखिए ऐश्वर्या के साथ खास अंदाज में नजर आई।

0: लतीफा
1: ऑन स्क्रीन ना ऑफ स्क्रीन नहीं पहले बता
2: ऑफ स्क्रीन तो पॉसिबल नहीं
3: है क्या बात है

0: और ये सारी इंतजारी आपके लिए लेकर आया है सास बहू और बेटिया।
1: ये तो 100 एपिसोड्स का सेलिब्रेशन है। सीरियल की कहानी की बात करें तो घर में आज बवाल मच गया है, क्योंकि आरंभी पार्टी से गायब हो जाती है और विश्वास ने उसे ध्रुव के साथ बाइक में देख लिया था। ऐसे में सभी घर वाले इंतजार कर रहे हैं आरंभी के आने का, और जैसे ही आरंभी आती है उसके आते ही विश्वास उस पर गुस्सा होना शुरू कर देता है।
2: कुछ शर्म बचे तुम्हें या सब खत्म? तुम्हें लग रहा है तुम डॉक्टर बन गई हो, डिपेंडेंट हो गई हो, जो मर्जी कर सकती हो। किसी के साथ बाइक पे कैसे जा सकती हो?
3: एक्चुअली जैसे कि आप सब लोगों ने देखा कि नंदिता और अवंतिका ने ठान ली है कि आरंभी और डीसी के बीच में क्या चल रहा है, क्या तो इस पर नज़र रखेंगे, और वो नज़र रख ही रहे थे, लेकिन आरंभी गायब हो गई है बीच में। अब गायब हो गई है वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वो डीसी के साथ गायब हो गई है भाई, सो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
1: असल में सभी ने आरंभी को डीसी के साथ बाइक पर जाते हुए देख लिया था, जिसके चलते डिंपल भी भड़की हुई है। वो तो आज कोई कसर नहीं छोड़ रही आरंभी की क्लास लगाने में। ऐसे में अवंतिका भी मौके पर चौका लगाती है और देखिए कैसे सभी घर वालों के सामने आरंभी को नीचा दिखाने की कोशिश करती है, कि तभी डीसी आरंभी का साथ देते हुए अवंतिका को भी बाहर वाला ही कहता है। खैर, इससे पहले कि घर वाले और अटकलें लगाते, आरंभी कर देती है सभी के सामने खुलासा कि इस सगाई में विहान का किडनैपर भी आया हुआ था और उसी का पीछा करने के लिए वो पीछे चली गई थी। ये सुनते ही डिंपल फिर से आरंभी पर भड़कने लगती है।
4: इस बार वो किडनैपर हमारे घर के बाहर था।
5: वहाँ से निकलना चाहिए थी, उसके पीछे पागलों की तरह दौड़ रही थी मैं, और फिर डीसी सर वहाँ पे, उन्होंने देखा कि मैं ऐसे भाग रही हूँ, इसलिए उन्होंने अपनी हेल्प की।
3: हम ये मतलब वरीड थे, उतने में वो आ गई है डीसी के साथ। तो अब क्वेश्चंस का बम्बार्डिंग हो रहा है उसके ऊपर। तो आरंभी ने बताया कि वो गई थी किडनैपर्स के पीछे, तो एक्चुअली सब लोग परेशान भी है, बट एट द सेम टाइम गुस्सा भी है कि भाई पहले भी उसने हमें नहीं बताया था, अब भी उसने हमें नहीं बताया है। मतलब बता देती ना, सब मिलके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे, पर नहीं, आरंभी को हर चीज हर बात में खुद को ही लड़ना है, पता नहीं क्या है भाई।
1: भाई आरंभी ने तो अपनी सिचुएशन बता दी कि उस समय वो किसी को बोल नहीं पा रही थी क्योंकि किडनैपर बाइक में निकला जा रहा था, ऐसे में उसे डीसी का साथ लेना ही पड़ा। हालांकि ये सब सुनकर सभी खामोश हैं और अवंतिका वो तो डरी हुई है कि कहीं उसका सच सभी के सामने ना आ जाए। ऐसे में विश्वास फिर से आरंभी पर गुस्सा होता है, लेकिन इस बार आरंभी खुद ही विश्वास का जवाब देती है, वो भी करारा वाला।
5: विश्वास, हमारे बेटे का किडनैपर हमारे घर के बाहर था, तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ फील नहीं हो रहा?
2: बताओ क्या करूं
5: मैं? बताओ, ठीक है मैं बताऊं। तुम पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हो, तुम मुझसे पूछ सकते हो कि किडनैपर कैसा दिखता है, या बाहर जाके ना सीसीटीवी फुटेज की मांग कर सकते हो, और बताओ क्या कर सकते हो।
1: अब विश्वास तो आरंभी का साथ देने से रहा, क्योंकि उसकी तो अवंतिका से मिली भगत है। खैर, वो तो वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन डीसी वो इत्मीनान से अवंतिका को शक के दायरे में रखे हुए है। अब देखना होगा क्या डीसी यानी कि ध्रुव आरंभी के साथ मिलकर अवंतिका और विश्वास का खुलासा करेगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
6: वैसे ये जो हमारे क्यूट से भोला भिल्लू है ना, ये मस्त मौला है, कोई टेंशन नहीं लेते हैं जिंदगी में, अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं। एक्चुअली देखिए, ये ट्रेट है काफी रॉकिंग, लेकिन एक बार ऐसे ही मस्त होकर चलते गए अपनी मस्ती में, नहीं देखा गड्ढा और गिर गए उसमें, बस हो गया इनके लिए शॉकिंग। कुछ ऐसी ही रॉकिंग, कुछ ऐसी ही शॉकिंग है हमारे पास ये सारी खबरें, जिन्हें ले आए हैं हम एक साथ अपने इस अगले सेगमेंट में, जो है रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज।
7: स्टार प्लस के सीरियल ये फितूर 13 की कास्ट को ज्वाइन किया है फरीदा दादी ने। सुरभी ज्योति और उनके हस्बैंड सुमित सूरी के घर आई है नन्ही गुड़िया, ऐसे में उन्होंने किया उनका वेलकम। हिना खान, निया शर्मा और कई और सितारों ने दी है सुरभि और सुमित को ढेर सारी बधाइयाँ।

0: चार साल की उम्र तक दिमाग के अंदर आइडियाज हजारों, पर मुंह से बाहर शब्द जीरो।
1: देख लीजिए जूही मुई का ये नया प्रोमो, जहाँ पर कैसे दुनिया से अलग है जूही का नजारा।
0: पागल बुलाते थे सब लोग मुझे, पर उन्हें ये नहीं पता था कि मैं पागल नहीं

0: को बनाना है केसर रसगुल्ला।
1: लाफ्टर शेफ का ये नया प्रोमो देख लीजिए, जहां पर इस हफ्ते होने वाला है धमाल, क्योंकि आने वाली है धमाल 4 की कास्ट, यानी कि होगी मस्ती अनलिमिटेड।
2: भिगोया और खाया
3: है। साथ तू चाय कॉफी लेंगे
2: तो करना।
4: सर कितना आटा गूंदू? सर आटा माजी सटक रही।
5: अजय को तो एक्चुअली नींबू डालने की जरूरत भी नहीं, उनको देख के वैसे ही फट जाती है।
6: हाथ में घड़ी गले में घड़ी, क्या बता रहा है लोगों को? तेजा के आने के बाद मैं 2 घड़ी का मेहमान।
0: ये डाला के बीच डिग पे है।
5: डिग पे है
0: ना, ये अजय सर ने बना।
2: सब मेरे नाम पे बिल बढ़ रहे हैं यार,
5: ऐसे क्यों लग रहा है? सुबह बच्चा बाथरूम होके आया।
7: हाउ इज योर जॉ लाइन सो शार्प?
5: मैं जौ की रोटी भी खाता हूँ।
4: अजय सर आपने कभी नूनी घी खाया है
5: क्या?
2: नूनी घी
5: ये कहाँ से निकलता है?
4: हरियाणा से।
8: ये कह रहे हैं आपको परमिशन लेनी पड़ेगी।
5: अब हमारी जो रुपए लाख डाल रहा था,
2: हम दोनों एक भी डालते हैं, आपने तो देखा ही है हम दोनों।
0: जैसा मैंने कहा था, यहाँ खाना भी बनेगा, ह्यूमर भी बनेगा, और जिसका खाना सबसे खराब होगा उसको हम आज से फर्श पर ले आए।

0: आज हमारा प्रपोजल डे है और आज के बाद हर साल हम इस दिन अपनी एनिवर्सरी मनाएं।
1: नजर डालीजिए तू ही रे दिल भी के नए प्रोमो पर, जहां आ गई है नई मुश्किलें।
2: प्लीज हमें रास्ता दो।
3: वह एम्बुलेंस है, बुजुर्ग पेशेंट है।
4: आप हमें ड्यूटी करना मत सिखाइए।
5: मैं देखती हूँ मुझे कौन रोकता है।
3: मैदान में जाकर करिए, ये कोई जगह नहीं है प्रोटेस्ट करने की।
6: बेटा मुझे भी पता है कि मुझे क्या करना है।
3: पूरा पब्लिक रोड जाम कर रखा है इन्होंने।
7: दुनिया में उसे गलत देखना पसंद नहीं है।
3: हटाइए सर।
8: एक जो दुनिया से लड़ जाए।
9: तुमने क्या खुद स्वागत किया है खुद का अहमदाबाद में, कि तुम्हारे आने से पहले तुम्हारे आने की खबर हमें मिली।
10: तुम्हें जरा सा भी आइडिया है स्वाति, तुमने जो किया है उससे मेरे रेपुटेशन पे क्या असर पड़ेगा।
8: पर माँ का प्यार न पाए दूसरी ओर।
11: माँ तरस कहते तुझे देखने के लिए सच।
8: माँ का प्यार पलकों पर बिठाए
11: नजर न रखे तुझे।
8: लेकिन
12: आपके बेटे के भाग्य में अकाल मृत्यु का योग है।
11: मैं कल अपने बेटे संजय को लेकर गाँव वाले अम्बे माँ के मंदिर पे चली जाऊंगी।
13: हम बाद में प्रार्थना करने जा रहे हैं ना, चलो
14: जोर से बोलो जय अम्बे।

अमेज़न प्राइम वीडियो पर जल्द आने वाला है नया रियलिटी शो जिसका नाम है अलायंस, जिसे होस्ट करेंगे कुणाल खेमू। देख लीजिए इसका पोस्टर।

0: शोर तब मन को शांति दे।
1: फिर एक बार दर्शकों को देखने को मिलेगी रामानंद सागर कृत रामायण, जो जल्द ही सोनी पल पर आएगी।
0: प्रिय प्रभु श्री राम, देखिए भारत की सर्वप्रिय दिव्य गाथा रामायण, शीघ्र ही।
1: महेश भट्ट लेकर आ रहे हैं नई फिल्म जिसका नाम है नाम। ये जल्द ही दर्शकों को देखने को मिलेगी। इसमें नजर आएंगे वीर पहाड़िया, वरुण शर्मा और साथ ही कई और कलाकार।

0: तो देखा आप सबने, हमारे खास मेहमान सयानी बिल्ली और भोला बिल्लू ने आज आपको करवा दिया ना एंटरटेनमेंट की दुनिया का सफर। अब इनके साथ साथ मैं भी लेती हूँ आपसे विदा। मुलाकात होगी आपसे कल सेम टाइम सेम जगह, जहाँ फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट। और आप सब तो जानते ही हैं ना कि एंटरटेनमेंट के 24/7 अपडेट के लिए आपको क्या करना है। आप हमें फॉलो कीजिए ऑन इंस्टाग्राम, लाइक कीजिए ऑन फेसबुक एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल सास बहू और बेटियां। प्लीज रखें अपना अच्छे से ख्याल। नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

0: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry. TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
10: नीट पेपर की सुरक्षा को लेकर सरकार का बड़ा कदम, टेलीग्राम ऐप पर लगाई अस्थाई रोक, पेपर लीक में हो रहा था इसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल। 21 जून को हो रहा है नीट का री एग्जाम। कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों का पहला जत्था गंगटोक पहुंचा, पहले जत्थे में कुल 44 लोग, इनमें 32 पुरुष 12 महिलाएं। अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में, सुरक्षा इंतजाम को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस समेत कई एजेंसियों ने की मॉक ड्रिल। ज्येष्ठ महीने का आज सातवां बड़ा मंगल, बजरंगबली के आशीर्वाद के लिए मंदिर में उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। आज से कृतिका नक्षत्र में गोचर करेंगे मंगल ग्रह। भारतीय महिला हॉकी टीम ने FIH नेशंस कप में जापान को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल्स में पक्की की अपनी जगह, अंक तालिका में टॉप पर पहुंची टीम। दिल्ली NCR में मौसम हुआ सुहाना, कई इलाकों में बारिश, ठंडी हवाओं से तापमान में गिरावट, हिमाचल और जम्मू में बारिश।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
10: कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों का पहला जत्था गंगटोक पहुंचा, तीर्थयात्रियों का भव्य स्वागत। कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले जत्थे में कुल 44 लोग, 32 पुरुष 12 महिलाएं। कैलाश यात्रा में भक्तों की सुरक्षा के लिए यात्रा दल के साथ 2 लाइन ऑफिसर और एक चिकित्सक मौजूद। आज नाथुला मार्ग की ओर रवाना होगी यात्रा, 20 जून को पहला जत्था नाथुला दर्रे से होकर तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में करेगा प्रवेश। नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा 2015 में हुई थी शुरू, और डोकलाम क्षेत्र में उत्पन्न तनावपूर्ण स्थिति के चलते कई वर्षों के लिए स्थगित करनी पड़ी थी यात्रा। साल 2025 में पुनः शुरू हुई यात्रा। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में तैयारियां तेज, 3 जुलाई से शुरू हो रही है पवित्र यात्रा। श्री अमरनाथ जी यात्रा से पहले अनंतनाग पुलिस ने पहलगाम के टैक्सी स्टैंड पर मॉक ड्रिल की, NDRF SDRF जम्मू कश्मीर पुलिस समेत कई टीमों ने हिस्सा लिया। अभ्यास में सुरक्षा खतरों, लोगों को सुरक्षित निकालने की प्रक्रियाएं, संकट प्रबंधन और अलग अलग एजेंसियों के बीच तालमेल जैसी कई आपातकालीन स्थितियों का अभ्यास किया गया। टीमों ने सालाना यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और उनके सुचारू आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए तेजी से कार्रवाई करने के तरीकों का अभ्यास किया। 28 अगस्त तक चलेगी पवित्र अमरनाथ यात्रा, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह, बड़ी संख्या में यात्रा के लिए पंजीकरण करा रहे हैं श्रद्धालु। जम्मू में अमरनाथ यात्रियों को मिलेगा नया तोहफा, कबाड़ से बना वीस टू वंडर पार्क। पार्क में दुनिया और देश की 14 मशहूर स्मारकों की प्रतिकृति बनाई जा रही है, 40 फीट ऊंची बनाई जा रही है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। बार में कबाड़ और रिसाइकल से हवा महल से लेकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण। अमरनाथ यात्रियों के लिए आकर्षण बनेगा वेस्ट टू वंडर पार्क, स्थानीय कारोबार को मिलेगा बढ़ावा। जम्मू स्मार्ट सिटी मिशन के तहत लगभग 11 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है पार्क, 80% कार्य पूरा। चारधाम यात्रा में उमड़ रहा है आस्था का जनसैलाब, अब तक 35 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। सबसे ज्यादा बाबा केदार के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं भक्त, आंकड़ा पहुंचा 12.5 लाख के पार। बद्रीनाथ धाम को लेकर भी भक्तों में जबरदस्त उत्साह, अब तक 11.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। यमुनोत्री गंगोत्री में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, दोनों जगहों पर करीब 12 लाख भक्तों ने दर्शन किए। चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह, अब तक 50 लाख से ज्यादा भक्तों ने रजिस्ट्रेशन कराया।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम

0: Planning for your family's future? Put it in the right hands with LegalZoom. It's too important to let it fall into the wrong hands. LegalZoom is the simple, affordable online solution for estate planning. If you need a will or trust, LegalZoom guides you through every step to ensure your loved ones and assets are protected. So if you need a legal hand, visit LegalZoom. LegalZoom provides access to independent attorneys and self-service tools. LegalZoom is not a law firm and does not provide legal advice.
1: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away.
2: You're listening to CNBC.
3: This is 80s hits exclusively on TuneIn. This is Pop Hits.
4: Keep it on smooth jazz.
5: This is Roots Reggae
6: exclusively on TuneIn.
7: This is classic hip hop
8: exclusively on TuneIn.
1: Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected. The shows, music, and news you love anytime you want.
9: है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती हैं ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
12: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
11: अविश्वास में विश्वास बसता है
10: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
1: गुड न्यूज टुडे
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे
14: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
12: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
11: अविश्वास में विश्वास बसता है
10: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
1: गुड न्यूज टुडे
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे
14: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।

0: भाई और बहनों नमस्कार, मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूँ वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूँ, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूँ। इस उम्र में जहाँ लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूँ। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं इसका जीता जागता साबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो ये है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी गिर पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असरकारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है, इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है, इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। ये सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर यह सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्थर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में यह है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंध पत्र, ये गंधपुरा पत्र में 85 से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में यह है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है, ये मेजनकरी तेल, इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु, ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल, ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। ये है ट्रिक टू, इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन, अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भस्म, यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है, साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं। फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
2: Tune in's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry. TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना.

0: You may already think of TuneIn as your go-to audio app, but it's also your go-everywhere audio app. Because TuneIn works on just about every device you already use. Smart speakers? Yep. In your car? Absolutely. Phone or tablet? Yeah, of course. Wherever you are, your audio comes with you. And if you want to go hands-free, just say open TuneIn Live on your Alexa-enabled device and follow the interactive prompts to find the station you're looking for. No tapping, no searching. Just press play with your voice.
1: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज़ टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
6: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
7: नीट पेपर की सुरक्षा को लेकर सरकार का बड़ा कदम, टेलीग्राम ऐप पर लगाई अस्थाई रोक, पेपर लीक में हो रहा था इसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल। 21 जून को हो रहा है नीट का री एग्जाम। कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों का पहला जत्था गंगटोक पहुंचा, पहले जत्थे में कुल 44 लोग, इनमें 32 पुरुष 12 महिलाएं। अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारी अंतिम चरण में, सुरक्षा इंतजामों को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस समेत कई एजेंसियों ने की मॉक ड्रिल। ज्येष्ठ महीने का आज 7वां बड़ा मंगल बजरंगबली के आशीर्वाद के लिए मंदिरों में उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। आज से कृतिका नक्षत्र में गोचर करेंगे मंगल ग्रह। भारतीय महिला हॉकी टीम ने FIH नेशंस कप में जापान को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल्स में पक्की कर ली जगह, अंक तालिका में टॉप पर पहुंची टीम। NCR में मौसम हुआ सुहाना, कई इलाकों में बारिश, ठंडी हवाओं से तापमान में गिरावट, हिमाचल और जम्मू में बारिश।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो।
8: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। और आज हम आपको बजरंग बली की एक ऐसी अद्भुत स्तुति बताने जा रहे हैं जिसके पाठ से मिलती है शारीरिक कष्टों से मुक्ति। देखिए माना जाता है कि अगर आप सेहत से जुड़ी समस्याओं से लगातार परेशान हैं, तो इसके लिए रामबाण उपाय है हनुमान बाहुक। माना जाता है कि महाबली हनुमान की उपासना से हर दुख और हर कष्ट दूर हो सकते हैं। तो आज जानेंगे कि हनुमान बाहुक के पाठ से आपकी किन समस्याओं का हल निकल सकता है। तो आइए जानते हैं कि हनुमान बाहुक के पाठ से कैसे दूर होंगे आपके कष्ट।

0: होने लगे शारीरिक विकारों से परेशानी, उस अद्भुत पाठ का नहीं है कोई सानी। जीवन से नकारात्मक ऊर्जा होगी नष्ट, बीमारियों में हनुमान जी को बनाएं अपना ईष्ट। हम सभी जानते हैं कि श्री राम के अनन्य भक्त हैं हनुमान। महावीर की कृपा से होगा रोग, बाधाओं और संकटों का समाधान। भक्ति और शक्ति के अद्भुत प्रतीक हैं वीर हनुमान। वही है सर्वशक्तिमान महाबुद्धिमान। हनुमान जी शिव जी के अंश अवतार हैं और श्री राम के अनन्य भक्त हैं। हनुमान जी शक्ति और ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं। इनकी उपासना से तुरंत कष्टों का नाश हो जाता है, जीवन से हर तरह की बाधा दूर हो जाती है। हनुमान जी की विभिन्न स्तुतियों से जीवन में सफलता मिलती है, हर तरह के कष्ट का निवारण होता है। धर्म ग्रंथ और पुराण कहते हैं कि हनुमान जी सरल भक्ति और श्री राम के नाम जप से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। आज हम आपको महाबली से जुड़ा ऐसा महाप्रयोग बताने जा रहे हैं जो आपकी पीड़ा का अंत कर सकता है। वो अद्भुत पाठ है हनुमान बाहुक का, जो आपको शारीरिक कष्टों से निजात दिला सकता है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि हर कष्ट दूर करेगा हनुमान बाहुक, क्योंकि हर दर्द का रामबाण उपाय है हनुमान बाहुक।
1: तो ये बड़ा सुंदर समय माना जाता है, हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं इस दिन। और हनुमान बाहुक का विशेष फल बताया गया है, बड़े मंगल में जो करता है। सामान्य हनुमान बाहुक का फल प्राप्त करने के मुकाबले कई हजार गुना तेजी से आपको फल प्रतिफल मिलने लगता है, आप एक बार बड़े मंगल को इसका पाठ कर ले। तो
0: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लगभग हर इंसान किसी न किसी शारीरिक कष्ट या दर्द से पीड़ित है, और कई बार तो बीमारी के कारणों का ठीक ठीक पता भी नहीं चल पाता और इंसान को दर्द झेलते रहना पड़ता है। तो देखिए, सेहत की समस्याओं से निजात दिलाने में बजरंग बली की उपासना कैसे लाभकारी है।
1: देखिए, नाम से ही पता लगता है, बाहुक अर्थात हमारी बाहें। सामान्यतया ये माना जाता है कि इसकी संरचना तुलसीदास जी ने तब की थी जब उनको तंत्र प्रयोग और रोग की वजह से पीड़ाएं बाजू में बहुत थी, तो इसके पाठ करने से ही उनको तंत्र और शरीर में होने वाली, विशेष तौर पर बाहों में होने वाली पीड़ा को समाप्ति मिल गई थी।
0: हनुमान बाहुक और निरोगी काया, भक्ति और शक्ति के अद्भुत प्रतीक है महाबली हनुमान। सरल भक्ति और प्रेम से प्रसन्न होते हैं हनुमान। इन्होंने ही लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा की थी। हनुमान जी के विभिन्न मंत्र और स्तुतियों के पाठ से सेहत उत्तम हो सकती है। विशेष तरीके से हनुमान बाहुक का पाठ किया जाए तो हर बीमारी से निजात पाई जा सकती है। माना जाता है कि इस धरती पर साक्षात विराजमान जो भगवान, वही है हनुमान जी। हनुमान जी की उपासना परम फलकारी मानी जाती है, अद्भुत परिणाम देने वाली है, और इसीलिए किसी चमत्कार से कम नहीं है हनुमान बाहुक का पाठ। माना जाता है कि तमाम शारीरिक कष्टों से मुक्ति पाने के लिए वरदान जैसे है हनुमान बाहुक का पाठ।
1: कि हनुमान बाहुक, बाहुक हमारी खाली बाहें ही नहीं है, वो हमारी किसी भी कार्य को करने की क्षमताएं हैं, हमारा आत्मबल है। तो हनुमान बाहुक का पाठ करने वाले व्यक्ति की क्षमताएं, उसकी कार्य क्षमताएं दोनों बढ़ने लगती हैं और अपने कार्य को निर्बाध रूप से, निश्चित रूप से परिपूर्ण करता है व्यक्ति।
0: माना जाता है कि हनुमान बाहुक के पाठ के असर को अपने जीवन में महसूस कर चुके लोग भी बताते हैं कि दर्द के अंत का सबसे उत्तम साधन है हनुमान बाहुक। चलिए आपको बताते हैं तुलसीदास को कैसे मिली इस पाठ को करने से असहनीय पीड़ा से मुक्ति। हनुमान बाहुक तुलसीदास जी की लिखी हुई एक स्तुति है। कलयुग के प्रकोप से जब तुलसीदास को पीड़ा हुई तो उन्होंने हनुमान बाहुक की रचना की। ऐसा माना जाता है कि सेहत की समस्याओं के लिए इसका पाठ अमोघ है, खास तौर पर दर्द के मामले में इसके पाठ से बहुत जल्दी लाभ होता है। अगर रोग का कारण समझ नहीं आ रहा हो तो हनुमान बाहुक रोग का नाश कर देता है। ज्योतिष के जानकार और हनुमान बाहुक की महिमा को जान चुके विद्वान बताते हैं कि बड़ा ही चमत्कारी है हनुमान बाहुक का पाठ। तो अब आपको किसी परेशानी या समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब आपके हर दर्द का अंत करेंगे महाबली। लेकिन महाबली हनुमान को प्रसन्न करने के लिए कैसे करना है हनुमान बाहुक का पाठ, ये हम आपको आगे बताने वाले हैं। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। माना जाता है कि हनुमान बाहुक के पाठ से हनुमान जी हर लेंगे आपके सारे संकट। हनुमान बाहुक की रचना आखिरकार कैसे हुई और क्या क्या इसके लाभ हैं, ये तो आपने जान लिए। पर हनुमान बाहुक के पाठ के साथ जुड़े तमाम नियमों का भी पालन करना बेहद जरूरी होता है। तो हनुमान बाहुक के लाभ पाने के लिए कैसे करना है ये पाठ और क्या होंगी इसकी सावधानियां, आइए चलिए आपको बताते हैं।

0: जब सेहत की समस्याएं कर रही हो परेशान, आपको नहीं मिल रहा हो बीमारी का समाधान, तब हनुमान बाहु का पाठ बन सकता है आपके लिए वरदान। क्योंकि जिसके साथ होते हैं साक्षात हनुमान, उसके बन जाते हैं सभी बिगड़े काम। क्योंकि देवता भी करते हैं महाबली हनुमान जी का गुणगान, जो भक्तों को देते हैं संकटों से रक्षा करने का वरदान।
1: किसी व्यक्ति को शनिकृत पीड़ा हो, मुकदमे से परेशान हो, या शत्रुओं ने अति बल उसको परेशान किया हो, तो हनुमान जी के समक्ष बैठ के विशेष तौर पे आंवले या चमेली के तेल का दिया जलाएं, उनको हनुमान जी को चोला अर्पण करें और फिर लाल रंग के आसन पे लाल वस्त्र धारण करके और लाल चंदन की माला से इसका जाप करने वाला व्यक्ति हनुमान बाहक को 108 बार कर ले, तो आपके मन की शत्रु नाश की पीड़ा तुरंत से पहले प्राप्त हो जाती है।
0: सनातन परंपराएं कहती हैं कि मंत्रों और पाठ अभिमंत्रित किए हुए होते हैं, और जो भी साधक मुसीबत में इन पाठ मंत्र और स्तुतियों का आवाहन करते हैं, उसके जीवन में सभी विकारों का अंत हो जाता है। हनुमान जी के प्रताप से ऐसा ही अद्भुत और कल्याणकारी पाठ है हनुमान बाहुक। माना जाता है कि हनुमान बाहुक का नित्य पाठ करने वालों के चारों ओर एक शक्तिशाली रक्षा कवच बन जाता है, जिससे बुरी शक्तियों का प्रभाव खत्म हो जाता है। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि हनुमान जी की महिमा का कोई सानी नहीं, रघुकुल पर आने वाले हर संकट की ढाल बन गए थे मारुति, उनकी शक्ति का कोई पैमाना नहीं, बड़े से बड़ा सूरमा भी उनकी शक्ति से नहीं टकराता, क्योंकि वो धर्म के रक्षक हैं, वो कलयुग में अधर्म का नाश करने वाले हैं। तो आप भी शारीरिक कष्टों से ना हो परेशान, क्योंकि महाबली के पास है हर दर्द का समाधान। ज्योतिष के जानकार की माने तो लंबी बीमारी, दर्द और कष्ट का सबसे उत्तम और अचूक उपाय है हनुमान बाहुक का पाठ। लेकिन इस पाठ के कुछ विशेष नियम भी हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या है हनुमान बाहुक के पाठ की उत्तम विधि।
1: हनुमान बाहुक का श्वेत वस्त्र या लाल रंग के वस्त्र धारण करके सिंदूरी हनुमान जी के मंदिर में लाल आसन पे बैठ के, और अगर ऐसे बैठ सके जिसमें बोलते हैं कि एक पांव के ऊपर बैठना बोलते हैं ना, हनुमान जी की जो बैठने का आसन है उस पे यदि बैठ के, और शुद्ध घी का दीपक या आंवले के या चमेली के तेल का दीपक जला के पाठ करते हैं, तो निश्चित आपको उसका तुरंत प्रतिफल मिलता है।
0: हनुमान बाहु के पाठ की विधि। हनुमान जी के आशीर्वाद मुद्रा के चित्र या प्रतिमा की स्थापना करें। प्रभु श्री राम की प्रतिमा की भी स्थापना जरूर करें। घी का दीपक जलाएं और एक पात्र में जल भरकर रखें। पहले श्री राम की स्तुति करें और फिर हनुमान जी का ध्यान करें। इसके बाद हनुमान बाहुक का पाठ करें। पाठ के बाद पात्र का थोड़ा सा जल रोगी को पिला दें, बाकी बचा हुआ जल शरीर के रोगग्रस्त हिस्से पर लगाएं। हनुमान बाहुक के पाठ की शुरुआत मंगलवार को करें।
1: इसकी विधि कही गई है विषम संख्या में करना चाहिए, जैसे 1, 3, 5, 7, 11 या 31 या 21, और निर्बाध रूप से करें, हर मंगलवार को करें, प्रतिदिन भी कर सकते हैं पर मंगलवार से आरंभ करें, तो निश्चित शरीर में होने वाली पीड़ाएं, तंत्र संबंधी परेशानियां दूर होने लगती हैं।
0: माना जाता है कि किसी भी पाठ के चमत्कारी प्रभाव तभी देखने को मिलते हैं जब आपका आस्था के साथ पूर्णता समर्पण हो। ईश्वर के प्रति समर्पित भाव से अनुराग हो, तभी भक्ति की शक्ति महसूस होती है। माना जाता है कि हनुमान जी पर पूर्ण विश्वास करने से ही आपके कष्टों का निवारण होगा, आपकी बीमारियों और नासूर बन चुके रोग दूर हो सकते हैं। कलयुग में प्रभु हनुमान ही ऐसे देव हैं जो सशरीर धरती पर अपने भक्तों के कल्याण के लिए मौजूद है। आस्था और विश्वास कहता है कि सच्चे मन और लगन से की गई पवन पुत्र की आराधना कभी निष्फल नहीं जाती। फिर आपके जीवन में चाहे कितनी परेशानियां और कष्ट क्यों ना हो, अंजनी पुत्र महाबली हनुमान आपकी हर समस्या का अंत कर देते हैं। तो आप भी बजरंग बली का ध्यान कीजिए और उत्तम विधि से हनुमान बाहुक का पाठ कीजिए, और फिर देखिए इस दर्द निवारक पाठ के प्रभाव से कैसे होगा आपके कष्टों का अंत।
2: तो चलिए इसी के साथ प्रार्थना हूँ स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ।
3: गुड न्यूज चुनी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को।
4: नए काम की शुरुआत करते समय किन बातों का ध्यान रखें, नए काम की शुरुआत में आपकी राशियों का क्या महत्व है, और नए काम की शुरुआत क्या खा करके करें कि सफलता मिले, नए काम का ज्योतिष से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
5: There's a wild world waiting on Earth Day 365. Hunt with predators, dive with sharks, explore the unexplored, from nature, science, and space. To premiere original series and exclusive IMAX theater documentary films. Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel.
6: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.
3: एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। Good news today. अच्छी खबर, सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: नए काम की शुरुआत करते समय किन बातों का ध्यान रखें? नए काम की शुरुआत में आपकी राशियों का क्या महत्व है? और नए काम की शुरुआत क्या खा करके करें कि सफलता मिले? नए काम का ज्योतिष से क्या है संबंध? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्ट।
1: Tunein's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have. Looking for your favorite local radio station?

0: Questions? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें

0: न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
5: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ी'स गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
0: फ्रांस के एवन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, G7 शिखर सम्मेलन में ले रहे हिस्सा, दुनिया के नेताओं के साथ कई वैश्विक मुद्दों पर बातचीत। रक्षा मोर्चे पर बढ़ेगी भारत की ताकत, वायुसेना बनाएगी आत्मघाती स्वदेशी कैमिकेज ड्रोन, 16,000 फीट की ऊंचाई पर भी अचूक वार करने में सक्षम। नीट री एग्जाम तक देश में टेलीग्राम पर अस्थायी रोक, 21 जून को परीक्षा, 22 जून तक काम नहीं करेगा ऐप। कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था गैंगटॉक पहुंचा, पहले जत्थे में कुल 44 लोग, इसमें 32 पुरुष 12 महिलाएं शामिल। अमरनाथ यात्रा की तैयारियां तेज, सुरक्षा को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस समेत कई एजेंसियों ने की मॉक ड्रिल, 3 जुलाई से पवित्र यात्रा की हो रही है शुरुआत।

लिव इन वर्सेस शादी वर्सेस मान सम्मान, इसी को लेकर आज चर्चा हम करेंगे। अक्सर युवा जोड़ों के अधिकारों की हमेशा बात होती आई है। लिव इन में रह रहे कपल्स की सुरक्षा की डिमांड अक्सर होती है, लेकिन पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के एक अहम फैसले ने माता पिता की गरिमा और सम्मान की हिफाजत का पहलू सामने रखा है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे एक कपल को पुलिस सुरक्षा देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि घर से भागकर साथ रहने से परिवार की प्रतिष्ठा प्रभावित होती है और साथ ही माता पिता के सम्मान और गरिमा के साथ जीने के अधिकार का भी ये उल्लंघन है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि भारत की कानूनी और सामाजिक व्यवस्था परंपराओं, मान्यताओं और रीति रिवाजों पर टिकी है। विवाह आज भी समाज और कानून दोनों के नजरिए में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो पूरा मामला क्या है, कोर्ट ने लिव इन कपल को क्या नसीहत दी है, पूरा मामला तफसील से आपको आगे बताएंगे, साथ ही एक्सपर्ट से इसको समझेंगे भी। लिव इन को लेकर हमारे देश में नियम क्या है, युवा जोड़ों के साथ ही माता पिता के बुनियादी अधिकारों को भी आज समझने की कोशिश करेंगे। बदलते परिवेश में समाज का नजरिया क्या है, इस पर भी आगे चर्चा होगी।

0: तो शादी लिविन का आखिर क्या है ये पूरा मामला, ये पहले हम आपको बता देते हैं। दरअसल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुना है। इसमें युवक और युवती की सुरक्षा की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने कहा कि भागकर लिविन में रहने से परिवार की बदनामी होती है, साथ ही भागने से माता पिता के सम्मान के साथ जीने के अधिकार का भी उल्लंघन होता है। वहीं कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि कुछ समय साथ रहना मान्य लिव इन रिलेशनशिप नहीं है। कोर्ट ने आगे कहा, टिप्पणी भी की कि परंपराओं, मान्यताओं, रीति रिवाजों पर देश की कानूनी सामाजिक व्यवस्था आधारित है। साथ ही अदालत ने विवाह को पवित्र रिश्ता बताया है। पंजाब के युवक युवती की याचिका थी। याचिका के मुताबिक युवती का परिवार रिश्ते में हस्तक्षेप कर रहा था। दावा यह भी किया गया कि युवती का परिवार संबंध खत्म करने का दबाव बना रहा था। लड़के और लड़की दोनों की उम्र 18 साल से ऊपर है। लड़के की उम्र फिलहाल 21 साल से कम है, यानी वो कानूनी तौर पर शादी के योग्य नहीं है। दोनों की शादी भी नहीं हुई है। कानूनी उम्र पूरी होने के बाद दोनों की शादी की इच्छा है, लेकिन अब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले पर चर्चा छिड़ गई है, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि लड़के लड़की के भागकर लिव इन में रहने से परिवार की बदनामी होती है। यह ऐसी टिप्पणी है जिसने माता पिता का पहलू भी सामने रखा है, उसे समझा है, यानी कि बात शादी, समाज, संस्कार, सम्मान की है। इस टिप्पणी के बाद अदालत ने कहा कि पुलिस सुरक्षा देने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है। यानी अब सवाल यह है कि क्या यह मामला ऐसे ही दूसरे केसों पर भी नजीर बनेगा।
1: ये मामला था एक ऐसे लिव इन में रह रहे कपल का जिन्होंने हाईकोर्ट का रुख करके सुरक्षा मांगी थी। हालांकि कोर्ट ने सुरक्षा देने से इनकार तो किया ही, लेकिन जो टिप्पणियां की वो अपने आप में काफी अहम है। कोर्ट की ओर से कहा गया कि एक तो जो पुरुष है इस मामले में उसकी आयु तक अभी पूरी नहीं हुई है कि वो शादी कर सके। हालांकि लिव इन में रह रहा ये कपल आगे जाके शादी करेगा या नहीं, इस पर भी कोर्ट ने सवाल पूछा था, जिस पर उनका कहना था कि शादी के लिए राजी है, लेकिन जो इसमें लड़की है उनके परिवार की ओर से दबाव बनाया जा रहा है और इस तरीके की धमकियां दी जा रही है कि लड़के को फंसाया जा सकता है, कोई जालसाजी उसके खिलाफ की जा सकती है और उसकी जान को खतरा है। इस आधार पर सुरक्षा मांगी गई थी, जिससे कोर्ट ने सुरक्षा देने से इनकार कर दिया और ये कहा कि घर से भागे जो कपल है या बाहर लिव इन में रह रहे हैं उनको सुरक्षा नहीं दी जा सकती, क्योंकि इससे परिवार की जो गरिमा है, प्रतिष्ठा है और उनके सम्मान में नुकसान पहुंच सकता है, कमी आ सकती है और साथ साथ इससे परिवार की इमेज भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकती है, खराब हो सकती है, जिसके चलते कोर्ट ने जो सामाजिक ढांचा है उसका उदाहरण देते हुए इस मामले में इस कपल को जो लिव इन में रह रहा है सुरक्षा देने से मना कर दिया। हालांकि ये आदेश 5 जून को जारी किए गए, लेकिन हाल ही में अपलोड होने के बाद जब पूरा मामला सामने आया और अब अगला राह क्या तलाशा जाए, ये कोशिश लिव इन में रह रहे इस कपल की ओर से की जा रही है, तब पूरी डिटेल इस मामले की सामने आई है।
0: दरअसल हमारे संविधान का अनुच्छेद 21 व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है और इसी को आधार बनाकर लिव इन को कई मामलों में वैध माना भी जाता है, लेकिन इसी आर्टिकल 21 के तहत किसी भी व्यक्ति को गरिमापूर्ण और सम्मानपूर्ण जीवन का बुनियादी अधिकार भी दिया गया है। व्यक्तिगत आजादी और गरिमापूर्ण सम्मानपूर्ण जीवन, आज सिक्के के इन्हीं दो पहलुओं पर आगे हम चर्चा करेंगे। युवा जोड़ों को जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक वैसे उस माता पिता को, उस परिवार को जिसका कोई युवा जिसकी उम्र शादी के योग्य ना हो और वो घर छोड़कर भाग जाए या फिर अलग रहने लग जाए, उसे अपने हितों की रक्षा और सम्मानपूर्वक जीवन का मौलिक अधिकार है। तो चलिए, खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं एडवोकेट रेखा अग्रवाल, लॉयर भी हैं और वुमेन राइट एक्टिविस्ट भी हैं। ज्योति तिवारी, वुमेन राइट एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मनीषा सिंघल, साइकोलॉजिस्ट हैं, मैरिज काउंसलर भी हैं। और विराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सेक्रेटरी एंड स्पोक्स पर्सन हैं सेव इंडिया फैमिली फाउंडेशन के। इस पूरे मामले को लेकर रेखा जी, सबसे पहले आप ही के पास आते हुए, कोर्ट ने सिक्के के इन दोनों पहलुओं को समझाया है। अब यहां पर कोर्ट ने कई ऐसे मामलों का को आधार भी बनाया है जहां पर लिविन को सही और जेन्युइन बताया गया है, लेकिन यहां साथ ही साथ परिवार की के सम्मान की बात भी कही गई है। कोर्ट के इस फैसले को किस नजरिए से देखा जाए?
2: देखिए, ये फैसला जो है ना, इसको दोनों तरीके से देखा जा सकता है। आजकल नो डाउट ये एक तरह से एक ट्रेंड सा बन गया है मॉडर्न जमाने के अंदर कि लोग जो है शादी की जिम्मेदारियों से शायद उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते इतने इजीली, और एक बार उसको ट्राई करके देखते हैं कि क्या हम एक बार लिव इन रिलेशनशिप में रह के देखें कि हम एक दूसरे के साथ में शादी करने के लायक हैं कि नहीं है। अब इस केस के अंदर हमारे जो देश के जो जितने भी पुराने ऑर्डर्स आ रखे हैं वहां पर लिव इन रिलेशनशिप को रिकग्नाइज भी किया गया हुआ है। ऐसा नहीं कि लिव इन रिलेशनशिप की कोई भी लीगल सैंक्टिटी नहीं है, हालांकि वो मैरिज नहीं है, पर जो घरेलू हिंसा का कानून है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो 2005 में आया उसे पहली बार लिव इन रिलेशनशिप को भी मान्यता दी गई कि अगर कोई औरत जो है किसी पुरुष के साथ बिना शादी के रहती है तो उसको हर तरह की वो सुरक्षा मिलेगी जो शादीशुदा जोड़ा को मिलती है। परंतु इस केस के अंदर जो थोड़े से फैक्ट्स जो है, मुझे ऐसा लगता है कि इस केस के अंदर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सारे तथ्यों को इवैल्यूएशन करने के बाद में भी ये फैसला पारित किया है कि क्योंकि यहाँ पर जो लड़के की जो उम्र है वो 21 साल की नहीं है। हाँ हाँ, हालांकि अगेन हम बात करेंगे तो हमारे देश के अंदर एक तरह के जिसमें कहूंगी कि विवाद इस बात का भी है कि जब अब 18 साल का लड़का जो है वो वोट कर सकता है पर वो शादी क्यों नहीं कर सकता। लड़की तो कर सकती है 18 साल के बाद में, पर लड़का क्यों नहीं कर सकता, उसको 21 साल तक रुकना ही पड़ेगा। तो जहां पर लड़के की उम्र 21 साल करी गई है तो मेरे समझ के अंदर इसीलिए करेंगे कि तब तक थोड़ी सी लड़के के अंदर खास करके क्योंकि ये समझा जाता है कि पुरुष एक जो एक सामाजिक ट्रेंड चलता आया है कि पुरुष इज द हेड ऑफ द फैमिली, उसको घर की जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी, आर्थिक भी सामाजिक भी तो पारिवारिक भी संभालनी पड़ेगी। तो क्या इस केस के अंदर जो पंजाब हाईकोर्ट के सामने आया है, ऐसा लगता है कि लड़का जो 21 साल से भी कम रहे, यानी कि आप सोच सकते हैं कि 18 से और 21 के बीच का है वो, तो अगर वो इतना छोटा जो पुरुष है क्या वो अपने आप में सक्षम है परिवार की जिम्मेदारियां निभाने के लिए, परंतु इतनी जल्दी भी क्या है उसको कि वो लिव इन रिलेशनशिप के अंदर रहे, वो 21 साल के बाद में भी इसको कर सकता है। तो कुल मिला के जो कोर्ट ने सामाजिक पहलू को ज्यादा देखा है, मुझे लगता है कानूनी पहलू तो ये बिल्कुल सही है, आपने जो अनुच्छेद 21 के बारे में अभी जिक्र किया वो बिल्कुल सही है कि आर्टिकल 21 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है हर भारतीय नागरिक को ये सुरक्षा का अधिकार देता है कि अपने जीवन को जैसे जीना चाहता है वो जी सकता है। शादी करनी है तो करो, नहीं करनी तो मत रहो, कुंवारे रहना तो कुंवारे रहो, लिमिट में रहना तो लिमिट में रहो।
0: लेकिन रेखा जी उसकी कोई एज लिमिट है 18 साल से ऊपर? यहाँ पर लड़की इस पूरे केस की बात करें, लड़का 21 साल का नहीं है। मैं वापस से उसी लाइन पर आऊंगी जहां से आपने अपने जवाब की शुरुआत की थी कि हम रह कर देख लेते हैं, नहीं जमेगी तो फिर शादी नहीं होगी। हालांकि यहाँ पर ये लोग दोनों कह रहे हैं कि हम कमिटेड हैं दोनों।
2: जी, कमिटमेंट कहना बहुत आसान है, कमिटमेंट एक सिर्फ एक शब्द है जो आप जब किसी के साथ में रहते हैं कुछ टाइम तक आप हर तरीके से अपने आप के अंदर सक्षम होते हैं जीवन की जिम्मेदारियों को संभालने के लिए, तब देखना पड़ेगा। ये कहना कागज के ऊपर लिखना कि हाँ जी हम एक दूसरे से कमिटेड हैं, हम शादी भी करेंगे, तो जब शादी भी करेंगे तो शादी के बाद आप तब तक रुक भी सकते हैं। इस कम उम्र के अंदर मुझे जो मेरी समझ के अंदर जो हाईकोर्ट का फैसला है वो इस केस के अंदर नो डाउट ये कोर्ट के पास पावर है कि किसी भी कपल को अगर वो लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो उनको प्रोटेक्शन मिलेगी। कोई भी व्यक्ति जो है चाहे उनके माता पिता ही हैं वो कानून को हाथ भी नहीं ले सकते,
0: उनके साथ एज ग्रुप कोई भी हो सकता है,
2: फिजिकल वायलेंस नहीं कर सकते, उनको फोर्स नहीं कर सकते कि आप लिव इन में क्यों रह रहे हो। देखिए जब 18 साल के हो गए तो लड़का भी है, वो 18 साल के बाद में जो चाहे वो कर सकता है, उसके माँ बाप उसको रोक नहीं सकते कि तुम लिव इन में क्यों रह रहे हो, अभी तो तुम्हारी शादी की उम्र 21 साल की नहीं हुई। देखिए दोनों चीजों को हमको देखना है, एक कानूनी अधिकार है प्रोटेक्शन का, सिंपली बिकॉज वो 21 साल का नहीं हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी उसके साथ मनमानी करे और ये कहे कि देखो तुम तो 21 साल के नहीं हुए हो। बट कोर्ट ने अपने विवेक के अंदर इस बात को देखा है कि जब लड़के की उम्र पुरुष की उम्र इतनी कम है और अभी वो शादी करने के योग्य नहीं है, लिव इन रिलेशनशिप्स उन व्यक्तियों के लिए करी जाती है अलाउड जहां पे दोनों शादी करने के लिए कानूनी तौर के ऊपर सक्षम है पर वो करना नहीं चाहते, यानी कि पुरुष 21 साल का है और लड़की 18 साल की है और दोनों के पास में कोई भी स्पाउस नहीं है, उसको लिव इन कहते हैं। आप मैरिड है, आपका अपने पति से या पत्नी के साथ झगड़ा और फिर भी आप किसी और के साथ रहना शुरू कर देते हैं, वो लिव इन में नहीं काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पर जब आप लड़का 21 साल का नहीं हुआ है तो तो वो शादी, जब वो शादी करने के ही योग्य नहीं है तो वो लिव इन करने के लिए भी योग्य नहीं है, क्योंकि लिव इन इज एन ऑल्टरनेट टू मैरिज। मैं शादी नहीं करना चाहता, मैं कर सकता हूँ।
0: मैं लौटती हूँ रेखा जी, विराट जी अब आपके पास आना चाहूंगी। पूरे मामले को आप किस तरीके से देखते हैं? यहाँ पर कोर्ट ने एक तरीके से परिवार का, माता पिता का, समाज में उनके सम्मान का, उसकी बात को भी इक्वली वैल्यू किया है।
3: जी, तो मैं पहले तो ये कहना चाहूंगा कि हमारे देश में आज भी ऐसी मानसिकता बनी हुई है कि लिव इन रिलेशनशिप को एक शक की नजर से देखा जाता है, और कई लोग चाहते हैं कि इसे क्रिमिनलाइज कर दिया जाए। लेकिन अगर लिव इन रिलेशनशिप होता है तो उसमें ब्रेकअप होने की पॉसिबिलिटी भी है, और हर ब्रेकअप एक्सप्लॉयटेशन या क्राइम नहीं होता। पुरानी मानसिकता है कि लिव इन रिलेशनशिप को क्रिमिनलाइज कर दो, लिव इन को गलत बताया जा रहा है, और ब्रेकअप हुआ तो रेप केस की तरफ लेकर जाया जाता है, BNS 69 आ जाता है। अगर ब्रेकअप हो जाए और लड़के ने किया तो बंदे को जेल में डाल दिया जाता है। अगर दो एडल्ट्स अपनी मर्जी से रिलेशनशिप में थे तो ब्रेकअप और क्राइम के बीच की रेखा को स्पष्ट होना चाहिए।
0: ठीक है।
3: और समाज में भी लिव इन में लोगों को प्रोटेक्शन नहीं दी जाती, कई जगह पे उन्हें रेंट पर घर नहीं दिया जाता। अगर लिव इन को अलाउ करते हैं तो एडल्ट्स को कंसेंशुअल रिलेशनशिप को समझने के लिए भी एक बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए, ना कि रेप केस फाइल करना चाहिए।
0: ठीक है।
3: और हमारी जुडिशरी और सोसाइटी को यह समझना होगा कि रिलेशनशिप का फेलियर और क्रिमिनल ऑफेंस एक ही बात नहीं है। और जैसा कि रेखा जी ने भी बोला कि आर्थिक जिम्मेदारियां, तो मेरा मानना है कि ऐसे अरेंजमेंट में 25-27 साल की एज के बाद ही एनकरेज किया जाना चाहिए लिव इन के लिए, जब करियर और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का बेस बन चुका हो।
0: ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन अब यहां पर जब कोर्ट ये कहता है कि लिव इन की बात तो एक है, उसमें भी लड़का 21 का नहीं हुआ है, यानी कि शादी लायक उसकी उम्र नहीं हुई है, लड़की भले ही 18, क्योंकि दोनों 18 से ज्यादा हैं, लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने माता पिता के सम्मान की बात को आगे रखा है, सामाजिक वैल्यूज को उन्होंने आगे रखा है। लिव इन के नाम पर आप ऐसे नहीं कर सकते। देखिए, आप इस पहलू को भी समझिए, अगर किसी माता पिता के पेरेंट बच्चों को, बच्चे लिव इन में जाते हैं और अगर कहीं सोसाइटी में बात फैलती है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि समाज एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन उसका खामियाजा माता पिता को भुगतना पड़ता है।
3: तो एज अ मेंस राइट्स अगर मैं बोलूं तो वी आर अपोजिंग द सेक्सुअल लिबरलाइजेशन। ठीक है, माई चॉइस कल्चर और हाई बॉडी काउंट कल्चर जो चल रहा है, कैजुअल रिलेशनशिप कल्चर के सोशल इम्पैक्ट पे खुलकर डिस्कशन भी होना चाहिए। लोगों को लिव इन के बेनिफिट्स ही नहीं बल्कि रिस्क भी बताए जाने चाहिए कि इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, और फैमिली और सोशल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। क्योंकि फ्रीडम टू गेट इन एंड फ्रीडम टू गेट आउट दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट होने चाहिए, क्योंकि गेट इन में किडनैपिंग या रेप केस अलग तरीके से लग सकता है और गेट आउट में रेप केस अलग तरीके से लगता है। तो ये हमारे जनरेशन को समझने की भी जरूरत है। और जैसे मैंने बताया था कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, तो दोनों के पास कम से कम 10-15 लाख की सेविंग्स हो, इमरजेंसी फंड हो और एसेट्स होने चाहिए
0: उस एज में। तो बहुत नहीं, वो बात तो सही, उस एज में मैच्योरिटी आ जाती है, और मेरे ख्याल से काफी हद तक जितने भी जजमेंट इस तरह के आए हैं वो शायद जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि दोनों बहुत मैच्योर हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, समझदार है, एक दूसरे को समझना चाहते हैं, उन केसेस को लेकर आए होंगे। एक बार ज्योति तिवारी आपको इंक्लूड कर लेना चाहूंगी। कोर्ट ने कहा है कि भागने से, इसमें कोर्ट ने लिव इन को भी इंक्लूड किया है, माता पिता के सम्मान के साथ जीने के अधिकार का उल्लंघन होता है, परंपराओं, मान्यताओं, रीति रिवाजों पर देश की कानूनी, सामाजिक और पूरी व्यवस्था आधारित है। ये हम भारतीय समाज की बात कर रहे हैं। हम भले ही लिव इन की तरफ चीजों को हम कह रहे हैं कि ठीक है, लिव इन काफी हद तक सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन क्या हमारी सोसाइटी, क्या हमारा समाज और क्या हमारा कानून इसकी इजाजत दे रहा है?
4: देखिए, कानून तो काफी बार इजाजत दे चुका है। यहाँ पर मेरे ख्याल से बात एक तो टेक्निकल फंस रही है कि वो लड़का 21 साल का नहीं है, ठीक है? दूसरी बात ये फंस रही है कि ये दोनों बहुत छोटे हैं, मतलब क्या इन्होंने सोचा होगा 18 और 21 से कम में कि हम क्या शादी करेंगे। दे डोंट नो इवन द मीनिंग ऑफ मैरिज। मैं तो ये बोलना चाहूंगी, इतने सारे लोग रोज आते हैं, मेरे पास भी आते हैं, बाकी संगठनों के पास भी जाते हैं कि हमारी शादी चल नहीं रही है या क्या नहीं है। मैरिज काउंसलर भी हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं, वो बेहतर बताएंगी। तो ये क्या ये मैरिज का मीनिंग समझ रहे हैं? और यहाँ पर पहली बार कोर्ट ने माँ बाप का साइड लिया है, जो मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी तक ना वो वीडियोज देखकर थोड़े हम लोग आहत थे कि जहाँ पर माँ बाप रो रहे हैं बट वो लड़की जा रही है, और फिर थोड़े दिन के बाद जो है ऐसे सुनने को मिलता है कि बहुत ज्यादा झगड़ा हो गया, या बहुत वॉयलेंस हो गया तब भी माँ बाप पे आता है कि तुमने अपनी बेटी का ध्यान नहीं रखा। लेकिन आप यहाँ पर ये देखो कि ये माँ बाप, इनका भी तो कोई अधिकार है जिन्होंने इनको बड़ा किया है, जिनका एक सोशल ऑब्लिगेशन है। और आप छोटे सिटी से जो लोग मेरे जैसे आते हैं वो जानते हैं कि जब एक लड़की घर की ऐसे भाग के कर ले या लड़का भाग के कर ले तो बाकी चार लोगों के जो घर में जो और भाई बहन है उनके विवाह में प्रॉब्लम आती है, आपको आयोजनों में बुलाया नहीं जाएगा। ये सारी वो मुझे लगता है इस बार कोर्ट ने सोचा कि भाई देखो ऐसा है कि हम लोग छोटे छोटे गाँवों से सब आते हैं और इस तरह से हम एकदम अलाउ नहीं कर सकते, दैट टू इतने छोटी उम्र के जो बच्चे हैं। मैं उनको बच्चे ही कहूंगी, मुझे नहीं लगता कि उनके पास इतना अकल है बुद्धि है कि शादी को आगे कैसे चलाना है और शादी में क्या क्या चीज हो सकती है। अभी इस लड़के को भी अकल नहीं है कि कल को अगर ये ब्रेकडाउन होती है शादी तो सीधे के सीधे रेप का इल्जाम और एबडक्शन और किडनैपिंग सब देखती हूँ मैं आता है। उसको नहीं पता है ये इमोशंस का खेल है। आई थिंक कोर्ट ने बहुत अच्छी तरह से सोचा कि सेक्शन 21 की अगर, आर्टिकल 21 की अगर बात हो रही है तो वहां पर तो लड़की के माँ बाप भी आते हैं, लड़के के माँ बाप भी आते हैं, केवल इनकी ही लिबर्टी की बात थोड़ी ना होगी, उनकी लिबर्टी की भी तो बात होगी, उनकी भी तो कुछ अस्मिता है कि नहीं है, समाज को कुछ जवाब देना है। हमारा देश अचानक से ओवरनाइट चेंज नहीं हो जाएगा, तो आई थिंक बहुत बैलेंस्ड है ये और बिल्कुल ऐसे वाले चीजों को रोकने की जरूरत है जो स्पेशली ये वाले जो अभी जो कच्ची उम्र वाले जो लड़के लड़कियां हैं जो सोच रहे हैं फिल्म देखकर जो भागने के बारे में सोच रहे हैं, उनको मेरे ख्याल से रियलिटी चेक देना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई दिस इज नॉट ओके। तो
0: बिल्कुल
4: कोर्ट ने वही कहा है, थोड़ा अपने शब्दों में कहा है, लीगल वे में कहा है, सही कहा है।
0: मनीषा जी, क्या फिर हम ये कहें कि कोर्ट की ये पूरी जो टिप्पणी है ये एक तरीके से समाज के लिए, युवाओं के लिए एक आईना है?
2: बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ पे देखिए जो बात आ रही है कि एडल्ट नहीं है बच्चे या 18 ईयर्स क्रॉस किया है या 18 साल की उम्र के आसपास ही है, सो अंडर एज है डेफिनेटली, उसमें तो कुछ बनता ही नहीं है। और अगर 18 प्लस भी है तो भी स्पेशली जो बॉयज होते हैं, जो मेल्स होते हैं, वो क्यों कहा जाता है कि 21 साल से पहले वो शादी के लायक नहीं है, उसका एक साइंटिफिक रीजन है। जो हमारा जो ये फोरहेड होता है इसके पीछे जो ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, सो ये बेसिकली ग्रो कर रहा होता है, ये प्रॉपर्ली पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुआ होता है, तो इसकी ग्रोथ जारी रहती है 21 इयर्स तक ऑलमोस्ट। और जो रिस्पॉन्सिबल होता है डिसीजन मेकिंग के लिए या रिस्क असेसमेंट किसी की तरह का या कुछ ऐसे चैलेंजेस लाइफ के जो कहते ना अनुभव के साथ आता है और टाइम के साथ ही आप सीखते हो जिंदगी को जीना, तो जो 21 साल की उम्र बताई गई है लड़कों में शादी 21 साल से पहले नहीं होनी चाहिए, उसका साइंटिफिक रीजन एक ये है। नंबर टू, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वो कैसे हो सकते हैं, और अगर है भी तो भी उनको कितना एक्सपीरियंस है, और अगर लिविंग रिलेशनशिप में है तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ठीक है, लिविंग रिलेशनशिप में रहना हो सकता है, कुछ सक्सेसफुल केसेस भी होते हैं हमारे पास भी, बहुत सारे इस तरह के प्री मैरिटल यू नो इस तरह के केसेस आते हैं, लिविंग रिलेशनशिप में भी क्या उनको चैलेंजेस आ रहे हैं, बहुत केसेस आजकल कॉमन है। तो उसमें एक जो मेजर जो कॉम्प्लिकेशन आता है वो ये होता है कि ठीक है रहना शुरू कर दिया, अब क्योंकि किसी तरह का कमिटमेंट नहीं है लेकिन दोनों साथ में रह रहे हैं, तो वहाँ पे फाइनेंशियल एक जो जॉइंट फाइनेंसेस उनके यूज हो रहे हैं, और हो सकता है उनकी प्रॉपर्टीज भी कुछ ऐसा इमोशनल इतना ज्यादा उनका बॉन्ड डीप हो गया है कि उन्होंने अपनी जो भी उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज हैं, जो भी उनकी सेविंग्स हैं, वो सब उन्होंने मिक्स कर दिया। अब क्या होता है कुछ टाइम बाद कभी कोई डिफरेंसेस आए, क्योंकि एक फ्रीडम है, आपको सेंस ऑफ फ्रीडम तो है ही है क्योंकि कमिटमेंट नहीं है, और कमिटेड रिलेशनशिप अगर नहीं है ये जो कोहैबिटेशन जिसे हम कहते हैं, तो इसमें आप किसी भी मोमेंट आप इस रिलेशनशिप से बाहर जा सकते हैं। अब किसी भी रीजन की वजह से अगर उन्हें इस लिविंग रिलेशनशिप से बाहर जाना पड़ रहा है
0: जी।
2: तो फिर वो वापस से अपने फाइनेंसेस कैसे वो सेपरेट करें, वहां पे काफी सीरियस कुछ केसेस पीछे आए भी थे, तो वो एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, प्लस डेफिनेटली सोशल स्टिग्मा है ही, एक टैबू है ये। इसमें किस तरह का इमोशनल उनका इमोशनली वो कितना स्ट्रांग है, और अगर दोनों पार्टनर्स में से दूसरा एक केस होता है दोनों पार्टनर्स में से एक बहुत इमोशनल है और एक ठीक है कैजुअल है, उसको लिविंग रिलेशनशिप में ही रहना है, लेकिन दूसरा पार्टनर यू नो स्टार्ट गेटिंग सीरियस अबाउट दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप और वो मैरिज करना चाहता है, अब अगर जो दूसरा पार्टनर है वो नहीं करना चाहता है, तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। चीजें हमें समय के साथ ही समझ आती हैं।
0: बिल्कुल, एक बार रेखा जी, बिल्कुल लौटती हूँ आपके पास, एक बार रेखा जी आपके पास आऊंगी। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, विवाह एक पवित्र बंधन है जिसको हाई कोर्ट ने भी समझा, खास तौर पर अगर हम भारत की बात करें, अगर हम अपने देश की बात करते हैं, कानून हो समाज हो, उसको एक बहुत पवित्र बंधन मानता है। और कहा जाता है कि केवल लड़का लड़की ही विवाह के बंधन में नहीं बनते हैं, दो परिवारों का ये मिलन होता है। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि एक तरफ तो लिव इन रिलेशनशिप को लेकर अलग से बहस छिड़ी हुई है कि लिव इन होना चाहिए ताकि लड़का लड़की एक दूसरे को समझ ले, तो क्या कोर्ट ने फिर उस रिश्ते को लेकर भी सवाल उठाए हैं, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए?
2: देखिए, कोर्ट ने सारी बातों को देखते हुए, जैसे कि पहले भी कहा और बाकी स्पीकर्स भी ने कहा, कोर्ट ने जो ये पंजाब हाई कोर्ट ने जो आज ये फैसला किया है वो एक बहुत बैलेंस व्यू करने की कोशिश करी है, जहां पे उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप्स को इलीगल नहीं माना है, क्योंकि वो तो अब ये बहुत पुरानी बात हो गई है, बहुत लंबा अरसा हो गया है। खासकर से अगर हम कहें कि 2005 से लिव इन रिलेशन को एक कानूनी जामा भी पहनाया गया है, क्योंकि जब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में बना था, वो सबसे पहली बार लिव इन रिलेशनशिप के जो उनको टैकल किया गया था, उस रिलेशनशिप को, कि लिव इन रिलेशनशिप होती क्या है। तो कोर्ट ने ये कहीं नहीं कहा है इस फैसले के अंदर कि कोर्ट की अपना व्यक्तिगत व्यू नहीं है कि जी लिव इन रिलेशनशिप गलत है, क्योंकि वो तो हमारा भारतीय संविधान हमें अधिकार देता है कि हम जैसे जीवन जीना चाहें उसको जिए, आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप 18 साल के हैं और आप किसी लड़की के साथ रहना चाहते हैं, भले आप 21 साल के नहीं है, भले आप शादी नहीं कर सकते, विवाह के योग्य नहीं अभी, परंतु किसी लड़की के साथ अपने जीवन को निकालना चाहते हैं, तो उसको टेक्निकली लिव इन रिलेशनशिप भी नहीं कहा जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप, तो जैसे मैंने भी पहले आपके प्रश्न का जवाब दिया, लिव इन रिलेशनशिप का नाम तो यूज ही तब किया जाएगा जब लड़का लड़की शादी करने के योग्य है पर शादी करना नहीं चाह रहे हैं। यहाँ पे तो लड़का योग्य ही नहीं है, तो इस रिश्ते को पहली बात तो मैं कहूंगी कि इसको लिव इन रिलेशनशिप कह ही नहीं सकते। इट इज नॉट अ लिव इन रिलेशनशिप, बिकॉज लिव इन रिलेशनशिप तो शादी का ऑल्टरनेट, विवाह के ऑल्टरनेट के अंदर है, वो एक विकल्प की तरह है। तो इस केस के अंदर अगर इस खास करके इसी केस के तथ्यों के बारे में बात करें, तो भले लड़के और लड़की ने जब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया होगा और कहा होगा कि देखिए साहब, हम लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो ये लिव इन रिलेशनशिप नहीं है, ये सिर्फ एक एक कोहैबिटेशन है, जिसके अंदर आप, जरूरी नहीं कि उनका कोई आपस के अंदर कोई प्रेम का कोई संबंध हो या वो शादी की तरफ से उस तरीके का कोई संबंध हो। कई बार ऐसा भी होता है कि कन्वीनियंस की वजह से, जैसे कई बार स्टूडेंट्स होते हैं या कोई दूसरे शहर के अंदर कोई लोग काम कर रहे होते हैं, लड़का लड़की, मैं खुद ऐसे एक लड़की लड़की को जानती हूँ जहाँ पे उन्होंने ना तो शादी करी, ना ही उनका कभी इंटेंशन था, ना ही वो लिव इन रिलेशनशिप में थे, परंतु वो साथ साथ रहते थे एक ही शहर के अंदर, एक ही घर के अंदर, क्योंकि वो बहुत कन्वीनियंट था, एक तरह का प्रोटेक्शन मिल जाती है, सुरक्षा मिल जाती है, आपके खर्चे बच जाते हैं। तो कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को ना तो इलीगल कहा है, कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि क्योंकि आप शादी के योग्य नहीं है तो हम आपको इस केस के अंदर प्रोटेक्शन नहीं दे रहे,
0: प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। प्रोटेक्शन लड़की की तरफ से भी मांगी गई थी, रेखा जी यहीं से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मांगी इसलिए प्रोटेक्शन गई थी क्योंकि लड़के ने कहा था कि लड़की के परिवार वाले इस रिश्ते को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यही है कि लड़का 21 साल का नहीं हुआ है। कोर्ट ने यहाँ पर परिवार के सम्मान और समाज में उनके सम्मान से जीने के अधिकार की बात को भी प्राथमिकता दी है। यहीं से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, फिलहाल एक ब्रेकअप रहे हमारे साथ।

0: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits to timeless favorites and new discoveries. It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
1: तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी

0: The weather in Central Ohio just got better, so why shouldn't your loan rate? CME Federal Credit Union wants to try to beat your current loan rate by 2% on autos and toys. Plus, enjoy no payments for 90 days on car loans and no payments for 60 days on motorcycles, boats, and more. With car rates as low as 4.99% APR and toy rates starting at 6.5% APR, it's the perfect time to save. Apply today at CMEFCU.org.
1: Terms apply. Minimum floor rates, 4.99% APR cars, 6.50% APR other vehicles. Federally insured by NCUA.
2: लिविन वर्सेस शादी सम्मान संस्कार पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की जो टिप्पणी है जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। विराग जी आपके पास आऊंगी, ब्रेक पर जाने से पहले आपने हमारे तमाम पैनलिस्ट की बात भी सुनी, यानी इसको लेकर सर चर्चा अब एक बार फिर से छिड़ गई है। एक तरफ लिविन जिसको लेकर हमेशा बातचीत होती है, कुछ लोग इसको जायज ठहराते हैं, कुछ कहते हैं कि बिल्कुल जरूरी है, अगर दोनों एक दूसरे को जान लेंगे समझ लेंगे तो अच्छे से अपनी जिंदगी बिता पाएंगे, रादर देन की शादी करो और उसके बाद फिर अगर दोनों की नहीं बनती है फिर अनबन होती है और उसके बाद एक लंबी कानूनी प्रक्रिया। बहुत से लोग इस लाइन पर चलते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारी सोसाइटी में शादी जो है वो परिवारों का बंधन होता है। अब मान लीजिए लिविन में कोई रह रहा है, दोनों परिवारों की मंजूरी के साथ ही यहां पर अगर कोई रह रहा है और फिर भी अगर उनकी नहीं बनती है फिर दोनों अलग हो जाते हैं, यहां पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की टिप्पणी आ जाती है कि आपने दुनिया को तो बता दिया, परिवार वालों को भी पता है, उनकी मंजूरी भी है कि हर कोई साथ रह रहा है, लेकिन उसके बाद भी अगर नहीं बनती तो कौन जिम्मेदार होता है? विराग जी,
3: जी पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा क्योंकि सोसाइटी में क्या है कि हाई बॉडी काउंट कल्चर को काफी नॉर्मलाइजेशन दिया जाता है, जहां पे स्कूल्स कॉलेजेस में और वर्किंग कल्चर में इस कल्चर को काफी प्रमोट किया जाता है, जिसके हम लोग खिलाफ है। अगर बात अगर लिविन की हो रही है और जहां पे हाई कोर्ट इसको व्यूज को देख रहा है तो लिविन एग्रीमेंट जैसे अरेंजमेंट्स होने चाहिए, जहां पे एक्सपेक्टेशन क्लियर होनी चाहिए, फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होना चाहिए, लोगों को चॉइस मिलनी चाहिए कि वो शादी करना चाहते हैं या नहीं, लेकिन इन्फॉर्म चॉइस के साथ। ब्रेकअप को डिक्रिमिनलाइज करें, नहीं तो BNS 69 लग जाता है। और अगर ऐसी बात है, क्योंकि कई बार हमारी सोच अभी भी पुरानी फिल्मों वाली
2: है। अच्छा मान लीजिए कि अगर तमाम कानूनी सर एक सेकंड, यही से मान लीजिए, यही मेरा सवाल था, मान लीजिए कि तमाम डॉक्यूमेंटेशंस के साथ दोनों लिविन में रहते हैं लेकिन उसके बाद भी दोनों की नहीं बनती, फिर उसी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा दोनों को,
3: तो वहां से वो एग्रीमेंट जब होगा तो वहां से कम से कम उसके ऊपर वो रेप चार्जेस तो नहीं लगेंगे, वो जो BNS 69 है जहां 10 साल का पनिशमेंट है वो तो नहीं होगा, जहां पे बंदा सुसाइड कर लेगा। अभी रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो तो हो ही सकता है, पूरी पॉसिबिलिटी होती है, ऐसा तो नहीं है कि सारे रिलेशनशिप अच्छे चल रहे हैं। तो अगर आप उसमें क्लियर है कि आप शादी कर सकते हो नहीं कर सकते हो, क्योंकि बात वहीं आ जाती है जहां पे हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज के ऊपर ही केसेस आते हैं जहां पे 5 साल हो गए
2: सेपरेशन। तो ऐसे में परिवारों का क्या, परिवार की रजामंदी के साथ ही तो गए हैं ना, एग्रीमेंट वैसे ही बनाया तो, यही पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने परिवार के सम्मान की बात कही है।
3: अगर आप परिवार की बात पे चलेंगे तो अगर आप मोरालिटी की बात करेंगे तो फिर लॉ की बात मत कीजिए, क्योंकि लॉ और मोरालिटी जैसा कि चंद्रचूड़ सर ने भी कहा था कि लॉ डजंट गो विद द मोरालिटी एंड मोरालिटी डजंट गो विद द लॉ।
2: पर हमारी सोसाइटी में तो परिवार को समाज को उतनी इंपॉर्टेंस दी गई है ना। अब कोर्ट की ये टिप्पणी भी किसी एंगल से गलत नहीं है, उन्होंने भी बिल्कुल सही कहा है, समाज में सम्मानजनक तरीके से रहने का अधिकार है, अगर इस तरह की बातें बाहर निकल जाती हैं तो उसके बाद एक परिवार के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उस सोसाइटी में रहना।
3: तो फिर इसके लिए मैं कहना चाहूंगा, एक तो हमारा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए जहां पे लोगों को पता होना चाहिए फ्रॉम द स्कूल कि अगर आप लिविन में जा रहे हो तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, स्कूल में ब्रह्मचर्य की शिक्षा दो जिससे कि वो खुद की वैल्यू समझे, बॉडी काउंट्स आर जो इंक्रीज हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए।
2: ठीक है, एक बार ज्योति तिवारी जी, अब आपकी राय इसको लेकर, क्या एक नई बहस नई कोर्ट ने इसको लेकर छेड़ दी है, दो अलग अलग तरह की चीजें यहाँ पर हो रही हैं?
4: हाँ डेफिनेटली एक नई तरह की बहस तो अब होगी, डेफिनेटली होगी, क्योंकि पहले जो है मैं जस्टिस नागरत्न को अभी मैं सर्च करके पढ़ रही थी कि उन्होंने बोला था कि पहली बात तो डिक्रिमिनलाइज, एक्चुअली उन्होंने इसमें कहा था जहां पर लड़के के ऊपर रेप का इल्जाम लग गया था, बट देन अगेन मैं ये बोलूंगी कि वहां मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया तो ये एक बड़ी जद्दोजहद हो जाती है लड़कों और उनकी फैमिलीज के लिए जहां पर ऐसा होता है। तो अब जबकि एक बार कोर्ट जो है वो रेखा जी हैं वो बता भी चुकी हैं कि मेंटेनेंस भी ग्रांट कर देता है लिविंग पार्टनर को, तो मतलब एक शादी जैसा ही आपको जो है मान्यता मिल गई थी ऑलमोस्ट, और अब कोर्ट ने फाइनली मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा विरोध चारों

0: तरफ से हुआ है, क्योंकि बहुत सारे माँ बाप भी ये कहने लगे हैं कि भाई हमारा क्या, हम जो पाल पोस कर बड़ा करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, तो एक दिन मतलब बस ये लोग चले जाएंगे और फिर हमारी तो बदनामी होगी। डेफिनेटली वो भी बात सही है कि ओवरनाइट तो हम कुछ चेंज कर नहीं देंगे। तो ये एक नई तरह की बहस अब छिड़ गई है कि क्या ये हमारी सभ्यता और संस्कृति के अनुरूप है। अगर नहीं है तो फिर बीच का रास्ता कैसे निकाला जाए, ये जो है इसके बारे में बात होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। BNS 69 ना लगे लड़के पे, कल को अगर ब्रेकअप होता है तो वो क्रिमिनलाइज ना किया जाए, ठीक है, इजी एग्जिट हो। जैसे लड़की के लिए इजी एग्जिट है कि भाई नहीं बन रही है तो हम उठ के अपने घर आ जाएंगे,
1: ठीक है, एक
0: हालांकि
1: बार
0: बहुत सारे मामलों में उसके साथ भी हिंसा हो जाती है, हमने देखा है, ठीक है, लेकिन लड़के के लिए तो टोटली क्रिमिनलाइज हो जाता है पूरा का पूरा मामला। तो अब हमें एक नई तरह की बहस और एक नए तरह के विमर्श की आवश्यकता है कि ये हमारे समाज के हिसाब से सही है या नहीं है। अगर सही हो गया है नए मामलों में, जैसा कि बड़े शहरों में होता जा रहा है, तो फिर क्या इसके लिए कुछ डूज एंड डोंट्स,
1: मनीषा
0: कुछ
1: जी,
0: रूल्स रेगुलेशंस
1: ठीक
0: बनाना
1: है,
0: चाहिए
1: मैं
0: कि नहीं?
1: लौटती हूँ, एक सेकेंड मनीषा जी। अब देखिए, दो चीजें हैं। क्या शादी पूरे परिवार के सम्मान का मामला है, परिवार के रिलेशनशिप का मामला है, या दो लोगों के कंफर्ट का मामला है? अब ये भी बात छिड़ेगी फिर।
2: डेफिनेटली ये केवल दो लोगों की शादी नहीं होती है, ये दो परिवारों की शादी होती है। एक्चुअली जो ट्रेंड शादी का रहा है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी
1: जी, मनीषा जी, सुन पा रही हूं मैं आपको।
2: शादी का उसमें ये एक दो परिवारों के बीच का रिलेशन होता है, और इसमें ये जो लिव इन रिलेशनशिप है ये ट्रायल रन के कैसे चल रहा है। मेजर केसेस जो है वो ऐसे ही है जिसमें ट्रायल रन है जस्ट टू चेक कंपेटेबिलिटी, और वो हर तरह की कंपेटेबिलिटी हो सकती है, और फाइनेंशियल किस तरह का सिस्टम है, किस तरह का स्टाइल है पार्टनर का, तो बाकी आपको लगता है कि भाई मैं कंफर्टेबल है लेट्स कंटिन्यू। लेकिन ये फैमिली के लिए एक्सेप्टेबल इसलिए नहीं है क्योंकि फैमिली को पता है कि बच्चा अभी उतना मैच्योर नहीं है, और उनको कुछ और लर्निंग्स की, कुछ और एक्सपीरियंसेस की जरूरत है। तो सारी फैमिलीज ऐसी नहीं है कि वो कंट्रोल करना चाहते हैं अपने बच्चों को, ऐसा नहीं है, लेकिन वो कहीं चाहते हैं कि उनको अपनी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, कहीं कहीं ऐसा ना हो कि वो एम्बेरस फील करेंगे, किसी ऐसी प्रॉब्लम में पड़ जाएं जहां से बाहर निकलने में थोड़ा सा उन्हें मुश्किल हो। आपको इमोशनल भी हो सकता है, आप किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो इस केस में जो लिव इन रिलेशनशिप है इसके रूल्स डेफिनेटली चेंज होने चाहिए। जैसे कि मेरे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो वो ट्रायल ना ना होगी, और ये भी होता है कई केसेस में, मुझे याद आया कि शादी को थोड़ा सा पोस्टपोन करने के लिए कि हाँ मैं अभी और थोड़ा सा स्टेबल हो जाऊं, और जो रेखा जी ने कहा थोड़ा सा और टाइम आगे खिसका देते हैं क्योंकि शादी में काफी बड़ा एक्सपेंडिचर होता है, शादी एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, काफी सारे पैसे खर्च होते हैं, सोशली सब लोगों को इन्वाइट किया जाता है, तो उस चीज को थोड़ा सा और पोस्टपोन करने के लिए अगर रिलेशनशिप है तो उस इन दैट केस आल्सो देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स एंड एक इनसिक्योरिटीज है कि पेरेंट्स को ये लगता है कि ऐसा ना किसी भी मोमेंट कुछ ब्रेकअप हो जाए या कुछ उन दोनों के बीच में ऐसा ना कोई सीरियस अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि जिस वजह से शादी टूट जाए। तो
1: ठीक है।
2: लिविंग रिलेशनशिप थोड़ा सा अनस्टेबल सा है और वो चुनाव रहता है और वो है कैसा।
1: बिल्कुल। एक बार रेखा, हाँ, एक बार रेखा जी आपको इंक्लूड करूंगी इस पूरी बहस में और कोर्ट की टिप्पणी में। और विराज जी ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बहुत अच्छा उठाया था कि एक सर्टन एज के बाद, जहाँ आप दोनों वर्किंग है, जहाँ आप दोनों समझदार हैं, जहाँ आप अपने पेरेंट्स को भी समझते हैं, अपने पार्टनर को भी समझते हैं, वहां अगर आप लिव इन में जाते हैं और कन्विंस करते हैं अपने पेरेंट्स को, तब कहीं ना कहीं इन ये जो रिलेशनशिप है वो काफी हद तक सक्सेसफुल भी होते हैं और परिवार की मंजूरी के साथ उसको एक्सेप्ट भी किया जाता है। कितना सक्सेस रेट आज की तारीख में लिव इन का देखा गया है?
3: देखिए, मैं तो यहाँ पे कहूंगी कि लिविंग का कितना सक्सेस रेट है ये तो मुझे पर्सनली नहीं मालूम। हाँ, परंतु अगर विवाहों का बताएं तो डेफिनेटली जो आजकल जो कोर्ट्स की जो हालत हो रखी है, फैमिली कोर्ट्स की जो अगर बात करें, तो वहां पर भी शादियां भी आजकल एक तरह से जैसे कहते हैं, तो फ्लिप साइड है कि आज लड़के लड़कियां बहुत पढ़ लिख ले गए हैं, बहुत इंडिपेंडेंट हो गए हैं, खास करके लड़कियां भी जो आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट हो गई हैं, समाज भी बहुत ज्यादा विकसित हो गया है, लड़कियों को बहुत ज्यादा फ्रीडम देते हैं, उस तरह की आजादियां जो पहले नहीं दिया जाती थी। परंतु उसके बावजूद शादी का बंधन एक पवित्र बंधन, नो डाउट बहुत बड़ा पवित्र बंधन है, मैं इस बात से एग्री करती हूँ। परंतु आज के समाज के अंदर, आज के सामाजिक परिप्रेक्ष्य के अंदर ना तो शादियां कुछ बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो पा रही हैं, और ये एक नेगेटिव साइड है, जो एक तरह से जो डेवलपमेंट का जो एक नेगेटिव साइड है जो हम देख रहे हैं समाज के अंदर, कि शादी जो एक आपस के अंदर एक बहुत बड़ा एडजस्टमेंट होता है, एक एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करना, एडजस्टमेंट करना, कुछ चीजों को नजरअंदाज करना, कुछ गलतियों को इग्नोर करना, उन्हों कुछ गलतियों को दूसरे पार्टनर की कुछ कमियों को एक्सेप्ट कर लेना, उस तरह की जो मेच्योरिटी जो थी, उस तरह की आजकल सहनशीलता जो है आजकल रिश्तों के अंदर वैसे ही कम हो गई है। तो जहां पर शादियों में ही जो है आजकल सक्सेस रेट, जितने कोर्ट के अंदर डाइवोर्स के केसेस आ रहे हैं, उसके साथ साथ आजकल जो डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस हैं उनके अंदर भी बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है, जहां पर अविवाहित लड़कियां जो हैं वो भी कोर्ट के अंदर आके घरेलू हिंसा कानून के तहत कंप्लेंट करती हैं कि देखिए हम लिव इन रिलेशनशिप के अंदर हैं पर हमारे पार्टनर ने ये करा। अब यहाँ पर एक भले वो विषय से थोड़ा हटके बात करूंगी, परंतु जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जो लिव इन रिलेशनशिप के अंदर जो प्रोटेक्शन दी गई है वो सिर्फ लड़कियों को ही दी गई है, लड़कों को नहीं दी गई है। तो लड़कों के पास में कोई विकल्प नहीं है, और अगर कोई भी महिला कंप्लेंट करती है कि बाद में मेरे साथ बलात्कार हुआ या प्रॉमिस टू मैरी होने के बाद में, कल ही हाईकोर्ट के अंदर, दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने किसी एक लड़के को जो लिव इन रिलेशनशिप के अंदर एक लड़की के साथ में था, वहां पर उसको एंटिसिपेटरी बेल इसी बात के ऊपर ग्रांट करी कि लड़की ने जिस तरह का केस बनाया था उसके अंदर साफ जाहिर होता था कि उसको पता था कि मेरे साथ शायद पुरुष बाद में जाके शादी नहीं करेगा, और उसने बोल के उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप के अंदर रिश्ता मेंटेन किया, और बाद में जब रिश्ते के अंदर खटास आ गई तो उसने बलात्कार का चार्ज लगा।
1: रेखा जी, एक सवाल का जवाब जो मैं जानना चाहूंगी इसी से रिलेटेड है। रेखा जी, सीधे तौर पर देखिए, जब आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, हालांकि उसके लिए भी कुछ कानूनी दाव पेच है जिसका पालन करना पड़ता है, लेकिन इसमें एक इजी एग्जिट रहता है। अगर आप दोनों की नहीं बन रही है तो आप वो उस केस में आपका इजी एग्जिट रहता भी है। ऐसे में फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो लड़की के लिए, अगर लड़की कमा नहीं रही है, अगर कमा रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो नहीं भी कमा रही है तो ऐसे केसेस में क्या कानून कहता है?
3: बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। इसके अंदर जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का आया है, जहां पर लिव इन रिलेशनशिप्स को मान्यता दी गई है, अगर जो लड़की है वो कमा नहीं रही है, अपने अपने पाँव पर आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट नहीं है, तो वो अपने पुरुष से, अपना जो लिविंग पार्टनर है उस पुरुष के साथ में मेंटेनेंस मांग सकती है, खर्चा भत्ता मांग सकती है, जो तीन बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, रोटी कपड़ा और मकान, उसके लिए पैसा मांग सकती है। तो इस पर्टिकुलर केस में जो अपने चंडीगढ़ हाईकोर्ट का जो हम फैसला डिस्कस कर रहे हैं, वहां पर मैं बात को बहुत एक्सेप्ट, बहुत इसमें मैं सल्यूट करती हूँ पंजाब हाईकोर्ट को, जो उन्होंने ये फैसला किया, क्योंकि एक तरह से चेतावनी है उस लड़के को कि भले भैया तुम सोच लो कि तुम, मतलब भैया भी क्या, मैं कहूँगी बेटा तुम समझ तो लो कि किस रिश्ते के अंदर, किस मुसीबत के अंदर घुस रहे हो, अभी तो तुम शादी करने के योग्य ही नहीं हो, और तुम अपने आप को जबरदस्ती एक लिविंग रिलेशनशिप का जामा पहना के, कल लड़की आपके ऊपर केस फाइल कर सकती है, खर्चे का भी फाइल कर सकती है, रेप का भी फाइल कर सकती है, तो आप थोड़े से मेच्योर हो जाओ, थोड़े से बड़े हो जाओ, उसके बाद जाके सोचना कि आपको लिव इन रिलेशनशिप के अंदर एंटर करना भी है कि नहीं करना, या विवाह के रिश्ते में बंधना है कि नहीं बंधना।
1: ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की टिप्पणी को लेकर यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: TuneIn has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए,

गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: TuneIn has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
3: नए काम की शुरुआत करते समय किन बातों का ध्यान रखें? नए काम की शुरुआत में आपकी राशियों का क्या महत्व है और नए काम की शुरुआत क्या खा करके करें कि सफलता मिले? नए काम का ज्योतिष से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच।
5: देखिए, चिलचिलाती गर्मी में जो सबसे ज्यादा राहत आपको दे सकती है वो है ठंडी हवाएं, और सुबह शाम इन ठंडी हवाओं का मजा हम और आप ले ही रहे हैं। आपके साथ मैं हूं नवजोत संधा, और उस ठंडी हवा के साथ चाय का मजा दोगुना हो जाता है। तो जून वैसे जून लग नहीं रहा है, क्योंकि मौसम की मेहरबानियां सुबह और शाम चल ही रही हैं, तो कब तक ये मेहरबानी रहेगी? वैसे उससे भी जरूरी और बड़ी बात ये है कि भाई मानसून कब आ रहा है, ये सारी डिटेल्स आज आपको चाय पर चर्चा में देंगे।
6: नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा। देखिए, दिल्ली में बादल भले ही बरस रहे हैं लेकिन मानसून अभी दूर है। जिस तूफानी रफ्तार से मानसून शुरुआत में आगे बढ़ा था वो रफ्तार अचानक से थम गई है, तो अचानक ब्रेक पर क्यों चला गया है मानसून, इसकी वजह भी हम आगे समझने की कोशिश करेंगे।
7: बिल्कुल, देखिए बात मौसम की होगी, बात मानसून की होगी, और आगे बात असम की ब्लैक पैंथर स्टोरी की भी करेंगे, जिसने वन्य जीव प्रेमियों को अचरज में डाल दिया है। देखिए, पहली बार यहाँ के दुलुंग जंगल में ब्लैक पैंथर कैमरे में कैद हुआ है। क्यों इस जंगल में ब्लैक पैंथर दिखना इतनी बड़ी बात मानी जा रही है, ये भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे।
8: नमस्कार, मैं शगुप्ता, स्वागत है आप सभी का चाय पर चर्चा में। आज आपको एक ऐसे स्कूल लिए चलेंगे जिसे देश का सबसे स्मार्ट सरकारी स्कूल कहा जा रहा है। यहाँ 400 सीटें हैं और दाखिले के लिए 4000 बच्चों की एप्लीकेशन आई है, तो क्यों यहाँ एडमिशन के लगी है लंबी लाइनें, ये जानेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
10: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
11: फ्रांस के एवियन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, G7 शिखर सम्मेलन में ले रहे हिस्सा, दुनिया के नेताओं के साथ कई वैश्विक मुद्दों पर बातचीत। रक्षा मोर्चे पर बढ़ेगी भारत की ताकत, वायुसेना बनाएगी आत्मघाती स्वदेशी कामिकेज ड्रोन, 16,000 फीट की ऊंचाई पर भी अचूक वार करने में सक्षम। नीट री एग्जाम तक देश में टेलीग्राम पर अस्थायी रोक, 21 जून को परीक्षा, 22 जून तक काम नहीं करेगा ऐप।

0: भुट्टा। पहले जत्थे में कुल 44 लोग, इनमें 32 पुरुष और 12 महिलाएं। अमरनाथ यात्रा की तैयारियां तेज, सुरक्षा को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस समेत कई एजेंसियों ने की मॉक ड्रिल। 3 जुलाई से पवित्र यात्रा।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और बात करेंगे मौसम की, क्योंकि ये मौसम इतना औसम इस वक्त हो रखा है खास करके दिल्ली एनसीआर में कि हम सबके चेहरों पर आप जो ये मुस्कुराहट देख रहे हैं, ये खुशी देख रहे हैं, ये इसी वजह से है। और आपको हम बाहर की भी तस्वीरें दिखाएंगे, भाई सुबह से इंडिया गेट भी लोग पहुंचे कि उस सरगम, आपने भी खबरें, आपने भी शगुफ्ता पड़ी होगी, इतनी अच्छी हवा, बारिश हल्की फुल्की आपको। चलिए हम दो तस्वीरें दिखाते हैं मौसम की, जो ये अबूझ पहेली चल रही है ना उसकी तस्वीरें दिखाते हैं, जिसमें आप देख पाएंगे कि एक तरफ जून के दिनों में दिल्ली एनसीआर का मौसम कूल कूल बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर मॉनसून की रफ्तार पर अचानक से ब्रेक लग गया है। तो दिल्ली की अगर बात करें तो यहां पिछले कुछ दिनों से लगातार मौसम खुशनुमा बना हुआ है, जिस जून में पारा 45 डिग्री तक चला जाता है, उस जून में कम से कम दिल्ली में बादलों ने गर्मी का पारा थाम सा दिया है। मैं जहां तक समझती हूं और आप लोगों को मैं जब से जानती हूं, मुझे यह पता है कि आप लोग दिल्ली के तो नहीं है, है ना, कोई चंडीगढ़ से है, आप लोग पंजाब से, राइट, है ना। मैं बिहार से हूँ, ऑफकोर्स आप,
3: मैं वैसे उत्तराखंड से, बट बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, मैं दिल्ली,
2: अच्छा चलिए चलो ये बोला जा सकता है। लेकिन हम लोग इतने सालों से जब से हम रह रहे हैं, आप लोगों ने कभी ऐसा मौसम देखा कि तपती गर्मी का समय हो लेकिन बाहर बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए और वो गर्मी हमसे थोड़ा दूर भगा?
4: ये थोड़ा सा, इनफैक्ट आई वुड से कि इट्स कंफ्यूजिंग। सुबह उठते हैं तो ठंडी हवा, बारिश जैसा फील आता है, दोपहर आते आते धूप निकल आती है, शाम आते आते फिर चाय पीने का मन करता है।
5: धूप में भी कड़क तीखी वाली धूप नहीं,
4: गर्मी नहीं लगती,
5: थोड़ा सा ठंडक का एहसास है, मतलब आप बाहर टहल सकते हैं,
4: सूदिंग दिन जा रहा है आपका।
2: एग्जैक्टली।
5: लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगी, मैं ना आई एम स्टिल वेटिंग फॉर मॉनसून, क्योंकि देखिए जो मजा उस बारिश का है ना भाई, जब हम बुलेटिन कर रहे होते 4 और 5 का, तब बहुत से लोग जाके रील बनाने लग जाते हैं,
4: बारिश होती है,
5: रील्स बनती है,
4: मैं वेट कर रही होती हूँ लड़कियों का, लड़कियां आ नहीं पाती, कुछ का मेकअप चल रहा होता है और कुछ
3: जो मौसम आंख में शोली खेल रहा है उसका सबसे ज्यादा फायदा यहाँ पर शगुफ्ता उठा रहे हैं, क्योंकि बारिश है, कभी धूप है, लेकिन आप कह रहे हो कि धूप है लेकिन उसके बावजूद भी ना गर्मी महसूस नहीं हो रही है।
5: मुझे यही जलन होती है बस, इसीलिए मैं वेट कर रही हूं मॉनसून का।
4: हाथ में एक फोन होना चाहिए, सेल्फी स्टिक होनी चाहिए, कहीं भी शुरू हो जाओ,
5: स्टूडियो च बैठ के
4: स्टूडियो में कर दूंगी।
3: और पता है आपको गुड न्यूज क्या है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यानी जो हमारे दर्शक है जो सोच रहे हैं अब ये मौसम ऐसा कब तक बना रहने वाला है, उनके लिए गुड न्यूज ये है कि 2 दिन बाद
2: यानी एक और
3: वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपका इंतजार कर रहा है। मौसम कैसे करवट लेगा आइए देखते हैं।
5: बिल्कुल, तो दिल्ली के मौसम से पहले बात अब मॉनसून की कर रहे थे, क्योंकि भारत के तमाम इलाकों में फिलहाल मॉनसून की बारिश शुरू हो चुकी है, लेकिन अचानक से तेजी से बढ़ रहे मॉनसून के बादल कहीं कहीं गायब हो गए हैं, क्योंकि रुक गया है एक तरीके से मॉनसून, आगे बढ़ नहीं रहा है। सैटेलाइट तस्वीरें काफी हैरान कर रहे हैं, पूछा यही जा रहा है कि मॉनसून का सीन अचानक से आसमान से गायब कैसे हो गया।
4: तो चलिए इसी खेल को, जो अबूझ पहेली बना है उसको समझ लेते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि मॉनसून जब रफ्तार पकड़ता है ना तो उसका रुकना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इस बार अचानक से मॉनसून ने ब्रेक लगा ली है, इसके आखिर रीजंस क्या है वो आपको बताते हैं।

0: जून आधा गुजर चुका है और मौसम का कैलेंडर तो यही कह रहा है कि मानसून आ चुका है, लेकिन आसमान का कहना कुछ और ही है। इन सैटेलाइट तस्वीरों को देख लीजिए। 14 जून को जहां देश के बड़े हिस्से में बादलों का डेरा था, वहीं 15 जून की सैटेलाइट तस्वीरों में बादल करीब करीब गायब हैं। ये तस्वीर टेंशन की वजह बनी हुई है। सवाल उठ रहे हैं कि आते आते आखिर मानसून के बादल गायब कहां हो गए। आमतौर पर 15 जून तक भारत का बड़ा हिस्सा सफेद बादलों की मोटी चादर से ढका दिखाई देता है, लेकिन इस बार तस्वीर अलग है। मध्य भारत, दक्षिण भारत और दूसरे कई इलाके अपेक्षाकृत साफ और सूखे नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि इस बार बदला क्या है और आखिर मानसून के बादलों ने अचानक मुंह क्यों मोड़ लिया। इस सवाल का जवाब जमीन पर नहीं बल्कि धरती से कई किलोमीटर ऊपर आसमान में छिपा है। ऊपरी वायुमंडल में इस समय हवाओं की एक ऐसी जंग चल रही है जिसने मानसून की रफ्तार पर अचानक ब्रेक लगा दिया है। आमतौर पर पूर्व से बहने वाली हवाएं स्टर्लिंग जेट कहा जाता है, हवा को ऊपर उठाने का काम करती हैं। इसी वजह से बादल बनते हैं और बारिश होती है। लेकिन इस बार कहानी में एक नया ट्विस्ट है, वो है पश्चिम से बहने वाली वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जो अपनी सामान्य स्थिति छोड़कर दक्षिण की ओर खिसक आई है। यानी मानसून के बादलों के बीच इस वक्त एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि अब आगे क्या होगा, मानसून कैसे आगे बढ़ेगा, कब तक उनके शहरों तक पहुंचेगा। अभी के हालात में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मौजूद नमी मैदानों तक पहुंचकर भी बारिश में तब्दील नहीं हो पा रही। बादल घने हैं लेकिन टिक नहीं रहे, नमी आ रही है लेकिन बरस नहीं रही, और इसी वजह से लोगों को लग रहा है कि मानसून गायब हो गया। लेकिन ऐसा है नहीं, अभी जो हालात है उसे मानसून का गायब होना नहीं बल्कि मानसून पहुँच माना जा रहा है। मतलब साफ है कि मानसून कहीं गया नहीं है, बस कुछ दिनों के लिए ठहर गया है। मौसम पर नजर रखने वालों का कहना है कि जिन हवाओं के पैटर्न ने बादलों को रोक रखा है वो पैटर्न कमजोर पड़ने जा रहे हैं। मतलब जैसे ही बाधा हटेगी मानसून फिर से रफ्तार पकड़ सकता है। मौसम का मिजाज यही संकेत दे रहा है कि इस हफ्ते के अंत तक बारिश की गतिविधियां रफ्तार पकड़ेंगी। जेट स्ट्रीम का मौजूदा पैटर्न कमजोर होने पर मानसून दोबारा एक्टिव होगा, उसके बाद ही देश के तमाम हिस्सों में बादल आएंगे और जमकर बरसेंगे। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4 से 5 दिनों तक मानसून के महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और मध्य भारत के दूसरे हिस्सों में आगे बढ़ने के हालात बन रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: मौसम इतना मेहरबान है कि चाय की प्याली हाथ में है सरगम,
2: और देखिए बारिश हो रही है और चाय की प्याली हाथ में, इससे बेहतर क्या हो सकता है। Exactly. और देखिए दिल्ली में तो जैसे मौसम जो है वो आंख में चोली खेल रहा है, तो देखिए कभी कभी हल्की बारिश हो जाती है तो कभी पल भर में धूप जो है वो अपने तेवर दिखाने लगती है, कभी हल्की हवाओं का दौर चलता है तो कभी तपिश और चुभन हम सबको सताने लगती है।
1: बिल्कुल, आपको बता दें लेकिन मौसम की इस मनमर्जी में राहत का पैगाम भी छिपा है। मौसम विभाग का दावा है कि दिल्ली में 18 जून को एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दस्तक दे रहा है जिसके बाद दिल्ली वालों को सुकून मिलेगा।
3: आसमान में बादलों का डेरा है और रिमझिम फुहारे सूरज की तपिश से राहत दे रही हैं। दिल्ली एनसीआर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस गर्मी से राहत का नया पैगाम लेकर आया है। राजधानी में इन दिनों सूरज की गर्मी और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बीच आंख मिचोली का खेल चल रहा है। पिछले हफ्ते गर्मी तेवर दिखा रही थी तो अब बारिश और तेज हवाओं ने पूरे एनसीआर का मौसम बदल दिया। दिल्ली के तमाम इलाकों में आज भी बारिश हुई और इस बारिश ने गर्मी को छूमंतर कर दिया।
4: मौसम है वो पूरा बदल चुका है और इस वक्त चाहे दिल्ली एनसीआर की बात की जाए या आसपास के मैदानी राज्यों की बात की जाए, इसी तरीके से जो मौसम है वो इस वक्त बना हुआ है। लगातार हवाएं जो है वो चल रही है, कहीं कहीं जगह बारिश भी जो है वो देखी जा रही है और साथ ही साथ धूल भरी आंधी जो है सबसे पहले दस्तक दी और उसके बाद एकदम हवाओं का जो सिलसिला है वो पूरी तरीके से शुरू हो चुका है। और ये पहले से अनुमान भी था कि जो पश्चिमी विक्षोभ इस वक्त सक्रिय है उसका असर जो है 2 से 3 दिन के बाद तक भी नजर आने वाला है। और आज आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मौसम जो है वो देश की राजधानी दिल्ली का बना हुआ है और इसी तरीके से अगर मौसम रहा तो तापमान में भी गिरावट होगी और लोगों को भी राहत मिलेगी।
3: आसमान में रुक रुक कर बादलों की आवाजाही हो रही है, तेज हवाएं दिन में कई बार मौसम बदलने का एहसास करा रही है। जून के महीने में गर्मी से ये राहत किसी सौगात से कम नहीं। मौसम विभाग की माने तो 18 जून से एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चिलमिलाते गर्मी से राहत लेकर आएगा।
5: दिल्ली की बात करें तो एनसीआर दिल्ली के लिए भी आज के लिए हमारा येलो अलर्ट है, और हमारा अनुमान है कि जहां भी जो हवाओं की गति है दिन के किसी समय 50 से 60 किलोमीटर पर आवर्स रह सकती है। इसके बाद एक और वेस्टर्न डिस्टरबेंस नॉर्थ वेस्ट इंडिया को प्रभाव करेगा और 18 तारीख से, उसके कारण पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में फिर रेनफॉल थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है। और अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करें तो एनसीआर दिल्ली के लिए हमने फिर से 20 और 21 के लिए लाइट रेनफॉल का फोरकास्ट दे रखा है।
3: दिल्ली में मौजूदा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर खत्म होने के बाद एक बार फिर तापमान बढ़ने का अनुमान है, लेकिन इस बढ़ोतरी के बावजूद तापमान सामान्य से कम ही बना रहेगा। इसके बाद 18 जून को दूसरे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से राहत की दूसरी किस्त मिलने के आसार हैं। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: अब देखिए औसम मौसम के बाद बात करते हैं जंगल की, क्योंकि जंगल से गुजरने वाले हाईवे या फिर सड़कें अक्सर वहां से गुजरने वाले जानवरों के लिए घातक साबित होती हैं, लेकिन अब सीन बदल सकता है क्योंकि यूपी के झांसी के रहने वाले दो भाइयों ने ऐसा डिवाइस बनाया है जो जंगली जानवरों की जान को बचा सकता है।
6: जी हाँ, और इस डिवाइस को जंगली जानवरों का वाइल्ड वॉच कहा जा रहा है, और ये डिवाइस काम कैसे करता है आइए देखते हैं।
7: सड़कों पर रफ्तार से दौड़ती गाड़ियां और अचानक सड़क के बीच में आ जाने वाले बेजुबान जानवर हाईवे और आम सड़कों पर अक्सर इस तरह के हादसे हो जाते हैं, और ना जाने कितने ही बेजुबान जानवर अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। आंकड़ों के मुताबिक सड़क और ट्रैफिक की वजह से हर साल दुनिया भर में 2 अरब से भी ज्यादा जानवर इस तरह के हादसों का शिकार होते हैं। लेकिन अब इन हादसों पर लगाम लगाने के लिए झांसी के रहने वाले तन्वे और उनके जुड़वा भाई ने एक अनोखी डिवाइस तैयार की है। ये अद्भुत डिवाइस सड़क पर जानवरों के लिए सुरक्षा कवच का काम करेगी। इस छोटे से आविष्कार में बेजुबानों की जिंदगी बचाने का एक बड़ा फॉर्मूला छिपा है।
8: ये ट्रैक करता है थ्रू मूवमेंट, इफ देयर इज मूवमेंट ऑफ वाइल्ड एनिमल, सिग्निफिकेंट मूवमेंट। नाउ अब यहाँ पर मैटर करता है फॉल्स पॉजिटिव का, तो फॉल्स पॉजिटिव इस ऐसे सिनेरियोस होते हैं जहां पर कोई मूवमेंट नहीं हुई बट डिटेक्ट कर लिया। तो ये सारे हम लोगों ने जनरेट किया है इसका प्रॉपर टेक्निकल सिस्टम। तो हमारे कोर्ट्स, हमने इसमें एआई का भी हेल्प लिया है, जो कि अभी आपने देखा होगा काफी एआई की बात हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो उसके थ्रू हमने फॉल्स पॉजिटिव को बेयर मिनिमम रखा है और ये अभी लार्ज एनिमल्स को डिटेक्ट कर सकता है।
7: इस डिवाइस का नाम है वाइल्ड वॉच। जैसा नाम है इसका काम भी कुछ वैसा ही है। ये डिवाइस बेहद स्मार्ट तरीके से काम करती है। वाइल्ड वॉच डिवाइस के 2 हिस्से हैं। पहला पार्ट जानवरों के मूवमेंट पर नजर रखता है और दूसरा पार्ट ड्राइवर को उस मूवमेंट का संकेत देता है जिससे वन्य जीव सुरक्षित हो जाते हैं। इन दोनों डिवाइस में एक तरह का रडार सिस्टम लगा है जो किसी जानवर की मूवमेंट को ट्रैक कर आने वाली गाड़ी को सिग्नल या अलर्ट भेज देता है। इससे ड्राइवर को पहले ही पता चल जाता है कि आगे कोई बेजुबान सड़क पार कर रहा है।
8: तो हमने लोरा ट्रांसमिशंस यूज किया है, हमने पर्टिकुलर माइक्रो कंट्रोलर्स यूज किया है, माइक्रो कंट्रोलर एंड थ्रू सेंसिंग हम यूज कर रहे हैं रडार सेंसर। रडार सेंसर के थ्रू हम लोग पर्टिकुलर रेंज में डिटेक्ट करते हैं, और यदि डिटेक्ट होता है तो ये पर्टिकुलर ट्रांसमिशन भेजता है लॉन्ग रेंज ट्रांसमिशन टू अनदर डिवाइस। उस डिवाइस में एक हमने बीपर सेट किया है अभी प्रोटोटाइप 1 में, और उस पर्टिकुलर बीपर वो साउंड जैसे ही करता है दैट मींस कि वहां कोई मूवमेंट हुई है, कोई लार्ज एनिमल क्रॉस हुआ है।
7: इस अनोखे प्रयास की अब हर तरफ तारीफ हो रही है। उनकी इस कामयाबी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान और सम्मान भी मिला है। इस अनोखे आविष्कार के लिए उन्हें 1 लाख ब्रिटिश पाउंड यानी 1 करोड़ रुपए भी ग्रांट के तौर पर दिए गए हैं। भारत जैसे घने आबादी वाले देश में इस तरह की समस्याएं आम बात है, लेकिन इस तरह के हादसे सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर में होते हैं। इन हादसों को रोडकिल कहा जाता है, जिसमें छोटे कीड़े मकोड़ों से लेकर पक्षी और बड़े जानवर शामिल होते हैं। अकेले अमेरिका में हर दिन लगभग 10 लाख जानवर वाहनों की चपेट में आकर मर जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ये आंकड़ा लगभग 1 करोड़ के आसपास है, जबकि भारत के असम में मौजूद काजीरंगा कार्बी आंगलोंग के 64 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच में एक साल में 6000 से ज्यादा जंगली जानवरों की मौत दर्ज की गई है। इसके अलावा आवारा कुत्तों और मवेशियों की मौत के आंकड़े तो लाखों में है, लेकिन तन्मय और उनके जुड़वा भाई के जरिए तैयार की गई वाइल्ड वॉच डिवाइस इस तरह के हादसों को रोकने में एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकती है। फिलहाल ये डिवाइस 200 से 250 मीटर रेंज तक कवर कर रही है। अब इस डिवाइस को मॉडिफाई कर इसकी रेंज को 500 मीटर तक करने की कोशिश की जा रही है। अगर इस तकनीक को बड़े पैमाने पर सड़कों पर लागू किया जाए तो हर साल हजारों बेजुबानों की जान बचाई जा सकती है। प्रमोद कुमार गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड्स टुडे।
1: और अब बात ऐसी खबर की जिसे असम के लिए शुभ संकेत माना जा रहा है। दरअसल यहां के लखीमपुर जिले के दुलुंग रिजर्व फॉरेस्ट से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है। जंगल में लगाए गए कैमरा ट्रैप में पहली बार एक दुर्लभ ब्लैक पैंथर कैद हुआ है। इसे राज्य के लिए एक ऐतिहासिक वन्यजीव रिकॉर्ड माना जा रहा है। वन से जुड़े लोगों के मुताबिक दुलुंग रिजर्व फॉरेस्ट में इस रहस्यमय शिकारी की मौजूदगी का यह पहला वैज्ञानिक प्रमाण है। ब्लैक पैंथर बेहद शर्मीला और इंसानों की नजरों से दूर रहने वाला जीव माना जाता है, इसलिए इसका कैमरे में कैद होना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। जानकारों का मानना है कि किसी जंगल में ब्लैक पैंथर जैसे शिकारी की मौजूदगी इस बात का संकेत है कि वहां पर्याप्त शिकार, घना जंगल और बैलेंस इकोसिस्टम मौजूद है। तो जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपको बता दें कि असम के जो मुख्यमंत्री हैं, दरअसल उन्होंने इन तस्वीरों को भी साझा किया है और कैमरे में बड़ी मुश्किल से ये ब्लैक पैंथर जो हैं वो कैद हो पाते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि ब्लैक पैंथर स्वभावतः बेहद शर्मीले होते हैं, लेकिन कैमरे में इनको कैद करना बड़ा मुश्किल होता है। तो न सिर्फ इस दुलुंग फॉरेस्ट रिजर्व के लिए बल्कि आपको बता दें इस राज्य के लिए यानी कि असम के लिए भी ये बहुत बड़ी बात है कि ये पता चल पाया है कि यहाँ पर इस तरह का कोई दुर्लभ प्रजाति का जो शिकारी जानवर है वो मौजूद है। तो दुलुंग जंगल के लिए ये खुशखबरी है, अच्छी खबर है, जिसको खुद सीएम ने जो तस्वीरें हैं वो साझा की है।
2: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब एक एक करके समझते हैं और आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं कि असम के इस जंगल में इस ब्लैक पैंथर का दिखना क्यों इतना अहम है। देखिए, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि दुलुंग रिजर्व फॉरेस्ट के जंगलों में पहली बार एक मेलानिस्टिक ब्लैक पैंथर कैमरा ट्रैप में कैद हुआ है। इसे असम के वन्यजीव इतिहास में एक महत्वपूर्ण और दुर्लभ रिकॉर्ड माना जा रहा है। जंगलों में मेलानिस्टिक तेंदुए का दिखाई देना बेहद दुर्लभ घटना मानी जाती है और यही वजह है कि इसकी तस्वीर सामने आते ही वन्यजीव विशेषज्ञों में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ चुकी है।
6: ब्लैक पैंथर कोई अलग प्रजाति नहीं है बल्कि सामान्य तेंदुए का ही एक दुर्लभ रूप है। अनुवांशिक बदलाव के कारण इसके शरीर पर काले रंग का प्रभुत्व हो जाता है। दूर से देखने पर यह पूरी तरह से काला दिखाई देता है, लेकिन नजदीक से देखने पर इसके शरीर पर तेंदुए जैसे धब्बे साफ नजर आते हैं। अपने गहरे काले रंग की वजह से ये जंगल में आसानी से छिप जाता है और यही वजह है कि इसे सबसे प्रभावी और खतरनाक शिकारी जीवों में गिना जाता है।
9: बिल्कुल, देखिए ब्लैक पैंथर स्वभाव से बेहद शर्मीला और मायावी माना जाता है। ये इंसानों से दूर रहना पसंद करता है और पेड़ों पर अविश्वसनीय फुर्ती से चढ़ सकता है। भारत में ब्लैक पैंथर मुख्य रूप से पश्चिमी घाट और मध्य भारत के कुछ जंगलों में पाए जाते हैं। असम के दुलंग जंगल में इसकी मौजूदगी पूर्वोत्तर भारत के लिए खास महत्व भी रखती है।
1: और चाय पर चर्चा में अब बात एक मशहूर डायरेक्टर के ओटीटी डेब्यू की। जी हां, वेब सीरीज प्रीतम एंड पेड्रो के साथ राजू हिरानी ओटीटी की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं, लेकिन राजू हिरानी के लिए प्रीतम एंड पेड्रो सिर्फ एक वेब सीरीज नहीं बल्कि दोहरी खुशी लेकर आई है।
2: बिल्कुल, देखिए दो गुड न्यूज है राजू हिरानी के लिए, क्योंकि प्रीतम एंड पेड्रो राजू के ओटीटी डेब्यू के साथ ही उनके बेटे वीर हिरानी का भी पहला बड़ा डिजिटल प्रोजेक्ट है। देखिए फिलहाल ट्रेलर दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद भी आ रहा है। इस ट्रेलर ने प्रीतम एंड पेड्रो से दर्शकों की जो उम्मीदें हैं, उनकी जो एक्सपेक्टेशन है, उसको भी कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया है।
10: डॉक्टर पेड्रो गोंसालेस, मेरे को ना मारपीट, भाग दौड़, खून खराबा, ये सब क्राइम की जब खुशबू आती है तब मजा आता है।
11: बॉलीवुड के सबसे कामयाब और भरोसेमंद फिल्म मेकर्स में गिने जाने वाले राजकुमार हिरानी अब ओटीटी की दुनिया में कदम रख चुके हैं।
10: ये कीबोर्ड क्यों से क्यों चालू होता है?
11: उनकी पहली वेब सीरीज प्रीतम एंड पेट्रो का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। लेकिन इस सीरीज की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ इसकी कहानी नहीं बल्कि हिरानी परिवार का डबल डेब्यू भी है।
10: सॉरी नहीं नहीं तो बोल, ऑपोजिशन के क्रिटिसिज्म से डेमोक्रेसी चलती है।
12: इसी मिनिस्टर ने आपको साइबर में फेंका था ना, इसका बच्चा ढूंढ निकालोगे तो क्या होगा?
10: जहाँ चाहूँ वहाँ पे ट्रांसफर करेगा।
11: एक तरफ राजकुमार हिरानी पहली बार वेब सीरीज लेकर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके बेटे वीर हिरानी इसी शो से अपना डिजिटल और लीड एक्टिंग डेब्यू कर रहे हैं। साइबर क्राइम, कॉमेडी, सस्पेंस और स्टार कास्ट से भरपूर इस सीरीज का ट्रेलर सोशल मीडिया पर चर्चा में है।
12: आई फील कोई साइबर क्रिमिनल इन्वॉल्वड है इनकी किडनैपिंग में। मेबी स्टिल वाचिंग अस।
11: बड़े पर्दे पर कई यादगार फिल्में देने के बाद अब वो ओटीटी की दुनिया में कदम रख रहे हैं। ट्रेलर लॉन्च के दौरान हिरानी ने बदलते दौर और दर्शकों की देखने की आदतों पर भी दिलचस्प बातें कही।
13: ये जो 2003 की बात कर रहे हैं, मैं इनको बता दूं, वो मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई थी दिसंबर 2003 में, मुन्ना भाई MBBS। तो उस वक्त फिल्में बड़े पर्दे पे दिखाई जाती थी और हमको बड़ी चिंता होती थी कि स्क्रीन पे जब जाएंगे लोग अपने उनके फोन तो नहीं बज रहे होंगे। आजकल ये फर्क हुआ है कि फिल्में छोटे पर्दे पे होती है 6 इंच के, वो फोन पे देख रहे होते हैं और हमें ये फिर होता है आपको नोटिफिकेशन तो नहीं आएगा ना, डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो जाएंगे ना।
14: आपके विनय में जरा भी मैनर्स नहीं है, तो आई सॉल्व द प्रॉब्लम, अब किसी को नहीं दिखा पाएगा।
11: राजकुमार हिरानी के लिए ये सिर्फ ओटीटी डेब्यू नहीं है बल्कि एक पिता के तौर पर भी खास पल है, क्योंकि इसी सीरीज से उनके बेटे वीर हिरानी डिजिटल दुनिया में अपनी नई पारी शुरू कर रहे हैं। ट्रेलर में वीर का आत्मविश्वास और अरशद वारसी के साथ उनकी केमिस्ट्री चर्चा का विषय बनी हुई है।
12: 10 मिनट का काम था।
10: सॉरी नहीं नहीं तो बोल।
11: दिलचस्प बात यह है कि वीर हिरानी और अरशद वारसी का साथ आज का नहीं, लगे रहो मुन्ना भाई में वीर बचपन में भी कैमरे के सामने नजर आ चुके थे।
15: मेरे पास है, कब तक अरेंज होगा कैश?
16: 23.7 लाख जमा हो गया है, 12 सूटकेसेस भर चुके हैं।
11: अब करीब 2 दशक बाद दोनों एक बार फिर स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। ट्रेलर लॉन्च में इस बात पर खूब हंसी मजाक भी हुआ। बातों बातों में ही अरशद और वीर हिरानी ने इस सीरीज में संजय दत्त के होने का भी शिगुफा छोड़कर दर्शकों को कंफ्यूज कर दिया है। हालांकि ट्रेलर में कहीं भी संजय दत्त नजर नहीं आए, तो अगर आपको संजू बाबा की सरप्राइज एंट्री दिख जाए तो इससे परफेक्ट सिनेरियो भला और क्या होगा?
14: किसी को नहीं दिखा पाएगा।
11: अब तक ज्यादातर गंभीर और संवेदनशील किरदारों में नजर आने वाले विक्रांत इस बार खलनायक की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। उनका रहस्यमय और खतरनाक अंदाज ट्रेलर में सस्पेंस बढ़ाता है और कहानी को नया मोड़ देता है।
14: जल्द मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
11: सीरीज में मोना सिंह, बोमन ईरानी और राजेश शर्मा जैसे दमदार कलाकार भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे, जबकि निर्देशन की कमान संभाली है अविनाश अरुण ने, जिन्हें उनके संवेदनशील और अलग अंदाज की कहानी कहने के लिए जाना जाता है। वहीं राजकुमार हिरानी इस शो के क्रिएटर और प्रोड्यूसर है। ट्रेलर की सबसे खास बात है इसका टोन। ये सिर्फ एक साइबर क्राइम थ्रिलर नहीं बल्कि इसमें हिरानी स्टाइल का ह्यूमर, दोस्ती, इमोशन और आम आदमी से जुड़ा अंदाज भी देखने को मिलता है। यानी डिजिटल दुनिया के खतरों को मनोरंजन के पैकेज में पेश करने की कोशिश की गई है।
10: तेरा नाम क्या है? तेरा
12: प्रीतम सर, प्रीतम पार्कर।
10: मोबाइल टावर है क्या? 15 मिनट में?
12: 10 मिनट का काम था।
11: राजकुमार हिरानी का ओटीटी डेब्यू, वीर हिरानी की पहली बड़ी एंट्री, अरशद वारसी का कॉमिक अंदाज और विक्रांत बैसी का खतरनाक अवतार। अब देखना होगा कि बड़े पर्दे पर जादू चलाने वाले राजकुमार हिरानी ओटीटी की दुनिया में भी वही कमाल दोहरा पाते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
12: इन्वॉल्वड है इनकी किडनैपिंग में। मेबी स्टिल वाचिंग अस।
14: आपके विनय में जरा भी मैनर्स नहीं है।
6: चलिए फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे क्रिकेट के IPL के बाद कैसी है योग के IPL की तैयारी।
17: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
18: Fill your day with podcasts on TuneIn. Whether you're passing the time on your commute, catching up on your workouts, or just tuning in while hanging out, all your favorite podcasts are all here on TuneIn. The Daily.
19: From the New York Times, I'm Michael Barbaro. This is The Daily.
18: Smartless.
20: Hey guys, we got a mouthful of English muffin with a glass full of
18: Marketplace.
21: Big three on the program today, or, you know, the big three of
18: and more. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.

0: बोल चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: तो ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं चाय पर चर्चा। इससे पहले आगे बढ़े, नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
1: टाइम मैगजीन की टॉप 100 लिस्ट में

0: चलिए, बात अमरनाथ यात्रा की। अब इस आध्यात्मिक यात्रा में काफी कुछ नया देखने को मिलेगा। जम्मू में अमरनाथ बेस कैंप के पास तैयार हो रहा एक ऐसा पार्क जहां कबाड़ से इतिहास रचा जा रहा है। जी हाँ, वहां एक ही जगह पर ताजमहल से लेकर आइफल टावर तक दुनिया और भारत की कई प्रसिद्ध धरोहरों की झलक देखने को मिलेगी।
1: यानी अमरनाथ यात्रियों को जम्मू में एक ही जगह भारत के दर्शन होंगे। असल में ये पार्क लोगों को ये बताएगा कि अगर सोच नहीं हो तो वेस्ट भी वंडर बन सकता है। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। ऐसे में जम्मू शहर में यात्रियों के लिए वेस्ट टू वंडर पार्क तैयार किया जा रहा है, जो पर्यटकों के लिए और श्रद्धालुओं के लिए एक नया आकर्षण होगा।
2: जल्द ही बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए यात्रा शुरू होने वाली है। जल्द अमरनाथ जाने वाले हर राह पर बाबा बर्फानी का जयकारा होगा। इस बार बाबा बर्फानी के दर्शन की आस में निकले अमरनाथ यात्रियों को जम्मू में ताजमहल की खूबसूरती दिखेगी। कुछ कदम आगे बढ़ने पर पेरिस का आइफिल टावर स्वागत करता दिखाई देगा।
3: वेस्ट टू वंडर पार्क, यानी जो वेस्ट हुआ मटेरियल होता है उससे एक पार्क बनाया जा रहा है, और उस पार्क के बीच में कई स्मारक जो है वो स्थापित किए गए हैं। ये खास तौर पर आकर्षण का केंद्र इसलिए बन रहा है क्योंकि आगामी अमरनाथ यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है, और देश भर के क्या विश्व भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु सबसे पहले जम्मू पहुंचेंगे, और उनके लिए यहां पर जम्मू में खास तौर पर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आने वाला ये प्रोजेक्ट जो है स्थापित किया जा रहा है।
2: यहाँ दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी और मुंबई की पहचान गेटवे ऑफ इंडिया भी नजर आएंगे। ये कोई जादू नहीं बल्कि जम्मू में तैयार हो रहा एक अनोखा वेस्ट टू वंडर पार्क है। यहाँ बेकार चीजों और कबाड़ से देश दुनिया की प्रसिद्ध धरोहर की रेप्लिका बनाई जा रही है।
4: यात्री 2 महीने के लिए तो आते ही है, उनको थोड़ा सा वक्त मिलेगा, और बच्चों को, हमारे जम्मू के बच्चों को भी सीखना मिलेगा कि हम अपने वेस्ट प्रोडक्ट से क्या क्या क्या बना सकते हैं।
2: यहाँ इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च चेना ब्रिज भी होगा। वहीं खगोलीय रहस्यों को समेटे दिल्ली का जंतर मंतर भी है। पीसा की झुकी मीनार से लेकर राजस्थान की ऐतिहासिक विरासत तक कई प्रसिद्ध रचनाएं इस पार्क की शोभा बढ़ा रही है।
5: ई वेस्ट टू वंडर पार्क, एक वंडर पार्क जो ई वेस्ट मटेरियल से बन रही है, और जो कि भगवती नगर में है, अमरनाथ यात्री निवास के बिल्कुल एकदम पास। बात करें यात्री, जो देश भर से यात्री आएंगे, जो टूरिस्ट आएंगे, वो जम्मू में जरूर विजिट कीजिए इस वंडर पार्क में।
2: इस परियोजना की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ इसकी खूबसूरती नहीं बल्कि इसका संदेश है, क्योंकि जो कबाड़ कभी बेकार माना जाता था वो अब कला और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक बन रहा है।
6: हमें लग रहा है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स और भी जगह बने ताकि वेस्ट को हम किस तरह से रिसाइकल करके शेप दे सके और जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकती हैं।
2: अमरनाथ यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु जम्मू पहुँचते हैं, ऐसे में ये पार्क उनके लिए एक बेहतरीन मनोरंजन और विश्राम स्थल साबित होगा। लंबी यात्रा के बीच श्रद्धालु यहाँ कुछ समय बिताकर देश दुनिया की मशहूर इमारतों की झलक एक ही जगह देख सकेंगे। जम्मू से राही कपूर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से विदेशी ट्रिप की जगह स्वदेश घूमने की अपील की है, तो गुड न्यूज टुडे भी आप सभी लोगों से अपने आसपास की खूबसूरत, ऐतिहासिक और दूसरी सैर सपाटा करने वाली जगहों की तस्वीरों को शेयर करने की लगातार अपील कर रहा है, ताकि हम आपके भेजे गए उन वीडियोस को GNT पर दिखाएं और उन पर्यटन स्थलों को भी लोग जाने, वहां सैर सपाटा करें।
7: बिल्कुल, तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज आपको हम हिमाचल के चंबा लिए चलते हैं, जहां साच पास आपका स्वागत करने को तैयार है।

0: लीजिए, दिल में उतार लीजिए और हमेशा के लिए इस याद को अपने जहन में सजो लीजिए। आपकी आंखों को भले ही यकीन ना हो, लेकिन ये तस्वीरें किसी जन्नत से कम नहीं। ये यूरोप या स्विट्जरलैंड नहीं है, बल्कि हिमाचल के चंबा में बसे साच पास का है। समुद्र तल से करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद ये दिलकश घाटी इन दिनों देश के सबसे बड़े एडवेंचर हब के रूप में उभर रही है। जून से अक्टूबर के महीने में जब यहाँ का रास्ता खुलता है तो मानो जैसे जन्नत के दरवाजे खुल गए हों।
1: नमस्कार दोस्तों, आज हम साच पास जोत में, जो कि चुरा वैली हिमाचल प्रदेश में है, तो आज हम दिखा रहे हैं आपको चुरा वैली का खूबसूरत दृश्य, जो आप देख सकते हैं मनमोहक दृश्य है। चारों तरफ बर्फबारी है और साथ में है भूत ग्राउंड और साथ ही में है मंदिर। और आज हम मिलेंगे अपने पर्यटकों से जो विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हैं। हमारे साथ हैं दीपांशा जी, है ना मैम, आपका शुभ नाम?
2: जी, दीपांशा।
1: दीपांशा मैम, आप कहाँ से हो?
2: मैं दीपांशा हरियाणा से हूँ।
1: क्या बात है मैम, बहुत बढ़िया। मैम आपका चुरा वैली में स्वागत है। और आप पहली बार मैम आए हो अपने दोस्तों के साथ?
2: बिल्कुल, यहाँ मैं पहली बार आई हूँ। ये मेरा भाई है छोटा और ये मेरा कलीग है
1: जी।
2: तो मैं अपने कलीग भाई सबको लेके आई हूँ।
1: तो मैम आपने यहाँ का ये प्लान कैसे किया, कि आपने किससे सुना कि आपने साच पास जाना है या चुरा वैली घूमने जाना है?
2: तो हम लोग,
1: ये आइडिया कैसे आया आपको?
2: हम लोग यूजुअली क्या करते थे, आसपास का कोई एरिया हो गया जैसे कसौल मनाली, तो इट इज वेरी ओवर क्राउडेड एज ऑफ नाउ। सो हमने सोचा कि कुछ ऑफ बीट करते हैं
1: जी।
2: तो अभी तो और भी ज्यादा, मतलब बिल्कुल रास्ते भी जाम है, तो इतना टाइम हमको ट्रैफिक में ही लग जाता। तो हमने चैट जीपीटी किया, दिस फर्स्ट सजेशन इट हैज गिवन फॉर चुरा वैली।
1: क्या बात है।
2: तो इसलिए हमने और भी सर्च किया कि चुरा वैली में एक्चुअल में क्या क्या चीजें हैं। तो हमने सर्च पास के बारे में जाना।
0: रास्ते के दोनों तरफ खड़े पहाड़ ऐसे लगते हैं मानो इस जन्नत की हिफाजत कर रहे हों। जब पहाड़ों की ओट से सूरज की पहली किरण इन बर्फीली चोटियों पर पड़ती है तो ऐसा गुमान होता है मानो किसी ने सफेद मखमली फर्श पर सोना बिखेर दिया हो। इन दिनों चासपास का जर्रा जर्रा सैलानियों का इस्तकबाल कर रहा है। जो लोग यहाँ आते हैं वो बस यहीं के होकर रह जाते हैं। कोई इन नजारों को अपने कैमरे में कैद कर रहा है तो कोई बस खामोशी से बैठकर इस कुदरती हुस्न को अपनी रूह में उतार रहा है।
2: So it is totally unexpected. मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जून के मंथ में मैं इतना ज्यादा शांत, मतलब हिमाचल में नजारा देखने वाली हूँ। So this is, and snowfall as well. यहाँ पे अभी हल्की हल्की स्नो भी हो रही है। So we are expecting a little more.
0: साच पास की इन तस्वीरों को देखकर वाकई दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता है जिसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। और बादलों का ऐसा हसीन मेल सीधे दिल में उतर जाता है। तो अगर आप भी इस हसीन नजारे को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं तो हिमाचल के चंबा का रुख कर लीजिए।
2: यहाँ पे आप आओ और बस ये कोशिश करना कि यहाँ पे अपना कूड़ा कचरा ये सब बिल्कुल मत फैलाना, प्लीज टेक इट।
1: बहुत बढ़िया,
2: बिल्कुल इस चीज को बहुत ध्यान। ये बिल्कुल अनटच्ड वैली है, इसको इतना ही हमको मेंटेन करके रखना है जितने यहाँ पे साफ सुथरी चीजें हैं, इनको मेंटेन करके रखना है। बट टूरिज्म थोड़ा हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ज्यादा, इन केस इफ एनीबॉडी वांट्स टू एक्सप्लोर ऑफ बीट प्लेस, दिस इज सच अनरियल प्लेस।
3: तो आप भी अपने ही देश में सैर सपाटा करने अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट कर सकते हैं। टूरिज्म को बढ़ावा देने के संकल्प के भागीदार बनिए। बस करना सिर्फ इतना सा है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है तो उठाइए अपना कैमरा, स्टार्ट कर दीजिए व्लॉग्स बनाने। फिर हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, हम उसे GNT पर जरूर दिखाएंगे।
4: योगा अब सिर्फ सुबह पार्क में करने वाली एक्सरसाइज नहीं रहेगा, बल्कि अब योगा भी एक बड़े खेल की तरह दिखाई देगा। अगले महीने अहमदाबाद में शुरू होने जा रहे योगासन सुपर लीग यानी YSL, इसे आप योग की IPL भी कह सकते हैं। और इस लीग में देश के 8 अलग अलग शहरों की टीमें हिस्सा ले रहे हैं। उनके खिलाड़ी अलग अलग योगासन करके अपना हुनर दिखाएंगे, जैसे क्रिकेट में रन बनते हैं, कबड्डी में पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक वैसे ही खिलाड़ियों को उनके योगासन की परफॉर्मेंस के आधार पर अंक दिए जाएंगे। खास बात यह है कि स्कोरिंग के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होगा, जिससे दर्शक आसानी से समझ सकेंगे कि कौन खिलाड़ी आगे चल रहा है।
5: इस लीग का मकसद सिर्फ मुकाबला करना नहीं बल्कि योग को युवाओं और बच्चों के बीच और लोकप्रिय बनाना है। आयोजकों का मानना है कि योग शरीर को मजबूत, मन को शांत और जीवन को बेहतर बनाता है, इसलिए इसे एक प्रोफेशनल खेल के रूप में भी पहचान मिलनी चाहिए। योगासन सुपर लीग करीब 200 करोड़ रुपए की शुरुआती वैल्यू के साथ लॉन्च हो रही है और आने वाले 3 सालों में इसे 1000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने की तैयारी है। सरकार और खेल संस्थाओं के समर्थन के साथ शुरू हो रही ये लीग योग को दुनिया के बड़े खेलों की कतार में खड़ा करने की कोशिश है। यानी आने वाले समय में योग सिर्फ स्वास्थ्य का मंत्र नहीं बल्कि रोमांचक खेल का नया चेहरा भी बन सकता है।
6: वर्ल्ड योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के बाद अब अगले महीने योगासन लीग शुरू होने जा रही है। जैसे क्रिकेट में आईपीएल होता है उसी तर्ज पर अब योगासन की लीग शुरू होने जा रही है। शुरुआती जो जानकारियां सामने आ रही है, इस लीग की वैल्यूएशन होगी 200 करोड़ जो कि आने वाले समय में यानी 3 साल में इसकी वैल्यूएशन 1000 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। शुरुआती लीग में 8 टीमें शामिल होंगी। खास करके इस लीग की बात करें तो अलग अलग आसन करते हुए हमें खिलाड़ी देखने को मिलेंगे। इसमें अलग अलग आसन कितने लंबे समय तक खिलाड़ी कर सकते हैं इस पर विजेता का ऐलान किया जाएगा। कैमरा पर्सन जयमीन व्यास के साथ अतुल तिवारी।
3: देखिए, कहते हैं कि खेल इंसान को जोश से भर देता है, लेकिन जोश के साथ होश कैसे बनाए रखना है ये कोई जापानी फुटबॉल फैन से सीखे। सोशल मीडिया पर जापान के टोक्यो से एक ऐसा ही वीडियो वायरल है जिसने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। दरअसल नीदरलैंड्स के खिलाफ अपनी फुटबॉल टीम का मैच ड्रॉ होने पर जापानी फैंस खुशी के साथ झूमने लगे।
7: बिल्कुल, देखिए, जश्न मनाने के लिए वो टोक्यो के सबसे मशहूर और बिजी चौराहे शिबुया क्रॉसिंग पर जमा हुए, लेकिन सिर्फ 40 सेकंड के लिए। जैसे ही सिग्नल लाल हुआ, ठीक उसी सेकंड सबने जश्न रोका और बेहद डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन के साथ वापस फुटपाथ पर लौट आए ताकि गाड़ियों का रास्ता ना रुके। यानी जब तक पैदल चलने वालों के लिए ट्रैफिक लाइट हरी रही, तब तक सड़क के बीचों बीच फैंस नाचते गाते हुए नजर आए, लाल होते ही जश्न पर फुल स्टॉप। इसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं, आपने भी देखे होंगे।
5: जापान दुनिया का एक ऐसा देश है जिसने तरक्की की ऊंचाइयों को तो छुआ ही, लेकिन कभी अपनी जड़ों और बुनियादी नागरिक कर्तव्यों को नहीं छोड़ा। जापान की संस्कृति की सबसे बड़ी ताकत है वहां के लोगों का अनुशासन और स्वच्छता। इस सफाई और अनुशासन को लेकर जागरूकता का मुख्य कारण वहां की गहरी सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताएं, शिक्षा प्रणाली और सामाजिक अनुशासन है। स्वच्छता को वहां सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि अच्छे नागरिक और आध्यात्मिक जीवन का हिस्सा माना जाता है। जापानी धर्म में शारीरिक और आध्यात्मिक शुद्धिकरण को बहुत महत्व दिया गया है। उनका मानना है कि साफ सफाई रखने से बुरी आत्माएं दूर होती हैं और मन में शांति बनी रहती है। जापान में स्कूलों में सफाई के लिए कोई अलग कर्मचारी नहीं होते। पहली कक्षा से ही छात्र अपने स्कूल, अपनी क्लासेस और यहां तक कि टॉयलेट्स की सफाई खुद करते हैं। शगुफ्ता,
3: जापानी समाज में दूसरों का ख्याल रखना सबसे अहम नैतिक मूल्यों में से एक माना जाता है। सार्वजनिक स्थानों पर कचरा ना फैलाना और कूड़ा अपने साथ घर लेकर जाना इसी भावना का एक हिस्सा है।
7: तो चलिए, इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे टाइम मैगजीन में छाई स्मृति मंधाना।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुन।
9: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? Conveniently located by the airport, we've been taking care of customers since 1897.
10: Drive home a new 2026 Subaru Outback with 0.9% APR financing for up to 48 months.
9: We'll give you top dollar for your trade, and we will not be undersold. If you come in to buy a car, we'll do whatever it takes to earn your business. Easy to deal with, easy to get to. Byers Airport Subaru. By the airport.
11: See dealer for details. Offer ends 6/30/26.
12: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
13: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen. And you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
14: और दुर्भाग्य कहता है
15: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
16: अविश्वास में विश्वास बसता है,
17: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
18: गुड न्यूज टुडे।
19: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
20: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
21: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
22: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
23: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
14: और दुर्भाग्य कहता है
15: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
16: अविश्वास में विश्वास बसता है,
17: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
18: गुड न्यूज टुडे।

आसमान को छूती बर्फ से लदी सफेद चोटियां, बादलों को चीर कर आगे बढ़ती गाड़ियां और वादियों के बीच सर्द हवा, ये नजारा आंखों में बसा

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ओपनर बल्लेबाज स्मृति मंदाना भले ही इस वक्त T20 वर्ल्ड कप में बिजी हों, लेकिन इस दौरान उनके नाम के साथ एक ऐतिहासिक अचीवमेंट जुड़ गई है। टाइम मैगजीन ने अपने टॉप 100 लिस्ट में उनका नाम शामिल किया है।
2: देखिए, टाइम मैगजीन ने खेल जगत के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची तैयार की है, जिसमें प्लेयर्स, कोच और निवेशक तक सभी शामिल हैं। इस लिस्ट में क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी और कार्लो अल्कराज भी तमाम ऐसे स्टार्स के नाम आपको देखने को मिलेंगे। टाइम मैगजीन ने खेल हस्तियों की लिस्ट को 4 कैटेगरीज में बांट दिया है।
3: हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरें जारी।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
0: अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
1: देखिए आजकल कई स्टार्स को आपने भगवान की शरण में जाते हुए देखा होगा। अब आपको तस्वीरें हम दरअसल दिखाते हैं परिणीति चोपड़ा की, जो कि शिव भक्ति में लीन नजर आई हैं। परिणीति चोपड़ा ने सोमवार को ही ये स्पेशल वीडियो शेयर किया है, लेकिन ये वीडियो उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी के दिनों में रिकॉर्ड किया था।
2: बिल्कुल, देखिए इस वीडियो में परिणीति चोपड़ा शिव स्तुति गाती हुई नजर आ रही हैं। इस गाने में एक्ट्रेस की आवाज सुनकर लोग काफी हैरान हैं। इसे शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है कि एक ऐसा समय जिसने मुझे आस्था, आत्मचिंतन और कृतज्ञता के करीब ला दिया। जब भी मैं इसे सुनती हूँ, मुझे अपनी जिंदगी का वो खूबसूरत दौर याद आ जाता है। मैं इसे आप सभी के साथ शेयर करते हुए काफी खुश महसूस कर रही हूँ।

0: तो चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। रखिए अपना ख्याल, कल फिर मिलेंगे शाम 5 बजे चाय पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: नए काम की शुरुआत करते समय किन बातों का ध्यान रखें? नए काम की शुरुआत में आपकी राशियों का क्या महत्व है और नए काम की शुरुआत क्या खा करके करें कि सफलता मिले? नए काम का ज्योतिष से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्ट।
3: म्यूजिक फॉर एवरी मूड लिव्स ऑन ट्यून इन। व्हेदर यू वांट टू रिलैक्स, फोकस और टर्न थिंग्स अप, यू'ल फाइंड द राइट स्टेशन। हियर फ्रॉम द टॉप स्टेशंस लाइक टुडेज हिट्स, क्लासिक रॉक, कॉफी हाउस एंड मोर। Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
4: जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
10: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
11: Time Magazine की टॉप 100 लिस्ट में शामिल हुई स्मृति मंधाना, इस सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी, महिला क्रिकेट में योगदान के लिए मिला सम्मान। रक्षा मोर्चे पर बढ़ेगी भारत की ताकत, वायुसेना बनाएगी घातक स्वदेशी कामिकेज ड्रोन, 16,000 फीट की ऊंचाई पर भी अचूक वार करने में सक्षम। नीट प्री एग्जाम तक देश में टेलीग्राम पर स्थायी रोक, 21 जून को परीक्षा, 22 जून तक काम नहीं करेगा ऐप। कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों का पहला जत्था गंगटोक पहुंचा, पहले जत्थे में कुल 44 लोग, इनमें 32 पुरुष और 12 महिलाएं थी। राजस्थान में हाईटेक ट्रैफिक सिस्टम का शुभारंभ, जयपुर में एलईडी स्क्रीन पर दिखेगी गाड़ियों से जुड़ी सभी जानकारी, निगरानी के लिए कंट्रोल रूम भी तैयार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। मशहूर शायर निदा फाजिल ने कभी कहा था, अच्छी संगत बैठकर संगी बदले रूप, देखो मिलकर आम से मीठी हो गई धूप, अमराई से गुजरकर धूप के मीठी हो जाने की यही कल्पना। ये अपने आप में मुकम्मल बयां है, जो बताता है कि आम कितना खास है हमारे लिए। आम का ओहद सिर्फ जुबान का जायका बदलने वाले एक फल भर का नहीं है, बल्कि ये जुड़ा है हमारे इतिहास, हमारी परंपरा, हमारे साहित्य के साथ, हमारी बचपन की यादों से, गर्मी की छुट्टियों से। गर्मियों के मौसम का सबसे प्यारा तोहफा होता है आम, ऐसा तोहफा जो भारत की सरजमी से निकला और नाम बदलकर सारी दुनिया में घुमाया। आज सुनाएंगे कहानी, उसी आम की खास कहानी, यही आम जिसकी राजधानी कहलाता है हमारा हिंदुस्तान।

0: जो आम में है वो लबे शीरी में नहीं रस, रेशों में है जो शेख की दाढ़ी से मुकद्दस। आते हैं नजर आम तो जाते हैं बदन कस, लंगड़े भी चले जाते हैं खाने को बनारस। बकौल सागर खयामी, ये आम का ही जादू है कि उसे खाने लंगड़े भी बनारस की ओर चल पड़ते हैं। वैसे लंगड़ा खुद भी एक किस्म का आम है और खाने वाले बताते हैं कि इसका स्वाद बहुत खास है। और लंगड़ा ही क्यों, चाहे जो किस्म हो, यूं समझिए कि इस फल के बस नाम में आम है। वाराणसी का लंगड़ा हो या फिर मलिहाबाद का दशहरी, कोंकण तट पर उगा अल्फांसो हो या बिहार का चौसा, आंध्र प्रदेश की धरती से आया सफेदा हो या पश्चिम बंगाल का हिमसागर, नाम में मुगलई नफासत लिए मध्य प्रदेश का नूरजहां, या फिर जापान से आया और अब भारत में उगाया जाने वाला मियाज़ाकी, इसकी हर किस्म में वो जायका वो महक है कि हर लुकमे पर वाह वाह कहने को जी चाहता है। कहने को तो आम की सैकड़ों किस्में हैं, लेकिन भारत में आम की लगभग 1500 प्रजातियां पनपती हैं, जिनमें से करीब 1000 किस्में आम तौर से खाई और बाजार में बेची जाती हैं। भारत में पाए जाने वाले हर आम का अपना एक अलग मिजाज, अपना रंग और अपनी एक खास मिठास होती है। इन्हीं किस्मों, इनके स्वाद और रंगों बू पर फिदा होकर कवि जलील मानिकपुरी ने लिखा था, नायाब आम लुत्फ हुए रंग रंग के, कोई है जर्द कोई हरा कुछ है लाल लाल। कोई 4000 साल पहले हिमालय की तलहटी के इलाके में भारतीय उपमहाद्वीप में पनपा ये आम पुर्तगालियों की उंगली थाम कर सारी दुनिया घुमाया। हुआ कुछ यूं कि साल 1498 में जब पुर्तगाली व्यापारी वास्को डे गामा केरल के तटीय इलाकों में पहुंचे, तो लौटते लौटते वहां से मसालों के साथ साथ आम भी लेते गए। चूंकि केरल में आम को मान कहा जाता था, सो पुर्तगालियों ने आम को मान से मिलता जुलता नाम मानोव दे दिया। कुछ ऐसा चढ़ा पुर्तगालियों की जुबान पर आम का जादू कि पुर्तगाली व्यापारी जहाँ जहाँ गए वे अपने साथ आम लेते गए। इस तरह आम अमेरिका से लेकर यूरोप तक फैल गया। चूंकि अंग्रेजों को पुर्तगाली उच्चारण में थोड़ी दिक्कत आती थी, इसलिए उन्होंने इसे मैंगो कहना शुरू कर दिया। इस तरह दुनिया घूम कर भारत का मान मैंगो बनकर वापस लौट आया। आज सुनाएंगे कहानी अपने उसी मान की, जिसका जायका मैंगो बनकर देश की सीमाओं और महासागरों की दहलीजों के परे दुनिया भर की जुबान पर चढ़ा है। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
1: इस समय अगर आप घर से बाहर निकलेंगे तो गली मोहल्लों के मार्केट से लेकर शहरों की मंडियों तक आपको आम ही आम दिखाई देंगे। और हो भी क्यों ना, फलों के राजा इतने किस्मों, इतने रंगों, स्वाद और खुशबुओं में मिलता है, हमारे देश में गिनते गिनते थक जाएंगे। अपने देश के हर हिस्से में आम होता है और आम की हर किस्म का अपना ही स्वाद होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक भारत में आम की लगभग 1000 किस्में हैं। तो चलिए कुछ आमों के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं, लेकिन इनमें आपको सबसे ज्यादा हैरान करेगा वो आम जिसका दाम सोने से भी ज्यादा है।

गर्मियाँ यूँ तो बेहद सितम करती है, पर अपने पिटारे में रख के लाती है जो आम, बड़ा करम करती है। और गर्मियों के हिस्से आए इसी आम के फसाने की शुरुआत करते हैं एक किस्से से। एक बार उर्दू अदब के मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी ने अपने दोस्त मुंशी निसार हुसैन के नाम एक खत लिखा और खत में आम के सीजन में आम भेजने की दरख्वास्त कुछ इस तरह की। नामा न कोई यार का पैगाम भेजिए, इस फसल में जो भेजिए बस आम भेजिए, ऐसा जरूर हो कि उन्हें रख के खा सकूं, पुख्ता अगरचे 20 तो 10 खाम भेजिए। मालूम ही है आपको बंदे का एड्रेस, सीधे इलाहाबाद मेरे नाम भेजिए, ऐसा न हो कि आप ये लिखें जवाब में, तामील होगी पहले मगर दाम भेजिए। भेजने से पहले 100% दाम ही मांग लेते अकबर इलाहाबादी के दोस्त अगर उन्होंने मियां ज़ाकी आम की फरमाइश की होती, क्योंकि जरा हट के नाम वाले मियां ज़ाकी आम का दाम सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इस आम की कीमत है 3 लाख रुपए प्रति किलो। ये दुनिया का सबसे महंगा आम है। उपज की तादाद, डिमांड और क्वालिटी पर निर्भर करते हुए मियां ज़ाकी आम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 2,80,000 रुपए से लेकर 3,30,000 रुपए प्रति किलो तक जाती है।

0: अपनी खूबसूरत लाल बैंगनी रंगत, दुर्लभता और ऊंची कीमत के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इस आम के दाम को कुछ यूं समझिए कि मियाज़ाकी आम वास्तव में सोने से भी महंगा है। 16 जून 2026 को देश की राजधानी में 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 1,51,690 रुपए है, जबकि मियाज़ाकी आम का दाम है 3 लाख रुपए प्रति किलो, यानी 1 किलो आम का दाम लगभग 20 ग्राम सोने के बराबर है। है ना कमाल? अच्छी बात तो ये है कि जापानी नस्ल का सोने से महंगा मियाज़ाकी आम अब भारत में भी उगाया जा रहा है। यूपी के सहारनपुर में फलता फूलता दिख रहा ये मियाज़ाकी आम है। सहारनपुर के एक किसान ने आय बढ़ाने के इरादे से साल 2021 में इस नए प्रयोग की शुरुआत की थी। किसान संदीप चौधरी ने अपने ऑर्गेनिक बाग में केवल 2 पौधे लगाकर शुरुआत की थी, लेकिन आज उनके बाग में करीब 40 मियाज़ाकी के पेड़ तैयार हो चुके हैं। अब इन पेड़ों पर फल भी आने लगे हैं। इस समय उनके 10 से 12 पेड़ों पर फल लगा हुआ है। उम्मीद है कि इस सीजन में करीब 14 से 15 किलो उत्पादन मिलेगा।
1: इस समय मियाज़ाकी जो दुनिया की सबसे महंगी वैरायटी वो अपने लगाई थी, वो क्यों लगाई थी? जब आम लगाया तो हमने सर्च किया दुनिया में सबसे महंगे आम की वैरायटी कौन सी है, तो पता चला कि मियाज़ाकी है, जो जिसका भाव 2,70,000 से 3.5 लाख रुपए किलो तक आता है। ये वैरायटी के पौधे हमें पता लगा, फिर हमने पौधे यहाँ से मंगाए इसके, और सबसे पहले 2 पौधे लगाए, और 2 पौधों के बाद उसकी क्रॉपिंग करके हमने की उनसे पौधे बनाए हमने। आज हमारे पास लगभग 40 पौधे हमारे इस बाग में लगे हुए हैं। बड़ी बात यह है कि हमने ये देखा है कि ये बाग पूरी तरह ऑर्गेनिक होने की वजह से इसमें ग्रोथ भी अच्छी हुई है, आम का कलर भी अच्छा आ रहा है, और एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स अपने को मिला है। अब हम ये चाहेंगे देश के जो तमाम किसान हैं वो ऐसी महंगी वैरायटी लगाएं जिससे हम एक्सपोर्ट करने का एक हब बन सके।
0: वैसे अगर आप आम के मुरीद हैं और मियाज़ाकी का स्वाद चखना चाहते हैं तो आपको बता दें कि मियाज़ाकी आम आजकल बिहार के भागलपुर में भी उगाया जा रहा है। भले ही सोने सा भाव हो, लेकिन आम के दीवाने दाम कहाँ देखते हैं। खैर, आमों की दुनिया का ये दूसरा अजूबा पनपता है मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में, और नाम है नूरजहां। नूरजहां को दुनिया का सबसे बड़ा आम माना जाता है। एक नूरजहां आम का वजन 4 किलो तक हो सकता है, और भारत में आम प्रेमियों के बीच ये जितना लोकप्रिय है उतना ही दुर्लभ भी है। मध्य प्रदेश के जिला अलीराजपुर का कट्टीवाड़ा अपने झरनों, बारिश और नूरजहां आम के लिए भी जाना जाता है। मौसम और मिट्टी ने इस फल के पनपने के लिए यहाँ एकदम सही हालात दिए हैं। नूरजहां के बाद बात भागलपुर के जरदालू आम की। भागलपुर के जरदालू आम की कई विशेषताएं हैं। ये सुपाच्य है, स्वादिष्ट तो है ही, और कुछ हद तक शुगर फ्री भी कहला ही लेता है। दरअसल जरदालू आम में दूसरे आमों के मुकाबले प्राकृतिक शुगर की मात्रा कम होती है, और भागलपुर के जरदालू आम को GI टैग भी मिला हुआ है। हर साल भागलपुर में पैदा होने वाला ये आम राजधानी दिल्ली में देश के गणमान्य लोगों को भेजा जाता है। गर्मियों के मौसम में फलने वाले आम की ये वो किस्में हैं जिन्हें दुनिया भर में पसंद किया जाता है। लेकिन इन्हीं के बीच यूपी के सहारनपुर में आम का एक ऐसा पेड़ आपको दिखाते हैं जो सिर्फ गर्मियों में नहीं बल्कि 12 महीने फल देता है। इस आम की वैरायटी का नाम है सदाबहार। सदाबहार आम का पेड़ आकार में आम के दूसरे पेड़ों की तुलना में काफी छोटा होता है, लेकिन इसकी उत्पादकता बेहद खास है। इस पेड़ पर एक ही समय में बोर, छोटे फल और पकने के लिए तैयार आम एक साथ दिखाई देते हैं। ये वो अनोखा पेड़ है जो आम के जायके और खुशबू को गर्मियों की मुट्ठी से निकाल कर हर मौसम की हथेली पर रख देता है। सहारनपुर से राहुल कुमार और भागलपुर से राजीव सिद्धार्थ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: अब देखिए, गर्मी का मौसम है और फलों के राजा घर घर में पहुंच रहे हैं। इसी सिलसिले में अयोध्या के राजा रामलला सरकार तक भी आम का भोग पहुंचा है। अयोध्या के राम मंदिर में यूं भी समय समय पर विशेष और दुर्लभ किस्म के मौसमी फलों का भोग रामलला को लगाया जाता है। इसी कड़ी में रामलला को मियाजाकी आम का भोग भी लगाया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मियाजाकी आम की कीमत लाखों रुपए में होती है। ये बात और है कि आम का मोल चाहे लाखों में है, लेकिन भक्ति भाव तो अनमोल है। बताया जा रहा है कि खास आम अयोध्या के ही एक स्थानीय किसान ने उपजाया है। आपको बता दें कि देश भर के अलग अलग शहरों से वहां उपजने वाले खास फल समय समय पर रामलला के लिए भेजे जाते हैं। इन विशेष अवसरों पर फलों की टोकरियों से मंदिर को सजाया जाता है और रामलला को अर्पित फलों का भोग लगाने के बाद प्रसाद स्वरूप भक्तों में वितरित कर दिया जाता है। आम का रिश्ता सिर्फ हमारी जुबान से नहीं, बल्कि ये हमारे इतिहास और परंपरा के साथ भी जुड़ा है। उपनिषद और पुराणों में इसका जिक्र मिलता है। गालिब हो या गुलजार, शायर हो या कवि, सभी ने इसकी तारीफ में कसीदे पढ़े हैं। लेकिन चलिए आपको वैदिक काल से लेकर मुगल काल तक की आम कहानी बताते हैं इस रिपोर्ट में।

0: मीठा, रसीला और दिलों पर राज करने वाला आम। गर्मियों में लोग भले ही चिलचिलाती धूप और पसीने से परेशान रहते हैं, लेकिन इस मौसम में मिलने वाला आम किसी तोहफे से कम नहीं होता। बच्चे हों या बुजुर्ग, गरीब हो या अमीर, आम हर किसी को खास एहसास कराता है। आम सदियों से लोगों की पहली पसंद बना हुआ है और आज भी इसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। सबसे पहले आम आम्रफल कहा जाता था। पुराने वैदिक ग्रंथों में इसे रसाला और सहकार नाम से भी जाना जाता था। इन नामों का जिक्र प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे बृहदारण्यक, उपनिषद और पुराणों में भी मिलता है। यानी आम सिर्फ एक फल नहीं बल्कि बहुत पुराने समय से हमारी संस्कृति और परंपरा का अहम हिस्सा रहा है। ऐसा माना जाता है कि हजारों साल पहले पूर्वोत्तर भारत, म्यांमार और बांग्लादेश में आम की पैदावार हुई थी, जहां से ये दक्षिण भारत पहुंचा और तमिल में इसे आमकाय कहा गया, जो बोलचाल की भाषा में बदलकर धीरे धीरे मामकाय बन गया। मलयाली लोगों ने इसे आगे चलकर मांगा के नाम में बदल दिया। 16वीं सदी में पुर्तगाली कारोबारियों ने आम को अफ्रीका और ब्राजील तक पहुंचाया और धीरे धीरे ये आम फल खास बन गया और पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना लिया। इतिहास के हर दौर में इसकी मिठास ने लोगों के दिलों को जोड़ा है। शायद यही वजह है कि आज भी आम का इंतजार हर गर्मी में उतनी ही बेसब्री से किया जाता है। इतिहास में आम की खास अहमियत रही है। सम्राट अशोक से लेकर मुगल काल तक आम की दीवानगी देखी गई है। कविता और साहित्य में भी इसकी मिठास घुली है। मिर्जा गालिब की दीवानगी हो या लोकगीतों की मिठास, आम सदियों से कवियों और लेखकों की कलम को रसीला बनाता रहा है। आम के बारे में कवि उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब ने कहा था कि आम में बस दो खूबियां होनी चाहिए, एक मीठा हो और दूसरा बहुत सारे हो। सिर्फ गालिब ही नहीं बल्कि गुलजार से लेकर अपने जमाने के मशहूर शायरों में शुमार सागर खयामी ने तो इस पर पूरी उर्दू कविता लिखी है। फल कोई जमाने में नहीं, आम से बेहतर करता है सना आम की गालिब सा सुखनवर। क्या बात है, आमों की हो देसी या विदेशी, सुर्खे हो सरौली हो कि तुखमे हो कि कलमे, चौसे हो सफेदे हो कि खजरी हो कि फजरी, एक तरफा कयामत है मगर आम दशहरी। हिंदी साहित्य में भी खासकर काव्य में आम लोगों को लेकर खूब लिखा रचा गया है। आम को लेकर आम का बाग नाम की कविता बेहद चर्चित है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा आम उत्पादक देश है। यहाँ अल्फांसो, दशहरी, लंगड़ा, केसर और तोतापुरी जैसी सैकड़ों किस्में पाई जाती हैं, जो हर राज्य की अपनी खास पहचान बन चुकी है। कुल मिलाकर आम सिर्फ स्वाद नहीं, एक हसीन एहसास है। एक ऐसा फल जो बचपन की यादें भी है और हर गर्मी की सबसे बड़ी खुशी भी। शायद इसीलिए हर साल जब आम आता है तो सिर्फ मौसम नहीं बदलता, माहौल बदल जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: अब देखिए, जब गर्मियों की दस्तक होती है तो देश का फल बाजार अरबों रुपयों के कारोबार से गुलजार हो जाता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ आम की वजह से। भारत दुनिया में आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। पूरी दुनिया के कुल आम उत्पादन का लगभग 50% हिस्सा अकेले हिंदुस्तान से आता है। यूपी का मलिहाबाद हो, महाराष्ट्र का रत्नागिरी हो या फिर आंध्र प्रदेश के बागान, यहां से आमों की मिठास और खुशबू अमेरिका और इंग्लैंड तक जाती है। आम से जबरदस्त आमदनी होती है, इसलिए बड़ी तादाद में किसान इसके उत्पादन के साथ जुड़ रहे हैं। इस समय देश के कई शहरों में मैंगो फेस्टिवल चल रहे हैं, जहां स्थानीय किसान अपने बाग के आम लेकर यहां पर पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, हरियाणा के गुरुग्राम से आई हैं, जहां के सेक्टर 82 में इन दिनों मैंगो फेस्ट चल रहा है। यहां देश के अलग अलग राज्यों से लाए गए 70 से ज्यादा किस्मों के आम प्रदर्शित किए गए हैं। यहां चौसा, लंगड़ा, अम्रपाली, बंगनपल्ली, नीलम, केसर, टोटापुरी, सिंदूरी, फजरी और बॉम्बे ग्रीन जैसी लोकप्रिय किस्मों के साथ कई दुर्लभ वेराइटीज भी आपको मिल जाएंगी। हर आम की अपनी अलग पहचान, अलग स्वाद और अलग कहानी है। रतोल आम अपनी बेहतरीन खुशबू और मिठास के लिए पॉपुलर है, जबकि केसर को आमों की रानी कहा जाता है। हाथी झोल अपने विशाल आकार के कारण लोगों के आकर्षण का केंद्र बना है। फेस्ट में मौजूद कुछ आम ऐसे भी हैं जिनके नाम सुनकर लोग हैरान रह जाते हैं, जैसे नाजुक बदन। अनारकली, अंगूरदाना, रसगुल्ला, मोतीचूर और गुलाब जामुन। अब इसी कड़ी में भोपाल में भी आम महोत्सव का आयोजन किया गया। भोपाल के जवाहर बाग में 152 से ज्यादा किस्म के आम प्रदर्शित किए गए। इस प्रदर्शनी में सबसे ज्यादा सुर्खियां जापान की प्रसिद्ध मियाजाकी किस्म ने बटोरी। इस प्रदर्शनी में आए लोग मियाजाकी आम के साथ तस्वीरें खिंचवाते हुए नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ देश के चर्चित किस्म नूरजहां आम भी लोगों को खूब पसंद आ रहा है। बड़े आकार और जोरदार मिठास के लिए मशहूर ये आम हमेशा से खास ग्राहकों की पहली पसंद माना जाता रहा है। और वहीं जमशेदपुर की कहानी भी आपको सुना देते हैं। आमों की प्रदर्शनी यहां भी लगी, काफी तादाद में लोग इस आम प्रदर्शनी को देखने पहुंचे। यहां मालदा आम, अल्फांसो आम, आम्रपाली आम की भरमार थी।
2: अच्छा लगता है आप लोग बेचे भी है क्या?
3: जी जी।
2: ये कौन सा वैरायटी है? ये कैसे
4: मार? दीदी दीदी
2: दादा थोड़ा दीदी बोली पीछे दीदी।
1: अब देखिए, भोजन भगवान को अर्पित होता है और भोग बन जाता है। मौसम आम का है, सो शहर शहर अपने आराध्य को भक्त आम का भोग चढ़ाते हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के वाशिम में संत गजानन के धाम पर 7.25 क्विंटल आमों का चढ़ावा अर्पित किया गया। देखिए,

0: चारों तरफ आम ही आम, आमों से सजा संत गजानन महाराज का धाम। ये तस्वीरें महाराष्ट्र में वासिम जिले के कारंजा लाड की ममता नगर की हैं। यहाँ पर संत गजानन महाराज मंदिर में 7.25 क्विंटल आम का दिव्य भोग अर्पित किया गया और आमों से ही उनकी प्रतिमा की शानदार सजावट की गई। एकादशी के पावन अवसर पर मंदिर में संत गजानन महाराज के दर्शन के लिए भक्तों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा हो गई। इस अवसर पर भक्ति भाव से महाराज की शानदार आरती की गई और फिर प्रसाद वितरण किया गया।
1: अपने इधर महाराज को 7.25 क्विंटल का आम का आरस यानी भोग चढ़ा गया था, उसी का प्रसाद स्वरूप आज रसाई बन के सब महिलाओं को खाना दे रहे।
0: संत गजानन महाराज को चढ़ाए गए आमों का रस निकालकर 6,000 भक्तों को प्रसाद के तौर पर बांटा गया। इस अवसर पर 30 गांवों से आई संस्थान की वॉलंटियर 3,000 महिलाओं ने आमरस के साथ पूरन पोली और दूसरी डिश तैयार की।
2: हम बेलखेड़ गांव से आम महिलाएं सेवा देने को आए हैं और महाराज की कृपा से हमें यहाँ आज ये जो ये सेवा मिली है ये हमारा अहोभाग्य हम समझते हैं।
3: कैसा लग रहा है आपको
2: सेवा करके? हमको बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे जीवन का एक अविस्मरणीय क्षण हम मानेंगे।
0: खास बात ये है कि इस खास अवसर पर तमाम भक्त ही संत गजानन महाराज को अर्पित करने के लिए आम लेकर आए थे। वाशिम से जाका खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: देखिए, आम हो या फिर खास, हर किसी को पसंद सिर्फ आम ही है। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अच्छी खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए जीएनटी।

0: turn your TV into a portal to serenity with Zen Life by Stingray. Enjoy wellness videos for yoga, sleep, meditation, and more, tailored to every moment of your day. Zen Life by Stingray, now available for free on Pluto TV. Stream now. Pay never.
1: खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: नए काम की शुरुआत करते समय किन बातों का ध्यान रखें? नए काम की शुरुआत में आपकी राशियों का क्या महत्व है और नए काम की शुरुआत क्या खा करके करें कि सफलता मिले? नए काम का ज्योतिष से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्ट।
2: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars, NSYNC, and Britney Spears. Or rock artists, like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
3: खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर।
0: इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: कम से कम लोगों को खबरें।
1: कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था गंगटोक पहुंचा, तीर्थ यात्रियों का हुआ भव्य स्वागत। कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले जत्थे में कुल 44 लोग, इनमें 32 पुरुष और 12 महिलाएं। इस यात्रा में भक्तों की सुरक्षा के लिए यात्रा दल के साथ 2 लाइन ऑफिसर और 1 चिकित्सक भी साथ में। आज नाथुला मार्ग की ओर से रवाना होगी यात्रा। 20 जून को पहला जत्था नाथुला दर्रे से होकर तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में करेगा प्रवेश। नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा 2015 में हुई थी शुरू। डोकलाम क्षेत्र में उत्पन्न तनावपूर्ण चलते हालातों के चलते कई वर्षों से स्थगित करनी पड़ी यात्रा। देशभर में आस्था भक्ति के साथ मनाया जा रहा बड़ा मंगल का त्यौहार। हिंदू धर्म में इस दिन हनुमान जी से शक्ति साहस बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए पूजा होती है। अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर में ज्येष्ठ महीने के 7वां बड़ा मंगल पर उमड़ा भक्तों का जनसैलाब, दर्शनों की लगी कतार। साथ में बड़ा मंगल पर बजरंग बली की मूर्ति का भव्य श्रृंगार हुआ, भगवान को अर्पित किए गए फूलों की मालाएं और आभूषण। प्रयागराज के बंधवा हनुमान मंदिर में ज्येष्ठ महीने के 7वां बड़ा मंगल पर उमड़ा भक्तों का सैलाब, दर्शन की लगी लंबी कतार। उज्जैन में बड़ा मंगल पर बाबा महाकाल की उतारी गई भस्म आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। मथुरा में श्रीनाथ जी की भव्य नौकाविहार मनोरथ का आयोजन किया गया, आमों से सजा श्रीनाथ जी का दरबार। श्री जी को नौका पर बैठा कर करवाया गया नौकाविहार मनोरथ, भक्तों ने जमकर लगाए जयकारे। नौकाविहार मनोरथ पर भगवान को लगाया गया विशेष भोग, भगवान की उतारी गई आरती। नौकाविहार मनोरथ पर विशेष कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, कलाकारों ने दी प्रस्तुति। मनोरम झांकी के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु, भगवान के दिव्य स्वरूप का आनंद लिया। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में तैयारियां तेज, 3 जुलाई से शुरू हो रही है यात्रा। श्री अमरनाथ जी यात्रा से पहले अनंतनाग पुलिस ने पहलगाम के टैक्सी स्टैंड पर मॉक ड्रिल किया। इस मॉक ड्रिल में सुरक्षा खतरों, लोगों को सुरक्षित निकालने की प्रक्रियाओं, संकट प्रबंधन, अलग अलग एजेंसी के बीच में तालमेल जैसी स्थितियों का अभ्यास हुआ। टीमों ने सालाना यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों की सुरक्षा, उनके सुचारू आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए तेजी से कार्रवाई के तरीकों की प्रैक्टिस की। 28 अगस्त तक चलेगी पवित्र अमरनाथ की यात्रा, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा। चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, अब तक 35 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। सबसे ज्यादा बाबा केदार के दर्शनों को पहुंचे भक्त, आंकड़ा पहुंचा 12.5 लाख के पार। बद्रीनाथ धाम को लेकर भी भक्तों में जोरदार उत्साह, अब तक 11 लाख से ज्यादा लोगों ने किए दर्शन। यमुनोत्री और गंगोत्री में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, दोनों जगहों पर करीब 12 लाख भक्तों ने किए दर्शन पूजन। चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों में जोरदार उत्साह, अब तक 50 लाख से ज्यादा भक्तों ने किया रजिस्ट्रेशन। पूरी आस्था धूमधाम से हुआ कैंची धाम मेले का समापन, मंदिर समिति ने मेले के सफल और शांतिपूर्ण समापन पर सुरक्षा कर्मियों का आभार जताया। इस साल रिकॉर्ड श्रद्धालुओं ने मेले का मजा लिया, अप्रत्याशित भीड़ के बावजूद प्रशासन ने पुख्ता कार्रवाई की। अकोला में निकाली गई बाबा रामदेव जी की भव्य ध्वजा यात्रा, ढोल नगाड़ों भजनों के साथ आगे बढ़ी है। केरल के पथन मथिट्टा में केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने सबरीमाला मंदिर में पूजा पाठ किया, भगवान का आशीर्वाद लिया। इस्कॉन ने हुबली में श्री श्री राधा गोविंद देव जी मंदिर के पहले चरण का उद्घाटन, 22 जून को होगी प्राण प्रतिष्ठा। श्री माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए आई है गुड न्यूज, अब अमृतसर से कटरा के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ। बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पूर्व मध्य रेलवे के खास इंतजाम, 16-17 जून को चलाई जाएंगी 30 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन। नीट रीप एग्जाम तक देश भर में टेलीग्राम पर स्थायी रोक, 21 जून को परीक्षा, 22 जून तक काम नहीं करेगा। जयपुर की सड़कों पर अब ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के लिए बच निकलना मुश्किल नहीं आसान नहीं, हाईटेक ट्रैफिक सिस्टम का शुभारंभ। चौराहे पर पहुंचते ही सार्वजनिक होगी वाहन की पूरी डिटेल्स, कुछ ही सेकंड्स में एलईडी स्क्रीन पर मिलेगी जानकारी। G7 समिट के लिए फ्रांस के एवियन पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, हुआ शानदार स्वागत। इस सम्मेलन में पीएम मोदी रखेंगे अपनी बात, वैश्विक सहयोग पर भी जोर देंगे। फ्रांस में कल डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की होगी मुलाकात।

0: करीब 16 महीने बाद आमने सामने होंगे ट्रंप और मोदी। जल्द बदलेगी दिल्ली की सूरत, राजधानी की झुग्गी झोंपड़ियों के रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पर बैठक। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई ये बैठक, झुग्गी वासियों को बेहतर आवासीय सुविधाएं मिलेंगी। झांसी के दो युवा वैज्ञानिक भाइयों का विदेश में डंका, वन्य जीवों की रक्षा के लिए बनाया वाइल्ड वॉच डिवाइस। भीषण गर्मी के बीच पहाड़ों की तरफ बढ़ रहे सैलानी, बड़ी संख्या में श्रीनगर पहुंचे पर्यटक। शिकारा राइड का आनंद ले रहे सैलानी, गार्डन के भी मजे ले रहे। अयोध्या में रामलला को चढ़ा दुनिया का सबसे महंगा जापानी मियाज़ाकी आम, लोगों के बीच बांटा गया। अयोध्या के किसान ओम प्रकाश सिंह ने जापानी मियाज़ाकी आम की खेती करते हैं, देखने के लिए लगी भीड़। जम्मू में अमरनाथ यात्रियों को मिलेगा नया तोहफा, कबाड़ से बना वेस्ट टू वंडर पार्क। पार्क में दुनिया और देश के 14 मशहूर स्मारकों की प्रतिकृतियां बनाई जा रही, 14 फुट ऊंची बनाई जा रही स्टैचू ऑफ यूनिटी की प्रतिमा। पार्क में कबाड़ और रिसाइकिल से हवा महल से लेकर स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया। अमरनाथ यात्रियों के लिए आकर्षण बनेगा वेस्ट टू वंडर पार्क, स्थानीय कारोबार को मिलेगा बढ़ावा। जम्मू स्मार्ट सिटी मिशन के तहत लगभग 11 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा ये पार्क। वन्य प्रेमियों के लिए आई है गुड न्यूज, इस साल इस हफ्ते एक हफ्ते देरी से बंद होगा जूनागढ़ का गिर जंगल सफारी। 15 जून के बदले अब 23 जून को बंद होगा गिर जंगल सफारी, 23 जून तक पर्यटक उठा सकेंगे आनंद। बारिश में देरी होने के चलते वन विभाग ने बंद की तारीख को आगे बढ़ाने का फैसला लिया, 22 जून की शाम तक गिर सफारी का आनंद ले सकेंगे सैलानी। अक्टूबर से अब तक 2,00,000 से ज्यादा पर्यटकों ने की गिर सफारी की यात्रा, 22 जून तक होगी बुकिंग। दर्शन के लिए रिकॉर्ड तोड़ पहुंचे पर्यटकों की संख्या, 8,00,000 से ज्यादा पर्यटकों की करवाई गई उपस्थिति। चंडीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग कार्यक्रम का आयोजन, सीएम सैनी ने लोगों के साथ किया योग। गोरखपुर में योग दिवस से पहले का योग कार्यक्रम का आयोजन, सांसद रवि किशन ने एम्स के डॉक्टर और छात्रों के साथ किया योग। विजयवाड़ा में स्वच्छ भारत चाय पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन, प्रहलाद जोशी ने किया पौधारोपण। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में न्याय प्रबोध अवेकनिंग टू जस्टिस कार्यक्रम में शामिल हुए गवर्नर। प्रयागराज में पुलिस की शानदार पहल, पुलिस ने 210 खोए हुए मोबाइल्स वापस किए। रायसेन में जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में पुलिस ने की शानदार पहल, ग्रामीण इलाकों के युवाओं के लिए बनाया रीडिंग रूम। शिलांग में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 3,214 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। पुलिस भर्ती का परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए गुड न्यूज, परीक्षार्थियों के लिए पूर्वी रेलवे चला रही स्पेशल ट्रेन। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह कार्यक्रम का यहां पर आयोजन किया गया। क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने बढ़ाया देश का मान, टाइम मैगजीन की ओर से जारी खेल जगत की 100 सबसे प्रभावशाली हस्तियों की सूची में शामिल। इस सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी बनी स्मृति, उनके अलावा मेसी, रोनाल्डो, हॉलैंड जैसे फुटबॉलर्स का नाम भी। वुमेन्स टी20 विश्व कप में कल नीदरलैंड्स महिला टीम से होगी भारतीय टीम की भिड़ंत। कल लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा भारत अफगानिस्तान के बीच में वनडे मैच, 3 मैचों की सीरीज का ये दूसरा मुकाबला। दूसरा मैच भी जीतकर सीरीज में अजय बढ़त बनाने पर भारत का फोकस, पहले मैच में 7 विकेट से जीत हासिल कर अजय है टीम इंडिया। फिल्म गदर एक प्रेम कथा के 25 साल पूरे, निर्देशक अनिल शर्मा ने जारी किया खास वीडियो। करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले मलयालम फिल्म ओडियन द एज ऑफ इल्यूजन का ऐलान कर दिया गया, फिल्म का पोस्टर भी शेयर किया गया। साउथ सिनेमा के मशहूर निर्देशक नाग अश्विन की चर्चित फिल्म कल्कि के सीक्वल के लिए मिला दीपिका पादुकोण का रिप्लेसमेंट लिस्ट में आलिया का नाम। फिल्म कॉकटेल 2 की रिलीज के साथ श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव की अपकमिंग मूवीज के टीजर किए जाएंगे रिलीज, श्रद्धा कपूर की ईथा और राजकुमार राव की प्रहार के नाम शामिल। कार्तिक आर्यन की अपकमिंग अनटाइटल फिल्म में अभिनेत्री शर्वरी वाघ की एंट्री, लव रंजन कर रहे डायरेक्शन। शहनाज गिल और जय रंधावा की अपकमिंग फिल्म इश्कनामा का टीजर रिलीज, 24 जुलाई को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज। फिल्म निर्देशक राजकुमार हिरानी की पहली वेब सीरीज प्रीतम एंड पेड्रो का ट्रेलर जारी। फिल्म अरशद वारसी का इसमें आपको अहम रोल दिखाई देगा। अल्फा के बाद कार्तिक आर्यन के साथ फिल्म करेंगी शर्वरी वाघ। रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्देशक लव रंजन की अगली रोमांटिक कॉमेडी फिल्म दोनों साथ में नजर आएंगे। विजय देवाकोंडा जल्द ही फिल्म रणबाली में लीड रोल में आपको नजर आएंगे। उनके साथ पत्नी रश्मिका मंदाना भी नजर आएंगी। मिथुन चक्रवर्ती की बेटी दिशानी ने कर ली सगाई। दिशानी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की तस्वीर। रंग बिरंगे ड्रोन्स के साथ रोशन हुआ चीन के हेबेई प्रांत का लैंगफंग शहर। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित हुआ इस कार्यक्रम में कुल 6,000 ड्रोन्स ने हिस्सा लिया। शानदार लाइट शो के जरिए अलग अलग आकृतियों से सजाया आसमान। ड्रोन्स ने बनाए मिले जुले विकास और शहरी विकास जैसे विषयों पर आधारित कई शानदार हवाई दृश्य। शो देखने आए हजारों पर्यटक। ड्रोन्स के जरिए विज्ञान से लेकर लोक कथाओं से जुड़ी कलाकृतियां आसमान पर उकेरी गई। दर्शकों ने इस कार्यक्रम में अपने कैमरा में इसको कैप्चर किया। चीन में समय समय पर आयोजित होते रहते हैं तरह तरह के ड्रोन शो जिसके जरिए देश के विकास को दर्शाया जाता है। ताइवान के ताओ आदिवासियों ने लकड़ी की पारंपरिक नाव से फिलीपींस के लिए ऐतिहासिक समुद्री यात्रा की शुरुआत की। 20 सीटों वाली ओवायन नाव को ऑर्किड द्वीप के 6 समुदायों ने मिलकर तैयार किया। 24 घंटे की यात्रा में 60 लोग बारी बारी से चप्पू चलाएंगे। ताओ समुदाय का फिलीपींस के बतानेस द्वीपों के आदिवासियों से गहरा सांस्कृतिक संबंध। यह अभियान दोनों समुदायों के लिए खास। बाशी चैनल दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण जलमार्ग। सुरक्षा के लिए पारंपरिक नाव के साथ अन्य जहाज भी चल रहे। लगभग 5,000 आबादी वाला ताओ समुदाय ताइवान के छोटे आदिवासी समूहों में शामिल है। स्थानीय लोगों ने समुद्री यात्रा को भावनात्मक बताया। जलवायु परिवर्तन से पक्षियों पर संकट। टोरंटो में शोधकर्ताओं ने पाया कि बदलते मौसम के कारण प्रवासी पक्षियों की लगातार घट रही संख्या। कीड़ों की कमी से पक्षियों का भोजन प्रभावित हुआ। वसंत में जल्द गर्मी पड़ने से कीड़ों की संख्या का चरम समय पक्षियों के प्रवास से मेल नहीं खा रहा। भीषण गर्मी से घोंसले भी असफल होते जा रहे। उड़ते कीड़े खाने वाली प्रजातियां सबसे ज्यादा प्रभावित स्पैलो, फ्लाई कैचर, चिमनी स्विफ्ट और तमाम तरह के पक्षियों में कमी आई। स्थानीय लोगों ने महसूस की पक्षियों की कमी। टोरंटो के पार्क में आने वाले लोगों का कहना है कि इस साल कम पक्षी देखे जा रहे हैं। सहारनपुर के किसान ने रचा खेती में एक नया इतिहास। थरोली गांव में उग रहा दुनिया का महंगा मियाज़ाकी आम। लाल बैंगनी रंगत वाला आम बना आकर्षण का केंद्र। किसान को इस सीजन में बेहतर उत्पादन की काफी उम्मीद। दरभंगा एयरपोर्ट पर दिखी मिथिला संस्कृति की शानदार झलक। धूमधाम से मनाया गया यात्री सुविधा दिवस।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: Whatever you're in the mood for, there's always something to listen to on TuneIn. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Enjoy over 100,000 stations, from local favorites to global voices. So you never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices. At home, in the car, or on the go. Hear it all and more right here. On TuneIn.
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
5: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है।
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
5: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है।
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
0: एक अनोखा स्कूल इन दिनों काफी वायरल है। आपने स्कूल में बच्चों को जाते तो काफी बार देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने ऐसा स्कूल देखा है जहां सिर्फ डॉग्स ही पढ़ने जाते हों? हम आपको दिखाते हैं एक ऐसा ही स्कूल जो चीन के शंघाई में मौजूद है। एक ऐसा डॉग फ्री स्कूल है जहां डॉग्स के लिए पढ़ाई, खेल, संगीत, फिटनेस तक की तमाम सुविधाएं मौजूद हैं।

0: मधुर धुनों के बीच खेलते ये डॉग्स किसी पार्क में नहीं बल्कि चीन के शंघाई में एक डॉग प्री स्कूल में है। यहाँ हर सुबह इन नन्हे मेहमानों की क्लास शुरू होती है। दिन भर के स्केड्यूल में खेलकूद, सोशलाइजेशन, हेल्दी स्नैक्स, फिटनेस ट्रेनिंग और लाइव पियानो म्यूजिक तक शामिल है। पॉथ्री नाम का ये डॉग प्री स्कूल पालतू डॉग्स को घर से लाकर पूरे दिन उनकी देखभाल करता है। स्कूल की टीम खुद डॉग्स को लेने और छोड़ने का काम भी करती है। स्कूल में डॉग्स के लिए खास किचन भी है जहां उनके लिए ताज़ा और हेल्दी ट्रीट तैयार किए जाते हैं। शाम की चाय की तरह यहां डॉग्स के लिए आफ्टरनून टी भी परोसी जाती है। सिर्फ यही नहीं, यहां डॉग्स को ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज कराई जाती है, आउटडोर ट्रेनिंग दी जाती है और उनकी मानसिक सेहत का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। इस अनोखे प्री स्कूल की शुरुआत जेनजांग ने की थी। अपने पालतू डॉग की चिंता और अकेलेपन की समस्या को देखते हुए उन्हें ये आइडिया आया। सिर्फ एक साल में यहाँ आने वाले डॉग्स की संख्या 10 से बढ़कर 200 तक पहुँच गई है। बढ़ती मांग को देखते हुए अब दूसरा सेंटर खोलने की तैयारी भी चल रही है। चीन में घटती जन्म दर और बदलती जीवन शैली के बीच पालतू जानवरों पर खर्च तेजी से बढ़ रहा है। उद्योग से जुड़े आंकड़ों के मुताबिक चीन का शहरी पेट मार्केट 2025 में 312 अरब युआन से ज्यादा का हो चुका है और अगले कुछ वर्षों में इसके 405 अरब युआन के पार पहुंचने का अनुमान है। यानी अब डॉग्स के लिए भी स्कूल, फिटनेस और लग्जरी लाइफस्टाइल एक बड़ा कारोबार बन चुका है। ऐसे में पियानो के धुनों से लेकर फिटनेस ट्रेनिंग और स्पेशल ट्रीट्स तक, शंघाई का ये डॉग प्री स्कूल दिखाता है कि बदलती दुनिया में पालतू जानवरों की जगह अब परिवार के सबसे खास सदस्यों में हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all of your favorite music, news, sports, and more all in one place. Hear all of the audio you love, whether you're a music lover, interested in what's going on around the world.
3: We know that Hamas has agreed to a deal at some point, and
2: or want to catch your team's live play-by-play. It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
4: कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें, किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो,
8: उसे हटना नामुमकिन है, इसीलिए अपनाइए नींबू और राख की ताकत वाला पतंजलि डिश वॉश बार और लिक्विड। हाथों पर नर्म, चिकनाई पर सख्त पतंजलि डिश वॉश और लिक्विड।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे,
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
11: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
4: फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन, कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात, कई वैश्विक मुद्दों पर बातचीत। टाइम मैगजीन की टॉप 100 लिस्ट में शामिल हुई स्मृति मंधाना, इस सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी, महिला क्रिकेट में योगदान के लिए मिला सम्मान। रक्षा मोर्चे पर बढ़ेगी भारत की ताकत, वायुसेना बनाएगी घातक स्वदेशी कामिकेज ड्रोन, 16,000 फीट की ऊंचाई पर भी अचूक वार करने में सक्षम। नीट री एग्जाम तक देश में टेलीग्राम पर अस्थायी रोक, 21 जून को परीक्षा, 22 जून तक काम नहीं करेगा ऐप। राजस्थान में हाईटेक ट्रैफिक सिस्टम का शुभारंभ, जयपुर में एलईडी स्क्रीन पर दिखेगी गाड़ियों से जुड़ी सभी जानकारी, निगरानी के लिए कंट्रोल रूम भी तैयार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
4: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे, और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। भगवान शिव के धाम कैलाश मानसरोवर की पवित्र यात्रा एक बार फिर से शुरू होने जा रही है। सिक्किम की ओर से यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं का पहला जत्था सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक पहुंच चुका है। ऐसे में आज की हमारी जो पहली गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। सिक्किम पहुंचा कैलाश मानसरोवर यात्रियों का जत्था। आपको बता दें कि नाथू नाथुला दर्रे के रास्ते होने वाली इस यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है। गैंगटॉक में प्रशासन ने यात्रियों के स्वागत के साथ साथ स्वास्थ्य जांच और ऊंचाई वाले क्षेत्रों के अनुरूप ढलने की विशेष व्यवस्था की है।

0: कैलाश मानसरोवर, एक ऐसा दिव्य शिखर जहां भगवान शिव और माता पार्वती का वास माना जाता है। वो पवित्र धाम जहां मान्यता है कि भगवान शिव संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा दुनिया की सबसे कठिन तीर्थ यात्राओं में से एक है, लेकिन इसके बावजूद हर शिव भक्त का सपना होता है कि वो अपने जीवन में कम से कम एक बार कैलाश मानसरोवर के दर्शन अवश्य करे। इस साल 20 जून से कैलाश मानसरोवर यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है। ऐसे में शिव भक्तों का उत्साह अपने चरम पर है। यात्रा का पहला रूट उत्तराखंड से होकर जाता है, जो कि नैनीताल से होते हुए लिपु लेक पास पहुंचता है। लिपु लेक से तिब्बत में प्रवेश के बाद यात्री तकलाकोट पहुंचते हैं, जहां से कैलाश पर्वत और पवित्र मानसरोवर झील की ओर यात्रा आगे बढ़ती है। दूसरा मार्ग सिक्किम से होकर जाता है। इस रूट से यात्रा की शुरुआत सिक्किम की राजधानी गंगटोक से शुरू हो जाती है। यहां से होकर यात्री नाथुला दर्रा पहुंचते हैं, जिसके बाद कांगमा होते हुए जोगमा और फिर श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर पहुंचते हैं। सिक्किम की राजधानी गंगटोक में पहला जत्था पहुंच गया है, जिसमें 44 श्रद्धालु शामिल हैं।
1: कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 का यात्रियों का पहला जत्था सिक्किम पहुंच चुका है। सिक्किम से नाथुला दर्रे के रास्ते ये तिब्बत पहुंचेगा और उसके बाद ये यात्रा आगे बढ़ेगी। ये पहली बार है जब एक लंबे अंतराल के बाद ये यात्रा शुरू हो रही है और दो अलग अलग पासेज यानी नाथुला और लिपुलेख के रास्ते ये यात्रा आगे बढ़ेगी। पहले बैच की अगर हम बात करें तो इसमें 44 यात्री हैं, जिसमें 32 पुरुष और 12 महिलाएं हैं, और इन पूरे यात्रियों की सुरक्षा का खास इंतजाम किया गया है।
0: श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा होने की वजह से गंगटोक से होकर जाने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का चयन विदेश मंत्रालय ऑनलाइन लॉटरी के जरिए करता है।
2: इट इज ऑलवेज गुड, जो मैं चीजें इस भारत की टेरिटरी से देखता था, मेरे को दूसरी तरफ से देखने का मौका मिला है। मैं वेरी एक्साइटेड।
3: मुझे भी ऐसा लगता है कि ये पूरी कायनात हमारे को एक तरफ से पुश कर रही है कि हम उस तरफ जाएं।
0: सिक्किम में नाथुला मार्ग को इस तीर्थ यात्रा के लिए सबसे सेफ अच्छा ऑप्शन माना जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र की सड़कें काफी अच्छी बनी हैं। लिपु लेक मार्ग में ट्रैकिंग शामिल है, जबकि नाथुला मार्ग में ट्रैकिंग कम है और बस का उपयोग ज्यादा होता है। ऐसे में ज्यादातर लोग नाथुला पास से मानसरोवर की यात्रा करते हैं।
2: 15 साल से हमारे ड्रीम था कि हम कैलाश मानसरोवर यात्रा को करें, मगर शायद बाबा का बुलावा नहीं आया था। इस बार हमें सौभाग्य से मौका मिला है।
0: जाहिर है, लाखों शिव भक्तों के लिए यात्रा वर्षों की प्रतीक्षा, आस्था और संकल्प के पूरे होने का प्रतीक है। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: जगन्नाथ रथ यात्रा महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजनों में से एक मानी जाती है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र और बहन सुभद्रा भव्य रथों पर सवार होकर श्री मंदिर से गुंडिचा मंदिर तक यात्रा करेंगे। ऐसी रथ यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इसी से जुड़ी जो हमारी अगली गुड न्यूज है, यानी कि जो हमारी दूसरी गुड न्यूज है, वो इसी से जुड़ी हुई है। तेजी से तैयार हो रहा भगवान जगन्नाथ का रथ। आपको बता दें कि भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के लिए पुरी में रथ का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इस रथ पर सवार होकर भगवान जगन्नाथ यात्रा पर निकलते हैं। इस यात्रा में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं और रथों को खींचना अपना सौभाग्य मानते हैं। रथ यात्रा की एक विशेषता ये भी है कि तीनों रथ हर वर्ष नए बनाए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष, भगवान बलभद्र का तलध्वज रथ और देवी सुभद्रा का दर्प दलन रथ कहलाता है। इन रथों का निर्माण सदियों पुरानी परंपराओं और निश्चित मापदंडों के अनुसार किया जाता है। रथ निर्माण के लिए चयनित लकड़ियों को मंदिर परंपरा के अनुसार पूजा अर्चना के बाद उपयोग में लाया जाता है। पूरी के रथ निर्माण स्थल रथखाला में सैकड़ों पारंपरिक कारीगर नीम की पवित्र लकड़ी से भगवान के तीनों विशाल रथ तैयार करते हैं। इस साल जगन्नाथ रथ यात्रा 16 जुलाई से शुरू होगी। यात्रा से पहले कई पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान के साथ संपन्न किए जाएंगे। और आज देश भर में ज्येष्ठ महीने का सातवां बड़ा मंगल श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। मान्यता है कि ज्येष्ठ महीने के मंगलवार भगवान हनुमान को अत्यंत प्रिय होते हैं और इसी वजह से इस दिन विशेष पूजा का महत्व होता है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है, वो इसी से जुड़ी है। बड़ा मंगल पर सबका मंगल। देशभर के मंदिरों में आस्था और भक्ति के अद्भुत रंग देखने के लिए मिल रहे हैं। सातवें बड़े मंगल के शुभ दिन बजरंगबली के भक्त मंदिर में पूजा पाठ के लिए पहुंच रहे हैं। दिल्ली से लेकर प्रयागराज और अयोध्या से लेकर पटना तक हनुमान मंदिरों में आस्था के रंग दिख रहे हैं। मान्यता है कि बड़े मंगल के दिन विधि विधान से हनुमान जी की पूजा अर्चना करने, सुंदरकांड का पाठ करने और जरूरतमंदों को दान पुण्य करने से बजरंगबली की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और यही वजह है कि बड़े मंगल के मौके पर मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। कहीं भंडारों का आयोजन किया जा रहा है तो कहीं हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के पाठ से पूरा वातावरण भक्तिमय बना। वैसे आस्था का ये पर्व केवल पूजा अर्चना तक सीमित नहीं बल्कि सेवा, दान और परोपकार की भावना को भी मजबूत करता है और यही संदेश भगवान हनुमान के जीवन से भी मिलता है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना को टाइम मैगजीन ने 2026 की 100 सबसे प्रभावशाली खेल हस्तियों की सूची में शामिल किया है। वो इस प्रतिष्ठित सूची में जगह बनाने वाली एकमात्र भारतीय हैं। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। टाइम टॉप 100 की सूची में स्मृति मंधाना, जी हाँ, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के स्टार बैटर स्मृति मंधाना को एक और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि हासिल हुई है। अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने उन्हें वर्ष 2026 की 100 सबसे प्रभावशाली खेल हस्तियों की सूची में शामिल किया है। खास बात यह है कि इस सूची में जगह बनाने वाली वो इकलौती भारतीय खिलाड़ी हैं। वो 41वें नंबर पर हैं। टाइम ने खेल हस्तियों की लिस्ट को 4 कैटेगरी में बांटा है। इनमें आइकन्स, टाइटन्स, इनोवेटर्स और लीडर्स शामिल हैं। मंधाना को टाइटन्स के लिस्ट में रखा गया है और उनका नाम 41वें नंबर पर आता है। टाइम ने अपनी प्रोफाइल में स्मृति मंधाना की उपलब्धियों का खास करके जिक्र किया है। मैगजीन ने लिखा है कि मुंबई में जन्मी बाएं हाथ की सलामी बल्लेबाज भारतीय महिला क्रिकेट की सबसे सफल खिलाड़ियों में से एक है और उनके नाम लगातार नए रिकॉर्ड जुड़ते जा रहे हैं। फिलहाल स्मृति मंधाना महिला विश्व कप में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। तेलंगाना में नलगोंडा जिले के कोमाती रेड्डी प्रतीक रेड्डी गवर्नमेंट हाई स्कूल इन दिनों अपनी हाईटेक सुविधाओं के कारण चर्चा में है। एक साल पहले स्कूल खस्ता हाल में पहुंच चुका था लेकिन अब स्कूल में एसी क्लासरूम और सभी सुविधाएं मौजूद हैं, लिहाजा यहां एडमिशन के लिए बड़ी संख्या में आवेदन आए हैं। इसी से जुड़ी हमारी आज की अगली यानी कि पांचवी गुड न्यूज है और वो है सरकारी स्कूल की ओर लौट रहे बच्चे। आपको बता दें कि बोटुगुडा में बने इस सरकारी स्कूल में एसी स्मार्ट क्लासरूम, एआई आधारित टीचिंग और डिजिटल लैब जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। शानदार सुविधाओं के कारण यहां केवल 450 सीटों के लिए करीब 4000 आवेदन आए हैं।

0: ये कोई प्राइवेट स्कूल नहीं बल्कि ये एक सरकारी स्कूल है, यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यही सच्चाई है। ये भव्य इमारत, आधुनिक डिजाइन, आकर्षक परिसर और शानदार सुविधाओं से लैस इमारत सरकारी स्कूल में शिक्षा की बदलती तस्वीर की है। ये स्कूल तेलंगाना के नलगोंडा जिले में है और इन दिनों सुर्खियों में भी है, क्योंकि महज एक साल के भीतर इस स्कूल ने जो उपलब्धि हासिल की है वो दूसरे स्कूलों के लिए एक मिसाल है। जो स्कूल कभी एक एक स्टूडेंट्स के लिए तरसता था, आज वहाँ एडमिशन के लिए लंबी कतारें लगी हैं। इस बार यहाँ 450 सीटों के लिए करीब 4000 एप्लीकेशन आए।
1: नलगोंडा जिले ने अपना इमेज पूरी तरह, अपनी तस्वीर पूरी तरह बदल दी। वजह है, इस जिले में एक वक्त में शून्य एनरोलमेंट्स गवर्नमेंट स्कूल में होते थे और इसी के लिए देश भर में यह नलगोंडा जिले का नाम था, लेकिन एक साल के अंदर नलगोंडा जिले में एक कॉमोडिटी प्रति गवर्नमेंट स्कूल, यह सरकारी स्कूल में 450 सीट के लिए 4000 एप्लीकेशंस दाखिल किए गए।
0: असल में साल भर पहले तक इस स्कूल में बुनियादी सुविधाएं तक मुहाल थीं और पिछले साल तक ये स्कूल बिना किसी पक्की इमारत के चल रहा था। यहाँ करीब 200 छात्र पढ़ते थे, लेकिन अब ये एक स्मार्ट स्कूल में तब्दील हो चुका है। लिफ्ट से लेकर कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासरूम, AI बेस्ड लर्निंग, डिजिटल लैब और इंडोर स्पोर्ट्स तक की सुविधाएं हैं। AI की क्लास में सुंदर पिचाई की तस्वीर बच्चों को इंस्पायर करती है, तो वहीं स्पोर्ट्स एक्टिविटी रूम में सुनील छेत्री, PV सिंधु, विराट कोहली आइकॉन हैं।
1: AC क्लासरूम्स है, बच्चों के लिए रेप्यूटेड यूनिफॉर्म यहां पर बताई जाती है और साथ ही साथ मिड डे मील्स, ब्रेकफास्ट मील्स यहां पर लाए गए हैं, जहां पर बच्चों को मुफ्त खाना दिया जाता है, यूनिफॉर्म मुफ्त में दिया जाता है, किताबें और बैग मुफ्त में दी जाती है। और सबसे बड़ी बात है, जब शिक्षा की बात हो तो AI लर्निंग क्लासेस, स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स, AC क्लासरूम, साथ में मॉडर्न बेंचेस के साथ एक मुफ्त में इस तरीके का अनुभव यहाँ के सरकारी स्कूल के बच्चों को देखने को मिलता है।
0: कुछ समय पहले तक नलगोंडा की गिनती उन जिलों में होती थी जहाँ सरकारी स्कूल में बच्चों का दाखिला लगातार कम हो रहा था। अभिभावक अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेजने को मजबूर थे, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है।
2: मैं पुराने स्कूल में रही जब, और फैसिलिटीज अच्छे नहीं थे। अब कॉमेडी सर तो अच्छा एक न्यू स्कूल बनाए थे, उसमें फैसिलिटीज अच्छे है, डिजिटल क्लासेस और कंप्यूटर क्लासेस, स्पोर्ट्स क्लासेस, लाइब्रेरी बहुत अच्छे है।
3: पहले हमारा स्कूल जो गवर्नमेंट था उसमें ना फैसिलिटी कुछ भी नहीं थी, वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, ब्लैक बोर्ड था, तो हमारे को ऐसा दिल बोलता था कि कब घर जाएं। इसलिए हमारे कॉमोडिटी वेंकट रेड्डी जो मिनिस्टर है सर, उन्होंने ये स्कूल बनवाया, इसमें डिजिटल बोर्ड है, AC कैंपस है पूरा।
0: जाहिर है इस स्कूल ने न सिर्फ सरकारी शिक्षा व्यवस्था में लोगों का भरोसा बढ़ाया है, बल्कि पूरे क्षेत्र में एक नई मिसाल भी कायम की है। अब्दुल बशीर, नलगोंडा, गुड न्यूज टुडे।
4: झांसी के दो भाइयों ने एक ऐसी वॉच तैयार की है जो कि जंगली जानवरों की सुरक्षा करेगी। जी हाँ, तन्मय और उनके जुड़वा भाई ने एक अनोखी डिवाइस तैयार की है। यह अद्भुत डिवाइस सड़क पर जानवरों के लिए सुरक्षा कवच का काम करती है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज है वो है वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए वाइल्ड वॉच डिवाइस। आपको बता दें कि वाइल्ड वॉच डिवाइस में बेजुबानों की जिंदगी बचाने का एक बड़ा फॉर्मूला छिपा हुआ है। इस डिवाइस की मदद से जंगली जानवरों की सड़क दुर्घटना से बचने में ये मदद करेगी।
5: सड़कों पर रफ्तार से दौड़ती गाड़ियां और अचानक सड़क के बीच में आ जाने वाले बेजुबान जानवर, हाईवे और आम सड़कों पर अक्सर इस तरह के हादसे हो जाते हैं और ना जाने कितने ही बेजुबान जानवर अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। आंकड़ों के मुताबिक सड़क और ट्रैफिक की वजह से हर साल दुनिया भर में 2 अरब से भी ज्यादा जानवर इस तरह के हादसों का शिकार होते हैं। लेकिन अब इन हादसों पर लगाम लगाने के लिए झांसी के रहने वाले तन्वे और उनके जुड़वा भाई ने एक अनोखी डिवाइस तैयार की है। ये अद्भुत डिवाइस सड़क पर जानवरों के लिए सुरक्षा कवच का काम करेगी। इस छोटे से आविष्कार में बेजुबानों की जिंदगी बचाने का एक बड़ा फॉर्मूला छिपा है।
6: ये ट्रैक करता है थ्रू मूवमेंट। इफ देयर इज मूवमेंट ऑफ वाइल्ड एनिमल, सिग्निफिकेंट मूवमेंट। नाउ अब यहाँ पर मैटर करता है फॉल्स पॉजिटिव का। तो फॉल्स पॉजिटिव इस ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहां पर कोई मूवमेंट नहीं हुई बट डिटेक्ट कर लिया। तो ये सारे हम लोगों ने जनरेट किया है इसका प्रॉपर टेक्निकल सिस्टम। तो हमारे कोर्स हमने इसमें एआई का भी हेल्प लिया है।
5: इस डिवाइस का नाम है वाइल्ड वॉच। जैसा नाम है इसका काम भी कुछ वैसा ही है। ये डिवाइस बेहद स्मार्ट तरीके से काम करती है। वाइल्ड वॉच डिवाइस के दो हिस्से हैं। पहला पार्ट जानवरों के मूवमेंट पर नजर रखता है और दूसरा पार्ट ड्राइवर को उस मूवमेंट का संकेत देता है जिससे वन्य जीव सुरक्षित हो जाते हैं। इन दोनों डिवाइस में एक तरह का रडार सिस्टम लगा है जो किसी जानवर की मूवमेंट को ट्रैक कर आने वाली गाड़ी को सिग्नल या अलर्ट भेज देता है। इससे ड्राइवर को पहले ही पता चल जाता है कि आगे कोई बेजुबान सड़क पार कर रहा है।
6: तो हमने लोरा ट्रांसमिशंस यूज किया है, हमने पर्टिकुलर माइक्रो कंट्रोलर्स यूज किया है। माइक्रो कंट्रोलर एंड थ्रू सेंसिंग हम यूज कर रहे हैं रडार सेंसर। रडार सेंसर के थ्रू हम लोग पर्टिकुलर रेंज में डिटेक्ट करते हैं और यदि डिटेक्ट होता है तो ये पर्टिकुलर ट्रांसमिशन भेजता है लॉन्ग रेंज ट्रांसमिशन टू अनदर डिवाइस। उस डिवाइस में एक हमने बीपर सेट किया है अभी प्रोटोटाइप वन में, और उस पर्टिकुलर बीपर वो साउंड जैसे ही करता है दैट मींस कि वहां कोई मूवमेंट हुई है, कोई लार्ज एनिमल क्रॉस हुआ है।
5: इस अनोखे प्रयास की अब हर तरफ तारीफ हो रही है। उनकी इस कामयाबी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान और सम्मान भी मिला है। इस अनोखे आविष्कार के लिए उन्हें 1,00,000 ब्रिटिश पाउंड यानी 1,00,00,000 रुपए भी ग्रांट के तौर पर दिए गए हैं। भारत जैसे घने आबादी वाले देश में इस तरह की समस्याएं आम बात है, लेकिन इस तरह के हादसे सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर में होते हैं। फिलहाल ये डिवाइस 200 से 250 मीटर रेंज तक कवर कर रही है। अब इस डिवाइस को मॉडिफाई कर इसकी रेंज को 500 मीटर तक करने की कोशिश की जा रही है। अगर इस तकनीक को बड़े पैमाने पर सड़कों पर लागू किया जाए तो हर साल हजारों बेजुबानों की जान बचाई जा सकती है। प्रमोद कुमार गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
4: सहारनपुर में एक किसान मियाज़ाकी आमों की खेती करके अपनी तकदीर बदल रहा है। उसके खेतों में मियाज़ाकी आमों के करीब 40 पेड़ हैं, जिसमें से करीब 15 पेड़ों पर आम लग चुके हैं। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि सातवीं और आखिरी जो गुड न्यूज है वो है मियाज़ाकी आम ने बदली किस्मत। मियाज़ाकी आम की अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमत करीब 3,00,000 रुपए प्रति किलो है। जाहिर है आम कीमती होंगे तो उनकी सुरक्षा भी खास होगी। आमों की सुरक्षा के लिए तारबंदी के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं।

0: पेड़ों से लटकते ये आम बेहद खास हैं, क्योंकि बैगनी रंग के ये आम दुनिया के सबसे महंगे आम हैं। सहारनपुर की ग्राम पंचायत थरौली में ये आम तैयार किए हैं एक किसान संदीप चौधरी ने, और इस आम का नाम है मियाज़ाकी। मूल रूप से जापान में होने वाले मियाज़ाकी आम की कीमत करीब 3 लाख रुपए प्रति किलो है। संदीप ने आज से 5 साल पहले खेती को नई दिशा देने के उद्देश्य से मियाज़ाकी आम उपजाना शुरू किया था, और आज उनके बाग में करीब 40 मियाज़ाकी के पेड़ तैयार हो चुके हैं।
1: सहारनपुर के किसान आमों की अलग अलग वैरायटी से सहारनपुर की एक अलग पहचान देश में बना चुके हैं। बात करें सहारनपुर के गांव थरौली की, तो यहां के किसान संदीप चौधरी, इन्होंने एक दुनिया का सबसे महंगा आम मियाज़ाकी अपने बाग में एक पेड़ से शुरुआत की थी, और आज 40 पेड़ इनके बाग में लगे हुए हैं।
0: परंपरागत खेती से अलग हटकर किसान संदीप चौधरी ने अपने खेतों में ऑर्गेनिक बाग लगाया। इस बाग में उन्होंने मियाज़ाकी के 2 पौधे लगाकर शुरुआत की, और बाद में उन्हीं से कई नए पौधे तैयार कर लिए। इस समय उनके बाग में 10 से 12 पेड़ों पर मियाज़ाकी आम लगा हुआ है, और उन्हें उम्मीद है कि इस सीजन में करीब 15 किलो मियाज़ाकी आम का उत्पादन मिलेगा।
2: इस समय मियाज़ाकी जो दुनिया सबसे महंगी वैरायटी वो हमने लगाई थी, वो क्यों लगाई थी? जब आम लगाया तो हमने सर्च किया दुनिया में सबसे महंगे आम की वैरायटी कौन सी है, तो पता चला कि मियाज़ाकी है, जो जिसका भाव 2,70,000 से 3.5 लाख रुपए किलो तक आता है। ये वैरायटी के पौधे हमें पता लगा, फिर हमने पौधे यहाँ से मंगाए इसके, और सबसे पहले 2 पौधे लगाए, और 2 पौधों के बाद उसकी क्रॉपिंग करके हमने की उनसे पौधे बनाए हमने। आज हमारे पास लगभग 40 पौधे हमारे इस बाग में लगे हुए हैं।
0: मियाज़ाकी आम को लेकर दुबई की एक कंपनी से संदीप की बातचीत चल रही है, और जल्द ही इस संबंध में सकारात्मक परिणाम सामने आ सकते हैं। यदि ये डील पूरी हो जाती है तो सहारनपुर के थरौली गांव से मियाज़ाकी आम की पहुंच सीधे विदेशों तक होगी।
2: हमें अंदाजा है कि 3 लाख से कम तो हम लोग नहीं सेल करेंगे इसको भी, और ये दुबई की कंपनी से हमारा एक डिस्कशन चल रहा है। उम्मीद है कि इसी हफ्ते उसका लेटर ऑफ इंटेंट, जो हमारा जो डिस्कशन होगा लेटर, उन पेपर भी हमारे पास आ जाए, तो अगर वहां से हमें डील हो जाती है तो इस बार हम दुबई में एक्सपोर्ट भी करेंगे।
0: आम महंगे हैं तो सुरक्षा भी तगड़ी होगी, लिहाजा आम की सुरक्षा को देखते हुए पूरे बाग की तार बंदी कराई गई है, और पूरे बाग में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।
1: सभी वैरायटी के आम में अगर इस मियाज़ाकी को रखा जाए तो ये अपनी खूबसूरती और पहचान एक अलग ही रंग से निखारता है। अब इस बाग में आप देखेंगे कि 40 पेड़ लगे हुए हैं, और इन 40 पेड़ की जो हाइट है मात्र 6 से 7 फुट की वो हाइट है, और इस हाइट पे हर पेड़ पे करीबन 4 से 5 जो आम है वो यहाँ पर लगे हुए हैं, और इसकी सिक्योरिटी के लिए पूरे बाग की कहें तो तारबंदी कर रखी है, और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि ये जो आम है चोरी ना हो जाए।
0: 6 से 7 फीट ऊंचे इन पेड़ों पर लदे चमकदार फल आज ये संदेश दे रहे हैं कि नई सोच, आधुनिक खेती और दृढ़ संकल्प के बल पर न केवल आत्मनिर्भर बना जा सकता है, बल्कि दुनिया के बाजारों तक अपनी पहचान भी बनाई जा सकती है। राहुल कुमार, सहारनपुर, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
4: नए काम की शुरुआत करते समय किन बातों का ध्यान रखें? नए काम की शुरुआत में आपकी राशियों का क्या महत्व है, और नए काम की शुरुआत क्या खा करके करें कि सफलता मिले? नए काम का ज्योतिष से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
5: When your business grows, communication can get messy fast. Calls come in, texts stack up, and suddenly your team is working in different places without the full picture. That's where Quo comes in. Quo gives your business one shared number, so every call and text lives in one place. Your whole team can see the entire history. Everything stays connected, and nothing falls through the cracks. Money is on the line. Always say hello with Quo. Get started free, plus get 20% off your first 6 months at quo.com/tunein. That's quo.com/tunein.
6: Step into timeless classical music. Works from the masters. Brought to life by world-class orchestras, conductors, and soloists. From past to present. Every performance played with depth, precision, and care. Music that has lasted for generations and still feels just as powerful today. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Classical Hits and start listening now.
0: पक रही होती है खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
8: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
0: अविश्वास में विश्वास बसता है
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
9: गुड न्यूज टुडे.
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.

0: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
1: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
0: Learn more at emory.edu.
2: TuneIn Radio brings the world of radio straight to you. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. From what's happening now to what you want to hear next. Enjoy it all on TuneIn. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices. At home, in the car, or on the go. Listen to everything and more on TuneIn.
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर.
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
8: गुड न्यूज टुडे.
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे. अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर.
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर. मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए.
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा.
11: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in.
4: फ्रांस के एवेन में G7 शिखर सम्मेलन, कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात, कई वैश्विक मुद्दों पर बातचीत. टाइम मैगजीन की टॉप 100 लिस्ट में शामिल हुई स्मृति मंधाना, इस सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी. महिला क्रिकेट में योगदान के लिए मिला सम्मान. रक्षा मोर्चे पर बढ़ेगी भारत की ताकत. वायुसेना बनाएगी घातक स्वदेशी कैमिकेज ड्रोन, 16,000 फीट की ऊंचाई पर भी अचूक वार करने में सक्षम. जम्मू कश्मीर में पवित्र अमरनाथ यात्रा की तैयारियां लगभग पूरी। यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की सेवा के लिए देश भर से पहुंची लंगर कमेटियां। बाबा बर्फानी के लगे जयकारे। राजस्थान में हाईटेक ट्रैफिक सिस्टम का शुभारंभ। जयपुर में एलईडी स्क्रीन पर दिखेगी गाड़ियों से जुड़ी सभी जानकारी। निगरानी के लिए कंट्रोल रूम तैयार।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़।
4: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, किसी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना सोचे समझे बिना

0: देखिए हमारी रिपोर्ट।
1: नीट पेपर लीक और सीबीएसई के मूल्यांकन की प्रक्रिया के विरोध में कांग्रेस ने अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन करके शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा। दरअसल 3 मई को नीट यूजी की परीक्षा देश भर में हुई थी, जिसमें करीब 23 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। एनटीए के अनुसार 7 मई की शाम को परीक्षा में गड़बड़ी की सूचना मिली थी। इसके बाद मामला केंद्रीय एजेंसियों को सौंपा गया। 12 मई को परीक्षा रद्द की गई और री एग्जाम का फैसला लिया गया। इस बीच सोशल मीडिया पर पुलिस लाठीचार्ज का ये वीडियो इस दावे के साथ शेयर किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में नीट पेपर लीक का विरोध करने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लाठियों से पीटा गया। 57 सेकंड के वायरल हो रहे इस वीडियो में पुलिस एक व्यक्ति पर लाठीचार्ज करते हुए उसे उत्तर प्रदेश पुलिस के वाहन में बिठाती हुई नजर आ रही है। एक एक्स यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि अंग्रेजों के दौर में भी इतना अत्याचार देश में नहीं देखा होगा जितना बीजेपी सरकारों में हो रहा है। नीट पेपर लीक और सीबीएसई ओसीएम अनियमितताओं के मुद्दे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यूपी में लाठियों से पीटा गया है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
0: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में पुलिस के जवान लोगों पर लाठीचार्ज करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए यूजर्स दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में नीट पेपर लीक का विरोध करने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने को लाठियों से पीटा गया और सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा। तो ऐसे में वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था। हमने इसकी पड़ताल शुरू की और दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और सुना। इस दौरान हमें वीडियो में अखिलेश यादव जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद के नारे सुनाई दिए और जब प्रदर्शन कांग्रेस का है तो फिर इसमें अखिलेश या फिर समाजवादी पार्टी के नेताओं के समर्थन में नारे क्यों लग रहे हैं, हमें थोड़ा सा अटपटा लगा। इसके अलावा वीडियो के अंत में जब प्रदर्शनकारियों को पुलिस वैन में बिठाया जा रहा था तो वहां कुछ प्रदर्शनकारियों के सर पर लाल टोपी भी नजर आ रही थी। ये इस रंग की टोपी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहनते हैं, मतलब ये कि प्रदर्शन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हो सकता है। और साथ ही सर्च के दौरान हमें हाल फिलहाल में ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जो इस वायरल दावे की पुष्टि कर सके, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा सबसे पहला सवाल यही कि प्रदर्शन के इस वीडियो के बारे में हाल फिलहाल में कोई विश्वसनीय रिपोर्ट क्यों नहीं मिली। हमारा दूसरा सवाल कि कहीं प्रदर्शन के किसी पुराने वीडियो को नया एंगल देकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश तो नहीं की जा रही, सच और झूठ क्या जानी इस रिपोर्ट में।
1: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सर्च के दौरान हमें एक न्यूज चैनल के फेसबुक अकाउंट से 1 अक्टूबर 2020 को अपलोड किया गया एक वीडियो मिला। इस वीडियो में वायरल वीडियो वाले दृश्य मौजूद थे। पोस्ट के साथ मौजूद कैप्शन में हाथरस कांड को लेकर लखनऊ में सपा कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया ये बताया गया था। इसके अलावा वीडियो में दिख रहे उस शख्स को सपा का ग्रामीण जिला अध्यक्ष अर्पित यादव बताया गया था। इसके अलावा हमें समाजवादी पार्टी के फेसबुक अकाउंट से भी 1 अक्टूबर 2020 को अपलोड किए गए वीडियो में वायरल वीडियो वाले दृश्य देखने को मिले। इसी दौरान हमें कानपुर ग्रामीण के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे अर्पित यादव के फेसबुक अकाउंट से 1 अक्टूबर को अपलोड किए गए दो वीडियो मिले जिनमें वायरल वीडियो वाले पूरे दृश्य मौजूद थे। इन वीडियोस के साथ मौजूद कैप्शन में इसे लखनऊ में प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए जाने का बताया गया था। इसके अलावा हमें कई पत्रकारों के 1 अक्टूबर 2020 को पोस्ट किए गए वीडियो में वायरल वीडियो से जुड़े दृश्य देखने को मिले। ये वीडियो हाथरस की घटना को लेकर लखनऊ में समाजवादी पार्टी द्वारा प्रदर्शन किए जाने से संबंधित थे। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। ये वीडियो करीब 6 साल पुराना है जब हाथरस मामले में समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन के दौरान लखनऊ

0: पुलिस ने लाठी चार्ज किया था। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक छात्रा को रस्सी के सहारे नदी पार करते हुए देखा जा सकता है। इसे शेयर करते हुए लोग कह रहे हैं कि वीडियो है भारत का, लेकिन जब इसका फैक्ट चेक किया गया क्या सच और क्या झूठ सामने आया, इस रिपोर्ट में जानिए।
2: रस्सी के सहारे उफनती नदी पार करती छात्रा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो को भारत का बताकर देश के बुनियादी ढांचे पर सवाल किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया यूजर्स इस बच्ची के हौसले की तारीफ कर रहे हैं। पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, भारत के कुछ हिस्सों में आज भी स्कूल जाने के लिए छात्र छात्राओं का संघर्ष जारी। बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करके स्कूल जाते हैं। विकास तभी पूरा होगा जब हर बच्चा सुरक्षित होकर स्कूल पहुंच सके। बच्चों के संघर्ष ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। बच्चों के हौसले को सलाम। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर हो रहा है। वीडियो का सच और झूठ जाने बगैर यूजर्स इसे खूब वायरल कर रहे हैं।
1: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो को भारत का बताकर देश के बुनियादी ढांचे पर सवाल उठाया जा रहा है। वीडियो में एक छात्रा को रस्सी के सहारे उफनती नदी पार करते हुए देखा जा सकता है और सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की जांच शुरू की। सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को हमने गौर से देखा और सुना। वीडियो की क्वालिटी को देखने पर ऐसा लग रहा है कि हाल फिलहाल का वीडियो नहीं हो सकता। इसके अलावा जब हमने वीडियो में आ रही आवाजों को सुना तो ये काफी हद तक स्पेनिश भाषा लगी। वीडियो के जरिए दावा किया जा रहा है कि ये भारत का है और सवाल फिर यही उठता है कि इसमें विदेशी आवाजें क्यों सुनाई दे रही हैं, इसमें स्पेनिश भाषा क्यों सुनाई दे रही है, ये हमें थोड़ा सा अटपटा लगा। लिहाजा वायरल हो रहे वीडियो को हमने सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यही कि अगर दावा सच्चा है तो फिर वायरल वीडियो का संबंध भारत के किस हिस्से से है। हमारा दूसरा सवाल यह कि कहीं जानबूझकर किसी और देश के वीडियो को भारत का बताकर अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही है। अब सच और झूठ क्या है, इस रिपोर्ट में जानिए।
2: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जब ये वीडियो धड़ल्ले से शेयर होने लगा तब फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वायरल वीडियो की जांच शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए हमने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के कुछ फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें कोलंबिया के एक एक्स यूजर के स्पेनिश भाषा में 15 जून 2022 को पोस्ट किया गया ये वीडियो मिला। पोस्ट के कैप्शन में बताया गया कि स्कूल जाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर सांता मार्टा शहर के पुएर्टो मास्किटो इलाके के लड़के लड़कियां रस्सी के सहारे लटक कर गौरा नदी को पार करते नजर आए। पड़ताल के दौरान हमें कोलंबिया की एक समाचार वेबसाइट पर भी 15 जून 2022 को स्पेनिश भाषा में प्रकाशित एक रिपोर्ट मिली जिसमें वायरल वीडियो के दृश्य मौजूद थे। इस रिपोर्ट में भी दृश्य को कोलंबिया के सांता मार्टा का बताया गया था। खोजने पर हमें एक और वेबसाइट भी मिली वायरल वीडियो वाले दृश्य के साथ 15 जून 2022 को स्पेनिश भाषा में प्रकाशित रिपोर्ट भी मिली। रिपोर्ट में बताया गया कि वीडियो सांता मार्टा के ग्रामीण इलाके पुएर्टो मास्किटो में एक कम्युनिटी लीडर एरिका मेंडोजा ने रिकॉर्ड किया था। एरिका ने वीडियो रिकॉर्ड करते हुए शिकायत की थी कि उनके बच्चों को हर दिन इसी तरीके से खतरे में स्कूल जाना पड़ता है क्योंकि गौरा नदी पार करने के लिए कोई स्थायी पुल नहीं है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि वीडियो वायरल होने के बाद सांता मार्टा के मेयर कार्यालय की टीम ने क्षेत्र का दौरा किया ताकि छात्रों के आवागमन की इस गंभीर समस्या का हल निकाला जा सके। पड़ताल के दौरान हमें कोलंबिया के ही एक फेसबुक पेज पर 15 जून को पोस्ट किया गया यही वीडियो मिला। इस पोस्ट में भी स्पष्ट लिखा था कि सांता मार्टा के ग्रामीण इलाके पुएर्टो मास्किटो के छात्र गौरा नदी को पार करके अपनी कक्षाओं में जाने के लिए रस्सी का सहारा लेते हैं। हमारी पड़ताल में मिले साक्ष्यों से साफ हो गया कि रस्सी के सहारे उफनती नदी पार करती छात्रा का वीडियो भारत का नहीं बल्कि कोलंबिया का है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
4: नए काम की शुरुआत करते समय किन बातों का ध्यान रखें? नए काम की शुरुआत में आपकी राशियों का क्या महत्व है और नए काम की शुरुआत क्या खा करके करें कि सफलता मिले? नए काम का ज्योतिष से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
5: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? Conveniently located by the airport, we've been taking care of customers since 1897.
6: Drive home a new 2026 Subaru Outback with 0.9% APR financing for up to 48 months.
5: We'll give you top dollar for your trade, and we will not be undersold. If you come in to buy a car, we'll do whatever it takes to earn your business. Easy to deal with, easy to get to. Byers Airport Subaru. By the airport.
7: See dealer for details. Offer ends 6/30/26.
8: You may already think of TuneIn as your go-to audio app, but it's also your go-everywhere audio app. Because TuneIn works on just about every device you already use. Smart speakers? Yep. In your car? Absolutely. Phone or tablet? Yeah, of course. Wherever you are, your audio comes with you. And if you want to go hands-free, just say open TuneIn Live on your Alexa-enabled device and follow the interactive prompts to find the station you're looking for. No tapping, no searching. Just press play with your voice.
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला
12: फैक्चर की आखिरी सफर का, जहां आपको दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं और इन्हें खूब पसंद किया जा रहा है।
2: इन दिनों सोशल मीडिया पर ये वीडियो चर्चा में है। वीडियो में एक युवती हवा में ऐसे करतब दिखाती नजर आ रही है कि देखने वाले अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे। पहली नजर में ऐसा लगता है मानो गुरुत्वाकर्षण का उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा। इस वायरल वीडियो में नजर आ रही एथलीट का नाम माजा कुचिंस्का है। पोलैंड की रहने वाली माजा दुनिया की जानी मानी एरियल एथलीट और इंडोर स्काई डाइविंग चैंपियन है। उन्होंने अपनी प्रतिभा और कड़ी मेहनत के दम पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई उपलब्धियां हासिल की हैं। हाल ही में सामने आए वीडियो में माजा एक विंड टनल के अंदर परफॉर्म करती दिख रही हैं। विंड टनल एक ऐसी जगह होती है जहां नीचे से बेहद तेज गति से हवा छोड़ी जाती है, जिसे व्यक्ति हवा में तैर सकता है। लेकिन माजा ने इस तकनीक को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया। वीडियो में वो कभी हवा में खड़ी होती दिखती हैं, कभी धीरे धीरे चलती हुई नजर आती हैं और कभी ऐसे मूव्स करती हैं जिन्हें देखकर लगता है मानो वो किसी दूसरे ग्रह की निवासी हों। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनका पूरा प्रदर्शन किसी फिल्मी स्पेशल इफेक्ट या कंप्यूटर एडिटिंग का नतीजा नहीं है, ये उनके वर्षों की ट्रेनिंग, बेहतरीन बॉडी कंट्रोल और संतुलन का कमाल है। तेज हवा के दबाव के बीच अपने शरीर को नियंत्रित करना बेहद कठिन माना जाता है, लेकिन माजा इसे बड़ी सहजता के साथ करती हैं।

0: सोशल मीडिया पर एक 7 साल की बच्ची का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में बच्ची लिम्बो स्केटिंग करती हुई लगातार 20 कारों के नीचे गुजरती नजर आती है। उसके संतुलन और आत्मविश्वास को देखकर लोग हैरान हैं। ये बच्ची भारत की रहने वाली बताई जा रही है, जिसने अपने शानदार स्केटिंग टैलेंट से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ऐसा बताया जा रहा है कि मात्र 7 साल की उम्र में उसने लिम्बो स्केटिंग करते हुए लगातार 20 कारों के नीचे से गुजरकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वीडियो की शुरुआत में बच्ची स्केट्स पहनकर पूरी तैयारी के साथ नजर आती है। इसके बाद वो अपने शरीर को बेहद नीचे झुकाती है, एक एक करके कारों के नीचे से निकलना शुरू कर देती है। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि कारों और जमीन के बीच की जगह काफी कम दिखाई देती है। इसके बावजूद बच्ची बिना घबराए पूरे कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ती रहती है। उसका बैलेंस और कॉन्फिडेंस देखने के बाद वहाँ मौजूद लोग भी हैरान रह जाते हैं। वीडियो में बच्ची के साथ एक व्यक्ति भी नजर आता है, जिसे कई लोग उसके पिता बता रहे हैं। वो प्रदर्शन के बाद बच्ची का हौसला बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं। क्रिकेट के मैदान पर अक्सर ऐसे रोमांचक पल देखने को मिल जाते हैं, जो खेल प्रेमियों के दिलों में लंबे समय तक अपनी जगह बनाए रखते हैं। हाल ही में एक ऐसा ही अविश्वसनीय नजारा सबके सामने आया, जिसने दर्शकों को हैरान करने के साथ साथ उत्साह से भी भर दिया। एक बल्लेबाज ने दमदार शॉट खेला और गेंद को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो आसानी से बाउंड्री लाइन के पार पहुंच जाएगी। मैदान में मौजूद अधिकांश लोगों ने लगभग मान लिया था कि ये निश्चित रूप से चौका या छक्का बनने वाला है, लेकिन तभी एक फील्डर ने अपनी असाधारण फुर्ती और बेहतरीन एथलेटिक क्षमता का प्रदर्शन करते हुए पूरे मैच का माहौल बदल दिया। गेंद तेजी से सीमा रेखा की ओर बढ़ रही थी और हर किसी की नजर उसी पर टिकी हुई थी। इसी बीच फील्डर ने बिजली जैसी रफ्तार से दौड़ लगाई, वो पूरी ताकत के साथ गेंद के पीछे भागा और सही समय पर ऐसी शानदार छलांग लगाई कि कुछ पलों के लिए मैदान में मौजूद लोग अपनी सांसें थामने पर मजबूर हो गए। ऐसा लग रहा था कि मानो समय कुछ सेकंड के लिए ठहर गया हो। हवा में उछलते हुए उसने जिस सटीकता और बैलेंस के साथ गेंद को पकड़ा, वो देखने लायक था। फुटबॉल के सबसे बड़े टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप का जुनून अब सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ऐसा लग रहा है कि जानवर भी इस रंग में रंगते जा रहे हैं। हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो ने सोशल मीडिया यूजर्स का दिल जीत लिया, जिसमें एक बत्तख अपने खास अंदाज के कारण इंटरनेट स्टार बन गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बत्तख सड़क पर अपने मालिक के पीछे पीछे आराम से चल रही है। पहली नजर में ये आम नजारा लगता है, लेकिन अगले ही पल लोगों की नजर बत्तख के ड्रेस पर जाती है और सभी हैरान हो जाते हैं। दरअसल इस बत्तख ने फीफा वर्ल्ड कप में खेलने वाली मेक्सिको फुटबॉल टीम की जर्सी पहन रखी होती है। छोटी सी बत्तख का ये अंदाज इतना मजेदार और क्यूट लगता है कि वहाँ मौजूद लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाते। सड़क पर जैसे ही लोगों ने इस अनोखे नजारे को देखा, हर कोई अपना फोन निकालकर वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। बत्तख का अपने मालिक के पीछे पीछे चलना और ऊपर से मेक्सिको टीम की जर्सी पहनना लोगों को बेहद पसंद आया।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और
2: नए काम की शुरुआत करते समय किन बातों का ध्यान रखें, नए काम की शुरुआत में आपकी राशियों का क्या महत्व है और नए काम की शुरुआत क्या खा करके करें कि सफलता मिले, नए काम का ज्योतिष से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्ट।
3: Feeling a bit nostalgic for the 90s? Tune In has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears, or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
4: और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़।
4: अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए, ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वाली बारिश को मानसून की फुहार समझने की भूल न करें। 3 जुलाई से शुरू होने जा रही अमरनाथ यात्रा से पहले मॉकड्रिल के दौरान कसौटी पर खरा उतरा सुरक्षा चक्र, और जंगली जानवरों को बचाएगा वाइल्ड वॉच। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास मिलेगा चालकों को अलर्ट। शुरुआत हेडलाइंस के साथ।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
10: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
11: टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
4: जी 7 शिखर सम्मेलन, कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात, कई वैश्विक मुद्दों पर बातचीत। 100 लिस्ट में शामिल हुई स्मृति मंधाना। इस सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी। महिला क्रिकेट में योगदान के लिए मिला सम्मान। रक्षा मोर्चे पर बढ़ेगी भारत की ताकत। वायुसेना बनाएगी घातक स्वदेशी कैमिकेज ड्रोन। 16,000 फीट की ऊंचाई पर भी अचूक वार करने में सक्षम। जम्मू कश्मीर में पवित्र अमरनाथ यात्रा की तैयारियां लगभग पूरी। यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की सेवा के लिए देश भर से पहुंची लंगर कमेटियां। बाबा बर्फानी के लगे जयकारे। राजस्थान में हाईटेक ट्रैफिक सिस्टम का शुभारंभ। जयपुर में एलईडी स्क्रीन पर दिखेगी गाड़ियों से जुड़ी सभी जानकारी। निगरानी के लिए कंट्रोल रूम तैयार। शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। बात सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून की, जिसने इस साल 1 जून के बजाय 4 जून को केरल में दस्तक दी। इसके बाद अब तक देश के 19 राज्यों को मानसून ने कवर कर लिया है, लेकिन अब इसकी रफ्तार थोड़ी थम सी गई है, जिसके चलते मानसून का इंतजार उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कई हिस्सों में बढ़ गया है। मौसम विभाग ने बताया है कि सूखी पश्चिमी हवाओं और बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाओं के कमजोर पड़ने की वजह से बारिश में देरी हो रही है, और साथ ही अल नीनो और पश्चिमी विक्षोभ का असर भी मॉनसून की चाल पर पड़ा है। हालांकि 20 जून के बाद महाराष्ट्र में मॉनसून के तेज होने की संभावना जताई जा रही है।

0: दूसरे हफ्ते में उत्तर पश्चिमी भारत के राज्यों में हो रही ये बारिश मानसून वाली नहीं है, बल्कि ये बारिश हो रही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से, जिसके चलते जम्मू से लेकर हिमाचल और दिल्ली तक मौसम सुहाना हो गया है। आसमान में काले घने बादलों का डेरा है, तेज हवाएं चल रही हैं और झमाझम बारिश ने उमस भरी गर्मी से बेहाल लोगों को राहत पहुंचाई है। ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों से आई हैं, जहां सुबह सवेरे जोरदार बारिश देखने को मिली।
1: वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से लगातार पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रेनफॉल थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होता रहा, उसके साथ ही कहीं ना कहीं हेलस्टॉर्म एक्टिविटी भी रहा। और अगर हम आज की बात करें, आज एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो नॉर्थ पाकिस्तान के ऊपर है, उसके प्रभाव से प्लेन्स की बात करें तो पंजाब हरियाणा राजस्थान के लिए आज के लिए हमारा ऑरेंज अलर्ट है। उसको देने का रीज़न यही है कि आज भी जहां रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है, जो हवाओं की गति है वो 50 से 60 किलोमीटर पर आवर दिन के किसी समय होने का अनुमान है। और उसके साथ ही राजस्थान में कहीं ना कहीं डस्टम एक्टिविटी भी रह सकती है। अगर हम एनसीआर दिल्ली की बात करें तो एनसीआर दिल्ली के लिए भी आज के लिए हमारा येलो अलर्ट है।
2: मंगलवार सुबह से ही दिल्ली में मौसम बदला है और अच्छा मौसम हो गया है, सुहाना मौसम हो गया है, लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, आप देख सकते हैं आसमान में जो है बादल एकदम छाए हुए आपको नजर आएंगे, पूरी तरीके से बादलों ने घेर रखा है आसमान को।
0: दिल्ली का मौसम सुहाना हुआ तो घूमने फिरने के शौकीन लोग घरों से निकल पड़े। ऐसी ही एक तस्वीर इंडिया गेट से सामने आई, जहां काफी संख्या में लोग सुहाने मौसम का आनंद लेने के लिए पहुंचे थे। इनमें कोई परिवार संग पहुंचा और कोई दोस्त और रिश्तेदारों के साथ खुशगवार मौसम का आनंद लेता नजर आया। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में भी दिल्ली एनसीआर में मौसम का यही मिजाज देखने को मिल सकता है। इसके पीछे वजह है कि एक के बाद एक आ रहे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस।
3: देश की राजधानी दिल्ली में मौसम इस वक्त पूरी तरीके से सुहाना हो चुका है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग गर्मी से परेशान थे और वहीं अब लोगों को राहत मिली है और लोग इस वक्त आपको एंजॉय करते हुए जो है कर्तव्य पथ पर नजर आ जाएंगे। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये हमेशा ही इसी तरीके से नजर आती है जब बात अच्छे मौसम की हो। हालांकि इंडिया गेट पर हमेशा यूं ही लोगों की भीड़ जो है वो नजर आती है, लेकिन जब भी बारिश होती है या वेदर बहुत इंजॉय करना होता है लोगों को अच्छे मौसम में, तो लोग इसी तरीके से आपको बाहर जरूर नजर आते हैं।
1: और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थ वेस्ट इंडिया को प्रभाव करेगा और 18 तारीख से उसके कारण पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में फिर रेनफॉल थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है। और अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करें तो एनसीआर दिल्ली के लिए हमने फिर से 20 और 21 के लिए लाइट रेनफॉल का फोरकास्ट दे रखा है। और इसके साथ ही क्या हो रहा है कि जैसे ही ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कंटिन्यूज इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो टेम्परेचर्स हैं वो सामान्य से कम है।
0: पहाड़ी राज्यों में भी मौसम का यही मिजाज देखने को मिल रहा है, चाहे जम्मू कश्मीर हो या फिर हिमाचल प्रदेश, जहां बारिश भले ही हो रही है लेकिन समूचे उत्तर पश्चिमी भारत और मध्य भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का इंतजार बढ़ गया है। दरअसल 3 दिन की देरी से केरलम पहुंचे मानसून की रफ्तार थम गई है। इसके पीछे मौसम विभाग का कहना है कि सूखी पश्चिमी हवाओं और बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाओं के कमजोर पड़ने की वजह से बारिश में देरी हो रही है। साथ ही अल नीनो और पश्चिमी विक्षोभ का असर भी मानसून की चाल पर पड़ा है। मौसम विभाग की ओर से कुछ घंटों पहले जो सैटेलाइट तस्वीरें जारी की गई थी उनमें मानसून वाले बादल नदारद नजर आए।
4: चिंता इस बात की है कि मानसून कमजोर पड़ रहा है, उसकी रफ्तार कछुए की चाल से चल रही है और जून के महीने में ही अब तक 64% कम बरसात हुई है। इतना ही नहीं, दरअसल अगर मैं आपको ये कहूं कि मौसम विभाग पर ये जो सैटेलाइट पिक्चर हैं, इनमें दिखाई दे रहा है कि मानो जैसे अरब सागर के पास पश्चिम भारत से बादल ही चोरी हो गए। अब ये देखिए पूरा इलाका ये अरब सागर का इलाका है और दक्षिण पश्चिम मानसून जो आगे बढ़ा है कि उसके बाद वो केरल होते हुए आगे जब बढ़ना चाहिए इसे कर्नाटक और उसके बाद महाराष्ट्र, इन इलाकों में दरअसल इस समय बादलों का डेरा होना चाहिए, लेकिन यहां से ऐसा लगता है कि बादलों को मानो किसी ने चुरा लिया हो और फिर इस महाराष्ट्र के ऊपर होते हुए गुजरात तक आगे जाने के लिए यहां पर मानसून की जो स्थिति है वो बेहद कमजोर हो गई है। बादलों का बिल्कुल नदारद हो जाना अपने आप में चिंता का विषय है, लेकिन ये सिर्फ अरब सागर में नहीं, इन्हीं सैटेलाइट पिक्चर्स को अगर मैं देखता यहां जो बे ऑफ बंगाल है तो बे ऑफ बंगाल में भी अगर आप देखेंगे तो आगे आंध्र प्रदेश से लेकर के उड़ीसा और उसकी जो स्थिति आगे पश्चिम बंगाल की ओर जानी चाहिए, यहां पर पर भी बादलों की स्थिति बेहद कमजोर दिखाई पड़ती है इन सैटेलाइट तस्वीरों में।
0: हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 4 से 5 दिनों में हालात बदल सकते हैं और फिर 20 जून के आसपास महाराष्ट्र में मानसून दोबारा रफ्तार पकड़ सकता है। उसके बाद मुंबई में तेज बारिश का दौर शुरू हो सकता है। आमतौर पर 11 जून तक मुंबई में बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार मानसून की रफ्तार धीमी पड़ने से ऐसा नहीं हुआ। लेकिन 20 जून के बाद मानसून मुंबई पर मेहरबान हो सकता है।
4: ऐसे में मौसम विभाग को लगता है कि 20 जून के बाद अगर जब मौसम अपनी रफ्तार पकड़ेगा तब मानसून की रफ्तार बारिश लेकर के आएगी और ऐसे में पश्चिम भारत, खासकर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, ऐसे में जहां आमतौर पर 9 से 11 जून के बीच बरसात होती थी, मानसून तट तक पहुंचता था, उसमें भी काफी देरी है, जो कि पहले 2019 और उसके पहले 2023 में ऐसा हो चुका है।
0: फिलहाल मौसम विभाग ने लोगों को मौसम अपडेट पर लगातार नजर रखने की सलाह दी है। खासकर मछुआरों और समुद्र किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि अरब सागर में हवाओं की दिशा अचानक बदल सकती है। दिल्ली से मनीषा लड्डा और आशुतोष मिश्रा के साथ आशुतोष कुमार, गुड न्यूज टुडे।
5: आगे बढ़ते अगली अच्छी खबर है अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई, जिसकी शुरुआत इस साल 3 जुलाई से होने जा रही है। ऐसे में यात्रा से जुड़ी सभी तैयारियां इन दिनों जोर शोर से चल रही हैं और खासकर अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर विशेष चौकसी बरती जा रही है। यात्रा का जिम्मा संभालने वाली तमाम सुरक्षा एजेंसियां अपनी तैयारियों को परखने के लिए इन दिनों यात्रा वाले रूट्स पर जगह जगह मॉक ड्रिल्स कर रही हैं, ताकि देश से आने वाले श्रद्धालुओं की तीर्थ यात्रा आरामदायक और सुरक्षित हो।
6: लॉन आउट ऑफ सिचुएशन हो गया है, दूसरे रास्ते की तलाशी ले लो।

0: हाथों में हथियार, ट्रिगर पर उंगली और तेजी से मोर्चा संभालते जवान। एक्शन से भरपूर ये तस्वीरें किसी स्पेशल ऑपरेशन की नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की मॉक ड्रिल है, जो की गई है आगामी अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा तैयारियों को परखने के मकसद से। इस साल इस पवित्र यात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होने जा रही है। ऐसे में अब यात्रा शुरू होने में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, लिहाजा तमाम संभावित खतरों और प्राकृतिक आपदाओं से तीर्थ यात्रियों को बचाने के लिए सुरक्षा एजेंसियां इन दिनों यात्रा वाले रूट पर जगह जगह मॉक ड्रिल कर रही है, जिसकी यह तस्वीर कुलगाम से आई है। वहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवान आतंकी हमले से निपटने की तैयारियों को हर कसौटी पर परखते दिखाई दिए। इस दौरान कुछ जवान बैरिकेडिंग कर हमलावरों की घेराबंदी करते दिखे, कुछ जवान एक इमारत में छिपे आतंकियों को नाकाम करते दिखे। इस मॉक ड्रिल के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि सभी एजेंसियों के बीच तालमेल बेहतर रहे।
1: मॉक ड्रिल्स जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, बाकी जो एजेंसीज हैं, चाहे बेल्ट फोर्सेस हैं या इंटेलिजेंसीज, सब मिलके जो है मॉक ड्रिल्स भी हो रही हैं जगह जगह। हर कोई डिस्ट्रिक्ट पुलिस जिसको यात्रा सिक्योरिटी में जो है अपना रोल निभाना है, वो मॉक ड्रिल्स कर रहे हैं। और अलग अलग जो सिनेरियो जिसमें चाहे आतंकी हमला हो या और अलग अलग किस्म की जो इमरजेंसीज हैं, उनको सिमुलेट किया जा रहा है। उस तरीके से कैसे सुरक्षा बलों को रिस्पॉन्ड करना चाहिए, कितना जल्दी रिस्पॉन्ड करना चाहिए, वो सारी चीजें जो है इसमें स्ट्रीमलाइन की जा रही है।
0: ऐसे में ही एक मॉक ड्रिल पहलगाम में भी की गई, जो अमरनाथ यात्रा रूट का एक बेहद अहम पड़ाव है। इसीलिए यहां जम्मू कश्मीर के जवानों ने किसी भी संभावित आतंकी हमले से निपटने के साथ साथ धगदड़ और किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन जैसे हालात से निपटने की तैयारियों को परखा। इतना ही नहीं, इस मॉक ड्रिल के दौरान पुलिस वालों ने घोड़े खच्चर मालिकों के QR कोड भी चेक किए, ताकि सुरक्षा तैयारियों में किसी तरह की चूक की गुंजाइश बाकी न रहे।
1: इस साल भी नए नए जो है कदम उठाए गए हैं, जिसमें जो QR कोड दिए गए हैं सर्विस प्रोवाइडर्स को, इनमें चाहे घोड़े वाले हों या फिर हाथ गाड़ी वाले, लंगर वाले या जो भी यात्रा से जुड़ा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसको QR कोड दिया गया है और एक स्कैन में आप उस इंसान के सारी डिटेल मिल सकती हैं, जिसमें उसका नाम, उसकी रेजिडेंस, उसका पास्ट, सब कुछ जो है मिल सकता है। तो ये एक सुरक्षित यात्रा को सुनिश्चित करने में प्रशासन की मदद करेगा।
2: कश्मीर के पुलिस एहलकार आप लोगों को चेक कर रहे हैं किसके पास QR कोड है, QR कोड से कितना फायदा हुआ है आप लोगों को?
3: बहुत फायदा हुआ, जब से हमें QR कोड मिला हम लोग अपने आप को एकदम सिक्योर फील करते हैं। हम अपने JKP का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने हमें QR कोड के जरिए एक यहाँ स्ट्रीमलाइन बना दी, ताकि घोड़े वालों का अलग रखा, ड्राइवर का अलग रखा, फोटोग्राफर का, हर एक तबके का एक अलग अलग रखा। उससे टूरिस्ट को भी एक भरोसा सर्टिफिकेशन हो जाती है कि हम एकदम सिक्योर है। तो हम अपने DSP साहब, SP साहब और SHO साहब का शुक्रगुजार है कि उसने हमें ये QR कोड दे दिया।
0: अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा हमेशा से एक अहम पहलू रहा है, इसीलिए हर साल यात्रा शुरू होने से पहले और यात्रा के दौरान सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह हाई अलर्ट पर रहती हैं, ताकि देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित और आरामदायक रहे। वहीं कुछ रोज पहले ही गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में एक हाई लेवल बैठक भी इसी सिलसिले में हो चुकी है, जिसमें यात्रा से जुड़ी तमाम तैयारियों की समीक्षा की जा चुकी है। श्रीनगर से मीर फरीद के साथ विदर रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: तो अगर आप भी अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हैं, आप घूमने के लिए जम्मू कश्मीर में वेस्ट टू वंडर पार्क जा सकते हैं। ये पार्क भगवती नगर में मौजूद यात्री निवास के पास बनाया गया है, जिसका काम अंतिम चरण में चल रहा है और अगले महीने इसके द्वार आम लोगों के लिए खोलने की तैयारी है। दरअसल पार्क में लोगों को देश और दुनिया भर की नायाब इमारतें, जैसे कि ताजमहल, गेटवे ऑफ इंडिया, चिनाब नदी पर बना आश रेलवे ब्रिज, स्टैचू ऑफ यूनिटी और पेरिस का आइफिल टावर देखने को मिलेगा। ये तमाम रेप्लिकाएं कबाड़ से तैयार की जा रही हैं, जो पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक कचरा प्रबंधन का अनूठा उदाहरण पेश करती हैं। जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नगर आयुक्त देवांशु यादव ने कहा है कि ये पार्क स्थानीय निवासियों और पर्यटकों को एक अनूठा मनोरंजन उपलब्ध करवाएगा।
5: पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड की तरफ से एक प्रोजेक्ट जो है वो बनाया जा रहा है। वो प्रोजेक्ट का नाम है वेस्ट टू वंडर पार्क, यानी जो वेस्ट हुआ मटेरियल होता है उससे एक पार्क बनाया जा रहा है और उस पार्क के बीच में कई स्मारक जो है वो स्थापित किए गए हैं। ये खास तौर पर आकर्षण का केंद्र इसलिए बन रहा है क्योंकि आगामी अमरनाथ यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है और देश भर के क्या विश्व भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु सबसे पहले जम्मू पहुँचेंगे और उनके लिए यहाँ पर जम्मू में खास तौर पर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आने वाला ये प्रोजेक्ट जो है स्थापित किया जा रहा है। इसमें कई स्मारक जो है वो बनाए गए हैं।
6: भगवती नगर एक बहुत पहले से डंप साइट हुआ करती थी जिसमें जम्मू शहर का कूड़ा जाता था। अब उस डंप साइट को बदल के एक वेस्ट टू वंडर पार्क के तौर पर बनाया जा रहा है। जम्मू स्मार्ट सिटी के इस प्रोजेक्ट में कोशिश की जा रही है कि लोकल टूरिज्म को बढ़ावा मिले और लोकल कुजीन खासतौर से उसको हम लोग प्रोजेक्ट कर पाए नेशनल लेवल पर। और ये प्रोजेक्ट मुझे लगता है इस महीने के अंत तक खत्म हो जाएगा। हमारी कोशिश है कि यात्रा के पहले पहले ये साइट बनके तैयार हो जाए, जनता के लिए खुल जाए।
7: स्मार्ट सिटी में ये प्रोजेक्ट जो लेके आ रहे हैं यहाँ पे वेस्ट वंडर पार्क, अपने में एक बहुत बड़ी बात है कि जिससे कि जो वेस्ट है उसको एक आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स में चेंज किया जाएगा। ये सिर्फ एक खूबसूरती नहीं बढ़ाएगा इस जगह की, इससे यहाँ पे ये फ़ायदा होगा कि जो भी यात्री अभी अमरनाथ यात्रा के लिए आएंगे, पहले तो उन्हीं के क्योंकि बेस कैंप के पास ही ये सब बनाया जा रहा है, तो भगवती नगर में और 40 कनाल की लैंड में बनाया जा रहा है जो 14 आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स बनाए जाएंगे इस वेस्ट मटेरियल से। उसको देखने में अपना ही एक होगा कि हम देखें ये क्या है, तो यात्री हमेशा रुकेंगे उसको देखने के लिए, जिससे कि फायदा होगा यहाँ के बिजनेस का।
4: बात जंगली जानवरों के सुरक्षा कवच की जो झांसी के दो जुड़वा भाइयों ने तैयार किया है। एनआईडी यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के छात्र रहे इन दो भाइयों ने वाइल्ड वॉच नाम का एक सिस्टम बनाया है जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से गुजरते वक्त वाहन चालकों को पहले ही सड़क पर किसी तरह के जंगली जानवर के होने का अलर्ट दे देगा ताकि वो अपने वाहन की स्पीड धीमी कर लें, जिससे उनके तेज रफ्तार वाहन के संपर्क में आने से जंगली जानवर बच जाएं और दुर्घटना का शिकार न हों।

0: वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्य जीव अभयारण्य, जिनका मकसद जानवरों, पक्षियों और वनस्पतियों को प्राकृतिक संरक्षण देना है। हालांकि इस प्राकृतिक आवास में रहने के दौरान वहां से गुजरने वाली सड़कें इस संकल्प में बाधा बन जाती हैं। सड़कों पर क्षण भर के लिए आ जाना भी उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। हालांकि अब शायद ऐसा न हो। झांसी के जुड़वा भाइयों ने एक ऐसी डिवाइस तैयार की है जो दिन की रोशनी या फिर रात के अंधेरे में उनकी जिंदगी पर ग्रहण नहीं लगने देगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास सड़कों पर होने वाले हादसे जंगली जानवरों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। वहां से गुजरने वाले तेज रफ्तार वाहन अक्सर जंगली जानवरों को गंभीर रूप से घायल कर देते हैं या फिर उनकी जान चली जाती है। ये न केवल वन्य जीवों के संरक्षण में बड़ी बाधा है, बल्कि दुर्घटना के कारण इंसानों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाती है। दोनों आमने सामने हो और नुकसान न हो, इसी सोच के साथ तन्मयकरण और चिन्मयकरण नाम के दो जुड़वा भाइयों ने एक डिवाइस तैयार की है जिसका नाम वाइल्ड वॉच है।
1: उस डिवाइस का नाम है वाइल्ड वॉच। यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड फ्रॉम द नेम एज वेल, वाइल्ड वॉचिंग वाइल्ड, वाइल्ड वॉच। तो इसकी प्रेरणा मिली हमें टेराकार्टर डिजाइन लैब इनिशिएटिव के थ्रू, जिसका स्टार्ट किया गया था किंग चार्ल्स के द्वारा लंदन में SMI। SMI इज सस्टेनेबिलिटी मार्केटिंग इनिशिएटिव। तो इसका कॉम्पिटिशन आया था इंडिया में टू NID।
0: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर NID यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के छात्र रहे दोनों भाइयों ने सबसे पहले एक टीम बनाई, फिर सबने मिलकर वाइल्ड वॉच को डिजाइन किया जो वन्य जीवों को दुर्घटनाओं से बचाने में मदद करेगी। वाइल्ड वॉच दो हिस्सों में काम करती है। पहला हिस्सा जंगल या सड़क के आसपास किसी बड़े जानवर की मौजूदगी का पता लगाता है, जबकि दूसरा हिस्सा वाहन चालकों को अलर्ट भेजता है ताकि वक्त रहते ड्राइवर सतर्क हो जाएं, जिससे सड़क पर गुजरने के दौरान दुर्घटना को टाला जा सके। फिलहाल यह तकनीक 200 मीटर तक के एरिया में काम कर रही है।
2: डिवाइस बनाई है, उस डिवाइस के बारे में हम चाहेंगे अपने दर्शकों को किस तरीके से आपने डिवाइस बनाई, किस तरीके से काम करती है थोड़ा।
1: यस, तो मैं आपको डिवाइस के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। तो डिवाइस है वाइल्ड वॉच, ये दो सिस्टम में काम करता है, एक है डिटेक्शन और एक है आपका जो ह्यूमन को बताता है कि एग्जैक्टली वहां पर कोई मूवमेंट हुई है। यदि डिटेक्शन नहीं हुआ है तो ह्यूमन को बताने की कोई आवश्यकता नहीं, वो अपने स्पीड से अपने आराम से उस फॉरेस्ट रोड को क्रॉस कर सकता है। तो ये जो आप सिस्टम देख रहे हैं, ये अभी हमारा प्रोटोटाइप 1 है, R&D करेंटली R&D फेज में है। तो ये आपका आप देख सकते हैं, तो हमने लोरा ट्रांसमिशंस यूज किया है, हमने पर्टिकुलर माइक्रो कंट्रोलर्स यूज किया है, माइक्रो कंट्रोलर एंड थ्रू सेंसिंग हम यूज कर रहे हैं रडार सेंसर के थ्रू हम लोग पर्टिकुलर रेंज में डिटेक्ट करते हैं, और यदि डिटेक्ट होता है तो ये पर्टिकुलर ट्रांसमिशन भेजता है लॉन्ग रेंज ट्रांसमिशन टू अनदर डिवाइस। उस डिवाइस में एक हमने बीपर सेट किया है अभी प्रोटोटाइप 1 में, और उस पर्टिकुलर बीपर वो साउंड जैसे ही करता है दैट मींस कि वहां कोई मूवमेंट हुई है, कोई लार्ज एनिमल क्रॉस हुआ है। तो ये इस तरीके से काम करता है। इसके करंट रेंज मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं हम लोगों ने आउटसाइड टेस्टिंग भी की है। आउटसाइड टेस्टिंग में इसकी करंट रेंज है ट्रांसमिशन की 200 मीटर एंड डिटेक्शन रेंज इज अराउंड 20 to 25 मीटर।
0: तन्मय और चिन्मय की टीम अब इसे और बेहतर बनाने में काम कर रही है ताकि इसकी रेंज बढ़ाकर 500 मीटर तक की जा सके। दोनों भाइयों की तरफ से तैयार की गई इस तकनीक का डंका विदेश में भी बजा है। साल 2021 में किंग चार्ल्स की तरफ से शुरू किए गए टेराकाटा अनुदान के तहत इस डिवाइस को 1,00,000 GBP यानी भारतीय मुद्रा में लगभग 1 करोड़ रुपए की ग्रांट मिली है।
1: हम लोगों ने अपना एक सबमिशन उनको सेंड किया फर्स्ट टू NID, मल्टीपल राउंड्स NID में सिलेक्शन हुआ, प्रेजेंटेशंस हुआ, उसमें हमारा टॉप 20 में आया, एग्जीबिशन हुआ, हम लोगों को पर्सनली इनवाइट किया गया अपने सॉल्यूशन के बारे में, प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में बात करने के लिए। फिर उसको हमारा टॉप 10 में हमारा नाम गया और टॉप 10 गया इंटरनेशनल ज्यूरी के लिए। इंटरनेशनल ज्यूरी में एक बड़ी शख्सियत भी थे वहां पर एज अ ज्यूरर, ही इज सर जॉनी आइव। सर जॉनी आइव यदि आप जानते हो तो फेमस डिजाइनर रहे हैं एप्पल के, और उन्होंने अभी कार इंडस्ट्री में भी एंटर किया है। तो सर जॉनी आइव जो उसमें ज्यूरी फाइनल ज्यूरी मेंबर थे, इंटरनेशनल ज्यूरी मेंबर, तो उसके थ्रू हमें फाइनल टॉप इंटरनेशनल विनर बनाया गया। तो इंटरनेशनल विनर बनने की वजह से हम लोगों को मिला है ग्रांट 100,000 GBP, दैट इज ग्रेट ब्रिटिश पाउंड। इन टर्म्स ऑफ इंडियन करेंसी इट इज 1 CR, अराउंड 1 CR, और ये हमें मिला है ग्रांट थ्रू NID अहमदाबाद। तो SMI और NID के थ्रू हमें ग्रांट मिला है, और इसका हम लोगों ने करेंटली R&D डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया।
0: इस उपलब्धि के बाद दोनों भाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिले, जिन्होंने उनकी पहल की सराहना की। भारत जैसे घने आबादी वाले देश में इस तरह की समस्याएं आम बात है। इन हादसों को रोड किल कहा जाता है, जिसमें छोटे कीड़े मकोड़ों से लेकर पक्षी और बड़े जानवर शामिल होते हैं। अकेले अमेरिका में हर दिन लगभग 10 लाख जानवर वाहनों की चपेट में आकर मर जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी आंकड़ा लगभग 1 करोड़ के आसपास है, जबकि भारत के असम में मौजूद काजीरंगा कार्बी आंगलोंग के 64 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच में एक साल में 6,000 से ज्यादा जंगली जानवरों की मौत दर्ज की गई है। इसके अलावा आवारा कुत्तों और मवेशियों की मौत के आंकड़े लाखों में हैं। साफ है कि तन्मय और चिन्मय के जरिए तैयार की गई वाइल्ड वॉच डिवाइस जंगली जानवरों की जान बचाने में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। झांसी से प्रमोद कुमार गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बॉलीवुड की कुछ फिल्में बड़े पर्दे पर अपने दौर की पहचान बन जाती हैं। कुछ ऐसी ही कहानी गदर एक प्रेम कथा की भी है। सनी देओल और अमीषा पटेल की इस फिल्म ने कल अपनी सिल्वर जुबली मनाई। बॉलीवुड में 25 साल पूरे होने के जश्न में फिल्म के एक्टर्स और डायरेक्टर्स के साथ पूरी स्टार कास्ट शामिल हुई। देखिए गदर की कामयाबी की 25 साल का जश्न।
3: गदर एक प्रेम कथा जो दर्शकों के दिलों को छू गई, जिस फिल्म का हर एक सीन दर्शकों के जहन में बस गया, उस गदर ने बड़े पर्दे पर 25 साल पूरे कर लिए हैं। गदर एक प्रेम कथा 15 जून 2001 को रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने कामयाबी के 25 साल पूरे किए तो इसका जश्न भी बेहद खास अंदाज में मनाया गया। गदर के डायरेक्टर अनिल शर्मा, एक्टर सनी देओल और अमीषा पटेल ने मिलकर फिल्म की सिल्वर जुबली मनाई। इस मौके पर फिल्म के निर्देशक अनिल शर्मा के साथ साथ फिल्म की पूरी स्टार कास्ट मौजूद थी। सनी देओल ने केक काटकर जश्न की शुरुआत की। सभी ने एक दूसरे को केक खिलाकर फिल्म की शूटिंग के दिनों को याद किया। एक खास मौका फिल्म की स्टार कास्ट के रीयूनियन का सेलिब्रेशन भी बन गया। सेलिब्रेशन में सनी और अमीषा जब स्टेज पहुंचे तो वहां मौजूद हर शख्स को गदर की इस जोड़ी की दीवानगी याद आ गई। 1947 के भारत पाकिस्तान विभाजन के बैकग्राउंड पर बनी गदर में सनी देओल ने तारा सिंह और अमीषा ने सकीना का किरदार निभाया था। फिल्म में एक सिख ड्राइवर की अपनी पाकिस्तानी पत्नी को वापस भारत लाने की संघर्ष की कहानी दिखाई गई थी। 25 साल पहले थिएटर्स में इस फिल्म ने तहलका मचा दिया था। इस फिल्म ने बम्पर कलेक्शन भी किया था। फिल्म में सनी देओल और अमीषा के साथ साथ अमरीश पुरी की एक्टिंग भी जमकर तारीफ हुई थी। अमरीश पुरी फिल्म में अमीषा पटेल के पिता के रोल में दिखे। गदर ने बंटवारे के दर्द को एक प्रेम कहानी के साथ ऐसे बुना कि ये फिल्म दर्शकों के दिलों पर छा गई। इस फिल्म के हर सीन ने दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी और यही वजह है कि अपने दौर की इस ब्लॉकबस्टर को आज बॉलीवुड के लिए मील का पत्थर माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत सिंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
5: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league. Right field, and it will... From the first pitch of the season to the stretch run.
6: And that's the ball game.
5: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch selective live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
0: समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं
6: वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

है आपका, आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन में बहुत सारे मौके ऐसे आते हैं जब हमें कोई नया काम शुरू करना पड़ता है, नया व्यापार, नए मकान का निर्माण, कोई बिल्कुल नई यात्रा। तो अगर आप नया काम शुरू करना चाहते हैं तो किस प्रकार से नए काम की शुरुआत करें कि आपको लाभ हो, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 17 जून 2026 दिन बुधवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि रात के 9:38 तक। नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र दोपहर 1:37 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः 8:13 तक और राहु काल का समय दोपहर 12 से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 17 जून 2026 दिन बुधवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, चंद्रमा और बुध विद्यमान हैं मिथुन राशि में, शुक्र और

ऐसा देखा गया है कि कुंडली में बृहस्पति या शुक्र अगर इनकी दशा चले तो नया काम होता है। गोचर में ब्रह्मांड में गुरु और शनि दोनों आपके लिए अनुकूल हो जाएं, दोनों आपके लिए मजबूत हो जाएं, तो भी नया काम शुरू होता है। साढ़े साती उतरने के तुरंत बाद भी नया काम शुरू होता है, ऐसा देखा गया है। भाग्य स्थान का स्वामी यानी भाग्येश या सप्तम भाव का स्वामी यानी सप्तमेश अगर इनकी दशा चले तो भी नया काम शुरू होता है, ऐसा देखा गया है। सबसे ज्यादा जो नए काम की शुरुआत होती है या जीवन में बड़ा बदलाव होता है वो साढ़े साती या ढैया उतरने के तुरंत बाद होता है, ऐसा देखा गया है। नए काम पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, मानसिक तनाव हो सकता है, परिवार में अशांति हो सकती है, वाहन सावधानी से चलाइएगा। अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रिश्तों की समस्या समाप्त होगी। अनाज का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, कर्ज आपका सरलता से चुकेगा, लेकिन परिवार में अशांति से बचिएगा। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। जब आप नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो क्या क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो भी जानिए। दिन, समय और स्थान का सही चुनाव करना चाहिए। जिस दिन आप नया काम शुरू कर रहे हैं उस दिन चंद्रमा का बल यानी चंद्रमा कितना मजबूत है और तारा बल आपके नक्षत्र को कितनी ताकत मिल रही है ये देख लें। चंद्र बल और तारा बल मजबूत होना चाहिए। जो आप काम करने जा रहे हैं उस काम के हिसाब से नक्षत्र का चुनाव होना चाहिए या अपनी राशि के अनुसार राशियों के हिसाब से दिन का चुनाव करना

चाहिए। और जिस दिन आप नए और शुभ कार्य की शुरुआत कर रहे हैं उस दिन से संबंधित शुभ वस्तु खाकर आप नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। अलग अलग राशियों के शुभ दिन होते हैं, उस दिन पर विशेष वस्तु खाकर या विशेष काम करके आप नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। नए काम पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन हानि से बचाव करें। परिवार में अशांति हो सकती है, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, करियर में लाभ होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, खरीदारी में व्यस्त रहेंगे। भगवान गणेश की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होता जाएगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। अनाज का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, चोट चपेट से सावधान रहें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि कौन सी राशि के लोग किस दिन क्या खा करके नया काम शुरू कर सकते हैं या नया काम शुरू करना चाहिए। मेष राशि की बात करें तो बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन पीली सरसों खाकर नया काम शुरू करें। वृषभ राशि, शनिवार के दिन घी खाकर नया काम शुरू करें तो बेहतर होगा। मिथुन राशि के लोग शुक्रवार को दही खाकर नए काम की शुरुआत करें। कर्क राशि, मंगलवार को गुड़ खाकर नए काम की शुरुआत करना अच्छा होगा। सिंह राशि, रविवार को पान खाकर नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। कन्या राशि, बुधवार के दिन हरी धनिया खाकर नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। तुला राशि, शुक्रवार के दिन दही खाकर नए काम की शुरुआत करनी चाहिए। वृश्चिक राशि, रविवार के दिन जरा सा पान का पत्ता खाकर नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। धनु राशि, बृहस्पतिवार यानी गुरुवार को
पीली मिठाई खाकर नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। मकर राशि, सोमवार के दिन दही और चीनी खा करके नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। कुंभ राशि, शनिवार के दिन नए काम की शुरुआत करें, जरा सा घी खाकर नया काम शुरू करें, अच्छा होगा। मीन राशि, बुधवार के दिन नए काम की शुरुआत करें, जरा सा धनिया खाकर नए काम की शुरुआत करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में समस्या हो सकती है, संतान की चिंता हो सकती है, बेवजह के अपयश से बचाव करें। अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, मानसिक तनाव कम होगा, सेहत अच्छी बनी रहेगी, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, करियर की समस्या हल होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में लाभ होगा, वाहन सावधानी से चलाएंगे। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तो आज हमने बात की नए काम की शुरुआत कब करें और कैसे करें। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। नए कपड़े पहली बार जब भी पहने, बुधवार या शुक्रवार को धारण करें। ऐसा करने से आपको नए कपड़े मिलते रहेंगे और आपके जीवन में आनंद बना रहेगा। अब जान लेते हैं दिनांक 17 जून 2026 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिएगा। इसके बाद भगवान गणेश से कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: When your business grows, communication can get messy fast. Calls come in, texts stack up, and suddenly your team is working in different places without the full picture. That's where Quo comes in. Quo gives your business one shared number, so every call and text lives in one place. Your whole team can see the entire history. Everything stays connected, and nothing falls through the cracks. Money is on the line. Always say hello with Quo. Get started free, plus get 20% off your first 6 months at Quo.com/tunein. That's Quo.com/tunein.
1: Fill your day with podcasts on TuneIn. Whether you're passing the time on your commute, catching up on your workouts, or just tuning in while hanging out, all your favorite podcasts are all here on TuneIn. The Daily.
2: From New York Times, I'm Michael Barbaro. This is The Daily.
1: Smartless.
3: Hey guys, we got a mouthful of English muffin with a glass full of
1: Marketplace.
4: Big three on the program today, or, you know, the big three of the...
1: And more. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
5: खबरें तो समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
1: और आगे बढ़े उससे पहले आइए देख लेते हैं वो तमाम वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिन्हें खूब पसंद किया जा रहा है।
2: बच्चा बच्चा होता है, जानवर का हो या इंसान का। चिंपैंजी के इस छुटको बच्चे को मोटर बाइक पर चढ़ना है। पहले मोटर बाइक पर बैठा ये शख्स उसे सीट पर बैठाता है, फिर उतार देता है। तब शुरू होते हैं इस छुटकू के तमाशे। मानो कोई इंसान का बच्चा सड़क पर नाटक नौटंकी कर तमाशा मचा रहा हो। छुटकू चिंपैंजी के नाज नखरे रोना पीटना देखकर वीडियो देखने वाले हंस हंस कर लोटपोट हो रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बच्चे को देख कौन नहीं मानेगा कि चिंपैंजी वाकई हमारे पूर्वज ही थे। इस वीडियो को देखिए, सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में नन्हे डॉगी की जीजी विशा को देख सलाम कर रहे हैं। ये बेचारा पपी नन्हे फरिश्ते से कम नहीं। अपनी तमाम सीमाओं के बावजूद वो जिंदा रहने और जिंदगी को जैसे है वैसे ही उसका आनंद लेने में खुश है। कहीं न कहीं उसे भी अपनी इस भावना पर मन ही मन गर्व ही होगा। आखिर वो लोगों को जीवन से प्यार करने का संदेश भी तो दे रहा है। अब इस महाशय की कलाकारी देखिए, सड़क पर बाइक चलाते हुए हुनर दिखाने निकले और पीछे से बाइक का चक्का ही निकल गया। अब वो पिछले पहिए के बिना ही बाइक चलाने का कौशल दिखा रहे हैं। वीडियो वायरल हो गया है, यूजर्स हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि बाइकर के इस जुनून से बाइक इतना परेशान थी कि उसका पिछला पहिया नाराजगी से चलते चलते इस्तीफा दे गया।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर।
2: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा, स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया के साथ जुड़ी तमाम पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे हम न्यूज पथ पर, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
2: फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन, कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात, कई वैश्विक मुद्दों पर बातचीत। टाइम मैगजीन की टॉप 100 लिस्ट में शामिल हुई स्मृति मंधाना, इस सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी, महिला क्रिकेट में योगदान के लिए मिला सम्मान। रक्षा मोर्चे पर बढ़ेगी भारत की ताकत, वायुसेना बनाएगी घातक स्वदेशी कामिकेज ड्रोन, 16,000 फीट की ऊंचाई पर भी अचूक वार करने में सक्षम। जम्मू कश्मीर में पवित्र अमरनाथ यात्रा की तैयारियां लगभग पूरी, यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की सेवा के लिए देशभर से पहुंची लंगर कमेटियां, बाबा बर्फानी के लगे जयकारे। राजस्थान में हाईटेक ट्रैफिक सिस्टम का शुभारंभ, जयपुर में एलईडी स्क्रीन पर दिखेगी गाड़ियों से जुड़ी सभी जानकारी, निगरानी के लिए कंट्रोल रूम भी तैयार। आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर, और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है, इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है, और चर्चा सातवें बड़ा मंगल पर उमड़े आस्था के हुजूम की भी।
5: ज्येष्ठ मास के सातवें बड़ा मंगल पर देश भर के हनुमान मंदिरों में उमड़ा आस्था का हुजूम। रामनगरी अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में राम भक्त हनुमान के दर्शन पूजन के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। भीड़ को देखते हुए यहां भक्तों की सुविधा और सुरक्षा की भी पुख्ता व्यवस्था रही। बारी आने पर भक्तों को दर्शन पूजन का सौभाग्य प्राप्त होता रहा। प्रयागराज में संगम के तट पर लेटे हनुमान जी के दर्शन के लिए भी भक्त सुबह से ही पहुँचने लगे, और देखते ही देखते उनकी लंबी कतारें लग गई। इस विशेष अवसर के लिए हनुमान जी की प्रतिमा का फूलों और फलों से भव्य श्रृंगार किया गया और उन्हें 56 भोग भी लगाया गया। मान्यता है कि बड़ा मंगल के दिन बजरंग बली की भक्ति करने से जीवन के सभी दुख, दर्द और संकट दूर हो जाते हैं। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में श्रीनाथ जी की नौका विहार मनोरथ का भव्य आयोजन हुआ। इस नौका यात्रा उत्सव को लेकर मंदिर की दिव्य सजावट की गयी, जिसमे बड़ी संख्या में आम का उपयोग भी किया गया। इस विशेष अवसर के लिए ठाकुर जी को मलमल के हल्के वस्त्र पहनाकर सुगंधित फूलों और चंदन से श्रृंगार किया गया, और फिर ठाकुर जी को जल के बीच विशेष रूप से सुसज्जित नावों में विराजमान कर भव्य झांकी सजाई गई। साथ ही बधाई गीत भी गाए गए। इस अवसर पर ठाकुर जी के विशेष दर्शन कर भक्त मंत्रमुग्ध हो गए। अधिक मास के समापन के अवसर पर इस दिव्य उत्सव का आयोजन हुआ। ओडिशा के पुरी में 16 जुलाई से शुरू होने वाली भव्य जगन्नाथ यात्रा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। कारीगर तीनों पवित्र रथों को तेजी से आकार देने में जुटे हैं। इसके अलावा नाटगोट प्रतिमाओं की पॉलिशिंग का काम भी तेजी से चल रहा है, तो रथ यात्रा के दौरान भगवान की सेवा पूजा के लिए लकड़ी से बने उपकरणों का निर्माण कार्य भी हो रहा है। चित्रकार सेवक तीनों रथों के पार्श देव देवियों की मूर्तियों, सखियों, उलटशुआ, देव देवी आसन फ्रेम आदि पर रंग रोगन करने में लगातार जुटे हैं। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर हर स्तर पर बड़ी तैयारी की जा रही है। 3 जुलाई से शुरू होने वाली इस पवित्र यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं की सुविधा से लेकर उनकी सुरक्षा तक को लेकर तैयारी चल रही है। इसी कड़ी में अनंतनाग पुलिस ने पहलगाम में सुरक्षा और आपातकालीन एजेंसियों के साथ मिलकर तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस दौरान कई संभावित आपात स्थितियों से निपटने को लेकर अभ्यास किया गया, जिनमें सुरक्षा, खतरे, मेडिकल इमरजेंसी, भीड़ प्रबंधन और निकासी जैसी स्थितियां शामिल रहीं। इस मॉक ड्रिल के तहत अलग अलग एजेंसियों के बीच तालमेल, संचार और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली की समीक्षा की गई। ये तस्वीरें ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित फॉरेस्ट पार्क की है, जहां राजा पर्वा की रौनक बिखरी हुई है। पारंपरिक झूले, उत्सव और उल्लास के साथ यहां राजा पर्व की शुरुआत हुई। रंग बिरंगे पारंपरिक परिधानों में सजी महिलाएं झूलों का आनंद लेते बच्चों के साथ ही इस पर्व में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और पान समेत पारंपरिक पकवानों के स्टॉल देखने को मिल रहे हैं। 3 दिवसीय इस उत्सव के साथ ओडिशा में मॉनसून का स्वागत किया गया। ये राजा पर्व नारित्व और धरती माता की उर्वरता का उत्सव है, यानी ये प्रकृति, उर्वरता और परंपरा का अनूठा उत्सव है, जिसमें पूरे राज्य के लोगों की भागीदारी होती है। इस उत्सव को मनाने के लिए पारंपरिक उड़िया व्यंजन तैयार किए जाते हैं, साथ ही विशेष रूप से तैयार किया गया पान इस त्योहार के प्रमुख आकर्षणों में से एक है।
2: और अब बात मॉनसून की। देश के कई हिस्सों में मॉनसून की दस्तक से मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। दिल्ली एनसीआर में बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया है। तपती गर्मी से परेशान लोग बारिश के बाद घरों से मौसम का आनंद लेने के लिए निकले। मौसम विभाग का दावा है कि दिल्ली में 18 जून को एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दस्तक दे रहा है, जिसके बाद दिल्ली वालों को सुकून मिलेगा। वहीं सैटेलाइट तस्वीरें बता रही हैं कि तेजी से बढ़ रहे मॉनसून के बादल अचानक गायब नजर आ रहे हैं।

0: ये भीगी सड़कें इस बात की गवाही दे रही हैं कि दिल्ली में झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया। दिल्ली में आज सुबह कुछ इलाकों में हल्की तो कुछ इलाकों में भारी बारिश हुई, जिससे गर्मी से लोगों को राहत मिली।
1: राजधानी दिल्ली में प्री मानसून बारिश लगातार देखने को मिल रही है। मंगलवार सुबह भी राजधानी दिल्ली का मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है। मंगलवार सुबह से ही आसमान में बादल आते हुए नजर आए, दिन में ही अंधेरा छाता हुआ नजर आया और फिर 9 बजे के बाद बारिश शुरू हुई है। हवा चल रही है और तेज बारिश हो रही है। अभी हम राजधानी दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में हैं और यहाँ पर भी झमाझम बारिश हुई है। यहाँ पर सुबह से आसमान में बादल छा रहे थे, दिन में अंधेरा जैसा मौसम हुआ और फिर बारिश शुरू हुई। अब जाके थोड़ी बारिश कम हुई है, लेकिन यहाँ पर झमाझम बारिश हुई है, जिसकी तस्वीरें आपने देखा है। अगर बात करें मौसम की, तो मौसम विभाग ने भी इसी तरीके के मौसम का अनुमान लगाया है कि मौसम बदलेगा और हवा के साथ बारिश होगी, तो कमोबेश वैसा ही मौसम दिल्ली में होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इस मौसम में आए बदलाव के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है, मौसम सुहाना हो गया है। बता दें गर्मी भी इस बीच पड़ रही है। सोमवार को आंधी तूफान आई थी, लेकिन बीच बीच में तेज धूप भी निकल रही थी, लेकिन मंगलवार सुबह से ही दिल्ली में मौसम बदला है और अच्छा मौसम हो गया है, सुहाना मौसम हो गया है, लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, आप देख सकते हैं तस्वीर, इस तरीके से मौसम बदला है, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं आसमान में जो है बादल एकदम छाए हुए आपको नजर आएंगे, पूरी तरीके से बादलों ने घेर रखा है आसमान को, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरीके से बादल आसमान में छाए हुए हैं उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में मौसम बिल्कुल सुहाना है और आज वर्किंग डे है, तो लोग आवाजाही अपनी कर रहे हैं।
0: राजधानी दिल्ली में सुबह से ही आसमान में घने काले बादल छाए रहे और देखते ही देखते झमाझम बारिश शुरू हो गई। ये तस्वीरें कर्तव्य पथ की हैं, जहां बारिश के बाद मौसम पूरी तरह बदल गया। आसमान में छाए बादलों और बारिश के फुहारों ने राजधानी को एक अलग ही रंग में रंग दिया।
2: देश की राजधानी दिल्ली में मौसम इस वक्त पूरी तरीके से सुहाना हो चुका है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग गर्मी से परेशान थे और वहीं अब लोगों को राहत मिली और लोग इस वक्त आपको एंजॉय करते हुए जो है कर्तव्य पथ पर नजर आ जाएंगे। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये हमेशा ही इसी तरीके से नजर आती है जब बात अच्छे मौसम की हो। हालांकि इंडिया गेट पर हमेशा यूं ही लोगों की भीड़ जो है वो नजर आती है, लेकिन जब भी बारिश होती है या वेदर बहुत इंजॉय करना होता है लोगों को अच्छे मौसम में, तो लोग इसी तरीके से आपको बाहर जरूर नजर आते हैं। लगातार गर्मी भी बहुत बढ़ती जा रही थी, लोग घर से बाहर निकलने से पहले 10 बार सोच रहे थे, लेकिन अब मौसम पूरी तरीके से बदल चुका है।
0: बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई। सुबह के समय जहां गर्मी और उमस लोगों को परेशान कर रही थी, वहीं बारिश के बाद मौसम काफी सुहाना हो गया और लोग घरों से बाहर निकल कर मौसम का आनंद लेते नजर आए।
2: तो मौसम एकदम सुहाना हो चुका है, हर कोई अपने घर से बाहर निकलकर इस वेदर को एंजॉय करना चाहता है। फैमिली भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से आए हैं सबसे पहले?
3: हम पंजाब से आए।
2: अच्छा, पंजाब की बात अगर हो तो पंजाब का मौसम अच्छा है, दिल्ली का मौसम अच्छा है?
3: वैसे तो पंजाब का भी अच्छा रहता है, दिल्ली में ज्यादा गर्मी पड़ती है, लेकिन अभी अच्छा बहुत चल रहा है,
2: अच्छा लग रहा है। लोग जो है सबसे ज्यादा इस वक्त पहाड़ी राज्यों का रुख कर रहे हैं, क्योंकि अच्छा मौसम जो है वो वहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन दिल्ली में रहकर ही आपको वो मौसम मिल गया?
4: यस, आज तो वाकई में बहुत सुहावना मौसम हो गया, हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं।
2: काफी कर रहे हो, कब से बाहर? सुबह से ही, मतलब जब बारिश हो रही थी तब भी आप यहीं थे?
5: हाँ, नहीं, बारिश को मौसम के चलते हम इधर को आए।
2: क्या प्लानिंग है आज की?
5: प्लानिंग पूरा दिन अभी एंजॉय करने का
2: ही है। दिन एंजॉय करना है। अच्छा मौसम जो है वो मिल चुका है। और आपको एक बार पीछे की तस्वीर दिखाऊंगी तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हर कोई जो है इस वक्त इंडिया गेट पर आपको नजर आएगा। और जब भी मौसम अच्छा होता है, बारिश होती है, तो यहाँ भीड़ अक्सर इसी तरीके से लोगों की नजर आती है।
0: तेज हवाएं दिन में कई बार मौसम बदलने का एहसास करा रही हैं। जून के महीने में गर्मी से ये राहत किसी सौगात से कम नहीं। मौसम विभाग की माने तो 18 जून से एक और वेस्टर्न डिस्टरबेंस चलचलाती गर्मी से राहत लेकर आएगा। दिल्ली में मौजूदा वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर खत्म होने के बाद एक बार फिर तापमान बढ़ने का अनुमान है, लेकिन इस बढ़ोतरी के बावजूद तापमान सामान्य से कम ही बना रहेगा।
6: अगर हम एनसीआर दिल्ली की बात करें तो एनसीआर दिल्ली के लिए भी आज के लिए हमारा येलो अलर्ट है और हमारा अनुमान है कि जहां भी जो हवाओं की गति है दिन के किसी समय 50 से 60 किलोमीटर पर आवर्स रह सकती है। इसके बाद एक और वेस्टर्न डिस्टरबेंस नॉर्थ वेस्ट इंडिया को प्रभाव करेगा और 18 तारीख से उसके कारण पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में फिर रेनफॉल थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है। और अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करें तो एनसीआर दिल्ली के लिए हमने फिर से 20 और 21 के लिए लाइट रेनफॉल का फोरकास्ट दे रखा है। और इसके साथ ही क्या हो रहा है कि जैसे ही ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कंटिन्यूज इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो टेम्परेचर्स हैं वो सामान्य से कम है। आज के बाद टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेंगे 2 से 4 डिग्री, फिर भी ये सामान्य के पास ही रहने का अनुमान है।
0: 15 जून को मॉनसून ने आंध्र प्रदेश के शेष हिस्सों, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ क्षेत्रों को कवर किया है। इसके बावजूद उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कई हिस्सों में अभी भी मॉनसून का इंतजार बना हुआ है। मौसम विभाग की माने तो 16 जून से 5 जुलाई के बीच मॉनसून छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान तक पहुंच सकता है।
6: पिछले कुछ दिनों से वेस्टर्न डिस्टरबेंस के प्रभाव से लगातार पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रेनफॉल थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होता रहा, उसके साथ ही कहीं ना कहीं हेलस्टॉर्म एक्टिविटी भी रहा। और अगर हम आज की बात करें, आज एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस है जो नॉर्थ पाकिस्तान के ऊपर है, उसके प्रभाव से प्लेन्स की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के लिए आज के लिए हमारा ऑरेंज अलर्ट है। उसको देने का रीजन यही है कि आज भी जहां रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है, जो हवाओं की गति है वो 50 से 60 किलोमीटर पर आवर्स दिन के किसी समय होने का अनुमान है। और उसके साथ ही राजस्थान में कहीं ना कहीं डस्टम एक्टिविटी भी रह सकती है।
0: हालांकि इस बार मॉनसून की रफ्तार अपेक्षाकृत धीमी बनी हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और अगले 4 से 5 दिनों में कई नए राज्यों तक पहुंच सकता है। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ आशुतोष कुमार, गुड न्यूज टुडे। कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था गैंगटॉक पहुंचा। 20 जून को तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के लिए प्रस्थान करेगा। ये सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों का पहला जत्था गैंगटॉक पहुंच गया है, जहां तीर्थयात्रियों का भव्य स्वागत किया गया। पहले जत्थे में कुल 44 लोग शामिल हैं, जिनमें 32 पुरुष और 12 महिलाएं हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा के भक्तों की सुरक्षा के लिए यात्रा दल के साथ 2 लाइन ऑफिसर और 1 चिकित्सक भी मौजूद हैं। गैंगटॉक से ये यात्री नाथुला मार्ग की ओर रवाना होंगे। 20 जून को पहला जत्था नाथुला दर्रे से होकर तिब्बत स्वायत्त इलाके में प्रवेश लेगा। नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा 2015 में शुरू हुई थी। डोकलाम में तनाव के चलते यात्रा स्थगित करनी पड़ी थी, जिसे 2025 में फिर शुरू कर दिया गया था। अमृतसर कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस करीब 7 महीने बाद एक बार फिर से शुरू हो गई है। इस ट्रेन का पहले भी संचालन किया जा चुका है, लेकिन रूट में बदलाव के चलते आज इसे दोबारा शुरू किया गया। माता वैष्णो देवी कटरा और अमृतसर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का रूट बदल दिया गया है। अब ये जालंधर कैंट के बजाय बटाला, गुरुदासपुर और पठानकोट होकर चलेगी। रेलवे के इस फैसले से पंजाब के कई शहरों के यात्रियों को सीधा फायदा मिलेगा। संशोधित रूट के साथ इस गाड़ी के स्टॉपेज और समय में भी बदलाव किया गया है। जम्मू के चक्र रखवाल और पंजाब के माधोपुर के बीच पुल बनने के चलते 25 नवंबर 2025 को ट्रेन बंद कर दी गई थी। अयोध्या के श्री राम मंदिर में रामलला को दुनिया के सबसे महंगे आम का भोग लगाया गया। ये आम जापान की मियाज़ाकी किस्म का है। इसे एग ऑफ सन के नाम से भी जाना जाता है। खास बात ये है कि इस आम को रामनगरी के एक स्थानीय किसान ने ही उगाया है। उसने पहला पका हुआ फल रामलला को अर्पित किया। परंपराओं के हिसाब से रामलला को आम के साथ तुलसी का पत्ता भी चढ़ाया गया। मियाज़ाकी आम अपनी मिठास, हाई फाइबर और न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए जाना जाता है। ये जापान का फेमस आम है और दुनिया का सबसे महंगा भी। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में मियाज़ाकी किस्म के आम की कीमत 2.5 से 3 लाख रुपए किलो तक है। ऐसे में एक फल की कीमत करीब 1 लाख रुपए तक की है। संगम नगरी प्रयागराज में गंगानगर जोन की सर्विलांस सेल ने 210 लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौटा दी। इस पुलिस सेल ने 63,24,000 कीमत के 210 खोए हुए मोबाइल बरामद किए और इन्हें उनके वास्तविक हकदारों को सौंप दिया। पुलिस लाइन सभागार में मोबाइल स्वामियों को उनके खोए हुए मोबाइल सौंपे गए। महीनों पहले खोए मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे। लोगों ने अपने मोबाइल वापस पाने की उम्मीद तक छोड़ दी थी, लेकिन मोबाइल मिलने के बाद उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मोबाइल लेने आए लोगों ने पुलिस की एक्शन की जमकर तारीफ की। झारखंड के धनबाद की धरती सिर्फ कोयला नहीं बल्कि स्वच्छ ऊर्जा का भी बड़ा केंद्र बनने जा रही है। कोल इंडिया की पहली कोल बेड मीथेन यानी CBM परियोजना झरिया कोल फील्ड में आकार ले रही है। अगले एक साल में यहां बड़े पैमाने पर मीथेन गैस का व्यावसायिक उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। इस परियोजना से हजारों करोड़ रुपए के राजस्व के साथ साथ घरेलू रसोई उद्योग और उर्वरक क्षेत्र को स्वच्छ ईंधन मिलेगा। और अब बात एक ऐसे सरकारी स्कूल की जिसमें दाखिले के लिए पेरेंट्स कतारों में खड़े नजर आए। तेलंगाना के नलकोंडा जिले का एक सरकारी स्कूल इन दिनों अपनी वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के लिए चर्चा में है। इस सरकारी स्कूल में AC, स्मार्ट क्लासरूम, AI आधारित टीचिंग और डिजिटल लैब जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। स्कूल प्रशासन के मुताबिक इसकी लोकप्रियता का आलम यह है कि केवल शहर से ही नहीं बल्कि जिले के दूरदराज इलाकों और पड़ोसी जिलों से भी अभिभावक बच्चों के फॉर्म लेकर पहुंच रहे हैं।

0: इससे पहले स्कूल को देखे तो वो स्कूल में कोई भी हमारा को फैसिलिटी नहीं।
1: इसे आप तेलंगाना के सरकारी स्कूल के पुनर्जन्म की कहानी भी कह सकते हैं। नलगोंडा के बोट्टुगुड़ा में कोमाटी रेड्डी प्रतीक गवर्नमेंट स्कूल में इस साल एडमिशन का ऐसा क्रेज देखा जा रहा है कि यहाँ महज 450 सीटों के लिए करीब 4000 आवेदन आ चुके हैं। इसके चलते इस सरकारी स्कूल में दाखिला मिलना किसी आईआईटी या आईआईएम की सीट मिलने जितना मुश्किल हो गया है।
2: नलगोंडा जिले ने अपना इमेज पूरी तरह, अपनी तस्वीर पूरी तरह बदल दी। वजह है, इस जिले में एक वक्त में जीरो एनरोलमेंट्स, शून्य एनरोलमेंट्स गवर्नमेंट स्कूल में होते थे और इसी के लिए देश भर में यह नलगोंडा जिले का नाम था। लेकिन एक साल के अंदर नलगोंडा जिले में एक कोमट्रिटी प्रतीक गवर्नमेंट स्कूल, यह सरकारी स्कूल में 450 सीट के लिए 4000 एप्लीकेशंस दाखिल किए गए।
1: स्कूल के बाहर का नजारा किसी महंगे और वीआईपी प्राइवेट स्कूल जैसा लग रहा है, जहां सुबह सुबह से ही माता पिता अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूलों की मोटी फीस के मुकाबले उनसे कहीं बेहतर सुविधाओं से लैस ये सरकारी स्कूल बच्चों और अभिभावकों को ज्यादा आकर्षित कर रहा है।
3: पहले हमारा स्कूल जो गवर्नमेंट था उसमें ना फैसिलिटी कुछ भी नहीं थी, वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, ब्लैक बोर्ड था, तो हमारे को ऐसा दिल बोलता था कि कब घर जाएं। इसलिए हमारे कोमटेड्डी वेंकट रेड्डी जो मिनिस्टर है सर, उन्होंने ये स्कूल बनवाया। इसमें डिजिटल बोर्ड है, एसी कैंपस है पूरा, और यहाँ पर ऐसा दिखता है कि कब स्कूल आए, घर जाने का मन ही नहीं करता हमें।
4: स्कूल अच्छा है और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, टीचर्स भी अच्छे हैं।
5: मैं गवर्नमेंट स्कूल में अच्छी पढ़ती हूँ और प्राइवेट स्कूल में अच्छे पढ़ते हैं, बट मैं कुछ अच्छा पढ़ रहे वो क्या बोलते हैं।
1: एडमिशन की लाइन में लगे अभिभावकों का कहना है कि पहले वो अपने बच्चे के लिए नामी गिरामी प्राइवेट स्कूल में भारी भरकम फीस चुका रहे थे, लेकिन जब उन्होंने इस स्कूल के कैंपस और सुविधाओं को देखा तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कई प्राइवेट स्कूलों से बेहतर लगा।
6: सर, इससे पहले हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में थे सर, फिर वहाँ फीस, बुक्स सब बहुत ज्यादा हो जाता सर, तो परेशानी हो रहा था बच्चों को पढ़ाना लिखाना। तो ये स्कूल बना है सर, ये बहुत अच्छा बना है स्कूल, यहाँ कंप्यूटर एजुकेशन है, फिर एसी कैंपस है, प्राइवेट स्कूल के बराबर ये स्कूल बना है, इस लेवल के साल में ये स्कूल में एडमिशन करे।
1: दरअसल साल भर पहले इस स्कूल में बुनियादी सुविधाएं तक नहीं थी। पिछले साल तक ये स्कूल बिना किसी पक्की इमारत के चल रहा था और यहाँ करीब 200 छात्र पढ़ते थे, लेकिन अब ये एक स्मार्ट स्कूल में तब्दील हो चुका है। लिफ्ट से लेकर कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासरूम, एआई बेस्ड लर्निंग, डिजिटल लैब और इंडोर स्पोर्ट्स तक की सुविधाएं हैं। एआई की क्लास में सुंदर पिचाई की तस्वीर बच्चों को इंस्पायर करती है, तो वहीं स्पोर्ट्स एक्टिविटी रूम में सुनील छेत्री, पीवी सिंधु और विराट कोहली आइकन है।
2: एसी क्लासरूम्स है बच्चों के लिए, रेप्यूटेड यूनिफॉर्म यहाँ पर बताई जाती है और साथ ही साथ मिड डे मील्स, ब्रेकफास्ट मील्स यहाँ पर लाए गए हैं, जहाँ पर बच्चों को मुफ्त खाना दिया जाता है, यूनिफॉर्म मुफ्त में दिया जाता है, किताबें और बैग मुफ्त में दी जाती हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब शिक्षा की बात हो तो एआई लर्निंग क्लासेस, स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स, एसी क्लासरूम, साथ में मॉडर्न बेंचेस के साथ एक मुफ्त में इस तरीके का अनुभव यहाँ के सरकारी स्कूल के बच्चों को देखने को मिलता है।
1: कुछ समय पहले तक नलगोंडा की गिनती उन जिलों में होती थी जहाँ सरकारी स्कूलों में बहुत कम या बिल्कुल भी एडमिशन नहीं होते थे, लेकिन इस स्कूल ने तस्वीर बदल दी है और अब ये स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर और पढ़ाई के माहौल के मामले में बड़े बड़े कॉर्पोरेट स्कूलों को टक्कर दे रहा है। तेलंगाना के नलगोंडा से अब्दुल बशीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: पद पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा असर आपकी जेब, आपकी आमदनी पर होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
8: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव खत्म होने से कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन भी भारतीय शेयर बाजार में उछाल देखने को मिला। मंगलवार को 30 शेयर वाला बीएसई सेंसेक्स 544 अंकों की बढ़त के साथ 76,808 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 135 अंकों की बढ़त के साथ 23,989 पर बंद हुआ। मंगलवार को गोल्ड की कीमतों में मामूली गिरावट देखने को मिली। सराफा व्यापारियों के मुताबिक दिल्ली में 99.9% शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने का भाव 200 रुपए गिरकर 1,59,200 रुपए पर पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 2,60,700 रुपए ही रही। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें गिरने और वेस्ट एशिया में तनाव खत्म होने से 16 जून को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में थोड़ी मजबूती देखने को मिली। मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 5 पैसे मजबूत होकर 94.53 के स्तर पर बंद हुआ।
7: गदर के 25 साल पूरे होने पर फैंस को सनी देओल ने कहा शुक्रिया। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले फिल्मी मोड पर।
9: फिल्म गदर एक प्रेम कथा के 25 साल पूरे होने पर सनी देओल ने उनके निभाए गए तारा सिंह के किरदार को ढेर सारा प्यार देने के लिए फैंस का शुक्रिया अदा किया। साल 2001 में इस फिल्म में तारा सिंह बनकर सनी देओल बड़े पर्दे पर छा गए थे। 15 जून को फिल्म गदर के रिलीज होने के 25 साल पूरे हो गए। फिल्म गदर का क्रेज लोगों में इतना ज्यादा था कि इसका एक उदाहरण साल 2023 में भी देखने को मिला, जब इस फिल्म के अगले भाग यानी गदर 2 को भी बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता मिली। अब निर्देशक अनिल शर्मा इस फिल्म के तीसरे पार्ट पर काम कर रहे हैं। करण जौहर अब साउथ सिनेमा में फिल्म निर्माण की तरफ भी बढ़ चुके हैं। इस कड़ी में उन्होंने पहला कदम मलयालम सिनेमा की तरफ बढ़ाया है। करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले फिल्म ओडियन द एज ऑफ इल्यूजन के निर्माण का ऐलान हो चुका है। इस फिल्म का पोस्टर भी शेयर किया जा चुका है। धर्मा प्रोडक्शन ने 19वीं सदी के केरल की लोक कथाओं और सांस्कृतिक पौराणिक कथाओं पर आधारित इस फिल्म के लिए पृथ्वीराज प्रोडक्शंस और निर्देशक राहुल के साथ हाथ मिलाया है। फिल्म ओडियन में पृथ्वीराज सुकुमारन नजर आएंगे, जिनमें उनके साथ मंजू वॉरियर अहम भूमिका में नजर आएंगी। राजकुमार हिरानी जियो स्टारर पर प्रीतम और पेड्रो नाम का वेब शो ला रहे हैं, जिसमें उनके बेटे वीर हिरानी अपना एक्टिंग डेब्यू करते नजर आएंगे। अरशद वारसी और वीर हिरानी के इस शो का ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है। सीरीज की ये कहानी गोवा पर आधारित है, जहां अरशद वारसी यानी पेड्रो नाम के पुलिस ऑफिसर इंजीनियर के रूप में प्रीतम यानी वीर हिरानी की जोड़ी धमाल करती हुई नजर आ रही है। प्रीतम और पेड्रो शो 3 जुलाई से स्ट्रीम होना शुरू होगा। इसमें मोना सिंह, बमन ईरानी और विक्रांत मैसी जैसे कलाकार भी नजर आने वाले हैं।
7: न्यूज वक्त में हम खबरों के सफर को आगे लिए चले, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
11: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
7: फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन, कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात, कई वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत। टाइम मैगजीन की टॉप 100 लिस्ट में शामिल हुई स्मृति मंधाना, इस सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी, महिला क्रिकेट में योगदान के लिए मिला सम्मान। रक्षा मोर्चे पर बढ़ेगी भारत की ताकत, वायुसेना बनाएगी घातक स्वदेशी कामिकेज ड्रोन, 16,000 फीट की ऊंचाई पर भी अचूक वार करने में सक्षम। न्यूज पथ पर खबरों के सफर को आगे बढ़ाया, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
12: सोशल मीडिया पर इस भूखी ओपोसम और उसकी नाराजगी का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। भूख से बिलबिलाई ये ओपोसम गुस्से में पोल पर चढ़ गई। अब रूठ गई तो मनाना पड़ेगा। तो अब इन रूठी महोदया के पास केला लाया गया। इन्हें तब भी भरोसा नहीं था कि ये उन्हें खाने को दिया जा रहा है और मनाया जा रहा है। जैसे ही केले का ग्रास मुंह में गया, तब कहीं जाकर चेहरे पर शांति आई, मानो रूठी हुई बीवी की तरह कह रही हो कि मैं कोई गुस्सा थोड़ी थी, मैं तो बस भूखी थी। सिब्लिंग्स आपस में लड़े नहीं तो वो सिब्लिंग कैसे? वो चाहे जानवरों के बच्चे हों या इंसान के बच्चे, एक दूसरे से लड़े बिना भाई बहनों को चैन कहाँ आता है? अब इन वायरल तस्वीरों में आपस में लड़ रहे डियर सिब्लिंग्स को देखिए जरा। बीच सड़क पर एक दूसरे से भिड़ गए हैं। बीच सड़क पर इन भिड़ते बच्चों को माँ भालू देख रही है। वो धीरे धीरे उनकी तरफ जाती है और उन्हें लड़ते लड़ते ही बीच सड़क से कोने तक ले जाती है, मानो कह रही हो जितना लड़ना है यहाँ लड़ो, बीच सड़क पर मत लड़ो। बच्चे की मोबाइल की आदत छुड़ाने के लिए एक बकरी बच्ची का मन बहलाने और उसे डाइवर्ट करने के लिए लाई गई, लेकिन इस दाव के उल्टे पड़ने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। जब लोगों ने देखा कि अब तो बच्ची के साथ बकरी का भविष्य भी खराब ही हो गया है, क्योंकि बच्ची ने मोबाइल की लत छोड़ी नहीं बल्कि बकरी को भी लत लगा दी। अब ऐसी तस्वीर देख कौन नहीं मुस्कुराएगा और कौन नहीं कहेगा कि बच्चे मन के सच्चे। यूं ही जापानियों को सिविक सेंस में दुनिया में सबसे अव्वल माना जाता है। आप अगर ये बात नहीं जानते तो ये वायरल तस्वीरें देखिए, आप खुद इसको सलाम करेंगे। वीडियो में देखिए जरा, यहाँ हुए एक स्टेडियम में मैच के बाद फैंस यहाँ फैले कचरे को अपने हाथों से उठा रहे हैं। बच्चे हो या युवा, कचरा उठाना यहाँ छोटा काम नहीं माना जाता। इतना ही नहीं, जब फैन से इसकी वजह पूछी गई तो वो कहने लगे कि ये आदर का मामला है, हम खिलाड़ियों का, स्टेडियम का और खेल का सम्मान करते हैं, इसलिए हम स्टेडियम को गंदा नहीं छोड़ सकते हैं। है ना सम्मान का संदेश। इन तस्वीरों को देखिए जरा, इन्हें देख आप खुद समझ जाएंगे कि कभी कभी हमें जिनसे खतरा होता है वही हमें सबसे ज्यादा सुरक्षित लगते हैं। वीडियो में देख रहे बत्तख के बच्चों का एक झुंड अपनी माँ से बिछड़ गया, जहाँ उनकी मुलाकात इस गोल्डन रिट्रीवल पिल्ले से हुई। बत्तख के बच्चे इस पिल्ले के साथ सुरक्षित महसूस कर रहे थे, तो वो जब इन्हें सूंघ कर जाने लगा तो वो भी उसी के पीछे हो लिए।
7: न्यूज पद के सफर भी अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी की। आईपीएल में कामयाबी की बुलंदियां छूने वाले वैभव सूर्यवंशी अब क्रिकेट के मैदान पर झगड़े को लेकर चर्चा में। वैभव सूर्यवंशी फिलहाल श्रीलंका में चल रही ट्राई सीरीज में इंडिया ए से खेल रहे हैं। दामुला में सोमवार को इस ट्राई सीरीज का चौथा मैच विवादों में घिर गया। इस मुकाबले में श्रीलंका ए ने तिलक वर्मा की कप्तानी वाली इंडिया ए को सुपर ओवर में हरा दिया। इस मैच में वैभव सूर्यवंशी बल्ले से कोई खास कमाल नहीं कर पाए, लेकिन श्रीलंकाई खिलाड़ियों से भिड़ने के कारण वो चर्चा में आ गए। सुपर ओवर में श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 16 रन बनाए थे, जवाब में भारतीय टीम 9 रन ही बना सकी। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि सुपर ओवर खत्म होने के बाद श्रीलंका के ऑलराउंडर विशेन ने वैभव सूर्यवंशी से कहा, मैच खत्म हो गया, अब घर जा। इस बात पर वैभव सूर्यवंशी भड़क गए और श्रीलंकाई खिलाड़ी से जा भिड़े। माहौल इतना गर्मा गया कि दोनों के बीच शारीरिक रूप से झड़प भी हुई। पहले सूर्यांश शेडगे और श्रीलंकाई खिलाड़ियों के बीच शब्दों के बाण चले, लेकिन जब वैभव सूर्यवंशी पास आए तो उन्होंने श्रीलंका के एक खिलाड़ी को धक्का दिया। श्रीलंका टीम के अन्य खिलाड़ियों ने बीच बचाव किया। वहीं जब वैभव डगआउट की तरफ जा रहे थे तब भी उन्होंने हाथ से इशारा करके कुछ कहा। श्रीलंका में वैभव सूर्यवंशी के झगड़े को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कई क्रिकेट फैंस श्रीलंकाई खिलाड़ियों के उकसावे को इस भिड़ंत के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वहीं कुछ यूजर्स ने वैभव को आगाह करते हुए रिएक्ट किया है कि उन्हें समय के साथ ट्रोल्स को इग्नोर करना सीखना होगा, वरना उनकी इमेज खराब होने का खतरा हो सकता है। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं इस झगड़े के बारे में दरअसल हुआ क्या था। विक्रांत, सबसे पहले तो आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर मैदान पर ऐसा क्या हुआ जो कि वैभव सूर्यवंशी अपना आपा खो बैठे और विरोधी टीम के खिलाड़ी के साथ धक्का मुक्की की नौबत तक आ गई और साथ ही इंडिया ए टीम के कप्तान तिलक वर्मा भी मैच के दौरान विवाद करते हुए नजर आए।
13: ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था और देखिए इस इंसिडेंट को 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और मैं अब तक डाइजेस्ट नहीं कर पाया हूँ कि कल हुआ क्या था। हम जानते हैं कि प्रोवोकेशन श्रीलंकन तरफ से हुई होगी और ये हम जानते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट जिस तरह से खेली जाती है, खिलाड़ी एक दूसरे को स्लेज करते हैं और वैभव सूर्यवंशी को सामने वाली टीमें टारगेट करेंगी। ये तो इंडिया ए श्रीलंका ए का मुकाबला है, कल को वो जब आयरलैंड जाएंगे या इंग्लैंड जाएंगे या उसके बाद भारत के लिए खेलेंगे, टीमें उनको टारगेट करेंगी। बिकॉज एक बात होती है ना, 15 साल में आपकी गेम कैसी है, दूसरा होता है कि 15 साल में आप मेंटली कितने स्ट्रांग हैं। भाई आप मेंटली स्ट्रांग हैं तो ही आप इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन कल ना ऐसा लगा वैभव सूर्यवंशी को देखकर कि यार एक इंटरनेशनल प्लेयर इस तरह से रिएक्ट नहीं करता। हुआ क्या एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन जब इंडिया मैच हार गया, ए फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि आप सिर्फ सुपर ओवर की आखिरी गेंद छोड़ दे, उससे पहले अगर आप 20-25 मिनट देखे बहुत लड़ाइयाँ हो रही थी। अब एंड वाला जो कहते हैं ना कि ब्लो, वो था वैभव सूर्यवंशी के नाम, लेकिन उससे पहले तिलक वर्मा जो आपके कप्तान हैं वो उलझ रहे थे, बार बार अंपायरों के साथ उलझ रहे थे। और मुझे तो ये लगता है कि तिलक वर्मा के बिहेवियर को देखकर शायद मुझे ज़्यादा बुरा लगा। इनफैक्ट वो कप्तान है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, वर्ल्ड कप चैंपियन टीम का हिस्सा थे, तो शायद मैं उनसे बेहतर उम्मीद करता हूँ। और एक कप्तान से तो ये उम्मीद की जाती है कि वो अपनी टीम को लीड करे, मैं उस कप्तान से ये उम्मीद करता हूँ कि वैभव सूर्यवंशी को वो बल्कि समझाए, ना कि आप जो पिछले 25-30 मिनट से चल रहा था, जैसे होता ना कि जमुना पार एक क्लब का मैच चल रहा है, आप भी अंपायर से लड़ रहे हो, वो जो फील्डर है वो भी आपको गाली दे रहे हैं, आप भी जाके घुसुड़मुक्की के लिए तैयार हो रहे हो, तो ये सही नहीं होता। लोग ना अब क्या कह रहे हैं, 15 साल का बच्चा है, तुम कौन होते हो मॉरल पुलिसिंग करने वाले। बात ये नहीं है, जब वो क्रिकेट इतनी ज़बरदस्त खेल रहे थे तब आप नहीं कहते थे कि यार ये तो बेचारा 15 साल का बच्चा है, तब आप कहते थे ही इज़ अ मैन, ही इज़ रेडी फॉर द वर्ल्ड। और आज जब आपको लगता है कि उस बिहेवियर के कारण, उस आपा खोने के कारण उनकी गेम अफेक्ट होगी, तो आप उसको अभी से रोकें। ये चीज़ें जो हैं ये अंडर 19 लेवल पे चलती हैं, ऊपर जाकर क्या होगा कि सामने वाली टीमें समझ जाएंगी कि इनको अगर आप टारगेट करेंगे, जहनी तौर पर स्लेज करेंगे, गाली देंगे, तो भैया उस तरह से आपा खो बैठेंगे। अब ये इंटरनेशनल मैच होता, अगर ये इंटरनेशनल मैच होता तो बैन लग जाता। आप ये याद रखिएगा, ये फिजिकल कॉन्टैक्ट था, ये धक्का मुक्की हुई है। मैंने आपको क्या बोला, मैं अगर आपको स्लेज कर रहा हूँ वो नियमों के तहत सही है, अनलेस एंड अंटिल मैं रेशियल विलिफिकेशन यानी कि मैं नस्ल भेदी टिप्पणी कर रहा हूँ, अगर मैं नस्ल भेदी टिप्पणी कर रहा हूँ तो फिर वो ICC कोड ऑफ कॉन्डक्ट में आती है। उसके अलावा स्लेजिंग चलती रहती है, बातें चलती रहती हैं। और हाँ, अगर आपने धक्का दे दिया, आपने फिजिकल कॉन्टैक्ट कर लिया, तो बैन तो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में लग जाता है।
7: और अब रुख करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज बात देश के उन बेटियों की जो कि अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने जा रही हैं। इस चैंपियनशिप की टीम के चयन के लिए हरियाणा में ट्रायल हुआ। इस ट्रायल में चुनी गई देश की 10 पहलवान बेटियों में 6 हरियाणा की हैं, बाकी 4 में 2 रेसलर दिल्ली और एक एक राजस्थान और महाराष्ट्र से हैं।

0: से ही जैसे मेरे भाई हैं बड़े, वो जाते थे तो उन्होंने।
1: हरियाणा के बहालगढ़ स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग टीम के चयन के लिए ट्रायल आयोजित हुआ, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों की लड़कियां शामिल हुई जो कुश्ती के अपने हुनर का प्रदर्शन करती नजर आई।
2: इसमें लगभग 150 खिलाड़ियों ने भाग लिया है, 10 वजन इसमें सिलेक्ट करने हैं, 10 लड़कियों का चयन होना है और अजरबैजान बाकू में ये खेलने के लिए अगले महीने।
1: इस ट्रायल में प्रदर्शन के आधार पर 10 महिला पहलवानों का चयन किया गया। खास बात ये है कि इसमें भी हरियाणा की बेटियों का दबदबा रहा। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए चुनी गई 10 महिला पहलवानों में 6 हरियाणा की ही हैं।
3: खिलाड़ी तो बहुत हैं, लेकिन टोटल जो जाएंगे बाहर जाएंगे तो 10 खिलाड़ी जाएंगे।
4: किस किस कैटेगरी में सर?
3: ये सब कैटेगरी में है, जैसे 53 में है, 57 में है, सारी कैटेगरी जो है उसमें।
4: ये ट्रायल सिर्फ लड़कियों की है या बॉयज की भी है?
3: नहीं, सिर्फ लड़कियों की।
1: इस खेल की बेहतरी के लिए भारतीय कुश्ती संघ की ओर से लगातार कोशिशें की जा रही है। चयन प्रक्रिया में भी कुछ बदलाव किए गए हैं जिसका फायदा खिलाड़ियों को मिल रहा है।
5: तो फेडरेशन ने जो सिस्टम निकाला है ना, ये ओवर एज निकालने का, उस सिस्टम के आधार पे नए बच्चों को मौका मिल जाएगा। हमारे अभी तक जितना भी देखा है फेडरेशन ने, पहलवान जो है एक मतलब कि जूनियर और कैडेट खेल के खत्म हो जाते हैं, और जो जितना भी अपना स्टेमिना है वो अंडर 17 और अंडर 20 में ख़राब कर देते हैं, सीनियर में वो आ नहीं पाते हैं। तो लगभग अभी ये जो नया सिस्टम जो ओवर एज को लेकर फेडरेशन ने कराया, उससे लगता है कि पहलवान जो ना अब हमारे को सीनियर में मेडल देंगे। ये जो आज ये बच्चे खेल रहे हैं ना, ये सीनियर में आपको आने वाले नहीं 28 महीने 32 ओलंपिक में आपको ये बच्चे मेडल देंगे।
1: ट्रायल में चुनी गई लड़कियां अब अजरबैजान की राजधानी बाकू में आयोजित होने वाली अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में अलग अलग भार वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। ये चैंपियनशिप 27 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित होगी। सोनीपत से पवन राठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ताइवान में ताओ आदिवासियों ने लकड़ी की पारंपरिक नाव से फिलीपींस के लिए शुरू की ऐतिहासिक समुद्री यात्रा। आइए सीधे आपको ले चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश दुनिया की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। नीदरलैंड्स के खिलाफ अपनी फुटबॉल टीम का मैच ड्रॉ होने पर जापानी फैंस खुशी से झूम उठे। जश्न मनाने के लिए वो टोक्यो के सबसे मशहूर और बिजी चौराहे शिबुया क्रॉसिंग पर जमा हुए, लेकिन सिर्फ 40 सेकंड के लिए। जैसे ही सिग्नल लाल हुआ, ठीक उसी सेकंड सब ने जश्न रोका और बेहद अनुशासन के साथ वापस फुटपाथ पर लौट आए ताकि गाड़ियों का रास्ता ना रुके। यानी जब तक पैदल चलने वालों के लिए ट्रैफिक लाइट हरी रही, तब तक सड़क के बीचों बीच फैंस नाचते गाते रहे। लाल होते ही जश्न पर फुल स्टॉप। दुनिया जापानी फुटबॉल फैंस की तारीफ कर रही है। ताइवान के ताओ आदिवासियों ने लकड़ी की पारंपरिक नाव से फिलीपींस के लिए ऐतिहासिक समुद्री यात्रा शुरू की है, जिसका मकसद सैकड़ों साल पुराने सांस्कृतिक और समुद्री संबंधों को फिर से जीवित करना है। इस 20 सीटों वाली ओवायन नाव को ऑर्किड द्वीप के 6 समुदायों ने मिलकर बनाया है। 24 घंटे की इस समुद्री यात्रा में 7 लोग बारी बारी से चप्पू चलाएंगे। ये कैंपेन दोनों समुदायों के बीच खोए हुए संपर्क को फिर से जोड़ने का प्रयास है। स्थानीय लोगों ने इस समुद्री यात्रा को एक भावनात्मक और ऐतिहासिक कदम बताया और इसका स्वागत किया। चीन में 600 साल पुरानी ओपेरा कला की धमाकेदार वापसी हुई। यहां हिट टीवी ड्रामा ने किंग कियान ओपेरा को एक बार फिर सुपर हिट बना दिया। यहां के शियान की बालकनीज पर अचानक से इन ओपेरा शोज की प्रस्तुति होने लगी है, जिसके कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा में चीन दर्शकों का दिल जीत लिया है। चीन में तैयार हो गया है एआई लैब का भविष्य, क्योंकि बीजिंग में एआई एक पूरी लैब चला रहा है जिसमें इंसान सिर्फ निगरानी कर रहे हैं। इस लाइट्स आउट लैब में बिना स्टाफ के एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। लैब में एआई खुद रिसर्च करता है और खुद ही न

0: नतीजे निकालते हैं। लैब में ना तो कोई स्क्रीन है और ना ही कोई LCD डिस्प्ले। यहाँ AI तमाम प्रक्रियाएं खुद सुधारता है और दक्षता बढ़ाता है। ब्रेक प्लाजा पर हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ही मजा आएगा। ब्रेक के बाद लिए चलेंगे खेल चक्कर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी।
2: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you non-stop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर। जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच।
0: स्मृति मंधाना के नाम जुड़ा हिस्टोरिकल अचीवमेंट, तो वहीं राजस्थान के धौलपुर के बेटे ने बनाई अंडर 19 टीम में जगह। खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले खेल चक्कर।
8: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ओपनर बल्लेबाज स्मृति मंधाना के नाम के साथ एक ऐतिहासिक अचीवमेंट जुड़ गया है। टाइम मैगजीन ने अपनी टॉप 100 लिस्ट में स्मृति मंधाना को शामिल किया है। हैरानी की बात यह है कि इस लिस्ट में विराट और रोहित जैसे स्टार प्लेयर्स गायब हैं। इस लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी है और उनका नाम है स्मृति मंधाना, जो लिस्ट में 41वें नंबर पर है। टाइम मैगजीन की इस लिस्ट में प्लेयर्स, कोच और निवेशक तक शामिल हैं। इस लिस्ट में क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लायनल मेसी और कार्लोस अल्कारेज जैसे स्टार्स शामिल हैं। वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप में कल हरमनप्रीत की टीम का मुकाबला नीदरलैंड्स की महिला टीम से होगा। महिला टी20 विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ 64 रनों की शानदार जीत के बाद भारतीय टीम का लक्ष्य अब कल खेले जाने वाले अपने अगले मुकाबले में नीदरलैंड्स को हराना होगा। लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में कल भारत अफगानिस्तान के बीच वनडे मैच खेला जाएगा। ये मैच डे नाइट होगा। कल दोपहर 1 बजे टॉस के बाद लगभग 1:30 बजे मैच शुरू होगा। 3 मैचों की सीरीज का ये दूसरा मुकाबला है, जिसमें पहले मैच में 7 विकेट से जीत हासिल कर टीम इंडिया 1-0 से आगे है। अब कल के मैच को जीत कर भारतीय टीम का सीरीज में अजेय बढ़त बनाने पर फोकस रहेगा। राजस्थान के धौलपुर के प्रतिभाशाली क्रिकेटर रजत बघेल का भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम में चयन हुआ है। रजत को श्रीलंका दौरे के लिए चुनी भारतीय टीम में शामिल किया गया है। भारतीय अंडर 19 टीम 6 जुलाई से श्रीलंका में एक दिवसीय मुकाबले खेलेगी। रजत के चयन की सूचना मिलने के बाद से शहर में और खेल जगत में खुशी है। रजत के साथी खिलाड़ियों, खेल प्रेमियों और स्थानीय लोगों ने इसे धौलपुर के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। रजत इससे पहले राजस्थान अंडर 16 टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वे 2 बार 13 शतक जड़कर सुर्खियों में आ चुके हैं। उनकी शानदार बल्लेबाजी और निरंतर प्रदर्शन ने चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा और उन्हें इंडियन अंडर 19 टीम में जगह मिली। सरेना और वीनस विलियम्स विंबलडन में अपनी डबल्स पार्टनरशिप फिर से शुरू कर रही हैं। ऑल इंग्लैंड क्लब ने आज दोनों को ग्रास कोर्ट ग्रैंड स्लैम के लिए डबल्स वाइल्ड कार्ड का न्योता दिया है। ये टूर्नामेंट 2 हफ्ते से भी कम समय में शुरू होने वाला है। विलियम्स बहनों ने साथ मिलकर डबल्स में 14 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं, जिनमें से 6 खिताब दोनों ने विंबलडन में जीते। बहनों की इस जोड़ी ने पहला विंबलडन खिताब 2000 में और आखिरी विंबलडन खिताब 2016 में जीता था।
0: के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ।
2: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all of your favorite music, news, sports, and more all in one place. Hear all of the audio you love, whether you're a music lover, interested in what's going on around the world.
9: We know that Hamas has agreed to a deal at some point, and
2: or want to catch your team's live play-by-play. It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे।

0: Hi, everyone. Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
1: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
2: Looking for an app to hear all of your favorite music, news, sports, and more? We've got all of your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations like K Buena, ESPN Radio.
3: How they looked after game one.
4: I mean, they were frustrated.
2: The Daily.
5: I'm Sabrina Tavernisi, and this is The Daily from inside the Democratic National Convention Hall.
2: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
6: Good news today बनाता है.
7: Good news today.
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
11: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
10: अविश्वास में विश्वास बसता है
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
7: गुड न्यूज टुडे.
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
11: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है।
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
13: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. Sage University, transforming your passion into profession. TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
14: फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन, कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात, कई वैश्विक मुद्दों पर बातचीत। टाइम मैगजीन की टॉप 100 लिस्ट में शामिल हुई स्मृति मंधाना, इस सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी, महिला क्रिकेट में योगदान के लिए मिला सम्मान। रक्षा मोर्चे पर बढ़ेगी भारत की ताकत, वायुसेना बनाएगी घातक स्वदेशी कामिकेज ड्रोन, 16,000 फीट की ऊंचाई पर भी अचूक वार करने में सक्षम। जम्मू कश्मीर में पवित्र अमरनाथ यात्रा की तैयारियां लगभग पूरी, यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की सेवा के लिए देशभर से पहुंची लंगर कमेटियां, बाबा बर्फानी के लगे जयकारे। वाराणसी में तेजी से आकार ले रहा यूपी का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, शिव काशी और गंगा की थीम पर बनी आकर्षण का केंद्र, दिसंबर तक पूरा होगा निर्माण।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं शिव शंभु कैलाशपति की, जिनके दर्शन के लिए शिव भक्तों का पहला जत्था नाथुला दर्रे के रास्ते आगे बढ़ रहा है। तिब्बत पहुंचकर 20 जून से कैलाश की यात्रा शुरू हो जाएगी। इस साल कैलाश यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का चयन कैसे हुआ, यात्रा के लिए क्या इंतजाम है, आपको विस्तार से बताएंगे। इसके बाद बात होगी बाबा बर्फानी की। अमरनाथ यात्रा भी जल्दी ही शुरू होने वाली है। इसके लिए घाटी में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल और पुलिस की तैनाती है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए हर एजेंसी मुस्तैद है और जवान मॉक ड्रिल के जरिए अपनी तैयारी को पुख्ता बना रहे हैं। आपको घाटी में सुरक्षा का अभेद्य सुरक्षा चक्र दिखाएंगे। इस साल जब शिव भक्त यात्रा के लिए जम्मू पहुंचेंगे तो उनको ताजमहल समेत 7 अजूबे नजर आएंगे। ये कैसे मुमकिन हुआ, आपको बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा से, जिसके लिए शिव भक्तों का पहला जत्था सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक से नाथुला दर्रा के जरिए आगे बढ़ रहा है। तिब्बत पहुंचकर 20 जून से कैलाश की यात्रा विधिवत शुरू हो जाएगी। कैलाश की मुश्किल यात्रा के लिए इस साल हजारों लोगों ने आवेदन किया, पर लॉटरी कुछ भाग्यशाली लोगों की ही लगी। जिनका नाम नहीं आया वो निराश नहीं, पर जो इस साल कैलाश की यात्रा करने वाले हैं वो आनंद से भर गए हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं कैलाश के रास्ते पर मौजूद शिव भक्तों से।

0: आमल धवल पर्वत के इसी शिखर पर शिव का वास है। यही पावन पुण्य कैलाश है। बर्फ से ढके पर्वतों के बीच दूर से ही दिखते हैं महादेव। तप में लीन, शांत और निश्चल, साक्षात एक विराट शिवलिंग की आकृति में। सनातन परंपरा में कैलाश मानसरोवर को मोक्ष का प्रवेश द्वार माना जाता है, और ये ठीक भी है क्योंकि मान्यता है कि यहाँ कंकर कंकर में शंकर हैं, जिनके दर्शन की मनोकामना लिए शिव भक्तों का पहला जत्था नाथुला दर्रे के रास्ते आगे बढ़ चुका है।
1: कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 का यात्रियों का पहला जत्था सिक्किम पहुंच चुका है। सिक्किम से नाथुला दर्रे के रास्ते ये तिब्बत पहुंचेगा और उसके बाद ये यात्रा आगे बढ़ेगी। ये पहली बार है जब एक लंबे अंतराल के बाद ये यात्रा शुरू हो रही है और दो अलग अलग पासेज यानी नाथुला और लिपुलेख के रास्ते ये यात्रा आगे बढ़ेगी। पहले बैच की अगर हम बात करें तो इसमें 44 यात्री हैं, जिसमें 32 पुरुष और 12 महिलाएं हैं, और इन पूरे यात्रियों की सुरक्षा का खास इंतजाम किया गया है। इनकी टीम में लगातार डॉक्टर सक्रिय रहते हैं। इसके अलावा लाइजन ऑफिसर्स की टीम भी इन यात्रियों के साथ मौजूद रहती है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने पहले जत्थे को दिल्ली से रवाना करते हुए तमाम तैयारियों के साथ इस बात की भी जानकारी दी कि जल्द ही दूसरा बैच जो नाथुला दर्रे के बाद लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा करेगा उसको भी रवाना किया जाएगा।
0: चीन के साथ तनातनी के लंबे अंतराल में कैलाश की यात्रा बंद रही, पर पिछले साल जब रिश्तों पर जमी बर्फ पिघली तब एक बार फिर से कैलाश के ऊंचे शिखर तक जाने की राह बनी। इस साल भी शिव के धाम जाने के लिए लोगों में जबरदस्त जोश है, पर यात्रा लंबी है और बेहद कठिन थी, इसीलिए भाग्यशाली यात्रियों का चयन लकी ड्रॉ से होता है। विदेश मंत्री की मौजूदगी में कंप्यूटर आधारित ड्रॉ प्रक्रिया से नाथुला दर्रे के रास्ते जाने के लिए नाम चुने गए। लिस्ट में जिनका नाम आया वो गदगद है, जो रह गए वो भी निराश नहीं है।
2: कि मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा आयोजित मानसरोवर यात्रा में हमारा प्रथम बैच में सिलेक्शन हुआ है, और करीब 15 साल से हमारे ड्रीम था कि हम कैलाश मानसरोवर यात्रा को करें, मगर शायद बाबा का बुलावा नहीं आया था। इस बार हमें सौभाग्य से मौका मिला है और हम लोग बहुत ईगरली इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें शुरुआत में ट्रैकिंग का मौका मिले और चैलेंजिंग एनवायरनमेंट जो है उसको हम पूरा करें। हम सिक्किम टूरिज्म के लिए और सिक्किम गवर्नमेंट के लिए बहुत बहुत आभारी हैं, क्योंकि जिस प्रकार का इन्होंने हमारे को एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट दिया है और हर एक स्टेप पे हमारे को कितना जितना वॉर्म्थ से हमें रिसीव किया गया और हमारे को लुक आफ्टर किया गया, उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं।
0: दिल्ली से चलकर यात्रियों का पहला जत्था सोमवार को सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक पहुंच गया। भारत चीन सीमा पर मौजूद ऐतिहासिक नाथुला दर्रे के रास्ते इस पवित्र यात्रा में शामिल सभी 44 श्रद्धालु उत्साह और भक्ति से भरपूर हैं। इस पहले दल में 32 पुरुष और 12 महिलाएं हैं, जिनकी आयु 18 से 70 वर्ष के बीच है। बैच के साथ दो लाइन ऑफिसर और एक डॉक्टर भी मौजूद है, जो कठिन रास्तों पर यात्रियों की देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। गैंगटॉक से आगे नाथुला दर्रे के लिए यात्रा शुरू हो चुकी है। पासपोर्ट और सीमा संबंधी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद 20 जून को ये पहला जत्था नाथुला दर्रे से होकर तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में प्रवेश करेगा। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए दो मुख्य रास्ते हैं। पहला नाथुला दर्रा मार्ग, जो दिल्ली से गैंगटॉक और नाथुला दर्रा होते हुए तिब्बत और वहां से डाचिन तक जाता है। मुख्य यात्रा डाचिन यानी कैलाश बेस कैंप से शुरू होती है। इस रूट पर पैदल यात्रा का हिस्सा कम होता है, इसीलिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये ज्यादा बेहतर माना जाता है। दूसरा रूट है लिपुलेख, जो उत्तराखंड से जाता है। दिल्ली से काठगोदाम, पिथौरागढ़, धारचूला और फिर लिपुलेख दर्रा होकर तिब्बत। ये रास्ता थोड़ा चुनौतीपूर्ण माना जाता है। इस साल नाथुला और लिपुलेख दोनों रास्तों पर 10-10 बैच जाएंगे। हर बैच में 50 यात्री होंगे। यानी हर रूट पर 500 भाग्यशाली लोग महादेव के दर्शन के लिए कैलाश जाने वाले हैं। शिव के निवास तक जाना आसान नहीं है। समुद्र तल से करीब 21,000 फीट की ऊंचाई कैलाश मानसरोवर के पास मौजूद यम द्वार से कैलाश जी की परिक्रमा शुरू होती है। पथरीला रास्ता, चारों तरफ बर्फ से लदे पहाड़ और इनके बीच 12 किलोमीटर की यात्रा शुरू होती है। कैलाश की संपूर्ण परिक्रमा करीब 50 किलोमीटर की है, जिसे 3 दिनों में पूरा किया जाता है। जिन शिव भक्तों ने परिक्रमा की है, शिव को करीब से देखा है, उनके पास महादेव के दर्शन से जुड़े अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय अनुभव हैं। जो पहली बार जा रहे हैं वो पहले ही आनंदित हैं।
3: मेरी वाइफ, हम दोनों का लकी ड्रॉ निकला है। करीब 100 लोग आए थे, उसमें से आज हम बहुत बहुत अपने आप को भाग्यशाली मान रहे हैं कि महादेव ने हमें बुलावा दिया है। हर हर महादेव।
4: बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं और मेरे हस्बैंड बहुत टाइम से इसका वेट कर रहे थे। हमने एक बार पहले भी इसके लिए एंट्री करी थी,
3: तीन
4: चार साल से, बट हमारा आ नहीं रहा था। आज महादेव की कृपा से हम दोनों का एक साथ आ गया, बहुत खुश है।
5: ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज कैलाश यात्रा के ड्रॉ में हम यात्री हैं कुछ, जिनका हमारा वेटिंग लिस्टेड में आया है। भारत सरकार का जैसे कि एक नियम है, जो पहले यात्रा कर चुके हैं उनको कंफर्म नहीं करते हैं, उनको वेट लिस्टेड में ही रखते हैं। तो अगर कोई जगह बसती है तो फिर हम जो वेट लिस्टेड में यात्री आते हैं उनको दोबारा मौका दिया जाता है यात्रा करने का। बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से ये यात्रा को ऑर्गेनाइज करती है सरकार, और हम उम्मीद करते हैं कि वेट लिस्टेड वालों का भी नंबर आए। ओम नमः शिवाय।
0: कैलाश पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटियों में से एक,
5: सर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से ये यात्रा को ऑर्गेनाइज करती है सरकार, और हम उम्मीद करते हैं कि वेट लिस्टेड वालों का भी नंबर आए। ओम नमः शिवाय।
0: कैलाश पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटियों में से एक कैलाश पर्वत है, जो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। बर्फ से लदे पहाड़ों के बीच शिव का ये धाम मनमोहक है। मान्यता है कि जहां शंकर विराजे हैं, उसके ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्युलोक है। स्वाभाविक है कि सनातन परंपरा में इस जगह को दर्शन का हृदय कहा जाता है, जिसके पश्चिम में मानसरोवर और दक्षिण में राक्षसताल झील है, जिसे देखने, पूजने और अनुभव करने के लिए शिव भक्त चल पड़े हैं। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: कैलाश मानसरोवर की यात्रा के बाद कश्मीर में अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसमें देश विदेश से लाखों श्रद्धालु शामिल होंगे। इसलिए सरकार और प्रशासन दिन रात सुविधा और सुरक्षा के इंतजाम में जुटे हैं। यात्रा के मार्ग पर पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों ने मुस्तैदी से मोर्चा संभाल लिया है। हर सड़क, हर गली को खंगाला जा रहा है, गाड़ियों की चेकिंग हो रही है और आतंकी हमले से निपटने के लिए लगातार मॉक ड्रिल किया जा रहा है। इस साल अमरनाथ यात्रा के लिए सेना, सुरक्षा बल और पुलिस के अलावा तमाम सुरक्षा एजेंसियों को साथ लेकर मल्टी लेयर्ड सुरक्षा चक्र बनाया गया है, जिसे भेद पाना नामुमकिन है। देखिए ये रिपोर्ट।
7: चौकस निगाहें, मजबूत इरादे, जर्रे जर्रे पर नजर, रास्ते, गलियां, रेल की पटरी, बस, कार और यहाँ तक कि स्कूटर, जांच में कहीं कोई लापरवाही नहीं। अनंतनाग में पुलिस की टीम ने अभेद सुरक्षा दीवार बनाई है, ताकि अमरनाथ जाने वाले यात्री पूरी तरह महफूज रहें। इसके साथ ही दूसरी तस्वीर देखिए, आपको सीआरपीएफ की मुस्तैदी का अंदाजा हो जाएगा। कुलगाम के एक सुनसान इलाके में ये ऑपरेशन आतंकियों के घेरने और उन्हें ढेर करने का एक अभ्यास है। देखिए कैसे जवानों ने चारों तरफ से इस मकान को घेर लिया और मोर्चा बना लिया। इस बीच मकान में छिपे आतंकियों ने फायरिंग की, जिसमें कुछ जवान जख्मी हुए, पर पलक झपकते एम्बुलेंस के जरिए उन्हें अस्पताल भेज दिया गया। इधर कमांडो टीम घर के अंदर दाखिल हुई और वहां छुपे बैठे आतंकियों को ढेर कर दिया। ये मॉक ड्रिल अमरनाथ यात्रा के पहले सुरक्षा बल और पुलिस की तैयारी की एक झलक है। इसके तहत कश्मीर में यात्रा के रास्तों पर और संवेदनशील इलाकों में पलक झपकते कार्रवाई कैसे होगी और आतंकियों को कैसे ढेर किया जाएगा, इसका प्रदर्शन किया गया। यात्रा शुरू होने में अभी 15 दिन से ज्यादा का वक्त है, पर उससे पहले ही सड़कों पर, चौक चौराहों पर, घेराबंदी हो चुकी है। पहलगाम आने जाने वाले इस सुरक्षा घेरे में पूरी तरह सुरक्षित है। सिर्फ गाड़ियों की चेकिंग ही नहीं हो रही, बल्कि यात्रा के रास्ते पर खच्चर वालों की मुस्तैदी से जांच हो रही है, जिनको पहली बार QR कोड दिए गए हैं, जिनसे इनकी पहचान तुरंत हो सकती है। घाटी में सिर्फ सुरक्षा बल और पुलिस के जवान नहीं हैं, ट्रैफिक पुलिस, टूरिस्ट पुलिस, फायर और इमरजेंसी सर्विस के साथ हेल्थ डिपार्टमेंट भी शामिल है। साथ ही आपदा से निपटने के लिए NDRF भी है। मॉक ड्रिल के तहत इनकी काबिलियत लगातार देखी समझी जा रही है। अमरनाथ यात्रा के लिए श्रीनगर मुख्य पड़ाव है, जहां हजारों की तादाद में यात्री देश भर से पहुंचते हैं और यहीं से सफर शुरू करते हैं। इसीलिए श्रीनगर के होटल पर सुरक्षा बल की नजर है। यात्रा शुरू होने से पहले लाल चौक पर मौजूद होटल की गहन तलाशी हो रही है। अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा को लेकर न सिर्फ राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार सतर्क है और इसके लिए जबरदस्त रणनीति भी तैयार की गई है। यात्रा मार्ग पर CRPF, पुलिस तथा सभी सुरक्षा एजेंसियों के प्रयास से मल्टी लेयर्ड सुरक्षा ग्रिड स्थापित किया जा रहा है, जिसमें ड्रोन, CCTV, सर्विलांस सिस्टम और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। यात्रा मार्ग के अलावा घाटी के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जा रही है।
8: मॉक ड्रिल्स जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, बाकी जो एजेंसीज हैं, चाहे बेल्ट फोर्सेस हैं या इंटेलिजेंसीज, सब मिलके जो है मॉक ड्रिल्स भी हो रही हैं जगह जगह। हर कोई डिस्ट्रिक्ट पुलिस जिसको यात्रा सिक्योरिटी में जो है अपना रोल निभाना है, वो मॉक ड्रिल्स कर रहे हैं और अलग अलग जो सिनेरियो जिसमें चाहे आतंकी हमला हो या और अलग अलग किस्म की जो इमरजेंसीज हैं, उनको सिमुलेट किया जा रहा है। उस तरीके से कैसे सुरक्षा बलों को रेस्पॉन्ड करना चाहिए, कितना जल्दी रेस्पॉन्ड करना चाहिए, वो सारी चीजें जो है इसमें स्ट्रीमलाइन की जा रही है।
7: अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा इन जवानों की जिम्मेदारी है, ड्यूटी है, पर यात्रा के साथ इनकी आस्था भी तो जुड़ी है। इसीलिए यात्रा से पहले बांदीपुरा में CRPF के जवानों ने पूजा अर्चना की। पूजा पाठ और हवन का आयोजन हुआ। जवान और उनका परिवार सभी इस भजन संध्या में शामिल हुए। सभी ने साथ मिलकर लंगर में खाना खाया। यात्रा से पहले ये पूजा CRPF की परंपरा रही है। यात्रा सफल हो इसके लिए प्रार्थना की गई, साथ ही सुरक्षा की रणनीति पर भी मंथन हुआ। सेना के साथ CRPF के जवान यात्रा को मंगलमय बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और तैयारी हर लेवल पर है। श्रीनगर से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: When your business grows, communication can get messy fast. Calls come in, texts stack up, and suddenly your team is working in different places without the full picture. That's where Quo comes in. Quo gives your business one shared number, so every call and text lives in one place. Your whole team can see the entire history. Everything stays connected, and nothing falls through the cracks. Money is on the line. Always say hello with Quo. Get started free, plus get 20% off your first 6 months at quo.com/tunein. That's quo.com/tunein.
1: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry. TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
1: गुड न्यूज टुडे.
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है।
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: Hot Mics now streaming on TuneIn, your go-to show for explosive sports showdowns, bare-knuckle politics, raw Hollywood gossip, tech power plays, and pop culture chaos. Hosted by yours truly, Billy Bush. Want to catch the latest episodes on your connected device? It's easy. One, set a reminder with your smart speaker by saying, "Remind me to listen to Hot Mics Monday through Thursday at 12 p.m. Eastern, 9 a.m. Pacific." Two, when it's time, just say, "Play Hot Mics on TuneIn." And you're in for unfiltered takes, A-list guests, and the stories everyone else is too scared to touch.
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
1: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है।
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
9: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
3: फ्रांस के एवन में G7 शिखर सम्मेलन, कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात, कई वैश्विक मुद्दों पर बातचीत। टाइम मैगजीन की टॉप 100 लिस्ट में शामिल हुई स्मृति मंधाना, इस सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी, महिला क्रिकेट में योगदान के लिए मिला सम्मान। रक्षा मोर्चे पर बढ़ेगी भारत की ताकत, वायुसेना बनाएगी घातक स्वदेशी कामिकेज ड्रोन, 16,000 फीट की ऊंचाई पर भी अचूक वार करने में सक्षम। जम्मू कश्मीर में पवित्र अमरनाथ यात्रा की तैयारियां लगभग पूरी, यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की सेवा के लिए देशभर से पहुंची लंगर कमेटियां, बाबा बर्फानी के लगे जयकारे। वाराणसी में तेजी से आकार ले रहा यूपी का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, शिव, काशी और गंगा की थीम पर बनी आकर्षण का केंद्र, दिसंबर तक पूरा होगा निर्माण।
5: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
3: श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद, हाई अलर्ट पर पठानकोट पुलिस, जिले भर में रेड अलर्ट, नाके लगाकर चलाया जा रहा सर्च अभियान। गृह मंत्रालय के साथ सुरक्षा एजेंसियों की तैयारियों पर समीक्षा बैठक के बाद से सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद, 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलेगी पवित्र अमरनाथ यात्रा। श्री अमरनाथ जी यात्रा से पहले अनंतनाग पुलिस ने पहलगाम के टैक्सी स्टैंड पर की मॉक ड्रिल, NDRF, SDRF, जम्मू कश्मीर पुलिस समेत कई टीमों ने लिया हिस्सा। इस अभ्यास में सुरक्षा खतरों को लेकर लोगों को सुरक्षित निकालने की प्रक्रियाओं, संकट प्रबंधन और अलग अलग एजेंसियों के बीच तालमेल जैसी कई आपातकालीन स्थितियों का किया गया अभ्यास। टीमों ने सालाना यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और उनके सुचारू आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए तेजी से कार्रवाई करने के तरीकों का किया अभ्यास। जम्मू में अमरनाथ यात्रियों को मिलेगा नया तोहफा, कबाड़ से बना वेस्ट वंडर पार्क। पार्क में दुनिया और देश की 14 मशहूर स्मारकों के प्रतिकृतियां बनाई जा रही हैं, 40 फुट ऊंची बनाई जा रही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की प्रतिमा। पार्क में कबाड़ और रीसाइकल से हवा महल से लेकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का किया गया निर्माण। अमरनाथ यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र वेस्ट वंडर पार्क बनेगा, स्थानीय कारोबार को भी मिलेगा बढ़ावा। जम्मू स्मार्ट सिटी मिशन के तहत लगभग 11 करोड़ रुपए की लागत से बना पार्क, 80% पार्क का काम पूरा। कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों का पहला जत्था गैंगटॉक पहुंचा, तीर्थयात्रियों का भव्य स्वागत हुआ। कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले जत्थे में कुल 44 लोग, इनमें 32 पुरुष और 12 महिलाएं। कैलाश यात्रा में

कोटा में केंद्रीय मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने सबरीमला मंदिर में की पूजन, भगवान का लिया आशीर्वाद। इस्कॉन ने हुबली में श्री श्री राधा गोविंद देव जी मंदिर के पहले चरण का उद्घाटन किया। 22 जून को होगी प्राण प्रतिष्ठा, श्रद्धालुओं के लिए 10 अगस्त से खुलेंगे कपाट। फ्रांस के एवियन में प्रधानमंत्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में हुए शामिल, कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलाया हाथ, करीब 16 महीने बाद हुआ आमना सामना। कल डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच होगी द्विपक्षीय बैठक, ट्रेड डील समेत कई वैश्विक मुद्दों पर चर्चा संभव। समिट के दौरान सभी दिग्गज नेताओं ने एक साथ आकर खिंचवाई पारंपरिक फैमिली फोटो, अगली पंक्ति में खड़े नजर आए प्रधानमंत्री मोदी। समिट से पहले कई बड़े नेताओं से मुलाकात की तस्वीरें, प्रधानमंत्री ने की पोस्ट, लिखा बैठक शुरू होने से पहले G7 नेताओं के साथ विचारों का आदान प्रदान हमेशा शानदार। वाराणसी पहुंचे अनंत अंबानी, मां अन्नपूर्णा मंदिर में की पूजा अर्चना, टेका माथा। 19 जून को अयोध्या आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मदिन में लेंगे हिस्सा। लोकल से ग्लोबल हुआ भारत का UPI, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने फ्रांस के नीस बेसाना में प्रतिष्ठित रिटेल स्टोर गैलरीज लाफायेट में की UPI सर्विस की शुरुआत। पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें, ये पहल भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम के वैश्विक विस्तार और भारत फ्रांस के बीच संबंधों की मजबूती के लिए बड़ा कदम। फीफा वर्ल्ड कप के बीच नशाखोरी के खिलाफ दिल्ली पुलिस का क्रिएटिव पोस्ट, लिखा महान खिलाड़ियों का निर्माण अनुशासन से होता है, इसलिए नशे की लत के जाल में ना फंसे। रक्षा मोर्चे पर बढ़ेगी भारत की ताकत, वायुसेना बनाएगी घातक स्वदेशी कामिकेज ड्रोन, 16,000 फीट की ऊंचाई पर भी अचूक वार करने में सक्षम। जामनगर के संवेदनशील तटीय क्षेत्रों में मरीन कमांडो का फ्लैग मार्च और निरीक्षण, समुद्री तटों पर राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की गई सघन पेट्रोलिंग अभियान। अभियान के दौरान संदिग्ध गतिविधियों और समुद्र में संचालित बोटों पर खास नजर, अलग अलग लैंडिंग प्वाइंट, फिशिंग सेंटर और समुद्री मार्गों की सुरक्षा टीमों ने की। जल्द बदलेगी दिल्ली की सूरत, राजधानी की झुग्गी झोपड़ियों के रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट पर हुई उच्च स्तरीय बैठक। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक, झुग्गीवासियों को बेहतर आवासीय सुविधाएं, सुरक्षित वातावरण और नागरिक बुनियादी ढांचे उपलब्ध कराने के रोडमैप पर जोर। श्री माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए आई गुड न्यूज, अब अमृतसर से कटरा के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ। बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पूर्व मध्य रेलवे के खास इंतजाम, 16 और 17 जून को चलाई जाएंगी 30 से ज्यादा परीक्षा स्पेशल ट्रेन। नीट री एग्जाम तक देश में टेलीग्राम पर अस्थायी रोक, 21 जून को परीक्षा, 22 जून तक काम नहीं करेगा। जयपुर की सड़कों पर अब ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के लिए बच निकलना मुश्किल होगा, हाईटेक ट्रैफिक सिस्टम का शुभारंभ। चौराहे पर पहुंचते ही सार्वजनिक होगी वाहन की पूरी डिटेल, कुछ ही सेकंड में LED स्क्रीन पर आ जाएगी तमाम डिटेल। झांसी के दो युवा वैज्ञानिक भाइयों का विदेश में डंका, वन्य जीवों की रक्षा के लिए बनाया वाइल्ड वॉच डिवाइस, ब्रिटेन ने दिया 1 करोड़ का इनाम। भीषण गर्मी के बीच पहाड़ों की ओर रुक कर रहे सैलानी, बड़ी संख्या में श्रीनगर पहुंचे पर्यटक। शिकारा राइड का आनंद ले रहे सैलानी, गार्डन के भी लुत्फ उठा रहे पर्यटक। अयोध्या में रामलला को चढ़ा दुनिया का सबसे महंगा जापानी मियाज़ाकी आम, लोगों के बीच बांटा गया प्रसाद। अयोध्या के किसान ओम प्रकाश सिंह ने जापानी मियाज़ाकी आम की खेती देखने के लिए लग रही भारी भीड़। चंडीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग कार्यक्रम का आयोजन, सीएम सैनी ने लोगों के साथ किया योग। गोरखपुर में भी योग दिवस से पहले योग कार्यक्रम का आयोजन, सांसद रवि किशन ने एम्स के डॉक्टर्स और छात्रों के साथ किया योग। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में न्याय प्रबोध अवेकनिंग टू जस्टिस कार्यक्रम में शामिल हुए गवर्नर किवंदर गुप्ता, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी रहे मौजूद। विजयवाड़ा में स्वच्छ भारत चाय पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन।

0: लाल जोशी ने किया पौधारोपण। प्रयागराज में पुलिस की शानदार पहल, पुलिस ने 210 खोए मोबाइल लौटाए, चेहरों पर लौटी मुस्कान। जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, कुपवाड़ा बारामूला समेत बांदीपुरा और गांधरबल में तेज आंधी और बारिश की चेतावनी। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ तूफान का अलर्ट, ओलावृष्टि, फ्लैश फ्लड और भूस्खलन की भी आशंका। राजौरी के मंजाकोट में जमीन धंसने से घर और सड़कें क्षतिग्रस्त, घर ढहने के डर से लोगों ने मकानों को किया खाली, हाईवे निर्माण को जिम्मेदार ठहरा रहे स्थानीय लोग। हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में 18 जून के लिए ऑरेंज अलर्ट, कई इलाकों में तेज बारिश और आंधी तूफान का अनुमान। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी। राज्य में 22 जून तक बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान। क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने बढ़ाया देश का मान, टाइम मैगजीन की ओर से जारी खेल जगत की 100 सबसे प्रभावशाली हस्तियों की सूची शामिल। इस सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी बनी स्मृति, उनके अलावा मेसी, रोनाल्डो और हॉलैंड जैसे फुटबॉलर्स का भी लिस्ट में नाम। विमेंस T20 विश्व कप में कल नीदरलैंड महिला टीम से होगी भारतीय टीम की भिड़ंत, पहले मैच में पाकिस्तान को रौंदने के बाद अपने विजय अभियान के जारी रखना चाहेगी हरमनप्रीत की टीम। कल लखनऊ के एकाना स्टेडियम में खेला जाएगा भारत और अफगानिस्तान के बीच वनडे मैच, 3 मैचों की सीरीज का यह दूसरा मुकाबला। दूसरा मैच भी जीतकर सीरीज में अजय बढ़त बनाने पर भारत का फोकस, पहले मैच में 7 विकेट से जीत हासिल कर सीरीज में 1-0 से आगे है टीम इंडिया। फिल्म गदर एक प्रेम कथा के 25 साल पूरे, निर्देशक अनिल शर्मा ने जारी किया खास वीडियो, जनता का जताया आभार। करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले मलयालम फिल्म ओडियन द एज ऑफ इल्यूजन का ऐलान, फिल्म का पोस्टर भी किया गया शेयर। साउथ सिनेमा के मशहूर निर्देशक नाग अश्विन की चर्चित फिल्म कल्कि के सीक्वल के लिए मिला दीपिका पादुकोण का रिप्लेसमेंट लिस्ट में आलिया भट्ट का नाम शामिल। फिल्म कॉकटेल 2 की रिलीज के साथ श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की अपकमिंग मूवीज के टीजर किए जाएंगे रिलीज, श्रद्धा कपूर की ईथा और राजकुमार राव की प्रहार के नाम शामिल। कार्तिक आर्यन की अपकमिंग अनटाइटल्ड फिल्म में अभिनेत्री शर्वरी वाघ की एंट्री, लव रंजन कर रहे डायरेक्शन। शहनाज गिल और जय रंधावा की अपकमिंग फिल्म इश्कनामा का टीजर रिलीज, 24 जुलाई को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी फिल्म। फिल्म निर्देशक राजकुमार हिरानी की पहली वेब सीरीज प्रीतम एंड पेड्रो का ट्रेलर जारी, फिल्म अर्शद वारसी का भी अहम रोल। अल्फा के बाद कार्तिक आर्यन के साथ फिल्म करेंगे शर्वरी बाग, रिपोर्ट्स के अनुसार निर्देशक लव रंजन की अगली रोमांटिक कॉमेडी फिल्म, दोनों साथ आएंगे नजर। विजय देवरकोंडा जल्द ही फिल्म रणबाली में लीड रोल निभाते आएंगे नजर, उनके साथ पत्नी रश्मिका मंदाना का भी रोल। मिथुन चक्रवर्ती की बेटी दर्शानी ने कर ली सगाई, दर्शानी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तस्वीरें की शेयर, 6 दिसंबर 2026 को होगी शादी। शंघाई डिज्नीलैंड में हुआ शानदार जश्न, अपने 10वीं वर्षगांठ पर चीन के इस वर्ल्ड क्लास डिज्नीलैंड में हुआ जबरदस्त आयोजन। शंघाई डिज्नीलैंड के कासल के सामने विशाल गाय के साथ गाया गया हैप्पी बर्थडे सॉन्ग। इस जश्न पर डिज्नी वर्ल्ड के सभी कैरेक्टर्स हुए शामिल। शाम का समापन शंघाई डिज्नीलैंड की 10वीं वर्षगांठ के गीत मैजिक टुगेदर के साथ हुआ। इस मौके पर शानदार आतिशबाजी भी की गई। चीन में सबसे अधिक देखा जाने वाला थीम पार्क है शंघाई डिज्नीलैंड, दुनिया के टॉप 5 डिज्नीलैंड में शामिल। 2016 में खुले इस डिज्नीलैंड में अब तक आए हैं दुनिया भर से 100 मिलियन से ज्यादा विजिटर्स। अभी जारी है शंघाई डिज्नी रिजॉर्ट का विस्तार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: क्या घर का माहौल, घर की तरंगे किसी को बीमार कर सकती हैं? क्या आपकी सोच की वजह से भी आप बीमार पड़ सकते हैं? क्या गलत मंत्र भी आपको बीमारी का शिकार बना सकते हैं? क्यों हो जाते हैं बार बार बीमार और क्या है बीमारी का ज्योतिष में उपचार, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: Whatever you're in the mood for, tune in has the music to match. From today's hits,
4: somebody save me,
3: to timeless favorites,
4: life is like a song,
3: and new discoveries.
4: So much more than a history. Wake up.
3: It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से विदेशी ट्रिप की जगह स्वदेश घूमने की अपील की है, तो GNTB भी आप लोगों से अपने आसपास की खूबसूरत, ऐतिहासिक और दूसरी सैर सपाटा करने वाली जगहों की तस्वीरों को शेयर करने की अपील कर रहा है, ताकि हम आपके भेजे गए उन वीडियोस को GNTB पर दिखाएं और उन पर्यटन स्थलों को भी लोग जाने, वहां सैर सपाटा करें। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज आपको हिमाचल के चंबा लिए चलते हैं, जहां साच पास आपका स्वागत करने को तैयार है।

0: आसमान को छूती बर्फ से लदी सफेद चोटियां, बादलों को चीर कर आगे बढ़ती गाड़ियां और वादियों के बीच सर्द हवा, ये नजारा आंखों में बसा लीजिए, दिल में उतार लीजिए और हमेशा के लिए इस याद को अपने जहन में सजो लीजिए। आपकी आंखों को भले ही यकीन ना हो, लेकिन ये तस्वीरें किसी जन्नत से कम नहीं। ये यूरोप या स्विट्जरलैंड नहीं है, बल्कि हिमाचल के चंबा में बसे साच पास का है। समुद्र तल से करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद ये दिलकश घाटी इन दिनों देश के सबसे बड़े एडवेंचर हब के रूप में उभर रही है। जून से अक्टूबर के महीने में जब यहाँ का रास्ता खुलता है तो मानो जैसे जन्नत के दरवाजे खुल गए हों।
1: नमस्कार दोस्तों, आज हम साचे पास साच पास जोत में, जो कि चुरा वैली हिमाचल प्रदेश में है, तो आज हम दिखा रहे हैं आपको चुरा वैली का खूबसूरत दृश्य, जो आप देख सकते हैं मनमोहक दृश्य है। चारों तरफ बर्फबारी है और साथ में है भूत ग्राउंड और साथ ही में है मंदिर। और आज हम मिलेंगे अपने पर्यटकों से जो विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हैं। हमारे साथ हैं दीपांशा जी, है ना मैम, आपका शुभ नाम?
2: दीपांशा।
1: दीपांशा मैम, आप कहाँ से हो?
2: मैं दीपांशा हरियाणा से हूँ।
1: क्या बात है मैम, बहुत बढ़िया। मैम आपका चुरा वैली में स्वागत है। और आप पहली बार मैम आए हो अपने दोस्तों के साथ?
2: बिल्कुल, यहाँ मैं पहली बार आई हूँ। ये मेरा भाई है छोटा और ये मेरा कलीग है
1: जी।
2: तो मैं अपने कलीग भाई सबको लेके आई हूँ।
1: तो मैम आपने यहाँ का ये प्लान कैसे किया, कि आपने किससे सुना कि आपने साच पास जाना है या चुरा वैली घूमने जाना है?
2: तो हम लोग,
1: ये आइडिया कैसे आया आपको?
2: हम लोग यूजुअली क्या करते थे, आसपास का कोई एरिया हो गया जैसे कसौल मनाली, तो इट इज वेरी ओवर क्राउडेड एज ऑफ नाउ। सो हमने सोचा कि कुछ ऑफ बीट करते हैं
1: जी।
2: तो अभी तो और भी ज्यादा, मतलब बिल्कुल रास्ते भी जाम है, तो इतना टाइम हमको ट्रैफिक में ही लग जाता। तो हमने चैट जीपीटी किया, द फर्स्ट सजेशन इट हैज गिवन फॉर चुरा वैली।
1: क्या बात है।
2: तो इसलिए हमने और भी सर्च किया कि चुरा वैली में एक्चुअल में क्या क्या चीजें हैं। तो हमने सर्च पास के बारे में जाना।
0: रास्ते के दोनों तरफ खड़े पहाड़ ऐसे लगते हैं मानो इस जन्नत की हिफाजत कर रहे हों। जब पहाड़ों की ओट से सूरज की पहली किरण इन बर्फीली चोटियों पर पड़ती है तो ऐसा गुमान होता है मानो किसी ने सफेद मखमली फर्श पर सोना बिखेर दिया हो। इन दिनों चास पास का जर्रा जर्रा सैलानियों का इस्तकबाल कर रहा है। जो लोग यहाँ आते हैं वो बस यहीं के होकर रह जाते हैं। कोई इन नजारों को अपने कैमरे में कैद कर रहा है तो कोई बस खामोशी से बैठकर इस कुदरती हुस्न को अपनी रूह में उतार रहा है।
2: So it is totally unexpected. मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जून के मंथ में मैं इतना ज्यादा शांत, मतलब हिमाचल में नजारा देखने वाली हूँ। So this is and snowfall as well. यहाँ पे अभी हल्की-हल्की स्नो भी हो रही है। So we are expecting a little more.
0: साच पास की इन तस्वीरों को देखकर वाकई दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता है, जिसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। और बादलों का ऐसा हसीन मेल सीधे दिल में उतर जाता है। तो अगर आप भी इस हसीन नजारे को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं तो हिमाचल के चंबा का रुख कर लीजिए।
2: यहाँ पे आप आओ और बस ये कोशिश करना कि यहाँ पे अपना कूड़ा कचरा ये सब बिल्कुल मत फैलाना, प्लीज टेक इट।
1: बहुत बढ़िया,
2: बिल्कुल इस चीज को बहुत ध्यान, ये बिल्कुल अनटच्ड वैली है, इसको इतना ही हमको मेंटेन करके रखना है, जितने यहाँ पे साफ सुथरी चीजें हैं इनको मेंटेन करके रखना है। बट टूरिज्म थोड़ा हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ज्यादा, इन केस इफ एनीबॉडी वांट्स टू एक्सप्लोर ऑफ बीट प्लेस, दिस इज सच अनरियल प्लेस।
3: तो आप भी अपने देश में सैर सपाटा करने अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट कीजिए। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए संकल्प में भागीदार बने। बस आपको सिर्फ इतना करना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है तो उठाए अपना कैमरा, बनाए ब्लॉग और हमें व्हाट्सएप करें 7303409922 पर, हम उसे जीएनटी पर दिखाएंगे।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
6: सेज यूनिवर्सिटी ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन टीआईटी भोपाल जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स
3: फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात कई वैश्विक मुद्दों पर बातचीत टाइम मैगजीन की टॉप 100 लिस्ट में शामिल हुई स्मृति मंधाना इस सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी महिला क्रिकेट में योगदान के लिए मिला सम्मान रक्षा मोर्चे पर बढ़ेगी भारत की ताकत वायुसेना बनाएगी घातक स्वदेशी की कामिकेज ड्रोन 16,000 फीट की ऊंचाई पर भी अचूक वार करने में सक्षम जम्मू कश्मीर में पवित्र अमरनाथ यात्रा की तैयारियां लगभग पूरी यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की सेवा के लिए देशभर से पहुंची लंगर कमेटियां बाबा बर्फानी के लगे जयकारे वाराणसी में तेजी से आकार ले रहा यूपी का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम शिव काशी और गंगा की थीम पर बनी आकर्षण का केंद्र दिसंबर तक पूरा होगा निर्माण

0: नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। और मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो आज के गुड लक के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि हम लगातार जो बार बार बीमार पड़ते हैं उसके कारण क्यों होते हैं, क्यों ऐसा होता है कि थोड़े थोड़े दिन में हम बीमार पड़ने लगते हैं और इससे बचने के उपाय क्या है, इस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र।
1: अगर आपको बीमारियों का वहम रहता हो कि मुझे ये बीमारी ना हो जाए, वो बीमारी ना हो जाए, तो सलाह लेकर या तो एक पन्ना धारण करिए या एक चांदी का कड़ा दाहिनी कलाई में पहनिए, आपको लाभ होगा।
0: और आइए अब जान लेते हैं 17 जून 2026 यानी कि बुधवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 17 जून 2026 दिन बुधवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, रात के 9:38 तक। नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र, दोपहर 1:37 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः काल 8:13 तक। राहु काल का समय दोपहर 12:00 से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: और आइए अब जानते हैं पंडित जी से ही कि लगातार बीमार होने के पीछे आखिर कौन से ग्रह होते हैं जो जिम्मेदार होते हैं।
1: जी, आज हम बात कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति बार बार लगातार बीमार क्यों पड़ता है। और अगर आप बार बार बीमार पड़ते हैं तो उसका कारण क्या है। पहले ये जानते हैं कि लगातार बीमार होने के पीछे कौन से ग्रह होते हैं। देखिए, कुंडली का लग्न और लग्न का स्वामी व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में, उसके शरीर के बारे में जानकारी देता है। इनके कमजोर होने से स्वास्थ्य का संतुलन बिगड़ जाता है। सूर्य आपका शरीर है और चंद्रमा आपका मन है, तो सूर्य और चंद्रमा अगर बेहतर हैं तो किसी व्यक्ति के मन और शरीर को बेहतर बनाए रखते हैं। सूर्य अगर कुंडली में गड़बड़ है या सूर्य अगर कमजोर है तो व्यक्ति को शारीरिक समस्याएं होती हैं, उसके शरीर में दिक्कतें आती हैं। अगर चंद्रमा गड़बड़ है, चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है, तो चंद्रमा मन की समस्याएं बढ़ा देता है। इसके अलावा आपकी कुंडली का जो तत्व है, जल तत्व है, वायु तत्व है, पृथ्वी तत्व है, इसका अच्छा होना भी बहुत जरूरी है। अगर कुंडली जल तत्व की है और जल तत्व ही बिगड़ा हुआ है, यानी कुंडली का मुख्य तत्व बिगड़ा हुआ है, तो अलग अलग तरह की समस्याएं लगातार आपको परेशान करती हैं। यानी कि कुंडली के ग्रहों के अलावा कुंडली का जो एलिमेंट है, जो तत्व है, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए।
0: और अब वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का, तो आइए जानते हैं मेष वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल।
1: मेष राशि, व्यर्थ का मानसिक तनाव इस समय हो सकता है, परिवार में अशांति हो सकती है, वाहन सावधानी से चलाएंगे। अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किल कम हो जाएगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रिश्तों की समस्या समाप्त होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, कर्ज आसानी से चुका सकेंगे, परिवार में अशांति से बचिएगा। गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: लगातार बीमार रहने की अन्य कौन सी वजह होती है, आइए जान लेते हैं।
1: देखिए, लगातार बीमार होने के पीछे आपके ग्रह, आपके नक्षत्र अवश्य होते हैं। और कौन सी वजह है जिसकी वजह से आप लगातार बीमार होते हैं? देखिए, जिस घर में आप रहते हैं उस घर की अगर तरंगे ठीक ना हो, घर में अशुभता ज्यादा हो, घर में निगेटिविटी ज्यादा हो, तो आप लगातार बीमार रहेंगे। जिन घरों में नियमित रूप से कलह कलेश होता है, जिन घरों में नियमित रूप से अशांति और विवाद होता है, वहां पर भी लोग लगातार बीमार रहते हैं। अगर आप किसी को मानसिक या शारीरिक कष्ट देते हैं, जानबूझकर किसी के मन को या शरीर को कष्ट पहुंचाते हैं, तो भी आप लगातार बीमार रह सकते हैं। जो लोग लगातार बीमारियों के बारे में सोचते हैं कि मुझे ये बीमारी ना हो जाए, कहीं ये बीमारी ना हो जाए, लगातार बीमारी के बारे में सोचेंगे तो भी बीमार रहेंगे। अगर आप कोई मंत्र गलत तरीके से जपते हैं या कोई गलत मंत्र अगर आप जप करते हैं या गलत रत्न अगर आप धारण कर लेते हैं बिना जानकारी के, तो भी आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आपके घर का माहौल, आपके घर की तरंगें और आपका खान पान, ये आपके स्वास्थ्य को तेजी से बिगाड़ सकता है, जिसका ध्यान अवश्य रखना चाहिए।
0: और अब वक्त हो गया है कर्क, सिंह और कन्या राशि के राशिफल को जानने का।
1: कर्क राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन हानि से बचाव करें, परिवार में अशांति हो सकती है, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। हरे फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, करियर में लाभ होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, खरीदारी में व्यस्त रहेंगे। भगवान गणेश की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और गुड लक में आप जानेंगे कि आज का पहला प्रश्न पंडित जी को कहां से और किसने भेजा है।
1: जी, आज का पहला प्रश्न प्रथमेश शिंदे जी ने हमें लिखा है, महाराष्ट्र से लिखते हैं। 16 अप्रैल 1995 का जन्म है, 8:30 रात को सतारा महाराष्ट्र। ये कह रहे हैं कि मैं लव मैरिज करना चाहता हूं, भविष्य के लिए और बेहतर वैवाहिक जीवन के लिए मुझे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रथमेश, आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की और तुला राशि की, महादशा शनि की और अंतर दशा चंद्रमा की चल रही है। देखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका प्रेम विवाह अवश्य ही होगा, लेकिन आपके सातवें स्थान में सूर्य की उपस्थिति है और राहु की प्लेसमेंट को बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, इसलिए वैवाहिक जीवन में थोड़ा धैर्य रखिएगा, एग्रेशन से, क्रोध से बचने का प्रयास करिएगा। अगर थोड़ा धैर्य बना करके चलेंगे तो जिंदगी बेहतर होगी। एक ओपल बनवा करके पहन लीजिए, 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और सुबह के समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें। अगर आप ये उपाय करें, थोड़ा धैर्य रखें, तो भविष्य और वैवाहिक जीवन बेहतर होगा।
0: अगर आपके मन में भी कोई सवाल है और आप चाहते हैं कि पंडित जी उसका जवाब दे, तो आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए, वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का। तो जानते हैं पंडित जी से ही कि आज का दूसरा सवाल वो किसका ले रहे हैं।
1: जी, अगला प्रश्न राहुल मीणा ने हमें लिखा है, कोटा राजस्थान से लिखते हैं। 12 जून 2000 का जन्म है। 6:10 शाम को भानपुरा मध्य प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मुझे दो नौकरी मिली है, एक मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग की और एक ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा विभाग की, तो मुझे कौन सी नौकरी करनी चाहिए? मेरा विवाह कब होगा और कैसा रहेगा? राहुल, आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और तुला राशि की, महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा सूर्य की चल रही है। ग्रामीण क्षेत्र में जो चिकित्सा विभाग की नौकरी है, वो अगर आप ज्वाइन करें या वो अगर आप नौकरी करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके करियर के हालात भविष्य में बेहतर दिख रहे हैं। केवल विवाह का निर्णय आपको सोच समझ कर लेना चाहिए। साल 2027 में आपके विवाह की संभावना बनती है। कुंडली मिला करके सोच समझ करके विवाह करेंगे तो जीवन बेहतर होगा। एक मोती बनवा के पहन लें, 8-10 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहने और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा।
0: और चलिए अब जान लेते हैं व्यक्ति का स्वास्थ्य कब बेहतर रहता है।
1: ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि दुनिया में हर व्यक्ति हमेशा बीमार रहता हो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका स्वास्थ्य सामान्यतः अच्छा रहता है, सामान्यतः बेहतर रहता है। कब होता है ऐसा? देखिए, मंगल व्यक्ति के जीवन के सुरक्षा का स्वामी है। मंगल को सेनापति इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये खतरों से, बीमारियों से, मुश्किलों से आपकी सुरक्षा करता है। मंगल के बेहतर होने पर व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम मजबूत होती है। और मंगल अगर बेहतर हो तो व्यक्ति छोटी छोटी बीमारियों से सरलता से निकल जाता है। मंगल के अलावा अगर बृहस्पति लग्न को, लग्नेश को प्रभावित करे, मजबूत स्थिति में हो, तो बृहस्पति भी व्यक्ति की रक्षा करता है। हाथ में अगर जीवन रेखा मजबूत हो और जीवन रेखा के पैरेलल एक मंगल की रेखा भी हो, तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है, व्यक्ति का स्वास्थ्य बेहतर होता है। घर की जो तरंगे हैं आपके, घर के जो वाइब्रेशन हैं आपके, अगर आप इनको अच्छा रखें, घर में शुभता रखने का प्रयास करें तो ऐसा करने से भी आपका स्वास्थ्य बेहतर हो जाता है।
0: और चलिए जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का क्या है राशिफल।
1: तुला राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, करियर में सुधार होता जाएगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, अनाज का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, चोट चपेट से सावधान रहें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में समस्या हो सकती है, संतान की चिंता हो सकती है, अपयश से बदनामी से बचाव करें, अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
0: और आइए जानते हैं पंडित जी से, अगर लगातार आप बीमार रहते हो तो किन किन उपायों से खुद को ठीक रखा जा सकता है, क्या बचाव है, कौन से ऐसे उपाय हैं जो आपको करने चाहिए।
1: देखिए, ऐसा हो सकता है कि आप लगातार बीमार रहते हो, कोई ना कोई बीमारी आपके ऊपर हावी रहती हो, तो क्या उपाय करें जिससे ठीक रहें। रोज सुबह उगते हुए सूर्य को अगर आप जल चढ़ाएं तो बहुत लाभ होगा। सुबह और शाम दोनों समय कुछ समय पूजा उपासना में जरूर दीजिए, कम से कम सुबह शाम नाम जप करिए या सुबह शाम राम रक्षा स्तोत्र पढ़िए या सुनिए। संगति पर और अपने आहार पर विशेष ध्यान दीजिए, संगति अच्छी रखिए और आहार को शुद्ध और सात्विक रखिए। जब भी मौका मिले किसी संत के साथ, महात्मा के साथ, महापुरुष के साथ कुछ समय जरूर बिताइए या उनके प्रवचनों को सुनिए। चंदन की सुगंध का नियमित रूप से प्रयोग करिए और किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर एक मूंगा या एक पन्ना अगर आप धारण करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: और गुडलक में आप जानेंगे आज की अंतिम राशि के राशिफल को, तो चलिए जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का क्या है राशिफल।
1: मकर राशि, मानसिक तनाव आपका कम होता दिखाई दे रहा है, सेहत अच्छी बनी रहेगी, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, करियर की समस्या हल होगी। अगर अनाज का दान कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में लाभ होगा, वाहन सावधानी से चलाएंगे, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
0: और आइए अब जानते हैं पंडित जी को आज का तीसरा सवाल कहां से और किसने भेजा है।
1: जी, अगला प्रश्न सारिका शर्मा ने हमें बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से मेल लिखा है। 18 फरवरी 1977 का जन्म है, रात के 9:12 बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। ये पूछ रही हैं कि नया मकान मेरा कब तक होगा और मकान लेने में मुझे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सारिका जी, आपकी कुंडली बनती है कन्या लग्न की और कुंभ राशि की, महादशा बुध की और अंतर दशा शुक्र की चल रही है। साल 2027 के शुरुआती समय तक आप प्रॉपर्टी ले पाएंगी। प्रॉपर्टी खरीदने का समय अभी चल रहा है। दक्षिण दिशा का मकान या दक्षिण दिशा का प्लॉट मत लीजिएगा और ये ध्यान रखिएगा कि जब भी पूजा करवाएंगी अपने प्लॉट की या अपने मकान की, सावधानी पूर्वक नींव का पूजन करवाइएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। मकान आप जल्दी ले सकें, प्रॉपर्टी का लाभ आपको जल्दी हो, इसके लिए एक 10-12 रत्ती का ओपल बनवा करके पहन लीजिए। चांदी में पहना जाएगा। दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में शुक्रवार की शाम को ओपल पहनिए। रोज सुबह और रोज शाम 108 बार बृहस्पति मंत्र का जप करिएगा, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा।
0: गुड लक में अब वक्त हो गया आज के अंतिम प्रश्न का, तो जानते हैं पंडित जी से आज का अंतिम और चौथा प्रश्न वो किसका लेने वाले हैं।
1: जी, अंतिम प्रश्न ज्योति जी ने बिहार से लिखा है, ये अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 26 अप्रैल 1989, मध्य रात्रि में 12 बजे पटना बिहार। ये पूछ रही हैं कि मेरे बेटे का स्वास्थ्य और जीवन कैसा रहेगा, क्या मेरे बेटे की कुंडली मांगलिक है। ज्योति, आपके पुत्र की कुंडली बनती है मकर लग्न की और धनु राशि की, महादशा मंगल की और अंतरदशा चंद्रमा की चल रही है। पहली बात यह है कि आपके बेटे की कुंडली में मंगल छठे स्थान में बैठा हुआ है, कुंडली में कोई मंगल दोष नहीं है। दूसरी बात यह है कि इनका विवाह अगर अब तक नहीं हुआ है, 2023-24 में शादी नहीं हुई है, तो 2027 में ये विवाह करेंगे अपनी इच्छा से जानी पहचानी लड़की के साथ। करियर और भविष्य इनका उज्ज्वल है, लेकिन डाइजेशन का, खान पान का और पेट का इनको ध्यान रखना होगा। एक इनको ओपल बनवा करके पहनाइए, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहनाएं और इनसे कहिए कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सूर्य मंत्र का ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का रोज सुबह 108 बार जप करें।
0: पंडित जी, आपसे एक सवाल था, क्योंकि आज हम गुड लक के इस एपिसोड में बात कर रहे हैं लगातार बीमार पड़ने के बारे में, तो कौन सा ऐसा उपाय है जिससे हम करें तो हम बीमार ना पड़े।
1: जी देखिए, आपको शुरुआत में ही बताया कि आपका खान पान, आपके घर का वाइब्रेशन, आपके घर की तरंगे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपके स्वास्थ्य को अच्छा बनाने में। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छा स्वास्थ्य पाएं, आप स्वस्थ बने रहें, तो ज्योतिषीय उपाय दो हैं। पहला ये कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाया जाए नित्य प्रातः, और प्रातः काल ही राम रक्षा स्तोत्र का पाठ किया जाए। अगर आप दोनों समय सुबह शाम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, थोड़ी सावधानी रखें, सूर्य देव को जल चढ़ाएं, तो नॉर्मली आपको स्वास्थ्य की समस्या नहीं होगी। अब अगर आपको स्वास्थ्य की समस्या हो गई है और आप उससे बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, प्रयास करने के बावजूद भी स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार नारायण कवच पढ़ना चाहिए या नारायण कवच का पाठ सुनना चाहिए। अगर ये दो में से जैसी जरूरत हो आप उपाय करेंगे तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा नहीं, और अगर थोड़ा बहुत बिगड़ गया तो नारायण कवच का पाठ करके आप उसको ठीक बना सकते हैं। लेकिन कुल मिला के हर हाल में सूर्य देव को जल चढ़ाना और सूर्य देव से कृपा की प्रार्थना करना, ये आपके लिए जरूरी है।
0: जिनका जन्मदिन आ रहा है उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए जानेंगे पंडित जी से कि आपका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा।
1: जिनका जन्मदिन 17 जून को है उन लोगों को हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, किसी दूर की जगह पर स्थान परिवर्तन हो सकता है, धन की स्थिति मध्यम बनी रहेगी। अगर अविवाहित हैं तो इस साल भी आपके विवाह में विलंब होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर शनि देव की अगर उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
0: और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो आइए जान लेते हैं आज की जिज्ञासा क्या है।
1: आज की जिज्ञासा है कि क्या घर में ताजमहल की मूर्ति या प्रतिकृति रखना उचित है। देखिए, ताजमहल कोई पवित्र स्थल या कोई पवित्र आकृति नहीं है, ये एक वास्तुकला का प्रतीक है और वास्तव में एक मकबरा है। मकबरे की आकृति को घर में रखना बिल्कुल भी उचित नहीं है।
0: और चलिए जानते हैं 17 जून 2026 यानी कि बुधवार का शुभ पहर कौन सा है।
1: दिनांक 17 जून 2026 दिन बुधवार, शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में गणेश जी की कपूर से आरती करिएगा, आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 17 जून बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में।
0: गुडलक में वक्त हो गया आज की गुडलक राशि के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की गुडलक राशि कौन सी है।
1: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के शिक्षा की स्थिति कैसी रहती है। आज की गुडलक राशि है वृश्चिक। ये एक साथ कई तरह की शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं और इनको पढ़ने पढ़ाने का बहुत शौक रहता है।
0: गुडलक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी हमें रोज एक नया महा उपाय बताते हैं, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से ही कि आज का महा उपाय क्या है।
1: जी, आज के महा उपाय में बताते हैं कि घर के सभी लोगों का रोजगार अच्छा चले इसके लिए क्या उपाय करेंगे। अपने घर में थोड़ी सी मिट्टी गौशाला की, थोड़ी सी मिट्टी मंदिर की और थोड़ी सी मिट्टी किसी बागीचे की लाकर एक गमले में मिलाकर रखिए। घर में रहने वाले सभी लोगों को करियर के मामले में लाभ होगा।
0: पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया, बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
3: Schwarber to right field, and it will leave.
2: From the first pitch of the season to the stretch run,
3: and that's the ball game.
2: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.

0: Hi, everyone. Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
1: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
2: Turn it up with today's hits on TuneIn. We're bringing you the songs everyone's talking about, all in one place. Hear the biggest tracks right now from today's top artists. Day or night, today's hits keeps the energy going. Start listening now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है,

0: सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए।
2: Catch up on what's hot with TikTok Radio, curated by Stingray Music, your destination for trending hits and must-see videos. Stay in the loop one viral moment at a time. TikTok Radio, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
3: Hi, everyone. Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
4: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
1: वैसे अच्छा।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम
11: सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
14: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन, कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात, कई वैश्विक मुद्दों पर बातचीत। टाइम मैगजीन की टॉप 100 लिस्ट में शामिल हुई स्मृति मंधाना, इस सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी, महिला क्रिकेट में योगदान के लिए मिला सम्मान। रक्षा मोर्चे पर बढ़ेगी भारत की ताकत, वायुसेना बनाएगी घातक स्वदेशी कामिकेज ड्रोन, 16,000 फीट की ऊंचाई पर भी अचूक वार करने में सक्षम। जम्मू कश्मीर में पवित्र अमरनाथ यात्रा की तैयारियां लगभग पूरी, यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की सेवा के लिए देशभर से पहुंची लंगर कमेटियां, बाबा बर्फानी के लगे जयकारे। वाराणसी में तेजी से आकार ले रहा यूपी का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, शिव, काशी और गंगा की थीम पर बनी आकर्षण का केंद्र, दिसंबर तक पूरा होगा निर्माण।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। मशहूर शायर निदा फाजिल ने कभी कहा था, अच्छी संगत बैठकर संगी बदले रूप, देखो मिलकर आम से मीठी हो गई धूप, अमराई से गुजरकर धूप के मीठी हो जाने की यही कल्पना। ये अपने आप में मुकम्मल बयां है जो बताता है कि आम कितना खास है हमारे लिए। आम का ओहद सिर्फ जुबान का जायका बदलने वाले एक फल भर का नहीं है, बल्कि ये जुड़ा है हमारे इतिहास, हमारी परंपरा, हमारे साहित्य के साथ, हमारी बचपन की यादों से, गर्मी की छुट्टियों से। गर्मियों के मौसम का सबसे प्यारा तोहफा होता है आम, ऐसा तोहफा जो भारत की सरजमी से निकला और नाम बदलकर सारी दुनिया में घुमाया। आज सुनाएंगे कहानी, उसी आम की खास कहानी, यही आम जिसकी राजधानी कहलाता है हमारा हिंदुस्तान।

0: जो आम में है वो लबे शीरी में नहीं रस, रेशों में है जो शेख की दाढ़ी से मुकद्दस, आते हैं नजर आम तो जाते हैं मदन कस, लंगड़े भी चले जाते हैं खाने को बनारस। बकौल सागर खयामी, ये आम का ही जादू है कि उसे खाने लंगड़े भी बनारस की ओर चल पड़ते हैं। वैसे लंगड़ा खुद भी एक किस्म का आम है और खाने वाले बताते हैं कि इसका स्वाद बहुत खास है। और लंगड़ा ही क्यों, चाहे जो किस्म हो, यूं समझिए कि इस फल के बस नाम में आम है। वाराणसी का लंगड़ा हो या फिर मलिहाबाद का दशहरी, कोंकण तट पर उगा अल्फांसो हो या बिहार का चौसा, आंध्र प्रदेश की धरती से आया सफेदा हो या पश्चिम बंगाल का हिमसागर, नाम में मुगलई नफासत लिए मध्य प्रदेश का नूरजहां या फिर जापान से आया और अब भारत में उगाया जाने वाला मियाज़ाकी, इसकी हर किस्म में वो जायका वो महक है कि हर लुकमे पर वाह वाह कहने को जी चाहता है। कहने को तो आम की सैकड़ों किस्में हैं, लेकिन भारत में आम की लगभग 1500 प्रजातियां पनपती हैं, जिनमें से करीब 1000 किस्में आम तौर से खाई और बाजार में बेची जाती हैं। भारत में पाए जाने वाले हर आम का अपना एक अलग मिजाज, अपना रंग और अपनी एक खास मिठास होती है। इन्हीं किस्मों, इनके स्वाद और रंगों बू पर फिदा होकर कभी जलील मानिकपुरी ने लिखा था, नायाब आम लुत्फ हुए रंग रंग के, कोई है जर्द कोई हरा कुछ है लाल लाल। कोई 4000 साल पहले हिमालय की तलहटी के इलाके में भारतीय उपमहाद्वीप में पनपा ये आम पुर्तगालियों की उंगली थाम कर सारी दुनिया घुमाया। हुआ कुछ यूं कि साल 1498 में जब पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा केरल के तटीय इलाकों में पहुंचे, तो लौटते लौटते वहां से मसालों के साथ साथ आम भी लेते गए। चूंकि केरल में आम को मान कहा जाता था, सो पुर्तगालियों ने आम को मान से मिलता जुलता नाम मानोव दे दिया। कुछ ऐसा चढ़ा पुर्तगालियों की जुबान पर आम का जादू कि पुर्तगाली व्यापारी जहाँ जहाँ गए वे अपने साथ आम लेते गए। इस तरह आम अमेरिका से लेकर यूरोप तक फैल गया। चूंकि अंग्रेजों को पुर्तगाली उच्चारण में थोड़ी दिक्कत आती थी, इसलिए उन्होंने इसे मैंगो कहना शुरू कर दिया। इस तरह दुनिया घूमकर भारत का मान मैंगो बनकर वापस लौट आया। आज सुनाएंगे कहानी अपने उसी मान की, जिसका जायका मैंगो बनकर देश की सीमाओं और महासागरों की दहलीजों के परे दुनिया भर की जुबान पर चढ़ा है। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
1: इस समय अगर आप घर से बाहर निकलेंगे तो गली मोहल्लों के मार्केट से लेकर शहरों की मंडियों तक आपको आम ही आम दिखाई देंगे। और हो भी क्यों ना, फलों के राजा इतने किस्मों, इतने रंगों, स्वाद और खुशबुओं में मिलता है, हमारे देश में गिनते गिनते थक जाएंगे। अपने देश के हर हिस्से में आम होता है और आम की हर किस्म का अपना ही स्वाद होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक भारत में आम की लगभग 1000 किस्में हैं। तो चलिए कुछ आमों के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं, लेकिन इनमें आपको सबसे ज्यादा हैरान करेगा वो आम जिसका दाम सोने से भी ज्यादा है।

गर्मियाँ यूँ तो बेहद सितम करती हैं, पर अपने पिटारे में रख के लाती हैं जो आम, बड़ा करम करती हैं। और गर्मियों के हिस्से आए इसी आम के फसाने की शुरुआत करते हैं एक किस्से से। एक बार उर्दू अदब के मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी ने अपने दोस्त मुंशी निसार हुसैन के नाम एक खत लिखा और खत में आम के सीजन में आम भेजने की दरख्वास्त कुछ इस तरह की, नामा न कोई यार का पैगाम भेजिए, इस फसल में जो भेजिए बस आम भेजिए, ऐसा जरूर हो कि उन्हें रख के खा सकूं, पुख्ता अगरचे 20 तो 10 खाम भेजिए, मालूम ही है आपको बंदे का एड्रेस, सीधे इलाहाबाद मेरे नाम भेजिए, ऐसा न हो कि आप ये लिखें जवाब में, तामील होगी पहले मगर दाम भेजिए। आम भेजने से पहले 100% दाम ही मांग लेते अकबर इलाहाबादी के दोस्त अगर उन्होंने मियां ज़ाकी आम की फरमाइश की होती, क्योंकि जरा हट के नाम वाले मियां ज़ाकी आम का दाम सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इस आम की कीमत है 3 लाख रुपए प्रति किलो। ये दुनिया का सबसे महंगा आम है। उपज की तादाद, डिमांड और क्वालिटी पर निर्भर करते हुए मियां ज़ाकी आम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 2,80,000 रुपए से लेकर 3,30,000 रुपए प्रति किलो तक जाती है।

0: अपनी खूबसूरत लाल बैंगनी रंगत, दुर्लभता और ऊंची कीमत के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इस आम के दाम को कुछ यूं समझिए कि मियाज़ाकी आम वास्तव में सोने से भी महंगा है। 16 जून 2026 को देश की राजधानी में 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 1,51,690 रुपए है, जबकि मियाज़ाकी आम का दाम है 3,00,000 रुपए प्रति किलो, यानी 1 किलो आम का दाम लगभग 20 ग्राम सोने के बराबर है। कमाल, अच्छी बात तो ये है कि जापानी नस्ल का सोने से महंगा मियाज़ाकी आम अब भारत में भी उगाया जा रहा है। यूपी के सहारनपुर में फलता फूलता दिख रहा ये मियाज़ाकी आम है। सहारनपुर के एक किसान ने आय बढ़ाने के इरादे से साल 2021 में इस नए प्रयोग की शुरुआत की थी। किसान संदीप चौधरी ने अपने ऑर्गेनिक बाग में केवल 2 पौधे लगाकर शुरुआत की थी, लेकिन आज उनके बाग में करीब 40 मियाज़ाकी के पेड़ तैयार हो चुके हैं। अब इन पेड़ों पर फल भी आने लगे हैं। इस समय उनके 10 से 12 पेड़ों पर फल लगा हुआ है। उम्मीद है कि इस सीजन में करीब 14 से 15 किलो उत्पादन मिलेगा।
1: इस समय मियाज़ाकी जो दुनिया सबसे महंगी वैरायटी वो अपने लगाई थी, वो क्यों लगाई थी? जब आम लगाया तो हमने सर्च किया दुनिया में सबसे महंगे आम की वैरायटी कौन सी है, तो पता चला कि मियाज़ाकी है, जो जिसका भाव 2,70,000 से 3,50,000 रुपये किलो तक आता है। ये वैरायटी के पौधे हमें पता लगा, फिर हमने पौधे यहाँ से मंगाए इसके, और सबसे पहले 2 पौधे लगाए और 2 पौधों के बाद उसकी क्रॉपिंग करके हमने कि उनसे पौधे बनाए हमने। आज हमारे पास लगभग 40 पौधे हमारे इस बाग में लगे हुए हैं। बड़ी बात यह है कि हमने ये देखा है कि ये बाग पूरी तरह ऑर्गेनिक होने की वजह से इसमें ग्रोथ भी अच्छी हुई है, आम का कलर भी अच्छा आ रहा है और एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स अपने को मिला है। अब हम ये चाहेंगे देश के जो तमाम किसान हैं वो ऐसी महंगी वैरायटी लगाएं जिससे हम एक्सपोर्ट करने का एक हब बन सके।
0: वैसे अगर आप आम के मुरीद हैं और मियाज़ाकी का स्वाद चखना चाहते हैं तो आपको बता दें कि मियाज़ाकी आम आजकल बिहार के भागलपुर में भी उगाया जा रहा है। भले ही सोने सा भाव हो, लेकिन आम के दीवाने दाम कहाँ देखते हैं। खैर, आमों की दुनिया का ये दूसरा अजूबा पनपता है मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में, और नाम है नूरजहां। नूरजहां को दुनिया का सबसे बड़ा आम माना जाता है। एक नूरजहां आम का वजन 4 किलो तक हो सकता है, और भारत में आम प्रेमियों के बीच ये जितना लोकप्रिय है उतना ही दुर्लभ भी है। मध्य प्रदेश के जिला अलीराजपुर का कट्ठीवाड़ा अपने झरनों, बारिश और नूरजहां आम के लिए भी जाना जाता है। मौसम और मिट्टी ने इस फल के पनपने के लिए यहां एकदम सही हालात दिए हैं। नूरजहां के बाद बात भागलपुर के जरदालू आम की। भागलपुर के जरदालू आम की कई विशेषताएं हैं। ये सुपाच्य है, स्वादिष्ट तो है ही और कुछ हद तक शुगर फ्री भी कहला ही लेता है। दरअसल जरदालू आम में दूसरे आमों के मुकाबले प्राकृतिक शुगर की मात्रा कम होती है, और भागलपुर के जरदालू आम को GI टैग भी मिला हुआ है। हर साल भागलपुर में पैदा होने वाला ये आम राजधानी दिल्ली में देश के गणमान्य लोगों को भेजा जाता है। गर्मियों के मौसम में फलने वाले आम की ये वो किस्में हैं जिन्हें दुनिया भर में पसंद किया जाता है। लेकिन इन्हीं के बीच यूपी के सहारनपुर में आम का एक ऐसा पेड़ आपको दिखाते हैं जो सिर्फ गर्मियों में नहीं बल्कि 12 महीने फल देता है। इस आम की वैरायटी का नाम है सदाबहार। सदाबहार आम का पेड़ आकार में आम के दूसरे पेड़ों की तुलना में काफी छोटा होता है, लेकिन इसकी उत्पादकता बेहद खास है। इस पेड़ पर एक ही समय में बोर, छोटे फल और पकने के लिए तैयार आम एक साथ दिखाई देते हैं। ये वो अनोखा पेड़ है जो आम के जायके और खुशबू को गर्मियों की मुट्ठी से निकालकर हर मौसम की हथेली पर रख देता है। सहारनपुर से राहुल कुमार और भागलपुर से राजीव सिद्धार्थ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
2: अब देखिए, गर्मी का मौसम है और फलों के राजा घर घर में पहुंच रहे हैं। इसी सिलसिले में अयोध्या के राजा रामलला सरकार तक भी आम का भोग पहुंचा है। अयोध्या के राम मंदिर में यूं भी समय समय पर विशेष और दुर्लभ किस्म के मौसमी फलों का भोग रामलला को लगाया जाता है। इसी कड़ी में रामलला को मियाजाकी आम का भोग भी लगाया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मियाजाकी आम की कीमत लाखों रुपए में होती है। ये बात और है कि आम का मोल चाहे लाखों में है, लेकिन भक्ति भाव तो अनमोल है। बताया जा रहा है कि खास आम अयोध्या के ही एक स्थानीय किसान ने उपजाया है। आपको बता दें कि देश भर के अलग अलग शहरों से वहां उपजने वाले खास फल समय समय पर रामलला के लिए भेजे जाते हैं। इन विशेष अवसरों पर फलों की टोकरियों से मंदिर को सजाया जाता है और रामलला को अर्पित फलों का भोग लगाने के बाद प्रसाद स्वरूप भक्तों में वितरित कर दिया जाता है। आम का रिश्ता सिर्फ हमारी जुबान से नहीं, बल्कि ये हमारे इतिहास और परंपरा के साथ भी जुड़ा है। उपनिषद और पुराणों में इसका जिक्र मिलता है। गालिब हो या गुलजार, शायर हो या कवि, सभी ने इसकी तारीफ में कसीदे पढ़े हैं। लेकिन चलिए आपको वैदिक काल से लेकर मुगल काल तक की आम कहानी बताते हैं इस रिपोर्ट में।

0: मीठा, रसीला और दिलों पर राज करने वाला आम। गर्मियों में लोग भले ही चलचलाती धूप और पसीने से परेशान रहते हैं, लेकिन इस मौसम में मिलने वाला आम किसी तोहफे से कम नहीं होता। बच्चे हो या बुजुर्ग, गरीब हो या अमीर, आम हर किसी को खास एहसास कराता है। आम सदियों से लोगों की पहली पसंद बना हुआ है और आज भी इसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। सबसे पहले आम आम्रफल कहा जाता था। पुराने वैदिक ग्रंथों में इसे रसाला और सहकार नाम से भी जाना जाता था। इन नामों का जिक्र प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे बृहदारण्यक, उपनिषद और पुराणों में भी मिलता है। यानी आम सिर्फ एक फल नहीं बल्कि बहुत पुराने समय से हमारी संस्कृति और परंपरा का अहम हिस्सा रहा है। ऐसा माना जाता है कि हजारों साल पहले पूर्वोत्तर भारत, म्यांमार और बांग्लादेश में आम की पैदावार हुई थी, जहां से ये दक्षिण भारत पहुंचा और तमिल में इसे आमकाय कहा गया, जो बोलचाल की भाषा में बदलकर धीरे धीरे मामकाय बन गया। मलयाली लोगों ने इसे आगे चलकर मांगा के नाम में बदल दिया। 16वीं सदी में पुर्तगाली कारोबारियों ने आम को अफ्रीका और ब्राजील तक पहुंचाया और धीरे धीरे ये आम फल खास बन गया और पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना लिया। इतिहास के हर दौर में इसकी मिठास ने लोगों के दिलों को जोड़ा है। शायद यही वजह है कि आज भी आम का इंतजार हर गर्मी में उतनी ही बेसब्री से किया जाता है। इतिहास में आम की खास अहमियत रही है। सम्राट अशोक से लेकर मुगल काल तक आम की दीवानगी देखी गई है। कविता और साहित्य में भी इसकी मिठास घुली है। मिर्जा गालिब की दीवानगी हो या लोकगीतों की मिठास, आम सदियों से कवियों और लेखकों की कलम को रसीला बनाता रहा है। आम के बारे में कवि उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब ने कहा था कि आम में बस दो खूबियां होनी चाहिए, एक मीठा हो और दूसरा बहुत सारे हो। सिर्फ गालिब ही नहीं बल्कि गुलजार से लेकर अपने जमाने के मशहूर शायरों में शुमार सागर खयामी ने तो इस पर पूरी उर्दू कविता लिखी है। फल कोई जमाने में नहीं, आम से बेहतर करता है सना आम की गालिब साफ सुखनवर। क्या बात है, आमों की हो देसी या विदेशी, सुर्खे हो सरौली हो कि तुखमे हो कि कलमी, चौसे हो सफेदे हो कि खजरी हो कि फजरी, एक तरफा कयामत है मगर आम दशहरी। हिंदी साहित्य में भी खासकर काव्य में आम लोगों को लेकर खूब लिखा रचा गया है। आम को लेकर आम का बाग नाम की कविता बेहद चर्चित है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा आम उत्पादक देश है। यहाँ अल्फांसो, दशहरी, लंगड़ा, केसर और तोतापुरी जैसी सैकड़ों किस्में पाई जाती हैं, जो हर राज्य की अपनी खास पहचान बन चुकी है। कुल मिलाकर आम सिर्फ स्वाद नहीं, एक हसीन एहसास है। एक ऐसा फल जो बचपन की यादें भी है और हर गर्मी की सबसे बड़ी खुशी भी। शायद इसीलिए हर साल जब आम आता है तो सिर्फ मौसम नहीं बदलता, माहौल बदल जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: अब देखिए, भोजन भगवान को अर्पित होता है और भोग बन जाता है। मौसम आम का है, सो शहर शहर अपने आराध्य को भक्त आम का भोग चढ़ाते हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के वाशिम में संत गजानन के धाम पर 7.25 क्विंटल आमों का चढ़ावा अर्पित किया गया। देखिए,

0: चारों तरफ आम ही आम, आमों से सजा संत गजानन महाराज का धाम। ये तस्वीरें महाराष्ट्र में वासन जिले के कारंजा लाड की ममता नगर की हैं। यहाँ पर संत गजानन महाराज मंदिर में 7.25 क्विंटल आम का दिव्य भोग अर्पित किया गया और आमों से ही उनकी प्रतिमा की शानदार सजावट की गई। एकादशी के पावन अवसर पर मंदिर में संत गजानन महाराज के दर्शन के लिए भक्तों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा हो गई। इस अवसर पर भक्ति भाव से महाराज की शानदार आरती की गई और फिर प्रसाद वितरण किया गया।
1: अपने इधर महाराज को 7.25 क्विंटल का आम का आरस यानी भोग चढ़ा गया था, उसी का प्रसाद स्वरूप आज रसाई बनके सब महिलाओं को खाना दे रहे।
0: संत गजानन महाराज को चढ़ाए गए आमों का रस निकालकर 6,000 भक्तों को प्रसाद के तौर पर बांटा गया। इस अवसर पर 30 गांवों से आई संस्थान की वॉलंटियर 3,000 महिलाओं ने आमरस के साथ पूरन पोली और दूसरी डिश तैयार की।
2: हम बेलखेड़ गांव से आम महिलाएं सेवा देने को आए हैं और महाराज की कृपा से हमें यहाँ आज ये जो ये सेवा मिली है ये हमारा अहोभाग्य हम समझते हैं।
3: कैसा लगा आपको सेवा करके?
2: हमको बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे जीवन का एक अविस्मरणीय क्षण हम मानेंगे।
0: खास बात ये है कि इस खास अवसर पर तमाम भक्त ही संत गजानन महाराज को अर्पित करने के लिए आम लेकर आए थे। वाशिम से जाका खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: बात अमरनाथ यात्रा की, अब इस आध्यात्मिक यात्रा में काफी कुछ नया देखने को मिलेगा। जम्मू में अमरनाथ बेस कैंप के पास तैयार हो रहा है एक ऐसा पार्क जहां कबाड़ से इतिहास रचा जा रहा है। जी हां, वहां एक ही जगह पर ताजमहल से लेकर एफिल टावर तक दुनिया और भारत की कई प्रसिद्ध धरोहरों की झलक देखने को मिलेगी। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है, ऐसे में जम्मू शहर में यात्रियों के लिए वेस्ट वंडर पार्क तैयार किया जा रहा है जो श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए एक नया आकर्षण होगा।
2: जल्द ही बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए यात्रा शुरू होने वाली है। जल्द अमरनाथ जाने वाले हर राह पर बाबा बर्फानी का जयकारा होगा। इस बार बाबा बर्फानी के दर्शन की आस में निकले अमरनाथ यात्रियों को जम्मू में ताजमहल की खूबसूरती दिखेगी। कुछ कदम आगे बढ़ने पर पेरिस का आईफिल टावर स्वागत करता दिखाई देगा।
3: वेस्ट टू वंडर पार्क, यानी जो वेस्ट हुआ मटेरियल होता है उससे एक पार्क बनाया जा रहा है और उस पार्क के बीच में कई स्मारक जो है वो स्थापित किए गए हैं। ये खास तौर पर आकर्षण का केंद्र इसलिए बन रहा है क्योंकि आगामी अमरनाथ यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है और देश भर के क्या विश्व भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु सबसे पहले जम्मू पहुंचेंगे और उनके लिए यहां पर जम्मू में खास तौर पर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आने वाला ये प्रोजेक्ट जो है स्थापित किया जा रहा है।
2: यहाँ दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी और मुंबई की पहचान गेटवे ऑफ इंडिया भी नजर आएंगे। ये कोई जादू नहीं बल्कि जम्मू में तैयार हो रहा एक अनोखा वेस्ट टू वंडर पार्क है। यहाँ बेकार चीजों और कबाड़ से देश दुनिया की प्रसिद्ध धरोहर की रेप्लिका बनाई जा रही है।
4: यात्री 2 महीने के लिए तो आते ही हैं, उनको थोड़ा सा वक्त मिलेगा और बच्चों को, हमारे जम्मू के बच्चों को भी सीखना मिलेगा कि हम अपने वेस्ट प्रोडक्ट से क्या क्या क्या बना सकते हैं।
2: यहाँ इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्चना ब्रिज भी होगा। वहीं खगोलीय रहस्यों को समेटे दिल्ली का जंतर मंतर भी है। पीसा की झुकी मीनार से लेकर राजस्थान की ऐतिहासिक विरासत तक कई प्रसिद्ध रचनाएं इस पार्क की शोभा बढ़ा रही है।
5: ई वेस्ट टू वंडर पार्क, एक वंडर पार्क जो ई वेस्ट मटेरियल से बन रही है और जो कि भगवती नगर में है, अमरनाथ यात्री निवास के बिल्कुल एकदम पास। बात करें यात्री, जो देश भर से यात्री आएंगे, जो टूरिस्ट आएंगे, वो जम्मू में जरूर विजिट कीजिए इस वंडर पार्क में।
2: इस परियोजना की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ इसकी खूबसूरती नहीं बल्कि इसका संदेश है, क्योंकि जो कबाड़ कभी बेकार माना जाता था वो अब कला और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक बन रहा है।
6: हमें लग रहा है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स और भी जगह बने ताकि वेस्ट को हम किस तरह से रिसाइकल करके शेप दे सके और जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकती है।
2: अमरनाथ यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु जम्मू पहुँचते हैं, ऐसे में ये पार्क उनके लिए एक बेहतरीन मनोरंजन और विश्राम स्थल साबित होगा। लंबी यात्रा के बीच श्रद्धालु यहाँ कुछ समय बिताकर देश दुनिया की मशहूर इमारतों की झलक एक ही जगह देख सकेंगे। जम्मू से राही कपूर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: एक अनोखा स्कूल इन दिनों वायरल है। आपने स्कूलों में बच्चों को जाते तो देखा होगा, लेकिन क्या कभी ऐसा स्कूल देखा है जहां सिर्फ डॉग ही पढ़ते हों? हम आपको दिखाते हैं एक ऐसा है स्कूल जो चीन के शंघाई में मौजूद है। ये एक ऐसा डॉग प्री स्कूल है जहां पर डॉग्स के लिए पढ़ाई, खेल, संगीत और फिटनेस तक की सुविधाएं मौजूद हैं।

0: मधुर धुनों के बीच खेलते ये डॉग्स किसी पार्क में नहीं बल्कि चीन के शंघाई में एक डॉग प्री स्कूल में है। यहाँ हर सुबह इन नन्हे मेहमानों की क्लास शुरू होती है। दिन भर के स्केड्यूल में खेलकूद, सोशलाइजेशन, हेल्दी स्नैक्स, फिटनेस ट्रेनिंग और लाइव पियानो म्यूजिक तक शामिल है। पॉथ्री नाम का ये डॉग प्री स्कूल पालतू डॉग्स को घर से लाकर पूरे दिन उनकी देखभाल करता है। स्कूल की टीम खुद डॉग्स को लेने और छोड़ने का काम भी करती है। स्कूल में डॉग्स के लिए खास किचन भी है जहां उनके लिए ताज़ा और हेल्दी ट्रीट तैयार किए जाते हैं। शाम की चाय की तरह यहां डॉग्स के लिए आफ्टरनून टी भी परोसी जाती है। सिर्फ यही नहीं, यहां डॉग्स को ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज कराई जाती है, आउटडोर ट्रेनिंग दी जाती है और उनकी मानसिक सेहत का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। इस अनोखी प्री स्कूल की शुरुआत जेनजांग ने की थी। अपने पालतू डॉग की चिंता और अकेलेपन की समस्या को देखते हुए उन्हें ये आइडिया आया। सिर्फ एक साल में यहाँ आने वाले डॉग्स की संख्या 10 से बढ़कर 200 तक पहुँच गई है। बढ़ती मांग को देखते हुए अब दूसरा सेंटर खोलने की तैयारी भी चल रही है।
1: 是一周年，但我刚开始的时候，我没有想过会有那么多的人，那么多的家长会来，有一波志同道合的小伙伴就加入我们了。然后那个时候，我们的狗狗已经从十几只到了三四十只，到了第七、第十个月的时候。
0: चीन में घटती जन्म दर और बदलती जीवन शैली के बीच पालतू जानवरों पर खर्च तेजी से बढ़ रहा है। उद्योग से जुड़े आंकड़ों के मुताबिक चीन का शहरी पेट मार्केट 2025 में 312 अरब युआन से ज्यादा का हो चुका है और अगले कुछ वर्षों में इसके 405 अरब युआन के पार पहुंचने का अनुमान है। यानी अब डॉग्स के लिए भी स्कूल, फिटनेस और लग्जरी लाइफस्टाइल एक बड़ा कारोबार बन चुका है। ऐसे में पियानो के धुनों से लेकर फिटनेस ट्रेनिंग और स्पेशल ट्रीट्स तक, शंघाई का ये डॉग प्री स्कूल दिखाता है कि बदलती दुनिया में पालतू जानवरों की जगह अब परिवार के सबसे खास सदस्यों में हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: फ्रांस के एवन में G7 शिखर सम्मेलन, कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात, कई वैश्विक मुद्दों पर बातचीत। टाइम मैगजीन की टॉप 100 लिस्ट में शामिल हुई स्मृति मंधाना, इस सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी, महिला क्रिकेट में योगदान के लिए मिला सम्मान। रक्षा मोर्चे पर बढ़ेगी भारत की ताकत, वायुसेना बनाएगी घातक स्वदेशी कामिकेज ड्रोन, 16,000 फीट की ऊंचाई पर भी अचूक वार करने में सक्षम। जम्मू कश्मीर में पवित्र अमरनाथ यात्रा की तैयारियां लगभग पूरी, यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की सेवा के लिए देशभर से पहुंची लंगर कमेटियां, बाबा बर्फानी के लगे जयकारे। वाराणसी में तेजी से आकार ले रहा यूपी का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, शिव, काशी और गंगा की थीम पर बनी आकर्षण का केंद्र, दिसंबर तक पूरा होगा निर्माण।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक
3: आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है, इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा सातवें बड़ा मंगल पर उमड़े आस्था के हुजूम की भी।
4: ज्येष्ठ मास के सातवें बड़ा मंगल पर देश भर के हनुमान मंदिरों में उमड़ा आस्था का हुजूम। रामनगरी अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में राम भक्त हनुमान के दर्शन पूजन के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। भीड़ को देखते हुए यहां भक्तों की सुविधा और सुरक्षा की भी पुख्ता व्यवस्था रही। बारी आने पर भक्तों को दर्शन पूजन का सौभाग्य प्राप्त होता रहा। प्रयागराज में संगम के तट पर लेटे हनुमान जी के दर्शन के लिए भी भक्त सुबह से ही पहुंचने लगे और देखते ही देखते उनकी लंबी कतारें लग गई। इस विशेष अवसर के लिए हनुमान जी की प्रतिमा का फूलों और फलों से भव्य श्रृंगार किया गया और उन्हें छप्पन भोग भी लगाया गया। मान्यता है कि बड़ा मंगल के दिन बजरंग बली की भक्ति करने से जीवन के सभी दुख, दर्द और संकट दूर हो जाते हैं। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में श्रीनाथ जी की नौका विहार मनोरथ का भव्य आयोजन हुआ। इस नौका यात्रा उत्सव को लेकर मंदिर की दिव्य सजावट की गई, जिसमें बड़ी संख्या में आम का उपयोग भी किया गया। इस विशेष अवसर के लिए ठाकुर जी को मलमल के हल्के वस्त्र पहनाकर सुगंधित फूलों और चंदन से श्रृंगार किया गया और फिर ठाकुर जी को जल के बीच विशेष रूप से सुसज्जित नावों में विराजमान कर भव्य झांकी सजाई गई। साथ ही बधाई गीत भी गाए गए। इस अवसर पर ठाकुर जी के विशेष दर्शन कर भक्त मंत्रमुग्ध हो गए। अधिक मास के समापन के अवसर पर इस दिव्य उत्सव का आयोजन हुआ। ओडिशा के पुरी में 16 जुलाई से शुरू होने वाली भव्य जगन्नाथ यात्रा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। कारीगर तीनों पवित्र रथों को तेजी से आकार देने में जुटे हैं। इसके अलावा नाटगोर प्रतिमाओं की पॉलिशिंग का काम भी तेजी से चल रहा है, तो रथ यात्रा के दौरान भगवान की सेवा पूजा के लिए लकड़ी से बने उपकरणों का निर्माण कार्य भी हो रहा है। चित्रकार सेवक तीनों रथों के पार्श्व देव देवियों की मूर्तियों, सखियों, उलटशुआ, देव देवी आसन फ्रेम आदि पर रंग रोगन करने में लगातार जुटे हैं। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर हर स्तर पर बड़ी तैयारी की जा रही है। 3 जुलाई से शुरू होने वाली इस पवित्र यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं की सुविधा से लेकर उनकी सुरक्षा तक को लेकर तैयारी चल रही है। इसी कड़ी में अनंतनाग पुलिस ने पहलगाम में सुरक्षा और आपातकालीन एजेंसियों के साथ मिलकर तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस दौरान कई संभावित आपात स्थितियों से निपटने को लेकर अभ्यास किया गया, जिनमें सुरक्षा, खतरे, मेडिकल इमरजेंसी, भीड़ प्रबंधन और निकासी जैसी स्थितियां शामिल रहीं। इस मॉक ड्रिल के तहत अलग अलग एजेंसियों के बीच तालमेल, संचार और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली की समीक्षा की गई। ये तस्वीरें ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित फॉरेस्ट पार्क की है, जहां राजा पर्वा की रौनक बिखरी हुई है। पारंपरिक झूले, उत्सव और उल्लास के साथ यहां राजा पर्व की शुरुआत हुई। रंग बिरंगे पारंपरिक परिधानों में सजी महिलाएं झूलों का आनंद लेते बच्चों के साथ ही इस पर्व में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और पान समेत पारंपरिक पकवानों के स्टॉल देखने को मिल रहे हैं। 3 दिवसीय इस उत्सव के साथ ओडिशा में मॉनसून का स्वागत किया गया। ये राजा पर्व नारित्व और धरती माता की उर्वरता का उत्सव है, यानी ये प्रकृति, उर्वरता और परंपरा का अनूठा उत्सव है, जिसमें पूरे राज्य के लोगों की भागीदारी होती है। इस उत्सव को मनाने के लिए पारंपरिक उड़िया व्यंजन तैयार किए जाते हैं। साथ ही विशेष रूप से तैयार किया गया पान इस त्योहार के प्रमुख आकर्षणों में से एक है।
3: और अब बात एक ऐसे सरकारी स्कूल की, जिसमें दाखिले के लिए पेरेंट्स कतारों में खड़े नजर आए। तेलंगाना के नलकोंडा जिले का एक सरकारी स्कूल इन दिनों अपनी वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के लिए चर्चा में है। इस सरकारी स्कूल में एसी, स्मार्ट क्लासरूम, एआई आधारित टीचिंग और डिजिटल लैब जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। स्कूल प्रशासन के मुताबिक इसकी लोकप्रियता का आलम यह है कि केवल शहर से ही नहीं बल्कि जिले के दूरदराज इलाकों और पड़ोसी जिलों से भी अभिभावक बच्चों के फॉर्म लेकर पहुंच रहे हैं।

0: इससे पहले स्कूल को देखो तो वो स्कूल में कोई भी हमारा को ये फैसिलिटी नहीं।
1: इसे आप तेलंगाना के सरकारी स्कूल के पुनर्जन्म की कहानी भी कह सकते हैं। नलगोंडा के बोट्टुगुड़ा में कोमाटी रेड्डी प्रतीक गवर्नमेंट स्कूल में इस साल एडमिशन का ऐसा क्रेज देखा जा रहा है कि यहाँ महज 450 सीटों के लिए करीब 4000 आवेदन आ चुके हैं। इसके चलते इस सरकारी स्कूल में दाखिला मिलना किसी आईआईटी या आईआईएम की सीट मिलने जितना मुश्किल हो गया है।
2: नलगोंडा जिले ने अपना इमेज पूरी तरह, अपनी तस्वीर पूरी तरह बदल दी। वजह है, इस जिले में एक वक्त में जीरो एनरोलमेंट्स, शून्य एनरोलमेंट्स गवर्नमेंट स्कूल में होते थे और इसी के लिए देश भर में यह नलगोंडा जिले का नाम था। लेकिन एक साल के अंदर नलगोंडा जिले में एक कोमोट्रिटी प्रति गवर्नमेंट स्कूल, यह सरकारी स्कूल में 450 सीट के लिए 4000 एप्लीकेशंस दाखिल किए गए।
1: स्कूल के बाहर का नजारा किसी महंगे और वीआईपी प्राइवेट स्कूल जैसा लग रहा है, जहां सुबह सुबह से ही माता पिता अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूलों की मोटी फीस के मुकाबले उनसे कहीं बेहतर सुविधाओं से लैस ये सरकारी स्कूल बच्चों और अभिभावकों को ज्यादा आकर्षित कर रहा है।
3: पहले हमारा स्कूल जो गवर्नमेंट था उसमें ना फैसिलिटी कुछ भी नहीं थी, वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, ब्लैक बोर्ड था, तो हमारे को ऐसा दिल बोलता था कि कब घर जाएं। इसलिए हमारे कोमटेड्डी वेंकट रेड्डी जो मिनिस्टर है सर, उन्होंने ये स्कूल बनवाया। इसमें डिजिटल बोर्ड है, एसी कैंपस है पूरा, और यहाँ पर ऐसा दिखता है कि कब स्कूल आए, घर जाने का मन ही नहीं करता हमें।
4: स्कूल अच्छा है और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, टीचर्स भी अच्छे हैं। मैं गवर्नमेंट स्कूल में अच्छी पढ़ती हूँ और प्राइवेट स्कूल में अच्छे पढ़ते हैं, बट मैं कुछ अच्छा पढ़ रहे हैं वो क्या बोलते हैं।
1: एडमिशन की लाइन में लगे अभिभावकों का कहना है कि पहले वो अपने बच्चे के लिए नामी गिरामी प्राइवेट स्कूल में भारी भरकम फीस चुका रहे थे, लेकिन जब उन्होंने इस स्कूल के कैंपस और सुविधाओं को देखा तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कई प्राइवेट स्कूलों से बेहतर लगा।
5: सर, इससे पहले हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में थे सर, फिर वहाँ फीस, बुक्स सब बहुत ज़्यादा हो जाता सर, तो परेशानी हो रहा था बच्चों को पढ़ाना लिखाना। तो ये स्कूल बना है सर, ये बहुत अच्छा बना है स्कूल, यहाँ कंप्यूटर एजुकेशन है, फिर एसी कैंपस है, प्राइवेट स्कूल के बराबर ये स्कूल बना है। इस लेवल के साल में ये स्कूल में एडमिशन करे।
1: दरअसल साल भर पहले इस स्कूल में बुनियादी सुविधाएं तक नहीं थी। पिछले साल तक

0: एआई की क्लास में सुंदर पिचाई की तस्वीर बच्चों को इंस्पायर करती है, तो वहीं स्पोर्ट्स एक्टिविटी रूम में सुनील छेत्री, पीवी सिंधु और विराट कोहली आइकन हैं।
1: एसी क्लासरूम्स है बच्चों के लिए, रेप्यूटेड यूनिफॉर्म यहाँ पर बताई जाती है और साथ ही साथ मिड डे मील्स, ब्रेकफास्ट मील्स यहाँ पर लाए गए हैं, जहाँ पर बच्चों को मुफ्त खाना दिया जाता है, यूनिफॉर्म मुफ्त में दिया जाता है, किताबें और बैग मुफ्त में दी जाती हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब शिक्षा की बात हो तो एआई लर्निंग क्लासेस, स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स, एसी क्लासरूम, साथ में मॉडर्न बेंचेस के साथ एक मुफ्त में इस तरीके का अनुभव यहाँ के सरकारी स्कूल के बच्चों को देखने को मिलता है।
0: कुछ समय पहले तक नलगोंडा की गिनती उन जिलों में होती थी जहाँ सरकारी स्कूलों में बहुत कम या बिल्कुल भी एडमिशन नहीं होते थे, लेकिन इस स्कूल ने तस्वीर बदल दी है और अब ये स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर और पढ़ाई के माहौल के मामले में बड़े बड़े कॉर्पोरेट स्कूलों को टक्कर दे रहा है। तेलंगाना के नलगोंडा से अब्दुल बशीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गदर के 25 साल पूरे होने पर फैंस को सनी देओल ने कहा शुक्रिया। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चलें फिल्मी मोड पर।
3: फिल्म गदर एक प्रेम कथा के 25 साल पूरे होने पर सनी देओल ने उनके निभाए गए तारा सिंह के किरदार को ढेर सारा प्यार देने के लिए फैंस का शुक्रिया अदा किया। साल 2001 में इस फिल्म में तारा सिंह बनकर सनी देओल बड़े पर्दे पर छा गए थे। 15 जून को फिल्म गदर के रिलीज होने के 25 साल पूरे हो गए। फिल्म गदर का क्रेज लोगों में इतना ज्यादा था कि इसका एक उदाहरण साल 2023 में भी देखने को मिला, जब इस फिल्म के अगले भाग यानी गदर 2 को भी बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता मिली। अब निर्देशक अनिल शर्मा इस फिल्म के तीसरे पार्ट पर काम कर रहे हैं। करण जौहर अब साउथ सिनेमा में फिल्म निर्माण की तरफ भी बढ़ चुके हैं। इस कड़ी में उन्होंने पहला कदम मलयालम सिनेमा की तरफ बढ़ाया है। करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले फिल्म ओडियन द एज ऑफ इल्यूजन के निर्माण का ऐलान हो चुका है। इस फिल्म का पोस्टर भी शेयर किया जा चुका है। धर्मा प्रोडक्शन ने 19वीं सदी के केरल की लोक कथाओं और सांस्कृतिक पौराणिक कथाओं पर आधारित इस फिल्म के लिए पृथ्वीराज प्रोडक्शंस और निर्देशक राहुल के साथ हाथ मिलाया है। फिल्म ओडियन में पृथ्वीराज सुकुमारन नजर आएंगे, जिनमें उनके साथ मंजू वॉरियर अहम भूमिका में नजर आएंगी। राजकुमार हिरानी जियो स्टारर पर प्रीतम और पेड्रो नाम का वेब शो ला रहे हैं, जिसमें उनके बेटे वीर हिरानी अपना एक्टिंग डेब्यू करते नजर आएंगे। अरशद वारसी और वीर हिरानी के इस शो का ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है। सीरीज की ये कहानी गोवा पर आधारित है, जहां अरशद वारसी यानी पेड्रो नाम के पुलिस ऑफिसर और इंजीनियर के रूप में प्रीतम यानी वीर हिरानी की जोड़ी धमाल करती हुई नजर आ रही है। प्रीतम और पेड्रो शो 3 जुलाई से स्ट्रीम होना शुरू होगा। इसमें मोना सिंह, बमन ईरानी और विक्रांत मैसी जैसे कलाकार भी नजर आने वाले हैं।
2: न्यूज पथ के सफर भी अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी की। आईपीएल में कामयाबी की बुलंदियां छूने वाले वैभव सूर्यवंशी अब क्रिकेट के मैदान पर झगड़े को लेकर चर्चा में। वैभव सूर्यवंशी फिलहाल श्रीलंका में चल रही ट्राई सीरीज में इंडिया ए से खेल रहे हैं। दामुला में सोमवार को इस ट्राई सीरीज का चौथा मैच विवादों में घिर गया। इस मुकाबले में श्रीलंका ए ने तिलक वर्मा की कप्तानी वाली इंडिया ए को सुपर ओवर में हरा दिया। इस मैच में वैभव सूर्यवंशी बल्ले से कोई खास कमाल नहीं कर पाए, लेकिन श्रीलंकाई खिलाड़ियों से भिड़ने के कारण वो चर्चा में आ गए। सुपर ओवर में श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 16 रन बनाए थे, जवाब में भारतीय टीम 9 रन ही बना सकी। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि सुपर ओवर खत्म होने के बाद श्रीलंका के ऑलराउंडर विशेन ने वैभव सूर्यवंशी से कहा, मैच खत्म हो गया, अब घर जा। इस बात पर वैभव सूर्यवंशी भड़क गए और श्रीलंकाई खिलाड़ी से जा भिड़े। माहौल इतना गर्मा गया कि दोनों के बीच शारीरिक रूप से झड़प भी हुई। पहले सूर्यांश शेडगे और श्रीलंकाई खिलाड़ियों के बीच शब्दों के बाण चले, लेकिन जब वैभव सूर्यवंशी पास आए तो उन्होंने श्रीलंका के एक खिलाड़ी को धक्का दिया। श्रीलंका टीम के अन्य खिलाड़ियों ने बीच बचाव किया। वहीं जब वैभव डगआउट की तरफ जा रहे थे, तब भी उन्होंने हाथ से इशारा करके कुछ कहा। श्रीलंका में वैभव सूर्यवंशी के झगड़े को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कई क्रिकेट फैंस श्रीलंकाई खिलाड़ियों के उकसावे को इस भिड़ंत के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वहीं कुछ यूजर्स ने वैभव को आगाह करते हुए रिएक्ट किया है कि उन्हें

0: समय के साथ ट्रोल्स को इग्नोर करना सीखना होगा, वरना उनकी इमेज खराब होने का खतरा हो सकता है। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं इस झगड़े के बारे में दरअसल हुआ क्या था। विक्रांत, सबसे पहले तो आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर मैदान पर ऐसा क्या हुआ जो कि वैभव सूर्यवंशी अपना आपा खो बैठे और विरोधी टीम के खिलाड़ी के साथ धक्का मुक्की की नौबत तक आ गई, और साथ ही इंडिया ए टीम के कप्तान तिलक वर्मा भी मैच के दौरान विवाद करते हुए नजर आए।
1: ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था, और देखिए इस इंसिडेंट को 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और मैं अब तक डाइजेस्ट नहीं कर पाया हूँ कि कल हुआ क्या था। हम जानते हैं कि प्रोवोकेशन श्रीलंकन तरफ से हुई होगी, और ये हम जानते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट जिस तरह से खेली जाती है, खिलाड़ी एक दूसरे को स्लेज करते हैं और वैभव सूर्यवंशी को सामने वाली टीमें टारगेट करेंगी। ये तो इंडिया ए श्रीलंका ए का मुकाबला है, कल को वो जब आयरलैंड जाएंगे या इंग्लैंड जाएंगे या उसके बाद भारत के लिए खेलेंगे, टीमें उनको टारगेट करेंगी। बिकॉज एक बात होती है ना, 15 साल में आपकी गेम कैसी है, दूसरा होता है कि 15 साल में आप मेंटली कितने स्ट्रांग हैं। भाई आप मेंटली स्ट्रांग हैं तो ही आप इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन कल ना ऐसा लगा वैभव सूर्यवंशी को देखकर कि यार एक इंटरनेशनल प्लेयर इस तरह से रिएक्ट नहीं करता। हुआ क्या एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन जब इंडिया मैच हार गया, ए फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि आप सिर्फ सुपर ओवर की आखिरी गेंद छोड़ दे, उससे पहले अगर आप 20-25 मिनट देखे बहुत लड़ाइयाँ हो रही थी। अब एंड वाला जो कहते हैं ना कि ब्लो, वो था वैभव सूर्यवंशी के नाम, लेकिन उससे पहले तिलक वर्मा जो आपके कप्तान हैं वो उलझ रहे थे, बार बार अंपायरों के साथ उलझ रहे थे। और मुझे तो ये लगता है कि तिलक वर्मा के बिहेवियर को देखकर शायद मुझे ज़्यादा बुरा लगा। इनफैक्ट वो कप्तान है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, वर्ल्ड कप चैंपियन टीम का हिस्सा थे, तो शायद मैं उनसे बेहतर उम्मीद करता हूँ। और एक कप्तान से तो ये उम्मीद की जाती है कि वो अपनी टीम को लीड करे, मैं उस कप्तान से ये उम्मीद करता हूँ कि वैभव सूर्यवंशी को वो बल्कि समझाए, ना कि आप जो पिछले 25-30 मिनट से चल रहा था, जैसे होता ना कि जमुना पार एक क्लब का मैच चल रहा है, आप भी अंपायर से लड़ रहे हो, वो जो फील्डर है वो भी आपको गाली दे रहे हैं, आप भी जाके घुसुड़मुक्की के लिए तैयार हो रहे हो, तो ये सही नहीं होता। लोग ना अब क्या कह रहे हैं, 15 साल का बच्चा है, तुम कौन होते हो मॉरल पुलिसिंग करने वाले। बात ये नहीं है, जब वो क्रिकेट इतनी ज़बरदस्त खेल रहे थे तब आप नहीं कहते थे कि यार ये तो बेचारा 15 साल का बच्चा है, तब आप कहते थे ही इज़ अ मैन, ही इज़ रेडी फॉर द वर्ल्ड। और आज जब आपको लगता है कि उस बिहेवियर के कारण, उस आपा खोने के कारण उनकी गेम अफेक्ट होगी, तो आप उसको अभी से रोकें। ये चीज़ें जो हैं ये अंडर 19 लेवल पे चलती हैं, ऊपर जाकर क्या होगा कि सामने वाली टीमें समझ जाएंगी कि इनको अगर आप टारगेट करेंगे, जहनी तौर पर स्लेज करेंगे, गाली देंगे, तो भैया उस तरह से आपा खो बैठेंगे। अब ये इंटरनेशनल मैच होता, अगर ये इंटरनेशनल मैच होता तो बैन लग जाता। आप ये याद रखिएगा, ये फिजिकल कॉन्टैक्ट था, ये धक्का मुक्की हुई है। मैंने आपको क्या बोला, मैं अगर आपको स्लेज कर रहा हूँ वो नियमों के तहत सही है, अनलेस एंड अंटिल मैं रेशियल विलिफिकेशन, यानी कि मैं नस्ल भेदी टिप्पणी कर रहा हूँ, अगर मैं नस्ल भेदी टिप्पणी कर रहा हूँ तो फिर वो ICC कोड ऑफ कॉन्डक्ट में आती है। उसके अलावा स्लेजिंग चलती रहती है, बातें चलती रहती हैं। और हाँ, अगर आपने धक्का दे दिया, आपने फिजिकल कॉन्टैक्ट कर लिया, तो बैन तो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में लग जाता है।
0: और अब रुख करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज बात देश के उन बेटियों की जो कि अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने जा रही हैं। इस चैंपियनशिप की टीम के चयन के लिए हरियाणा में ट्रायल हुआ। इस ट्रायल में चुनी गई देश की 10 पहलवान बेटियों में 6 हरियाणा की हैं, बाकी 4 में 2 रेसलर दिल्ली और 1-1 राजस्थान और महाराष्ट्र से हैं।

0: हरियाणा की पहचान कुश्ती के गढ़ के तौर पर भी है। यहाँ छोटी उम्र से ही बच्चे पहलवानी के दांव पेच सीखने लगते हैं और आगे ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियाई खेलों से पदक जीतकर देश का मान बढ़ाते आ रहे हैं। हरियाणा की मिट्टी और संस्कृति में कुश्ती जैसे रची बसी है और यही वजह है कि रेसलिंग में देश के लिए ज्यादातर मेडल इसी राज्य से आते हैं। सिर्फ छोरे ही नहीं बल्कि हरियाणा की छोरियां भी कुश्ती में अपने हुनर का शानदार प्रदर्शन करती हैं।
1: काफी मेहनत करनी पड़ती है, सुबह शाम दोनों टाइम, डाइट का ध्यान रखना और प्रॉपर रेस्ट वगैरह सब कुछ।
2: क्या काम करते हैं पिता आपके?
1: पापा खेती करते हैं।
2: कभी रोका नहीं परिवार ने कुश्ती में?
1: नहीं, पूरा साथ दिया।
3: कब से पैदा हुआ?
1: बचपन से ही, जैसे मेरे भाई हैं बड़े, वो जाते थे तो उन्हें देख।
0: हरियाणा के बहालगढ़ स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग टीम के चयन के लिए ट्रायल आयोजित हुआ, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों की लड़कियां शामिल हुई जो कुश्ती के अपने हुनर का प्रदर्शन करती नजर आई।
4: इसमें लगभग 150 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। 10 वजन इसमें सिलेक्ट करने हैं, 10 वजनों का चयन होना है और अजरबैजान बाकू में ये खेलने के लिए अगले महीने।
0: इस ट्रायल में प्रदर्शन के आधार पर 10 महिला पहलवानों का चयन किया गया। खास बात ये है कि इसमें भी हरियाणा की बेटियों का दबदबा रहा। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए चुनी गई 10 महिला पहलवानों में 6 हरियाणा की ही हैं।
5: खिलाड़ी तो बहुत हैं, लेकिन टोटल जो जाएंगे बाहर जाएंगे तो 10 खिलाड़ी जाएंगे।
2: किस किस कैटेगरी में सर?
5: ये सब कैटेगरी में है, जैसे 53 में है, 57 में है, सारी कैटेगरी जो है उसमें।
2: ये ट्रायल सिर्फ लड़कियों की है या बॉयज की भी?
5: नहीं, सिर्फ लड़कियों की।
0: इस खेल की बेहतरी के लिए भारतीय कुश्ती संघ की ओर से लगातार कोशिशें की जा रही है। चयन प्रक्रिया में भी कुछ बदलाव किए गए हैं जिसका फायदा खिलाड़ियों को मिल रहा है।
6: तो फेडरेशन ने जो सिस्टम निकाला है ना, ये ओवर एज निकालने का, उस सिस्टम के आधार पे नए बच्चों को मौका मिल जाएगा। हमारे अभी तक का जितना भी देखा है फेडरेशन ने, पहलवान जो है एक मतलब कि जूनियर और कैडेट खेल के खत्म हो जाते हैं और जो जितना भी अपना स्टेमिना है वो अंडर 17 और अंडर 20 में ख़राब कर देते हैं, सीनियर में वो आ नहीं पाते हैं। तो लगभग अभी ये जो नया सिस्टम जो ओवर एज को लेकर फेडरेशन ने कराया है, उससे लगता है कि पहलवान जो ना अब हमारे को सीनियर में मेडल देंगे। ये जो आज ये बच्चे खेल रहे हैं ना, ये सीनियर में आपको आने वाले नहीं 28 महीने 32 ओलंपिक में आपको ये बच्चे मेडल देंगे।
0: ट्रायल में चुनी गई लड़कियां अब अजरबैजान की राजधानी बाकू में आयोजित होने वाली अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में अलग अलग भार वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। ये चैंपियनशिप 27 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित होगी। सोनीपत से पवन राठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ताइवान में ताओ आदिवासियों ने लकड़ी की पारंपरिक नाव से फिलीपींस के लिए शुरू की ऐतिहासिक समुद्री यात्रा। आइए सीधे आपको ले चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश दुनिया की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। नीदरलैंड्स के खिलाफ अपनी फुटबॉल टीम का मैच ड्रॉ होने पर जापानी फैंस खुशी से झूम उठे। जश्न मनाने के लिए वो टोक्यो के सबसे मशहूर और बिजी चौराहे शिबुया क्रॉसिंग पर जमा हुए, लेकिन सिर्फ 40 सेकंड के लिए। जैसे ही सिग्नल लाल हुआ, ठीक उसी सेकंड सब ने जश्न रोका और बेहद अनुशासन के साथ वापस फुटपाथ पर लौट आए ताकि गाड़ियों का रास्ता ना रुके। यानी जब तक पैदल चलने वालों के लिए ट्रैफिक लाइट हरी रही, तब तक सड़क के बीचों बीच फैंस नाचते गाते रहे, लाल होते ही जश्न पर फुल स्टॉप। दुनिया जापानी फुटबॉल फैंस की तारीफ कर रही है। ताइवान के ताओ आदिवासियों ने लकड़ी की पारंपरिक नाव से फिलीपींस के लिए ऐतिहासिक समुद्री यात्रा शुरू की है, जिसका मकसद सैकड़ों साल पुराने सांस्कृतिक और समुद्री संबंधों को फिर से जीवित करना है। इस 20 सीटों वाली ओवाय नाव को ऑर्किड द्वीप के 6 समुदायों ने मिलकर बनाया है। 24 घंटे की समुद्री यात्रा में 7 लोग बारी बारी से चप्पू चलाएंगे। ये कैंपेन दोनों समुदायों के बीच खोए हुए संपर्क को फिर से जोड़ने का प्रयास है। स्थानीय लोगों ने इस समुद्री यात्रा को एक भावनात्मक और ऐतिहासिक कदम बताया और इसका स्वागत किया। चीन में 600 साल पुरानी ओपेरा कला की धमाकेदार वापसी हुई। यहां हिट टीवी ड्रामा ने किंग क्यान ओपेरा को एक बार फिर सुपर हिट बना दिया। यहां के शियान की बैल्कनीज पर अचानक से इन ओपेरा शोज की प्रस्तुति होने लगी है, जिसके कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा में चीन दर्शकों का दिल जीत लिया है। चीन में तैयार हो गया है एआई लैब का भविष्य, क्योंकि बीजिंग में एआई एक पूरी लैब चला रहा है जिसमें इंसान सिर्फ निगरानी कर रहे हैं। इस लाइट्स आउट लैब में बिना स्टाफ के एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। लैब में एआई खुद रिसर्च करता है और खुद ही नतीजे निकालते हैं। लैब में ना तो कोई स्क्रीन है और ना ही कोई एलसीडी डिस्प्ले। यहाँ एआई तमाम प्रक्रियाएं खुद सुधारता है और दक्षता बढ़ाता है। ड्रैगन बोट फेस्टिवल से पहले चीन में रेस का रोमांच देखने को मिल रहा है। यहाँ चोंकिंग की फुरोन नदी में उतरी 18 टीमों ने एक दूसरे को चुनौती दी, जहाँ करीब करीब 500 पैडलर्स ने ताकत और तालमेल का प्रदर्शन किया है। रेस में 200 और 500 मीटर की रेस में सबसे जबरदस्त मुकाबला हुआ। ग्वांगझू में 600 एथलीट्स ने इस रेस में हिस्सा लिया। यहाँ रिटर्न ड्रैगन फॉर्मेट ने कई गुना रोमांच बढ़ा दिया।
3: स्मृति मंधाना के नाम जुड़ा हिस्टोरिकल अचीवमेंट, तो वहीं राजस्थान के धौलपुर के बेटे ने बनाई अंडर 19 टीम में जगह। खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले खेल चक्कर।
7: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ओपनर बल्लेबाज स्मृति मंधाना के नाम के साथ एक ऐतिहासिक अचीवमेंट जुड़ गया है। टाइम मैगजीन ने अपनी टॉप 100 लिस्ट में स्मृति मंधाना को शामिल किया है। हैरानी की बात यह है कि इस लिस्ट में विराट और रोहित जैसे स्टार प्लेयर्स गायब हैं। इस लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी है और उनका नाम है स्मृति मंधाना, जो लिस्ट में 41वें नंबर पर हैं। टाइम्स मैगजीन की इस लिस्ट में प्लेयर्स, कोच और निवेशक तक शामिल हैं। इस लिस्ट में क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लायनल मेसी और कार्लोस अल्कारेज़ जैसे स्टार्स शामिल हैं। वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप में कल हरमनप्रीत की टीम का मुकाबला नीदरलैंड्स की महिला टीम से होगा। महिला टी20 विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ 64 रनों की शानदार जीत के बाद भारतीय टीम का लक्ष्य अब कल खेले जाने वाले अपने अगले मुकाबले में नीदरलैंड्स को हराना होगा। लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में कल भारत अफगानिस्तान के बीच वनडे मैच खेला जाएगा। ये मैच डे नाइट होगा। कल दोपहर 1 बजे टॉस के बाद लगभग 1:30 बजे मैच शुरू होगा। 3 मैचों की सीरीज का ये दूसरा मुकाबला है, जिसमें पहले मैच में 7 विकेट से जीत हासिल कर टीम इंडिया 1-0 से आगे है। अब कल के मैच को जीत कर भारतीय टीम का सीरीज में अजेय बढ़त बनाने पर फोकस रहेगा। राजस्थान के धौलपुर के प्रतिभाशाली क्रिकेटर रजत बघेल का भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम में चयन हुआ है। रजत को श्रीलंका दौरे के लिए चुनी भारतीय टीम में शामिल किया गया है। भारतीय अंडर 19 टीम 6 जुलाई से श्रीलंका में एक दिवसीय मुकाबले खेलेगी। रजत के चयन की सूचना मिलने के बाद से शहर में और खेल जगत में खुशी है। रजत के साथी खिलाड़ियों, खेल प्रेमियों और स्थानीय लोगों ने इसे धौलपुर के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। रजत इससे पहले राजस्थान अंडर 16 टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वे 2 बार 13 शतक जड़कर सुर्खियों में आ चुके हैं। उनकी शानदार बल्लेबाजी और निरंतर प्रदर्शन ने चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा और उन्हें इंडियन अंडर 19 टीम में जगह मिली। सेरेना और वीनस विलियम्स विंबलडन में अपनी डबल्स पार्टनरशिप फिर से शुरू कर रही हैं। ऑल इंग्लैंड क्लब ने आज दोनों को ग्रास कोर्ट ग्रैंड स्लैम के लिए डबल्स वाइल्ड कार्ड का न्योता दिया है। ये टूर्नामेंट 2 हफ्ते से भी कम समय में शुरू होने वाला है। विलियम्स बहनों ने साथ मिलकर डबल्स में 14 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं, जिनमें से 6 खिताब दोनों ने विंबलडन में जीते। बहनों की इस जोड़ी ने पहला विंबलडन खिताब 2000 में और आखिरी विंबलडन खिताब 2016 में जीता था।
8: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी।
9: Tune in how to A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
10: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
1: फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन, कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात, कई वैश्विक मुद्दों पर बातचीत। टाइम मैगजीन की टॉप 100 लिस्ट में शामिल हुई स्मृति मंधाना, इस सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी, महिला क्रिकेट में योगदान के लिए मिला सम्मान। रक्षा मोर्चे पर बढ़ेगी भारत की ताकत, वायुसेना बनाएगी घातक स्वदेशी की कामिकेज ड्रोन, 16,000 फीट की ऊंचाई पर भी अचूक वार करने में सक्षम। जम्मू कश्मीर में पवित्र अमरनाथ यात्रा की तैयारियां लगभग पूरी, यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की सेवा के लिए देशभर से पहुंची लंगर कमेटियां, बाबा बर्फानी के लगे जयकारे। वाराणसी में तेजी से आकार ले रहा यूपी का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, शिव काशी और गंगा की थीम पर बनी आकर्षण का केंद्र, दिसंबर तक पूरा होगा निर्माण।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। मशहूर शायर निदा फाजिल ने कभी कहा था, अच्छी संगत बैठकर संगी बदले रूप, देखो मिलकर आम से मीठी हो गई धूप, अमराई से गुजरकर धूप के मीठी हो जाने की यही कल्पना। ये अपने आप में मुकम्मल बयां है, जो बताता है कि आम कितना खास है हमारे लिए। आम का ओहद सिर्फ जुबान का जायका बदलने वाले एक फल भर का नहीं है, बल्कि ये जुड़ा है हमारे इतिहास, हमारी परंपरा, हमारे साहित्य के साथ, हमारी बचपन की यादों से, गर्मी की छुट्टियों से। गर्मियों के मौसम का सबसे प्यारा तोहफा होता है आम, ऐसा तोहफा जो भारत की सरजमी से निकला और नाम बदलकर सारी दुनिया में घुमाया। आज सुनाएंगे कहानी, उसी आम की खास कहानी, यही आम जिसकी राजधानी कहलाता है हमारा हिंदुस्तान।

0: जो आम में है वो लबे शीरी में नहीं रस, रेशों में है जो शेख की दाढ़ी से मुकद्दस, आते हैं नजर आम तो जाते हैं बदन कस, लंगड़े भी चले जाते हैं खाने को बनारस। बकौल सागर खयामी, ये आम का ही जादू है कि उसे खाने लंगड़े भी बनारस की ओर चल पड़ते हैं। वैसे लंगड़ा खुद भी एक किस्म का आम है और खाने वाले बताते हैं कि इसका स्वाद बहुत खास है। और लंगड़ा ही क्यों, चाहे जो किस्म हो, यूं समझिए कि इस फल के बस नाम में आम है। वाराणसी का लंगड़ा हो या फिर मलिहाबाद का दशहरी, कोंकण तट पर उगा अल्फांसो हो या बिहार का चौसा, आंध्र प्रदेश की धरती से आया सफेदा हो या पश्चिम बंगाल का हिमसागर, नाम में मुगलई नफासत लिए मध्य प्रदेश का नूरजहां या फिर जापान से आया और अब भारत में उगाया जाने वाला मियाज़ाकी, इसकी हर किस्म में वो जायका वो महक है कि हर लुकमे पर वाह वाह कहने को जी चाहता है। कहने को तो आम की सैकड़ों किस्में हैं, लेकिन भारत में आम की लगभग 1500 प्रजातियां पनपती हैं, जिनमें से करीब 1000 किस्में आम तौर से खाई और बाजार में बेची जाती हैं। भारत में पाए जाने वाले हर आम का अपना एक अलग मिजाज, अपना रंग और अपनी एक खास मिठास होती है। इन्हीं किस्मों, इनके स्वाद और रंगों बू पर फिदा होकर कवि जलील मानिकपुरी ने लिखा था, नायाब आम लुत्फ हुए रंग रंग के, कोई है जर्द कोई हरा कुछ है लाल लाल। कोई 4000 साल पहले हिमालय की तलहटी के इलाके में भारतीय उपमहाद्वीप में पनपा ये आम पुर्तगालियों की उंगली थाम कर सारी दुनिया घुमाया। हुआ कुछ यूं कि साल 1498 में जब पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा केरल के तटीय इलाकों में पहुंचे, तो लौटते लौटते वहां से मसालों के साथ साथ आम भी लेते गए। चूंकि केरल में आम को मान कहा जाता था, सो पुर्तगालियों ने आम को मान से मिलता जुलता नाम मानोव दे दिया। कुछ ऐसा चढ़ा पुर्तगालियों की जुबान पर आम का जादू कि पुर्तगाली व्यापारी जहाँ जहाँ गए वे अपने साथ आम लेते गए। इस तरह आम अमेरिका से लेकर यूरोप तक फैल गया। चूंकि अंग्रेजों को पुर्तगाली उच्चारण में थोड़ी दिक्कत आती थी, इसलिए उन्होंने इसे मैंगो कहना शुरू कर दिया। इस तरह दुनिया घूम कर भारत का मान मैंगो बनकर वापस लौट आया। आज सुनाएंगे कहानी अपने उसी मान की, जिसका जायका मैंगो बनकर देश की सीमाओं और महासागरों की दहलीजों के परे दुनिया भर की जुबान पर चढ़ा है। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
1: इस समय अगर आप घर से बाहर निकलेंगे तो गली मोहल्लों के मार्केट से लेकर शहरों की मंडियों तक आपको आम ही आप दिखाई देंगे। और हो भी क्यों ना, फलों के राजा इतने किस्मों, इतने रंगों, स्वाद और खुशबुओं में मिलता है, हमारे देश में गिनते गिनते थक जाएंगे। अपने देश के हर हिस्से में आम होता है और आम की हर किस्म का अपना ही स्वाद होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक भारत में आम की लगभग 1000 किस्में हैं। तो चलिए कुछ आमों के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं, लेकिन इनमें आपको सबसे ज्यादा हैरान करेगा वो आम जिसका दाम सोने से भी ज्यादा है।

गर्मियाँ यूँ तो बेहद सितम करती हैं, पर अपने पिटारे में रख के लाती हैं जो आम, बड़ा करम करती हैं। और गर्मियों के हिस्से आए इसी आम के फसाने की शुरुआत करते हैं एक किस्से से। एक बार उर्दू अदब के मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी ने अपने दोस्त मुंशी निसार हुसैन के नाम एक खत लिखा और खत में आम के सीजन में आम भेजने की दरख्वास्त कुछ इस तरह की, नामा न कोई यार का पैगाम भेजिए, इस फसल में जो भेजिए बस आम भेजिए, ऐसा जरूर हो कि उन्हें रख के खा सकूं, पुख्ता अगरचे 20 तो 10 खाम भेजिए, मालूम ही है आपको बंदे का एड्रेस, सीधे इलाहाबाद मेरे नाम भेजिए, ऐसा न हो कि आप ये लिखें जवाब में, तामील होगी पहले मगर दाम भेजिए। भेजने से पहले 100% दाम ही मांग लेते अकबर इलाहाबादी के दोस्त अगर उन्होंने मियां जाकी आम की फरमाइश की होती, क्योंकि जरा हट के नाम वाले मियां जाकी आम का दाम सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इस आम की कीमत है 3 लाख रुपए प्रति किलो। ये दुनिया का सबसे महंगा आम है। उपज की तादाद, डिमांड और क्वालिटी पर निर्भर करते हुए मियाज़ाकी आम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 2,80,000 रुपए से लेकर 3,30,000 रुपए प्रति किलो तक जाती है।

0: अपनी खूबसूरत लाल बैंगनी रंगत, दुर्लभता और ऊंची कीमत के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इस आम के दाम को कुछ यूं समझिए कि मियाज़ाकी आम वास्तव में सोने से भी महंगा है। 16 जून 2026 को देश की राजधानी में 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 1,51,690 रुपए है, जबकि मियाज़ाकी आम का दाम है 3 लाख रुपए प्रति किलो, यानी 1 किलो आम का दाम लगभग 20 ग्राम सोने के बराबर है। है ना कमाल? अच्छी बात तो ये है कि जापानी नस्ल का सोने से महंगा मियाज़ाकी आम अब भारत में भी उगाया जा रहा है। यूपी के सहारनपुर में फलता फूलता दिख रहा ये मियाज़ाकी आम है। सहारनपुर के एक किसान ने आय बढ़ाने के इरादे से साल 2021 में इस नए प्रयोग की शुरुआत की थी। किसान संदीप चौधरी ने अपने ऑर्गेनिक बाग में केवल 2 पौधे लगाकर शुरुआत की थी, लेकिन आज उनके बाग में करीब 40 मियाज़ाकी के पेड़ तैयार हो चुके हैं। अब इन पेड़ों पर फल भी आने लगे हैं। इस समय उनके 10 से 12 पेड़ों पर फल लगा हुआ है। उम्मीद है कि इस सीजन में करीब 14 से 15 किलो उत्पादन मिलेगा।
1: इस समय मियाज़ाकी जो दुनिया सबसे महंगी वैरायटी वो अपने लगाई थी, वो क्यों लगाई थी? जब आम लगाया तो हमने सर्च किया दुनिया में सबसे महंगे आम की वैरायटी कौन सी है, तो पता चला कि मियाज़ाकी है, जो जिसका भाव 2,70,000 से 3.5 लाख रुपए किलो तक आता है। ये वैरायटी के पौधे हमें पता लगा, फिर हमने पौधे यहाँ से मंगाए इसके, और सबसे पहले 2 पौधे लगाए, और 2 पौधों के बाद उसकी क्रॉपिंग करी कि हमने कि उनसे पौधे बनाए हमने। आज हमारे पास लगभग 40 पौधे हमारे इस बाग में लगे हुए हैं। बड़ी बात यह है कि हमने ये देखा है कि ये बाग पूरी तरह ऑर्गेनिक होने की वजह से इसमें ग्रोथ भी अच्छी हुई है, आम का कलर भी अच्छा आ रहा है, और एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स अपने को मिला है। अब हम ये चाहेंगे देश के जो तमाम किसान हैं वो ऐसी महंगी वैरायटी लगाएं जिससे हम एक्सपोर्ट करने का एक हब बन सके।
0: वैसे अगर आप आम के मुरीद हैं और मियाज़ाकी का स्वाद चखना चाहते हैं तो आपको बता दें कि मियाज़ाकी आम आजकल बिहार के भागलपुर में भी उगाया जा रहा है। भले ही सोने सा भाव हो, लेकिन आम के दीवाने दाम कहाँ देखते हैं। खैर, आमों की दुनिया का ये दूसरा अजूबा पनपता है मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में, और नाम है नूरजहां। नूरजहां को दुनिया का सबसे बड़ा आम माना जाता है। एक नूरजहां आम का वजन 4 किलो तक हो सकता है, और भारत में आम प्रेमियों के बीच ये जितना लोकप्रिय है उतना ही दुर्लभ भी है। मध्य प्रदेश के जिला अलीराजपुर का कठीवाड़ा अपने झरनों, बारिश और नूरजहां आम के लिए भी जाना जाता है। मौसम और मिट्टी ने इस फल के पनपने के लिए यहां एकदम सही हालात दिए हैं। नूरजहां के बाद बात भागलपुर के जरदालू आम की। भागलपुर के जरदालू आम की कई विशेषताएं हैं। ये सुपाच्य है, स्वादिष्ट तो है ही, और कुछ हद तक शुगर फ्री भी कहला ही लेता है। दरअसल जरदालू आम में दूसरे आमों के मुकाबले प्राकृतिक शुगर की मात्रा कम होती है, और भागलपुर के जरदालू आम को GI टैग भी मिला हुआ है। हर साल भागलपुर में पैदा होने वाला ये आम राजधानी दिल्ली में देश के गणमान्य लोगों को भेजा जाता है। गर्मियों के मौसम में फलने वाले आम की ये वो किस्में हैं जिन्हें दुनिया भर में पसंद किया जाता है। लेकिन इन्हीं के बीच यूपी के सहारनपुर में आम का एक ऐसा पेड़ आपको दिखाते हैं जो सिर्फ गर्मियों में नहीं बल्कि 12 महीने फल देता है। इस आम की वैरायटी का नाम है सदाबहार। सदाबहार आम का पेड़ आकार में आम के दूसरे पेड़ों की तुलना में काफी छोटा होता है, लेकिन इसकी उत्पादकता बेहद खास है। इस पेड़ पर एक ही समय में बोर, छोटे फल और पकने के लिए तैयार आम एक साथ दिखाई देते हैं। ये वो अनोखा पेड़ है जो आम के जायके और खुशबू को गर्मियों की मुट्ठी से निकालकर हर मौसम की हथेली पर रख देता है। सहारनपुर से राहुल कुमार और भागलपुर से राजीव सिद्धार्थ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
2: अब देखिए, गर्मी का मौसम है और फलों के राजा घर घर में पहुंच रहे हैं। इसी सिलसिले में अयोध्या के राजा रामलला सरकार तक भी आम का भोग पहुंचा है। अयोध्या के राम मंदिर में यूं भी समय समय पर विशेष और दुर्लभ किस्म के मौसमी फलों का भोग रामलला को लगाया जाता है। इसी कड़ी में रामलला को मियाजाकी आम का भोग भी लगाया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मियाजाकी आम की कीमत लाखों रुपए में होती है। ये बात और है कि आम का मोल चाहे लाखों में है, लेकिन भक्ति भाव तो अनमोल है। बताया जा रहा है कि खास आम अयोध्या के ही एक स्थानीय किसान ने उपजाया है। आपको बता दें कि देश भर के अलग अलग शहरों से वहां उपजने वाले खास फल समय समय पर रामलला के लिए भेजे जाते हैं। इन विशेष अवसरों पर फलों की टोकरियों से मंदिर को सजाया जाता है और रामलला को अर्पित फलों का भोग लगाने के बाद प्रसाद स्वरूप भक्तों में वितरित कर दिया जाता है। आम का रिश्ता सिर्फ हमारी जुबान से नहीं बल्कि ये हमारे इतिहास और परंपरा के साथ भी जुड़ा है। उपनिषद और पुराणों में इसका जिक्र मिलता है। गालिब हो या गुलजार, शायर हो या कवि, सभी ने इसकी तारीफ में कसीदे पढ़े हैं। लेकिन चलिए आपको वैदिक काल से लेकर मुगल काल तक की आम कहानी बताते हैं इस रिपोर्ट में।

0: मीठा, रसीला और दिलों पर राज करने वाला आम। गर्मियों में लोग भले ही चिलचिलाती धूप और पसीने से परेशान रहते हैं, लेकिन इस मौसम में मिलने वाला आम किसी तोहफे से कम नहीं होता। बच्चे हो या बुजुर्ग, गरीब हो या अमीर, आम हर किसी को खास एहसास कराता है। आम सदियों से लोगों की पहली पसंद बना हुआ है और आज भी इसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। सबसे पहले आम आम्रफल कहा जाता था। पुराने वैदिक ग्रंथों में इसे रसाला और सहकार नाम से भी जाना जाता था। इन नामों का जिक्र प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे बृहदारण्यक, उपनिषद और पुराणों में भी मिलता है। यानी आम सिर्फ एक फल नहीं बल्कि बहुत पुराने समय से हमारी संस्कृति और परंपरा का अहम हिस्सा रहा है। ऐसा माना जाता है कि हजारों साल पहले पूर्वोत्तर भारत, म्यांमार और बांग्लादेश में आम की पैदावार हुई थी, जहां से ये दक्षिण भारत पहुंचा और तमिल में इसे आम काय कहा गया, जो बोलचाल की भाषा में बदलकर धीरे धीरे मामकाय बन गया। मलयाली लोगों ने इसे आगे चलकर मांगा के नाम में बदल दिया। 16वीं सदी में पुर्तगाली कारोबारियों ने आम को अफ्रीका और ब्राजील तक पहुंचाया और धीरे धीरे ये आम फल खास बन गया और पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना लिया। इतिहास के हर दौर में इसकी मिठास ने लोगों के दिलों को जोड़ा है। शायद यही वजह है कि आज भी आम का इंतजार हर गर्मी में उतनी ही बेसब्री से किया जाता है। इतिहास में आम की खास अहमियत रही है। सम्राट अशोक से लेकर मुगल काल तक आम की दीवानगी देखी गई है। कविता और साहित्य में भी इसकी मिठास घुली है। मिर्जा गालिब की दीवानगी हो या लोकगीतों की मिठास, आम सदियों से कवियों और लेखकों की कलम को रसीला बनाता रहा है। आम के बारे में कवि उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब ने कहा था कि आम में बस दो खूबियां होनी चाहिए, एक मीठा हो और दूसरा बहुत सारे हो। सिर्फ गालिब ही नहीं बल्कि गुलजार से लेकर अपने जमाने के मशहूर शायरों में शुमार सागर खयामी ने तो इस पर पूरी उर्दू कविता लिखी है। फल कोई जमाने में नहीं, आम से बेहतर करता है सना आम की गालिब साफ सुखनवर। क्या बात है, आमों की हो देसी या विदेशी, सुर्खे हो सरौली हो कि तुखमे हो कि कलमी, चौसे हो सफेदे हो कि खजरी हो कि फजरी, एक तरफा कयामत है मगर आम दशहरी। हिंदी साहित्य में भी खासकर काव्य में आम लोगों को लेकर खूब लिखा रचा गया है। आम को लेकर आम का बाग नाम की कविता बेहद चर्चित है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा आम उत्पादक देश है। यहाँ अल्फांसो, दशहरी, लंगड़ा, केसर और तोतापुरी जैसी सैकड़ों किस्में पाई जाती हैं, जो हर राज्य की अपनी खास पहचान बन चुकी हैं। कुल मिलाकर आम सिर्फ स्वाद नहीं, एक हसीन एहसास है। एक ऐसा फल जो बचपन की यादें भी है और हर गर्मी की सबसे बड़ी खुशी भी। शायद इसीलिए हर साल जब आम आता है तो सिर्फ मौसम नहीं बदलता, माहौल बदल जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: अब देखिए, भोजन भगवान को अर्पित होता है और भोग बन जाता है। मौसम आम का है, सो शहर शहर अपने आराध्य को भक्त आम का भोग चढ़ाते हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के वाशिम में संत गजानन के धाम पर 7.25 क्विंटल आमों का चढ़ावा अर्पित किया गया। देखिए,

0: चारों तरफ आम ही आम, आमों से सजा संत गजानन महाराज का धाम। ये तस्वीरें महाराष्ट्र में वासिम जिले के कारंजा लाड की ममता नगर की हैं। यहाँ पर संत गजानन महाराज मंदिर में 7.25 क्विंटल आम का दिव्य भोग अर्पित किया गया और आमों से ही उनकी प्रतिमा की शानदार सजावट की गई। एकादशी के पावन अवसर पर मंदिर में संत गजानन महाराज के दर्शन के लिए भक्तों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा हो गई। इस अवसर पर भक्ति भाव से महाराज की शानदार आरती की गई और फिर प्रसाद वितरण किया गया।
1: अपने इधर महाराज को 7.25 क्विंटल का आम का अरस यानी भोग चढ़ा गया था, उसी का प्रसाद स्वरूप आज रसाई बनके सब महिलाओं को खाना दे रहे।
0: संत गजानन महाराज को चढ़ाए गए आमों का रस निकालकर 6,000 भक्तों को प्रसाद के तौर पर बांटा गया। इस अवसर पर 30 गांवों से आई संस्थान की वॉलंटियर 3,000 महिलाओं ने आमरस के साथ पूरन पोली और दूसरी डिश तैयार की।
2: हम हिरकेड़ गांव से आम महिलाएं सेवा देने को आए हैं और महाराज की कृपा से हमें यहाँ आज ये जो ये सेवा मिली है ये हमारा अहोभाग्य हम समझते हैं।
3: कैसा लगा आपको सेवा
2: करके? हमको बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे जीवन का एक अविस्मरणीय क्षण हम मानेंगे।
0: खास बात ये है कि इस खास अवसर पर तमाम भक्त ही संत गजानन महाराज को अर्पित करने के लिए आम लेकर आए थे। वाशिम से जाका खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: अब बात अमरनाथ यात्रा की। अब इस आध्यात्मिक यात्रा में काफी कुछ नया देखने को मिलेगा। जम्मू में अमरनाथ बेस कैंप के पास तैयार हो रहा है एक ऐसा पार्क जहां कबाड़ से इतिहास रचा जा रहा है। जी हां, वहां एक ही जगह पर ताजमहल से लेकर एफिल टावर तक दुनिया और भारत की कई प्रसिद्ध धरोहरों की झलक देखने को मिलेगी। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। ऐसे में जम्मू शहर में यात्रियों के लिए वेस्ट वंडर पार्क तैयार किया जा रहा है जो श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए एक नया आकर्षण होगा।
2: जल्द ही बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए यात्रा शुरू होने वाली है। जल्द अमरनाथ जाने वाले हर राह पर बाबा बर्फानी का जयकारा होगा। इस बार बाबा बर्फानी के दर्शन की आस में निकले अमरनाथ यात्रियों को जम्मू में ताजमहल की खूबसूरती दिखेगी। कुछ कदम आगे बढ़ने पर पेरिस का आइफिल टावर स्वागत करता दिखाई देगा।
3: वेस्ट टू वंडर पार्क, यानी जो वेस्ट हुआ मटेरियल होता है उससे एक पार्क बनाया जा रहा है और उस पार्क के बीच में कई स्मारक जो है वो स्थापित किए गए हैं। ये खास तौर पर आकर्षण का केंद्र इसलिए बन रहा है क्योंकि आगामी अमरनाथ यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है और देश भर के क्या विश्व भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु सबसे पहले जम्मू पहुँचेंगे और उनके लिए यहाँ पर जम्मू में खास तौर पर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आने वाला ये प्रोजेक्ट जो है स्थापित किया जा रहा है।
2: यहाँ दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी और मुंबई की पहचान गेटवे ऑफ इंडिया भी नजर आएंगे। ये कोई जादू नहीं बल्कि जम्मू में तैयार हो रहा एक अनोखा वेस्ट टू वंडर पार्क है। यहाँ बेकार चीजों और कबाड़ से देश दुनिया के प्रसिद्ध धरोहर की रेप्लिका बनाई जा रही है।
4: यात्री 2 महीने के लिए तो आते ही हैं, उनको थोड़ा सा वक्त मिलेगा और बच्चों को, हमारे जम्मू के बच्चों को भी सीखना मिलेगा कि हम अपने वेस्ट प्रोडक्ट से क्या क्या क्या बना सकते हैं।
2: यहाँ इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्चना ब्रिज भी होगा। वहीं खगोलीय रहस्यों को समेटे दिल्ली का जंतर मंतर भी है। पीसा की झुकी मीनार से लेकर राजस्थान की ऐतिहासिक विरासत तक कई प्रसिद्ध रचनाएं इस पार्क की शोभा बढ़ा रही है।
5: ई वेस्ट टू वंडर पार्क, एक वंडर पार्क जो ई वेस्ट मटेरियल से बन रही है और जो कि भगवती नगर में है, अमरनाथ यात्री निवास के बिल्कुल एकदम पास। बात करें यात्री, जो देश भर से यात्री आएंगे, जो टूरिस्ट आएंगे, वो जम्मू में जरूर विजिट कीजिए इस वंडर पार्क में।
2: इस परियोजना की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ इसकी खूबसूरती नहीं बल्कि इसका संदेश है, क्योंकि जो कबाड़ कभी बेकार माना जाता था वो अब कला और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक बन रहा है।
6: हमें लग रहा है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स और भी जगह बने ताकि वेस्ट को हम किस तरह से रिसाइकल करके शेप दे सके और जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकती है।
2: अमरनाथ यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु जम्मू पहुँचते हैं, ऐसे में ये पार्क उनके लिए एक बेहतरीन मनोरंजन और विश्राम स्थल साबित होगा। लंबी यात्रा के बीच श्रद्धालु यहाँ कुछ समय बिताकर देश दुनिया की मशहूर इमारतों की झलक एक ही जगह देख सकेंगे। जम्मू से राही कपूर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: एक अनोखा स्कूल इन दिनों वायरल है। आपने स्कूलों में बच्चों को जाते तो देखा होगा, लेकिन क्या कभी ऐसा स्कूल देखा है जहां सिर्फ डॉग ही पढ़ते हों? हम आपको दिखाते हैं एक ऐसा है स्कूल जो चीन के शंघाई में मौजूद है। ये एक ऐसा डॉग फ्री स्कूल है जहां पर डॉग्स के लिए पढ़ाई, खेल, संगीत और फिटनेस तक की सुविधाएं मौजूद हैं।

0: मधुर धुनों के बीच खेलते ये डॉग्स किसी पार्क में नहीं बल्कि चीन के शंघाई में एक डॉग प्री स्कूल में है। यहाँ हर सुबह इन नन्हे मेहमानों की क्लास शुरू होती है। दिन भर के स्केड्यूल में खेलकूद, सोशलाइजेशन, हेल्दी स्नैक्स, फिटनेस ट्रेनिंग और लाइव पियानो म्यूजिक तक शामिल है। पॉथ्री नाम का ये डॉग प्री स्कूल पालतू डॉग्स को घर से लाकर पूरे दिन उनकी देखभाल करता है। स्कूल की टीम खुद डॉग्स को लेने और छोड़ने का काम भी करती है। स्कूल में डॉग्स के लिए खास किचन भी है जहां उनके लिए ताज़ा और हेल्दी ट्रीट तैयार किए जाते हैं। शाम की चाय की तरह यहां डॉग्स के लिए आफ्टरनून टी भी परोसी जाती है। सिर्फ यही नहीं, यहां डॉग्स को ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज कराई जाती है, आउटडोर ट्रेनिंग दी जाती है और उनकी मानसिक सेहत का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। इस अनोखे प्री स्कूल की शुरुआत जेनजांग ने की थी। अपने पालतू डॉग की चिंता और अकेलेपन की समस्या को देखते हुए उन्हें ये आइडिया आया। सिर्फ एक साल में यहाँ आने वाले डॉग्स की संख्या 10 से बढ़कर 200 तक पहुँच गई है। बढ़ती मांग को देखते हुए अब दूसरा सेंटर खोलने की तैयारी भी चल रही है।
1: 是一周年，但我刚开始的时候，我没有想过会有那么多的人，那么多的家长会来，也不非常有一个老师，但可能慢慢的到了第三个月的时候，有一波志同道合的小伙伴就加入我们了。然后那个时候我们的狗狗已经从十几只到了三四十只，到了第七、第十个月的时候，我就发现越来越多的家长会来，因为我们那个时候的覆盖范围已经3到5公里已经包不住了，我们的狗狗越来越多，跨区的狗狗会来找住，对不对？然后到现在为止，我们现在有200只狗狗。
0: चीन में घटती जन्म दर और बदलती जीवन शैली के बीच पालतू जानवरों पर खर्च तेजी से बढ़ रहा है। उद्योग से जुड़े आंकड़ों के मुताबिक चीन का शहरी पेट मार्केट 2025 में 312 अरब युआन से ज्यादा का हो चुका है और अगले कुछ वर्षों में इसके 405 अरब युआन के पार पहुंचने का अनुमान है। यानी अब डॉग्स के लिए भी स्कूल, फिटनेस और लग्जरी लाइफस्टाइल एक बड़ा कारोबार बन चुका है। ऐसे में पियानो के धुनों से लेकर फिटनेस ट्रेनिंग और स्पेशल ट्रीट्स तक, शंघाई का ये डॉग प्री स्कूल दिखाता है कि बदलती दुनिया में पालतू जानवरों की जगह अब परिवार के सबसे खास सदस्यों में हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: It's Stormy, and previously on my show, Carly Pierce shared why she loves award show season.
4: For me, celebrating the people who create country music is about celebrating each other and rooting each other on and being a country music family and community and knowing that we are the generation right now that is going to influence many generations to come.
3: Listen to the Stormy Warren Show on the Big 615 weekdays 7 a.m. to 1 p.m. Central right here on TuneIn.
2: Good news today is really अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
5: फ्रांस के एवन में G7 शिखर सम्मेलन, कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात, कई वैश्विक मुद्दों पर बातचीत। टाइम मैगजीन की टॉप 100 लिस्ट में शामिल हुई स्मृति मंधाना, इस सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी, महिला क्रिकेट में योगदान के लिए मिला सम्मान। रक्षा मोर्चे पर बढ़ेगी भारत की ताकत, वायुसेना बनाएगी घातक स्वदेशी की कामिकेज ड्रोन, 16,000 फीट की ऊंचाई पर भी अचूक वार करने में सक्षम। जम्मू कश्मीर में पवित्र अमरनाथ यात्रा की तैयारियां लगभग पूरी, यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की सेवा के लिए देशभर से पहुंची लंगर कमेटियां, बाबा बर्फानी के लगे जयकारे। वाराणसी में तेजी से आकार ले रहा यूपी का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, शिव, काशी और गंगा की थीम पर बनी आकर्षण का केंद्र, दिसंबर तक पूरा होगा निर्माण।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
5: आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा सातवें बड़ा मंगल पर उमड़े आस्था के हुजूम की भी। ज्येष्ठ मास के सातवें बड़ा मंगल पर देश भर के हनुमान मंदिरों में उमड़ा आस्था का हुजूम। रामनगरी अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में राम भक्त हनुमान के दर्शन पूजन के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। भीड़ को देखते हुए यहां भक्तों की सुविधा और सुरक्षा की भी पुख्ता व्यवस्था रही। बारी आने पर भक्तों को दर्शन पूजन का सौभाग्य प्राप्त होता रहा। प्रयागराज में संगम के तट पर लेटे हनुमान जी के दर्शन के लिए भी भक्त सुबह से ही पहुंचने लगे और देखते ही देखते उनकी लंबी कतारें लग गई। इस विशेष अवसर के लिए हनुमान जी की प्रतिमा का फूलों और फलों से भव्य श्रृंगार किया गया और उन्हें 56 भोग भी लगाया गया। मान्यता है कि बड़ा मंगल के दिन बजरंग बली की भक्ति करने से जीवन के सभी दुख दर्द और संकट दूर हो जाते हैं। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में श्रीनाथ जी की नौका विहार मनोरथ का भव्य आयोजन हुआ। इस नौका यात्रा उत्सव को लेकर मंदिर की दिव्य सजावट की गई, जिसमें बड़ी संख्या में आम का उपयोग भी किया गया। इस विशेष अवसर के लिए ठाकुर जी को मलमल के हल्के वस्त्र पहनाकर सुगंधित फूलों और चंदन से श्रृंगार किया गया और फिर ठाकुर जी को जल के बीच विशेष रूप से सुसज्जित नावों में विराजमान कर भव्य झांकी सजाई गई। साथ ही बधाई गीत भी गाए गए। इस अवसर पर ठाकुर जी के विशेष दर्शन कर भक्त मंत्रमुग्ध हो गए। अधिक मास के समापन के अवसर पर इस दिव्य उत्सव का आयोजन हुआ। उड़ीसा के पुरी में 16 जुलाई से शुरू होने वाली भव्य जगन्नाथ यात्रा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। कारीगर तीनों पवित्र रथों को तेजी से आकार देने में जुटे हैं। इसके अलावा नाटगोट प्रतिमाओं की पॉलिशिंग का काम भी तेजी से चल रहा है, तो रथ यात्रा के दौरान भगवान की सेवा पूजा के लिए लकड़ी से बने उपकरणों का निर्माण कार्य भी हो रहा है। चित्रकार सेवक तीनों रथों के पार्श्व देव देवियों की मूर्तियों, सखियों, उलट शुआ, देव देवी आसन फ्रेम आदि पर रंग रोगन करने में लगातार जुटे हैं। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर हर स्तर पर बड़ी तैयारी की जा रही है। 3 जुलाई से शुरू होने वाली इस पवित्र यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं की सुविधा से लेकर उनकी सुरक्षा तक को लेकर तैयारी चल रही है। इसी कड़ी में अनंतनाग पुलिस ने पहलगाम में सुरक्षा और आपातकालीन एजेंसियों के साथ मिलकर तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस दौरान कई संभावित आपात स्थितियों से निपटने को लेकर अभ्यास किया गया, जिनमें सुरक्षा, खतरे, मेडिकल इमरजेंसी, भीड़ प्रबंधन और निकासी जैसी स्थितियां शामिल रहीं। इस मॉक ड्रिल के तहत अलग अलग एजेंसियों के बीच तालमेल, संचार और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली की समीक्षा की गई। ये तस्वीरें ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित फॉरेस्ट पार्क की है, जहां राजा पर्वा की रौनक बिखरी हुई है। पारंपरिक झूले, उत्सव और उल्लास के साथ यहां राजा पर्व की शुरुआत हुई। रंग बिरंगे पारंपरिक परिधानों में सजी महिलाएं झूलों का आनंद लेते बच्चों के साथ ही इस पर्व में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और पान समेत पारंपरिक पकवानों के स्टॉल देखने को मिल रहे हैं। 3 दिवसीय इस उत्सव के साथ ओडिशा में मॉनसून का स्वागत किया गया। ये राजा पर्व नारित्व और धरती माता की उर्वरता का उत्सव है, यानी ये प्रकृति, उर्वरता और परंपरा का अनूठा उत्सव है जिसमें पूरे राज्य के लोगों की भागीदारी होती है। इस उत्सव को मनाने के लिए पारंपरिक उड़िया व्यंजन तैयार किए जाते हैं, साथ ही विशेष रूप से तैयार किया गया पान इस त्यौहार के प्रमुख आकर्षणों में से एक है।
6: और अब बात एक ऐसे सरकारी स्कूल की जिसमें दाखिले के लिए पेरेंट्स कतारों में खड़े नजर आए। तेलंगाना के नलकोंडा जिले का एक सरकारी स्कूल इन दिनों अपनी वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के लिए चर्चा में है। इस सरकारी स्कूल में एसी, स्मार्ट क्लासरूम, एआई आधारित टीचिंग और डिजिटल लैब जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। स्कूल प्रशासन के मुताबिक इसकी लोकप्रियता का आलम यह है कि केवल शहर से ही नहीं बल्कि जिले के दूर दराज इलाकों और पड़ोसी जिलों से भी अभिभावक बच्चों के फॉर्म लेकर पहुंच रहे हैं।

0: इससे पहले स्कूल को देखे तो वो स्कूल में कोई भी हमारा को ये फैसिलिटी नहीं।
1: इसे आप तेलंगाना के सरकारी स्कूल के पुनर्जन्म की कहानी भी कह सकते हैं। नलगोंडा के बोट्टुगुड़ा में कोमाटी रेड्डी प्रतीक गवर्नमेंट स्कूल में इस साल एडमिशन का ऐसा क्रेज देखा जा रहा है कि यहाँ महज 450 सीटों के लिए करीब 4000 आवेदन आ चुके हैं। इसके चलते इस सरकारी स्कूल में दाखिला मिलना किसी आईआईटी या आईआईएम की सीट मिलने जितना मुश्किल हो गया है।
2: नलगोंडा जिले ने अपना इमेज पूरी तरह, अपनी तस्वीर पूरी तरह बदल दी। वजह है, इस जिले में एक वक्त में जीरो एनरोलमेंट्स, शून्य एनरोलमेंट्स गवर्नमेंट स्कूल में होते थे और इसी के लिए देश भर में यह नलगोंडा जिले का नाम था। लेकिन एक साल के अंदर नलगोंडा जिले में एक कोमोट्रिटी प्रतीक गवर्नमेंट स्कूल, यह सरकारी स्कूल में 450 सीट के लिए 4000 एप्लीकेशंस दाखिल किए गए।
1: स्कूल के बाहर का नजारा किसी महंगे और वीआईपी प्राइवेट स्कूल जैसा लग रहा है, जहां सुबह सुबह से ही माता पिता अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूलों की मोटी फीस के मुकाबले उनसे कहीं बेहतर सुविधाओं से लैस ये सरकारी स्कूल बच्चों और अभिभावकों को ज्यादा आकर्षित कर रहा है।
3: पहले हमारा स्कूल जो गवर्नमेंट था उसमें ना फैसिलिटी कुछ भी नहीं थी, वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, ब्लैक बोर्ड था, तो हमारे को ऐसा दिल बोलता था कि कब घर जाएं। इसलिए हमारे कोमटेड्डी वेंकट रेड्डी जो मिनिस्टर है सर, उन्होंने ये स्कूल बनवाया। इसमें डिजिटल बोर्ड है, एसी कैंपस है पूरा, और यहाँ पर ऐसा दिखता है कि कब स्कूल आए, घर जाने का मन ही नहीं करता हमें।
4: स्कूल अच्छा है और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, टीचर्स भी अच्छे हैं। मैं गवर्नमेंट स्कूल में अच्छी पढ़ती हूँ और प्राइवेट स्कूल में अच्छे पढ़ते हैं, बट मैं कुछ अच्छा पढ़ रहे वो क्या बोलते हैं।
1: एडमिशन की लाइन में लगे अभिभावकों का कहना है कि पहले वो अपने बच्चे के लिए नामी गिरामी प्राइवेट स्कूल में भारी भरकम फीस चुका रहे थे, लेकिन जब उन्होंने इस स्कूल के कैंपस और सुविधाओं को देखा तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कई प्राइवेट स्कूलों से बेहतर लगा।
5: सर, इससे पहले हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में थे सर, फिर वहाँ फीस, बुक्स सब बहुत ज़्यादा हो जाता सर, तो परेशानी हो रहा था बच्चों को पढ़ाना लिखाना। तो ये स्कूल बना है सर, ये बहुत अच्छा बना है स्कूल, यहाँ कंप्यूटर एजुकेशन है, फिर एसी कैंपस है, प्राइवेट स्कूल के बराबर ये स्कूल बना है। इस लेवल के साल में ये स्कूल में एडमिशन करे।
1: दरअसल साल भर पहले इस स्कूल में बुनियादी सुविधाएं तक नहीं थी। पिछले साल तक ये स्कूल बिना किसी पक्की इमारत के चल रहा था और यहाँ करीब 200 छात्र पढ़ते थे, लेकिन अब ये एक स्मार्ट स्कूल में तब्दील हो चुका है। लिफ्ट से लेकर कंप्यूटर लैब

0: एसी क्लासरूम्स है बच्चों के लिए, रेप्यूटेड यूनिफॉर्म यहाँ पर बताई जाती है, और साथ ही साथ मिड डे मील्स, ब्रेकफास्ट मील्स यहाँ पर लाए गए हैं, जहाँ पर बच्चों को मुफ्त खाना दिया जाता है, यूनिफॉर्म मुफ्त में दिया जाता है, किताबें और बैग मुफ्त में दी जाती हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब शिक्षा की बात हो तो AI लर्निंग क्लासेस, स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स, AC क्लासरूम, साथ में मॉडर्न बेंचेस के साथ एक मुफ्त में इस तरीके का अनुभव यहाँ के सरकारी स्कूल के बच्चों को देखने को मिलता है।
1: कुछ समय पहले तक नलगोंडा की गिनती उन जिलों में होती थी जहाँ सरकारी स्कूलों में बहुत कम या बिल्कुल भी एडमिशन नहीं होते थे, लेकिन इस स्कूल ने तस्वीर बदल दी है और अब ये स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर और पढ़ाई के माहौल के मामले में बड़े बड़े कॉर्पोरेट स्कूलों को टक्कर दे रहा है। तेलंगाना के नलगोंडा से अब्दुल बशीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गदर के 25 साल पूरे होने पर फैंस को सनी देओल ने कहा शुक्रिया। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चलें फिल्मी मोड पर।
3: फिल्म गदर एक प्रेम कथा के 25 साल पूरे होने पर सनी देओल ने उनके निभाए गए तारा सिंह के किरदार को ढेर सारा प्यार देने के लिए फैंस का शुक्रिया अदा किया। साल 2001 में इस फिल्म में तारा सिंह बनकर सनी देओल बड़े पर्दे पर छा गए थे। 15 जून को फिल्म गदर के रिलीज होने के 25 साल पूरे हो गए। फिल्म गदर का क्रेज लोगों में इतना ज्यादा था कि इसका एक उदाहरण साल 2023 में भी देखने को मिला, जब इस फिल्म के अगले भाग यानी गदर 2 को भी बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता मिली। अब निर्देशक अनिल शर्मा इस फिल्म के तीसरे पार्ट पर काम कर रहे हैं। करण जौहर अब साउथ सिनेमा में फिल्म निर्माण की तरफ भी बढ़ चुके हैं। इस कड़ी में उन्होंने पहला कदम मलयालम सिनेमा की तरफ बढ़ाया है। करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले फिल्म ओडियन द एज ऑफ इल्यूजन के निर्माण का ऐलान हो चुका है। इस फिल्म का पोस्टर भी शेयर किया जा चुका है। धर्मा प्रोडक्शन ने 19वीं सदी के केरल की लोक कथाओं और सांस्कृतिक पौराणिक कथाओं पर आधारित इस फिल्म के लिए पृथ्वीराज प्रोडक्शंस और निर्देशक राहुल के साथ हाथ मिलाया है। फिल्म ओडियन में पृथ्वीराज सुकुमारन नजर आएंगे, जिनमें उनके साथ मंजू वॉरियर अहम भूमिका में नजर आएंगी। राजकुमार हिरानी जियो स्टारर पर प्रीतम और पेड्रो नाम का वेब शो ला रहे हैं, जिसमें उनके बेटे वीर हिरानी अपना एक्टिंग डेब्यू करते नजर आएंगे। अरशद वारसी और वीर हिरानी के इस शो का ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है। सीरीज की ये कहानी गोवा पर आधारित है, जहां अरशद वारसी यानी पेड्रो नाम के पुलिस ऑफिसर और इंजीनियर के रूप में प्रीतम यानी वीर हिरानी की जोड़ी धमाल करती हुई नजर आ रही है। प्रीतम और पेड्रो शो 3 जुलाई से स्ट्रीम होना शुरू होगा। इसमें मोना सिंह, बमन ईरानी और विक्रांत मैसी जैसे कलाकार भी नजर आने वाले हैं।
2: न्यूज पथ के सफर भी अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी की। IPL में कामयाबी की बुलंदियां छूने वाले वैभव सूर्यवंशी अब क्रिकेट के मैदान पर झगड़े को लेकर चर्चा में। वैभव सूर्यवंशी फिलहाल श्रीलंका में चल रही ट्राई सीरीज में इंडिया ए से खेल रहे हैं। दामुला में सोमवार को इस ट्राई सीरीज का चौथा मैच विवादों में घिर गया। इस मुकाबले में श्रीलंका ए ने तिलक वर्मा की कप्तानी वाली इंडिया ए को सुपर ओवर में हरा दिया। इस मैच में वैभव सूर्यवंशी बल्ले से कोई खास कमाल नहीं कर पाए, लेकिन श्रीलंकाई खिलाड़ियों से भिड़ने के कारण वो चर्चा में आ गए। सुपर ओवर में श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 16 रन बनाए थे, जवाब में भारतीय टीम 9 रन ही बना सकी। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि सुपर ओवर खत्म होने के बाद श्रीलंका के ऑलराउंडर विशेन ने वैभव सूर्यवंशी से कहा, मैच खत्म हो गया, अब घर जा। इस बात पर वैभव सूर्यवंशी भड़क गए और श्रीलंकाई खिलाड़ी से जा भिड़े। माहौल इतना गर्मा गया कि दोनों के बीच शारीरिक रूप से झड़प भी हुई। पहले सूर्यांश शेडगे और श्रीलंकाई खिलाड़ियों के बीच शब्दों के बाण चले, लेकिन जब वैभव सूर्यवंशी पास आए तो उन्होंने श्रीलंका के एक खिलाड़ी को धक्का दिया। श्रीलंका टीम के अन्य खिलाड़ियों ने बीच बचाव किया। वहीं जब वैभव डगआउट की तरफ जा रहे थे, तब भी उन्होंने हाथ से इशारा करके कुछ कहा। श्रीलंका में वैभव सूर्यवंशी के झगड़े को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कई क्रिकेट फैंस श्रीलंकाई खिलाड़ियों के उकसावे को इस भिड़ंत के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वहीं कुछ यूजर्स ने वैभव को आगाह करते हुए रिएक्ट किया है कि उन्हें समय के साथ ट्रोल्स को इग्नोर करना सीखना होगा, वरना उनकी इमेज खराब होने का खतरा हो सकता है। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता हमारे साथ।

0: इस वक्त जुड़ चुके हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं इस झगड़े के बारे में दरअसल हुआ क्या था। विक्रांत, सबसे पहले तो आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर मैदान पर ऐसा क्या हुआ जो कि वैभव सूर्यवंशी अपना आपा खो बैठे और विरोधी टीम के खिलाड़ी के साथ धक्का मुक्की की नौबत तक आ गई, और साथ ही इंडिया ए टीम के कप्तान तिलक वर्मा भी मैच के दौरान विवाद करते हुए नजर आए।
1: ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था, और देखिए इस इंसिडेंट को 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और मैं अब तक डाइजेस्ट नहीं कर पाया हूँ कि कल हुआ क्या था। हम जानते हैं कि प्रोवोकेशन श्रीलंकन तरफ से हुई होगी, और ये हम जानते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट जिस तरह से खेली जाती है, खिलाड़ी एक दूसरे को स्लेज करते हैं और वैभव सूर्यवंशी को सामने वाली टीमें टारगेट करेंगी। ये तो इंडिया ए श्रीलंका ए का मुकाबला है, कल को वो जब आयरलैंड जाएंगे या इंग्लैंड जाएंगे या उसके बाद भारत के लिए खेलेंगे, टीमें उनको टारगेट करेंगी। बिकॉज एक बात होती है ना, 15 साल में आपकी गेम कैसी है, दूसरा होता है कि 15 साल में आप मेंटली कितने स्ट्रांग हैं। भाई आप मेंटली स्ट्रांग हैं तो ही आप इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन कल ना ऐसा लगा वैभव सूर्यवंशी को देखकर कि यार एक इंटरनेशनल प्लेयर इस तरह से रिएक्ट नहीं करता। हुआ क्या एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन जब इंडिया मैच हार गया, ए फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि आप सिर्फ सुपर ओवर की आखिरी गेंद छोड़ दे, उससे पहले अगर आप 20-25 मिनट देखे बहुत लड़ाइयाँ हो रही थी। अब एंड वाला जो कहते ना कि ब्लो, वो था वैभव सूर्यवंशी के नाम, लेकिन उससे पहले तिलक वर्मा जो आपके कप्तान हैं वो उलझ रहे थे, बार बार अंपायरों के साथ उलझ रहे थे। और मुझे तो ये लगता है कि तिलक वर्मा के बिहेवियर को देखकर शायद मुझे ज़्यादा बुरा लगा। इनफैक्ट वो कप्तान है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, वर्ल्ड कप चैंपियन टीम का हिस्सा थे, तो शायद मैं उनसे बेहतर उम्मीद करता हूँ। और एक कप्तान से तो ये उम्मीद की जाती है कि वो अपनी टीम को लीड करे, मैं उस कप्तान से ये उम्मीद करता हूँ कि वैभव सूर्यवंशी को वो बल्कि समझाए, ना कि आप जो पिछले 25-30 मिनट से चल रहा था, जैसे होता ना कि जमुना पार एक क्लब का मैच चल रहा है, आप भी अंपायर से लड़ रहे हो, वो जो फील्डर है वो भी आपको गाली दे रहे हैं, आप भी जाके घुसुड़मुक्की के लिए तैयार हो रहे हो, तो ये सही नहीं होता। लोग ना अब क्या कह रहे हैं, 15 साल का बच्चा है, तुम कौन होते हो मॉरल पुलिसिंग करने वाले। बात ये नहीं है, जब वो क्रिकेट इतनी ज़बरदस्त खेल रहे थे तब आप नहीं कहते थे कि यार ये तो बेचारा 15 साल का बच्चा है, तब आप कहते थे ही इज़ अ मैन, ही इज़ रेडी फॉर द वर्ल्ड। और आज जब आपको लगता है कि उस बिहेवियर के कारण, उस आपा खोने के कारण उनकी गेम अफेक्ट होगी, तो आप उसको अभी से रोकें। ये चीज़ें जो हैं ये अंडर 19 लेवल पे चलती हैं, ऊपर जाकर क्या होगा कि सामने वाली टीमें समझ जाएंगी कि इनको अगर आप टारगेट करेंगे, जहनी तौर पर स्लेज करेंगे, गाली देंगे, तो भैया उस तरह से आपा खो बैठेंगे। अब ये इंटरनेशनल मैच होता, अगर ये इंटरनेशनल मैच होता तो बैन लग जाता। आप ये याद रखिएगा, ये फिजिकल कॉन्टैक्ट था, ये धक्का मुक्की हुई है। मैंने आपको क्या बोला, मैं अगर आपको स्लेज कर रहा हूँ वो नियमों के तहत सही है, अनलेस एंड अंटिल मैं रेशियल विलिफिकेशन, यानी कि मैं नस्ल भेदी टिप्पणी कर रहा हूँ, अगर मैं नस्ल भेदी टिप्पणी कर रहा हूँ तो फिर वो ICC कोड ऑफ कॉन्डक्ट में आती है। उसके अलावा स्लेजिंग चलती रहती है, बातें चलती रहती हैं, और हाँ अगर आपने धक्का दे दिया, आपने फिजिकल कॉन्टैक्ट कर लिया, तो बैन तो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में लग जाता है।
0: और अब रुख करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज बात देश के उन बेटियों की जो कि अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने जा रही हैं। इस चैंपियनशिप की टीम के चयन के लिए हरियाणा में ट्रायल हुआ। इस ट्रायल में चुनी गई देश की 10 पहलवान बेटियों में 6 हरियाणा की हैं, बाकी 4 में 2 रेसलर दिल्ली और 1-1 राजस्थान और महाराष्ट्र से हैं।

0: हरियाणा की पहचान कुश्ती के गढ़ के तौर पर भी है। यहाँ छोटी उम्र से ही बच्चे पहलवानी के दांव पेच सीखने लगते हैं और आगे ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियाई खेलों से पदक जीतकर देश का मान बढ़ाते आ रहे हैं। हरियाणा की मिट्टी और संस्कृति में कुश्ती जैसे रची बसी है और यही वजह है कि रेसलिंग में देश के लिए ज्यादातर मेडल इसी राज्य से आते हैं। सिर्फ छोरे ही नहीं बल्कि हरियाणा की छोरियां भी कुश्ती में अपने हुनर का शानदार प्रदर्शन करती हैं।
1: काफी मेहनत करनी पड़ती है, सुबह शाम दोनों टाइम, डाइट का ध्यान रखना और प्रॉपर रेस्ट वगैरह सब कुछ।
2: क्या काम करते हैं पिता आपके?
1: पापा खेती करते हैं।
2: कभी रोका नहीं परिवार ने कुश्ती में?
1: नहीं, पूरा साथ दिया।
3: कब से पैदा हुआ?
1: बचपन से ही, जैसे मेरे भाई हैं बड़े, वो जाते थे तो उन्हें देख।
0: हरियाणा के बहालगढ़ स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग टीम के चयन के लिए ट्रायल आयोजित हुआ, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों की लड़कियां शामिल हुई जो कुश्ती के अपने हुनर का प्रदर्शन करती नजर आई।
4: इसमें लगभग 150 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। 10 वजन इसमें सिलेक्ट करने हैं, 10 वजनों का चयन होना है और अजरबैजान बाकू में ये खेलने के लिए अगले महीने।
0: इस ट्रायल में प्रदर्शन के आधार पर 10 महिला पहलवानों का चयन किया गया। खास बात ये है कि इसमें भी हरियाणा की बेटियों का दबदबा रहा। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए चुनी गई 10 महिला पहलवानों में 6 हरियाणा की ही हैं।
5: खिलाड़ी तो बहुत हैं, लेकिन टोटल जो जाएंगे बाहर जाएंगे तो 10 खिलाड़ी जाएंगे।
2: किस किस कैटेगरी में सर?
5: ये सब कैटेगरी में है, जैसे 53 में है, 57 में है, सारी कैटेगरी जो है उसमें।
2: ये ट्रायल सिर्फ लड़कियों की है या बॉयज की भी?
5: नहीं, सिर्फ लड़कियों की।
0: इस खेल की बेहतरी के लिए भारतीय कुश्ती संघ की ओर से लगातार कोशिशें की जा रही है। चयन प्रक्रिया में भी कुछ बदलाव किए गए हैं जिसका फायदा खिलाड़ियों को मिल रहा है।
6: तो फेडरेशन ने जो सिस्टम निकाला है ना, ये ओवर एज निकालने का, उस सिस्टम के आधार पे नए बच्चों को मौका मिल जाएगा। हमारे अभी तक का जितना भी देखा है फेडरेशन ने, पहलवान जो है एक मतलब कि जूनियर और कैडेट खेल के खत्म हो जाते हैं, और जो जितना भी अपना स्टेमिना है वो अंडर 17 और अंडर 20 में ख़राब कर देते हैं, सीनियर में वो आ नहीं पाते हैं। तो लगभग अभी ये जो नया सिस्टम जो ओवर एज को लेकर फेडरेशन ने कराया है, उससे लगता है कि पहलवान जो ना अब हमारे को सीनियर में मेडल देंगे। ये जो आज ये बच्चे खेल रहे हैं ना, ये सीनियर में आपको आने वाले नहीं 28 महीने 32 ओलंपिक में आपको ये बच्चे मेडल देंगे।
0: ट्रायल में चुनी गई लड़कियां अब अजरबैजान की राजधानी बाकू में आयोजित होने वाली अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में अलग अलग भार वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। ये चैंपियनशिप 27 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित होगी। सोनीपत से पवन राठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ताइवान में ताओ आदिवासियों ने लकड़ी की पारंपरिक नाव से फिलीपींस के लिए शुरू की ऐतिहासिक समुद्री यात्रा। आइए सीधे आपको ले चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश दुनिया की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। नीदरलैंड्स के खिलाफ अपनी फुटबॉल टीम का मैच ड्रॉ होने पर जापानी फैंस खुशी से झूम उठे। जश्न मनाने के लिए वो टोक्यो के सबसे मशहूर और बिजी चौराहे शिबुया क्रॉसिंग पर जमा हुए, लेकिन सिर्फ 40 सेकंड के लिए। जैसे ही सिग्नल लाल हुआ, ठीक उसी सेकंड सब ने जश्न रोका और बेहद अनुशासन के साथ वापस फुटपाथ पर लौट आए ताकि गाड़ियों का रास्ता ना रुके। यानी जब तक पैदल चलने वालों के लिए ट्रैफिक लाइट हरी रही, तब तक सड़क के बीचों बीच फैंस नाचते गाते रहे, लाल होते ही जश्न पर फुल स्टॉप। दुनिया जापानी फुटबॉल फैंस की तारीफ कर रही है। ताइवान के ताओ आदिवासियों ने लकड़ी की पारंपरिक नाव से फिलीपींस के लिए ऐतिहासिक समुद्री यात्रा शुरू की है, जिसका मकसद सैकड़ों साल पुराने सांस्कृतिक और समुद्री संबंधों को फिर से जीवित करना है। इस 20 सीटों वाली ओवायन नाव को ऑर्किड द्वीप के 6 समुदायों ने मिलकर बनाया है। 24 घंटे की समुद्री यात्रा में 7 लोग बारी बारी से चप्पू चलाएंगे। ये कैंपेन दोनों समुदायों के बीच खोए हुए संपर्क को फिर से जोड़ने का प्रयास है। स्थानीय लोगों ने इस समुद्री यात्रा को एक भावनात्मक और ऐतिहासिक कदम बताया और इसका स्वागत किया। चीन में 600 साल पुरानी ओपेरा कला की धमाकेदार वापसी हुई। यहां हिट टीवी ड्रामा ने किंग क्यान ओपेरा को एक बार फिर सुपर हिट बना दिया। यहां के शियान की बैल्कनीज पर अचानक से इन ओपेरा शोज की प्रस्तुति होने लगी है, जिसके कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा में चीन दर्शकों का दिल जीत लिया है। चीन में तैयार हो गया है एआई लैब का भविष्य, क्योंकि बीजिंग में एआई एक पूरी लैब चला रहा है जिसमें इंसान सिर्फ निगरानी कर रहे हैं। इस लाइट्स आउट लैब में बिना स्टाफ के एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। लैब में एआई खुद रिसर्च करता है और खुद ही नतीजे निकालते हैं। लैब में ना तो कोई स्क्रीन है और ना ही कोई एलसीडी डिस्प्ले। यहाँ एआई तमाम प्रक्रियाएं खुद सुधारता है और दक्षता बढ़ाता है। ड्रैगन बोट फेस्टिवल से पहले चीन में रेस का रोमांच देखने को मिल रहा है। यहाँ चोंकिंग की फुरोन नदी में उतरी 18 टीमों ने एक दूसरे को चुनौती दी, जहाँ करीब करीब 500 पैडलर्स ने ताकत और तालमेल का प्रदर्शन किया है। रेस में 200 और 500 मीटर की रेस में सबसे जबरदस्त मुकाबला हुआ। ग्वांगझू में 600 एथलीट्स ने इस रेस में हिस्सा लिया। यहाँ रिटर्न ड्रैगन फॉर्मेट ने कई गुना रोमांच बढ़ा दिया।
3: स्मृति मंधाना के नाम जुड़ा हिस्टोरिकल अचीवमेंट, तो वहीं राजस्थान के धौलपुर के बेटे ने बनाई अंडर 19 टीम में जगह। खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले खेल चक्कर।
7: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ओपनर बल्लेबाज स्मृति मंधाना के नाम के साथ एक ऐतिहासिक अचीवमेंट जुड़ गया है। टाइम मैगजीन ने अपनी टॉप 100 लिस्ट में स्मृति मंधाना को शामिल किया है। हैरानी की बात यह है कि इस लिस्ट में विराट और रोहित जैसे स्टार प्लेयर्स गायब हैं। इस लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी है और उनका नाम है स्मृति मंधाना, जो लिस्ट में 41वें नंबर पर हैं। टाइम्स मैगजीन की इस लिस्ट में प्लेयर्स, कोच और निवेशक तक शामिल हैं। इस लिस्ट में क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लायनल मेसी और कार्लोस अल्कारेज जैसे स्टार्स शामिल हैं। वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप में कल हरमनप्रीत की टीम का मुकाबला नीदरलैंड्स की महिला टीम से होगा। महिला टी20 विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ 64 रनों की शानदार जीत के बाद भारतीय टीम का लक्ष्य अब कल खेले जाने वाले अपने अगले मुकाबले में नीदरलैंड्स को हराना होगा। लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में कल भारत अफगानिस्तान के बीच वनडे मैच खेला जाएगा। ये मैच डे नाइट होगा। कल दोपहर 1 बजे टॉस के बाद लगभग 1:30 बजे मैच शुरू होगा। 3 मैचों की सीरीज का ये दूसरा मुकाबला है, जिसमें पहले मैच में 7 विकेट से जीत हासिल कर टीम इंडिया 1-0 से आगे है। अब कल के मैच को जीत कर भारतीय टीम का सीरीज में अजेय बढ़त बनाने पर फोकस रहेगा। राजस्थान के धौलपुर के प्रतिभाशाली क्रिकेटर रजत बघेल का भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम में चयन हुआ है। रजत को श्रीलंका दौरे के लिए चुनी भारतीय टीम में शामिल किया गया है। भारतीय अंडर 19 टीम 6 जुलाई से श्रीलंका में एक दिवसीय मुकाबले खेलेगी। रजत के चयन की सूचना मिलने के बाद से शहर में और खेल जगत में खुशी है। रजत के साथी खिलाड़ियों, खेल प्रेमियों और स्थानीय लोगों ने इसे धौलपुर के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। रजत इससे पहले राजस्थान अंडर 16 टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वे 2 बार 13 शतक जड़कर सुर्खियों में आ चुके हैं। उनकी शानदार बल्लेबाजी और निरंतर प्रदर्शन ने चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा और उन्हें इंडियन अंडर 19 टीम में जगह मिली। सेरेना और वीनस विलियम्स विंबलडन में अपनी डबल्स पार्टनरशिप फिर से शुरू कर रही हैं। ऑल इंग्लैंड क्लब ने आज दोनों को ग्रास कोर्ट ग्रैंड स्लैम के लिए डबल्स वाइल्ड कार्ड का न्योता दिया है। ये टूर्नामेंट 2 हफ्ते से भी कम समय में शुरू होने वाला है। विलियम्स बहनों ने साथ मिलकर डबल्स में 14 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं, जिनमें से 6 खिताब दोनों ने विंबलडन में जीते। बहनों की इस जोड़ी ने पहला विंबलडन खिताब 2000 में और आखिरी विंबलडन खिताब 2016 में जीता था।
8: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
9: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered. With 90s hits, jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते हैं। कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे,
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
3: फ्रांस के एवन में G7 शिखर सम्मेलन, कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात, कई वैश्विक मुद्दों पर बातचीत। टाइम मैगजीन की टॉप 100 लिस्ट में शामिल हुई स्मृति मंधाना, इस सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी, महिला क्रिकेट में योगदान के लिए मिला सम्मान। रक्षा मोर्चे पर बढ़ेगी भारत की ताकत, वायुसेना बनाएगी घातक स्वदेशी की कामिकेज ड्रोन, 16,000 फीट की ऊंचाई पर भी अचूक वार करने में सक्षम। जम्मू कश्मीर में पवित्र अमरनाथ यात्रा की तैयारियां लगभग पूरी, यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की सेवा के लिए देशभर से पहुंची लंगर कमेटियां, बाबा बर्फानी के लगे जयकारे। वाराणसी में तेजी से आकार ले रहा यूपी का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, शिव काशी और गंगा की थीम पर बनी आकर्षण का केंद्र, दिसंबर तक पूरा होगा निर्माण।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। मशहूर शायर निदा फाजिल ने कभी कहा था, अच्छी संगत बैठकर संगी बदले रूप, देखो मिलकर आम से मीठी हो गई धूप, अमराई से गुजरकर धूप के मीठी हो जाने की यही कल्पना। ये अपने आप में मुकम्मल बयां है, जो बताता है कि आम कितना खास है हमारे लिए। आम का ओहद सिर्फ जुबान का जायका बदलने वाले एक फल भर का नहीं है, बल्कि ये जुड़ा है हमारे इतिहास, हमारी परंपरा, हमारे साहित्य के साथ, हमारी बचपन की यादों से, गर्मी की छुट्टियों से। गर्मियों के मौसम का सबसे प्यारा तोहफा होता है आम, ऐसा तोहफा जो भारत की सरजमीं से निकला और नाम बदलकर सारी दुनिया में घुमाया। आज सुनाएंगे कहानी, उसी आम की खास कहानी, यही आम जिसकी राजधानी कहलाता है हमारा हिंदुस्तान।

0: जो आम में है वो लबे शीरी में नहीं रस, रेशों में है जो शेख की दाढ़ी से मुकद्दस, आते हैं नजर आम तो जाते हैं बदन कस, लंगड़े भी चले जाते हैं खाने को बनारस। बकौल सागर खयामी, ये आम का ही जादू है कि उसे खाने लंगड़े भी बनारस की ओर चल पड़ते हैं। वैसे लंगड़ा खुद भी एक किस्म का आम है और खाने वाले बताते हैं कि इसका स्वाद बहुत खास है। और लंगड़ा ही क्यों, चाहे जो किस्म हो, यूं समझिए कि इस फल के बस नाम में आम है। वाराणसी का लंगड़ा हो या फिर मलिहाबाद का दशहरी, कोंकण तट पर उगा अल्फांसो हो या बिहार का चौसा, आंध्र प्रदेश की धरती से आया सफेदा हो या पश्चिम बंगाल का हिमसागर, नाम में मुगलई नफासत लिए मध्य प्रदेश का नूरजहां या फिर जापान से आया और अब भारत में उगाया जाने वाला मियाज़ाकी, इसकी हर किस्म में वो जायका वो महक है कि हर लुकमे पर वाह वाह कहने को जी चाहता है। कहने को तो आम की सैकड़ों किस्में हैं, लेकिन भारत में आम की लगभग 1500 प्रजातियां पनपती हैं, जिनमें से करीब 1000 किस्में आम तौर से खाई और बाजार में बेची जाती हैं। भारत में पाए जाने वाले हर आम का अपना एक अलग मिजाज, अपना रंग और अपनी एक खास मिठास होती है। इन्हीं किस्मों, इनके स्वाद और रंगों बू पर फिदा होकर कभी जलील मानिकपुरी ने लिखा था, नायाब आम लुत्फ हुए रंग रंग के, कोई है जर्द कोई हरा कुछ है लाल लाल। कोई 4000 साल पहले हिमालय की तलहटी के इलाके में भारतीय उपमहाद्वीप में पनपा ये आम पुर्तगालियों की उंगली थाम कर सारी दुनिया घुमाया। हुआ कुछ यूं कि साल 1498 में जब पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा केरल के तटीय इलाकों में पहुंचे, तो लौटते लौटते वहां से मसालों के साथ साथ आम भी लेते गए। चूंकि केरल में आम को मान कहा जाता था, सो पुर्तगालियों ने आम को मान से मिलता जुलता नाम मानोव दे दिया। कुछ ऐसा चढ़ा पुर्तगालियों की जुबान पर आम का जादू कि पुर्तगाली व्यापारी जहाँ जहाँ गए वे अपने साथ आम लेते गए। इस तरह आम अमेरिका से लेकर यूरोप तक फैल गया। चूंकि अंग्रेजों को पुर्तगाली उच्चारण में थोड़ी दिक्कत आती थी, इसलिए उन्होंने इसे मैंगो कहना शुरू कर दिया। इस तरह दुनिया घूम कर भारत का मान मैंगो बनकर वापस लौट आया। आज सुनाएंगे कहानी अपने उसी मान की, जिसका जायका मैंगो बनकर देश की सीमाओं और महासागरों की दहलीजों के परे दुनिया भर की जुबान पर चढ़ा है। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
1: इस समय अगर आप घर से बाहर निकलेंगे तो गली मोहल्लों के मार्केट से लेकर शहरों की मंडियों तक आपको आम ही आम दिखाई देंगे। और हो भी क्यों ना, फलों के राजा इतने किस्मों, इतने रंगों, स्वाद और खुशबुओं में मिलता है, हमारे देश में गिनते गिनते थक जाएंगे। अपने देश के हर हिस्से में आम होता है और आम की हर किस्म का अपना ही स्वाद होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक भारत में आम की लगभग 1000 किस्में हैं। तो चलिए कुछ आमों के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं, लेकिन इनमें आपको सबसे ज्यादा हैरान करेगा वो आम जिसका दाम सोने से भी ज्यादा है।

गर्मियाँ यूँ तो बेहद सितम करती हैं, पर अपने पिटारे में रख के लाती हैं जो आम, बड़ा करम करती हैं। और गर्मियों के हिस्से आए इसी आम के फसाने की शुरुआत करते हैं एक किस्से से। एक बार उर्दू अदब के मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी ने अपने दोस्त मुंशी निसार हुसैन के नाम एक खत लिखा और खत में आम के सीजन में आम भेजने की दरख्वास्त कुछ इस तरह की, नामा न कोई यार का पैगाम भेजिए, इस फसल में जो भेजिए बस आम भेजिए, ऐसा जरूर हो कि उन्हें रख के खा सकूं, पुख्ता अगरचे 20 तो 10 खाम भेजिए, मालूम ही है आपको बंदे का एड्रेस, सीधे इलाहाबाद मेरे नाम भेजिए, ऐसा न हो कि आप ये लिखें जवाब में, तामील होगी पहले मगर दाम भेजिए। भेजने से पहले 100% दाम ही मांग लेते अकबर इलाहाबादी के दोस्त अगर उन्होंने मियां जाकी आम की फरमाइश की होती, क्योंकि जरा हट के नाम वाले मियां जाकी आम का दाम सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इस आम की कीमत है 3 लाख रुपए प्रति किलो। ये दुनिया का सबसे महंगा आम है। उपज की तादाद, डिमांड और क्वालिटी पर निर्भर करते हुए मियाज़ाकी आम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 2,80,000 रुपए से लेकर 3,30,000 रुपए प्रति किलो तक जाती है।

0: अपनी खूबसूरत लाल बैंगनी रंगत, दुर्लभता और ऊंची कीमत के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इस आम के दाम को कुछ यूं समझिए कि मियाज़ाकी आम वास्तव में सोने से भी महंगा है। 16 जून 2026 को देश की राजधानी में 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 1,51,690 रुपए है, जबकि मियाज़ाकी आम का दाम है 3 लाख रुपए प्रति किलो, यानी 1 किलो आम का दाम लगभग 20 ग्राम सोने के बराबर है। है ना कमाल? अच्छी बात तो ये है कि जापानी नस्ल का सोने से महंगा मियाज़ाकी आम अब भारत में भी उगाया जा रहा है। यूपी के सहारनपुर में फलता फूलता दिख रहा ये मियाज़ाकी आम है। सहारनपुर के एक किसान ने आय बढ़ाने के इरादे से साल 2021 में इस नए प्रयोग की शुरुआत की थी। किसान संदीप चौधरी ने अपने ऑर्गेनिक बाग में केवल 2 पौधे लगाकर शुरुआत की थी, लेकिन आज उनके बाग में करीब 40 मियाज़ाकी के पेड़ तैयार हो चुके हैं। अब इन पेड़ों पर फल भी आने लगे हैं। इस समय उनके 10 से 12 पेड़ों पर फल लगा हुआ है। उम्मीद है कि इस सीजन में करीब 14 से 15 किलो उत्पादन मिलेगा।
1: इस समय मियाज़ाकी जो दुनिया सबसे महंगी वैरायटी वो अपने लगाई थी, वो क्यों लगाई थी? जब आम लगाया तो हमने सर्च किया दुनिया में सबसे महंगे आम की वैरायटी कौन सी है, तो पता चला कि मियाज़ाकी है, जो जिसका भाव 2,70,000 से 3.5 लाख रुपए किलो तक आता है। ये वैरायटी के पौधे हमें पता लगा, फिर हमने पौधे यहाँ से मंगाए इसके, और सबसे पहले 2 पौधे लगाए, और 2 पौधों के बाद उसकी क्रॉपिंग करी कि हमने कि उनसे पौधे बनाए हमने। आज हमारे पास लगभग 40 पौधे हमारे इस बाग में लगे हुए हैं। बड़ी बात यह है कि हमने ये देखा है कि ये बाग पूरी तरह उगाने ऑर्गेनिक होने की वजह से इसमें ग्रोथ भी अच्छी हुई है, आम का कलर भी अच्छा आ रहा है, और एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स अपने को मिला है। अब हम ये चाहेंगे देश के जो तमाम किसान हैं वो ऐसी महंगी वैरायटी लगाएं जिससे हम एक्सपोर्ट करने का एक हब बन सके।
0: वैसे अगर आप आम के मुरीद हैं और मियाज़ाकी का स्वाद चखना चाहते हैं तो आपको बता दें कि मियाज़ाकी आम आजकल बिहार के भागलपुर में भी उगाया जा रहा है। भले ही सोने सा भाव हो, लेकिन आम के दीवाने दाम कहाँ देखते हैं। खैर, आमों की दुनिया का ये दूसरा अजूबा पनपता है मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में, और नाम है नूरजहां। नूरजहां को दुनिया का सबसे बड़ा आम माना जाता है। एक नूरजहां आम का वजन 4 किलो तक हो सकता है, और भारत में आम प्रेमियों के बीच ये जितना लोकप्रिय है उतना ही दुर्लभ भी है। मध्य प्रदेश के जिला अलीराजपुर का कट्ठीवाड़ा अपने झरनों, बारिश और नूरजहां आम के लिए भी जाना जाता है। मौसम और मिट्टी ने इस फल के पनपने के लिए यहां एकदम सही हालात दिए हैं। नूरजहां के बाद बात भागलपुर के जरदालू आम की। भागलपुर के जरदालू आम की कई विशेषताएं हैं। ये सुपाच्य है, स्वादिष्ट तो है ही, और कुछ हद तक शुगर फ्री भी कहला ही लेता है। दरअसल जरदालू आम में दूसरे आमों के मुकाबले प्राकृतिक शुगर की मात्रा कम होती है, और भागलपुर के जरदालू आम को GI टैग भी मिला हुआ है। हर साल भागलपुर में पैदा होने वाला ये आम राजधानी दिल्ली में देश के गणमान्य लोगों को भेजा जाता है। गर्मियों के मौसम में फलने वाले आम की ये वो किस्में हैं जिन्हें दुनिया भर में पसंद किया जाता है। लेकिन इन्हीं के बीच यूपी के सहारनपुर में आम का एक ऐसा पेड़ आपको दिखाते हैं जो सिर्फ गर्मियों में नहीं बल्कि 12 महीने फल देता है। इस आम की वैरायटी का नाम है सदाबहार। सदाबहार आम का पेड़ आकार में आम के दूसरे पेड़ों की तुलना में काफी छोटा होता है, लेकिन इसकी उत्पादकता बेहद खास है। इस पेड़ पर एक ही समय में बोर, छोटे फल और पकने के लिए तैयार आम एक साथ दिखाई देते हैं। ये वो अनोखा पेड़ है जो आम के जायके और खुशबू को गर्मियों की मुट्ठी से निकालकर हर मौसम की हथेली पर रख देता है। सहारनपुर से राहुल कुमार और भागलपुर से राजीव सिद्धार्थ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
2: अब देखिए, गर्मी का मौसम है और फलों के राजा घर घर में पहुंच रहे हैं। इसी सिलसिले में अयोध्या के राजा रामलला सरकार तक भी आम का भोग पहुंचा है। अयोध्या के राम मंदिर में यूं भी समय समय पर विशेष और दुर्लभ किस्म के मौसमी फलों का भोग रामलला को लगाया जाता है। इसी कड़ी में रामलला को मियाजाकी आम का भोग भी लगाया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मियाजाकी आम की कीमत लाखों रुपए में होती है। ये बात और है कि आम का मोल चाहे लाखों में है, लेकिन भक्ति भाव तो अनमोल है। बताया जा रहा है कि खास आम अयोध्या के ही एक स्थानीय किसान ने उपजाया है। आपको बता दें कि देश भर के अलग अलग शहरों से वहां उपजने वाले खास फल समय समय पर रामलला के लिए भेजे जाते हैं। इन विशेष अवसरों पर फलों की टोकरियों से मंदिर को सजाया जाता है और रामलला को अर्पित फलों का भोग लगाने के बाद प्रसाद स्वरूप भक्तों में वितरित कर दिया जाता है। आम का रिश्ता सिर्फ हमारी जुबान से नहीं बल्कि ये हमारे इतिहास और परंपरा के साथ भी जुड़ा है। उपनिषद और पुराणों में इसका जिक्र मिलता है। गालिब हो या गुलजार, शायर हो या कवि, सभी ने इसकी तारीफ में कसीदे पढ़े हैं। लेकिन चलिए आपको वैदिक काल से लेकर मुगल काल तक की आम कहानी बताते हैं इस रिपोर्ट में।

0: मीठा, रसीला और दिलों पर राज करने वाला आम। गर्मियों में लोग भले ही चिलचिलाती धूप और पसीने से परेशान रहते हैं, लेकिन इस मौसम में मिलने वाला आम किसी तोहफे से कम नहीं होता। बच्चे हो या बुजुर्ग, गरीब हो या अमीर, आम हर किसी को खास एहसास कराता है। आम सदियों से लोगों की पहली पसंद बना हुआ है और आज भी इसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। सबसे पहले आम आम्रफल कहा जाता था। पुराने वैदिक ग्रंथों में इसे रसाला और सहकार नाम से भी जाना जाता था। इन नामों का जिक्र प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे बृहदारण्यक, उपनिषद और पुराणों में भी मिलता है। यानी आम सिर्फ एक फल नहीं बल्कि बहुत पुराने समय से हमारी संस्कृति और परंपरा का अहम हिस्सा रहा है। ऐसा माना जाता है कि हजारों साल पहले पूर्वोत्तर भारत, म्यांमार और बांग्लादेश में आम की पैदावार हुई थी, जहां से ये दक्षिण भारत पहुंचा और तमिल में इसे आम काय कहा गया, जो बोलचाल की भाषा में बदलकर धीरे धीरे मामकाय बन गया। मलयाली लोगों ने इसे आगे चलकर मांगा के नाम में बदल दिया। 16वीं सदी में पुर्तगाली कारोबारियों ने आम को अफ्रीका और ब्राजील तक पहुंचाया और धीरे धीरे ये आम फल खास बन गया और पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना लिया। इतिहास के हर दौर में इसकी मिठास ने लोगों के दिलों को जोड़ा है। शायद यही वजह है कि आज भी आम का इंतजार हर गर्मी में उतनी ही बेसब्री से किया जाता है। इतिहास में आम की खास अहमियत रही है। सम्राट अशोक से लेकर मुगल काल तक आम की दीवानगी देखी गई है। कविता और साहित्य में भी इसकी मिठास घुली है। मिर्जा गालिब की दीवानगी हो या लोकगीतों की मिठास, आम सदियों से कवियों और लेखकों की कलम को रसीला बनाता रहा है। आम के बारे में कवि उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब ने कहा था कि आम में बस दो खूबियां होनी चाहिए, एक मीठा हो और दूसरा बहुत सारे हो। सिर्फ गालिब ही नहीं बल्कि गुलजार से लेकर अपने जमाने के मशहूर शायरों में शुमार सागर खयामी ने तो इस पर पूरी उर्दू कविता लिखी है। फल कोई जमाने में नहीं, आम से बेहतर करता है सना आम की गालिब साफ सुखनवर। क्या बात है, आमों की हो देसी या विदेशी, सुर्खे हो सरौली हो कि तुखमे हो कि कलमी, चौसे हो सफेदे हो कि खजरी हो कि फजरी, एक तरफा कयामत है मगर आम दशहरी। हिंदी साहित्य में भी खासकर काव्य में आम लोगों को लेकर खूब लिखा रचा गया है। आम को लेकर आम का बाग नाम की कविता बेहद चर्चित है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा आम उत्पादक देश है। यहाँ अल्फांसो, दशहरी, लंगड़ा, केसर और तोतापुरी जैसी सैकड़ों किस्में पाई जाती हैं, जो हर राज्य की अपनी खास पहचान बन चुकी है। कुल मिलाकर आम सिर्फ स्वाद नहीं, एक हसीन एहसास है। एक ऐसा फल जो बचपन की यादें भी है और हर गर्मी की सबसे बड़ी खुशी भी। शायद इसीलिए हर साल जब आम आता है तो सिर्फ मौसम नहीं बदलता, माहौल बदल जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: अब देखिए, भोजन भगवान को अर्पित होता है और भोग बन जाता है। मौसम आम का है, सो शहर शहर अपने आराध्य को भक्त आम का भोग चढ़ाते हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के वाशिम में संत गजानन के धाम पर 7.25 क्विंटल आमों का चढ़ावा अर्पित किया गया। देखिए,

0: चारों तरफ आम ही आम, आमों से सजा संत गजानन महाराज का धाम। ये तस्वीरें महाराष्ट्र में वासिम जिले के कारंजा लाड के ममता नगर की हैं। यहाँ पर संत गजानन महाराज मंदिर में 7.25 क्विंटल आम का दिव्य भोग अर्पित किया गया और आमों से ही उनकी प्रतिमा की शानदार सजावट की गई। एकादशी के पावन अवसर पर मंदिर में संत गजानन महाराज के दर्शन के लिए भक्तों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा हो गई। इस अवसर पर भक्ति भाव से महाराज की शानदार आरती की गई और फिर प्रसाद वितरण किया गया।
1: अपने इधर महाराज को 7.25 क्विंटल का आम का आरस यानी भोग चढ़ा गया था, उसी का प्रसाद स्वरूप आज रसाई बन के सब महिलाओं को खाना दे रहे।
0: संत गजानन महाराज को चढ़ाए गए आमों का रस निकालकर 6,000 भक्तों को प्रसाद के तौर पर बांटा गया। इस अवसर पर 30 गांवों से आई संस्थान की वॉलंटियर 3,000 महिलाओं ने आमरस के साथ पूरन पोली और दूसरी डिश तैयार की।
2: हम बिरखेड़ गांव से आम महिलाएं सेवा देने को आए हैं और महाराज की कृपा से हमें यहाँ आज ये जो ये सेवा मिली है ये हमारा अहोभाग्य हम समझते हैं।
3: कैसा लगा आपको सेवा
2: करके? हमको बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे जीवन का एक अविस्मरणीय क्षण हम मानेंगे।
0: खास बात ये है कि इस खास अवसर पर तमाम भक्त ही संत गजानन महाराज को अर्पित करने के लिए आम लेकर आए थे। वाशिम से जाका खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: पर असर डालती है, तो कुछ दिल
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: बात अमरनाथ यात्रा की, अब इस आध्यात्मिक यात्रा में काफी कुछ नया देखने को मिलेगा। जम्मू में अमरनाथ बेस कैंप के पास तैयार हो रहा है एक ऐसा पार्क जहां कबाड़ से इतिहास रचा जा रहा है। जी हां, वहां एक ही जगह पर ताजमहल से लेकर एफिल टावर तक दुनिया और भारत की कई प्रसिद्ध धरोहरों की झलक देखने को मिलेगी। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है, ऐसे में जम्मू शहर में यात्रियों के लिए वेस्ट वंडर पार्क तैयार किया जा रहा है जो श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए एक नया आकर्षण होगा।
2: जल्द ही बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए यात्रा शुरू होने वाली है। जल्द अमरनाथ जाने वाले हर राह पर बाबा बर्फानी का जयकारा होगा। इस बार बाबा बर्फानी के दर्शन की आस में निकले अमरनाथ यात्रियों को जम्मू में ताजमहल की खूबसूरती दिखेगी। कुछ कदम आगे बढ़ने पर पेरिस का आइफिल टावर स्वागत करता दिखाई देगा।
3: वेस्ट टू वंडर पार्क, यानी जो वेस्ट हुआ मटेरियल होता है उससे एक पार्क बनाया जा रहा है और उस पार्क के बीच में कई स्मारक जो है वो स्थापित किए गए हैं। ये खास तौर पर आकर्षण का केंद्र इसलिए बन रहा है क्योंकि आगामी अमरनाथ यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है और देश भर के क्या विश्व भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु सबसे पहले जम्मू पहुँचेंगे और उनके लिए यहाँ पर जम्मू में खास तौर पर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आने वाला ये प्रोजेक्ट जो है स्थापित किया जा रहा है।
2: यहाँ दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी और मुंबई की पहचान गेटवे ऑफ इंडिया भी नजर आएंगे। ये कोई जादू नहीं बल्कि जम्मू में तैयार हो रहा एक अनोखा वेस्ट टू वंडर पार्क है। यहाँ बेकार चीजों और कबाड़ से देश दुनिया की प्रसिद्ध धरोहर की रेप्लिका बनाई जा रही है।
4: यात्री 2 महीने के लिए तो आते ही है, उनको थोड़ा सा वक्त मिलेगा और बच्चों को, हमारे जम्मू के बच्चों को भी सीखना मिलेगा कि हम अपने वेस्ट प्रोडक्ट से क्या क्या क्या बना सकते हैं।
2: यहाँ इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्चना ब्रिज भी होगा। वहीं खगोलीय रहस्यों को समेटे दिल्ली का जंतर मंतर भी है। पीसा की झुकी मीनार से लेकर राजस्थान की ऐतिहासिक विरासत तक कई प्रसिद्ध रचनाएं इस पार्क की शोभा बढ़ा रही है।
5: ई वेस्ट टू वंडर पार्क, एक वंडर पार्क जो ई वेस्ट मटेरियल से बन रही है और जो कि भगवती नगर में है, अमरनाथ यात्री निवास के बिल्कुल एकदम पास। बात करें यात्री, जो देश भर से यात्री आएंगे, जो टूरिस्ट आएंगे, वो जम्मू में जरूर विजिट कीजिए इस वंडर पार्क में।
2: इस परियोजना की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ इसकी खूबसूरती नहीं बल्कि इसका संदेश है, क्योंकि जो कबाड़ कभी बेकार माना जाता था वो अब कला और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक बन रहा है।
6: हमें लग रहा है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स और भी जगह बने ताकि वेस्ट को हम किस तरह से रिसाइकल करके शेप दे सके और जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकती है।
2: अमरनाथ यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु जम्मू पहुँचते हैं, ऐसे में ये पार्क उनके लिए एक बेहतरीन मनोरंजन और विश्राम स्थल साबित होगा। लंबी यात्रा के बीच श्रद्धालु यहाँ कुछ समय बिताकर देश दुनिया की मशहूर इमारतों की झलक एक ही जगह देख सकेंगे। जम्मू से राही कपूर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: एक अनोखा स्कूल इन दिनों वायरल है। आपने स्कूलों में बच्चों को जाते तो देखा होगा, लेकिन क्या कभी ऐसा स्कूल देखा है जहां सिर्फ डॉग ही पढ़ते हों? हम आपको दिखाते हैं एक ऐसा है स्कूल जो चीन के शंघाई में मौजूद है। ये एक ऐसा डॉग प्री स्कूल है जहां पर डॉग्स के लिए पढ़ाई, खेल, संगीत और फिटनेस तक की सुविधाएं मौजूद हैं।

0: मधुर धुनों के बीच खेलते ये डॉग्स किसी पार्क में नहीं बल्कि चीन के शंघाई में एक डॉग प्री स्कूल में है। यहाँ हर सुबह इन नन्हे मेहमानों की क्लास शुरू होती है। दिन भर के स्केड्यूल में खेलकूद, सोशलाइजेशन, हेल्दी स्नैक्स, फिटनेस ट्रेनिंग और लाइव पियानो म्यूजिक तक शामिल है। पॉथ्री नाम का ये डॉग प्री स्कूल पालतू डॉग्स को घर से लाकर पूरे दिन उनकी देखभाल करता है। स्कूल की टीम खुद डॉग्स को लेने और छोड़ने का काम भी करती है। स्कूल में डॉग्स के लिए खास किचन भी है जहां उनके लिए ताज़ा और हेल्दी ट्रीट तैयार किए जाते हैं। शाम की चाय की तरह यहां डॉग्स के लिए आफ्टरनून टी भी परोसी जाती है। सिर्फ यही नहीं, यहां डॉग्स को ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज कराई जाती है, आउटडोर ट्रेनिंग दी जाती है और उनकी मानसिक सेहत का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। इस अनोखे प्री स्कूल की शुरुआत जेनजांग ने की थी। अपने पालतू डॉग की चिंता और अकेलेपन की समस्या को देखते हुए उन्हें ये आइडिया आया। सिर्फ एक साल में यहाँ आने वाले डॉग्स की संख्या 10 से बढ़कर 200 तक पहुँच गई है। बढ़ती मांग को देखते हुए अब दूसरा सेंटर खोलने की तैयारी भी चल रही है। चीन में घटती जन्म दर और बदलती जीवन शैली के बीच पालतू जानवरों पर खर्च तेजी से बढ़ रहा है। उद्योग से जुड़े आंकड़ों के मुताबिक चीन का शहरी पेट मार्केट 2025 में 312 अरब युआन से ज्यादा का हो चुका है और अगले कुछ वर्षों में इसके 405 अरब युआन के पार पहुंचने का अनुमान है। यानी अब डॉग्स के लिए भी स्कूल, फिटनेस और लग्जरी लाइफस्टाइल एक बड़ा कारोबार बन चुका है। ऐसे में पियानो के धुनों से लेकर फिटनेस ट्रेनिंग और स्पेशल ट्रीट्स तक, शंघाई का ये डॉग प्री स्कूल दिखाता है कि बदलती दुनिया में पालतू जानवरों की जगह अब परिवार के सबसे खास सदस्यों में हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: Jack FM, now playing what we want, commercial-free, on TuneIn Premium.
3: What about me, Jack? What about me?
2: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
4: Well played, Jack. Well played.
2: Jack FM, playing what we want.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन, कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात, कई वैश्विक मुद्दों पर बातचीत। टाइम मैगजीन की टॉप 100 लिस्ट में शामिल हुई स्मृति मंधाना, इस सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी, महिला क्रिकेट में योगदान के लिए मिला सम्मान। रक्षा मोर्चे पर बढ़ेगी भारत की ताकत, वायुसेना बनाएगी घातक स्वदेशी कामिकेज ड्रोन, 16,000 फीट की ऊंचाई पर भी अचूक वार करने में सक्षम। जम्मू कश्मीर में पवित्र अमरनाथ यात्रा की तैयारियां लगभग पूरी, यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की सेवा के लिए देशभर से पहुंची लंगर कमेटियां, बाबा बर्फानी के लगे जयकारे। वाराणसी में तेजी से आकार ले रहा यूपी का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, शिव, काशी और गंगा की थीम पर बनी आकर्षण का केंद्र, दिसंबर तक पूरा होगा निर्माण।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छा।
5: आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर, और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है, इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है, और चर्चा सातवें बड़ा मंगल पर उमड़े आस्था के हुजूम की भी। ज्येष्ठ मास के सातवें बड़ा मंगल पर देश भर के हनुमान मंदिरों में उमड़ा आस्था का हुजूम। रामनगरी अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में राम भक्त हनुमान के दर्शन पूजन के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। भीड़ को देखते हुए यहां भक्तों की सुविधा और सुरक्षा की भी पुख्ता व्यवस्था रही। बारी आने पर भक्तों को दर्शन पूजन का सौभाग्य प्राप्त होता रहा। प्रयागराज में संगम के तट पर लेटे हनुमान जी के दर्शन के लिए भी भक्त सुबह से ही पहुंचने लगे, और देखते ही देखते उनकी लंबी कतारें लग गई। इस विशेष अवसर के लिए हनुमान जी की प्रतिमा का फूलों और फलों से भव्य श्रृंगार किया गया और उन्हें 56 भोग भी लगाया गया। मान्यता है कि बड़ा मंगल के दिन बजरंग बली की भक्ति करने से जीवन के सभी दुख, दर्द और संकट दूर हो जाते हैं। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में श्रीनाथ जी की नौका विहार मनोरथ का भव्य आयोजन हुआ। इस नौका यात्रा उत्सव को लेकर मंदिर की दिव्य सजावट की गई, जिसमें बड़ी संख्या में आम का उपयोग भी किया गया। इस विशेष अवसर के लिए ठाकुर जी को मलमल के हल्के वस्त्र पहनाकर सुगंधित फूलों और चंदन से श्रृंगार किया गया, और फिर ठाकुर जी को जल के बीच विशेष रूप से सुसज्जित नावों में विराजमान कर भव्य झांकी सजाई गई। साथ ही बधाई गीत भी गाए गए। इस अवसर पर ठाकुर जी के विशेष दर्शन कर भक्त मंत्रमुग्ध हो गए। अधिक मास के समापन के अवसर पर इस दिव्य उत्सव का आयोजन हुआ। उड़ीसा के पुरी में 16 जुलाई से शुरू होने वाली भव्य जगन्नाथ यात्रा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। कारीगर तीनों पवित्र रथों को तेजी से आकार देने में जुटे हैं। इसके अलावा नाटगोर प्रतिमाओं की पॉलिशिंग का काम भी तेजी से चल रहा है, तो रथ यात्रा के दौरान भगवान की सेवा पूजा के लिए लकड़ी से बने उपकरणों का निर्माण कार्य भी हो रहा है। चित्रकार सेवक तीनों रथों के पार्श देव देवियों की मूर्तियों, सखियों, उलटशुआ, देव देवी आसन फ्रेम आदि पर रंग रोगन करने में लगातार जुटे हैं। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर हर स्तर पर बड़ी तैयारी की जा रही है। 3 जुलाई से शुरू होने वाली इस पवित्र यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं की सुविधा से लेकर उनकी सुरक्षा तक को लेकर तैयारी चल रही है। इसी कड़ी में अनंतनाग पुलिस ने पहलगाम में सुरक्षा और आपातकालीन एजेंसियों के साथ मिलकर तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस दौरान कई संभावित आपात स्थितियों से निपटने को लेकर अभ्यास किया गया, जिनमें सुरक्षा, खतरे, मेडिकल इमरजेंसी, भीड़ प्रबंधन और निकासी जैसी स्थितियां शामिल रहीं। इस मॉक ड्रिल के तहत अलग अलग एजेंसियों के बीच तालमेल, संचार और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली की समीक्षा की गई। ये तस्वीरें ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित फॉरेस्ट पार्क की है, जहाँ राजा पर्वा की रौनक बिखरी हुई है। पारंपरिक झूले, उत्सव और उल्लास के साथ यहाँ राजा पर्व की शुरुआत हुई। रंग बिरंगे पारंपरिक परिधानों में सजी महिलाएं झूलों का आनंद लेते बच्चों के साथ ही इस पर्व में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और पान समेत पारंपरिक पकवानों के स्टॉल देखने को मिल रहे हैं। 3 दिवसीय इस उत्सव के साथ ओडिशा में मॉनसून का स्वागत किया गया। ये राजा पर्व नारित्व और धरती माता की उर्वरता का उत्सव है, यानी ये प्रकृति, उर्वरता और परंपरा का अनूठा उत्सव है जिसमें पूरे राज्य के लोगों की भागीदारी होती है। इस उत्सव को मनाने के लिए पारंपरिक उड़िया व्यंजन तैयार किए जाते हैं, साथ ही विशेष रूप से तैयार किया गया पान इस त्योहार के प्रमुख आकर्षणों में से एक है।
6: और अब बात एक ऐसे सरकारी स्कूल की जिसमें दाखिले के लिए पेरेंट्स कतारों में खड़े नजर आए। तेलंगाना के नलकोंडा जिले का एक सरकारी स्कूल इन दिनों अपनी वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के लिए चर्चा में है। इस सरकारी स्कूल में एसी, स्मार्ट क्लासरूम, एआई आधारित टीचिंग और डिजिटल लैब जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। स्कूल प्रशासन के मुताबिक इसकी लोकप्रियता का आलम यह है कि केवल शहर से ही नहीं बल्कि जिले के दूर दराज इलाकों और पड़ोसी जिलों से भी अभिभावक बच्चों के फॉर्म लेकर पहुंच रहे हैं।

0: इससे पहले स्कूल को देखे तो वो स्कूल में कोई भी हमारा को ये फैसिलिटी नहीं।
1: इसे आप तेलंगाना के सरकारी स्कूल के पुनर्जन्म की कहानी भी कह सकते हैं। नलगोंडा के बोट्टुगुड़ा में कोमाटी रेड्डी प्रतीक गवर्नमेंट स्कूल में इस साल एडमिशन का ऐसा क्रेज देखा जा रहा है कि यहाँ महज 450 सीटों के लिए करीब 4000 आवेदन आ चुके हैं। इसके चलते इस सरकारी स्कूल में दाखिला मिलना किसी IIT या IIM की सीट मिलने जितना मुश्किल हो गया है।
2: नलगोंडा जिले ने अपना इमेज पूरी तरह, अपनी तस्वीर पूरी तरह बदल दी। वजह है, इस जिले में एक वक्त में जीरो एनरोलमेंट्स, शून्य एनरोलमेंट्स गवर्नमेंट स्कूल में होते थे और इसी के लिए देश भर में यह नलगोंडा जिले का नाम था। लेकिन एक साल के अंदर नलगोंडा जिले में एक कोमट्रेटी प्रतीक गवर्नमेंट स्कूल, ये सरकारी स्कूल में 450 सीट के लिए 4000 एप्लीकेशंस दाखिल किए गए।
1: स्कूल के बाहर का नजारा किसी महंगे और VIP प्राइवेट स्कूल जैसा लग रहा है, जहां सुबह सुबह से ही माता पिता अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूलों की मोटी फीस के मुकाबले उनसे कहीं बेहतर सुविधाओं से लैस ये सरकारी स्कूल बच्चों और अभिभावकों को ज्यादा आकर्षित कर रहा है।
3: पहले हमारा स्कूल जो गवर्नमेंट था उसमें ना फैसिलिटी कुछ भी नहीं थी, वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, ब्लैक बोर्ड था, तो हमारे को ऐसा दिल बोलता था कि कब घर जाएं। इसलिए हमारे कोमटेड्डी वेंकट रेड्डी जो मिनिस्टर है सर, उन्होंने ये स्कूल बनवाया। इसमें डिजिटल बोर्ड है, AC कैंपस है पूरा, और यहाँ पर ऐसा दिखता है कि कब स्कूल आए, घर जाने का मन ही नहीं करता हमें।
4: स्कूल अच्छा है और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, टीचर्स भी अच्छे हैं। मैं गवर्नमेंट स्कूल में अच्छी पढ़ती हूँ और प्राइवेट स्कूल में अच्छे पढ़ते हैं, बट मैं कुछ अच्छा पढ़ रहे वो क्या बोलते हैं।
1: एडमिशन की लाइन में लगे अभिभावकों का कहना है कि पहले वो अपने बच्चे के लिए नामी गिरामी प्राइवेट स्कूल में भारी भरकम फीस चुका रहे थे, लेकिन जब उन्होंने इस स्कूल के कैंपस और सुविधाओं को देखा तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कई प्राइवेट स्कूलों से बेहतर लगा।
5: सर, इससे पहले हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में थे सर, फिर वहाँ फीस, बुक्स सब बहुत ज़्यादा हो जाता सर, तो परेशानी हो रहा था बच्चों को पढ़ाना लिखाना। तो ये स्कूल बना है सर, ये बहुत अच्छा बना है स्कूल, यहाँ कंप्यूटर एजुकेशन है, फिर AC कैंपस है, प्राइवेट स्कूल के बराबर ये स्कूल बना है, इसलिए बोल के ये साल में ये स्कूल में एडमिशन करे।
1: दरअसल साल भर पहले इस स्कूल में बुनियादी सुविधाएं तक नहीं थी। पिछले साल तक ये स्कूल बिना किसी पक्की इमारत के चल रहा था और यहाँ करीब 200 छात्र पढ़ते थे, लेकिन अब ये एक स्मार्ट स्कूल में तब्दील हो चुका है। लिफ्ट से लेकर कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासरूम, AI बेस्ड लर्निंग, डिजिटल लैब और इंडोर स्पोर्ट्स तक की सुविधाएं हैं। AI की क्लास में सुंदर पिचाई की तस्वीर बच्चों को इंस्पायर करती है, तो वहीं

0: साथ मिड डे मील्स, ब्रेकफास्ट मील्स यहाँ पर लाए गए हैं, जहाँ पर बच्चों को मुफ्त खाना दिया जाता है, यूनिफॉर्म मुफ्त में दिया जाता है, किताबें और बैग मुफ्त में दी जाती हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब शिक्षा की बात हो तो AI लर्निंग क्लासेस, स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स, AC क्लासरूम, साथ में मॉडर्न बेंचेस के साथ एक मुफ्त में इस तरीके का अनुभव यहाँ के सरकारी स्कूल के बच्चों को देखने को मिलता है।
1: कुछ समय पहले तक नलगोंडा की गिनती उन जिलों में होती थी जहां सरकारी स्कूलों में बहुत कम या बिल्कुल भी एडमिशन नहीं होते थे, लेकिन इस स्कूल ने तस्वीर बदल दी है और अब ये स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर और पढ़ाई के माहौल के मामले में बड़े बड़े कॉर्पोरेट स्कूलों को टक्कर दे रहा है। तेलंगाना के नलगोंडा से अब्दुल बशीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गदर के 25 साल पूरे होने पर फैंस को सनी देओल ने कहा शुक्रिया। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चलें फिल्मी मोड पर।
3: फिल्म गदर एक प्रेम कथा के 25 साल पूरे होने पर सनी देओल ने उनके निभाए गए तारा सिंह के किरदार को ढेर सारा प्यार देने के लिए फैंस का शुक्रिया अदा किया। साल 2001 में इस फिल्म में तारा सिंह बनकर सनी देओल बड़े पर्दे पर छा गए थे। 15 जून को फिल्म गदर के रिलीज होने के 25 साल पूरे हो गए। फिल्म गदर का क्रेज लोगों में इतना ज्यादा था कि इसका एक उदाहरण साल 2023 में भी देखने को मिला, जब इस फिल्म के अगले भाग यानी गदर 2 को भी बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता मिली। अब निर्देशक अनिल शर्मा इस फिल्म के तीसरे पार्ट पर काम कर रहे हैं। करण जौहर अब साउथ सिनेमा में फिल्म निर्माण की तरफ भी बढ़ चुके हैं। इस कड़ी में उन्होंने पहला कदम मलयालम सिनेमा की तरफ बढ़ाया है। करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले फिल्म ओडियन द एज ऑफ इल्यूजन के निर्माण का ऐलान हो चुका है। इस फिल्म का पोस्टर भी शेयर किया जा चुका है। धर्मा प्रोडक्शन ने 19वीं सदी के केरल की लोक कथाओं और सांस्कृतिक पौराणिक कथाओं पर आधारित इस फिल्म के लिए पृथ्वीराज प्रोडक्शंस और निर्देशक राहुल के साथ हाथ मिलाया है। फिल्म ओडियन में पृथ्वीराज सुकुमारन नजर आएंगे, जिनमें उनके साथ मंजू वॉरियर अहम भूमिका में नजर आएंगी। राजकुमार हिरानी जियो स्टारर पर प्रीतम और पेड्रो नाम का वेब शो ला रहे हैं, जिसमें उनके बेटे वीर हिरानी अपना एक्टिंग डेब्यू करते नजर आएंगे। अरशद वारसी और वीर हिरानी के इस शो का ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है। सीरीज की ये कहानी गोवा पर आधारित है, जहां अरशद वारसी यानी पेड्रो नाम के पुलिस ऑफिसर और इंजीनियर के रूप में प्रीतम यानी वीर हिरानी की जोड़ी धमाल करती हुई नजर आ रही है। प्रीतम और पेड्रो शो 3 जुलाई से स्ट्रीम होना शुरू होगा। इसमें मोना सिंह, बमन ईरानी और विक्रांत मैसी जैसे कलाकार भी नजर आने वाले हैं।
2: न्यूज़पत्र के सफर भी अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी की। IPL में कामयाबी की बुलंदियां छूने वाले वैभव सूर्यवंशी अब क्रिकेट के मैदान पर झगड़े को लेकर चर्चा में। वैभव सूर्यवंशी फिलहाल श्रीलंका में चल रही ट्राई सीरीज में इंडिया ए से खेल रहे हैं। दामुला में सोमवार को इस ट्राई सीरीज का चौथा मैच विवादों में घिर गया। इस मुकाबले में श्रीलंका ए ने तिलक वर्मा की कप्तानी वाली इंडिया ए को सुपर ओवर में हरा दिया। इस मैच में वैभव सूर्यवंशी बल्ले से कोई खास कमाल नहीं कर पाए, लेकिन श्रीलंकाई खिलाड़ियों से भिड़ने के कारण वो चर्चा में आ गए। सुपर ओवर में श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 16 रन बनाए थे, जवाब में भारतीय टीम 9 रन ही बना सकी। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि सुपर ओवर खत्म होने के बाद श्रीलंका के ऑलराउंडर विशेन ने वैभव सूर्यवंशी से कहा, मैच खत्म हो गया, अब घर जा। इस बात पर वैभव सूर्यवंशी भड़क गए और श्रीलंकाई खिलाड़ी से जा भिड़े। माहौल इतना गर्मा गया कि दोनों के बीच शारीरिक रूप से झड़प भी हुई। पहले सूर्यांश शेडगे और श्रीलंकाई खिलाड़ियों के बीच शब्दों के बाण चले, लेकिन जब वैभव सूर्यवंशी पास आए तो उन्होंने श्रीलंका के एक खिलाड़ी को धक्का दिया। श्रीलंका टीम के अन्य खिलाड़ियों ने बीच बचाव किया। वहीं जब वैभव डगआउट की तरफ जा रहे थे, तब भी उन्होंने हाथ से इशारा करके कुछ कहा। श्रीलंका में वैभव सूर्यवंशी के झगड़े को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कई क्रिकेट फैंस श्रीलंकाई खिलाड़ियों के उकसावे को इस भिड़ंत के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वहीं कुछ यूजर्स ने वैभव को आगाह करते हुए रिएक्ट किया है कि उन्हें समय के साथ ट्रोल्स को इग्नोर करना सीखना होगा, वरना उनकी इमेज खराब होने का खतरा हो सकता है। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं इस झगड़े के बारे में दरअसल हुआ क्या था। विक्रांत, सबसे पहले तो आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर मैदान पर ऐसा क्या हुआ?

0: हुआ जो कि वैभव सूर्यवंशी अपना आपा खो बैठे और विरोधी टीम के खिलाड़ी के साथ धक्का मुक्की की नौबत तक आ गई और साथ ही इंडिया ए टीम के कप्तान तिलक वर्मा भी मैच के दौरान विवाद करते हुए नजर आए।
1: ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था और देखिए इस इंसिडेंट को 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और मैं अब तक डाइजेस्ट नहीं कर पाया हूँ कि कल हुआ क्या था। हम जानते हैं कि प्रोवोकेशन श्रीलंकन तरफ से हुई होगी और ये हम जानते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट जिस तरह से खेली जाती है, खिलाड़ी एक दूसरे को स्लेज करते हैं और वैभव सूर्यवंशी को सामने वाली टीमें टारगेट करेंगी। ये तो इंडिया ए श्रीलंका ए का मुकाबला है, कल को वो जब आयरलैंड जाएंगे या इंग्लैंड जाएंगे या उसके बाद भारत के लिए खेलेंगे, टीमें उनको टारगेट करेंगी। बिकॉज एक बात होती है ना, 15 साल में आपकी गेम कैसी है, दूसरा होता है कि 15 साल में आप मेंटली कितने स्ट्रांग हैं। भाई आप मेंटली स्ट्रांग हैं तो ही आप इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन कल ना ऐसा लगा वैभव सूर्यवंशी को देखकर कि यार एक इंटरनेशनल प्लेयर इस तरह से रिएक्ट नहीं करता। हुआ क्या एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन जब इंडिया मैच हार गया, ए फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि आप सिर्फ सुपर ओवर की आखिरी गेंद छोड़ दे, उससे पहले अगर आप 20-25 मिनट देखे बहुत लड़ाइयाँ हो रही थी। अब एंड वाला जो कहते हैं ना कि ब्लो, वो था वैभव सूर्यवंशी के नाम, लेकिन उससे पहले तिलक वर्मा जो आपके कप्तान हैं वो उलझ रहे थे, बार बार अंपायरों के साथ उलझ रहे थे। और मुझे तो ये लगता है कि तिलक वर्मा के बिहेवियर को देखकर शायद मुझे ज़्यादा बुरा लगा। इनफैक्ट वो कप्तान है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, वर्ल्ड कप चैंपियन टीम का हिस्सा थे, तो शायद मैं उनसे बेहतर उम्मीद करता हूँ। और एक कप्तान से तो ये उम्मीद की जाती है कि वो अपनी टीम को लीड करे, मैं उस कप्तान से ये उम्मीद करता हूँ कि वैभव सूर्यवंशी को वो बल्कि समझाए, ना कि आप जो पिछले 25-30 मिनट से चल रहा था, जैसे होता ना कि जमुना पार एक क्लब का मैच चल रहा है, आप भी अंपायर से लड़ रहे हो, वो जो फील्डर है वो भी आपको गाली दे रहे हैं, आप भी जाके घुसुड़मुखी के लिए तैयार हो रहे हो, तो ये सही नहीं होता। लोग ना अब क्या कह रहे हैं, 15 साल का बच्चा है, तुम कौन होते हो मॉरल पुलिसिंग करने वाले, बात ये नहीं है। जब वो क्रिकेट इतनी ज़बरदस्त खेल रहे थे तब आप नहीं कहते थे कि यार ये तो बेचारा 15 साल का बच्चा है, तब आप कहते थे ही इज़ अ मैन, ही इज़ रेडी फॉर द वर्ल्ड। और आज जब आपको लगता है कि उस बिहेवियर के कारण, उस आपा खोने के कारण उनकी गेम अफेक्ट होगी, तो आप उसको अभी से रोकें। ये चीज़ें जो हैं ये अंडर 19 लेवल पे चलती हैं, ऊपर जाकर क्या होगा कि सामने वाली टीमें समझ जाएंगी कि इनको अगर आप टारगेट करेंगे, जहनी तौर पर स्लेज करेंगे, गाली देंगे, तो भैया उस तरह से आपा खो बैठेंगे। अब ये इंटरनेशनल मैच होता, अगर ये इंटरनेशनल मैच होता तो बैन लग जाता, आप ये याद रखिएगा, ये फिजिकल कॉन्टैक्ट था, ये धक्का मुक्की हुई है। मैंने आपको क्या बोला, मैं अगर आपको स्लेज कर रहा हूँ वो नियमों के तहत सही है, अनलेस एंड अनटिल मैं रेशियल विलिफिकेशन यानी कि मैं नस्ल भेदी टिप्पणी कर रहा हूँ, अगर मैं नस्ल भेदी टिप्पणी कर रहा हूँ तो फिर वो ICC कोड ऑफ कॉन्डक्ट में आती है। उसके अलावा स्लेजिंग चलती रहती है, बातें चलती रहती हैं, और हाँ अगर आपने धक्का दे दिया, आपने फिजिकल कॉन्टैक्ट कर लिया, तो बैन तो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में लग जाता है।
0: और अब रुख करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज बात देश के उन बेटियों की जो कि अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने जा रही हैं। इस चैंपियनशिप की टीम के चयन के लिए हरियाणा में ट्रायल हुआ। इस ट्रायल में चुनी गई देश की 10 पहलवान बेटियों में 6 हरियाणा की हैं, बाकी 4 में 2 रेसलर दिल्ली और एक एक राजस्थान और महाराष्ट्र से हैं।

0: हरियाणा की पहचान कुश्ती के गढ़ के तौर पर भी है। यहाँ छोटी उम्र से ही बच्चे पहलवानी के दाव पेच सीखने लगते हैं और आगे ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियाई खेलों से पदक जीतकर देश का मान बढ़ाते आ रहे हैं। हरियाणा की मिट्टी और संस्कृति में कुश्ती जैसे रची बसी है और यही वजह है कि रेसलिंग में देश के लिए ज्यादातर मेडल इसी राज्य से आते हैं। सिर्फ छोरे ही नहीं बल्कि हरियाणा की छोरियां भी कुश्ती में अपने हुनर का शानदार प्रदर्शन करती हैं।
1: काफी मेहनत करनी पड़ती है, सुबह शाम दोनों टाइम डाइट का ध्यान रखना और प्रॉपर रेस्ट वगैरह सब कुछ।
2: क्या काम करते पिता आपके?
1: पापा खेती करते हैं।
2: कभी रोका नहीं परिवार में कुश्ती
1: नहीं, नहीं। पूरा साथ दिया।
3: कब से पैदा हुआ?
1: बचपन से ही, जैसे मेरे भाई हैं बड़े वो जाते थे तो उन्होंने।
0: हरियाणा के बहालगढ़ स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग टीम के चयन के लिए ट्रायल आयोजित हुआ, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों की लड़कियां शामिल हुई जो कुश्ती के अपने हुनर का प्रदर्शन करती नजर आई।
4: इसमें लगभग 150 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। 10 वजन इसमें सिलेक्ट करने हैं, 10 लड़कियों का चयन होना है और अजरबैजान बाकू में ये खेलने के लिए अगले महीने।
0: इस ट्रायल में प्रदर्शन के आधार पर 10 महिला पहलवानों का चयन किया गया। खास बात ये है कि इसमें भी हरियाणा की बेटियों का दबदबा रहा। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए चुनी गई 10 महिला पहलवानों में 6 हरियाणा की ही हैं।
5: खिलाड़ी तो बहुत हैं, लेकिन टोटल जो जाएंगे बाहर जाएंगे तो 10 खिलाड़ी जाएंगे।
2: किस किस कैटेगरी में सर?
5: ये सब कैटेगरी में है, जैसे 53 में है, 57 में है, सारी कैटेगरी जो है उसमें।
2: ये ट्रायल सिर्फ लड़कियों की है या बॉयज की भी?
5: नहीं, सिर्फ लड़कियों की।
0: इस खेल की बेहतरी के लिए भारतीय कुश्ती संघ की ओर से लगातार कोशिशें की जा रही है। चयन प्रक्रिया में भी कुछ बदलाव किए गए हैं जिसका फायदा खिलाड़ियों को मिल रहा है।
6: तो फेडरेशन ने जो सिस्टम निकाला है ना, ये ओवर एज निकालने का, उस सिस्टम के आधार पे नए बच्चों को मौका मिल जाएगा। हमारे अभी तक का जितना भी देखा है फेडरेशन ने, पहलवान जो है एक मतलब जूनियर और कैडेट खेल के खत्म हो जाते हैं और जो जितना भी अपना स्टेमिना है वो अंडर 17 और अंडर 20 में ख़राब कर देते हैं, सीनियर में वो आ नहीं पाते हैं। तो लगभग अभी ये जो नया सिस्टम जो ओवर एज को लेकर फेडरेशन ने कराया, उससे लगता है कि पहलवान जो ना अब हमारे को सीनियर में मेडल देंगे। ये जो आज ये बच्चे खेल रहे हैं ना, ये सीनियर में आपको आने वाले नहीं 28 महीने 32 ओलंपिक में आपको ये बच्चे मेडल देंगे।
0: ट्रायल में चुनी गई लड़कियां अब अजरबैजान की राजधानी बाकू में आयोजित होने वाली अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में अलग अलग भार वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। ये चैंपियनशिप 27 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित होगी। सोनीपत से पवन राठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ताइवान में ताओ आदिवासियों ने लकड़ी की पारंपरिक नाव से फिलीपींस के लिए शुरू की ऐतिहासिक समुद्री यात्रा। आइए सीधे आपको ले चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश दुनिया की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। नीदरलैंड्स के खिलाफ अपनी फुटबॉल टीम का मैच ड्रॉ होने पर जापानी फैंस खुशी से झूम उठे। जश्न मनाने के लिए वो टोक्यो के सबसे मशहूर और बिजी चौराहे शिबुया क्रॉसिंग पर जमा हुए, लेकिन सिर्फ 40 सेकंड के लिए। जैसे ही सिग्नल लाल हुआ, ठीक उसी सेकंड सब ने जश्न रोका और बेहद अनुशासन के साथ वापस फुटपाथ पर लौट आए ताकि गाड़ियों का रास्ता ना रुके। यानी जब तक पैदल चलने वालों के लिए ट्रैफिक लाइट हरी रही, तब तक सड़क के बीचों बीच फैंस नाचते गाते रहे, लाल होते ही जश्न पर फुल स्टॉप। दुनिया जापानी फुटबॉल फैंस की तारीफ कर रही है। ताइवान के ताओ आदिवासियों ने लकड़ी की पारंपरिक नाव से फिलीपींस के लिए ऐतिहासिक समुद्री यात्रा शुरू की है, जिसका मकसद सैकड़ों साल पुराने सांस्कृतिक और समुद्री संबंधों को फिर से जीवित करना है। इस 20 सीटों वाली ओवायन नाव को ऑर्किड द्वीप के 6 समुदायों ने मिलकर बनाया है। 24 घंटे की समुद्री यात्रा में 60 लोग बारी बारी से चप्पू चलाएंगे। ये कैंपेन दोनों समुदायों के बीच खोए हुए संपर्क को फिर से जोड़ने का प्रयास है। स्थानीय लोगों ने इस समुद्री यात्रा को एक भावनात्मक और ऐतिहासिक कदम बताया और इसका स्वागत किया। चीन में 600 साल पुरानी ओपेरा कला की धमाकेदार वापसी हुई। यहां हिट टीवी ड्रामा ने किंग कियान ओपेरा को एक बार फिर सुपर हिट बना दिया। यहां के शियान की बैल्कनीज पर अचानक से इन ओपेरा शोज की प्रस्तुति होने लगी है, जिसके कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा में चीन दर्शकों का दिल जीत लिया है। चीन में तैयार हो गया है एआई लैब का भविष्य, क्योंकि बीजिंग में एआई एक पूरी लैब चला रहा है जिसमें इंसान सिर्फ निगरानी कर रहे हैं। इस लाइट्स आउट लैब में बिना स्टाफ के एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। लैब में एआई खुद रिसर्च करता है और खुद ही नतीजे निकालते हैं। लैब में ना तो कोई स्क्रीन है और ना ही कोई एलसीडी डिस्प्ले। यहाँ एआई तमाम प्रक्रियाएं खुद सुधारता है और दक्षता बढ़ाता है। ड्रैगन बोट फेस्टिवल से पहले चीन में रेस का रोमांच देखने को मिल रहा है। यहाँ चोंकिंग की फुरोन नदी में उतरी 18 टीमों ने एक दूसरे को चुनौती दी, जहाँ करीब करीब 500 पैडलर्स ने ताकत और तालमेल का प्रदर्शन किया है। रेस में 200 और 500 मीटर की रेस में सबसे जबरदस्त मुकाबला हुआ। ग्वांगझू में 600 एथलीट्स ने इस रेस में हिस्सा लिया। यहाँ रिटर्न ड्रैगन फॉर्मेट ने कई गुना रोमांच बढ़ा दिया।
3: स्मृति मंधाना के नाम जुड़ा हिस्टोरिकल अचीवमेंट, तो वहीं राजस्थान के धौलपुर के बेटे ने बनाई अंडर 19 टीम में जगह। खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले खेल चक्कर।
7: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ओपनर बल्लेबाज स्मृति मंधाना के नाम के साथ एक ऐतिहासिक अचीवमेंट जुड़ गया है। टाइम मैगजीन ने अपनी टॉप 100 लिस्ट में स्मृति मंधाना को शामिल किया है। हैरानी की बात यह है कि इस लिस्ट में विराट और रोहित जैसे स्टार प्लेयर्स गायब हैं। इस लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी है और उनका नाम है स्मृति मंधाना, जो लिस्ट में 41वें नंबर पर हैं। टाइम्स मैगजीन की इस लिस्ट में प्लेयर्स, कोच और निवेशक तक शामिल हैं। इस लिस्ट में क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लायनल मेसी और कार्लोस अल्कारेज जैसे स्टार्स शामिल हैं। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में कल हरमनप्रीत की टीम का मुकाबला नीदरलैंड्स की महिला टीम से होगा। महिला T20 विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ 64 रनों की शानदार जीत के बाद भारतीय टीम का लक्ष्य अब कल खेले जाने वाले अपने अगले मुकाबले में नीदरलैंड्स को हराना होगा। लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में कल भारत अफगानिस्तान के बीच वनडे मैच खेला जाएगा। ये मैच डे नाइट होगा। कल दोपहर 1 बजे टॉस के बाद लगभग 1:30 बजे मैच शुरू होगा। 3 मैचों की सीरीज का ये दूसरा मुकाबला है, जिसमें पहले मैच में 7 विकेट से जीत हासिल कर टीम इंडिया 1-0 से आगे है। अब कल के मैच को जीत कर भारतीय टीम का सीरीज में अजेय बढ़त बनाने पर फोकस रहेगा। राजस्थान के धौलपुर के प्रतिभाशाली क्रिकेटर रजत बघेल का भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम में चयन हुआ है। रजत को श्रीलंका दौरे के लिए चुनी भारतीय टीम में शामिल किया गया है। भारतीय अंडर 19 टीम 6 जुलाई से श्रीलंका में एक दिवसीय मुकाबले खेलेगी। रजत के चयन की सूचना मिलने के बाद से शहर में और खेल जगत में खुशी है। रजत के साथी खिलाड़ियों, खेल प्रेमियों और स्थानीय लोगों ने इसे धौलपुर के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। रजत इससे पहले राजस्थान अंडर 16 टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वे 2 बार 13 शतक जड़कर सुर्खियों में आ चुके हैं। उनकी शानदार बल्लेबाजी और निरंतर प्रदर्शन ने चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा और उन्हें इंडियन अंडर 19 टीम में जगह मिली। सेरेना और वीनस विलियम्स विंबलडन में अपनी डबल्स पार्टनरशिप फिर से शुरू कर रही हैं। ऑल इंग्लैंड क्लब ने आज दोनों को ग्रास कोर्ट ग्रैंड स्लैम के लिए डबल्स वाइल्ड कार्ड का न्योता दिया है। ये टूर्नामेंट 2 हफ्ते से भी कम समय में शुरू होने वाला है। विलियम्स बहनों ने साथ मिलकर डबल्स में 14 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं, जिनमें से 6 खिताब दोनों ने विंबलडन में जीते। बहनों की इस जोड़ी ने पहला विंबलडन खिताब 2000 में और आखिरी विंबलडन खिताब 2016 में जीता था।
8: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छा।
9: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
10: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry. TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs, so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन, कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात, कई वैश्विक मुद्दों पर बातचीत। टाइम मैगजीन की टॉप 100 लिस्ट में शामिल हुई स्मृति मंधाना, इस सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी, महिला क्रिकेट में योगदान के लिए मिला सम्मान। रक्षा मोर्चे पर बढ़ेगी भारत की ताकत, वायुसेना बनाएगी घातक स्वदेशी कामिकेज ड्रोन, 16,000 फीट की ऊंचाई पर भी अचूक वार करने में सक्षम। जम्मू कश्मीर में पवित्र अमरनाथ यात्रा की तैयारियां लगभग पूरी, यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की सेवा के लिए देशभर से पहुंची लंगर कमेटियां, बाबा बर्फानी के लगे जयकारे। वाराणसी में तेजी से आकार ले रहा यूपी का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, शिव, काशी और गंगा की थीम पर बनी आकर्षण का केंद्र, दिसंबर तक पूरा होगा निर्माण।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। मशहूर शायर निदा फाजिल ने कभी कहा था, अच्छी संगत बैठकर संगी बदले रूप, देखो मिलकर आम से मीठी हो गई धूप, अमराई से गुजरकर धूप के मीठी हो जाने की यही कल्पना। ये अपने आप में मुकम्मल बयां है जो बताता है कि आम कितना खास है हमारे लिए। आम का ओहद सिर्फ जुबान का जायका बदलने वाले एक फल भर का नहीं है, बल्कि ये जुड़ा है हमारे इतिहास, हमारी परंपरा, हमारे साहित्य के साथ, हमारी बचपन की यादों से, गर्मी की छुट्टियों से। गर्मियों के मौसम का सबसे प्यारा तोहफा होता है आम, ऐसा तोहफा जो भारत की सरजमी से निकला और नाम बदलकर सारी दुनिया में घुमाया। आज सुनाएंगे कहानी, उसी आम की खास कहानी, यही आम जिसकी राजधानी कहलाता है हमारा हिंदुस्तान।

0: जो आम में है वो लबे शीरी में नहीं रस, रेशों में है जो शेख की दाढ़ी से मुकद्दस, आते हैं नजर आम तो जाते हैं बदन कस, लंगड़े भी चले जाते हैं खाने को बनारस। बकौल सागर खयामी, ये आम का ही जादू है कि उसे खाने लंगड़े भी बनारस की ओर चल पड़ते हैं। वैसे लंगड़ा खुद भी एक किस्म का आम है और खाने वाले बताते हैं कि इसका स्वाद बहुत खास है। और लंगड़ा ही क्यों, चाहे जो किस्म हो, यूं समझिए कि इस फल के बस नाम में आम है। वाराणसी का लंगड़ा हो या फिर मलिहाबाद का दशहरी, कोंकण तट पर उगा अल्फांसो हो या बिहार का चौसा, आंध्र प्रदेश की धरती से आया सफेदा हो या पश्चिम बंगाल का हिमसागर, नाम में मुगलई नफासत लिए मध्य प्रदेश का नूरजहां या फिर जापान से आया और अब भारत में उगाया जाने वाला मियाज़ाकी, इसकी हर किस्म में वो जायका वो महक है कि हर लुकमे पर वाह वाह कहने को जी चाहता है। कहने को तो आम की सैकड़ों किस्में हैं, लेकिन भारत में आम की लगभग 1500 प्रजातियां पनपती हैं, जिनमें से करीब 1000 किस्में आम तौर से खाई और बाजार में बेची जाती हैं। भारत में पाए जाने वाले हर आम का अपना एक अलग मिजाज, अपना रंग और अपनी एक खास मिठास होती है। इन्हीं किस्मों, इनके स्वाद और रंगों बू पर फिदा होकर कभी जलील मानिकपुरी ने लिखा था, नायाब आम लुत्फ हुए रंग रंग के, कोई है जर्द कोई हरा कुछ है लाल लाल। कोई 4000 साल पहले हिमालय की तलहटी के इलाके में भारतीय उपमहाद्वीप में पनपा ये आम पुर्तगालियों की उंगली थाम कर सारी दुनिया घुमाया। हुआ कुछ यूं कि साल 1498 में जब पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा केरल के तटीय इलाकों में पहुंचे, तो लौटते लौटते वहां से मसालों के साथ साथ आम भी लेते गए। चूंकि केरल में आम को मान कहा जाता था, सो पुर्तगालियों ने आम को मान से मिलता जुलता नाम मानोव दे दिया। कुछ ऐसा चढ़ा पुर्तगालियों की जुबान पर आम का जादू कि पुर्तगाली व्यापारी जहाँ जहाँ गए वे अपने साथ आम लेते गए। इस तरह आम अमेरिका से लेकर यूरोप तक फैल गया। चूंकि अंग्रेजों को पुर्तगाली उच्चारण में थोड़ी दिक्कत आती थी, इसलिए उन्होंने इसे मैंगो कहना शुरू कर दिया। इस तरह दुनिया घूमकर भारत का मान मैंगो बनकर वापस लौट आया। आज सुनाएंगे कहानी अपने उसी मान की, जिसका जायका मैंगो बनकर देश की सीमाओं और महासागरों की दहलीजों के परे दुनिया भर की जुबान पर चढ़ा है। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
1: इस समय अगर आप घर से बाहर निकलेंगे तो गली मोहल्लों के मार्केट से लेकर शहरों की मंडियों तक आपको आम ही आम दिखाई देंगे। और हो भी क्यों ना, फलों के राजा इतने किस्मों, इतने रंगों, स्वाद और खुशबुओं में मिलता है, हमारे देश में गिनते गिनते थक जाएंगे। अपने देश के हर हिस्से में आम होता है और आम की हर किस्म का अपना ही स्वाद होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक भारत में आम की लगभग 1000 किस्में हैं। तो चलिए कुछ आमों के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं, लेकिन इनमें आपको सबसे ज्यादा हैरान करेगा वो आम जिसका दाम सोने से भी ज्यादा है।

गर्मियाँ यूँ तो बेहद सितम करती हैं, पर अपने पिटारे में रख के लाती हैं जो आम, बड़ा करम करती हैं। और गर्मियों के हिस्से आए इसी आम के फसाने की शुरुआत करते हैं एक किस्से से। एक बार उर्दू अदब के मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी ने अपने दोस्त मुंशी निसार हुसैन के नाम एक खत लिखा और खत में आम के सीजन में आम भेजने की दरख्वास्त कुछ इस तरह की, नामा न कोई यार का पैगाम भेजिए, इस फसल में जो भेजिए बस आम भेजिए, ऐसा जरूर हो कि उन्हें रख के खा सकूं, पुख्ता अगरचे 20 तो 10 खाम भेजिए, मालूम ही है आपको बंदे का एड्रेस, सीधे इलाहाबाद मेरे नाम भेजिए, ऐसा न हो कि आप ये लिखें जवाब में, तामील होगी पहले मगर दाम भेजिए। भेजने से पहले 100% दाम ही मांग लेते अकबर इलाहाबादी के दोस्त अगर उन्होंने मियां जाकी आम की फरमाइश की होती, क्योंकि जरा हट के नाम वाले मियां जाकी आम का दाम सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इस आम की कीमत है 3 लाख रुपए प्रति किलो। ये दुनिया का सबसे महंगा आम है। उपज की तादाद, डिमांड और क्वालिटी पर निर्भर करते हुए मियाज़ाकी आम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 2,80,000 रुपए से लेकर 3,30,000 रुपए प्रति किलो तक जाती है।

0: श्याम अपनी खूबसूरत लाल बैंगनी रंगत, दुर्लभता और ऊंची कीमत के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इस आम के दाम को कुछ यूं समझिए कि मियाज़ाकी आम वास्तव में सोने से भी महंगा है। 16 जून 2026 को देश की राजधानी में 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 1,51,690 रुपए है, जबकि मियाज़ाकी आम का दाम है 3 लाख रुपए प्रति किलो, यानी 1 किलो आम का दाम लगभग 20 ग्राम सोने के बराबर है। है ना कमाल? अच्छी बात तो ये है कि जापानी नस्ल का सोने से महंगा मियाज़ाकी आम अब भारत में भी उगाया जा रहा है। यूपी के सहारनपुर में फलता फूलता दिख रहा ये मियाज़ाकी आम है। सहारनपुर के एक किसान ने आय बढ़ाने के इरादे से साल 2021 में इस नए प्रयोग की शुरुआत की थी। किसान संदीप चौधरी ने अपने ऑर्गेनिक बाग में केवल 2 पौधे लगाकर शुरुआत की थी, लेकिन आज उनके बाग में करीब 40 मियाज़ाकी के पेड़ तैयार हो चुके हैं। अब इन पेड़ों पर फल भी आने लगे हैं। इस समय उनके 10 से 12 पेड़ों पर फल लगा हुआ है। उम्मीद है कि इस सीजन में करीब 14 से 15 किलो उत्पादन मिलेगा।
1: इस समय मियाज़ाकी जो दुनिया की सबसे महंगी वैरायटी वो अपने लगाई थी, वो क्यों लगाई थी? जब आम लगाया तो हमने सर्च किया दुनिया में सबसे महंगे आम की वैरायटी कौन सी है, तो पता चला कि मियाज़ाकी है, जो जिसका भाव 2,70,000 से 3.5 लाख रुपए किलो तक आता है। ये वैरायटी के पौधे हमें पता लगा, फिर हमने पौधे यहाँ से मंगाए इसके, और सबसे पहले 2 पौधे लगाए, और 2 पौधों के बाद उसकी क्रॉपिंग करके हमने कि उनसे पौधे बनाए हमने। आज हमारे पास लगभग 40 पौधे हमारे इस बाग में लगे हुए हैं। बड़ी बात यह है कि हमने ये देखा है कि ये बाग पूरी तरह ऑर्गेनिक होने की वजह से इसमें ग्रोथ भी अच्छी हुई है, आम का कलर भी अच्छा आ रहा है, और एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स अपने को मिला है। अब हम ये चाहेंगे देश के जो तमाम किसान हैं वो ऐसी महंगी वैरायटी लगाएं जिससे हम एक्सपोर्ट करने का एक हब बन सके।
0: वैसे अगर आप आम के मुरीद हैं और मियाज़ाकी का स्वाद चखना चाहते हैं तो आपको बता दें कि मियाज़ाकी आम आजकल बिहार के भागलपुर में भी उगाया जा रहा है। भले ही सोने सा भाव हो, लेकिन आम के दीवाने दाम कहाँ देखते हैं। खैर, आमों की दुनिया का ये दूसरा अजूबा पनपता है मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में, और नाम है नूरजहां। नूरजहां को दुनिया का सबसे बड़ा आम माना जाता है। एक नूरजहां आम का वजन 4 किलो तक हो सकता है, और भारत में आम प्रेमियों के बीच ये जितना लोकप्रिय है उतना ही दुर्लभ भी है। मध्य प्रदेश के जिला अलीराजपुर का कठीवाड़ा अपने झरनों, बारिश और नूरजहां आम के लिए भी जाना जाता है। मौसम और मिट्टी ने इस फल के पनपने के लिए यहां एकदम सही हालात दिए हैं। नूरजहां के बाद बात भागलपुर के जरदालू आम की। भागलपुर के जरदालू आम की कई विशेषताएं हैं। ये सुपाच्य है, स्वादिष्ट तो है ही, और कुछ हद तक शुगर फ्री भी कहला ही लेता है। दरअसल जरदालू आम में दूसरे आमों के मुकाबले प्राकृतिक शुगर की मात्रा कम होती है, और भागलपुर के जरदालू आम को जीआई टैग भी मिला हुआ है। हर साल भागलपुर में पैदा होने वाला ये आम राजधानी दिल्ली में देश के गणमान्य लोगों को भेजा जाता है। गर्मियों के मौसम में फलने वाले आम की ये वो किस्में हैं जिन्हें दुनिया भर में पसंद किया जाता है। लेकिन इन्हीं के बीच यूपी के सहारनपुर में आम का एक ऐसा पेड़ आपको दिखाते हैं जो सिर्फ गर्मियों में नहीं बल्कि 12 महीने फल देता है। इस आम की वैरायटी का नाम है सदाबहार। सदाबहार आम का पेड़ आकार में आम के दूसरे पेड़ों की तुलना में काफी छोटा होता है, लेकिन इसकी उत्पादकता बेहद खास है। इस पेड़ पर एक ही समय में बोर, छोटे फल और पकने के लिए तैयार आम एक साथ दिखाई देते हैं। ये वो अनोखा पेड़ है जो आम के जायके और खुशबू को गर्मियों की मुट्ठी से निकालकर हर मौसम की हथेली पर रख देता है। सहारनपुर से राहुल कुमार और भागलपुर से राजीव सिद्धार्थ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
2: अब देखिए, गर्मी का मौसम है और फलों के राजा घर घर में पहुंच रहे हैं। इसी सिलसिले में अयोध्या के राजा रामलला सरकार तक भी आम का भोग पहुंचा है। अयोध्या के राम मंदिर में यूं भी समय समय पर विशेष और दुर्लभ किस्म के मौसमी फलों का भोग रामलला को लगाया जाता है। इसी कड़ी में रामलला को मियाज़ाकी आम का भोग भी लगाया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मियाज़ाकी आम की कीमत लाखों रुपए में होती है। ये बात और है कि आम का मोल चाहे लाखों में है, लेकिन भक्ति भाव तो अनमोल है। बताया जा रहा है कि खास आम अयोध्या के ही एक स्थानीय किसान ने उपजाया है। आपको बता दें कि देश भर के अलग अलग शहरों से वहां उपजने वाले खास फल समय समय पर रामलला के लिए भेजे जाते हैं। इन विशेष अवसरों पर फलों की टोकरियों से मंदिर को सजाया जाता है और रामलला को अर्पित फलों का भोग लगाने के बाद प्रसाद स्वरूप भक्तों में वितरित कर दिया जाता है। आम का रिश्ता सिर्फ हमारी जुबान से नहीं, बल्कि ये हमारे इतिहास और परंपरा के साथ भी जुड़ा है। उपनिषद और पुराणों में इसका जिक्र मिलता है। गालिब हो या गुलजार, शायर हो या कवि, सभी ने इसकी तारीफ में कसीदे पढ़े हैं। लेकिन चलिए आपको वैदिक काल से लेकर मुगल काल तक की आम कहानी बताते हैं इस रिपोर्ट में।

0: मीठा, रसीला और दिलों पर राज करने वाला आम। गर्मियों में लोग भले ही चिलचिलाती धूप और पसीने से परेशान रहते हैं, लेकिन इस मौसम में मिलने वाला आम किसी तोहफे से कम नहीं होता। बच्चे हो या बुजुर्ग, गरीब हो या अमीर, आम हर किसी को खास एहसास कराता है। आम सदियों से लोगों की पहली पसंद बना हुआ है और आज भी इसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। सबसे पहले आम आम्रफल कहा जाता था। पुराने वैदिक ग्रंथों में इसे रसाला और सहकार नाम से भी जाना जाता था। इन नामों का जिक्र प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे बृहदारण्यक, उपनिषद और पुराणों में भी मिलता है। यानी आम सिर्फ एक फल नहीं बल्कि बहुत पुराने समय से हमारी संस्कृति और परंपरा का अहम हिस्सा रहा है। ऐसा माना जाता है कि हजारों साल पहले पूर्वोत्तर भारत, म्यांमार और बांग्लादेश में आम की पैदावार हुई थी, जहां से ये दक्षिण भारत पहुंचा और तमिल में इसे आमकाय कहा गया, जो बोलचाल की भाषा में बदलकर धीरे धीरे मामकाय बन गया। मलयाली लोगों ने इसे आगे चलकर मांगा के नाम में बदल दिया। 16वीं सदी में पुर्तगाली कारोबारियों ने आम को अफ्रीका और ब्राजील तक पहुंचाया और धीरे धीरे ये आम फल खास बन गया और पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना लिया। इतिहास के हर दौर में इसकी मिठास ने लोगों के दिलों को जोड़ा है। शायद यही वजह है कि आज भी आम का इंतजार हर गर्मी में उतनी ही बेसब्री से किया जाता है। इतिहास में आम की खास अहमियत रही है। सम्राट अशोक से लेकर मुगल काल तक आम की दीवानगी देखी गई है। कविता और साहित्य में भी इसकी मिठास घुली है। मिर्जा गालिब की दीवानगी हो या लोकगीतों की मिठास, आम सदियों से कवियों और लेखकों की कलम को रसीला बनाता रहा है। आम के बारे में कवि उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब ने कहा था कि आम में बस दो खूबियां होनी चाहिए, एक मीठा हो और दूसरा बहुत सारे हो। सिर्फ गालिब ही नहीं बल्कि गुलजार से लेकर अपने जमाने के मशहूर शायरों में शुमार सागर खयामी ने तो इस पर पूरी उर्दू कविता लिखी है। फल कोई जमाने में नहीं, आम से बेहतर करता है सना आम की गालिब सा सुखनवर। क्या बात है, आमों की हो देसी या विदेशी, सुर्खे हो, सरौली हो, कि तुखमे हो, कि कलमी, चौसे हो, सफेदे हो, कि खजरी हो, कि फजरी, एक तरफा कयामत है मगर आम दशहरी। हिंदी साहित्य में भी खासकर काव्य में आम लोगों को लेकर खूब लिखा रचा गया है। आम को लेकर आम का बाग नाम की कविता बेहद चर्चित है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा आम उत्पादक देश है। यहाँ अल्फांसो, दशहरी, लंगड़ा, केसर और तोतापुरी जैसी सैकड़ों किस्में पाई जाती हैं, जो हर राज्य की अपनी खास पहचान बन चुकी है। कुल मिलाकर आम सिर्फ स्वाद नहीं, एक हसीन एहसास है। एक ऐसा फल जो बचपन की यादें भी है और हर गर्मी की सबसे बड़ी खुशी भी। शायद इसीलिए हर साल जब आम आता है तो सिर्फ मौसम नहीं बदलता, माहौल बदल जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: अब देखिए, भोजन भगवान को अर्पित होता है और भोग बन जाता है। मौसम आम का है, सो शहर शहर अपने आराध्य को भक्त आम का भोग चढ़ाते हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के वाशिम में संत गजानन के धाम पर 7.25 क्विंटल आमों का चढ़ावा अर्पित किया गया। देखिए,

0: चारों तरफ आम ही आम, आमों से सजा संत गजानन महाराज का धाम। ये तस्वीरें महाराष्ट्र में वासिम जिले के कारंजा लाड के ममता नगर की हैं। यहाँ पर संत गजानन महाराज मंदिर में 7.25 क्विंटल आम का दिव्य भोग अर्पित किया गया और आमों से ही उनकी प्रतिमा की शानदार सजावट की गई। एकादशी के पावन अवसर पर मंदिर में संत गजानन महाराज के दर्शन के लिए भक्तों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा हो गई। इस अवसर पर भक्ति भाव से महाराज की शानदार आरती की गई और फिर प्रसाद वितरण किया गया।
1: अपने इधर महाराज को 7.25 क्विंटल का आम का अरस यानी भोग चढ़ा गया था, उसी का प्रसाद स्वरूप आज रसाई बनके सब महिलाओं को खाना दे रहे।
0: संत गजानन महाराज को चढ़ाए गए आमों का रस निकालकर 6,000 भक्तों को प्रसाद के तौर पर बांटा गया। इस अवसर पर 30 गांवों से आई संस्थान की वॉलंटियर 3,000 महिलाओं ने आमरस के साथ पूरन पोली और दूसरी डिश तैयार की।
2: हम हिरकेड़ गांव से आम महिलाएं सेवा देने को आए हैं और महाराज की कृपा से हम यहाँ आज ये जो ये सेवा मिली है ये हमारा अहोभाग्य हम समझते हैं।
3: कैसा लगा आपको सेवा?
2: सेवा करके हमको बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे जीवन का एक अविस्मरणीय क्षण हम मानेंगे।
0: खास बात ये है कि इस खास अवसर पर तमाम भक्त ही संत गजानन महाराज को अर्पित करने के लिए आम लेकर आए थे। वाशिम से जाका खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: बात अमरनाथ यात्रा की, अब इस आध्यात्मिक यात्रा में काफी कुछ नया देखने को मिलेगा। जम्मू में अमरनाथ बेस कैंप के पास तैयार हो रहा है एक ऐसा पार्क जहां कबाड़ से इतिहास रचा जा रहा है। जी हां, वहां एक ही जगह पर ताजमहल से लेकर एफिल टावर तक दुनिया और भारत की कई प्रसिद्ध धरोहरों की झलक देखने को मिलेगी। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है, ऐसे में जम्मू शहर में यात्रियों के लिए वेस्ट वंडर पार्क तैयार किया जा रहा है जो श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए एक नया आकर्षण होगा।
2: जल्द ही बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए यात्रा शुरू होने वाली है। जल्द अमरनाथ जाने वाले हर राह पर बाबा बर्फानी का जयकारा होगा। इस बार बाबा बर्फानी के दर्शन की आस में निकले अमरनाथ यात्रियों को जम्मू में ताजमहल की खूबसूरती दिखेगी। कुछ कदम आगे बढ़ने पर पेरिस का आइफिल टावर स्वागत करता दिखाई देगा।
3: वेस्ट टू वंडर पार्क, यानी जो वेस्ट हुआ मटेरियल होता है उससे एक पार्क बनाया जा रहा है और उस पार्क के बीच में कई स्मारक जो है वो स्थापित किए गए हैं। ये खास तौर पर आकर्षण का केंद्र इसलिए बन रहा है क्योंकि आगामी अमरनाथ यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है और देश भर के क्या विश्व भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु सबसे पहले जम्मू पहुँचेंगे और उनके लिए यहाँ पर जम्मू में खास तौर पर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आने वाला ये प्रोजेक्ट जो है स्थापित किया जा रहा है।
2: यहाँ दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी और मुंबई की पहचान गेटवे ऑफ इंडिया भी नजर आएंगे। ये कोई जादू नहीं बल्कि जम्मू में तैयार हो रहा एक अनोखा वेस्ट टू वंडर पार्क है। यहाँ बेकार चीजों और कबाड़ से देश दुनिया के प्रसिद्ध धरोहर की रेप्लिका बनाई जा रही है।
4: यात्री 2 महीने के लिए तो आते ही हैं, उनको थोड़ा सा वक्त मिलेगा और बच्चों को, हमारे जम्मू के बच्चों को भी सीखना मिलेगा कि हम अपने वेस्ट प्रोडक्ट से क्या क्या क्या बना सकते हैं।
2: यहाँ इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्चना ब्रिज भी होगा। वहीं खगोलीय रहस्यों को समेटे दिल्ली का जंतर मंतर भी है। पीसा की झुकी मीनार से लेकर राजस्थान की ऐतिहासिक विरासत तक कई प्रसिद्ध रचनाएं इस पार्क की शोभा बढ़ा रही है।
5: ई वेस्ट टू वंडर पार्क, एक वंडर पार्क जो ई वेस्ट मटेरियल से बन रही है और जो कि भगवती नगर में है, अमरनाथ यात्री निवास के बिल्कुल एकदम पास। बात करें यात्री, जो देश भर से यात्री आएंगे, जो टूरिस्ट आएंगे, वो जम्मू में जरूर विजिट कीजिए इस वंडर पार्क में।
2: इस परियोजना की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ इसकी खूबसूरती नहीं बल्कि इसका संदेश है, क्योंकि जो कबाड़ कभी बेकार माना जाता था वो अब कला और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक बन रहा है।
6: हमें लग रहा है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स और भी जगह बने ताकि वेस्ट को हम किस तरह से रिसाइकल करके शेप दे सके और जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकती है।
2: अमरनाथ यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु जम्मू पहुँचते हैं, ऐसे में ये पार्क उनके लिए एक बेहतरीन मनोरंजन और विश्राम स्थल साबित होगा। लंबी यात्रा के बीच श्रद्धालु यहाँ कुछ समय बिताकर देश दुनिया की मशहूर इमारतों की झलक एक ही जगह देख सकेंगे। जम्मू से राही कपूर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: एक अनोखा स्कूल इन दिनों वायरल है। आपने स्कूलों में बच्चों को जाते तो देखा होगा, लेकिन क्या कभी ऐसा स्कूल देखा है जहां सिर्फ डॉग ही पढ़ते हों? हम आपको दिखाते हैं एक ऐसा है स्कूल जो चीन के शंघाई में मौजूद है। ये एक ऐसा डॉग प्री स्कूल है जहां पर डॉग्स के लिए पढ़ाई, खेल, संगीत और फिटनेस तक की सुविधाएं मौजूद हैं।

0: मधुर धुनों के बीच खेलते ये डॉग्स किसी पार्क में नहीं बल्कि चीन के शंघाई में एक डॉग प्री स्कूल में है। यहाँ हर सुबह इन नन्हे मेहमानों की क्लास शुरू होती है। दिन भर के स्केड्यूल में खेलकूद, सोशलाइजेशन, हेल्दी स्नैक्स, फिटनेस ट्रेनिंग और लाइव पियानो म्यूजिक तक शामिल है। पॉथ्री नाम का ये डॉग प्री स्कूल पालतू डॉग्स को घर से लाकर पूरे दिन उनकी देखभाल करता है। स्कूल की टीम खुद डॉग्स को लेने और छोड़ने का काम भी करती है। स्कूल में डॉग्स के लिए खास किचन भी है जहां उनके लिए ताज़ा और हेल्दी ट्रीट तैयार किए जाते हैं। शाम की चाय की तरह यहां डॉग्स के लिए आफ्टरनून टी भी परोसी जाती है। सिर्फ यही नहीं, यहां डॉग्स को ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज कराई जाती है, आउटडोर ट्रेनिंग दी जाती है और उनकी मानसिक सेहत का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। इस अनोखी प्री स्कूल की शुरुआत जेनजांग ने की थी। अपने पालतू डॉग की चिंता और अकेलेपन की समस्या को देखते हुए उन्हें ये आइडिया आया। सिर्फ एक साल में यहाँ आने वाले डॉग्स की संख्या 10 से बढ़कर 200 तक पहुँच गई है। बढ़ती मांग को देखते हुए अब दूसरा सेंटर खोलने की तैयारी भी चल रही है।
1: 是一周年，但我刚开始的时候，我没有想过会有那么多的人，那么多的家长会来，也没有想过有一个老师。 可能慢慢的到了第三个月的时候，有一波志同道合的小伙伴就加入我们了。然后那个时候我们的狗狗已经从十几只到了三四十只，到了第七、第十个月的时候，我就发现越来越多的家长会来，因为我们那个时候的覆盖范围已经3到5公里已经包不住了。我们的狗狗越来越多，跨区的狗狗会来找数，对不对？然后到现在为止，我们现在有200只狗狗。
0: चीन में घटती जन्म दर और बदलती जीवन शैली के बीच पालतू जानवरों पर खर्च तेजी से बढ़ रहा है। उद्योग से जुड़े आंकड़ों के मुताबिक चीन का शहरी पेट मार्केट 2025 में 312 अरब युआन से ज्यादा का हो चुका है और अगले कुछ वर्षों में इसके 405 अरब युआन के पार पहुंचने का अनुमान है। यानी अब डॉग्स के लिए भी स्कूल, फिटनेस और लग्जरी लाइफस्टाइल एक बड़ा कारोबार बन चुका है। ऐसे में पियानो के धुनों से लेकर फिटनेस ट्रेनिंग और स्पेशल ट्रीट्स तक, शंघाई का ये डॉग प्री स्कूल दिखाता है कि बदलती दुनिया में पालतू जानवरों की जगह अब परिवार के सबसे खास सदस्यों में हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: Hot Mics now streaming on TuneIn, your go-to show for explosive sports showdowns, bare-knuckle politics, raw Hollywood gossip, tech power plays, and pop culture chaos, hosted by yours truly, Billy Bush. Want to catch the latest episodes on your connected device? It's easy. One, set a reminder with your smart speaker by saying, remind me to listen to Hot Mics, Monday through Thursday at 12 p.m. Eastern, 9 a.m. Pacific. Two, when it's time, just say, play Hot Mics on TuneIn. And you're in for unfiltered takes, A-list guests, and the stories everyone else is too scared to touch.
2: चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन, कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात, कई वैश्विक मुद्दों पर बातचीत। टाइम मैगजीन की टॉप 100 लिस्ट में शामिल हुई स्मृति मंधाना, इस सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी, महिला क्रिकेट में योगदान के लिए मिला सम्मान। रक्षा मोर्चे पर बढ़ेगी भारत की ताकत, वायुसेना बनाएगी घातक स्वदेशी की कामिकेज ड्रोन, 16,000 फीट की ऊंचाई पर भी अचूक वार करने में सक्षम। जम्मू कश्मीर में पवित्र अमरनाथ यात्रा की तैयारियां लगभग पूरी, यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की सेवा के लिए देशभर से पहुंची लंगर कमेटियां, बाबा बर्फानी के लगे जयकारे। वाराणसी में तेजी से आकार ले रहा यूपी का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, शिव, काशी और गंगा की थीम पर बनी आकर्षण का केंद्र, दिसंबर तक पूरा होगा निर्माण।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी।
4: आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर, और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है, और चर्चा सातवें बड़ा मंगल पर उमड़े आस्था के हुजूम की भी।
1: ज्येष्ठ मास के सातवें बड़ा मंगल पर देश भर के हनुमान मंदिरों में उमड़ा आस्था का हुजूम। रामनगरी अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में राम भक्त हनुमान के दर्शन पूजन के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। भीड़ को देखते हुए यहां भक्तों की सुविधा और सुरक्षा की भी पुख्ता व्यवस्था रही। बारी आने पर भक्तों को दर्शन पूजन का सौभाग्य प्राप्त होता रहा। प्रयागराज में संगम के तट पर लेटे हनुमान जी के दर्शन के लिए भी भक्त सुबह से ही पहुंचने लगे, और देखते ही देखते उनकी लंबी कतारें लग गई। इस विशेष अवसर के लिए हनुमान जी की प्रतिमा का फूलों और फलों से भव्य श्रृंगार किया गया और उन्हें 56 भोग भी लगाया गया। मान्यता है कि बड़ा मंगल के दिन बजरंग बली की भक्ति करने से जीवन के सभी दुख दर्द और संकट दूर हो जाते हैं। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में श्रीनाथ जी की नौका विहार मनोरथ का भव्य आयोजन हुआ। इस नौका यात्रा उत्सव को लेकर मंदिर की दिव्य सजावट की गई, जिसमें बड़ी संख्या में आम का उपयोग भी किया गया। इस विशेष अवसर के लिए ठाकुर जी को मलमल के हल्के वस्त्र पहनाकर सुगंधित फूलों और चंदन से श्रृंगार किया गया, और फिर ठाकुर जी को जल के बीच विशेष रूप से सुसज्जित नावों में विराजमान कर भव्य झांकी सजाई गई। साथ ही बधाई गीत भी गाए गए। इस अवसर पर ठाकुर जी के विशेष दर्शन कर भक्त मंत्रमुग्ध हो गए। अधिक मास के समापन के अवसर पर इस दिव्य उत्सव का आयोजन हुआ। उड़ीसा के पुरी में 16 जुलाई से शुरू होने वाली भव्य जगन्नाथ यात्रा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। कारीगर तीनों पवित्र रथों को तेजी से आकार देने में जुटे हैं। इसके अलावा नाटगोर प्रतिमाओं की पॉलिशिंग का काम भी तेजी से चल रहा है, तो रथ यात्रा के दौरान भगवान की सेवा पूजा के लिए लकड़ी से बने उपकरणों का निर्माण कार्य भी हो रहा है। चित्रकार सेवक तीनों रथों के पार्श्व देव देवियों की मूर्तियों, सखियों, उलटशुआ, देव देवी आसन फ्रेम आदि पर रंग रोगन करने में लगातार जुटे हैं। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर हर स्तर पर बड़ी तैयारी की जा रही है। 3 जुलाई से शुरू होने वाली इस पवित्र यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं की सुविधा से लेकर उनकी सुरक्षा तक को लेकर तैयारी चल रही है। इसी कड़ी में अनंतनाग पुलिस ने पहलगाम में सुरक्षा और आपातकालीन एजेंसियों के साथ मिलकर तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस दौरान कई संभावित आपात स्थितियों से निपटने को लेकर अभ्यास किया गया, जिनमें सुरक्षा, खतरे, मेडिकल इमरजेंसी, भीड़ प्रबंधन और निकासी जैसी स्थितियां शामिल रहीं। इस मॉक ड्रिल के तहत अलग अलग एजेंसियों के बीच तालमेल, संचार और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली की समीक्षा की गई। ये तस्वीरें ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित फॉरेस्ट पार्क की है, जहां राजा पर्वा की रौनक बिखरी हुई है। पारंपरिक झूले, उत्सव और उल्लास के साथ यहां राजा पर्व की शुरुआत हुई। रंग बिरंगे पारंपरिक परिधानों में सजी महिलाएं झूलों का आनंद लेते बच्चों के साथ ही इस पर्व में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और पान समेत पारंपरिक पकवानों के स्टॉल देखने को मिल रहे हैं। 3 दिवसीय इस उत्सव के साथ ओडिशा में मॉनसून का स्वागत किया गया। ये राजा पर्व नारित्व और धरती माता की उर्वरता का उत्सव है, यानी ये प्रकृति, उर्वरता और परंपरा का अनूठा उत्सव है, जिसमें पूरे राज्य के लोगों की भागीदारी होती है। इस उत्सव को मनाने के लिए पारंपरिक उड़िया व्यंजन तैयार किए जाते हैं। साथ ही विशेष रूप से तैयार किया गया पान इस त्योहार के प्रमुख आकर्षणों में से एक है।
4: और अब बात एक ऐसे सरकारी स्कूल की, जिसमें दाखिले के लिए पेरेंट्स कतारों में खड़े नजर आए। तेलंगाना के नलकोंडा जिले का एक सरकारी स्कूल इन दिनों अपनी वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के लिए चर्चा में है। इस सरकारी स्कूल में AC, स्मार्ट क्लासरूम, AI आधारित टीचिंग और डिजिटल लैब जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। स्कूल प्रशासन के मुताबिक इसकी लोकप्रियता का आलम यह है कि केवल शहर से ही नहीं बल्कि जिले के दूरदराज इलाकों और पड़ोसी जिलों से भी अभिभावक बच्चों के फॉर्म लेकर पहुंच रहे हैं।

0: इससे पहले स्कूल को देखो तो वो स्कूल में कोई भी हमारा को फैसिलिटी नहीं।
1: इसे आप तेलंगाना के सरकारी स्कूल के पुनर्जन्म की कहानी भी कह सकते हैं। नलगोंडा के बोट्टुगुड़ा में कोमाटी रेड्डी प्रतीक गवर्नमेंट स्कूल में इस साल एडमिशन का ऐसा क्रेज देखा जा रहा है कि यहाँ महज 450 सीटों के लिए करीब 4000 आवेदन आ चुके हैं। इसके चलते इस सरकारी स्कूल में दाखिला मिलना किसी IIT या IIM की सीट मिलने जितना मुश्किल हो गया है।
2: नलगोंडा जिले ने अपना इमेज पूरी तरह, अपनी तस्वीर पूरी तरह बदल दी। वजह है, इस जिले में एक वक्त में जीरो एनरोलमेंट्स, शून्य एनरोलमेंट्स गवर्नमेंट स्कूल में होते थे और इसी के लिए देश भर में यह नलगोंडा जिले का नाम था। लेकिन एक साल के अंदर नलगोंडा जिले में एक कोमोट्रिटी प्रतीक गवर्नमेंट स्कूल, यह सरकारी स्कूल में 450 सीट के लिए 4000 एप्लीकेशन दाखिल किए गए।
1: स्कूल के बाहर का नजारा किसी महंगे और VIP प्राइवेट स्कूल जैसा लग रहा है, जहां सुबह सुबह से ही माता पिता अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूलों की मोटी फीस के मुकाबले उनसे कहीं बेहतर सुविधाओं से लैस ये सरकारी स्कूल बच्चों और अभिभावकों को ज्यादा आकर्षित कर रहा है।
3: पहले हमारा स्कूल जो गवर्नमेंट था उसमें ना फैसिलिटी कुछ भी नहीं थी, वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, ब्लैक बोर्ड था, तो हमारे को ऐसा दिल बोलता था कि कब घर जाएं। इसलिए हमारे कोमटेड्डी वेंकट रेड्डी जो मिनिस्टर है सर, उन्होंने ये स्कूल बनवाया। इसमें डिजिटल बोर्ड है, AC कैंपस है पूरा, और यहाँ पर ऐसा दिखता है कि कब स्कूल आए, घर जाने का मन ही नहीं करता हमें।
4: स्कूल अच्छा है और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, टीचर्स भी अच्छे हैं।
5: मैं गवर्नमेंट स्कूल में अच्छी पढ़ती हूँ और प्राइवेट स्कूल में अच्छे पढ़ते हैं, बट मैं कुछ अच्छा पढ़ रहे हैं, वो क्या बोलते हैं।
1: एडमिशन की लाइन में लगे अभिभावकों का कहना है कि पहले वो अपने बच्चे के लिए नामी गिरामी प्राइवेट स्कूल में भारी भरकम फीस चुका रहे थे, लेकिन जब उन्होंने इस स्कूल के कैंपस और सुविधाओं को देखा तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कई प्राइवेट स्कूलों से बेहतर लगा।
6: सर, इससे पहले हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में थे सर, फिर वहाँ फीस, बुक्स सब बहुत ज़्यादा हो जाता सर, तो परेशानी हो रहा था बच्चों को पढ़ाना लिखाना। तो ये स्कूल बना है सर, ये बहुत अच्छा बना है स्कूल, यहाँ कंप्यूटर एजुकेशन है, फिर AC कैंपस है, प्राइवेट स्कूल के बराबर ये स्कूल बना है। इस लेवल के साल में ये स्कूल में एडमिशन करे।
1: दरअसल साल भर पहले इस स्कूल में बुनियादी सुविधाएं तक नहीं थी। पिछले साल तक ये स्कूल बिना किसी पक्की इमारत के चल रहा था और यहाँ करीब 200 छात्र पढ़ते थे, लेकिन अब ये एक स्मार्ट स्कूल में तब्दील हो चुका है। लिफ्ट से लेकर कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासरूम, AI बेस्ड लर्निंग, डिजिटल लैब और इंडोर स्पोर्ट्स तक की सुविधाएं हैं। AI की क्लास में सुंदर पिचाई की तस्वीर बच्चों को इंस्पायर करती है, तो वहीं स्पोर्ट्स एक्टिविटी रूम में सुनील छेत्री, PV सिंधु और विराट कोहली आइकन हैं।
2: AC क्लासरूम्स है बच्चों के लिए, रेप्यूटेड यूनिफॉर्म यहाँ पर बताई जाती है और साथ ही साथ मिड डे मील्स, ब्रेकफास्ट मील्स यहाँ पर लाए गए हैं, जहाँ पर बच्चों को मुफ्त खाना दिया जाता है।

0: कुछ समय पहले तक नलगोंडा की गिनती उन जिलों में होती थी जहां सरकारी स्कूलों में बहुत कम या बिल्कुल भी एडमिशन नहीं होते थे, लेकिन इस स्कूल ने तस्वीर बदल दी है और अब ये स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर और पढ़ाई के माहौल के मामले में बड़े बड़े कॉर्पोरेट स्कूलों को टक्कर दे रहा है। तेलंगाना के नलगोंडा से अब्दुल बशीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गदर के 25 साल पूरे होने पर फैंस को सनी देओल ने कहा शुक्रिया। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले फिल्मी मोड पर।
2: फिल्म गदर एक प्रेम कथा के 25 साल पूरे होने पर सनी देओल ने उनके निभाए गए तारा सिंह के किरदार को ढेर सारा प्यार देने के लिए फैंस का शुक्रिया अदा किया। साल 2001 में इस फिल्म में तारा सिंह बनकर सनी देओल बड़े पर्दे पर छा गए थे। 15 जून को फिल्म गदर के रिलीज होने के 25 साल पूरे हो गए। फिल्म गदर का क्रेज लोगों में इतना ज्यादा था कि इसका एक उदाहरण साल 2023 में भी देखने को मिला, जब इस फिल्म के अगले भाग यानी गदर 2 को भी बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता मिली। अब निर्देशक अनिल शर्मा इस फिल्म के तीसरे पार्ट पर काम कर रहे हैं। करण जौहर अब साउथ सिनेमा में फिल्म निर्माण की तरफ भी बढ़ चुके हैं। इस कड़ी में उन्होंने पहला कदम मलयालम सिनेमा की तरफ बढ़ाया है। करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले फिल्म ओडियन द एज ऑफ इल्यूजन के निर्माण का ऐलान हो चुका है। इस फिल्म का पोस्टर भी शेयर किया जा चुका है। धर्मा प्रोडक्शन ने 19वीं सदी के केरल की लोक कथाओं और सांस्कृतिक पौराणिक कथाओं पर आधारित इस फिल्म के लिए पृथ्वीराज प्रोडक्शंस और निर्देशक राहुल के साथ हाथ मिलाया है। फिल्म ओडियन में पृथ्वीराज सुकुमारन नजर आएंगे, जिनमें उनके साथ मंजू वॉरियर अहम भूमिका में नजर आएंगी। राजकुमार हिरानी जियो स्टारर पर प्रीतम और पेड्रो नाम का वेब शो ला रहे हैं, जिसमें उनके बेटे वीर हिरानी अपना एक्टिंग डेब्यू करते नजर आएंगे। अरशद वारसी और वीर हिरानी के इस शो का ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है। सीरीज की ये कहानी गोवा पर आधारित है, जहां अरशद वारसी यानी पेड्रो नाम के पुलिस ऑफिसर इंजीनियर के रूप में प्रीतम यानी वीर हिरानी की जोड़ी धमाल करती हुई नजर आ रही है। प्रीतम और पेड्रो शो 3 जुलाई से स्ट्रीम होना शुरू होगा। इसमें मोना सिंह, बमन ईरानी और विक्रांत मैसी जैसे कलाकार भी नजर आने वाले हैं।
1: न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी की। आईपीएल में कामयाबी की बुलंदियां छूने वाले वैभव सूर्यवंशी अब क्रिकेट के मैदान पर झगड़े को लेकर चर्चा में। वैभव सूर्यवंशी फिलहाल श्रीलंका में चल रही ट्राई सीरीज में इंडिया ए से खेल रहे हैं। दामुला में सोमवार को इस ट्राई सीरीज का चौथा मैच विवादों में घिर गया। इस मुकाबले में श्रीलंका ए ने तिलक वर्मा की कप्तानी वाली इंडिया ए को सुपर ओवर में हरा दिया। इस मैच में वैभव सूर्यवंशी बल्ले से कोई खास कमाल नहीं कर पाए, लेकिन श्रीलंकाई खिलाड़ियों से भिड़ने के कारण वो चर्चा में आ गए। सुपर ओवर में श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 16 रन बनाए थे, जवाब में भारतीय टीम 9 रन ही बना सकी। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि सुपर ओवर खत्म होने के बाद श्रीलंका के ऑलराउंडर विशेन ने वैभव सूर्यवंशी से कहा, मैच खत्म हो गया, अब घर जा। इस बात पर वैभव सूर्यवंशी भड़क गए और श्रीलंकाई खिलाड़ी से जा भिड़े। माहौल इतना गर्मा गया कि दोनों के बीच शारीरिक रूप से झड़प भी हुई। पहले सूर्यांश शेडगे और श्रीलंकाई खिलाड़ियों के बीच शब्दों के बाण चले, लेकिन जब वैभव सूर्यवंशी पास आए तो उन्होंने श्रीलंका के एक खिलाड़ी को धक्का दिया। श्रीलंका टीम के अन्य खिलाड़ियों ने बीच बचाव किया। वहीं जब वैभव डगआउट की तरफ जा रहे थे, तब भी उन्होंने हाथ से इशारा करके कुछ कहा। श्रीलंका में वैभव सूर्यवंशी के झगड़े को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कई क्रिकेट फैंस श्रीलंकाई खिलाड़ियों के उकसावे को इस भिड़ंत के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वहीं कुछ यूजर्स ने वैभव को आगाह करते हुए रिएक्ट किया है कि उन्हें समय के साथ ट्रोल्स को इग्नोर करना सीखना होगा, वरना उनकी इमेज खराब होने का खतरा हो सकता है। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं इस झगड़े के बारे में दरअसल हुआ क्या था। विक्रांत, सबसे पहले तो आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर मैदान पर ऐसा क्या हुआ जो कि वैभव सूर्यवंशी अपना आपा खो बैठे और विरोधी टीम के खिलाड़ी के साथ धक्का मुक्की की नौबत तक आ गई, और साथ ही इंडिया ए टीम के कप्तान तिलक वर्मा भी मैच के दौरान विवाद करते हुए नजर आए।
3: ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था, और देखिए इस इंसिडेंट को 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और मैं अब तक डाइजेस्ट नहीं कर पाया हूँ कि कल हुआ क्या था। हम जानते हैं कि प्रोवोकेशन श्रीलंकन तरफ से हुई होगी, और ये हम जानते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट जिस तरह से खेली जाती है,

0: खिलाड़ी एक दूसरे को स्लेज करते हैं और वैभव सूर्यवंशी को सामने वाली टीमें टारगेट करेंगी। ये तो इंडिया ए श्रीलंका ए का मुकाबला है, कल को वो जब आयरलैंड जाएंगे या इंग्लैंड जाएंगे या उसके बाद भारत के लिए खेलेंगे, टीमें उनको टारगेट करेंगी। बिकॉज एक बात होती है ना, 15 साल में आपकी गेम कैसी है, दूसरा होता है कि 15 साल में आप मेंटली कितने स्ट्रांग हैं। भाई आप मेंटली स्ट्रांग हैं तो ही आप इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन कल ना ऐसा लगा वैभव सूर्यवंशी को देखकर कि यार एक इंटरनेशनल प्लेयर इस तरह से रिएक्ट नहीं करता। हुआ क्या एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन जब इंडिया मैच हार गया, ए फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि आप सिर्फ उस सुपर ओवर की आखिरी गेंद छोड़ दे, उससे पहले अगर आप 20-25 मिनट देखें बहुत लड़ाइयाँ हो रही थी। अब एंड वाला जो कहते हैं ना कि ब्लो, वो था वैभव सूर्यवंशी के नाम, लेकिन उससे पहले तिलक वर्मा जो आपके कप्तान हैं वो उलझ रहे थे, बार बार अंपायरों के साथ उलझ रहे थे। और मुझे तो ये लगता है कि तिलक वर्मा के बिहेवियर को देखकर शायद मुझे ज़्यादा बुरा लगा। इनफैक्ट वो कप्तान है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, वर्ल्ड कप चैम्पियन टीम का हिस्सा थे, तो शायद मैं उनसे बेहतर उम्मीद करता हूँ। और एक कप्तान से तो ये उम्मीद की जाती है कि वो अपनी टीम को लीड करे, मैं उस कप्तान से ये उम्मीद करता हूँ कि वैभव सूर्यवंशी को वो बल्कि समझाए, ना कि आप जो पिछले 25-30 मिनट से चल रहा था, जैसे होता ना कि जमुना पार एक क्लब का मैच चल रहा है, आप भी अंपायर से लड़ रहे हो, वो जो फील्डर है वो भी आपको गाली दे रहे हैं, आप भी जाके सुंडमुखी के लिए तैयार हो रहे हो, तो ये सही नहीं होता। लोग ना अब क्या कह रहे हैं, 15 साल का बच्चा है, तुम कौन होते हो मॉरल पुलिसिंग करने वाले। बात ये नहीं है, जब वो क्रिकेट इतनी ज़बरदस्त खेल रहे थे तब आप नहीं कहते थे कि यार ये तो बेचारा 15 साल का बच्चा है, तब आप कहते थे ही इज़ अ मैन, ही इज़ रेडी फॉर द वर्ल्ड। और आज जब आपको लगता है कि उस बिहेवियर के कारण, उस आपा खोने के कारण उनकी गेम अफेक्ट होगी, तो आप उसको अभी से रोकें। ये चीज़ें जो हैं ये अंडर 19 लेवल पे चलती हैं, ऊपर जाकर क्या होगा कि सामने वाली टीमें समझ जाएंगी कि इनको अगर आप टारगेट करेंगे, जहनी तौर पर स्लेज करेंगे, गाली देंगे, तो भैया उस तरह से आपा खो बैठेंगे। अब ये इंटरनेशनल मैच होता, अगर ये इंटरनेशनल मैच होता तो बैन लग जाता। आप ये याद रखिएगा, ये फिजिकल कॉन्टैक्ट था, ये धक्का मुक्की हुई है। मैंने आपको क्या बोला, मैं अगर आपको स्लेज कर रहा हूँ वो नियमों के तहत सही है, अनलेस एंड अंटिल मैं रेशियल विलिफिकेशन, यानी कि मैं नस्ल भेदी टिप्पणी कर रहा हूँ, अगर मैं नस्ल भेदी टिप्पणी कर रहा हूँ तो फिर वो ICC कोड ऑफ कॉन्डक्ट में आती है। उसके अलावा स्लेजिंग चलती रहती है, बातें चलती रहती हैं। और हाँ, अगर आपने धक्का दे दिया, आपने फिजिकल कॉन्टैक्ट कर लिया, तो बैन तो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में लग जाता है।
1: और अब रुख करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज बात देश के उन बेटियों की जो कि अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने जा रही हैं। इस चैंपियनशिप की टीम के चयन के लिए हरियाणा में ट्रायल हुआ। इस ट्रायल में चुनी गई देश की 10 पहलवान बेटियों में 6 हरियाणा की हैं, बाकी 4 में 2 रेसलर दिल्ली और 1-1 राजस्थान और महाराष्ट्र से हैं।

0: हरियाणा की पहचान कुश्ती के गढ़ के तौर पर भी है। यहाँ छोटी उम्र से ही बच्चे पहलवानी के दाव पेच सीखने लगते हैं और आगे ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियाई खेलों से पदक जीतकर देश का मान बढ़ाते आ रहे हैं। हरियाणा की मिट्टी और संस्कृति में कुश्ती जैसे रची बसी है और यही वजह है कि रेसलिंग में देश के लिए ज्यादातर मेडल इसी राज्य से आते हैं। सिर्फ छोरे ही नहीं बल्कि हरियाणा की छोरियां भी कुश्ती में अपने हुनर का शानदार प्रदर्शन करती हैं।
1: काफी मेहनत करनी पड़ती है, सुबह शाम दोनों टाइम डाइट का ध्यान रखना और प्रॉपर रेस्ट वगैरह सब कुछ।
2: क्या काम करते पिता आपके?
1: पापा खेती करते हैं।
2: कभी रोका नहीं परिवार में कुश्ती?
1: नहीं, पूरा साथ दिया।
3: कब से पैदा हुआ?
1: बचपन से ही, जैसे मेरे भाई हैं बड़े, वो जाते थे तो उन्होंने।
0: हरियाणा के बहालगढ़ स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग टीम के चयन के लिए ट्रायल आयोजित हुआ, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों की लड़कियां शामिल हुई जो कुश्ती के अपने हुनर का प्रदर्शन करती नजर आई।
4: इसमें लगभग 150 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। 10 वजन इसमें सिलेक्ट करने हैं, 10 लड़कियों का चयन होना है और अजरबैजान बाकू में ये खेलने के लिए अगले महीने।
0: इस ट्रायल में प्रदर्शन के आधार पर 10 महिला पहलवानों का चयन किया गया। खास बात ये है कि इसमें भी हरियाणा की बेटियों का दबदबा रहा। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए चुनी गई 10 महिला पहलवानों में 6 हरियाणा की ही हैं।
5: खिलाड़ी तो बहुत हैं, लेकिन टोटल जो जाएंगे बाहर जाएंगे तो 10 खिलाड़ी जाएंगे।
2: किस किस कैटेगरी में सर?
5: ये सब कैटेगरी में है, जैसे 53 में है, 57 में है, सारी कैटेगरी जो है उसमें।
2: ये ट्रायल सिर्फ लड़कियों की है या बॉयज की भी?
5: नहीं, सिर्फ लड़कियों की।
0: इस खेल की बेहतरी के लिए भारतीय कुश्ती संघ की ओर से लगातार कोशिशें की जा रही है। चयन प्रक्रिया में भी कुछ बदलाव किए गए हैं जिसका फायदा खिलाड़ियों को मिल रहा है।
6: तो फेडरेशन ने जो सिस्टम निकाला है ना, ये ओवर एज निकालने का, उस सिस्टम के आधार पे नए बच्चों को मौका मिल जाएगा। हमारे अभी तक का जितना भी देखा है फेडरेशन ने, पहलवान जो है एक मतलब की जूनियर और कैडेट खेल के खत्म हो जाते हैं और जो जितना भी अपना स्टेमिना है वो अंडर 17 और अंडर 20 में खराब कर देते हैं, सीनियर में वो आ नहीं पाते हैं। तो लगभग अभी ये जो नया सिस्टम जो ओवर एज को लेकर फेडरेशन ने कराया, उससे लगता है कि पहलवान जो ना अब हमारे को सीनियर में मेडल देंगे। ये जो आज ये बच्चे खेल रहे हैं ना, ये सीनियर में आपको आने वाले नहीं 28 महीने 32 ओलंपिक में आपको ये बच्चे मेडल देंगे।
0: ट्रायल में चुनी गई लड़कियां अब अजरबैजान की राजधानी बाकू में आयोजित होने वाली अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में अलग अलग भार वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। ये चैंपियनशिप 27 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित होगी। सोनीपत से पवन राठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ताइवान में ताओ आदिवासियों ने लकड़ी की पारंपरिक नाव से फिलीपींस के लिए शुरू की ऐतिहासिक समुद्री यात्रा। आइए सीधे आपको ले चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश दुनिया की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। नीदरलैंड्स के खिलाफ अपनी फुटबॉल टीम का मैच ड्रॉ होने पर जापानी फैंस खुशी से झूम उठे। जश्न मनाने के लिए वो टोक्यो के सबसे मशहूर और बिजी चौराहे शिबुया क्रॉसिंग पर जमा हुए, लेकिन सिर्फ 40 सेकंड के लिए। जैसे ही सिग्नल लाल हुआ, ठीक उसी सेकंड सब ने जश्न रोका और बेहद अनुशासन के साथ वापस फुटपाथ पर लौट आए ताकि गाड़ियों का रास्ता ना रुके। यानी जब तक पैदल चलने वालों के लिए ट्रैफिक लाइट हरी रही, तब तक सड़क के बीचों बीच फैंस नाचते गाते रहे, लाल होते ही जश्न पर फुल स्टॉप। दुनिया जापानी फुटबॉल फैंस की तारीफ कर रही है। ताइवान के ताओ आदिवासियों ने लकड़ी की पारंपरिक नाव से फिलीपींस के लिए ऐतिहासिक समुद्री यात्रा शुरू की है, जिसका मकसद सैकड़ों साल पुराने सांस्कृतिक और समुद्री संबंधों को फिर से जीवित करना है। इस 20 सीटों वाली ओवायन नाव को ऑर्किड द्वीप के 6 समुदायों ने मिलकर बनाया है। 24 घंटे की इस समुद्री यात्रा में 7 लोग बारी बारी से चप्पू चलाएंगे। ये कैंपेन दोनों समुदायों के बीच खोए हुए संपर्क को फिर से जोड़ने का प्रयास है। स्थानीय लोगों ने इस समुद्री यात्रा को एक भावनात्मक और ऐतिहासिक कदम बताया और इसका स्वागत किया। चीन में 600 साल पुरानी ओपेरा कला की धमाकेदार वापसी हुई। यहां हिट टीवी ड्रामा ने किंग क्यान ओपेरा को एक बार फिर सुपर हिट बना दिया। यहां के शियान की बैल्कनीज पर अचानक से इन ओपेरा शोज की प्रस्तुति होने लगी है, जिसके कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा में चीन दर्शकों का दिल जीत लिया है। चीन में तैयार हो गया है एआई लैब का भविष्य, क्योंकि बीजिंग में एआई एक पूरी लैब चला रहा है जिसमें इंसान सिर्फ निगरानी कर रहे हैं। इस लाइट्स आउट लैब में बिना स्टाफ के एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। लैब में एआई खुद रिसर्च करता है और खुद ही नतीजे निकालते हैं। लैब में ना तो कोई स्क्रीन है और ना ही कोई एलसीडी डिस्प्ले। यहाँ एआई तमाम प्रक्रियाएं खुद सुधारता है और दक्षता बढ़ाता है। ड्रैगन बोट फेस्टिवल से पहले चीन में रेस का रोमांच देखने को मिल रहा है। यहाँ चोंकिंग की फुरोन नदी में उतरी 18 टीमों ने एक दूसरे को चुनौती दी, जहाँ करीब करीब 500 पैडलर्स ने ताकत और तालमेल का प्रदर्शन किया है। रेस में 200 और 500 मीटर की रेस में सबसे जबरदस्त मुकाबला हुआ। ग्वांगझू में 600 एथलीट्स ने इस रेस में हिस्सा लिया। यहाँ रिटर्न ड्रैगन फॉर्मेट ने कई गुना रोमांच बढ़ा दिया।
3: स्मृति मंधाना के नाम जुड़ा हिस्टोरिकल अचीवमेंट, तो वहीं

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। मशहूर शायर निदा फाजिल ने कभी कहा था, अच्छी संगत बैठकर संगी बदले रूप, देखो मिलकर आम से। मीठी हो गई धूप, अमराई से गुजरकर धूप के मीठी हो जाने की यही कल्पना। ये अपने आप में मुकम्मल बयां है, जो बताता है कि आम कितना खास है हमारे लिए। आम का ओहद सिर्फ जुबान का जायका बदलने वाले एक फल भर का नहीं है, बल्कि ये जुड़ा है हमारे इतिहास, हमारी परंपरा, हमारे साहित्य के साथ, हमारी बचपन की यादों से, गर्मी की छुट्टियों से। गर्मियों के मौसम का सबसे प्यारा तोहफा होता है आम, ऐसा तोहफा जो भारत की सरजमी से निकला और नाम बदलकर सारी दुनिया में घुमाया। आज सुनाएंगे कहानी, उसी आम की खास कहानी, यही आम जिसकी राजधानी कहलाता है हमारा हिंदुस्तान।

जो आम में है वो लबे शीरी में नहीं रस, रेशों में है जो शेख की दाढ़ी से मुकद्दस, आते हैं नजर आम तो जाते हैं मदन कस, लंगड़े भी चले जाते हैं खाने को बनारस। बकौल सागर खयामी, ये आम का ही जादू है कि उसे खाने लंगड़े भी बनारस की ओर चल पड़ते हैं। वैसे लंगड़ा खुद भी एक किस्म का आम है और खाने वाले बताते हैं कि इसका स्वाद बहुत खास है। और लंगड़ा ही क्यों, चाहे जो किस्म हो, यूं समझिए कि इस फल के बस नाम में आम है। वाराणसी का लंगड़ा हो या फिर मलिहाबाद का दशहरी, कोंकण तट पर उगा अल्फांसो हो या बिहार का चौसा, आंध्र प्रदेश की धरती से आया सफेदा हो या पश्चिम बंगाल का हिमसागर, नाम में मुगलई नफासत लिए मध्य प्रदेश का नूरजहां या फिर जापान से आया और अब भारत में उगाया जाने वाला मियाज़ाकी, इसकी हर किस्म में वो जायका वो महक है कि हर लुकमे पर वाह वाह कहने को जी चाहता है। कहने को तो आम की सैकड़ों किस्में हैं, लेकिन भारत में आम की लगभग 1500 प्रजातियां पनपती हैं, जिनमें से करीब 1000 किस्में आम तौर से खाई और बाजार में बेची जाती हैं। भारत में पाए जाने वाले हर आम का अपना एक अलग मिजाज, अपना रंग और अपनी एक खास मिठास होती है। इन्हीं किस्मों, इनके स्वाद और रंगो बू पर फिदा होकर कभी जलील मानिकपुरी ने लिखा था, नायाब आम लुत्फ हुए रंग रंग के, कोई है जर्द कोई हरा कुछ है लाल लाल। कोई 4000 साल पहले हिमालय की तलहटी के इलाके में किस्में आम तौर से खाई और बाजार में बेची जाती हैं। भारत में पाए जाने वाले हर आम का अपना एक अलग मिजाज, अपना रंग और अपनी एक खास मिठास होती है। इन्हीं किस्मों, इनके स्वाद और रंगो बू पर फिदा होकर कभी जलील मानिकपुरी ने लिखा था, नायाब आम लुत्फ हुए रंग रंग के, कोई है जर्द कोई हरा कुछ है लाल लाल। कोई 4000 साल पहले हिमालय की तलहटी के इलाके में भारतीय उपमहाद्वीप में पनपा ये आम पुर्तगालियों की उंगली थाम कर सारी दुनिया घुमाया। हुआ कुछ यूं कि साल 1498 में जब पुर्तगाली व्यापारी वास्को डे गामा केरल के तटीय इलाकों में पहुंचे, तो लौटते लौटते वहां से मसालों के साथ साथ आम भी लेते गए। चूंकि केरल में आम को मान कहा जाता था, सो पुर्तगालियों ने आम को मान से मिलता जुलता नाम मानोव दे दिया। कुछ ऐसा चढ़ा पुर्तगालियों की जुबान पर आम का जादू कि पुर्तगाली व्यापारी जहाँ जहाँ गए वे अपने साथ आम लेते गए। इस तरह आम अमेरिका से लेकर यूरोप तक फैल गया। चूंकि अंग्रेजों को पुर्तगाली उच्चारण में थोड़ी दिक्कत आती थी, इसलिए उन्होंने

0: ने इसे मैंगो कहना शुरू कर दिया। इस तरह दुनिया घूमकर भारत का मान मैंगो बनकर वापस लौट आया। आज सुनाएंगे कहानी अपने उसी मान की, जिसका जायका मैंगो बनकर देश की सीमाओं और महासागरों की दहलीजों के परे दुनिया भर की जुबान पर चढ़ा है। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
1: इस समय अगर आप घर से बाहर निकलेंगे तो गली मोहल्लों के मार्केट से लेकर शहरों की मंडियों तक आपको आम ही आम दिखाई देंगे, और हो भी क्यों ना, फलों के राजा इतने किस्मों, इतने रंगों, स्वाद और खुशबुओं में मिलता है, हमारे देश में गिनते गिनते थक जाएंगे। अपने देश के हर हिस्से में आम होता है और आम की हर किस्म का अपना ही स्वाद होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक भारत में आम की लगभग 1000 किस्में हैं। तो चलिए कुछ आमों के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं, लेकिन इनमें आपको सबसे ज्यादा हैरान करेगा वो आम जिसका दाम सोने से भी ज्यादा है।

गर्मियाँ यूँ तो बेहद सितम करती हैं, पर अपने पिटारे में रख के लाती हैं जो आम, बड़ा करम करती हैं। और गर्मियों के हिस्से आए इसी आम के फसाने की शुरुआत करते हैं एक किस्से से। एक बार उर्दू अदब के मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी ने अपने दोस्त मुंशी निसार हुसैन के नाम एक खत लिखा और खत में आम के सीजन में आम भेजने की दरख्वास्त कुछ इस तरह की, नामा न कोई यार का पैगाम भेजिए, इस फसल में जो भेजिए बस आम भेजिए, ऐसा जरूर हो कि उन्हें रख के खा सकूं, पुख्ता अगरचे 20 तो 10 खाम भेजिए, मालूम ही है आपको बंदे का एड्रेस, सीधे इलाहाबाद मेरे नाम भेजिए, ऐसा न हो कि आप ये लिखें जवाब में, तामील होगी पहले मगर दाम भेजिए। भेजने से पहले 100% दाम ही मांग लेते अकबर इलाहाबादी के दोस्त अगर उन्होंने मियां ज़ाकी आम की फरमाइश की होती, क्योंकि जरा हट के नाम वाले मियां ज़ाकी आम का दाम सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इस आम की कीमत है 3 लाख रुपए प्रति किलो। ये दुनिया का सबसे महंगा आम है। उपज की तादाद, डिमांड और क्वालिटी पर निर्भर करते हुए मियां ज़ाकी आम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 2,80,000 रुपए से लेकर 3,30,000 रुपए प्रति किलो तक जाती है।

0: अपनी खूबसूरत लाल बैंगनी रंगत, दुर्लभता और ऊंची कीमत के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इस आम के दाम को कुछ यूं समझिए कि मियाज़ाकी आम वास्तव में सोने से भी महंगा है। 16 जून 2026 को देश की राजधानी में 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 1,51,690 रुपए है, जबकि मियाज़ाकी आम का दाम है 3 लाख रुपए प्रति किलो, यानी 1 किलो आम का दाम लगभग 20 ग्राम सोने के बराबर है। है ना कमाल? अच्छी बात तो ये है कि जापानी नस्ल का सोने से महंगा मियाज़ाकी आम अब भारत में भी उगाया जा रहा है। यूपी के सहारनपुर में फलता फूलता दिख रहा ये मियाज़ाकी आम है। सहारनपुर के एक किसान ने आय बढ़ाने के इरादे से साल 2021 में इस नए प्रयोग की शुरुआत की थी। किसान संदीप चौधरी ने अपने ऑर्गेनिक बाग में केवल 2 पौधे लगाकर शुरुआत की थी, लेकिन आज उनके बाग में करीब 40 मियाज़ाकी के पेड़ तैयार हो चुके हैं। अब इन पेड़ों पर फल भी आने लगे हैं। इस समय उनके 10 से 12 पेड़ों पर फल लगा हुआ है। उम्मीद है कि इस सीजन में करीब 14 से 15 किलो उत्पादन मिलेगा।
1: इस समय मियाज़ाकी जो दुनिया सबसे महंगी वैरायटी वो अपने लगाई थी, वो क्यों लगाई थी? जब आम लगाया तो हमने सर्च किया दुनिया में सबसे महंगे आम की वैरायटी कौन सी है, तो पता चला कि मियाज़ाकी है, जो जिसका भाव 2,70,000 से 3.5 लाख रुपए किलो तक आता है। ये वैरायटी के पौधे हमें पता लगा, फिर हमने पौधे यहाँ से मंगाए इसके, और सबसे पहले 2 पौधे लगाए, और 2 पौधों के बाद उसकी क्रॉपिंग करके हमने कि उनसे पौधे बनाए हमने। आज हमारे पास लगभग 40 पौधे हमारे इस बाग में लगे हुए हैं। बड़ी बात यह है कि हमने ये देखा है कि ये बाग पूरी तरह ऑर्गेनिक होने की वजह से इसमें ग्रोथ भी अच्छी हुई है, आम का कलर भी अच्छा आ रहा है, और एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स अपने को मिला है। अब हम ये चाहेंगे देश के जो तमाम किसान हैं वो ऐसी महंगी वैरायटी लगाएं जिससे हम एक्सपोर्ट करने का एक हब बन सके।
0: वैसे अगर आप आम के मुरीद हैं और मियाज़ाकी का स्वाद चखना चाहते हैं तो आपको बता दें कि मियाज़ाकी आम आजकल बिहार के भागलपुर में भी उगाया जा रहा है। भले ही सोने सा भाव हो, लेकिन आम के दीवाने दाम कहाँ देखते हैं। खैर, आमों की दुनिया का ये दूसरा अजूबा पनपता है मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में, और नाम है नूरजहां। नूरजहां को दुनिया का सबसे बड़ा आम माना जाता है। एक नूरजहां आम का वजन 4 किलो तक हो सकता है, और भारत में आम प्रेमियों के बीच ये जितना लोकप्रिय है उतना ही दुर्लभ भी है। मध्य प्रदेश के जिला अलीराजपुर का कट्ठीवाड़ा अपने झरनों, बारिश और नूरजहां आम के लिए भी जाना जाता है। मौसम और मिट्टी ने इस फल के पनपने के लिए यहां एकदम सही हालात दिए हैं। नूरजहां के बाद बात भागलपुर के जरदालू आम की। भागलपुर के जरदालू आम की कई विशेषताएं हैं। ये सुपाच्य है, स्वादिष्ट तो है ही, और कुछ हद तक शुगर फ्री भी कहला ही लेता है। दरअसल जरदालू आम में दूसरे आमों के मुकाबले प्राकृतिक शुगर की मात्रा कम होती है, और भागलपुर के जरदालू आम को GI टैग भी मिला हुआ है। हर साल भागलपुर में पैदा होने वाला ये आम राजधानी दिल्ली में देश के गणमान्य लोगों को भेजा जाता है। गर्मियों के मौसम में फलने वाले आम की ये वो किस्में हैं जिन्हें दुनिया भर में पसंद किया जाता है। लेकिन इन्हीं के बीच यूपी के सहारनपुर में आम का एक ऐसा पेड़ आपको दिखाते हैं जो सिर्फ गर्मियों में नहीं बल्कि 12 महीने फल देता है। इस आम की वैरायटी का नाम है सदाबहार। सदाबहार आम का पेड़ आकार में आम के दूसरे पेड़ों की तुलना में काफी छोटा होता है, लेकिन इसकी उत्पादकता बेहद खास है। इस पेड़ पर एक ही समय में बोर, छोटे फल और पकने के लिए तैयार आम एक साथ दिखाई देते हैं। ये वो अनोखा पेड़ है जो आम के जायके और खुशबू को गर्मियों की मुट्ठी से निकालकर हर मौसम की हथेली पर रख देता है। सहारनपुर से राहुल कुमार और भागलपुर से राजीव सिद्धार्थ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
2: अब देखिए, गर्मी का मौसम है और फलों के राजा घर घर में पहुंच रहे हैं। इसी सिलसिले में अयोध्या के राजा रामलला सरकार तक भी आम का भोग पहुंचा है। अयोध्या के राम मंदिर में यूं भी समय समय पर विशेष और दुर्लभ किस्म के मौसमी फलों का भोग रामलला को लगाया जाता है। इसी कड़ी में रामलला को मियाजाकी आम का भोग भी लगाया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मियाजाकी आम की कीमत लाखों रुपए में होती है। ये बात और है कि आम का मोल चाहे लाखों में है, लेकिन भक्ति भाव तो अनमोल है। बताया जा रहा है कि खास आम अयोध्या के ही एक स्थानीय किसान ने उपजाया है। आपको बता दें कि देश भर के अलग अलग शहरों से वहां उपजने वाले खास फल समय समय पर रामलला के लिए भेजे जाते हैं। इन विशेष अवसरों पर फलों की टोकरियों से मंदिर को सजाया जाता है और रामलला को अर्पित फलों का भोग लगाने के बाद प्रसाद स्वरूप भक्तों में वितरित कर दिया जाता है। आम का रिश्ता सिर्फ हमारी जुबान से नहीं बल्कि ये हमारे इतिहास और परंपरा के साथ भी जुड़ा है। उपनिषद और पुराणों में इसका जिक्र मिलता है। गालिब हो या गुलजार, शायर हो या कवि, सभी ने इसकी तारीफ में कसीदे पढ़े हैं। लेकिन चलिए आपको वैदिक काल से लेकर मुगल काल तक की आम कहानी बताते हैं इस रिपोर्ट में।

0: मीठा, रसीला और दिलों पर राज करने वाला आम। गर्मियों में लोग भले ही चिलचिलाती धूप और पसीने से परेशान रहते हैं, लेकिन इस मौसम में मिलने वाला आम किसी तोहफे से कम नहीं होता। बच्चे हो या बुजुर्ग, गरीब हो या अमीर, आम हर किसी को खास एहसास कराता है। आम सदियों से लोगों की पहली पसंद बना हुआ है और आज भी इसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। सबसे पहले आम आम्रफल कहा जाता था। पुराने वैदिक ग्रंथों में इसे रसाला और सहकार नाम से भी जाना जाता था। इन नामों का जिक्र प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे बृहदारण्यक, उपनिषद और पुराणों में भी मिलता है। यानी आम सिर्फ एक फल नहीं बल्कि बहुत पुराने समय से हमारी संस्कृति और परंपरा का अहम हिस्सा रहा है। ऐसा माना जाता है कि हजारों साल पहले पूर्वोत्तर भारत, म्यांमार और बांग्लादेश में आम की पैदावार हुई थी, जहां से ये दक्षिण भारत पहुंचा और तमिल में इसे आम काय कहा गया, जो बोलचाल की भाषा में बदलकर धीरे धीरे मामकाय बन गया। मलयाली लोगों ने इसे आगे चलकर मांगा के नाम में बदल दिया। 16वीं सदी में पुर्तगाली कारोबारियों ने आम को अफ्रीका और ब्राजील तक पहुंचाया और धीरे धीरे ये आम फल खास बन गया और पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना लिया। इतिहास के हर दौर में इसकी मिठास ने लोगों के दिलों को जोड़ा है। शायद यही वजह है कि आज भी आम का इंतजार हर गर्मी में उतनी ही बेसब्री से किया जाता है। इतिहास में आम की खास अहमियत रही है। सम्राट अशोक से लेकर मुगल काल तक आम की दीवानगी देखी गई है। कविता और साहित्य में भी इसकी मिठास घुली है। मिर्जा गालिब की दीवानगी हो या लोकगीतों की मिठास, आम सदियों से कवियों और लेखकों की कलम को रसीला बनाता रहा है। आम के बारे में कवि उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब ने कहा था कि आम में बस दो खूबियां होनी चाहिए, एक मीठा हो और दूसरा बहुत सारे हो। सिर्फ गालिब ही नहीं बल्कि गुलजार से लेकर अपने जमाने के मशहूर शायरों में शुमार सागर खयामी ने तो इस पर पूरी उर्दू कविता लिखी है। फल कोई जमाने में नहीं, आम से बेहतर करता है सना आम की गालिब सा सुखनवर। क्या बात है, आमों की हो देसी या विदेशी, सुर्खे हो सरौली हो कि तुखमे हो कि कलमी, चौसे हो सफेदे हो कि खजरी हो कि फजरी, एक तरफा कयामत है मगर आम दशहरी। हिंदी साहित्य में भी खासकर काव्य में आम लोगों को लेकर खूब लिखा रचा गया है। आम को लेकर आम का बाग नाम की कविता बेहद चर्चित है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा आम उत्पादक देश है। यहाँ अल्फांसो, दशहरी, लंगड़ा, केसर और तोतापुरी जैसी सैकड़ों किस्में पाई जाती हैं, जो हर राज्य की अपनी खास पहचान बन चुकी हैं। कुल मिलाकर आम सिर्फ स्वाद नहीं, एक हसीन एहसास है। एक ऐसा फल जो बचपन की यादें भी है और हर गर्मी की सबसे बड़ी खुशी भी। शायद इसीलिए हर साल जब आम आता है तो सिर्फ मौसम नहीं बदलता, माहौल बदल जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: अब देखिए, भोजन भगवान को अर्पित होता है और भोग बन जाता है। मौसम आम का है, सो शहर शहर अपने आराध्य को भक्त आम का भोग चढ़ाते हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के वाशिम में संत गजानन के धाम पर 7.25 क्विंटल आमों का चढ़ावा अर्पित किया गया। देखिए,

0: चारों तरफ आम ही आम, आमों से सजा संत गजानन महाराज का धाम। ये तस्वीरें महाराष्ट्र में वासिम जिले के कारंजा लाड के ममता नगर की हैं। यहाँ पर संत गजानन महाराज मंदिर में 7.25 क्विंटल आम का दिव्य भोग अर्पित किया गया और आमों से ही उनकी प्रतिमा की शानदार सजावट की गई। एकादशी के पावन अवसर पर मंदिर में संत गजानन महाराज के दर्शन के लिए भक्तों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा हो गई। इस अवसर पर भक्ति भाव से महाराज की शानदार आरती की गई और फिर प्रसाद वितरण किया गया।
1: अपने इधर महाराज को 7.25 क्विंटल का आम का आरस यानी भोग चढ़ा गया था, उसी का प्रसाद स्वरूप आज रसाई बनके सब महिलाओं को खाना दे रहे।
0: संत गजानन महाराज को चढ़ाए गए आमों का रस निकालकर 6,000 भक्तों को प्रसाद के तौर पर बांटा गया। इस अवसर पर 30 गांवों से आई संस्थान की वॉलंटियर 3,000 महिलाओं ने आमरस के साथ पूरन पोली और दूसरी डिश तैयार की।
2: हम हिरकेड़ गांव से आम महिलाएं सेवा देने को आए हैं और महाराज की कृपा से हमें यहाँ आज ये जो ये सेवा मिली है ये हमारा अहोभाग्य हम समझते हैं।
3: कैसा लगा आपको सेवा?
2: सेवा करके हमको बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे जीवन का एक अविस्मरणीय क्षण हम मानेंगे।
0: खास बात ये है कि इस खास अवसर पर तमाम भक्त ही संत गजानन महाराज को अर्पित करने के लिए आम लेकर आए थे। वाशिम से जाका खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: When it comes to your favorite podcasts, missing an episode isn't an option. Luckily, TuneIn's got you covered. Start by creating a free TuneIn account and keep everything synced across your devices. Then favorite the shows you love. We'll bring new episodes right to your homepage, so they're always easy to find. And with notifications turned on, you'll get a heads up when new episodes drop. Stay in the loop effortlessly.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: अब बात अमरनाथ यात्रा की। अब इस आध्यात्मिक यात्रा में काफी कुछ नया देखने को मिलेगा। जम्मू में अमरनाथ बेस कैंप के पास तैयार हो रहा है एक ऐसा पार्क जहां कबाड़ से इतिहास रचा जा रहा है। जी हां, वहां एक ही जगह पर ताजमहल से लेकर एफिल टावर तक दुनिया और भारत की कई प्रसिद्ध धरोहरों की झलक देखने को मिलेगी। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। ऐसे में जम्मू शहर में यात्रियों के लिए वेस्ट वंडर पार्क तैयार किया जा रहा है, जो श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए एक नया आकर्षण होगा।
3: जल्द ही बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए यात्रा शुरू होने वाली है। जल्द अमरनाथ जाने वाले हर राह पर बाबा बर्फानी का जयकारा होगा।
2: एक अनोखा स्कूल इन दिनों वायरल है। आपने स्कूलों में बच्चों को जाते तो देखा होगा, लेकिन क्या कभी ऐसा स्कूल देखा है जहां सिर्फ डॉग ही पढ़ते हों? हम आपको दिखाते हैं एक ऐसा है स्कूल जो चीन के शंघाई में मौजूद है। ये एक ऐसा डॉग प्री स्कूल है जहां पर डॉग्स के लिए पढ़ाई, खेल, संगीत और फिटनेस तक की सुविधाएं मौजूद हैं।

0: मधुर धुनों के बीच खेलते ये डॉग्स किसी पार्क में नहीं बल्कि चीन के शंघाई में एक डॉग प्री स्कूल में है। यहाँ हर सुबह इन नन्हे मेहमानों की क्लास शुरू होती है। दिन भर के स्केड्यूल में खेलकूद, सोशलाइजेशन, हेल्दी स्नैक्स, फिटनेस ट्रेनिंग और लाइव पियानो म्यूजिक तक शामिल है। पॉथ्री नाम का ये डॉग प्री स्कूल पालतू डॉग्स को घर से लाकर पूरे दिन उनकी देखभाल करता है। स्कूल की टीम खुद डॉग्स को लेने और छोड़ने का काम भी करती है। स्कूल में डॉग्स के लिए खास किचन भी है जहां उनके लिए ताज़ा और हेल्दी ट्रीट तैयार किए जाते हैं। शाम की चाय की तरह यहां डॉग्स के लिए आफ्टरनून टी भी परोसी जाती है। सिर्फ यही नहीं, यहाँ डॉग्स को ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज कराई जाती है, आउटडोर ट्रेनिंग दी जाती है और उनकी मानसिक सेहत का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। इस अनोखे प्री स्कूल की शुरुआत जेनजांग ने की थी। अपने पालतू डॉग की चिंता और अकेलेपन की समस्या को देखते हुए उन्हें ये आइडिया आया। सिर्फ एक साल में यहाँ आने वाले डॉग्स की संख्या 10 से बढ़कर 200 तक पहुँच गयी है। बढ़ती मांग को देखते हुए अब दूसरा सेंटर खोलने की तैयारी भी चल रही है।
1: 我就发现越来越多的家长会来，因为我们那个时候的覆盖范围已经3到5公里已经包不住了，我们的狗狗越来越多，跨区的狗狗会来找住，对，然后到现在为止我们现在有200只狗狗。
0: चीन में घटती जन्म दर और बदलती जीवन शैली के बीच पालतू जानवरों पर खर्च तेजी से बढ़ रहा है। उद्योग से जुड़े आंकड़ों के मुताबिक चीन का शहरी पेट मार्केट 2025 में 312 अरब युआन से ज्यादा का हो चुका है और अगले कुछ वर्षों में इसके 405 अरब युआन के पार पहुंचने का अनुमान है। यानी अब डॉग्स के लिए भी स्कूल, फिटनेस और लग्जरी लाइफस्टाइल एक बड़ा कारोबार बन चुका है। ऐसे में पियानो के धुनों से लेकर फिटनेस ट्रेनिंग और स्पेशल ट्रीट्स तक, शंघाई का ये डॉग प्री स्कूल दिखाता है कि बदलती दुनिया में पालतू जानवरों की जगह अब परिवार के सबसे खास सदस्यों में हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: You're listening Uninterrupted. With TuneIn Premium, enjoy commercial-free news and music, plus ad-free ESPN Radio, and fewer ads across other stations. Whether you're listening for the latest news or the next big game, never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. So, you can hear more. Ready to upgrade your listening? Upgrade to TuneIn Premium now.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: फ्रांस के एवन में G7 शिखर सम्मेलन, कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात, कई वैश्विक मुद्दों पर बातचीत। टाइम मैगजीन की टॉप 100 लिस्ट में शामिल हुई स्मृति मंधाना, इस सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी, महिला क्रिकेट में योगदान के लिए मिला सम्मान। रक्षा मोर्चे पर बढ़ेगी भारत की ताकत, वायुसेना बनाएगी घातक स्वदेशी की कामिकेज ड्रोन, 16,000 फीट की ऊंचाई पर भी अचूक वार करने में सक्षम। जम्मू कश्मीर में पवित्र अमरनाथ यात्रा की तैयारियां लगभग पूरी, यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की सेवा के लिए देशभर से पहुंची लंगर कमेटियां, बाबा बर्फानी के लगे जयकारे। वाराणसी में तेजी से आकार ले रहा यूपी का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, शिव, काशी और गंगा की थीम पर बनी आकर्षण का केंद्र, दिसंबर तक पूरा होगा निर्माण।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
4: आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा सातवें बड़ा मंगल पर उमड़े आस्था के हुजूम की भी।
5: ज्येष्ठ मास के सातवें बड़ा मंगल पर देश भर के हनुमान मंदिरों में उमड़ा आस्था का हुजूम। रामनगरी अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में राम भक्त हनुमान के दर्शन पूजन के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। भीड़ को देखते हुए यहां भक्तों की सुविधा और सुरक्षा की भी पुख्ता व्यवस्था रही। बारी आने पर भक्तों को दर्शन पूजन का सौभाग्य प्राप्त होता रहा। प्रयागराज में संगम के तट पर लेटे हनुमान जी के दर्शन के लिए भी भक्त सुबह से ही पहुंचने लगे और देखते ही देखते उनकी लंबी कतारें लग गई। इस विशेष अवसर के लिए हनुमान जी की प्रतिमा का फूलों और फलों से भव्य श्रृंगार किया गया और उन्हें 56 भोग भी लगाया गया। मान्यता है कि बड़ा मंगल के दिन बजरंग बली की भक्ति करने से जीवन के सभी दुख दर्द और संकट दूर हो जाते हैं। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में श्रीनाथ जी की नौका विहार मनोरथ का भव्य आयोजन हुआ। इस नौका यात्रा उत्सव को लेकर मंदिर की दिव्य सजावट की गई, जिसमें बड़ी संख्या में आम का उपयोग भी किया गया। इस विशेष अवसर के लिए ठाकुर जी को मलमल के हल्के वस्त्र पहनाकर सुगंधित फूलों और चंदन से श्रृंगार किया गया और फिर ठाकुर जी को जल के बीच विशेष रूप से सुसज्जित नावों में विराजमान कर भव्य झांकी सजाई गई। साथ ही बधाई गीत भी गाए गए। इस अवसर पर ठाकुर जी के विशेष दर्शन कर भक्त मंत्रमुग्ध हो गए। अधिक मास के समापन के अवसर पर इस दिव्य उत्सव का आयोजन हुआ। उड़ीसा के पुरी में 16 जुलाई से शुरू होने वाले